0: से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया, आप बुलाइए उनको। बुलाइए सदन में बुलाइए।
1: माननीय नड्डा जी,
2: ये सदन को गुमराह कर रहे हैं जी। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और आप चर्चा से भागो मत।
3: 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चलते आंदोलन के बीच हंगामे के साथ शुरू हुई संसद में हंगामे के साथ मानसून सत्र पूरा होने जा रहा है।
4: झारखंड में छात्रों के धरना और आंदोलन करते 19 दिन हो चुके हैं। झारखंड की परीक्षाओं में धांधली की रोज नई किश्त सामने आ रही है। पता ये चला कि भर्ती प्रक्रिया में 10 लाख से 50 लाख तक के रेट लगाए गए और अभय तिवारी सब कुछ सेट करता रहा, जिसमें आयोगों के बड़े बड़े अधिकारी तक दावा करते हैं कि वो शामिल थे।
5: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
6: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
7: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले।
6: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस। हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
5: रांची में दो दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
8: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है। अध्यक्ष महोदय, जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
5: सोरेन यही ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
9: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी, वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरना स्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग की?
10: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी और सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था, जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
5: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है, इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। ACF के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने CDPO परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
11: झारखंड में JPSC और JSSC की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की CID के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, आज तक रांची।
4: क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टियां जेनजीज पर डोरे डाल रही हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2027 में यूपी से लेकर देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इन चुनावी राज्यों में जेनजी वोटर्स एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। सियासी पार्टियों को मैसेज बहुत ही क्लियर है, साफ है, जहां जेनजीज वहां पड़ला भारी। फिर चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या संघ प्रमुख मोहन भागवत या फिर विपक्ष, हर कोई जेनजीज को अपने पाले में खींचने के लिए भरपूर कोशिश में जुटा है।
1: जेन जी के सहारे देश के चुनाव सारे। कैसे जेन जी को लुभाने में जुटा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जेन जी वोटर की प्लानिंग शुरू। जंतर मंतर से ताकत दिखाई, सबको जेन जी की याद आई। जेन जी साथ आएगा तो चुनाव जिताएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेन जी ने दम दिखाया तो सिस्टम को हिला डाला। इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, लेकिन जेन जी की ताकत का एहसास हर सियासी पार्टी को हो गया।
12: लाखों युवाओं से मैं मिला,
13: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि
1: पीएम मोदी इंस्टा पर आ गए और जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की। और आज भी पीएम मोदी देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी को मैसेज दे रहे हैं। जी हाँ, मौका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन का था, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा मैसेज जेन जी को दिया।
14: रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते। तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की, इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है।
1: जेन जी की ताकत हर कोई समझ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जेन जी आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष के लिए आगे आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, इसलिए ये अपनी समस्याओं को केवल निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें सार्वजनिक बहस का विषय बना देती है। भारत में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है।
15: सारे जेन जीज की जगह ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, आप लोगों का स्वागत है। इस भारत को आप ही लोगों को संभालना है, क्योंकि आप लोगों की आबादी 62% है। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आके सुनते हैं, आप लोगों की बातों पर इतना गौर किया जा रहा है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो मैं सारे जेंजीज को प्रणाम नमन करता हूँ।
1: राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेंजी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
16: क्या है, जेंजी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है,
17: तो चलिए हम सब तैयार हैं सौ के साथ सेल्फी के लिए। मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
1: तो जेन जी की ताकत को आरएसएस ने भी समझा है और जाना है, तभी तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी के साथ संवाद किया।
18: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
19: बिल्कुल
18: उसको ठीक करना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है।
1: आज जेन जी की आवाज को सियासी पार्टियां अनसुना नहीं करना चाहती तो उसके पीछे बड़ी वजह है। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावी राज्यों में युवा मतदाता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल के उम्र के लोग 21.19%, गुजरात में 23.32%, पंजाब में 21.44%, उत्तराखंड में 22.18%, हिमाचल प्रदेश में 21.91%, मणिपुर में 23.74% और गोवा में 19.60% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की है।
4: और सिर्फ जेंजीज ही नहीं बल्कि जेन अल्फा भी देश में अब अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। जुलाई में महीने में जंतर मंतर से उठा जेंजी का ज्वार अब जेन अल्फा तक पहुंच चुका है। जेंजी अगर बेरोजगारी, भर्ती में भ्रष्टाचार पर घेरता है तो जेन अल्फा स्कूलों की हालत, सड़क की बदहाली पर सीधा सीधा सवाल करने लगा है। और इसीलिए अब बीजेपी हो या विपक्ष, हर कोई जेंजी और जेन अल्फा के साथ सीधा कनेक्शन साधने में जुट चुका है।
1: जंतर मंतर के आंदोलन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माइलेज लेने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने यूपी के मुद्दों को जंतर मंतर से लेकर संसद तक सामने रखा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा।
20: सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
1: तो अब यूपी में सीएम योगी और बीजेपी की पूरी मशीनरी जेन जी को लुभाने में जुट गई है। यूपी सरकार के मंत्री मनोज पांडे रायबरेली में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जेन जी को साधने की कोशिश करते हैं।
21: उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपने दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है।
22: समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे।
1: यूपी में योगी सरकार और बीजेपी ने जेन जी संवाद के लिए कैंपेन शुरू किया है, जिसमें योगी सरकार के मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेन जी चौपाल करेंगे। विधानसभा बार टीमें तैयार करने की तैयारी की जा रही है।
23: चुनावी साल नजदीक है, ऐसे में अब राजनीतिक दलों को यह समझ आ चुका है कि केवल परंपरागत नारों से ही काम नहीं चलने वाला है। उन्हें मालूम पड़ गया है जेंजी का जो उबाल पूरे देश में इस वक्त देखने को मिला है अपने मुद्दों को लेकर, वो मामूली तो नहीं। और इसलिए बीजेपी अब अपनी यूथ विंग के जरिए स्कूल कॉलेजों में युवाओं से युवाओं के संपर्क कराकर संपर्क साधने जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्री भी अब इसमें आ गए हैं।
1: बड़ी बात यह है कि सिर्फ जेन जी ही नहीं बल्कि जेन अल्फा ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। अब यूपी के हमीरपुर में ही देख लीजिए, स्कूल के रास्ते में आने वाले गड्ढों के खिलाफ जेन अल्फा तिरंगा लेकर निकल पड़ता है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। ये बच्चे डीएम ऑफिस तक पहुंचते हैं और जेन अल्फा के आक्रोश के बाद प्रशासन भरोसा देता है कि अब जल्द ही यहां 1,81,00,000 रुपए खर्च कर सड़क बनवाई जाएगी।
0: यहां कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं लेकिन यहां कोई सुना ही नहीं कर, बस बता रहे थे जा, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, दूसरे दिन काम चालू हो जाए, लेकिन कोई काम चालू नहीं होता। हम लोग आश्वासन देकर भगा दिया था, हम लोग चले जाते वापस।
1: जेन अल्फा के आगे झुकना भी सियासी पार्टियों की मजबूरी क्यों है वो भी आपको समझाते हैं। भारत के कानूनी नियमों के अनुसार वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल है। इस नियम के हिसाब से जेन अल्फा के बच्चे साल 2028 से 2042 के बीच वोटर बनने के योग्य होंगे। इस पीढ़ी के सबसे बड़े बच्चे जिनका जन्म 2010 से 2011 के बीच हुआ था वो साल 2028 से 2029 तक 18 साल के हो जाएंगे, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इनका एक छोटा हिस्सा पहली बार मतदान करेगा। और इसीलिए सियासी पार्टियां ना जेन जी को नजरअंदाज कर सकती हैं और ना ही जेन अल्फा को। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: सोचिए कि आप पूरी फैमिली के साथ एक फ्लाइट से जा रहे हो और अचानक से हवा में विमान जोर जोर से हिलने लगे, आप सीट से नीचे गिर जाएं, आपके आसपास के लोग घायल हो चुके हों, ऊपर से कैबिन में रखे हुए सामान नीचे आने लगे और आप समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है। आप कुछ नहीं कर सकते, अगर करना चाहें भी तो सिर्फ ऊपर वाले को याद करेंगे। और जब आपको पता यह चल जाए कि इस फ्लाइट को जो पायलट उड़ा रहा था वो गांजे के नशे में था तो सोचिए होगा क्या। यही हुआ है एयर इंडिया की एक फ्लाइट के साथ।
2: क्या एयर इंडिया के पायलट ने गांजा फूंक कर 137 सवारियों की जिंदगी खतरे में डाली? गांजा फूंकने वाले पायलट पर क्या एक्शन होगा? आगे ऐसा ना हो इसकी क्या गारंटी है? ये तस्वीरें डराने वाली हैं। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें देखिए क्या हाल है। लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, सीटें उखड़ी पड़ी हैं, लोग घायल हैं। और ये तब का वीडियो है जब सब कुछ हो चुका था। क्या हुआ था फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंडिंग की बात की तस्वीरें हैं। पैसेंजर घायल है, केबिन क्रू के सदस्य घायल है, किसी की आंख पर चोट है, किसी के हाथ पर, किसी के गले पर। ये सब लोग इसी फ्लाइट में सवार थे। चार अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए यह फ्लाइट चली थी AI-2379। फ्लाइट जब हवा में थी तो पैसेंजर्स को अचानक से टर्बुलेंस का एहसास हुआ। फ्लाइट के केबिन में रखा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगा, लोग अपनी सीटों से गिर गए और चोटिल हो गए। अचानक से जहाज हवा में ही 300 फीट नीचे चला गया। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार मच गई। इस घटना में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू मेंबर्स को चोटें आईं। फ्लाइट में 137 यात्री सवार थे जिनमें 3 छोटे बच्चे भी थे और इनके अलावा 2 पायलट और 6 केबिन क्रू के सदस्य थे। अब खबर आ रही है कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाला मेन पायलट गांजे के नशे में था। इस पायलट का दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट का जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो उसके शरीर में गांजे का सब्सटेंस पाया गया। डीजीसीए ने फिलहाल प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ने कहा है कि जांच पूरी होने तक कोई नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए।
3: देखिए मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, मैंने उसको संज्ञान में नहीं लिया। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो ये बड़ी गंभीर बात है और DGCA को इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई अभी तक, तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है।
6: दिस क्रिमिनल बिहेवियर, एयर इंडिया इज लायबल, दे क्रिमिनली दे मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक एग्जेम्पलरी एक्शन अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ एयर इंडिया एंड द प्रोसेसेस ऑब्वियसली व्हिच दे फॉलो आर नॉट रोबस्ट इनफ एंड दे हैव एंडेंजर्ड लाइव्स। दिस इज क्रिमिनल बिहेवियर एंड इनफैक्ट दे मस्ट बी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट लेवीड ऑन एयर इंडिया एंड ऑल दोस कंसर्न।
2: बताया जा रहा है कि जब ये टर्बुलेंस हुआ तो ये फ्लाइट 3 मिनट तक पलटी खाती रही। फ्लाइट टर्बुलेंस का मतलब ये है कि हवाई जहाज तेज हवा के झटकों में फंस गया था और फिर अचानक से 300 फीट नीचे आ गया। यात्रियों ने दावा किया कि उड़ान भरने के 1.5 घंटे के बाद फ्लाइट में झटके लगे। सुबह का वक्त था तो यात्री सो रहे थे। अब पता चला है कि फ्लाइट का पायलट गांजा पिए हुए था। पायलट दोनों बार डोप टेस्ट में फेल हो गया है। पायलट की डोप टेस्ट में मारिजुआना यानी गांजा की पुष्टि हुई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AAIB ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि विमान की ऊंचाई अचानक क्यों बदली, उस समय विमान के सिस्टम किस स्थिति में थे, मौसम और टर्बुलेंस की क्या भूमिका थी, पायलट्स ने क्या एक्शन लिया, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में क्या जानकारी है, यात्रियों और क्रू को किस तरह की चोटें आई, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या दर्ज है।
7: In fact, we wanted to get a direct update from Air India also on the incident, and we wanted to see how they are taking this issue from their side. And I have told time and again that from the ministry, safety in aviation is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation, and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what action, definitive action needs to be taken on this.
2: Just विमान A320 में खराबी आई वो एयरबस है और वो फ्रांस में बनता है। इसीलिए AAIB की जांच में फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी और फ्रांस स्थित एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञ भी मदद कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
24: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

संतान को लाभ होता है? क्या माँ बाप के किए गए उपायों से संतान का विवाह जल्दी हो सकता है? क्या माँ बाप के किए गए उपाय संतान को सफलता दिला सकते हैं? माँ बाप कौन सा करें उपाय संतान की किस्मत संवर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

कि मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी हंगामे के पूरे आसार गतिरोध दूर करने को लेकर स्पीकर ने ली अपील। सरकार बोली विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो तो बढ़ा देंगे कार्यवाही का समय। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, आज दिल्ली में लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल, इलाके में सुबह 10 बजे तक ट्रैफिक बंद। आजादी के पर्व से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की रौनक। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 20वां दिन, राज्य सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अब तक नहीं बनी बात। पूर्व सीएम रघुवर दास बोले सरकार छात्रों की मांगे माने नहीं तो दूंगा धरना।

इनकार करने वाली पंजाब सरकार को झटका। हाईकोर्ट ने कहा हुआ था पेपर लीक भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल लगाई रोक। विपक्ष ने भगवंत मान सरकार को घेरा। ट्रंप ने होर्मुज पर पूरा अमेरिकी कंट्रोल का दावा किया। बोले कि हम इसे बनाए रखेंगे। ईरान ने दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दावों से हकीकत नहीं बदलती। होर्मुज अभी भी बंद है।

0: देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन राजनीति में हंगामा अभी भी जारी है। अब तक के हंगामे की तस्वीरें को देखकर यही लग रहा है कि लगातार टकराव वाली सियासत को देखकर आज भी आखिरी दिन हंगामे के पूरे आसार है। वैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों से संपर्क किया है ताकि कार्यवाही को चलाया जा सके। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। जवाब में राहुल गांधी बोले, इस्तीफा दे तो बात होगी। स्पीकर ने कार्यवाही चलाने के लिए एक पहल की है कि अगर विपक्ष कार्यवाही चलने देगा तो समय को बढ़ा दिया जाएगा।
1: संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले
2: गोपाल जी, व्हाट डू यू वांट टू से टू केसी वेणुगोपाल जी,
3: ये जेपीसी में भेजा जाए।
4: के बाद मुझे मौका मिला है बोलने,
2: दिया तो समय आपको।
5: गुरुवार को संसद का मानसून सत्र खत्म होने से पहले बुधवार को भी न संसद का हंगामा थमा, न चर्चा हुई, न संसद नियम से चल पाई। लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि अब राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का बीजेपी का आरोप और गहरा हो गया।
6: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
5: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग करते राहुल गांधी को एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए राजी होने की न सिर्फ बात कही बल्कि स्पीकर ओम बिरला को अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप विपक्ष से चर्चा करके आपसी सहमति से आज से जितने समय जितने घंटे आप उचित समझे उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। राहुल कहते हैं कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री ये बताएं कि पैलेट गन से गोली किसने चलवाई।
7: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
5: जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लगातार हंगामा चलता है। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर तक जवाबी नारेबाजी होती रही।
8: मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं।
5: अमित शाह ने जब ये साफ कहा है कि सरकार चर्चा से कतई भाग नहीं रही, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ।
6: लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा।
9: इस 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए।
5: इस बीच सरकार ने एफसीआरएस संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, लेकिन लड़ाई मेरा जवाब बनाम तेरा जवाब पर चलती रही।
10: आपको पता है कि जब जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, एफसीआरए में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है, तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए गृहमंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते, तो गृहमंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे, तो हंगामा करो।
11: रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार,
12: आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस।
5: राज्यसभा में गृह मंत्री को लेकर खड़गे ने वार किया, कहा कि वो रोज नहीं आते। नड्डा बोले, आप चर्चा से भाग रहे हैं।
13: मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा, ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको।
14: माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और आप चर्चा से भागो मत।
5: धन्यवाद। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चलते आंदोलन के बीच हंगामे के साथ शुरू हुई संसद में हंगामे के साथ मानसून सत्र पूरा होने जा रहा है।
0: वही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार चर्चा चाहती है और विपक्ष इससे भाग रहा है। अब आज आखिरी दिन को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो जाए तो हम समय बढ़ा देंगे।
8: जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में, और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहां तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कल सुबह भी 11 बजे कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार हैं।
0: और अब खबर रांची में जारी छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी। दरअसल आज 20वां दिन है इस प्रदर्शन का, और आज भी वही स्थिति है जो कल थी, बस सियासी बयानबाजी तेज है और छात्र अपनी मांगों को लेकर अभी भी धरना अनशन कर रहे हैं। उधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुबर दास ने चेतावनी दी है कि परीक्षा धांधली को लेकर अगर सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल करेंगे।
15: रांची की सड़कों पर आंदोलन जारी है, छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने दो टूक बता दिया है कि सरकार उनकी मांगे माने तभी उनका आंदोलन खत्म होगा। दो मुख्य मांगों को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच गतिरोध बना हुआ है। पहली मांग ये कि 2024 की JSSCCGL परीक्षा को रद्द किया जाए, और दूसरी अहम मांग की JPSC और JSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित धांधली की CBI जांच कराई जाए। रांची का ये छात्र आंदोलन अब इन्हीं दो मांगों के इर्द गिर्द है। भूख हड़ताल करने वाले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल में भर्ती हैं। वो अब अस्पताल प्रबंधन को चिट्ठी लिख रहे हैं कि शरीर अस्पताल में है और आत्मा आंदोलन स्थल पर, मुझे यहाँ से मुक्त कर सत्याग्रह स्थल जाने दें। सूरेन सरकार के खिलाफ डटे छात्रों को बीजेपी का साथ मिला है। बीती रात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास भी धरना स्थल पर पहुंचे।
16: छात्रों को धमकाना बंद करो, छात्रों की जो जायज मांग है जेपीसी चौधरी जेपीसी पीटी परीक्षा रद्द हो, मामले को सीबीआई दो। दूसरा, जेपीसी पीटी से भी ज्यादा घोटाना, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ज्यादा घोटाना जेसीसी सीजीएल में घोटाना।
15: रघुबर दास ने सरकार को चेताया है कि 7 दिन के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो खुद भी अनशन शुरू कर देंगे।
16: पूरे मामले का सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया तो मैं दबा दिल का धंधा बैठूंगा।
15: छात्र विधानसभा घेराव कर चुके हैं, पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, सरकार से कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन गतिरोध जस का तस बना हुआ है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: वहीं झारखंड में छात्रों के धरना और आंदोलन करते 19 दिन हो चुके हैं। धरना प्रदर्शन के बीच अब पता चला है कि प्रति भर्ती 10 लाख से 50 लाख तक रेट लगता रहा और अभय तिवारी सब कुछ सेट करता रहा है, जिसमें आयोगों के बड़े बड़े अधिकारी तक दावा है कि ये शामिल रहते थे।
15: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी, आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा, आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी, छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
17: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
18: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले,
17: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस, हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
15: रांची में 2 दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
16: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है। अध्यक्ष महोदय, जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आ सकता।
15: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
19: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी, वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरना स्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया, छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग?
20: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी, अब सारी स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी, अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था, जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
15: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है, छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है, इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए, नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। ACF के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने CDPO परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
21: झारखंड में JPSC और JSSC की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की CID के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने CID से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक रांची।
0: रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच अब कांग्रेस जनता पार्टी ने एक बार फिर से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसे सीजन 2 का नाम दे दिया है। कल दिल्ली में उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सीजेपी को मीटिंग के लिए जगह देने से रोकने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है।
15: जंतर मंत्र पर मिली कामयाबी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जोश हाई है। आंदोलन की पहली सफलता ने हौसले बुलंद किए तो अब सीजन 2 की भी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में बुधवार को सीजेपी की बैठक के बाद अभिजीत दीपक ने कहा कि जल्द जंतर मंत्र सीजन 2 शुरू होने वाला है।
1: बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है।
15: तो आखिर प्लान क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी का ये सीजन 2 क्या है? इसका खुलासा अभिजीत दीपक ने तो नहीं किया, लेकिन सीजेपी प्रवक्ता ने सीजन 2 को लेकर सवाल का जवाब दिया।
3: आपने कहा अभिजीत ने कहा सीजन 2 आएगा, कब आएगा, क्या कुछ बोलेंगे?
22: देखिए सीजन 2 तो यही है, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है ऐसे निकम्मी सरकारों के खिलाफ, निकम्मे ऑफिसर्स के खिलाफ, वही सीजन 2 है।
15: वैसे सीजेपी देश भर के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की हालत सुधारने की मुहिम 15 अगस्त से शुरू करने जा रही है।
23: ये कैंपेन रहेगा जो हमारे गांव की जो स्कूल है पूरे देश भर में जिनको इग्नोर किया गया इतने साल से, उन स्कूलों को ठीक करने की मुहिम है।
15: ऐसी मुहिम से पहले कॉकरोच जनता पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। दीपक का आरोप है कि उन्हें मीटिंग के लिए जगह देने से रोका जा रहा है। ऐसे गंभीर आरोप और जंतर मंतर सीजन 2 वाले बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है।
24: ये कोई पिक्चर नहीं है कि सीजन 1 सीजन 2, बल्कि छात्रों को भी सोचना चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या है। आप रोट लर्निंग चाहते हैं या फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी।
0: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
25: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।

वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 पर बड़ा हादसा हुआ। अचानक पहाड़ से भारी भरकम पत्थर गिरने लगे। इस हादसे की चपेट में एक कार आ गई। किरण बाजार और बराड़ के बीच ये घटना घटी। पत्थरों की चपेट में आकर कार के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी पत्थरों के नीचे दब गई। हादसे के वक्त कार में दो लोग सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कांगड़ा में भी आफत की तस्वीर दिखी। वहां लगातार बारिश के बीच रानीताल बाथू पुल के पास जबरदस्त भूस्खलन की घटना हुई। इस घटना में 4 लेन हाईवे का एक हिस्सा और कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे बाधित हो गया। कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। मौके पर दोनों तरफ गाड़ियां फंसी रही। बाद में ट्रैफिक चालू करने के लिए भारी मशीनों से मलबा हटाया गया, तब जाकर हालात संभले। हिमाचल के सोलन में भी तबाही की तस्वीर दिखी। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर सोलन में एक चलती कार पर बड़ी चट्टान गिर गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को IGMC शिमला रेफर किया गया है। कुल्लू और हिमाचल के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इसका असर वहां की ब्यास और पार्वती नदियों में दिख रहा है। नदी के जलस्तर में उफान है और किनारों पर खतरा बढ़ा हुआ है। और अब एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां अचानक आई बाढ़ में 7 जिंदगियां फंस गईं। ये तस्वीरें कठुआ के माहीचक इलाके की। वहां उन नदी में उफान बढ़ा तो नदी के बीच एक टापू पर लोग पानी से घिर गए। उन सभी को बचाने के लिए पुलिस और SDRF ने तेज बचाव अभियान चलाया। इस अभियान के बाद कठुआ में अचानक आई बाढ़ के दौरान 7 लोगों की जान बच पाई। सोलन से राजेश शर्मा, कांगड़ा से अशोक रैना और कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: क्या माँ बाप के किए गए उपायों से संतान को लाभ होता है? क्या माँ बाप के किए गए उपायों से संतान का विवाह जल्दी हो सकता है? क्या माँ बाप के किए गए उपाय संतान को सफलता दिला सकते हैं? माँ बाप कौन सा करें उपाय संतान की किस्मत संवर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
2: जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। 1.5 साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं। 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहां 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहां ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार? जहां बारिश को जिम्मेदार ठहराकर बचा जाता है, और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं।

फ्लाईओवर के नीचे एमपी नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है। अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता

0: 23 जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। 1.5 साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं। 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहां 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहां ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार, जहां बारिश को जिम्मेदार ठहराकर बचा जाता है? और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे एमपी नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है? अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए? और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चू तक नहीं करेंगे? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी हंगामे के पूरे आसार, गतिरोध दूर करने को लेकर स्पीकर ने ली अपील। सरकार बोली विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो तो बढ़ा देंगे कार्यवाही का समय। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, आज दिल्ली में लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल, इलाके में सुबह 10 बजे तक ट्रैफिक बंद। आजादी के पर्व से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की रौनक। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 20वां दिन, राज्य सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अब तक नहीं बनी बात। पूर्व सीएम रघुवर दास बोले सरकार छात्रों की मांगे माने नहीं तो दूंगा धरना।

0: रखेंगे। ईरान ने दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दावों से हकीकत नहीं बदलती, होर्मुज अभी भी बंद है। और चलिए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल इमरान खान जिंदा है या जेल के अंदर उन्हें मार दिया गया है, यही सस्पेंस है। आपको बता दें कि अमेरिका में बैठे हुए एक पाकिस्तानी पत्रकार ने भी दावा किया है कि रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान खान नहीं रहे। पत्रकार वजाहत सईद खान ने यह दावा किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर के 3 अफसरों के हवाले से उन्हें यह खबर मिली है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है, इमरान खान के जिंदा हैं या वो मर गए हैं, इसकी मिस्ट्री क्या है।
1: इमरान खान जिंदा है या मर गए, सच क्या है? इमरान खान की मौत की खबर खुद फैली या फैलाई गई? इमरान की खबर में सच्चाई है या मुनीर का कोई गेम प्लान है? इमरान की बहनें क्या बोल रही हैं? पाकिस्तानी सेना क्या बोल रही है?
2: मैं मर जाऊंगा जेल में, लेकिन मैं इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा।
1: रावलपिंडी की अदियाला जेल के अंदर क्या हुआ? इनसाइड स्टोरी क्या है? कहा तो 3 साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की रिहाई के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान होता है, और कहा अचानक से खबर आती है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं रहे। इमरान खान की मौत की खबर पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है। पहले आपको बता दें कि अमेरिका में बैठे एक पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान दावा करते हैं कि अदियाला जेल में बंद इमरान खान की मौत हो गई है। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें ये खबर पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर के 3 अफसरों के हवाले से आई है।
3: अफसरान जो जीएचक्यू में है, कम से कम 3 अफसरान का ये पर्सपेक्टिव है, जाती पर्सपेक्टिव है। 3 ऑफिसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है दैट इमरान खान इज नो लॉन्गर विद अस एंड दैट इज द रीजन व्हाई द पाकिस्तान आर्मी एंड द आर्मी चीफ are keeping him from the rest of the country.
1: वजाहत सईद खान पाकिस्तानी सेना के करीबी पत्रकारों में गिने जाते हैं। उन्हें इमरान खान समर्थक पत्रकार भी माना जाता है। वो एमी पुरस्कार के लिए नामांकित हो चुके हैं और वर्तमान में पाकिस्तान में जेल की सजा से बचने के लिए अमेरिका में रहते हैं। इसीलिए इमरान खान की बहनें रावलपिंडी की जेल पहुंच जाती हैं और जेल में लागू कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और बढ़ती आशंकाओं के बीच पीटीआई ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कल रात 10 बजे तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई तो पूरा पाकिस्तान ठप कर दिया जाएगा।
2: हमारा एसओपी है कि सिवाय फैमिली के और पर्सनल डॉक्टर की हेल्प पे इमरान खान का ये एसओपी है कि कोई और बात नहीं करेगा। हर एक ने मुंह खोल लिया, हर एक ने तमाशा बना दिया उनका, और अब जवाब दें सारे जिन्होंने शुरू किया है, ये जो एजेंसियों की बातें शुरू की हैं जिन्होंने, अब जवाब दें। जबकि वजाहत साहब ने बचा दिया है कि जी वो उनको तो जेल में खत्म कर दिया, ये कहा है ना कुछ इस किस्म की बात की, मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं है, मुझे यहाँ के कई लोगों ने बताया।
1: हालांकि इमरान खान की मौत के दावों पर पाकिस्तानी सेना ने भी अपना बयान जारी किया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने कहा है कि इमरान खान जिंदा है और अदियाला जेल में ही बंद है। लेकिन इमरान खान की मौत की खबर फैलने के बाद इमरान खान की बहनें अदियाला जेल के बाहर इंतजार करती रहीं, लेकिन उन्हें जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। आपको बता दें कि इमरान खान की बहनों की अपने भाई से मुलाकात करीब 9 महीने पहले हुई थी। इमरान की बहनों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इमरान खान से मिलने के बाद उनकी बहनें बाहर आकर राजनीतिक बयान देती हैं। जिससे पाकिस्तान का माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन अब इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि वो लिखित में ये बयान देने को तैयार हैं कि वो इमरान से मिलकर कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगी। इसके बावजूद उन्हें मिलने की इजाजत नहीं मिल रही।
2: उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई सियासी बात बाहर ना आके करें तो हम उनको कह रहे हैं कि बहनों की मुलाकात करवा दें। हमने पूरी तरीके से इत्तेफाक किया बहनों ने, जब कोई सियासी बात बिल्कुल नहीं आके करेंगे बाहर आके।
1: इमरान खान की बहनों का कहना है कि उनका शक बेबुनियाद नहीं है। उस्मा खान ने कल भी कहा कि आखिरी बार जब उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई थी तब उन्होंने दो टूक कहा था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिफ मुनीर उन्हें मरवा देगा। यानी ये उनकी बहनों का शक नहीं बल्कि खुद इमरान खान का दावा था।
4: उनकी जिंदगी खतरे में है, जिंदगी से खतरे की। जो आखिरी बात में मुलाकात थी, पहली चीज उन्होंने कहा था कि ये नहीं कहा कि मैं मुझे शक है मार देंगे, मुझे पहले कहा कि आसिफ मुनीर मुझे मार देगा। लेकिन ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि नीयतें खराब है।
1: पाकिस्तान के लोगों का ये भी कहना है कि आसिफ मुनीर के दिमाग में इमरान खान को ठिकाना लगाने का प्लान काफी पहले से चल रहा है
5: कि अगर आसिफ मुनीर का इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, जो कि है, ये फैक्ट है, हकीकत है, इमरान खान की जिंदगी और कैद व बंद से मुतल्लिक 100% कंट्रोल उसका है, क्यों ये बात बाहर बताएगा कि आने देगा कि भाई इमरान खान नहीं रहे। लेकिन मेरा सवाल है क्यों बताएगा खुद? की खबर है 100% कि ये अवाम की जहन साजी कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ मुनीर ने वादा किया हुआ है इमरान खान को रास्ते से हटाने का, और उस वादे को अगर वो पूरा कर देता है तो वो खुद सदर भी बन सकता है, और सदर बनने की ख्वाहिश उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इस वक्त ख्वाहिश है। सीसी की तरह वो यूनिफॉर्म के अंदर प्रेसिडेंट बन के बैठना चाहता है ताकि वो स्टेट प्रोटोकॉल के साथ जाके ट्रंप को भी मिले और सऊदी बादशाहों से भी मिले और तीसरे चौथे नंबर के ऊपर जाके ना खड़ा हो। एक तो ये मामला है, दूसरा फौज अगले 10 साल तक इसका राज चले, फौज का राज तो हमेशा से रहा है लेकिन इसका राज अगले 10 साल तक चले, वो ये चाहते।
1: इमरान खान की मौत की सनसनीखेज अफवाह के बीच इमरान खान की पार्टी के भीतर भी गद्दारी को लेकर बड़ा बवाल मच गया है। ये बवाल भी इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर झूठी बातें फैलाने को लेकर मचा है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनकी ही पार्टी की सांसद मशाल यूसुफ जई ISI के इशारे पर ये अफवाह फैला रही है कि जेल में इमरान खान की तबीयत बिगड़ रही है। मशाल यूसुफ जई वकील भी हैं और इमरान खान की पार्टी से सेनेटर भी हैं। अब उन्हें पार्टी से निकालने की बात हो रही है। दूसरी तरफ मशाल ने भी चुनौती दी है कि अगर पार्टी उन्हें निकालना चाहती है तो निकाल दे। वही पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर और अब पत्रकार आदिल राजा ने मशाल यूसुफ जई और ISI से उनके कनेक्शन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मशाल यूसुफ जई ने ही कहा है कि अगर इमरान खान मान दे कि आसिफ मुनीर को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं।
5: कम राजा साहब से किसी ने मशाल यूसुफ जई या मशालो बी जमालो का जिक्र किया। मशालो बी जमालो जो है वो बड़े अरसे से ऑफर कर रही है। उसी ने बताया, जो ISI ने खबर चलाई, जो PTI की लीडरशिप को बताई कि इमरान खान की तबीयत बहुत खराब है, और साथ ही उसी ने कोर कमेटी को आके कहा, मुसलसल कहा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हमायत करें, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करें और उसके नतीजे के अंदर इमरान खान छूट जाएंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें इमरान खान को तो बाद में ये छोड़ेंगे, लेकिन पहले आसिफ मुनीर को आइनी तौर के ऊपर अपना बाप बना के बैठा दें और उसके बाद ये इमरान खान को छोड़ देंगे। उसके बारे में सलमान अकरम राजा से जो बातचीत की गई, पहले ये एक वीडियो मैं फेयर कमेंट के लिए चाहता हूं कि आप सुन लें, फिर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। कुछ सेकंड का वीडियो है।
6: सबसे साहब से जो मुलाकात हुई थी, इस वक्त खबरें गिर्दिश की थी कि आपको खान साहब ने कहा था कि मिसाल यूसुफ़ज़ई साहब को फारिग कर दिया जाए, और ये जब आपके पास बात थी
7: देखें सुन बिल्कुल ये आई थी, देखें सुन लीजिए फारिग करने का क्या मतलब है। देखिए सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना, सेनेट में वो मौजूद है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूं, पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है।
1: अब पाकिस्तान में मशाल यूसुफ जई से भी सवाल जवाब हो रहे हैं।
8: करें ना राजा साहब नोटिफिकेशन,
9: आप तो ये धमकी दे रही है ना कि जी करें करके दिखाएं।
8: मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं है सर कि मैं खान साहब के अकाउंट से अपने लिए पीटी करूं।
1: इमरान खान की मौत की अफवाह के बीच खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और पीटीआई नेता सुहेल अफरीदी ने दावा किया है कि लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के युवाओं का गुस्सा पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार के लिए काबू से बाहर हो सकता है। हाइब्रिड सरकार से मतलब असली ताकत पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के हाथ में है, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। इससे पहले सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी इमरान खान के लिए 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च करेगी।
10: आज नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है, तो इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे।
1: इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ ने यह भी धमकी दी है कि अगर इमरान खान के परिवार और डॉक्टरों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, तो इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। आज तक ब्यूरो।
0: बात कर लेते हैं ट्रंप के नए दाव की। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी संविधान उन्हें थर्ड टर्म की इजाजत नहीं देता, लेकिन वो अमेरिका के तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। सवाल यही है कि क्या ईरान युद्ध पर मिली नाकामी पर उठ रहे सवालों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप ने थर्ड टर्म वाला दाव चला है।

से इनकार करने वाली पंजाब सरकार को झटका। हाईकोर्ट ने कहा हुआ था पेपर लीक भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल लगाई रोक। विपक्ष ने भगवंत मान सरकार को घेरा। ट्रंप ने हॉर्मुज पर पूरा अमेरिकी कंट्रोल का दावा किया, बोले कि हम इसे

0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो बयानों ने अमेरिका से लेकर ईरान तक नई बहस छेड़ दी है। बहस की वजह है ट्रंप का दावा। होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही दावा किया है कि होर्मुज पर अब ईरान का नहीं बल्कि अमेरिकी सेना का नियंत्रण है। होर्मुज को अमेरिकी सेना ने ईरान से मुक्त करवा लिया है, लेकिन ईरान ने होर्मुज पर ट्रंप के दावे को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। सवाल यही है कि होर्मुज पर ट्रंप झूठा नैरेटिव गढ़ने में क्यों जुटे हैं। वहीं ट्रंप ने तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की है, ये जानते हुए भी कि संविधान के प्रावधानों के मुताबिक वो तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। संविधान और कानून सिर्फ दो बार राष्ट्रपति बनने की इजाजत देता है। तो क्या ईरान युद्ध में फंसे हुए ट्रंप घरेलू फ्रंट पर मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए थर्ड टर्म वाला दांव चल रहे हैं? क्या ट्रंप ने ईरान युद्ध के चलते मिड टर्म चुनाव में हार के डर की वजह से 2028 में फिर चुनाव लड़ने का शगुफा छोड़ा है? ईरान में फूले हाथ पांव तो चला नया दांव। क्यों ईरान से लड़ाई थर्ड टर्म तक आई? ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या है? ना युद्ध विराम हुआ ना ईरान युद्ध में हारा। वॉर गेम में फेल तो ट्रंप का माइंड गेम शुरू। अभी ईरान युद्ध में बुरी तरह फंसे ट्रंप बाहर निकलते उससे पहले ही 2028 में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर करके नई बहस को जन्म दे दिया। सबसे पहले सुनिए ट्रंप ने थर्ड टर्म को लेकर क्या कहा है।
1: But the law is very strong. I get asked by every, well, even tonight they're screaming at the event, 2028. Now everybody wants me to do it, but the law is very strong.
0: ट्रंप ने दुनिया को यही बताया कि अमेरिकी नागरिक यही चाहते हैं कि वो 2028 में तीसरी बार राष्ट्रपति बने, लेकिन थर्ड टर्म को लेकर संवैधानिक कानून बहुत सख्त है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने कानून का हवाला तो दे दिया, लेकिन 2028 में वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं साफ साफ नहीं बताया। बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी कई मौकों पर ट्रंप 2028 में राष्ट्रपति चुनाव में ताल ठोकने के संदेश दे चुके हैं। यहां तक कि ट्रंप का 2028 कैंपेन भी अभी से शुरू हो चुका है। साल 2025 में ट्रंप ने यही कहा था कि वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्हें अच्छा लगेगा। मुझे तीसरी बार राष्ट्रपति बनना बहुत अच्छा लगेगा, मेरे आंकड़े अब तक के सबसे अच्छे हैं, मैं इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहा हूं। सवाल यही है कि 2028 को लेकर ट्रंप का प्लान क्या है, क्योंकि अमेरिकी संविधान स्पष्ट रूप से किसी भी उम्मीदवार को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से रोकता है। संविधान के 22वें संशोधन में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं होगा, मतलब संविधान संशोधन के बिना ट्रंप 2028 में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। ये संविधान संशोधन 1947 में अमेरिकी संसद में पास हुआ था और 1951 से लागू है। इसके लिए ट्रंप को संविधान में दोबारा संशोधन करना होगा। संशोधन के प्रस्ताव को कांग्रेस के दो तिहाई सदस्यों की मंजूरी और 3/4 राज्यों यानी 50 में से 38 राज्यों में पास करवाना होगा, जो बहुत मुश्किल है। विपक्ष आरोप है कि थर्ड टर्म का शगुफा छोड़कर ट्रंप अपनी नाकाम नीतियों से अमेरिकी नागरिकों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान युद्ध का असर अमेरिकी नागरिक झेल रहे हैं।
2: So Donald Trump has lost this war. America is weaker. Iran is stronger. The price to reopen the strait increases by the day. The supposed deal that's on the table right now would pay Iran $100 billion a year in order to reopen the strait. That is 1/3 of Iran's entire economy. What a victory for Iran that at the end of this war, they get paid to reopen the strait. They get paid to rebuild their military. They get paid to rebuild their support for proxies in the region. The answer to your question is, yes, I will support a deal to end this war and to reopen the strait. I am prepared to support a bad deal to end this war and reopen the strait, because the only deal that is available at this point of in time is a terrible bad deal. But the war needs to end, because every day that the war continues, America gets weaker, Iran gets stronger, and people here in the United States get screwed as prices go up and up and up.
0: इसमें कोई शक नहीं कि ईरान युद्ध आज ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। भले ही ट्रंप होर्मुज को लेकर बड़े बड़े दावे करें, लेकिन आज होर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही पर ईरान का नियंत्रण है।
1: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But we right now, we're in a very good position.
0: ट्रंप के दावे
3: खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।

0: उपायों से संतान को लाभ होता है? क्या माँ बाप के किए गए उपायों से संतान का विवाह जल्दी हो सकता है? क्या माँ बाप के किए गए उपाय संतान को सफलता दिला सकते हैं? माँ बाप कौन सा करें उपाय संतान की किस्मत संवर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: पहले पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। यहां विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर दिखा। उसके बाद रांची में छात्र आंदोलन में पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद बीजेपी पूछती है कि राहुल गांधी आखिर रांची क्यों नहीं जा रहे। कुल मिलाकर दोनों आंदोलन में सहूलियत वाला सियासी समर्थन देखने को मिलता है। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि रांची में पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए और वो छात्रों के साथ है, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी पर जिन्ना वाला वार कर रही है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच सियासत तेज होती जा रही है। कल विधानसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के चोले में बीजेपी के घुसपैठ का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। वहीं रांची आंदोलन में पुलिस के लाठीचार्ज के बाद घायल छात्रों ने अपना दर्द साझा किया। रांची में 10 अगस्त को लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री छात्रों से सहानुभूति की जगह पुलिस का बचाव करते दिखे। इस बीच झारखंड सरकार आंदोलन को खत्म कराने पर उतर आई। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई। आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। अब तक सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली है। सवाल है कि क्या रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को जंतर मंतर जैसी सफलता मिलेगी और क्या सोरेन सरकार छात्रों की मांगों के आगे सरेंडर करेगी।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Sorry!

0: कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अगले कुछ साल में आपकी पसंद और बजट दोनों बदल सकते हैं। दरअसल सरकार की नई पॉलिसी का ड्राफ्ट बताता है कि आने वाले समय में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां महंगी पड़ सकती हैं, जबकि हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को खरीदने पर पेट्रोल डीजल के मुकाबले कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसकी वजह 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले नए कैफे नियम है, जिसके बाद ऑटो कंपनियों की रणनीति एकदम बदल सकती है। इनका मकसद माइलेज बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन घटाना है। इससे ईवी, हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा। वहीं ज्यादा प्रदूषण वाली गाड़ियों पर कंपनियों को अतिरिक्त लागत उठानी पड़ सकती है। नई व्यवस्था में सरकार कार कंपनियों को साफ सुथरी तकनीक वाली गाड़ियां बेचने के लिए प्रोत्साहन देगी, जिसका फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंच सकता है। और एक ईवी बेचने पर कंपनी को कागजों पर 3 गाड़ियों के बराबर क्रेडिट मिलेगा। वहीं एक हाइब्रिड कार को 1.6 गाड़ियों के बराबर माना जाएगा, जबकि E85 और E100 फ्लेक्स फ्यूल कारों को भी अतिरिक्त छूट मिलेगी। दूसरी तरफ ज्यादा ईंधन पीने वाली गाड़ियां कंपनियों के लिए चुनौती बन सकती हैं। अगर तय उत्सर्जन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो अतिरिक्त क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक अगर किसी कंपनी का औसत कार्बन उत्सर्जन तय सीमा से ऊपर जाता है तो उसे क्रेडिट खरीदने होंगे। इस अतिरिक्त खर्च का असर कुछ मॉडलों की कीमत पर भी दिख सकता है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट की कीमत 2500 से 4500 रुपए प्रति ग्राम CO2 तक हो सकती है। ऐसे में कंपनियां ज्यादा क्लीन टेक्नोलॉजी वाले मॉडल लॉन्च करने पर जोर देंगी। नई पॉलिसी में तकनीक और माइलेज पर भी खास फोकस रखा गया है। इसका असर भविष्य की कारों के फीचर्स और परफॉर्मेंस दोनों पर दिख सकता है। इसके तहत 6 स्पीड या उससे ज्यादा गियर बॉक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और LED जैसी तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। उधर माइलेज मापने के लिए वैश्विक WLTP सिस्टम की तरफ भारत बढ़ेगा। वहीं E20 कारों के उत्सर्जन को 8% कम मानने का प्रस्ताव भी इस पॉलिसी में है। सरकार का मानना है कि इससे तेल आयात पर निर्भरता घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अच्छी बात है कि इन नियमों का असर पुरानी गाड़ियों पर नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम 1 अप्रैल 2027 के बाद बनने या आयात होने वाली नई यात्री गाड़ियों पर लागू होगा। साफ है कि आने वाले समय में कार खरीदने वक्त इंजन की ताकत से ज्यादा माइलेज, फ्यूल कॉस्ट और उत्सर्जन का हिसाब मायने रखने वाला है। इससे भारतीय ऑटो बाजार धीरे धीरे पेट्रोल डीजल केंद्रित मॉडल से निकलकर हाइब्रिड, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी हंगामे के पूरे आसार, गतिरोध दूर करने को लेकर स्पीकर ने ली अपील। सरकार बोली, विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो तो बढ़ा देंगे कार्यवाही का समय। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, आज दिल्ली में लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल। इलाके में सुबह 10 बजे तक ट्रैफिक बंद। आजादी के पर्व से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की रौनक। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 20वां दिन। राज्य सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अब तक नहीं बनी बात। पूर्व सीएम रघुवर दास बोले, सरकार छात्रों की मांगे माने नहीं तो दूंगा धरना।

से इनकार करने वाली पंजाब सरकार को झटका। हाईकोर्ट ने कहा हुआ था पेपर लीक भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल लगाई रोक। विपक्ष ने भगवंत मान सरकार को घेरा। ट्रंप ने होर्मुज पर पूरा अमेरिकी कंट्रोल का दावा किया, बोले कि हम इसे बनाए रखेंगे। ईरान ने दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दावों से हकीकत नहीं बदलती, होर्मुज अभी भी बंद है।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी संतान उन्नति करे और जीवन में सफल हो। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी संतान की सफलता के लिए माता पिता को कौन से उपाय करना चाहिए ताकि संतान की उन्नति हो, सफलता मिले। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अगस्त 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:41 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 6:06 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 6:06 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि माता पिता अगर अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए उपाय करें तो उससे उनके बच्चों को सफलता मिल सकती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि माता पिता के प्रयासों से बच्चों को कैसे लाभ हो सकता है। देखिए, माता पिता के ग्रहों से बच्चों का सीधा संबंध होता है। माता पिता के पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व पुण्य इस जन्म में संतान के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए माता पिता की पूजा उपासना से और माता पिता की प्रार्थना से माता पिता के कर्म तो सुधरते ही हैं, संतान के जीवन में उसको सफलता भी मिलती है। कुंडली के जिस भाव से आपका पूर्व पुण्य देखा जाता है उसी भाव से आपके संतान का भी विचार किया जाता है। तो इस जीवन में आप अपनी संतान से दुख पाएंगे या सुख पाएंगे ये आपके जीवन के पूर्व पुण्य या पूर्व पाप पर निर्भर करता है। अब उन माता पिता की बात करते हैं जिनके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 6वीं में हैं, 5वीं में हैं, 12वीं में हैं, कॉलेज में हैं। अगर आपका बेटा या बेटी यानी आपकी संतान अभी पढ़ाई कर रही हो तो वो पढ़ाई में उन्नति कैसे करे ये आपको बताते हैं। माता या पिता में से कोई एक बच्चे के लिए रोज सवेरे 1 हनुमान चालीसा का पाठ करें। बच्चे को सप्ताह में 1 किसी धर्म स्थान पर मंदिर में ले जाएं
अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो सप्ताह में एक दिन खुद से मंदिर जाए और बच्चे को फास्ट फूड से और बाहर के भोजन से दूर रखिएगा। जो बच्चे ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं या बाजार का भोजन ज्यादा करते हैं, ऐसे बच्चों का राहु एक्टिव हो जाता है और उनके पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है। तो माता पिता अपने बच्चे के लिए पूजा प्रार्थना तो करेंगे ही, बच्चे का फास्ट फूड और बाहर का खाना कम करवाएंगे। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और सावन में भाग्य बढ़ाने के लिए एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संतान की उन्नति होगी, वाहन सावधानी से चलाइए, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, चिकित्सा में लापरवाही ना करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना मिलेगी, रिश्ते मधुर होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अगर आपका बेटा या बेटी यानी आपकी संतान प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही हो, यानी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, गवर्नमेंट जॉब की, सिविल सर्विस की, आर्मी की, अगर आपका बच्चा प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहा हो तो उसमें सफलता दिलाने के लिए माता पिता क्या करेंगे? माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति सूर्य को जल अर्पित करें नित्य प्रातः, और कोशिश करें कि आपका बच्चा भी रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाए। बच्चे के हाथ से हर शनिवार को अनाज का यानी अन्न का दान करवाएं, और माता पिता में से कोई भी अपने बच्चे के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और प्रार्थना करें कि मेरे संतान को सफलता मिले और मेरे मंत्र जप करने का फल
मेरी संतान को प्राप्त हो। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

योग हैं, धन की प्राप्ति होगी, खान पान में सावधानी रखें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

सावधानी से चलाएं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, संतान की चिंता हो सकती है, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सरिता विनायक ने हमें लिखा है, मुंबई महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 नवंबर 1978। जन्म का समय सुबह के 4 बजे। जन्म का स्थान है मुंबई। सरिता कह रही हैं कि मैं काफी समय से एक हॉस्पिटल में नौकरी कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी नौकरी छूट सकती है, तो क्या आगे मुझे दोबारा नौकरी का प्रयास करना चाहिए या मुझे कोई अपना व्यापार करना चाहिए? सरिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप आगे अपना व्यापार करें, अपना काम करें, तो उसमें आपको बेहतर सफलता मिलेगी। और अपने काम में अगर आप खाने पीने की चीज का काम करें, स्टेशनरी या पढ़ाई लिखाई की वस्तुओं का काम करें या दवाइयों का काम करें, तो ऐसा काम करना आपके लिए बेहतर होगा। फरवरी 2027 के बाद आप अपने काम की शुरुआत कर सकती हैं और कोशिश करिएगा कि काम अपने घर से शुरू करें या घर के आसपास से करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर आपका

करियर में सफलता मिले तो क्या करेंगे? बच्चे के लिए माता पिता में से कोई भी शनि देव की नियमित रूप से पूजा करेगा। रोज सुबह और शाम माता पिता में से कोई भी 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। और अपने बच्चे के नाम से हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि बच्चे को करियर में सफलता मिले। और शनिवार को दीपक जलाने के बाद किसी पशु को, गाय भैंस कुत्ता कोई भी पशु हो, उसको रोटी खिलाइएगा। अगर अपने बच्चे के कल्याण के लिए माता पिता रोज सुबह शाम शनि का मंत्र पढ़ेंगे और शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएंगे तो इसके परिणाम और प्रभाव बेहतर होंगे। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग हैं, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, कोई शुभ

करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सबसे बड़ी माता पिता की जो चिंता आज के समय में आती है वो है उनकी बेटी या बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके बेटे या बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे? बच्चे के नाम से रोज सवेरे भगवान विष्णु को माता पिता में से कोई भी पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा या मोबाइल पर लगाकर सुन लीजिएगा और घर में मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अगर माता पिता में से कोई भी अपने संतान के शीघ्र विवाह के लिए लगातार 3 महीने तक उपाय करे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बेटे या बेटी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और उनके स्वास्थ्य को लेकर के माता पिता की चिंताएं बनी रहती हैं। तो अगर आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो क्या उपाय करेंगे? माता या पिता में से कोई भी बच्चे के नाम से शिव जी को रोज सवेरे जल अर्पित करेंगे। बच्चे के लिए रोज सवेरे एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करेंगे। अगर पुत्र है तो मंत्र पढ़ेंगे ओम जूम सह माम पुत्र पालय पालय, और अगर पुत्री है तो मंत्र पढ़ेंगे ओम जूम सह माम पुत्री पालय पालय। बच्चे के हाथ से स्पर्श करवाकर सप्ताह में एक दिन बेहतर होगा बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइएगा। अगर ये उपाय माता या पिता में से कोई एक अपने बेटे या बेटी के लिए निरंतर करें तो बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, कोई भी माँ बाप हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनके संतान की उन्नति हो, उनके संतान की तरक्की हो। अगर आप माता हैं या पिता हैं, अपने संतान की उन्नति सुरक्षा चाहते हैं तो एक नियम बना लें, रोज सवेरे एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अगर पाठ करने में असुविधा है तो मोबाइल फोन पर लगा करके बैठ करके सुने और सुनने के बाद प्रार्थना करें कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मेरी संतानों को मिले। कोई भी माता पिता निरंतर अगर ऐसा करें तो निश्चित रूप से संतान का कल्याण होगा, संतान की सुरक्षा होगी और संतान को जीवन में सफलता मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिस

चाहिए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का, तो आइए जानते हैं नंबर एक से लेकर नंबर नौ तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। नंबर एक, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर दो, काम की अधिकता रहेगी। नंबर तीन, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर चार, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर पांच, धन लाभ के योग हैं। नंबर छः, यात्रा के योग हैं। नंबर सात, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर आठ, करियर में सफलता मिलेगी। और नंबर नौ, निर्णयों में सावधानी रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामलों में लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको काम में सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है

होंगे। आज सावधान रहना होगा मकर राशि वालों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, विवाद हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है, अमावस्या के तुरंत बाद की प्रतिपदा है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें। आज शिव जी को पीले फूल अर्पित करने से लाभ होगा। सावन का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए जान लेते हैं क्या है सावन सूत्र।

विशेष समस्या आ गई हो सावन में या कभी भी, तो तुरंत प्रातः काल चंद्रशेखराष्टक का पाठ करना शुरू कर दें। जैसे जैसे पाठ करते जाएंगे आपकी समस्याएं दूर होती जाएंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन, हंगामे के पूरे आसार। सदन चलाने के लिए स्पीकर ओम बिरला की अपील, बोले चाहे कितने भी मतभेद हो सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए। एफसीआरए बिल पर सरकार विपक्ष आमने सामने, रिजिजू बोले बिल किसी को टारगेट करने के लिए नहीं। एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला, अखिलेश बोले सरकार के हर बिल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एजेंडा। एफसीआरए बिल पर सियासी टकराव, स्पीकर ने मांगा सहयोग, सरकार का बचाव बिल किसी को टारगेट करने के लिए नहीं, विपक्ष विरोध पर अड़ा। कांग्रेस पर भड़के बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गैर जिम्मेदार, कांग्रेस ने विपक्ष को भटकाया, बोले गृहमंत्री का सामना करने से डर रहा है विपक्ष। सोनिया गांधी की नागरिकता पर आज दिल्ली कोर्ट में फैसला, नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप। जंतर मंतर का सीजन 2 जल्द सड़क पर, फिर से आंदोलन की तैयारी, सीजेपी के अभिजीत दीप के बोले नए आंदोलन का आगाज जल्द। 15 अगस्त से सीजेपी शुरू करेगा स्कूल ठीक करो कैंपेन, महाराष्ट्र के हिंगोली में अभिजीत दीप के गांव से शुरुआत के आसार। स्कूल ठीक करो अभियान के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी, हिंगोली से शुरू होगा अभियान, देशभर में आंदोलन बढ़ाने की तैयारी। यूपी में जैन अल्फा के विरोध प्रदर्शन को सीजेपी का समर्थन, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर युवाओं के आंदोलन के साथ खड़ा सीजेपी। वहीं पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, 17 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश। फार्मेसी भर्ती पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला, बीजेपी बोली आम आदमी पार्टी ने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ। फार्मेसी भर्ती विवाद में बीजेपी ने सीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी का सवाल अब सीजेपी और दीप के गैंग कहां हैं। बंगाल में आज और कल मनाया जाएगा विभाजन की विभिषिका स्मृति दिवस, 14 अगस्त की शाम सभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च। विभाजन की त्रासदी और विस्थापितों के साहस को किया जाएगा याद, 1947 के बंटवारे से प्रभावित लाखों लोगों की स्मृतियों को समर्पित होगा आयोजन। झारखंड में विरोध प्रदर्शन का आज 20वां दिन, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और कथित परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में लाठीचार्ज के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, 1200 विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास की सरकार को चेतावनी, सीबीआई जांच की मांग, पूरी नहीं हुई तो करेंगे भूख हड़ताल। झारखंड छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक हो रही राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा। कांग्रेस ने 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, बैठक में देश के छात्रों और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। अयोध्या राम मंदिर सीईओ चयन के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी, अब चयन समिति अंतिम उम्मीदवारों के प्रदर्शन का करेंगे मूल्यांकन। राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में फिर से बदलाव, अब बिना सिले हुए वस्त्र पहनेंगे पुजारी, धार्मिक समिति ने संतों के प्रस्ताव को दी मंजूरी। योगी सरकार का एंटी लैंड माफिया अभियान जारी, अब तक 84,005 हेक्टेयर जमीन को अवैध कब्जों से कराया गया मुक्त। यूपी सहायक लेखाकार परीक्षा के नतीजे घोषित, 1828 पदों पर 1643 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। लखनऊ में जेंजी को राह दिखाएगी एलयू छात्रों की वॉल पेंटिंग, दरअसल म्यूरल्स में माफिया युग से बदलाव का संदेश, युवाओं को राजनीतिक इस्तेमाल से बचने की गई अपील। दाल मंडी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी, 181 भवन और 6 मस्जिदों में से अब तक ज्यादातर हिस्से हटाए गए, पुलिस फोर्स तैनात। दाल मंडी में जल्द पूरा होगा चौड़ीकरण का काम, 650 मीटर लंबी और 17.4 मीटर चौड़ी सड़क इसी साल तैयार करने का लक्ष्य। वक्फ संपत्तियों की जांच को लेकर मोहसिन रजा की सीएम योगी से मुलाकात, जनपदवार एसआईटी जांच और विशेष ऑडिट कराने की मांग, पारदर्शिता पर दिया जोर। आज तक की खबर का असर, दरअसल हमीरपुर में जैन अल्फा के प्रदर्शन का असर हुआ, सड़क देखने गांव पहुंचा प्रशासन, बच्चों के प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने जायजा लिया, सड़क निर्माण की हुई। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट मांगी, एलडीए ने अवैध भवनों पर कार्रवाई तेज की, 51 भवन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चिन्ह। AK-47 फायरिंग पर तेजस्वी का बड़ा मार्च, 19 अगस्त को राजभवन कूच करेंगे आरजेडी नेता, सरकार पर बढ़ेगा दबाव। बिहार में रोजगार और पलायन पर सियासत तेज, 10,000 युवाओं को बाहर नौकरी भेजने के पीके ने ऐलान पर बड़ा विवाद। प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार में सियासी बवाल, बांकीपुर विधायक का पलटवार, नौकरी नहीं तो क्या आपके घर फर्श साफ करें युवा। किसानों की एक और पदयात्रा, 16 अगस्त से दिल्ली कूच, खनौरी बॉर्डर से जंतर मंतर तक मार्च करेगा गैर एसकेएम किसान संगठन।
कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र आज से सूखा। नीट, केपीएससी और कावेरी विवाद पर बीजेपी की सरकार को घेरने की तैयारी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव। फडणवीस बोले, उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन, अध्यक्ष समेत 5 सदस्य होंगे शामिल। एनसीपी विधायक जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी। फरार गैंगस्टर जिशान अख्तर ने ऑडियो मैसेज के जरिए दी है धमकी। बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका। वाईएमसीए को अपने कब्जे में लेने के बीएमसी के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। महाराष्ट्र के अमरनाथ में बीजेपी एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार बवाल। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत के बाद इलाके में तनाव मचा। पुलिस की मौजूदगी बढ़ी। महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई से डोमिनोज पर बड़ा असर। नियमों के उल्लंघन पर डोमिनोज के 5 आउटलेट बंद। मुंबई में 3 और कराड सतारा में 1। 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हुई। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी की गई। पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। 15 अगस्त से पहले पंजाब में हाई अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पंजाब पुलिस 40,000 जवानों की तैनाती करेगी। लाल किले के पास आज फुल ड्रेस रिहर्सल। कई सड़कें बंद। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन। कई अहम रास्तों पर रोक। जमीन के साथ साथ आसमान और पानी के रास्ते पर भी सुरक्षा चाक चौबंद। सुरक्षाकर्मी यमुना नदी में नाव के जरिए कर रहे हैं पेट्रोलिंग। जामनगर के समुद्री तट पर मरीन कमांडो की पेट्रोलिंग। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। किश्तवाड़ के हाकुनाला में भारी बारिश के बाद बनी बाढ़ की स्थिति। कई रास्ते जाम हुए, आवाजाही बाधित। लाहौल स्पीति के मुंजी नाला में फ्लैश फ्लड की घटना। खेतों में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से बड़ी मात्रा में कृषि भूमि बही और फसलों को नुकसान। असम के गोलाघाट में धनसिरी नदी का जलस्तर घटने की वजह से बाढ़ की स्थिति में सुधार। सामान्य जनजीवन बहाल करने की कोशिशें जारी। असम बाढ़ में 71 मृतकों के परिवारों को मिला मुआवजा। राहत के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य नहीं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दी जानकारी। हिमाचल में भारी बारिश से 313 सड़कें बंद। 65 पेयजल योजनाएं और 112 ट्रांसफार्मर प्रभावित। 18 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में भारतीय सेना ने बचाया हिमालयी भालू। मुंह में फंसा था टीन का डब्बा। रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपा गया। देहरादून में पहाड़ कटाई के दौरान सड़क पर आ गया मलबा। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। घंटों फंसा रहा वाहन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं ग्रामीण। नदी के तेज बहाव में फंसाई के बाद धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा। वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है पानी। नवनेरा बैराज से 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मुंबई के सायन में स्ट्रक्चर गिरने से हड़कंप। मलबे में फंसे सभी लोगों को रेस्क्यू कर पहुंचाया गया अस्पताल। मुंबई के नाला सुपारा में बिजली की तार गिरने की वजह से बाइक जली। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मुंबई में विस्तारित विधायक निवास के कमरे में छत का एक हिस्सा गिरा। एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल और पाटिल को आवंटित था यह कमरा। हादसे में कोई भी घायल नहीं। मुंबई के भाईदर रेलवे खाड़ी पुल पर जानलेवा स्टंट का एक वीडियो वायरल हुआ। आरपीएफ ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया पूरा मामला। सीतापुर में बेटे बहू की लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल। पारिवारिक विवाद में मारपीट का आरोप। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। सूरत में शराब के नशे में चूर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। पानी की टंकी पर चढ़कर मचाया हंगामा। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर नीचे उतारा। बस्तर घूमने निकले मुंबई के बाइक राइडर्स के दल पर टूटा कहर। धमतरी में ट्रेलर की टक्कर की वजह से 24 साल की रिद्धि ठक्कर की मौत। बलरामपुर में युवक की पेड़ से बांध कर की गई बेरहमी से पिटाई, उसकी मौत हुई। पिटाई का वीडियो वायरल। रोहतास में यात्रियों से भरी बस ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी टक्कर। टक्कर के बाद बस यात्री शेड से टकराई। गुजरात के नर्मदा में महिला डॉक्टर ने सीपीआर देकर बचाई मरीज की जान। वीडियो आया सामने। ओडिशा के क्योंझर में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। लकड़ी के डंडे से सिर पर वार करने की बात। आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में पुलिस को अगवा कर ले गए बदमाश। हाथ पैर बांधकर पीटा। पुलिस ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर राजकोट हाईवे पर ट्रक की कैबिन में लगी भीषण आग। वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। गुजरात के जूनागढ़ में एम्बुलेंस ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। 70 साल के चालक की हुई मौके पर मौत। गाजीपुर में रील बनाने के शौकीन 3 पुलिसकर्मी निलंबित। हाईवे पर अवैध वसूली के आरोप में एसपी गाजीपुर ने की सख्त कार्रवाई। गुजरात के नवसारी में पानी की पाइपलाइन में बड़ा लीकेज। 70 फीट ऊंचे पानी के बने तेज फव्वारे को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। ग्वालियर के बड़े हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड की छत से गिरा प्लास्टर। 16 बच्चे शिफ्ट। 2.5 महीने के बच्चे के पैर में लगी मामूली चोट। बेतिया में पेड़ से लटकता महिला का संदिग्ध हालत में शव बरामद। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश के बीच पुराना मकान ढहा। मलबे में दबकर 71 वर्षीय महिला की मौत। चरखी दादरी सिटी थाना फायरिंग केस में सीआईए की बड़ी कार्रवाई।
गोपालवास के पास मुठभेड़ में कथित मुख्य साजिशकर्ता मर्दी पूर्व पंकज घायल हुआ। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सूरज कुमार चंद ने रचा इतिहास, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप में देश को दिलाया पहला गोल्ड मेडल। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का ऐलान हुआ, BCCI ने दी जानकारी। 13 से 17 सितंबर तक खेले जाएंगे 3 मैच, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में होंगे तीनों मुकाबले। आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को वापस लेने से किया इनकार, हार्दिक ने वापसी के लिए कप्तानी पाने की रखी थी शर्त। रोहित शर्मा होस्ट के तौर पर टीवी पर करेंगे डेब्यू, द रोहित शर्मा शो नाम से जल्द आएगा एक गेम शो।

0: बहुत टायर्ड हो गई।
1: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: बिजली का बिल पेड
8: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
9: कैसे?
8: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
9: इतना माही वे।

0: मैनकाइंड फार्मा, दिल से स्वदेशी, जान हिंदुस्तान।
1: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
1: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से।
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
4: आपको बता दें कि यूपी में खुद सीएम योगी ने पूरा फोकस युवाओं पर किया है। जी हाँ, सीएम योगी ने नई युवा नीति तैयार करने के लिए निर्देश दिया है कि यूपी के 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समझा जाए। लेकिन आकाश आनंद ने योगी सरकार पर भी करारा प्रहार किया। आकाश आनंद ने कहा कि पिछले 10 सालों में जनता के टैक्स के पैसे यानी 7,000 करोड़ रुपए से बीजेपी सरकार ने सिर्फ अपनी नाकामी छुपाई है। इतना ही नहीं, मायावती के भतीजे ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और योगी सरकार को एनकाउंटर की सरकार बताते हुए यूपी पुलिस को भी घेरा। आकाश आनंद ने महंगाई के मुद्दे पर भी योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक प्रहार किया। जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में युवाओं के बीच जो जो मुद्दे उछले, उन्हें विपक्ष न सिर्फ पकड़ रहा है बल्कि सियासत का आधार उन्हीं को बना रहा है। और आज का सूरत हाल ये है कि विपक्ष हो या बीजेपी या फिर RSS, हर किसी का फोकस जेन जी पर आ गया है। आज तक के
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: सो सॉरी।

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: बिजली का बिल पेड
2: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
3: पे। इतना माही वे।
4: पहले पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। यहां विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर दिखा। उसके बाद रांची में छात्र आंदोलन में पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद बीजेपी पूछती है कि राहुल गांधी आखिर रांची क्यों नहीं जा रहे। कुल मिलाकर दोनों आंदोलन में सहूलियत वाला सियासी समर्थन देखने को मिलता है। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि रांची में पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए और वो छात्रों के साथ है, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी पर जिन्ना वाला वार कर रही है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच सियासत तेज होती जा रही है। कल विधानसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के चोले में बीजेपी के घुसपैठ का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। वहीं रांची आंदोलन में पुलिस के लाठीचार्ज के बाद घायल छात्रों ने अपना दर्द साझा किया। रांची में 10 अगस्त को लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री छात्रों से सहानुभूति की जगह पुलिस का बचाव करते दिखे। इस बीच झारखंड सरकार आंदोलन को खत्म कराने पर उतर आई। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई। आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। अब तक सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली है। सवाल है कि क्या रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को जंतर मंतर जैसी सफलता मिलेगी और क्या सोरेन सरकार छात्रों की मांगों के आगे सरेंडर करेगी।
5: कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अगले कुछ साल में आपकी पसंद और बजट दोनों बदल सकते हैं। दरअसल सरकार की नई पॉलिसी का ड्राफ्ट बताता है कि आने वाले समय में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां महंगी पड़ सकती हैं, जबकि हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को खरीदने पर पेट्रोल डीजल के मुकाबले कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसकी वजह 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले नए कैफे नियम है, जिसके बाद ऑटो कंपनियों की रणनीति एकदम बदल सकती है। इनका मकसद माइलेज बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन घटाना है। इससे ईवी, हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा। वहीं ज्यादा प्रदूषण वाली गाड़ियों पर कंपनियों को अतिरिक्त लागत उठानी पड़ सकती है। नई व्यवस्था में सरकार कार कंपनियों को साफ सुथरी तकनीक वाली गाड़ियां बेचने के लिए प्रोत्साहन देगी, जिसका फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंच सकता है। और एक ईवी बेचने पर कंपनी को कागजों पर 3 गाड़ियों के बराबर क्रेडिट मिलेगा। वहीं एक हाइब्रिड कार को 1.6 गाड़ियों के बराबर माना जाएगा, जबकि E85 और E100 फ्लेक्स फ्यूल कारों को भी अतिरिक्त छूट मिलेगी। दूसरी तरफ ज्यादा ईंधन पीने वाली गाड़ियां कंपनियों के लिए चुनौती बन सकती हैं। अगर तय उत्सर्जन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो अतिरिक्त क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक अगर किसी कंपनी का औसत कार्बन उत्सर्जन तय सीमा से ऊपर जाता है तो उसे क्रेडिट खरीदने होंगे। इस अतिरिक्त खर्च का असर कुछ मॉडलों की कीमत पर भी दिख सकता है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट की कीमत 2,500 से 4,500 रुपए प्रति ग्राम CO2 तक हो सकती है। ऐसे में कंपनियां ज्यादा क्लीन टेक्नोलॉजी वाले मॉडल लॉन्च करने पर जोर देंगी। नई पॉलिसी में तकनीक और माइलेज पर भी खास फोकस रखा गया है। इसका असर भविष्य की कारों के फीचर्स और परफॉर्मेंस दोनों पर दिख सकता है। इसके तहत 6 स्पीड या उससे ज्यादा गियर बॉक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और LED जैसी तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। उधर माइलेज मापने के लिए वैश्विक WLTP सिस्टम की तरफ भारत बढ़ेगा। वहीं E20 कारों के उत्सर्जन को 8% कम मानने का प्रस्ताव भी इस पॉलिसी में है। सरकार का मानना है कि इससे तेल आयात पर निर्भरता घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अच्छी बात है कि इन नियमों का असर पुरानी गाड़ियों पर नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम 1 अप्रैल 2027 के बाद बनने या आयात होने वाली नई यात्री गाड़ियों पर लागू होगा। साफ है कि आने वाले समय में कार खरीदने वक्त इंजन की ताकत से ज्यादा माइलेज, फ्यूल कॉस्ट और उत्सर्जन का हिसाब मायने रखने वाला है। इससे भारतीय ऑटो बाजार धीरे धीरे पेट्रोल डीजल केंद्रित मॉडल से निकलकर हाइब्रिड, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कांग्रेस चाहे तो बढ़ा सकते हैं मॉनसून सत्र का कार्यकाल, गतिरोध खत्म करने पर बोले रिजिजू। संसद में चर्चा के शाह के प्रस्ताव पर भी नहीं माना विपक्ष, आज भी हंगामे के आसार, राहुल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी तेज, आज दिल्ली में लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल, इलाके में सुबह 10 बजे तक ट्रैफिक बंद। आजादी के पर्व से पहले देशभर में हर घर तिरंगा अभियान की रौनक। गर्मी और उमस भी नहीं तोड़ पाई रांची के आंदोलनकारी छात्रों के हौसले, पूर्व सीएम रघुबर दास बोले सरकार छात्रों की मांगे माने नहीं तो दूंगा धरना, 20 दिन से जारी प्रदर्शन। फार्मेसी ऑफिसर बहाली में पेपर लीक से इनकार करने वाली पंजाब सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने कहा हुआ था पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल लगाई रोक, बीजेपी ने मान सरकार को घेरा। नेपाल में हुए दंगों के पीछे आया एएसआई का हाथ, पाकिस्तान नेपाल के गृह मंत्रालय की जांच में खुलासा, पाकिस्तान टर्की और कतर से मदरसों को फंडिंग, दंगों के वक्त मौलानाओं की मौजूदगी के सबूत।

0: आपके साथ पूजा सुबह के 8 बजे और वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपके सामने होंगी। बात करेंगे संसद में जारी संग्राम की, क्या होगा मॉनसून सत्र के आखिरी दिन बताएंगे आगे आपको, वही बताएंगे कि किसने हेमंत सोरेन को चेतावनी दी है और क्या फिर से जंतर मंतर जैसा ही आंदोलन होने वाला है। सीजीपी के ऐलान पर पूरी खबर डिटेल के साथ आपको देंगे। तो वही खबर यूपी में बीजेपी के बूथ चक्रव्यूह वाला क्या प्लान है उसकी भी होगी। साथ ही जिक्र करेंगे यूपी के मंत्री का राहुल गांधी पर तंज क्या कसा गया, दिखाएंगे कि महाराष्ट्र में क्यों बीजेपी एमएनएस के कार्यकर्ता भिड़े। साथ ही खबर अयोध्या से जुड़ी, अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के सिलेक्शन की, और ये भी आपको बताएंगे कि कहां कहां पर सूर्य ग्रहण का नजारा अभी तक देखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र का, क्योंकि आखिरी दिन है और अब तक के हंगामे की तस्वीरों को देखकर और लगातार टकराव वाली सियासत को देखकर आज आखिरी दिन भी हंगामे के पूरे आसार हैं। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र की शुरुआत से अब तक लोकसभा में करीब 17 घंटे की कार्यवाही चली है, वहीं राज्यसभा में करीब 3.5 घंटे की कार्यवाही चली, बाकी समय दोनों सदनों में हंगामे ही हंगामे हुए। अब आज अंतिम दिन के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों से संपर्क किया है ताकि कार्यवाही को चलाया जा सके।
1: संसद के मॉनसून सत्र के 18 दिनों में जो कुछ हुआ वो देश ने देखा है। आज 19वां दिन है। एक तरफ विपक्षी दलों सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने भी विपक्ष पर चर्चा से बचने का आरोप मढ़कर पलटवार किया है। बुधवार को भी गतिरोध बना रहा, संसद के अंदर और बाहर विपक्षी दलों के सांसद सरकार को घेरते रहे, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाते रहे। गृह मंत्री ने एक एक सवाल का जवाब देने की बात भी कही, कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
2: नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूँ।
1: विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री शाह 20 जुलाई को छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन को लेकर जवाब नहीं देना चाहते, तो सत्ता पक्ष आरोप मढ़ रहा है कि विपक्ष सदन में चर्चा से भाग रहा है। गृह मंत्री शाह ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखकर सहमति दी, फिर भी बात नहीं बनी।
3: इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। हु शॉट दोज स्टूडेंट्स? हु गेव द ऑर्डर To shoot those students? Who blinded one of the students?
1: विपक्ष के ऐसे रूख को लेकर बीजेपी तंज कर रही है।
4: सदा युद्ध से भागते नाम भले रणधीर और भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर।
1: सियासी खींचतान सिर्फ शाह के बयान को लेकर नहीं है, विपक्ष FCRA बिल को JPC भेजे जाने के बाद भी सरकार को घेरने की कोशिश में है।
5: FCRA क्या है? FCRA में केवल माइनॉरिटी के खिलाफ टारगेट है आपका। जितने भी बिल आए अभी तक आपने देखे होंगे महत्वपूर्ण बिल, वो सब माइनॉरिटी के खिलाफ आ रहे हैं। अगर FCRA आ सकता है तो और दूसरे भी फंड हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं आ सकता, रेगुलेशन उनके लिए क्यों नहीं आ सकता।
1: अब आज आखिरी दिन के सत्र को लेकर बहुत सकारात्मक रूख नहीं है। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने सभी से अपील की है कि गतिरोध दूर किया जाए। ओम बिरला ने कहा है कि चाहे कितने भी मतभेद हो, विचारों में कितनी भी भिन्नता हो, सदन चलना चाहिए। आज तक ब्यूरो।
0: तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि सरकार चर्चा चाहती है और विपक्ष उससे भाग रहा है। अब आज आखिरी दिन को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो जाए तो हम समय को बढ़ा देंगे।
6: जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहां तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कल सुबह भी 11 बजे कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार हैं।
0: और अब खबर कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। वैसे तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा दिया है, लेकिन अब तक राष्ट्रपति ने उसे मंजूर नहीं किया। कल लोकसभा और राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच की रिपोर्ट को पेश किया गया। 3 सदस्यीय जांच समिति में जस्टिस वर्मा पर लगे 3 आरोप सही पाए गए हैं। समिति ने आगे कार्रवाई की सिफारिश की है। अब महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने पर चर्चा के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। अब खबर रांची में जारी छात्रों के प्रदर्शन की आज 20वां दिन है। कल तक जो स्थिति थी आज भी वही हालात है, बस सियासी बयानबाजी तेज है और छात्र अपनी मांगों को लेकर अभी भी धरना अनशन कर रहे हैं। उधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुबर दास ने चेतावनी दी है कि परीक्षा धांधली को लेकर अगर सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल करेंगे।
1: रांची की सड़कों पर आंदोलन जारी है, छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने 2 टूक बता दिया है कि सरकार उनकी मांगे माने तभी उनका आंदोलन खत्म होगा। 2 मुख्य मांगों को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच गतिरोध बना हुआ है। पहली मांग ये कि 2024 की JSSCCGL परीक्षा को रद्द किया जाए और दूसरी अहम मांग कि JPSC और JSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित धांधली की CBI जांच कराई जाए। रांची का ये छात्र आंदोलन अब इन्हीं 2 मांगों के इर्द गिर्द है। भूख हड़ताल करने वाले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल में भर्ती हैं। वो अब अस्पताल प्रबंधन को चिट्ठी लिख रहे हैं कि शरीर अस्पताल में है और आत्मा आंदोलन स्थल पर, मुझे यहाँ से मुक्त कर सत्याग्रह स्थल जाने दें। सूरिन सरकार के खिलाफ डटे छात्रों को बीजेपी का साथ मिला है। बीती रात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास भी धरना स्थल पर पहुंचे।
7: छात्रों को धमकाना बंद करो, छात्रों की जो जायज मांग है JPC पीटी परीक्षा रद्द हो, मामले को CBI करो। दूसरा, JPC पीटी से भी ज्यादा घोटाना, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ज्यादा घोटाला JCC CGL में घोटाला।
1: रघुबर दास ने सरकार को चेताया है कि 7 दिन के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो खुद भी अनशन शुरू कर देंगे।
7: पूरे मामले का CBI जांच का आदेश नहीं दिया तो मैं दबा चिंता धंधा भी अनशन बैठूंगा।
1: छात्र विधानसभा घेराव कर चुके हैं, पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, सरकार से कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन गतिरोध जस का तस बना हुआ है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: तो रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के लगभग 20 दिन हो चुके हैं, बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है। वहीं 2 जो मांगे हैं जिस पर ये पूरा पेच अभी फंसा हुआ है वो समझिए आप, 2024 की JSSC CGL परीक्षा रद्द की जाए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग ये कि परीक्षाओं में धांधली की CBI जांच होनी चाहिए। तो 20वें दिन भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 मुद्दों पर अभी भी गतिरोध है। रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच अब कांग्रेस जनता पार्टी ने एक बार फिर से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसे सीजन 2 का नाम दिया है। कल दिल्ली में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि CJP को मीटिंग के लिए जगह देने से रोकने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है।
1: जंतर मंत्र पर मिली कामयाबी के बाद कांग्रेस जनता पार्टी का जोश हाई है। आंदोलन की पहली सफलता ने हौसले बुलंद किए तो अब सीजन 2 की भी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में बुधवार को CJP की बैठक के बाद अभिजीत दीपक ने कहा कि जल्द जंतर मंतर सीजन 2 शुरू होने वाला है।
8: बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है।
1: तो आखिर प्लान क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी का ये सीजन 2 क्या है, इसका खुलासा अभिजीत दीपक ने तो नहीं किया, लेकिन CJP प्रवक्ता ने सीजन 2 को लेकर सवाल का जवाब दिया।
9: आपने कहा अभिजीत ने कहा सीजन 2 आएगा, कब आएगा, क्या कुछ बोलेंगे?
10: देखिए सीजन 2 तो यही है, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है ऐसे निकम्मी सरकारों के खिलाफ, निकम्मे ऑफिसर्स के खिलाफ, वही सीजन 2 है।
1: वैसे CJP देश भर के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की हालत सुधारने की मुहिम 15 अगस्त से शुरू करने जा रही है।
11: ये कैंपेन रहेगा जो हमारे गांव के जो स्कूल है पूरे देश भर में जिनको इग्नोर किया गया इतने साल से, उन स्कूलों को ठीक करने की मुहिम।
1: ऐसी मुहिम से पहले कांग्रेस जनता पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। दीपक के का आरोप है कि उन्हें मीटिंग के लिए जगह देने से रोका जा रहा है। ऐसे गंभीर आरोप और जंतर मंतर सीजन दो वाले बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है।
12: ये कोई पिक्चर नहीं है कि सीजन वन सीजन टू, बल्कि छात्र को भी सोचना चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या है। आप रोट लर्निंग चाहते हैं या फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एग्जामिनेशन प्रोसेस में, तो सरकार के साथ संवाद कीजिए। संवाद जब होता है तब सॉल्यूशंस आते हैं, सिर्फ बयानबाजी पे नहीं होता है।
1: कॉकरोच जनता पार्टी के अगले कदम को लेकर सरगर्मी तेज है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर पंजाब में हुए पेपर लीक के आरोपों से जुड़ी। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर भगवंत मान सरकार को झटका लगा है। अब तक राज्य सरकार पेपर लीक से इनकार करती रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया है कि फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है।
1: जिस परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को मुख्यमंत्री भगवंत मान सिरे से खारिज करते रहे, सिर्फ नकल की बात कहते रहे, उस परीक्षा को लेकर अब अदालत ने कह दिया है कि उसका पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक की पुष्टि करते हुए अदालत ने सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए जो आदेश दिए हैं, उसकी वजह से भगवंत मान सरकार फिर से विरोधियों के निशाने पर आ गई है। 19 जुलाई को पंजाब फार्मेसी ऑफिसर की भर्ती की परीक्षा हुई थी। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने उस परीक्षा का आयोजन किया था। 454 पदों के लिए परीक्षा हुई। करीब 7000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसमें धांधली को लेकर हाईकोर्ट का कहना है कि ये पेपर लीक का मामला है, न कि नकल का कोई मामूली मामला। अदालत का ये बयान इस परीक्षा को रद्द करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। अब अकाली दल ने मान सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पोस्ट कर सुखबीर सिंह बादल पूछ रहे हैं कि क्या पंजाब आप किसी पर कार्रवाई करेगी। कांग्रेस भी पूछ रही है कि इस पेपर लीक का कौन जिम्मेदार है। बीजेपी ने भी आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
13: यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी। जबकि पेपर लीक हुआ था, पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है, तो जनता के सामने, छात्रों के सामने जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे, उनके सामने सच्चाई आई है।
1: इस मामले में पंजाब पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को नकल के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब 17 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। असीम बस्सी, चंडीगढ़, आज तक।
0: और अब चुनावी राज्य यूपी की कुछ अहम खबरें। कैसे यूपी में सियासत तेज होती जा रही है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कैसे टकराव बढ़ा है, देखिए इस रिपोर्ट में।
1: 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर सामने आई कमजोरियों से सबक लेते हुए पार्टी अब अपने संगठन को बूथ तक मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी का फोकस प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के बूथों पर है। बीजेपी अब कमजोर बूथों की पहचान करेगी और वहां संगठन की सक्रियता बढ़ाएगी। बीजेपी केंद्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के बूथ प्रवास पर भी जोर देगी। इसके अलावा टिफिन बैठक भी करने का प्लान है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हनुमानगढ़ी पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर दर्शन और पूजा पाठ की। अयोध्या में अजय राय ने एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दें जिन्होंने चढ़ावा चुराया। उन्होंने पवित्र शहर को अपवित्र करने का आरोप भी लगाया। अजय राय ने सवाल किया कि आखिर कब चढ़ावा चोरी पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। योगी सरकार में मंत्री एके शर्मा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने गन्ना और मक्के का जिक्र कर तंज किया है।
14: जो लोग हमको आपको मीडियाबाजी करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कांग्रेस के उस नेता को राहुल गांधी जी को अपने खेत में ले जाइए और गन्ने के पौधे में और मकई के पौधे में अगर वो अंतर बता दे तो मैं आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। राहुल गांधी को आप पूछिए, विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के लड़कों को भ्रमित कर रहे हैं। हम भी कभी विश्वविद्यालय में पढ़े भी हैं, पढ़ाए भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। राहुल गांधी अगर विश्वविद्यालय शब्द हिंदी में लिख दे तो मैं उन्हें पप्पू कहना बंद कर दूंगा।
1: यूपी वक्फ घोटाले को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है। अब पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर घोटाले की एसआईटी जांच और विशेष ऑडिट कराने की मांग की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ बोर्ड का समुचित ऑडिट नहीं कराया गया और लाखों संपत्तियों का लेखा जोखा अस्पष्ट रहा।
0: अब खबर महाराष्ट्र के अंबरनाथ से। दरअसल एक खबर यह है कि यहां पर बीजेपी और एमएनएस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई है। कार्यालय के कुछ हिस्से पर कब्जे को लेकर यह विवाद हुआ। देखते ही देखते हिंसक झड़प में यह पूरा विवाद बदल गया। दोनों तरफ से जमकर हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान एमएनएस के अंबरनाथ शहर अध्यक्ष शैलेश शिर्के ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवाजी नगर पुलिस थाने के परिसर में ही शैलेश शिर्के के साथ मारपीट भी की। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर शैलेश को गिरफ्तार किया। उन पर मारपीट, जबरन चोरी, अत्याचार जैसी धाराएं लगाई गई। तो वहीं देश भर में आजादी के पर्व से पहले तिरंगा रैलियों का आयोजन हो रहा है। हर आम से लेकर खास तक ऐसी गौरव तिरंगा रैली का हिस्सा बना। अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी ऐसी रैली को लेकर लोगों में कितना जोश है, कितनी उमंग है। कल श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं डल झील में भी अद्भुत नजारा दिखा। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा, हरियाणा के नूह और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी तिरंगा रैली निकाली गई। अब एक बड़ी खबर नेपाल में हुए सांप्रदायिक दंगों वाली साजिश की। दरअसल इसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जानकारी मिली है कि नेपाल में हुए दंगे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका संदिग्ध है और 26 जुलाई को नेपाल के सुनसरी जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें कई हिंदुओं की जान गई है। करीब दर्जन भर कांवड़िए जख्मी हुए हैं। खुलासा यह हुआ है कि इन सबके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश है। नेपाल के गृह मंत्रालय को वहां की खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है उसी रिपोर्ट के हवाले से यह खुलासा हुआ है। टर्की, बांग्लादेश से आए कुछ मौलाना के भारतीय सीमा के मदरसों और मस्जिदों में मौजूदगी भी इस बात का प्रमाण है कि भारत के सीमावर्ती जिलों में सांप्रदायिक दंगे करवाकर आईएसआई भारतीय सीमा क्षेत्र को असुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं पाकिस्तान का आतंक और साजिशों वाला लगाव नहीं नया नहीं है क्योंकि ये बहुत ही पुराना है। इसकी गवाही खुद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने दी है। पूर्व मंत्री शेख रशीद ने कबूला है कि वो हाफिज सईद के गुलाम हैं, यानी उनका काफी करीबी नाता है।
15: सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से आपस सही साहब का नंबर निकल आया अमरीका में और उन्होंने मुझे अमरीका से निकाल दिया कि आपस सही का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। और आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आपने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं इस पाकिस्तान के लिए और हम भी इंशाअल्लाह ताला आपस सही साहब के साथ हैं। कभी भी हिंदुस्तान मौका जाया नहीं करेगा और जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के पाकिस्तान को देखता है तो उसके अंदर पाकिस्तान पर जो कुछ उसका रोल है उससे वो रोल अदा करने की नाकाम कोशिश करता है।
0: तो वहीं ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि होर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, इसे बनाए भी रखेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ट्रंप ने कहा है कि हमारी नौसेना की घेराबंदी को हर कोई स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप के इन दावों को ईरान ने खारिज कर दिया है। कहा है कि ऐसे दावों से हकीकत नहीं बदलती। ईरान की माने तो होर्मुज अभी भी बंद है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीती रात एक बार फिर से दुनिया के कई देशों में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा दिखा। ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड, इटली, पोलैंड और अन्य कुछ देश ऐसे हैं जहां पर यह खगोलीय घटना देखी गई। भारतीय समय अनुसार रात 9:04 पर इसकी शुरुआत हुई तो देर रात करीब 1 तक चली। वैसे ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखा है, ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां वक्त हो गया है सुपर 8 में छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें, इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: मुल्तानी घू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घू का कॉफ सिरप।
6: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
7: नो एडेड शुगर, प्रिजर्वेटिव के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।
9: बिजली का बिल पेड
10: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
11: कैसे?
10: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
11: इतना माही वे।
12: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
13: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
14: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

ये तूफानी सैलाब ऐसे आया कि सब कुछ तबाह हो गया। नीति घाटी में सोमवार को इसी फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई थी। चार पहिया गाड़ी और बीआरओ का करीब 40 मीटर लंबा पुल भी तेज बहाव के सामने टिक नहीं पाया। देखते ही देखते ये धोली नदी में समा गया। सैलाब और मलबे की चपेट में आने से सड़क, पुल और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। उस तबाही के बीच दो दिन बाद भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। मंगलवार को प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया। दूसरी ओर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए आईटीबीपी ने कमर कस ली है। कल जवान रस्सियों के सहारे लोगों को सुरक्षित निकालते दिखे। डॉग स्क्वाड टीम भी एक लापता बीआरओ जवान की तलाश में जुटा रहा। इस मिशन में सेना,

0: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
1: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।
3: बिजली का बिल पेड
4: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
5: कैसे?
4: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
5: पे।
6: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

0: ये तूफानी सैलाब ऐसे आया कि सब कुछ तबाह हो गया। नीति घाटी में सोमवार को इसी फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई थी। चार पहिया गाड़ी और बीआरओ का करीब 40 मीटर लंबा पुल भी तेज बहाव के सामने टिक नहीं पाया। देखते ही देखते ये धोली नदी में समा गया। सैलाब और मलबे की चपेट में आने से सड़क, पुल और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। उस तबाही के बीच दो दिन बाद भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। मंगलवार को प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया। दूसरी ओर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए आईटीबीपी ने कमर कस ली है। कल जवान रस्सियों के सहारे लोगों को सुरक्षित निकालते दिखे। डॉग स्क्वाड टीम भी एक लापता बीआरओ जवान की तलाश में जुटा रहा। इस मिशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इस आपदा की वजह से नीति घाटी के करीब 13 से 14 गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय जोशीमठ से कट गया है। सड़क पर आवाजाही अब भी बाधित है। प्रशासन और बीआरओ इस मुहिम में जुटा हुआ है। अभी प्राथमिकता लापता जवान की तलाश और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। साथ ही प्रभावित गांवों से संपर्क बहाल करना भी चुनौती है। अब आज प्रशासन इस इलाके का एरियल सर्वे भी करेगा। कमल नयन, सिलोरी, चमोली, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कांग्रेस चाहे तो बढ़ा सकते हैं मानसून सत्र का कार्यकाल, गतिरोध खत्म करने पर बोले रिजिजू। संसद में चर्चा के शाह के प्रस्ताव पर भी नहीं माना विपक्ष, आज भी हंगामे के आसार, राहुल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी तेज, आज दिल्ली में लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल, इलाके में सुबह 10 बजे तक ट्रैफिक बंद। आजादी के पर्व से पहले देशभर में हर घर तिरंगा अभियान की रौनक। गर्मी और उमस भी नहीं तोड़ पाई रांची के आंदोलनकारी छात्रों के हौसले, पूर्व सीएम रघुबर दास बोले सरकार छात्रों की मांगे माने नहीं तो दूंगा धरना, 20 दिन से जारी प्रदर्शन। फार्मेसी ऑफिसर बहाली में पेपर लीक से इनकार करने वाली पंजाब सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने कहा हुआ था पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया पर लगाई फिलहाल रोक, बीजेपी ने मान सरकार को घेरा। नेपाल में हुए दंगों के पीछे आया एसआई का हाथ, पाकिस्तान नेपाल के गृह मंत्रालय की जांच में खुलासा, पाकिस्तान टर्की और कतर से मदरसों को फंडिंग, दंगों के वक्त मौलानाओं की मौजूदगी के सबूत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, हंगामे के पूरे आसार, सदन चलाने के लिए स्पीकर ओम बिरला की अपील, बोले चाहे कितने भी मतभेद हो सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए। एफसीआरए बिल पर सरकार विपक्ष आमने सामने, रिजिजू बोले बिल किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है। एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला, अखिलेश बोले सरकार के हर बिल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एजेंडा। एफसीआरए बिल पर सियासी टकराव, स्पीकर ने मांगा सहयोग, सरकार का बचाव बिल किसी को टारगेट करने के लिए नहीं, विपक्ष विरोध पर अड़ा। कांग्रेस पर भड़के बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गैर जिम्मेदार कांग्रेस ने विपक्ष को भटकाया, बोले गृहमंत्री का सामना करने से डर रहा विपक्ष। झारखंड में विरोध प्रदर्शन का आज 20वां दिन, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और कथित परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में लाठीचार्ज के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, 1200 विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास की गई सरकार को चेतावनी, सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे भूख हड़ताल। झारखंड छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक हो रही राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा। कांग्रेस ने 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, बैठक में देश के छात्रों और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। सोनिया गांधी की नागरिकता पर आज दिल्ली कोर्ट में फैसला, नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप। जंतर मंतर का सीजन 2 जल्द, सड़क पर फिर से आंदोलन की तैयारी, सीजीपी के अभिजीत दीप के बोले नए आंदोलन का आगाज जल्द, 15 अगस्त से सीजीपी शुरू करेगा स्कूल ठीक करो कैंपेन। महाराष्ट्र के हिंगोली में अभिजीत दीप के गांव से शुरुआत के आसार, स्कूल ठीक करो अभियान के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी, हिंगोली से शुरू होगा अभियान, देशभर में आंदोलन बढ़ाने की तैयारी। यूपी में जैन अल्फा के विरोध प्रदर्शन में सीजीपी का समर्थन, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर युवाओं के आंदोलन के साथ खड़ा सीजीपी। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, 17 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश। फार्मेसी भर्ती पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला, बीजेपी बोले आम आदमी पार्टी ने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ। फार्मेसी भर्ती विवाद में बीजेपी ने सीजीपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी का सवाल अब सीजीपी और दीप के गैंग कहां है। बंगाल में आज और कल मनाया जाएगा विभाजन की विभिषिका स्मृति दिवस, 14 अगस्त की शाम सभी जिला मुख्यालयों का कैंडल मार्च। विभाजन की त्रासदी और विस्थापितों के साहस को किया जाएगा याद, 1947 के बंटवारे से प्रभावित लाखों लोगों की स्मृतियों को समर्पित होगा आयोजन। अयोध्या राम मंदिर सीईओ चयन के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी, अब चयन समिति अंतिम उम्मीदवारों के प्रदर्शन का करेंगी मूल्यांकन। राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में फिर से बदलाव, अब बिना सिले वस्त्र पहनेंगे पुजारी, धार्मिक समिति ने संतों के प्रस्ताव को दी मंजूरी। योगी सरकार का एंटी लैंड माफिया अभियान जारी, अब तक 84,005 हेक्टेयर जमीन को अवैध कब्जों से कराया गया। यूपी सहायक लेखाकार परीक्षा के नतीजे घोषित, 1828 पदों पर 1643 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। लखनऊ में जेंजी को राह दिखाएगी छात्रों की वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स में माफिया युग में बदलाव का संदेश, युवाओं को राजनीतिक इस्तेमाल से बचने की अपील। दाल मंडी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी, 181 भवन और 6 मस्जिदों में से अब तक ज्यादातर हिस्से हटाए गए, पुलिस फोर्स तैनात। दाल मंडी में जल्द से पूरा होगा चौड़ीकरण का काम, 650 मीटर लंबी और 17.4 मीटर चौड़ी सड़क इसी साल तैयार करने का लक्ष्य। वक्फ संपत्तियों की जांच को लेकर मोहसिन रजा की सीएम योगी से मुलाकात, जनपदवार एसआईटी जांच और विशेष ऑडिट कराने की मांग, पारदर्शिता। सुरक्षा पर दिया जोर। आज तक की खबर का असर, हमीरपुर में जैन अल्फा के प्रदर्शन का असर, सड़क देखने गांव पहुंचा प्रशासन, बच्चों के प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने लिया जायजा सड़क निर्माण की उम्मीद। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट मांगी, एलडीए ने अवैध भवन पर कार्रवाई तेज की, 51 भवन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चिन्हित। 2027 चुनाव से पहले यूपी में महिलाओं के लिए बड़ी योजना की तैयारी, 50,000 रूपये की आर्थिक मदद कर मंथन, चुनाव से पहले 20,000 देने का प्रस्ताव, कमजोर वर्ग की महिलाओं पर फोकस। राहुल गांधी पर यूपी सरकार के मंत्री एके शर्मा का तंज, विश्वविद्यालय लिखने की चुनौती, बोले गन्ने और मक्के का फर्क बता दें तो आज कहेंगे मानने को तैयार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अजय राय के गंभीर सवाल, बोले पैसे गिनने वाला जेल गया, जिनके पैसे गिनने गए उन पर कार्रवाई कब होगी। आगे कहा राम मंदिर में सीईओ नहीं धर्माचार्य की जरूरत। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी, आरपीएफ जीआरपी ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड से प्लेटफॉर्म और परिसर की जांच। संभल में 14 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त, राजस्व टीम ने पुलिस के साथ चलाया अभियान, अवैध कब्जे पर चला ट्रैक्टर, कब्जा मुक्त जमीन पर फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर बसाने की तैयारी। AK-47 फायरिंग पर तेजस्वी का बड़ा मार्च, 19 अगस्त को राजभवन कूच करेंगे आरजेडी नेता, सरकार पर बढ़ेगा दबाव। बिहार में रोजगार और पलायन का सियासत तेज हुई, 10,000 युवाओं को बाहर नौकरी भेजने के पीके के ऐलान पर बढ़ा विवाद, प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार में सियासी बवाल, बाकी पूर्व विधायक का पलटवार, नौकरी नहीं तो क्या आपके घर फर्श साफ करें युवा। किसानों की एक और पदयात्रा, 16 अगस्त से दिल्ली कूच, खनौरी बॉर्डर से जंतर मंतर तक मार्च करेगा गैर एसकेएम किसान संगठन। कर्नाटक विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा, नीट केपीएससी और कावेरी विवाद पर बीजेपी की सरकार को घेरने की तैयारी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव, फडणवीस बोले उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन, अध्यक्ष समेत 5 सदस्य होंगे शामिल। एनसीपी विधायक जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी, फरार गैंगस्टर जिशान अख्तर ने ऑडियो मैसेज के जरिए दी धमकी। पीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, वाईएमसीए को अपने कब्जे में लेने के बीएमसी के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। महाराष्ट्र के अमरनाथ में बीजेपी एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार बवाल, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत के बाद इलाके में तनाव, पुलिस की मौजूदगी बढ़ी। महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई से डोमिनोज पर बड़ा असर, नियमों के उल्लंघन पर डोमिनोज के 5 आउटलेट बंद, मुंबई में 3 और कराड़ सतारा में 1। नेपाल दंगों में आईएसआई कनेक्शन का दावा, गृह मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान टर्की कतर से मदरसों को फंडिंग, दंगों के दौरान मौलानाओं की मौजूदगी के सबूत। नेपाल दौरे पर पाकिस्तानी मूल के मौलाना मोहम्मद इलियास गुमान और काठमांडू मस्जिद के मुफ्ती अबू बकर कासमी की तस्वीर आई सामने, इन पर दंगा भड़काने का आरोप। पाकिस्तान का आतंक का चेहरा बेनकाब, हाफिज सईद की तारीफ में उतरे पाक पूर्व मंत्री, एलईटी आतंकियों के साथ मंच साझा कर भारत के खिलाफ उगला जहर, पाकिस्तान पूर्व मंत्री ने आतंकी हाफिज सईद से साथ साझा किया मंच, पाक के आतंक के खेल हुआ बेनकाब, बोला मैं हाफिज सईद का गुलाम। इमरान खान से जेल में मुलाकात नहीं होने पर पीटीआई का अल्टीमेटम, इमरान खान की सेहत को लेकर भी पीटीआई ने जताई चिंता, स्वतंत्र मेडिकल जांच की मांग की गई। 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी की गई, पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, छावनी में तब्दील लाल किले के आसपास का इलाका। 15 अगस्त से पहले पंजाब में हाई अलर्ट, स्वतंत्रता दिवस को लेकर पंजाब पुलिस 40,000 जवानों की तैनाती करेगी। लाल किले के पास आज फुल ड्रेस रिहर्सल, कई सड़कें बंद, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन, कई अहम रास्तों पर रोक। जमीन के साथ साथ आसमान और पानी के रास्ते पर भी सुरक्षा चाक चौबंद, सुरक्षा कर्मी यमुना नदी में नाव के जरिए कर रहे हैं पेट्रोलिंग। जामनगर के समुद्री तट पर मरीन कमांडो की पेट्रोलिंग, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई है निगरानी। किश्तवाड़ के हाको नाला में भारी बारिश के बाद बनी बाढ़ की स्थिति, कई रास्ते जाम, आवाजाही बाधित। लाहौल स्पीति के मुंची नाला में फ्लैश फ्लड की घटना, खेतों में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से बड़ी मात्रा में कृषि भूमि बही और फसलों को नुकसान। असम के गोलाघाट में धनसिरी नदी का जलस्तर बढ़ने की घटने की वजह से बाढ़ की स्थिति में सुधार, सामान्य जनजीवन बहाल करने की कोशिश जारी। असम बाढ़ में 71 मृतकों के परिवारों को मिला मुआवजा, राहत के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य नहीं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दी जानकारी। हिमाचल में भारी बारिश से 313 सड़कें बंद, 65 पेयजल योजनाएं और 112 ट्रांसफार्मर प्रभावित, 18 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में भारतीय सेना ने बचाया हिमालयी भालू, मुंह में फंसा था टिन का डब्बा, रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपा गया। देहरादून में पहाड़ कटाई के दौरान सड़क पर आ गया मलबा, मसूरी देहरादून मार्ग पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा, घंटों फंसे रहे वाहन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा, जान जोखिम में डाल, आवाजाही कर रहे हैं ग्रामीण, नदी के तेज बहाव में फंसा एक युवक। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा, वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है पानी, नवनेरा बैराज से 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मुंबई के सायन में स्ट्रक्चर गिरने की वजह से हड़कंप, मलबे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ग्रेटर नोएडा में जेब में फटा मोबाइल, 26 साल का युवक गंभीर रूप से घायल, दोनों हाथ और शरीर के निचले हिस्से तक झुलसे, एक महीने पहले खरीदा था फोन। आगरा में आटे में मिलावट के खेल का खुलासा, खाद्य विभाग की छापेमारी में 1800 किलो सिलकड़ी और 13.5 क्विंटल आटा बरामद हुआ। बाराबंकी में कनेक्शन जोड़ने पहुंची पुलिस से ग्रामीण की झड़प, दरोगा पर ग्रामीण को लाठी से पीटने का आरोप, देर शाम तक हंगामा। रामपुर में युवक को बेरहमी से पीटा गया, वीडियो वायरल, शराब के नशे में अभद्रता का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बिजनौर में बाइक के पीछे दौड़ा गुलदार, वीडियो वायरल, करणपुर गांव में सड़क पर दिखा गुलदार, ग्रामीणों ने पिंजरा लगाने की मांग। मुंबई के नाला सुपारा में बिजली की तार गिरने की वजह से बाइक जली, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मुंबई में विस्तारित विधायक निवास के कमरे को छत का हिस्सा गिरा, एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल को आवंटित था कमरा। मुंबई के भाईदर रेलवे खाड़ी पुल पर जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल, आरपीएफ ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया मामला। सीतापुर में बेटे बहू की लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल, पारिवारिक विवाद में मारपीट का आरोप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। सूरत में शराब के नशे में चूर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़कर मचाया हंगामा, फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अगस्त 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:41 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 6:06 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 6:06 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि।

से चलाइए, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, चिकित्सा में लापरवाही ना करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना मिलेगी, रिश्ते मधुर होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की प्राप्ति होगी, खान पान में सावधानी रखें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

होगा, महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, संतान की चिंता हो सकती है, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, करियर की समस्या हल होगी, लेकिन चोट चपेट से आज बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: यूपी की सियासी कुश्ती में अखिलेश का नया दाम। आलू किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरा। आलू की कीमत को लेकर उठा मुद्दा। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। चढ़ावा चोरी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने आलू किसानों के मुद्दे को लेकर यूपी समेत केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा, क्या किसान को एक रुपए किलो आलू की कीमत देने से बनेगी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी? ये है डील की डील का परिणाम। हैरान परेशान है देश का किसान। वाह रे मुख्यमंत्री जी। जहां एक तरफ सियासी बयानबाजी जारी है, वहीं दूसरी तरफ कन्नौज, फर्रुखाबाद और मैनपुरी के लाखों किसान अपनी आलू की फसल की सही कीमत न मिलने से परेशान है। किसानों का साफ कहना है कि मेहनत के बावजूद उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहा है।
1: रेट का रेट गिरते चलो गो, जब से आलू खुदो तब से गिरी रहो बराबर। रेट को कभी उछाल आए नहीं, उछाल के चक्कर में इंतजार कर रहे। इंतजार करते करते आज यह स्थिति हुई गई कि आलू कोई लेने वाला नहीं बचा। उसके हिसाब से तैयारी की थी तो 500 से 600 रुपए की तैयारी की थी, लेकिन आज रेट मिल रहा 100 रुपए से 150 रुपए, हाईलैंड 200 रुपए 250 रुपए, तो सब लाश ही हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है।
2: अब इस समय जो है 100 रुपया कट्टी, 50 रुपया कट्टी, 150 रुपए कट्टी का मूल मिल रहा है, इसलिए किसान परेशान है, बेहाल है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है। उसकी वजह जो है 2000 से लेके 2250 रुपया जो खाद का मूल आ रहा है, इससे किसान और ज्यादा परेशान है।
0: एक तरफ किसान जहां सही दाम न मिलने से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ कोल्ड स्टोरेज की तरफ से कहा जा रहा है मंदी की वजह से किसान आलू बेचने से डर रहा है, और यही रहा तो 30 अक्टूबर के बाद आलू को फेंकना पड़ सकता है।
3: आज स्थिति बहुत नाजुक स्थिति गुजर रही है, और आने वाले समय में अभी 3 महीने हैं, इसमें बीजा भी निकलेगा, छट्टा भी निकलेगा, और 15% आलू निकला भी हमारे यहाँ से। 30 अक्टूबर तक तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। 30 अक्टूबर बाद हमें कोल्ड तो खाली करना पड़ेगा।
4: क्या करेंगे?
3: फेंकेंगे और क्या, बर्बाद होगा, गड्ढे खुदवा के भरना पड़ेगा आलू।
5: आलू उत्पादक क्षेत्र कन्नौज के आसपास के जिलों में आलू के किसान इस बार परेशान होने के कगार पे हैं, क्योंकि जिस आलू को तैयार करने में पर कट्टी यानी कि 50 किलो उनको लगभग 500 रुपए की लागत लगी है, वही अब 100 से 150 रुपए में बिक रहा है। आलू किसानों का कहना है कि यदि उनको लागत के बराबर का पैसा नहीं मिलता है तो आलू फिक जाएगा।
0: जहां एक तरफ आलू किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा, वहीं प्रशासन की तरफ से किसानों के साथ बैठक कर उन्हें खेती के तरीके, आलू की गुणवत्ता समेत कई बातों से अवगत करवा रहा है, जिससे वो अपनी फसल को विदेशों तक पहुंचा सके।
6: हमारे उत्पादन में गुणवत्ता में भी क्या कमी रह गई कि जिसको हम अभी बाहर के देशों तक नहीं बेच पाते हैं, तो उसमें एक कार्यशाला हमने आयोजित करी थी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो हमारा उत्पाद जो अगर आलू जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो सारी चीज़ें हमने कल किसानों को बताई हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है, जो हमको कम करना है, उसके बारे में भी जागरूक किया गया है।
0: अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार किसानों की इस पुकार को सुनेगी या फिर मेहनत की पूरी फसल घाटे में चली जाएगी? कन्नौज से प्रथम श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में भरा पानी। भारी बारिश के बाद पार्किंग एरिया में जमा पानी। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में पानी भरने का वायरल वीडियो जैसे ही सामने आया, विपक्ष ने सरकार को घेरने में वक्त नहीं लिया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी, जहां बीजेपी सरकार वहां महाभ्रष्टाचार। अखिलेश यादव के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बना और पहली बारिश में ही मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की पोल खोलता नजर आया। जहां एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभालकर आधे घंटे में पार्किंग से पानी निकालकर स्थिति को सामान्य कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बयान जारी कर कहा कि ज्यादा बारिश होने की वजह से पार्किंग एरिया के रास्ते में पानी भर गया था, जिसे तुरंत कार्रवाई करते हुए 30 मिनट से कम वक्त में हटा दिया गया। इस दौरान ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से भेजा गया और किसी भी फ्लाइट में कोई रुकावट नहीं आई।
1: सवाल तो ये है कि इतने ज्यादा लागत से बना यह एयरपोर्ट, लगभग 11,000 करोड़ की लागत से बना यह एयरपोर्ट, अगर पहली बारिश, तेज बारिश में वहां पानी भर जाता है, तो ये कमी मॉनसून की है या झोल इंफ्रास्ट्रक्चर में है या उसके निर्माण में है, ये अपने आप में एक सवाल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
0: सोशल मीडिया पर पार्किंग में भरे पानी का वीडियो वायरल होने के बाद अब एयरपोर्ट परिसर में जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कांग्रेस चाहे तो बढ़ा सकते हैं मानसून सत्र का कार्यकाल। गतिरोध खत्म करने पर बोले रिजिजू। संसद में चर्चा की शाह के प्रस्ताव पर नहीं माना विपक्ष। आज भी हंगामे के आसार। राहुल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गर्मी और उमस भी नहीं तोड़ पाए रांची के आंदोलनकारी छात्रों के हौसले। पूर्व सीएम रघुबर दास बोले सरकार छात्रों की मांगे माने नहीं तो दूंगा धरना। 20 दिन से जारी है प्रदर्शन। फार्मेसी ऑफिसर बहाली में पेपर लीक से इनकार करने वाली पंजाब सरकार को झटका। हाईकोर्ट ने कहा हुआ था पेपर लीक। भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल लगाई रोक। बीजेपी ने मान सरकार को घेरा। यूपी के हमीरपुर में जेन अल्फा के प्रदर्शन की खबर। आज तक पर चलने के बाद खुली सिस्टम की नींद। सड़क बनाने के लिए परेड करने लगे दर्जनों अफसर। बच्चों ने की है स्कूल के लिए रोड की मांग। और नेपाल में दंगों के पीछे आया एसआई का हाथ। पाकिस्तान नेपाल के गृह मंत्रालय की जांच में खुलासा। पाकिस्तान तुर्की और कतर से मदरसों को फंडिंग। दंगों के वक्त मौलानाओं की मौजूदगी के सबूत।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। रांची की बात करेंगे, जहां पर छात्रों के आंदोलन की चमक क्यों फीकी पड़ने लगी है, कहां गायब हो गई है छात्रों की संख्या, क्या है आगे का प्लान, अब से कुछ ही देर बाद आपको दिखाएंगे। चर्चा के लिए सरकार तैयार, तो फिर कांग्रेस का क्यों है इनकार, क्या संसद के मानसून सत्र की अवधि बढ़ेगी, इस बड़े सवाल पर होगी बात। आज तक की खबर का हुआ है असर, जेन अल्फा के प्रदर्शन के बाद हमीरपुर के चंदूपुरु गांव पहुंचे आला अधिकारी, सड़क निर्माण शुरू कराने की प्रक्रिया तेज। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। झारखंड के रांची में छात्रों के आंदोलन की खबर के साथ, क्योंकि यहां पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के धरने का आज 20वां दिन है और छात्रों का यह कहना है कि जब तक पूरी तरह से उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए रांची में सीएम हेमंत सोरेन के घर के आसपास के इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पूरे इलाके में जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी गई।
1: झारखंड में छात्रों के आंदोलन का 20वां दिन है, लेकिन 19वां दिन बीतते बीतते दरअसल कुछ इलाकों को पूरी तरह सुरक्षा के किले में तब्दील कर दिया गया है। ये मुख्यमंत्री आवास है हेमंत सोरेन का, और देखिए कड़ी सुरक्षा ही नहीं बल्कि बैरिकेडिंग के चलते पूरे इलाके को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास का यह प्रमुख प्रवेश द्वार है, लेकिन जैसे ही आप इसके जो बाउंड्री है, जो मुख्यमंत्री आवास का परिसर है उसकी जो बाउंड्री है, उस पर भी भारी बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग के चलते इस पूरे इलाके को भारी सुरक्षा में तब्दील कर दिया गया है। छात्रों के विधानसभा मार्च के बाद हमने तस्वीरें देखी थी और कुछ इस तरह की बैरिकेडिंग आगे 500 मीटर के पूरे रास्ते पर सड़क के दोनों तरफ कर दी गई है। इलाके में सुरक्षा को देखते हुए कहीं प्रशासन को ये अंदाजा तो नहीं कि छात्र एक बार फिर कहीं विधानसभा मार्च के बाद अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर, और ऐसी संभावनाओं को देखते हुए पूरे इलाके को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे, हालांकि वैसा समर्थन नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र हैं जो डटे हुए हैं कि जब तक जेएसएससी सीजीएल विड्रॉ नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, और उनके आंदोलन को देखते हुए अब मुख्यमंत्री आवास को एक किले में तब्दील कर दिया गया है।
0: तो झारखंड में छात्रों का धरना जारी है, लेकिन धरने के 20वें दिन ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा। छात्र तो कह रहे हैं कि जब तक सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन धरना स्थल पर छात्रों की संख्या कम हो गई है। साथ ही सरकार की तरफ से वार्ता को कोई प्रस्ताव नहीं आया है, इसीलिए अब आंदोलन के भविष्य पर सवाल उठने लगे।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के धरने के 19वें दिन की यह तस्वीर है। धरना स्थल खाली खाली नजर आ रहा है, छात्रों की संख्या पहले से काफी कम नजर आ रही है। सवाल उठने लगा है कि क्या आंदोलन में थकान आ गई है। सबसे अहम बात ये कि तीसरे दौर की वार्ता के बाद सरकार की तरफ से भी कोई पहल नहीं हुई है।
1: यहाँ पर भी दरअसल अब चिंता इस बात की है कि आंदोलन को आगे कैसे ले जाए, क्या कोई आगे मिशन बचा, क्या कोई उद्देश्य बचा है। अब ज्यादातर जेपीएससी के छात्र चले गए, लेकिन सीजीएल की नियमितताओं के खिलाफ छात्र यहाँ पर डटे हैं जो इसके पीड़ित हैं। रास्ता आखिर निकले कैसे, वो कह तो रहे कि आंदोलन चलेगा, जो है वो यही डटे हुए हैं, लेकिन ये आंदोलन आगे क्या जाएगा, इसकी भूमिका क्या होगी, उद्देश्य क्या होगा, सरकार की तरफ से वार्तालाप के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है। और अगर ऐसे में प्रस्ताव नहीं आता है तो छात्रों के लिए मुश्किल है कि आंदोलन को किस दिशा में कैसे चलाएंगे। इन तमाम चुनौतियों के बीच ये छात्र कुछ मोर्चा डालकर अड़े हैं, कुछ घर जा चुके हैं, कुछ इंतजार में है कि आखिर रास्ता कैसे निकलेगा।
2: छात्र नेता और आंदोलन को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल भी मानते हैं कि संख्या तो घटी है, लेकिन उनका कहना है कि आखिर इस सांस तक आंदोलन जारी रहेगा।
3: संख्या कम होगी फिर बढ़ेगा, फिर कम होगी बढ़ेगा, एक नए कहते हैं युद्ध फिर विराम फिर युद्ध, जो चलता रहता है वही अभी परिभाषा है। अभी युद्ध करके आए हैं, कुछ थके हैं, इसलिए विराम की अवस्था में फिर युद्ध की तैयारी में होंगे, लेकिन ये आंदोलन चलेगा। चूंकि अब बिना रिफॉर्म के अगर रुक गए तो फिर आने वाले समय में भी इसी प्रकार सीटों को बेचा जाएगा।
4: मत तो आखिरी सांस तक जवाब नहीं देगी यहाँ पर, जैसे जितने भी लोग हैं आखिरी सांस तक यहाँ पर रहेंगे, और जितना हो पाएगा लोग अभी बिहार से हरियाणा से जहाँ से भी हो पा रहा है लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हम लोगों को। अभी
1: आज जो संख्या है ना, मैं देख रहा हूँ जो कम्युनिकेशन ग्रुप है, व्हाट्सएप बनाया गया, लगातार अपील की जा रही है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आइए सपोर्ट कीजिए। क्या हो गया, वो सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है?
4: अभी क्या है ना कि सब अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा बिजी है, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सब इंडिविजुअल करके आ रहे हैं। जैसे ही कोई रैली या मार्च जैसे ही कोई निकलता है सब फिर वापस से वैसे ही। आप
2: आंदोलन के भविष्य पर उठते सवालों के बीच छात्रों को समर्थन देने देर शाम धरना स्थल पर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे। धरना स्थल पर कुछ देर बैठकर छात्रों से बात की, उन्होंने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की।
5: लोकतंत्र में ये जो हमारी जनता है यही मालिक है, इसलिए मैं सरकार से अविलंब मांग करता हूं, छात्रों को धमकाना बंद करो। छात्रों की जो जायज मांग है जेपीसी 14वीं जेपीसी पीटी परीक्षा रद्द हो, मामले को सीबीआई दो।
2: रघुवर दास ने सरकार को चेताया है कि 7 दिन के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वो खुद भी अनशन शुरू कर देंगे।
5: पूरे मामले का सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया, सुबह सभा तीसरा घंटा
2: दोनों। धरना स्थल पर बीजेपी नेताओं की आवाजाही तेज है। साफ तौर पर छात्रों का आंदोलन बीजेपी और इंडिया गठबंधन की लड़ाई में भी तब्दील होता नजर आ रहा है।
6: अगर आपका उद्देश्य ही हंगामा करना है, यानी कि
2: कल झारखंड सरकार के 4 मंत्री मीडिया के बीच आए और बीजेपी पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी,
7: खासकर छात्रों तक पहुँचाए।
8: भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के पीसफुल आंदोलन को क्रश करने के लिए छत्तीसगढ़ से वहां से युवाओं को बुलाया, हम लोग जांच कर रहे हैं, बंगाल से युवाओं को बुलाया इसकी भी जांच कर रहे हैं, बिहार से बड़ी संख्या में हंगामा करने के लिए झारखंड की छवि को खराब करने के लिए भाजपा ने गुंडों को बुलाया।
2: झारखंड में छात्रों के धरने का आज 20वां दिन है और उधर अस्पताल में भर्ती देवेंद्र महतो का अनशन भी 12वें दिन में पहुंच गया है। बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या, कब तक जारी रहेगा ये धरना और अनशन। सत्यजीत और शशि भूषण के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
0: शशि भूषण में से योगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, झारखंड सरकार ये दरअसल सवाल उठा रही है और ये आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी के लोग पड़ोसी राज्यों से गुंडों को बुला रहे हैं ताकि इस पूरे आंदोलन को हिंसक बनाया जा सके, इस आरोप में कितना दम है?
9: देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का आंदोलन है जेपीएससी और जेएसएससी का, वो आंदोलन राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं दिखाया जाए या उसका राजनीतिक मकसद बताया जाए। और इसीलिए हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पे सदन में भी निशाना लिया था नेहा। लेकिन हम आपको बहुत दिलचस्प तस्वीरें दिखा रहे हैं और सुबह की जो पहली तस्वीर आज आंदोलन के 20वें दिन की है वो दिखाते हैं आपको। देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास है और इस पूरे इलाके में रात के वक्त गजब की बैरिकेड्स की गई है और एक किले नुमे में तब्दील कर दिया गया है इस पूरे इलाके को। जहां तक नजर जाती है एक लेन को बंद कर दिया गया है और दूसरे लेन में जो गाड़ियां हैं उसका परिचालन बंद है। ये मुख्यमंत्री आवास का ही पूरा प्रीमिसेज है और ये पूरी सड़क आपको जहां तक नजर जाएगी, हमारे सहयोगी नदीम दिखा रहे हैं, देखिए हर जगह आपको पूरा बैरिकेड्स नजर आता है और किलेबंदी है। और इस तरफ भी देखिए हर जगह पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि एक अपडेट जो देवेंद्रनाथ महतो ने एक पत्र भी लिखा और जानकारी भी दी कि आंदोलन अभी खत्म हुआ नहीं है और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा सकता है आंदोलनरत छात्रों की तरफ से। जैसे हमने देखा रांची में विधानसभा मार्च हुआ था, उसी तर्ज पे आगे जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव है वो हो सकता है। और ये देखिए जहां तक नजर आपकी जाएगी ना, कैमरे की नजर जहां तक जा रही है वहां तक इसी तरह के बैरिकेड्स हैं। राजभवन यहीं पर है, मुख्यमंत्री आवास यहीं पे है और सरकार भले ही कह रही हो राजनीति की बात, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों का आंदोलन आगे तेज हो सकता है, इसकी आशंका सरकार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज है। रांची से लेकर दिल्ली तक दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर है।
10: उनको जो है माफी भी मांगनी चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और उनको ये दिखाना चाहिए कि वो छात्र हितों के साथ हैं, अन्यथा ये लगेगा कि वो सोरोस के एजेंडे पर काम करते हैं। जहां जहां मोदी विरोध है, जहां जहां देश का विरोध है, जहां जहां कम्युनल टेंशन है, वहां वहां राहुल गांधी जी नजर आएंगे और उनकी पार्टी नजर आएगी। ये जिन्ना से भी बदतर पार्टी के नेता है।
11: झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, We do not appreciate any violence against our students. मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है?
12: हमें लगता है कि अंग्रेज शासन में भी इस तरह की आंदोलनकारी की पिटाई नहीं की गई। जिस तरह हमारे बच्चे बच्चियों को घेर के पुलिस चारों तरफ से उसकी पिटाई की गई, निश्चित रूप से इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ।
13: यहाँ पर जब कार्रवाई शुरू हो गई और भाजपा को भय हुआ कि अब उनके परत दर परत सीआईडी उतार देगी, तब उन्होंने जाकर के छात्रों को उकसाने का काम किया। छात्रों के लिए हम लोग कमिटेड हैं, रिफॉर्म्स के लिए कमिटेड हैं और राहुल जी की जो सोच छात्रों के बारे में है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कमिटेड हैं इस महागठबंधन सरकार में। बल कहीं अगर हल्का प्रयोग हुआ तो वो उपद्रवियों के लिए था।
14: कि भाजपा का छात्र आंदोलन का लगाम भाजपा के हाथ में, लेकिन उनका मन का लगाम कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वो शरीर से भले ही छात्र आंदोलन में शामिल हों, लेकिन उनका निशाना कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन में भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है।
15: उन्हें कहा कि भाई छात्र क्यों गुमराह होंगे, अगर आप उनकी मांगों को मानते, उनकी तकलीफ को सुनते, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को कोई शौक तो नहीं चढ़ा हुआ है कि हम सड़क पर हम उतरे।
0: और अब बात संसद में छिड़े संग्राम की। आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और इसका ज्यादातर हिस्सा हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ चुका है। कल गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सामने प्रस्ताव दिया था कि अगर विपक्ष चर्चा को तैयार हो जाए तो वह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का रुख अब तक नरम नहीं हुआ है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज सुबह 11 बजे भी कांग्रेस राजी हो जाए तो मॉनसून सत्र को बढ़ाया जा सकता है।
16: माननीय गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके द्वारा जो भी सदन में बहुमूल्य बिंदु उठेंगे एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। कल गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: हंगामा शोर शराबा और स्थगन के बीच संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन आ गया है। बार बार स्थगन, हाल ये है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को कहना पड़ा कि ऐसा कभी देखा नहीं था।
17: मैं बहुत निराश हूँ, आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है।
2: विपक्ष के तेवर को देखते हुए कल गृहमंत्री अमित शाह ने त्रूप का पत्ता फेंका, कहा हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, बस संसद चलने दीजिए।
18: नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब लेने के देने के लिए संसद में तैयार हूँ।
2: गृह मंत्री ने कल दोपहर 3 बजे की डेडलाइन दी थी, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
19: We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
2: कांग्रेस की आपत्ति इस बात से है कि इतने दिन संसद क्यों नहीं आया अमित शाह?
20: Why is not coming to the house? If something has to come to the house through the letter. If you want to convey something to the house, the best way is to come to the house and tell there. Last 18-19 days you are not coming at all.
2: अब जबकि संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है तो बड़ा सवाल ये है कि क्या आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा या विपक्ष के रुख में बदलाव आएगा। सरकार का कहना है कि विपक्ष मान जाए तो संसद का सत्र तक बढ़ाने को वो तैयार है।
3: नहीं तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी मान जाओ, बढ़ाने का बात तो बहुत छोटी सी बात है। हम तो कह रहे हैं कि कल सुबह भी 11 बजे कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार है।
2: स्पीकर ओम बिरला ने भी विपक्ष से अपना रुख ठीक करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि चाहे कितने भी मतभेद हो, विचारों में कितनी भी भिन्नता हो, सदन चलना चाहिए। मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा आज तक।
0: जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, इस बात की कितनी संभावना है कि मॉनसून सत्र को बढ़ाया जा सकता है?
21: देखिए नेहा, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि बॉल जो है पूरी तरीके से विपक्ष के पाले में उन्होंने डाल दिया और ये कहा है कि अगर विपक्ष हंगामा नहीं करेगा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर एक मुद्दे को, नीट यानी परीक्षा से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा है, उन तमाम चीजों पर बोलने के लिए वो तैयार हैं और सदन के अंदर आकर के विपक्ष जो भी सवाल करेगा उन तमाम सवालों का जवाब उनके द्वारा दिया जाएगा। कल जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि अगर विपक्ष या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो ये कहें कि वो कल से ही यानी कि आज संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आज ही वो चर्चा करना चाहते हैं तो सत्ता पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा और वो लोग संसद का मानसून सत्र भी बढ़ाने के लिए वो लोग तैयार हैं। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में सहमति बनती है। लेकिन अगर आज की स्थिति की बात करें तो आज भी हंगामे के आसार दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि जानकारी मिल रही है कि 10:30 बजे के आसपास विपक्ष के सांसदों के द्वारा संसद परिसर में आज भी वो लोग यहां पर संसद परिसर में हंगामा कर सकते हैं। इसके साथ ही सत्ता पक्ष की तरफ से झारखंड के मुद्दे को लेकर के जो झारखंड के तमाम सांसद हैं, कल हमने देखा कि वो तमाम सांसद संसद परिसर में जो है वो पूरी तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़े। आज भी वो सांसद इकट्ठे होकर के राहुल गांधी जो इस पूरे मामले को लेकर के कोई जवाब नहीं दे रहे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा सकता है। तो ये स्थिति आज भी बनी रह सकती है संसद के अंदर।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो संसद में जारी गतिरोध पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश का उपहास उड़ा रहे हैं राहुल गांधी।
22: हमेशा देश का उपहास करते हैं और उनके लिए हर कुछ जो है एक जोक है। पहली बार मैं देख रही हूं कि एक पार्लियामेंट में का जो है इतना मजाक वो बना, एक ही सांस में कह रहे हैं कि हमें अमित शाह जी से जवाब चाहिए। एक सांस में ये कह रहे हैं हमें अमित शाह जी से जवाब चाहिए कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने किया कि नहीं किया। हम यहां उनकी बात सुनने के लिए नहीं है, फिर कह रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए। ये किस तरह का मजाक ये देश के साथ हो रहा है, मतलब उन्हें कोई लाज कोई शर्म नहीं रही है और पूरी दुनिया देख रही है और ये सोच रही है ये किस तरह का पर्सन है जो एक ही सांस में कह रहा है कि अमित शाह मुझे तुमसे जवाब चाहिए कि क्या जो भी उनके क्वेश्चंस हैं कि गोली चली थी, क्या आंखें फूटी थी या जो भी है, लेकिन मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं हूं। व्हाई शुड आई लिसन टू यू? अरे आप जवाब मांग रहे हैं फिर आप कह रहे हैं व्हाई शुड आई लिसन टू यू? एक ही सांस में आप ये ऐसी दो गली बातें कैसे कर रहे हैं?
0: वहीं संसद में शोर शराबे के बीच कल एफसीआरए बिल को जेपीसी भेजने का प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई है।
23: जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्षी लोग हैं और सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, माननीय मंत्री जी बताएं आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप?
24: अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं, इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान लाया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में, किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, देयर शुड बी रूल्स।
0: और अब खबर पंजाब में हुए पेपर लीक के आरोपों से जुड़ी मामले की और इस पूरे मामले को लेकर भगवान मान सरकार को झटका लगाया। अब तक राज्य सरकार पेपर लीक से इनकार कर रही थी लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया है कि फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और इसके साथ ही अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी।
2: जिस परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को मुख्यमंत्री भगवंत मान सिरे से खारिज करते रहे, सिर्फ नकल की बात कहते रहे, उस परीक्षा को लेकर अब अदालत ने कह दिया है कि उसका पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक की पुष्टि करते हुए अदालत ने सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए जो आदेश दिए हैं उसकी वजह से भगवंत मान सरकार फिर से विरोधियों के निशाने पर आ गई है। 19 जुलाई को पंजाब फार्मेसी ऑफिसर की भर्ती की परीक्षा हुई थी। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने उस परीक्षा का आयोजन किया था। 454 पदों के लिए परीक्षा हुई, करीब 7000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसमें धांधली को लेकर हाई कोर्ट का कहना है कि ये पेपर लीक का मामला है, न कि नकल का कोई मामूली मामला। अदालत का ये बयान इस परीक्षा को रद्द करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। अब अकाली दल ने मान सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पोस्ट कर सुखबीर सिंह बादल पूछ रहे हैं कि क्या पंजाब आप किसी पर कार्रवाई करेगी। कांग्रेस भी पूछ रही है कि इस पे

0: योजना बना रहे हैं और उसको जल्द ही फिल करा के इसको मोटरेबल बना दिया जाएगा। काफी हद तक ये मोटरेबल है, बट कहीं कहीं जो है पैसे तो उसको सही कराया जाएगा इसको।
1: और अब बड़ी खबर, नेपाल में हुए सांप्रदायिक दंगों की साजिश की, इसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता हुआ मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में हुए दंगे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका संदिग्ध है। 26 जुलाई को नेपाल के सुनसरी जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें कई हिंदुओं की जान चली गई, करीब दर्जन भर कांवड़िए जख्मी हो गए। खुलासा ये हुआ कि इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई की साजिश है। नेपाल के गृह मंत्रालय को वहां की खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है उसी रिपोर्ट के हवाले से खुलासा हुआ है। टर्की और बांग्लादेश से आए कुछ मौलाना के भारत सीमा के मदरसों और मस्जिदों में मौजूदगी भी इस बात का प्रमाण है कि भारत के सीमावर्ती जिलों में सांप्रदायिक दंगे करवा रही आईएसआई भारतीय सीमा क्षेत्र को असुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहा है। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, क्या सबूत मिले हैं आईएसआई कनेक्शन के?
2: बिल्कुल, जो सुनसरी में 26 जुलाई के बाद जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसकी जांच जो यहाँ की खुफिया एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है यहाँ का, उसने जो प्रारंभिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है उसके मुताबिक जो है वहां पे जो पाकिस्तानी मूल के एक टर्की से मौलाना आए हुए थे उनकी मौजूदगी ठीक उसी समय वहां विराटनगर सुनसरी के आसपास देखी गई है। साथ ही जो बांग्लादेश से 20 जुलाई को 9 मौलवी आए थे उनकी भी गतिविधि जो है उन्हीं आसपास के जिलों में देखी गई जहां पर जुलाई के अंतिम हफ्ते में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उन इलाकों में। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है कि इन सब के पीछे कहीं आईएसआई की साजिश तो नहीं है, इस बात की आशंका की गई है। क्योंकि उनकी उनका वहां के मस्जिद में मदरसे में जाना, जो भारतीय सीमा से बिहार और उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए नेपाल के जिले हैं वहां के मदरसों और मस्जिद में लगातार उनका उस दौरान दौरा करना और वहां पे अवैध रूप से मदरसे और मस्जिद चलाए जाने को, इन सभी डॉट्स को जोड़कर जो है यहाँ के एनआईडी ने जो है वो रिपोर्ट दिया है कि इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं इन सभी मौलवी और मौलाना जो पाकिस्तान बेस्ड है और जिनको आईएसआई क्या बैकिंग है उनकी भूमिका, संदिग्ध भूमिका दिखाई दे रही है। ये जो मौलाना नेपाल आया था टर्की से वो कुछ दिन काठमांडू में रहा और यहाँ के जो जामा मस्जिद है उसके जो मुफ्ती है उनके साथ वो पूरे क्षेत्र का दौरा करता है। उसका जो उसकी आबद्धता जो है कई सारे आतंकी संगठनों से भी देखा गया है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सदर का कार्यकाल गतिरोध खत्म करने पर बोले रिजिजू, संसद में चर्चा के शाह के प्रस्ताव पर नहीं माना विपक्ष, आज भी हंगामे के आसार, राहुल करेंगे प्रेस वार्ता। गर्मी और उमस भी नहीं तोड़ पाई रांची के आंदोलनकारियों के हौसले, पूर्व सीएम रघुवर दास बोले सरकार छात्रों की मांगे माने नहीं तो दूंगा धरना, 20 दिन से जारी है प्रदर्शन।

यूपी के हमीरपुर में जैन अल्फा के प्रदर्शन की खबर आज तक पर चलने के बाद खुली सिस्टम की नींद। सड़क बनाने के लिए परेड करने लगे दर्जन भर अफसर। बच्चों ने की है स्कूल के लिए रोड की मांग। नेपाल में हुए दंगों के पीछे आया आईएसआई का हाथ। नेपाल गृह मंत्रालय की जांच में खुलासा। पाकिस्तान, तुर्की और कतर के मदरसों को फंडिंग। दंगों के वक्त मौलानाओं की मौजूदगी के सबूत। और ट्रंप के होर्मुज पर पूरा अमेरिकी कंट्रोल का किया दावा। बोले हम इसे बनाए रखेंगे। ईरान के दावे को किया खारिज। कहा दावों से हकीकत नहीं बदलती। होर्मुज अभी भी बंद।

झारखंड विरोध प्रदर्शन का 20वां दिन, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और कथित परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में लाठीचार्ज के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, 1200 विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की सरकार को चेतावनी, सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे भूख हड़ताल। झारखंड छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक हो रही है राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स का भरोसा। कांग्रेस ने 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, बैठक में देश के कई छात्रों और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। सोनिया गांधी की नागरिकता पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला, नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप। जंतर मंतर का सीजन 2 जल्द, सड़क पर फिर आंदोलन की तैयारी, सीजेपी के अभिजीत दिपके बोले नए आंदोलन का आगाज जल्द। 15 अगस्त से सीजेपी शुरू करेगी स्कूल ठीक करो कैंपेन, महाराष्ट्र किंगोली में अभिजीत दिपके के गांव से शुरुआत का असर। स्कूल ठीक करो अभियान के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी, इंगोली से शुरू होगा अभियान। यूपी में जैन अल्फा के विरोध प्रदर्शन को सीजेपी का समर्थन, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर युवाओं के आंदोलन के साथ खड़ा है सीजेपी। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन, हंगामे के पूरे आसार, सदन चलाने के लिए स्पीकर ओम बिरला की अपील, बोले चाहे कितना भी मतभेद हो सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए। एफसीआरए बिल पर सरकार विपक्ष आमने सामने, रिजिजू बोले बिल किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है। एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष और सरकार पर हमला, अखिलेश बोले सरकार के हर बिल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एजेंडा है। एफसीआरए बिल पर सियासी टकराव, स्पीकर ने मांगा सहयोग, सरकार का बचाव, बिल किसी को टारगेट करने के लिए नहीं, विपक्ष विरोध पर अड़ा है। कांग्रेस पर भड़के बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गैर जिम्मेदार, कांग्रेस ने विपक्ष को भड़काया, बोले गृहमंत्री का सामना करने से डर रहा है विपक्ष। पंजाब में फार्मेसी अफसर भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, 17 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक, हाईकोर्ट का आदेश। फार्मेसी भर्ती पर बीजेपी का आप पर हमला, बीजेपी बोली आपने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ है। फार्मेसी भर्ती विवाद में बीजेपी ने सीजेपी पर सारा निशाना, बीजेपी का सवाल सीजेपी और दिपके गैंग अब कहां है। बंगाल में आज और कल मनाया जाएगा विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस, 14 अगस्त की शाम सभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च। विभाजन की त्रासदी और विस्थापितों के साहस को किया जाएगा याद, 47 के बंटवारे से प्रभावित लाखों लोगों की स्मृतियों को समर्पित होगा आयोजन। अयोध्या राम मंदिर सीओ चयन के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू, 35 सवालों से प्रशासनिक क्षमता, भीड़ प्रबंधन और बड़े आयोजन का अनुभव परखा गया। राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में फिर बदलाव, बिना सिले वस्त्र पहनेंगे पुजारी। योगी सरकार के एंटी लैंड माफिया अभियान जारी, अब तक 84,005 हेक्टेयर जमीन को अवैध कब्जों से कराया गया है मुक्त। यूपी सहायक लेखाकार परीक्षा के नतीजे घोषित, 1,828 पदों पर 1,643 अभ्यर्थियों का हुआ है चयन। लखनऊ में जेएनसी को राह दिखाएगी एलयू छात्रों की वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स में माफिया युग से बदलाव का संदेश, युवाओं को राजनीतिक इस्तेमाल से बचने की अपील। दाल मंडी में प्रशासन और बुलडोजर एक्शन जारी, 81 भवन और 6 मस्जिदों से अब तक ज्यादातर हिस्से हटाए गए, पुलिस फोर्स तैनात। दाल मंडी में जल्द पूरा होगा चौड़ीकरण का काम, 650 मीटर लंबी 17.5 मीटर चौड़ी सड़क इसी साल तैयार करने का लक्ष्य। वक्फ संपत्तियों की जांच को लेकर मोहसिन रजा की सीएम योगी से मुलाकात। आज तक की खबर का असर, हमीरपुर में जैन अल्फा के प्रदर्शन का असर, सड़क देखने गांव पहुंचा प्रशासन, बच्चों के प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने लिया जायजा, सड़क निर्माण की उम्मीद। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, एसआईटी रिपोर्ट मांगी, एलडीए ने अवैध भवनों पर कार्रवाई तेज की, 51 भवन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चिन्हित। 2027 चुनाव से पहले यूपी में महिलाओं के लिए बड़ी योजना की तैयारी, 50,000 की आर्थिक मदद पर मंथन, चुनाव से पहले 20,000 देने का प्रस्ताव। राहुल गांधी पर यूपी सरकार के मंत्री एके शर्मा का तंज, विश्वविद्यालय लिखने की चुनौती, बोले गन्ने और मक्के का फर्क बता दे तो जो कहेंगे मानने को तैयार। राम मंदिर शरावा चोरी मामले पर अजय राय के गंभीर सवाल, बोले पैसे गिनने वाला जेल गया, जिसके पैसे गिने गए उस पर कार्रवाई कब होगी, आगे कहा राम मंदिर में सीओ नहीं धर्माचार्य की जरूरत है। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी, आरपीएफ जीआरपी ने किया सघन चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड से प्लेटफॉर्म परिसर की जांच। संभल में 14 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त, राजस्व टीम ने पुलिस के साथ चलाया अभियान, अवैध कब्जे पर चला ट्रैक्टर। AK-47 फायरिंग पर तेजस्वी का बड़ा मार्च, 19 अगस्त को राजभवन कूच करेंगे आरजेडी नेता, सरकार बढ़ेगा दबाव। बिहार में रोजगार प्लान पर सियासत तेज, 10,000 युवाओं को बाहर नौकरी भेजने के पीके के ऐलान पर बढ़ा विवाद। प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार में सियासी बवाल, बांकीपुर विधायक का पलटवार, नौकरी नहीं तो क्या आपके घर फर्श साफ करेंगे युवा। किसानों की एक और पदयात्रा, 16 अगस्त से दिल्ली कूच, खनौरी बॉर्डर से जंतर मंतर तक मार्च करेगा गैर एसकेएम किसान। आज भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव, फडणवीस बोले उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन, अध्यक्ष समेत 5 सदस्य होंगे शामिल। एनसीपी विधायक जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी, फरार गैंगस्टर जीशान अख्तर ने ऑडियो मैसेज के जरिए दी धमकी। बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, वायमसी के अपने कब्जे में लेने के बीएमसी के फैसले पर हाईकोर्ट से लगाई रोक। महाराष्ट्र के अंबरनाथ बीजेपी एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार बवाल, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत के बाद इलाके में तनाव।
महाराज शेरडी की कार्रवाई से डोमिनोज पर बड़ा असर, नियमों के उल्लंघन पर डोमिनोज के 5 आउटलेट्स बंद, मुंबई में 3 और कराट सतारा में 1-1। नेपाल दंगों में आईएसआई कनेक्शन का दावा, गृह मंत्रालय की जांच से बड़ा खुलासा, पाकिस्तान तुर्की कतर के मदरसों को हो रही है फंडिंग। नेपाल दौरे पर पाकिस्तानी मूल के मौलाना मोहम्मद इलियास गुमान और काठमांडू मस्जिद के मुफ्ती अबू बकर कासमी की तस्वीर आई सामने, इन पर दंगा भड़काने का आरोप। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब, आपने सही की तारीफ में उतरे पाक पूर्व मंत्री, एलईटी आतंकियों के साथ मंच साझा कर भारत के खिलाफ उगला जहर। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने आतंकी हाफिज सईद के साथ साझा किया मंच, पाक के आतंक के खेल हुआ बेनकाब, बोला मैं हाफिज सईद का गुलाम। इमरान खान से जेल में मुलाकात नहीं होने पर पीटीआई का अल्टीमेटम, इमरान खान की सेहत को लेकर पीटीआई ने जताई चिंता। 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, राजधानी दिल्ली में सुरक्षा खड़ी, पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, छावनी पर तब्दील लाल किले के आसपास का इलाका, लाल किले के पास आज फुल ड्रेस रिहर्सल, कई सड़कें बंद, सुबह 4 से 10 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन, कई अहम रास्तों पर रोक। 15 अगस्त से पहले पंजाब में हाई अलर्ट, स्वतंत्रता दिवस को लेकर पंजाब पुलिस 40,000 जवानों की तैनाती करेगी, जमीन के साथ साथ आसमान और पानी के रास्ते सुरक्षा चाक चौबंद, सुरक्षाकर्मी यमुना नदी में नाव के जरिए कर रहे पेट्रोलिंग, जामनगर के समुद्री तट पर मरीन कमांडो की पेट्रोलिंग, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में भारतीय सेना ने बचाया हिमालय भालू, मुंह में फंसा था टिन का डब्बा, रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपा। देहरादून में पहाड़ कटाई के दौरान सड़क पर आया मलबा, मसूरी देहरादून मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम, घंटों फंसे रहे यात्री। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा, जान जोखिम में डाल आवाजाही कर रहे हैं ग्रामीण। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा, वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है पानी, नवेरा बैराज से 4.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बारा में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे उफनती नदी पार करने को मजबूर, पुल नहीं होने से बड़ी परेशानी। ग्रेटर नोएडा की जेब में फटा मोबाइल, 26 साल का युवक गंभीर रूप से घायल, हाथ और शरीर के निचले हिस्से झुलसे। आगरा में 8 मिलावट के खेल का खुलासा, खाद विभाग के छापेमारी में 1800 किलो सेल खड़ी और 13.5 क्विंटल आटा बरामद। बाराबंकी में कनेक्शन जोड़ने पहुंची पुलिस से ग्रामीणों की झड़प, दरोगा पर ग्रामीणों को लाठी से पीटने का आरोप, देर तक हंगामा। रामपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, शराब के नशे में अभद्रता का आरोप। बिजनौर में बाइक के पीछे दौड़ा गुलदार, वीडियो वायरल, करणपुर गांव में सड़क पर दिखा गुलदार, ग्रामीणों ने पिंजरा लगाने की मांग की। कोयम्बटोर में कॉलेज छात्र पिटाई के बाद मौत, मारपीट के मामले में 5 छात्रों को हिरासत में लिया गया। बघा में पूर्व प्रखंड प्रमुख छोटेलाल यादव की संदिग्ध हालत में मौत, नदी किनारे मिला शव। राजकोट में बुजुर्ग दंपत्ति से प्रताड़ना का आरोप, बेटे की मौत के बाद प्रॉपर्टी के लिए बहू पोतियों पर FIR। पंजाब के नवा शहर में जहरीला पदार्थ खाने वाले 3 दोस्तों में 2 की मौत, युवक ने भी लाश दौरान दम तोड़ा। गाय की मौत के बाद बदायूं में डॉक्टर से मारपीट, कार में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल, 4 आरोपी हिरासत में। मुंबई के नाला सपारा में बिजली की तार गिरने से बाइक चली, CCTV वीडियो आया सामने। मुंबई में विस्तारित विधायक निवास के कमरे की छत का हिस्सा गिरा, NCP नेता दिलीप वलसे पाटिल को आवंटित था कमरा, हादसे में कोई घायल नहीं। मुंबई के भाईंदर रेलवे खाड़ी पुल पर जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल, RPF ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया मामला। सीतापुर में बेटे बहू की लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल, पारिवारिक विवाद में मारपीट का आरोप। सूरत में शराब के नशे में चूर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़कर मचाया हंगामा। कल बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी 2 बड़ी फिल्में, बंटवारा 1947 सनी देओल के एक्शन को, आवारापन 2 में अपने रोमांस से टक्कर देंगे इमरान हाशमी। पीरियड ड्रामा फिल्म में बंटवारा 1947 फिल्म के निर्देशक है राजकुमार संतोषी। सनी देओल एक बार फिर अपना एक्शन अवतार दिखाएंगे, उनके साथ प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी जैसे स्टार्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा इमरान हाशमी का जुनून अवतार, आवारापन 2 में एक बार फिर रोमांटिक रोल में दिखाई देंगे। 2007 में आई इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन का सीक्वल है ये फिल्म, फिल्म कई पुराने गाने भी रिक्रिएट किए गए हैं। साउथ स्टार सूर्या अपनी चार्म फैलाने के लिए तैयार हैं, फैमिली ड्रामा फिल्म विश्वनाथ एंड सन्स होगी रिलीज। थिएटर के बाद अब OTT पर रिलीज के लिए तैयार है कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता, 14 अगस्त को Zee5 पर होगी रिलीज। 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अब कल से OTT पर कमाल करेगी कॉकटेल 2। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी OTT पर स्ट्रीम होगी, इस साल मई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी ये फिल्म। हॉरर थ्रिलर फिल्म अरूपी भी OTT में रिलीज को तैयार, हिंदी मलयालम और तमिल भाषाओं में उपलब्ध होगी फिल्म।

उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: बिजली का बिल पेड
2: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
3: वे।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: पापा।
9: सॉरी यार, ये गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
10: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
9: छक्का?
10: सब कैशलेस हो गया है।
9: हाँ ला भाई मेरा बैट।
10: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
9: चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
14: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
15: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: In association with
4: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
3: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
6: ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
7: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
6: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
8: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
9: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
10: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
11: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
6: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
12: पहले पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। यहां विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर दिखा। उसके बाद रांची में छात्र आंदोलन में पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद बीजेपी पूछती है कि राहुल गांधी आखिर रांची क्यों नहीं जा रहे। कुल मिलाकर दोनों आंदोलन में सहूलियत वाला सियासी समर्थन देखने को मिलता है। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि रांची में पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए और वो छात्रों के साथ है, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी पर जिन्ना वाला वार कर रही है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच सियासत तेज होती जा रही है। कल विधानसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के चोले में बीजेपी के घुसपैठ का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। वहीं रांची आंदोलन में पुलिस के लाठीचार्ज के बाद घायल छात्रों ने अपना दर्द साझा किया। रांची में 10 अगस्त को लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री छात्रों से सहानुभूति की जगह पुलिस का बचाव करते दिखे। इस बीच झारखंड सरकार आंदोलन को खत्म कराने पर उतर आई। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई। आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। अब तक सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली है। सवाल है कि क्या रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को जंतर मंतर जैसी सफलता मिलेगी और क्या सोरेन सरकार छात्रों की मांगों के आगे सरेंडर करेगी।
13: कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अगले कुछ साल में आपकी पसंद और बजट दोनों बदल सकते हैं। दरअसल सरकार की नई पॉलिसी का ड्राफ्ट बताता है कि आने वाले समय में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां महंगी पड़ सकती हैं, जबकि हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को खरीदने पर पेट्रोल डीजल के मुकाबले कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसकी वजह 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले नए कैफे नियम है, जिसके बाद ऑटो कंपनियों की रणनीति एकदम बदल सकती है। इनका मकसद माइलेज बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन घटाना है। इससे ईवी, हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा। वहीं ज्यादा प्रदूषण वाली गाड़ियों पर कंपनियों को अतिरिक्त लागत उठानी पड़ सकती है। नई व्यवस्था में सरकार कार कंपनियों को साफ सुथरी तकनीक वाली गाड़ियां बेचने के लिए प्रोत्साहन देगी, जिसका फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंच सकता है। और एक ईवी बेचने पर कंपनी को कागजों पर 3 गाड़ियों के बराबर क्रेडिट मिलेगा। वहीं एक हाइब्रिड कार को 1.6 गाड़ियों के बराबर माना जाएगा, जबकि E85 और E100 फ्लेक्स फ्यूल कारों को भी अतिरिक्त छूट मिलेगी। दूसरी तरफ ज्यादा ईंधन पीने वाली गाड़ियां कंपनियों के लिए चुनौती बन सकती हैं। अगर तय उत्सर्जन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो अतिरिक्त क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक अगर किसी कंपनी का औसत कार्बन उत्सर्जन तय सीमा से ऊपर जाता है तो उसे क्रेडिट खरीदने होंगे। इस अतिरिक्त खर्च का असर कुछ मॉडलों की कीमत पर भी दिख सकता है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट की कीमत 2500 से 4500 रुपए प्रति ग्राम CO2 तक हो सकती है। ऐसे में कंपनियां ज्यादा क्लीन टेक्नोलॉजी वाले मॉडल लॉन्च करने पर जोर देंगी। नई पॉलिसी में तकनीक और माइलेज पर भी खास फोकस रखा गया है। इसका असर भविष्य की कारों के फीचर्स और परफॉर्मेंस दोनों पर दिख सकता है। इसके तहत 6 स्पीड या उससे ज्यादा गियर बॉक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और LED जैसी तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। उधर माइलेज मापने के लिए वैश्विक WLTP सिस्टम की तरफ भारत बढ़ेगा। वहीं E20 कारों के उत्सर्जन को 8% कम मानने का प्रस्ताव भी इस पॉलिसी में है। सरकार का मानना है कि इससे तेल आयात पर निर्भरता घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अच्छी बात है कि इन नियमों का असर पुरानी गाड़ियों पर नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम 1 अप्रैल 2027 के बाद बनने या आयात होने वाली नई यात्री गाड़ियों पर लागू होगा। साफ है कि आने वाले समय में कार खरीदने वक्त इंजन की ताकत से ज्यादा माइलेज, फ्यूल कॉस्ट और उत्सर्जन का हिसाब मायने रखने वाला है। इससे भारतीय ऑटो बाजार धीरे धीरे पेट्रोल डीजल केंद्रित मॉडल से निकलकर हाइब्रिड, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
14: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

चाहे तो बढ़ा सकते हैं मानसून सत्र का कार्यकाल। गतिरोध खत्म करने पर बोले रिजिजू। संसद में चर्चा के शाह के प्रस्ताव पर नहीं माना विपक्ष। आज भी हंगामे के आसार। राहुल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गर्मी और उमस भी नहीं तोड़ पाए रांची के आंदोलनकारी छात्रों के हौसले। पूर्व सीएम रघुबर दास बोले सरकार छात्रों की मांग माने नहीं तो दूंगा धरना। 20 दिन से जारी है प्रदर्शन। फार्मेसी अफसर बहाली परीक्षा में गड़बड़ी से इनकार करने वाली मान सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट लगाई भर्ती प्रक्रिया पर रोक। बीजेपी बोली क्यों चुप है जंतर मंतर से सवाल पूछने वाली।

भाजपा के प्रदर्शन की खबर आज तक में चलने के बाद खुली सिस्टम की नींद। सड़क बनाने के लिए परेड करने लगे दर्जनों अफसर। सीजेपी का 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो अभियान। नेपाल में दंगों के पीछे आया आईएसआई का हाथ। नेपाल के गृह मंत्रालय की जांच में खुलासा। पाकिस्तान, तुर्की और कतर से मदरसों को फंडिंग। दंगों के वक्त मौलानाओं की मौजूदगी के सबूत।

0: मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। संसद का मानसून सत्र खत्म होने वाला है और नहीं लगता है कि आज का दिन संसद में कुछ अलग होगा। संसद में आज भी हंगामा तय लग रहा है। सरकार की बहस वाली चुनौती को विपक्ष ने ठुकरा दिया है। विपक्ष छात्र पर एक्शन को लेकर तो टूक जवाब चाहता है, चर्चा नहीं चाहता है। रुक करेंगे रांची का, जहां छात्र आंदोलन में सियासी हवा तेज हो गई है और छात्रों के मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। ठीक आधे घंटे बाद आपको दिखाएंगे छोटे बच्चों की पावर, बताएंगे कैसे जेन जी और जेन अल्फा को लेकर हर सियासी दल में हड़कंप मचा हुआ है। और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में संसद में छिड़े संग्राम को, क्योंकि आज संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन आज भी नहीं लगता कि हंगामा थमने के आसार हैं। विपक्ष और सरकार में गतिरोध चरम पर है। अब दोनों पक्ष इस रेस में कूद पड़े हैं। मानसून सत्र की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? सत्र का ज्यादातर हिस्सा हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ चुका है। कल गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है तो सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर कायम रहे। वो छात्रों पर पुलिस एक्शन पर गृहमंत्री का बयान चाहता है, बहस चर्चा नहीं चाहता है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस आज सुबह 11 बजे तक चर्चा के लिए राजी हो जाती है तो सरकार मानसून सत्र को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
1: जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहां तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सुबह भी 11 बजे कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार है।
2: Why is not coming to the house? If something has to come to the house through the letter. If you want to convey something to the house, the best way is to come to the house and tell them. Last 18-19 days you are not coming at all.
0: जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या लग रहा है आज एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा संसद के दोनों सदन?
3: और देखिए, जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा ये कहा गया कि अगर आज भी विपक्ष की तरफ से या खास तौर पर राहुल गांधी ये कह दें कि 11 बजे के बाद वो चर्चा चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, तो किसी भी तरीके से सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी और वो संसद का मानसून सत्र बढ़ाने के लिए भी वो आगे तैयार है। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन हम देख रहे हैं सदन के अंदर पिछले दिनों से, वैसे में नहीं लगता है कि आज किसी भी तरीके से जो है विपक्ष इन तमाम चीजों को लेकर के राजी होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ पिन पॉइंटेड यानी कि उन तमाम मुद्दों पर ही चर्चा चाहते हैं या गृहमंत्री का जवाब चाहते हैं जो लाठी चार्ज को लेकर के वो लगातार इस मुद्दे को लेकर के उठा रहे हैं। आज की सिचुएशन की अगर बात करें तो 10 बजे के आसपास इंडिया ब्लॉक के सांसदों की बैठक है, नेताओं की, उसके बाद ये तय होगा कि किस तरीके से। लेकिन आज भी 10:30 बजे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो संसद परिसर में बड़े स्तर पर वो लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी संसद परिसर में बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड का मुद्दा, जो रांची में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर के सत्ता पक्ष के तमाम सांसद, खासतौर पर जो झारखंड के सांसद हैं, वो आज मकर द्वार पर उनके प्रदर्शन की जानकारी मिल रही है। तो दोनों तरफ से इस वक्त प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है, प्रदर्शन वर्सेज प्रदर्शन, और इसी बात को लेकर के लगातार जो है सरकार ये चाहती है कि अगर विपक्ष चाहे तो वो मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। छात्रों का जो मुद्दा, चाहे वो झारखंड का हो या फिर जो दिल्ली के जंतर मंतर में,
0: कल ही गृहमंत्री अमित शाह विपक्ष की मांग पर मीडिया के सामने आए और ये कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, हर सवाल का वो जवाब देने के लिए भी तैयार है।
4: देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
0: अमित शाह के फौरन बाद मीडिया के सामने नेता विपक्ष राहुल गांधी आए, दो टूक के कहा कि उन्हें जवाब चाहिए, लेक्चर नहीं चाहिए।
5: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग, एंड व्हेन आई से वी आई मीन द यंगर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री हु shot those students, who gave the order to shoot those students, who blinded one of the students, who shot one of the students in the ear, who gave the order to beat the students with lathis, with nails, who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent.
0: वहीं कल ही राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा में भी छात्रों पर एक्शन को लेकर जोरदार बहस हो गई।
6: मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा, ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उसको, बुलाइए सदन में बुलाइए।
7: माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर आप चर्चा से भागो मत।
0: वहीं रांची के छात्र आंदोलन में अब सियासत हावी होती दिख रही है। 20 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्रों के आंदोलन में बीजेपी की एंट्री के बाद तस्वीर बदलती दिख रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं जो छात्रों के समर्थन में वहां पहुंच गए, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया और मांगे नहीं माने जाने पर खुद अनशन की चेतावनी दे दी। दूसरी तरफ झारखंड सरकार के मंत्री बीजेपी पर आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रहे हैं। यानी जो आंदोलनकारी छात्रों की मांगों से शुरू हुआ था, अब उसकी तस्वीर सरकार बनाम बीजेपी की सियासी लड़ाई में तब्दील होने लगी। तो छात्रों का ऐलान है कि सारी मांगे पूरी हो तभी आंदोलन खत्म होगा। रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा घेरा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। हालांकि अब छात्रों की संख्या कम होती दिख रही है, लेकिन बिजली कटने के बावजूद वहां पर छात्र अनशन पर डटे हुए हैं। बीजेपी की अब इसमें एंट्री हो गई है। हालांकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी हिंसा करने वाले लोगों को पड़ोसी राज्यों से बुला रहा है। सवाल यह भी कि सियासी खींचतान के बीच छात्र उनकी मूल मांगे कहीं पीछे तो नहीं छूट गई हैं। आंदोलन के 20 दिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और विपक्ष की लड़ाई में छात्रों का आंदोलन मुद्दा होता जा रहा है।
8: यहां पर भी दरअसल अब चिंता इस बात की है कि आंदोलन को आगे कैसे ले जाए, क्या कोई आगे मिशन बचा है, क्या कोई उद्देश्य बचा है। अब ज्यादातर जेपीएससी के छात्र चले गए, लेकिन सीजीएल के निमित्ताओं के खिलाफ छात्र यहां पर डटे हैं जो इसके पीड़ित हैं। रास्ता आखिर निकले कैसे? वो कह तो रहे कि आंदोलन चलेगा, जो है वो यहीं डटे हुए हैं, लेकिन ये आंदोलन आगे क्या जाएगा, इसकी भूमिका क्या होगी, उद्देश्य क्या होगा, सरकार की तरफ से वार्तालाप के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है। और अगर ऐसे में प्रस्ताव नहीं आता है तो छात्रों के लिए मुश्किल है कि आंदोलन को किस दिशा में कैसे चलाएंगे। इन तमाम चुनौतियों के बीच ये छात्र कुछ मोर्चा डालकर अड़े हैं, कुछ घर जा चुके हैं, कुछ इंतजार में है कि आखिर रास्ता कैसे निकलेगा।
0: वहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र डटे हुए हैं तो सीएम आवास पर अलग तैयारी दिख रही है। पूरे इलाके की घेराबंदी हो गई।
9: आज आंदोलन के 20वें दिन की है वो दिखाते हैं आपको। देखिए ये मुख्यमंत्री आवास है और इस पूरे इलाके में रात के वक्त गजब की बैरिकेड्स की गई है और एक किले नुमे में तब्दील कर दिया गया है इस पूरे इलाके को। जहां तक नजर जाती है एक लेन को बंद कर दिया गया है और दूसरे लेन में जो गाड़ियां हैं उसका परिचालन बंद है। ये मुख्यमंत्री आवास का ही पूरा प्रीमिसेज है और ये पूरी सड़क आपको जहां तक नजर जाएगी, हमारे सहयोगी नदीम दिखा रहे हैं, देखिए हर जगह आपको पूरा बैरिकेड्स नजर आता है और किलेबंदी है। और इस तरफ भी देखिए हर जगह पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि एक अपडेट जो देवेंद्रनाथ महतो ने एक पत्र भी लिखा और जानकारी भी दी कि आंदोलन अभी खत्म हुआ नहीं है और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा सकता है आंदोलनरत छात्रों की तरफ से। जैसे हमने देखा रांची में विधानसभा मार्च हुआ था, उसी तर्ज पे आगे जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव है वो हो सकता है। और ये देखिए जहां तक नजर आपकी जाएगी ना, कैमरे की नजर जहां तक जा रही है वहां तक इसी तरह के बैरिकेड्स हैं। राजभवन यहीं पर है, मुख्यमंत्री आवास यहीं पे है और सरकार भले ही कह रही हो राजनीति की बात, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों का आंदोलन आगे तेज हो सकता है, इसकी आशंका सरकार को लग रही है।
0: शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, दिख रहा है कि किस तरीके से सरकार ने अपनी पूरी घेराबंदी कर ली है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं सीएम आवास के बाहर। उनको ये आशंका है कि ये छात्र आंदोलन और बढ़ सकता है, लेकिन बातचीत की कोई पहल नहीं है। लगता है ये सरकार भी जानती है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ती जाएगी और वो किसी ना किसी तरीके से ये रफ्तार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बिजली काटना हो या फिर अन्य तरीके के।
9: बिल्कुल नेहा, देखिए सरकार को आशंका तो है कि आंदोलन जो है वो अनवरत जारी रहेगा और आज 20वां दिन है। हम इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ही मौजूद हैं जहां छात्र लगातार धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हमने विधानसभा का घेराव भी देखा। दो स्टूडेंट्स यहां पर ऐसे हैं जो इस वक्त फास्ट में हैं, 10वां दिन है इनका। रुपेश हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। रुपेश, आज हमने देखा मुख्यमंत्री आवास के सामने पूरी घेरेबंदी कर दी गई है, आशंका ये जताई जा रही है कि आप लोग जैसे विधानसभा मार्च हुआ उसी तरीके से आगे सीएम हाउस का घेराव करेंगे, सरकार उसके लिए अलर्ट है लेकिन आप लोगों से संवाद स्थापित नहीं कर पा रही है, तो मतलब क्या लगता है पहल कहाँ से होगी? एक बार फिर आप लोग, अगर सरकार पहल करती है तो आप लोग बातचीत करेंगे?
10: जी बिल्कुल, हम लोग बात करने के लिए कभी भी रेडी हैं सर। हम लोग चाह भी रहे हैं कि सरकार से वार्तालाप करे, आए हम लोग से मिले। आखिर कुछ बातों पर सरकार द्वारा सहमति बनी है, बट जो हम लोग के मेन मांगे हैं सीबीआई जांच जैसे चल रहा है अभी तक ये सब बातें नहीं हुई है। हाँ, तीन चीज उन्होंने क्लियर कर दिया है, रद्द करने का आह्वान किया है, और बैकलॉग 23-25 और जेपीसी 14। बट सर हम लोग के मांग में सर बहुत सारी है, वो सारे टीडीपी के चाहते जितने भी एग्जाम हुई है सारे एग्जाम को कैंसिल करना हुआ, क्योंकि वो सारे एग्जाम इतनी बड़ी धांधली हुई है जिसका सर हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर पा सकते हैं, जो अभी धीरे धीरे खुलकर सामने भी आ रही है। अवैध वर्ग द्वारा जितना बयान भी दिया जा रहा है, देखने का दिन पर दिन कोई ना कोई गिरफ्तार भी हो रहा है, तो सरकार कहीं ना कहीं डिले कर रही है। इस चीज़ को जल्दी करना चाहिए था, और जो आज इतना दिन 20 दिन आज हो गया हम लोग का प्रोटेस्ट का और भूखड़ का 10वां दिन है, सरकार को अगर जल्दी करते तो हम लोग की आज जो हालत ख़राब हो रही है। आज हमारा दो भाई बहन वहाँ हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, हो सकता है आने वाले दिन में हम भी हॉस्पिटल जाएँ, क्योंकि दिन पर दिन स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। और अगर हम लोग का यह हाल रहा तो आने वाला दिन में ये मंच पूरा भूख हड़ताल से भर जाएगा, क्योंकि छात्र में आक्रोश आ चुका है जिस तरह सरकार डिले कर रही है। अब देखे होंगे विधानसभा घेराव में जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, छात्र में और गुस्सा हो गया, क्योंकि सर जितने भी छात्र यहाँ आए हुए हैं सिर्फ अपने मांगों के लेकर आए हैं, अपना हक अधिकार के लड़ रहे हैं, और उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, बट सरकार हर बार उस रास्ते से भड़काने के प्रयास कर रही है। बट अब छात्र लोग बिना अपना न्याय मांगे यहाँ से वापस नहीं जाएंगे,
9: न्याय बिना मिले वापस नहीं जाएगा। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए
0: आपके पास। इस बीच आपको ये भी बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आज फार्मेसी अफसर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 सितंबर रखी है और इस तारीख तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। पंजाब के फार्मेसी अफसर परीक्षा विवाद में घिर गया था, जहां विपक्षी पार्टियों का यह आरोप था कि पेपर लीक हो गया है, जबकि पंजाब सरकार ये कह रही थी कि ये नकल का मामला है। परीक्षा के लिए 454 पद थे। पुलिस ने परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल के आरोप पे 30,000 लोगों को पकड़ा भी था, जबकि हाईकोर्ट ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो बीजेपी कह रही है कि पंजाब में पेपर लीक पर ये कोर्ट की मोहर है।
11: पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी, जबकि पेपर लीक हुआ था। पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है, तो जनता के सामने, छात्रों के सामने जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे, उनके सामने सच्चाई आई है। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रही है। यह दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच अब कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसे सीजन टू का नाम दे दिया है। कल दिल्ली में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीजेपी को मीटिंग के लिए जगह देने से रोकने के लगातार दबाव बन रहा है।
12: जंतर मंत्र पर मिली कामयाबी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जोश हाई है। आंदोलन की पहली सफलता ने हौसले बुलंद किए तो अब सीजन दो की भी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में बुधवार को सीजेपी की बैठक के बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि जल्द जंतर मंतर सीजन दो शुरू होने वाला है।
13: बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन टू कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन टू बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है।
12: तो आखिर प्लान क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी का ये सीजन दो क्या है? इसका खुलासा अभिजीत दीपके ने तो नहीं किया, लेकिन सीजेपी प्रवक्ता ने सीजन दो को लेकर सवाल का जवाब दिया।
14: आपने कहा अभिजीत का सीजन टू आएगा, कब आएगा, क्या कुछ बोलेंगे?
15: देखिए, सीजन टू तो यही है। पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है ऐसे निकम्मी सरकारों के खिलाफ, निकम्मे ऑफिसर्स के खिलाफ, वही सीजन टू है।
12: वैसे सीजेपी देश भर के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की हालत सुधारने की मुहिम 15 अगस्त से शुरू करने जा रही है।
16: ये कैंपेन रहेगा जो हमारे गांव की जो स्कूल है पूरे देश भर में, जिनको इग्नोर किया गया इतने साल से, उन स्कूलों को ठीक करने की मुहिम है।
12: ऐसी मुहिम से पहले कॉकरोच जनता पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। दीपके का आरोप है कि उन्हें मीटिंग के लिए जगह देने से रोका जा रहा है। ऐसे गंभीर आरोप और जंतर मंतर सीजन दो वाले बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है।
17: ये कोई पिक्चर नहीं है कि सीजन वन सीजन टू, बल्कि छात्रों को भी सोचना चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या है। आप रोट लर्निंग चाहते हैं या फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एग्जामिनेशन प्रोसेस में, तो सरकार के साथ संवाद कीजिए। संवाद जब होता है तब सॉल्यूशंस आते हैं, सिर्फ बयानबाजी पे नहीं होता है।
12: कॉकरोच जनता पार्टी के अगले कदम को लेकर सरगर्मी तेज है। आज तक ब्यूरो।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब महिला वोटर्स को साधने के लिए बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता वाली योजना पर मंथन कर रहे हैं। प्रस्ताव के मुताबिक चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किश्त और सरकार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किश्तें दी जा सकती है। खास बात यह है कि SC ST BPL और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के साथ 12,00,000 रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं को इसी दायरे में लाने पर विचार हो रहा है। बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा की महिला केंद्रित योजनाओं के बीच यूपी का यह प्रस्ताव सीधे महिला वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए के मुकाबले अपनी बड़ी सामाजिक राजनीतिक काट के तौर पर देख रही है। आशीष श्रीवास्तव में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, ये तो 50,000 की बंपर योजना है, इससे तो कोई भी महिला बीजेपी को ही वोट डालेगी और पीडीए की तो ये लंबी चौड़ी काट दिख रही है।
18: बिल्कुल नया, देखिए ये प्रस्तावित है क्योंकि बीजेपी इसके लिए नीति बना रही है और चुनाव से पहले जरूर किया जाना है इसको, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में, जिस तरीके से हरियाणा में, बिहार में और हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जो योजना चल रही थी उसमें भी महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे रखा गया। उत्तर प्रदेश में चूंकि पीडीए समाजवादी पार्टी का है और काफी चैलेंजिंग है, तो उसको देखा जाता है तो आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा दलित और जो ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको इस क्रम में रखने की कवायद की जा रही, जिसमें तकरीबन 50,000 रुपए दिए जाने होंगे, जिससे पहली किस्त दी जाएगी, उसके बाद 10,000। इस तरीके के प्रस्ताव महिला कल्याण को बनाया गया है और माना जा रहा है बीजेपी इसको जल्द ही लागू भी करेगी और ये माना साफ तौर से, चूंकि एक महिला वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इनकी संख्या यूपी में सबसे ज्यादा है और ज्यादातर जो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो बसपा महिला वोट बैंक पर
0: भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना कुछ से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
21: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
4: बिजली का बिल पेड
5: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
6: कैसे?
5: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
6: पे। इतना माही वे।
7: पापा।
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया
8: है। ला भाई मेरा बैट।
9: वो अभी तो ठीक हुआ।
8: तो चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: मुल्तानी खो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खो का कॉफ सिरप।
13: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
14: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR. ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर.
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: EU सोच बदलो और बैंक भी।
5: बिजली का बिल पेड
6: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
7: कैसे?
6: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
7: इतना माही वे।

ये तूफानी सैलाब ऐसे आया कि सब कुछ तबाह हो गया। नीति घाटी में सोमवार को इसी फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई थी। चार पहिया गाड़ी और बीआरओ का करीब 40 मीटर लंबा पुल भी तेज बहाव के सामने टिक नहीं पाया। देखते ही देखते ये धोली नदी में समा गया।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: बिजली का बिल पेड
3: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
4: इतना माही वे।

0: ये तूफानी सैलाब ऐसे आया कि सब कुछ तबाह हो गया। नीति घाटी में सोमवार को इसी फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई थी। चार पहिया गाड़ी और बीआरओ का करीब 40 मीटर लंबा पुल भी तेज बहाव के सामने टिक नहीं पाया। देखते ही देखते ये धोली नदी में समा गया। सैलाब और मलबे की चपेट में आने से सड़क, पुल और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। उस तबाही के बीच दो दिन बाद भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। मंगलवार को प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया। दूसरी ओर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ITBP ने कमर कस ली है। कल जवान रस्सियों के सहारे लोगों को सुरक्षित निकालते दिखे। डॉग स्क्वाड टीम भी एक लापता बीआरओ जवान की तलाश में जुटा रहा। इस मिशन में सेना, NDRF, SDRF, ITBP और प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इस आपदा की वजह से नीति घाटी के करीब 13 से 14 गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय जोशीमठ से कट गया है। सड़क पर आवाजाही अब भी बाधित है। प्रशासन और बीआरओ इस मुहिम में जुटा हुआ है। अभी प्राथमिकता लापता जवान की तलाश और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। साथ ही प्रभावित गांवों से संपर्क बहाल करना भी चुनौती है। अब आज प्रशासन इस इलाके का एरियल सर्वे भी करेगा। कमल नयन सिलोरी चमोली आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आज भी हंगामे के आसार, राहुल करेंगे प्रेस वार्ता। नहीं तोड़ पाई रांची के आंदोलनकारी छात्रों के हौसले, पूर्व सीएम रघुवर दास बोले सरकार छात्रों की मांगे माने नहीं तो दूंगा धरना, 20 दिन से जारी है प्रदर्शन। फार्मेसी अफसर बहाली परीक्षा में गड़बड़ी से इनकार करने वाली मान सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने लगाई भर्ती प्रक्रिया पर रोक, बीजेपी बोली क्यों चुप है जंतर मंतर से सवाल पूछने वाले। जेंजी आंदोलन के बदला सियासत का मूड, यूपी चुनाव में नौजवानों को टिकट देने पर काम कर रही है बीएसपी, बीजेपी का युवाओं पर फोकस, महिलाओं के खाते में पैसे भेजने पर भी चल रहा है काम। नेपाल में हुए दंगों के पीछे आया आईएसआई का हाथ, नेपाल के गृह मंत्रालय की जांच में खुलासा, पाकिस्तान तुर्की और कतर के मदरसों को फंडिंग, दंगों के वक्त मौलानाओं की मौजूदगी के सबूत।

0: हम सबसे पहले बात संसद में छिड़े संग्राम की, क्योंकि संसद की कार्यवाही शुरू होने पर 30 मिनट बाकी है, लेकिन संसद के बाहर हंगामा शुरू हो चुका है। विपक्षी बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी हो रही है। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन आज भी नहीं लगता कि हंगामा थमेगा। विपक्ष और सरकार में गतिरोध जारी है। अब दोनों पक्ष इस रेस में कूद पड़े हैं कि मॉनसून सत्र की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है। सत्र का ज्यादातर हिस्सा हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ चुका है। कल गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है तो सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष अपना रुख कायम रखे हुए है। वो छात्रों पर पुलिस एक्शन पर गृहमंत्री का बयान चाहता है, बहस और चर्चा नहीं चाहता है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों संसद के बाहर इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सत्ता पक्ष कह रहा है कि अगर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं तो चर्चा करिए, इस तरह से हंगामा करके क्या होगा। वहीं विपक्ष कह रहा है कि हम इस तरह से चर्चा नहीं चाहते, हम सिर्फ पैलेट गन के मुद्दे पर और छात्रों पर हिंसा क्यों हुई इस पर जवाब चाहते हैं गृह मंत्री द्वारा। कल भी इसी तरह का प्रदर्शन हमने देखा था, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद संसद के बाहर दिखाई दिए थे। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, यहाँ पर तो विपक्ष चित भी मेरी पट भी मेरी वाली स्थिति में है, लगता नहीं कि मॉनसून सत्र एक्सटेंड होगा किसी भी तरीके से।
1: देखिए, क्योंकि मानसून सत्र जो है एक्सटेंड नहीं होगा, और नेहा जो हमारी जानकारी है आज 11 बजे जो है पेपर ले के बाद जो है वो लोकसभा जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। उसके बाद जो है उसको प्रवोक किया जाएगा, उसको समय सीमा कब होगी प्रवोक करने की वो भी तय किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज क्योंकि मानसून सत्र का अंतिम दिन है, तो ऐसे में जो है क्योंकि ये पूरा सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। पहले विपक्ष मांग करता रहा कि गृह मंत्री आए और चर्चा करें, जो दिल्ली के अंदर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई और पैलेट गन का यूज हुआ है उसको लेकर। लेकिन जब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम तैयार हैं, गृह मंत्री ने कल बोला कि मैं सदन में आने के लिए तैयार हूं, अगर चर्चा हो और चर्चा के बाद मैं विस्तृत जवाब दूंगा। उसके बाद उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा कि आप 3 बजे से चर्चा शुरू कर सकते हैं, अगर विपक्ष तैयार है मैं चर्चा में भाग भी लूंगा, और जिस छात्र आंदोलन को लेकर बात कही गई उस पर पूरी चर्चा हो और हर संसद सत्र का संसद सदस्य का जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा और एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष
0: आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच दर्शकों की रिपोर्ट दिखा देते हैं, ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट है, उन्होंने जायजा लिया है कि इस वक्त संसद परिसर के भीतर क्या हालात है।
2: आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी जिस तरीके से लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही है वो साफ है। एक तरफ पीछे यहाँ पे सत्ता पक्ष के लोग सीढ़ियों पर बैठे हैं मकर द्वार पर, तो दूसरी तरफ जो नारेबाजी कर रहे हैं वो विपक्ष के लोग वहां पर पीछे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी भी बीच में खड़े हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो सत्ता पक्ष के एमपीज हैं और जो विपक्ष के एमपीज यहाँ पर पीछे जिस तरीके से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन दोनों ग्रुप्स के बीच में कहीं पर किसी तरीके की नोकझोंक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ है, गृह मंत्री अमित शाह कहाँ है, ये सारे नारे लगाते हुए यहाँ पर आपको विपक्षी सारे सांसद नजर आएंगे। दानपात्र यहाँ पर रखा हुआ है और बड़े बड़े नेता यहाँ पर खड़े हैं। महुआ मोइत्रा आपको नजर आ रही हैं, गौरव गोगोई नजर आ रहे हैं, इमरान मसूद नजर आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन है। वहीं पर दूसरी तरफ सीढ़ियों पर बैठे हुए जो है वो है सत्ता पक्ष के सांसद और दोनों ही अपने अपने नारे लगा रहे हैं, राहुल गांधी भागो मत, झारखंड के ऊपर जवाब दो। और बीच में मकर द्वार में सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हुई हैं ताकि प्रोटेस्ट चलता रहे दोनों दोनों जगह और कहीं पर आमना सामना ना हो। ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली आज।
0: तो लगातार ये पोस्टर बैनर वहां पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक ही तरह की बात कही जा रही है, कांग्रेस पार्टी जवाब दे, राहुल गांधी जवाब दें कि झारखंड में छात्रों को समर्थन क्यों नहीं कांग्रेस द्वारा दिया जा रहा है, जबकि वहां पर उनकी साझा सरकार है, सपोर्ट है जेएमएम को उनका। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, एक खिचड़ी सी बन गई है मुद्दों की, विपक्ष की अलग मांगे हैं, सत्ता पक्ष की अलग मांगे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आज आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, ये किसी के बस में अब नहीं रह गया है मामला।
1: देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जो है एक तरीके से इस पूरे संसद सत्र के अंदर जो है वो हल्ला हंगामा होता रहा और अंतिम दिनों में जो है जिस तरीके से झारखंड में लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया छात्रों पर, उसके बाद से जो है सत्ता पक्ष भी जो है वो हमलावर हुआ और उन्होंने कहा कि हम जो है वो चर्चा के लिए तैयार है, झारखंड पर आपको जवाब देना चाहिए, हेमंत सोरेन की सरकार में किसने लाठीचार्ज का जो है ऑर्डर दिया। दूसरी तरफ विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि 20 जुलाई को जो कुछ हुआ उस पर गृह मंत्री आकर जवाब दें। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और ये चाहे विधायी कार्यों पे कई जो बिल है वो संसद के दोनों ही सदनों से पास हुए हों, लेकिन ये पूरा सत्र जो है एक तरीके से देखा जाए तो हंगामे की भेंट चढ़ गया और दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं और अपने अपने तरीके से जो है छात्र आंदोलन को उठाना चाहते हैं। सत्ता पक्ष झारखंड पर उठाना चाहता है तो विपक्ष ये जानना चाहता है कि 20 जुलाई को जो हुआ उसका जवाबदेही किसकी है और सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि वहां हेमंत सोरेन है, आप जो है अगर छात्रों के साथ है तो समर्थन वापिस ले लीजिए। तो तमाम अपने अपने तरीके से छात्र आंदोलन को देखा जा रहा है और अगर कहा जाए तो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकने की कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से छात्र आंदोलन पे की जा रही है।
0: तो दोनों तरफ से इस वक्त यही मांग की जा रही है कि लगातार जो गतिरोध है, खासतौर पर सत्ता पक्ष कह रहा है कि उसे खत्म किया जाए, नहीं तो संसद का वक्त बर्बाद हो रहा है, सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, रोजाना स्थगन हो जाता है, कुछ ही मिनट संसद चल पाती है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। देखिए हिमांशु, सत्ता पक्ष भी झारखंड का मुद्दा नहीं छोड़ने वाला है। राहुल गांधी भले ही यहां पर दिल्ली में बैठे बैठे ये कहें कि वो छात्रों के साथ हैं, जंतर मंतर पर पहुंच जाएं, लेकिन रांची नहीं जा सकते, इसका भी तो कोई तर्क होना चाहिए ना।
1: देखिए बिल्कुल तर्क होना चाहिए क्योंकि जब दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था नेहा, तब राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर उनके गेट पर पहुंचकर जो है वो धरना दिया था और उसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया था। उनके साथ साथ अखिलेश यादव थे, प्रियंका गांधी थी, सुप्रिया सूले थे, तमाम विपक्ष के नेता वहां पहुंच गए थे। लेकिन एक चीज बड़ी साफ है, मैंने पहले भी कहा कि अगर झारखंड का मुद्दा होगा तो भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष पे सवाल उठा रही है कि वहां किसने जो है वो ऑर्डर दिए हैं लाठीचार्ज और आंसू गैस को छोड़ने के, और उसके लिए अगर कांग्रेस इस छात्र आंदोलन का समर्थन करती है झारखंड में तो अपना समर्थन वापस ले ले वहां हेमंत सोरेन सरकार से। दूसरी तरफ विपक्ष की ये मांग है कि यहाँ किसने जो है लाठीचार्ज के और आंसू गैस छोड़ने के जो है वो ऑर्डर दिए हैं, इस पर तनातनी है और दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से छात्र आंदोलन का जो है उपयोग करें और संसद के अंदर गतिरोध बनाने का काम जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही किया है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की करेंगे। 2027 के चुनाव से पहले बीएसपी अब युवा और खासतौर पर जेनजी वोटर्स के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। मायावती ने संगठन से लेकर चुनावी मैदान और सोशल मीडिया तक युवा चेहरों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। जलौन की माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को पहला प्रत्याशी घोषित करना भी इसी रणनीति का संकेत माना जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को युवाओं की नब्ज टटोलने और सोशल मीडिया पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी मिली है। हाथरस के सादाबाद में उनकी जनसभा के दौरान हैशटैग बहन जी का संदेश अभियान तेजी से ट्रेंड हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। हालिया के जेंजी आंदोलन के बाद से मायावती ने युवाओं के मुद्दे पर खुलकर समर्थन जताया और बीजेपी कांग्रेस दोनों को आड़े हाथ लिया। वहीं आकाश आनंद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर तंज कसा, यानी 2027 में बीएसपी का फोकस साफ है, युवा चेहरों के जरिए युवा वोटर्स तक पहुंच और जेंजी के बीच अपनी नई राजनीतिक जमीन तैयार करना।
3: आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं।
0: आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। आशीष, देखिए यहाँ पर आकाश आनंद दो तरफा तीर चला रहे हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव हो या फिर तमाम बीजेपी के नेता हो, कोई भी जेंजी से उस तरीके से नहीं जुड़ा है जिस तरीके से उनकी पार्टी जुड़ना चाहती है, और पहला टिकट देकर भी उन्होंने यही साबित किया।
4: बिल्कुल नेहा, देखिए एक्चुअली आकाश आनंद जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर, उनका मानना है कि उनकी उम्र सबसे कम है राजनीति में, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर अन्य जो राहुल गांधी हो, उन सबसे वो कंपेयर करते हैं और मानते हैं कि असली जैन जी वही है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जो है वो जैन जी के लिए ही सोच रही है और आशीष पांडे को जो जलौन का टिकट है वो भी कहीं ना कहीं तरीके से प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है कि वो जब फाइनल किया है तो युवा को दिया है, तो ऐसे में और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो भी युवा, तो एक जिम्मेदारी जो बसपा चीफ ने दी है आकाश आनंद को कि जैन जी और युवाओं को एक साथ जोड़ना पार्टी से, क्योंकि दलित वोट बैंक तो पहले से ही जुड़ा है, अब जैन जी और युवा जब जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये एक मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में आएगी और इसी वजह से आकाश आनंद के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि अंकल, और इस बात को शब्द में बार बार कहा, चूंकि असली जैन जी वही है और इसी को लेकर वो अपनी रणनीति बना रहे, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो, ये कैंपेन हो, या इसके अलावा जितने भी युवा है उनको पार्टी में टिकट देने की बात हो, तकरीबन आधा दर्जन ऐसे हैं जो तकरीबन नाम भी फाइनल हैं, तो कहीं ना कहीं ये युवाओं को लेकर एक बड़ा मौका है जिसको बसपा कैश करा रही है और यही वजह है कि आकाश आनंद उनके लिए एक ग्रुप का इक्का है जिनको वो आगे करके मायावती इस समय उत्तर प्रदेश में जो जैन जी को लेकर हर पार्टी आगे बढ़ रही है, बहुजन समाज पार्टी भी आकाश आनंद के कंधे पर आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में चाहे वो टिकट की दावेदारी हो या अलग अलग क्षेत्रों में बूथ की जिम्मेदारी हो, वो सभी कहीं ना कहीं आकाश आनंद के रूप में आगे बसपा बढ़ा रही है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं संसद में इस वक्त गतिरोध जारी है, संसद परिसर में दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार दोनों की अपनी अपनी मांग है। आज ये दूसरा दिन है जब इस तरीके से दोनों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं संसद परिसर में। खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए।
5: देश को डिवाइड करने का और जाति जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं, इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है एक निशाना है, उसको मैं कंडम करता हूँ। अरे एक एक बोलो भाई,
6: चर्चा को तैयार
5: है। कब? नहीं, अब आज वंदे मातरम हो रहा है, जनगण मन हो रहा है आज। अरे 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया? ये तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है एक, और दूसरा ये अपने आप को मैं तैयार हूँ कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? जब आपका एजेंडा कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप उसमें कोई अब तक दूसरों को नहीं बोले, तुम्हारे लिए एक्सटेंड करना, तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मांगते हो, ये शर्म की बात है।
7: बॉम्बे एलीट who used to come in support of them.
8: Thank you sir. Thank you.
2: जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी। रवि जी, एक अपील की गई, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपील करी, कांग्रेस पार्टी सामने आई, राहुल गांधी बाहर आए, उन्होंने ये बोला कि हमें पूरा भाषण नहीं सुनना, सिर्फ एक सवाल है उसका जवाब चाहिए।
7: तो संसद अपनी मर्जी से चलाएंगे क्या? माई वे और हाईवे करेंगे क्या? संसद है, आप माननीय अमित शाह जी ने कहा मैं 24 घंटे आपके भाषण सुनने को तैयार हूं और आप एक एक का जवाब दूंगा, उसमें सारी बातें आती, मतलब आपका इरादा कुछ और है, सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं आप, जबरदस्ती देश के ऊपर अपनी उद्दंडता थोपना चाहते हैं। अब तो राहुल गांधी पूरा एक्सपोज हो गए ना, आप देख रही है ना, सरकार तैयार है बहस के लिए, स्वयं अमित शाह जी ने आग्रह किया, अमित शाह जी ने स्पीकर को पत्र भी लिखा, इसके बाद भी भाग रहे हैं और झारखंड पर शांत, वहां तो FIR भी हो गए, इसलिए हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी अपनी उद्दंडता छोड़े।
2: क्या आपको ऐसा लगता है कि आखिरी दिन है संसद का आज, आपको लग रहा है कि कहीं पर कुछ डिस्कशन हो पाएगा?
7: हम लोग तैयार बैठे हुए हैं, जब प्रधानमंत्री तैयार है, गृह मंत्री तैयार है, स्पीकर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सुनने को तैयार हो तब ना।
2: सुनने को विपक्ष तैयार नहीं है, रविशंकर प्रसाद जी का ये कहना है। और उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जब सरकार बार बार ये बोल चुकी है कि आप आइए सामने और बातचीत करिए, तो आखिरकार विपक्ष इस चीज को मान क्यों नहीं रहा है। श्वेता पालीवाल, दिल्ली आज तक।
8: देखी गई, सत्ता पक्ष भी प्रोटेस्ट किया, विपक्ष ने भी किया, आज भी ऐसी तस्वीरें देखी जा
9: रही है। सत्ता पक्ष सिर्फ यही प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, वो पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्टर्ब करता है। सत्ता पक्ष ही संसद नहीं चलने दे रहा है। विपक्ष तो रोज, विपक्ष की डिमांड क्या है कि गृहमंत्री जी सदन में आए, स्टेटमेंट दें, प्रधानमंत्री जी सदन में आए, जवाब दें। सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष यही तो मांग करेगा। सत्ता पक्ष क्या मांग कर रहा है, उनकी डिमांड क्या है कि राहुल गांधी सदन में आए? तो राहुल गांधी तो रोज सदन में आ रहे हैं। जब एग्जामिनेशन अमेंडमेंट एक्ट पे डिबेट हो रही थी, होम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आए थे? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए? इस देश के छात्रों के भविष्य का मुद्दा था, उस पर बहस हो रही है, उस पर गृहमंत्री जी गायब हैं, प्रधानमंत्री जी गायब हैं। जो नए नवेले शिक्षा मंत्री बने थे, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर सही से कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया था, बस वही मौजूद थे। तो ये सरकार इस देश के छात्रों के भविष्य को लेकर के रत्ती भर भी चिंतित नहीं है, उसको कोई परवाह ही नहीं है, उसके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो देश का युवा जाग गया है, छात्र जाग गए हैं। तो
10: मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का इस वक्त अलग अलग मुद्दों को लेकर के हंगामा और प्रदर्शन चल रहा था। अब दोनों पक्ष जो है आमने सामने है। यहाँ आप तस्वीरों में देखिए कि जहाँ झारखंड बीजेपी के तमाम सांसद जो है वो कांग्रेस पार्टी जवाब दो इसको लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और राहुल गांधी के जवाब को लेकर के लगातार उनके द्वारा यहाँ पर मांग की जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद हैं वो भी आमने सामने इस वक्त हैं। आप तस्वीरों में पूरी तरीके से देख रहे हैं कि ये यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अब चढ़ावा चोरी और गद्दी छोड़, इन तमाम चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो वहाँ तस्वीरों में आप देखिए कि दोनों पार्टियों के अलग अलग सांसद आमने सामने इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर सामने एक तरीके की ह्यूमन शील्ड जो है सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है, और सीआईएसएफ यहाँ पर आपको सामने तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है। ये सिचुएशन इस वक्त संसद के मानसून सत्र का जो आखिरी दिन बचा हुआ है उसमें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं वो आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से झारखंड के मुद्दे को लेकर
0: रुकेंगे यहाँ, इस से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में भरा पानी। भारी बारिश के बाद पार्किंग एरिया में जमा पानी। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में पानी भरने का वायरल वीडियो जैसे ही सामने आया, विपक्ष ने सरकार को घेरने में वक्त नहीं लिया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी, जहां बीजेपी सरकार वहां महाभ्रष्टाचार। अखिलेश यादव के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बना और पहली बारिश में ही मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की पोल खोलता नजर आया। जहां एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभालकर आधे घंटे में पार्किंग से पानी निकालकर स्थिति को सामान्य कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बयान जारी कर कहा कि ज्यादा बारिश होने की वजह से पार्किंग एरिया के रास्ते में पानी भर गया था, जिसे तुरंत कार्रवाई करते हुए 30 मिनट से कम वक्त में हटा दिया गया। इस दौरान ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से भेजा गया और किसी भी फ्लाइट में कोई रुकावट नहीं आई।
1: सवाल तो ये है कि इतने ज्यादा लागत से बना यह एयरपोर्ट, लगभग 11,000 करोड़ की लागत से बना यह एयरपोर्ट, अगर पहली बारिश, तेज बारिश में वहां पानी भर जाता है, तो ये कमी मॉनसून की है या झोल इंफ्रास्ट्रक्चर में है या उसके निर्माण में है, ये अपने आप में एक सवाल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
0: सोशल मीडिया पर पार्किंग में भरे पानी का वीडियो वायरल होने के बाद अब एयरपोर्ट परिसर में जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: यूपीआई के 2,000 रूपए से ज्यादा के लेन देन पर टैक्स लगने की खबरों के बीच इसके इस्तेमाल में सुस्ती की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जुलाई में यूपीआई की वॉल्यूम ग्रोथ रेट में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इसी दौरान ट्रांजैक्शन वैल्यू ग्रोथ स्थिर रही है। आंकड़ों के मुताबिक कारोबारी साल 2026-27 के पहले 4 महीनों यानी अप्रैल जुलाई में यूपीआई की वॉल्यूम ग्रोथ रेट में 10 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान ट्रांजैक्शन वैल्यू ग्रोथ करीब 20% पर स्थिर बनी रही। ये बदलाव ऐसे समय सामने आया है जब यूपीआई पर परसेंटेज डिस्काउंट रेट MDR को लेकर बहस तेज हो गई है। डेटा के मुताबिक अप्रैल से जुलाई 2026 के दौरान यूपीआई पर 92 अरब ट्रांजैक्शन दर्ज हुए, जबकि अप्रैल जुलाई 2025 में यह आंकड़ा 74.5 अरब था। इस तरह ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में सालाना 23.5% की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की इसी अवधि में 33.5% थी। 2025-26 में यूपीआई की वॉल्यूम ग्रोथ करीब 30% रही थी, जबकि 2024-25 में ये 41% दर्ज की गई थी। इससे पता चलता है कि पिछले 2 साल में ग्रोथ रेट में लगातार नरमी आई है। साल 2020 में यूपीआई पर 0 MDR लागू है, जिसका मतलब है कि व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने पर बैंकों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता। लेकिन फिनटेक और पेमेंट कंपनियों का तर्क है कि रेवेन्यू मॉडल नहीं होने की वजह से बैंकों और पेमेंट कंपनियों के लिए विस्तार पर निवेश करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। उनका कहना है कि MDR मिलने पर कैशबैक, नए ग्राहकों को जोड़ने और मर्चेंट नेटवर्क बढ़ाने में ज्यादा निवेश किया जा सकता है। हालांकि दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूपीआई एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और 0 MDR मॉडल ने इसकी पहुंच को तेजी से बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कुछ अधिकारियों का मानना है कि देश में यूपीआई की पहुंच अभी भी करीब 40% आबादी तक ही है। ऐसे में नए यूजर्स और नए कारोबारियों के जुड़ने की पर्याप्त संभावना बनी हुई है। दिलचस्प बात है कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की ग्रोथ रेट भले धीमी हुई हो, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। डेटा के मुताबिक FY17 में जहां ये 18.5% थी, वहीं FY27 के पहले 4 महीनों में ये करीब 20% रही। लोकसभा ने 6 अगस्त 2026 को टैक्सेशन और अदर्स लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पारित किया है। इसके बाद बड़ी मर्चेंट्स के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने की संभावना को लेकर चर्चा बढ़ी है। अनुमान है कि सरकार 0.25% से 0.30% तक MDR लगाने पर विचार कर सकती है। देश में होने वाली कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपीआई की हिस्सेदारी करीब 88% है। हर महीने यूपीआई पर 23 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही है। ऐसे में MDR को लेकर होने वाला कोई भी बदलाव देश के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, बैंकों, फिनटेक कंपनियों और करोड़ों ग्राहकों पर असर डाल सकता है। आज तक यो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और बेहतर मौके की उम्मीद लगाए बैठे प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर आई है। लंबे समय से सुस्ती झेल रहे व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट में फिर से तेजी लौटती दिखाई दे रही है। खासकर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेक्टर्स में कंपनियां तेजी से नई हायरिंग कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में देश में व्हाइट कॉलर हायरिंग में सालाना आधार पर 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते महीने जॉब स्पीक इंडेक्स बढ़कर 3,227 पर पहुंच गया, जो पिछले साल जुलाई में 3,074 था। इस दौरान AI और मशीन लर्निंग से जुड़े रोल्स में 33% की सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं IT और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े पदों में 23% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में हायरिंग 6% बढ़ी है। दरअसल बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कंपनियों का फोकस ऐसे स्किल्स पर है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। यही वजह है कि AI, डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में हायरिंग 10%, रियल एस्टेट सेक्टर में 8%, IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में 6% बढ़ी, लेकिन टेलीकॉम, बैंकिंग, फार्मा और एजुकेशन सेक्टर्स में भर्ती की रफ्तार धीमी रही। हालांकि टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों में आई इस तेजी ने जॉब मार्केट को नई ऊर्जा देने का काम किया है। दिलचस्प बात है कि इस रिकवरी का फायदा अनुभवी प्रोफेशनल्स के साथ फ्रेशर्स को भी मिल रहा है, जिनकी हायरिंग जुलाई में 6% बढ़ी है। वहीं कई शहरों में भी हायरिंग की रफ्तार तेज हुई है और बीते महीने कोलकाता में हायरिंग 17%, हैदराबाद में 16%, चेन्नई में 11% और बेंगलुरु में हायरिंग में 8% की ग्रोथ देखी गई। वहीं मुंबई और दिल्ली में हायरिंग का स्तर लगभग स्थिर रहा। उधर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यानी GCCS में भर्तियां 5% बढ़ी हैं। यानी कंपनियां अनुभवी टैलेंट के साथ फ्रेशर्स को भी अपने साथ जोड़ने पर जोर दे रही हैं। जुलाई के आंकड़े संकेत देते हैं कॉर्पोरेट भारत में भर्ती गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। हालांकि सभी सेक्टर्स में एक जैसी तेजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल स्किल्स से जुड़े क्षेत्रों ने जॉब मार्केट की रफ्तार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आदित्य के राणा आज तक।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा।
0: और मॉनसून सत्र के आखिरी दिन इंडिया ब्लॉक का विरोध प्रदर्शन जारी है। दोनों पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। थोड़ी देर में लोकसभा की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी, लेकिन देखना ये होगा कि क्या आज भी दोनों सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे।
2: माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं।

0: सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।
1: वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। लगातार हम देख रहे हैं कि सदन में कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है और हंगामे की भेंट आज फिर से संसद का मानसून सत्र चढ़ गया है, जिसकी वजह से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।
2: तो अब से कुछ ही देर पहले आपने वंदे मातरम पर सभी सांसदों को अपनी कुर्सी से उठकर इसको सुनते हुए और इसका सम्मान करते हुए देखा, लेकिन इस बीच हंगामा फिर से शुरू हो गया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा को दोनों सदन का आज आखिरी दिन है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, कैसे संसद परिसर में दोनों का हंगामा जारी है और परिसर में पोस्टर बैनर तख्तियों के साथ सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसद भी मौजूद थे अपनी अपनी मांगों को लेकर।
1: तो एक तरफ संसद में हंगामा हुआ, संसद के बाहर भी हंगामा हो रहा है और ऐसे में अब कार्यवाही को फिर से स्थगित करना पड़ा। आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन वो नहीं हो सकी और मानसून सत्र एक बार फिर से आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है।

0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब तो एक्सटेंशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है सदन।
1: देखिए, बिल्कुल अनिश्चितकाल के लिए जो है लोकसभा स्थगित हो गई है, लेकिन जो हमको अभी तक जानकारी मिल रही है, सरकार जो है पूरी तरीके से डिलिमिटेशन लाना चाहती है। कब जो है लाया जाएगा इसको तय कर लिया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है जो शीतकालीन सत्र होगा उससे पहले सरकार जो है डिलिमिटेशन बिल यानी संविधान में 131वां संशोधन बिल जो है वो लेकर आना चाहेगी। अगर सारे नंबर्स पूरे होते हैं, विपक्ष के साथ उनकी सहमति बन जाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से कई जो है विपक्षी दलों के साथ बातचीत की जा रही है डिलिमिटेशन बिल को लेकर, यानी महिला आरक्षण बिल जो है 2029 में लागू हो इसको लेकर। अब क्योंकि लोकसभा पूरा सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया, अब से कुछ देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम सत्ता पक्ष के जो फ्लोर लीडर्स हैं, विपक्ष के जो फ्लोर लीडर्स हैं, वो सभी जो है थोड़ी देर में स्पीकर के कमरे में, क्योंकि जब भी सदन जो है स्थगित होता है उसके बाद जो है एक आपसी बातचीत होती है पूरे सदन को लेकर, किस तरीके से क्या रहा उस पर जो है स्पीकर के साथ मुलाकात होती है चाय पर, और फिर चर्चा होती है। आप देखते हैं थोड़ी देर में क्या इस चर्चा के अंदर रहेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के जो संसदीय दल के नेता हैं वो उस बैठक में मौजूद रहते हैं, चाहे के साथ जो है चर्चा की जाती है।
0: हिमांशु, लगातार सदन में हम देख रहे हैं विपक्ष हंगामा कर रहा है, किसी भी मुद्दे पर ठीक से चर्चा नहीं हो पा रही है, तो आगे का रुख विपक्ष का क्या होने वाला है?
1: देखिए, देखना यह है कि ये जो छात्र आंदोलन है इसको लेकर क्या विपक्ष जो है वो संसद से सड़क तक जाएगा, क्या सत्ता पक्ष जो है जो झारखंड में छात्रों का जो प्रदर्शन है उसको लेकर संसद से सड़क तक जाएगा, ये तमाम चीजें हैं। क्या इसके ऊपर सिर्फ संसद पर राजनीति होगी या अब ग्राउंड पे भी छात्रों के मुद्दों को लेकर, पेपर लीक जैसे मामले को लेकर जो है वो सड़क तक पहुंचने का कार्यक्रम जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के द्वारा बनाया जाएगा, ये तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि पूरा सत्र जो है छात्र आंदोलन के नाम पर जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया, और छात्रों के लिए जो कुछ चर्चा होनी चाहिए थी, सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी, वो सार्थक चर्चा जो है वो ना लोकसभा के अंदर सदन में हो पाई ना राज्यसभा में सदन में हो पाई। हाँ, इतना जरूर है सरकार के जो विधायी कार्य थे वो हंगामे यानी डिम के अंदर पास जरूर हमारे साथ
0: बीच राज्यसभा दिखा देते हैं, वहां पर भी इस वक्त हंगामा हो रहा है।
2: I now call upon the members whose names have been received for the participation in the discussion. Sriman G. Kishan, list of speakers. I understand. I am giving you a lot of time. Let me complete this. I am coming back to you. I understand. If Gargaji is insulted, that means everyone is insulted. Why you are shouting? I am coming back to you, I am telling, I am coming back to you.
3: Sir, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वान में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये यू है यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर, इज इज द वे इन डेमोक्रेसी हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टू आई एम अ लीडर ऑफ अपोजिशन।
2: Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond. Now this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond.
4: Sir,
2: please let them respond. Yes, let them respond.
4: सर जो माननीय खड़गे जी ने कहा है ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं ये दुखदाई हम सब के लिए है बीजेपी क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज नेवर लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
2: When the head of the house is on his legs, why you are shouting?
4: लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है
2: यस यस
3: सर मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहां हूं और निचला लेकिन मैं कभी मैं एक शेड्यूल कास्ट हूं मैं एक दलित हूं मेरे को मदद करो मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं मैं लड़ने की शक्ति है मैं लड़ता हूं लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो
2: Diwali ji, you all take your seat. What is this? When he is speaking, why you are all standing?
4: कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज नंबर वन नंबर टू ये हम सब के लिए खेद का विषय है देश के लिए भी खेद का विषय है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो ये उचित नहीं है जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब
2: Please, let me explain on behalf of every member of this house. Let me explain my feeling.
4: Now, don't sensationalize. Don't criticize. जो बात कही गई है मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे वी विल गो इन टू द डिटेल्स ऑफ इट एंड फाइंड आउट And if anybody is found guilty, certainly action will be taken. And we respect Mr. Kharge और इनके sentiments को भी हम respect करते हैं लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप भी इसको politicize मत कीजिए इतनी ज्यादा चिंता करें
2: one minute, let me make my observation. You please take your seat. Kharge.
3: Sir.
2: No, wait.
3: Sir, मैं सिर्फ लता साहब के नाम नहीं बोलूंगा, लता साहब के पास नहीं है।
5: अरुण जी,
3: मैं पब्लिक नहीं चाहता, आओ सेटर वहां पर यू
5: नहीं इस लाइक ओनली
3: आओ सेटी
5: अंडर योर बेटी
3: टेक
5: योर यू टेक योर
3: सीट रजिस्टर करो
5: यू प्लीज टेक योर सीट
3: रजिस्टर करो
5: लेट योर
3: पुलिस स्टेशन
5: प्लीज टेक योर सीट
3: यही मेरी मांग है।
5: यस नंबर आई विल मेक माय ऑब्जर्वेशन इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट अ सिन देयर नो नो नो नो नंबर प्लीज टेक योर सीट no no no no please take your seat nothing will go on record please take your seat please take your seat no no no you please take your seat you please take your seat if untouchability is not a sin there is no sin in this world we all condemn irrespective of our party irrespective of our ideology irrespective of anything we all condemn untouchability and we all are purified there is no need for anyone to purify us again and again that no no what I am saying you have listened to Nadaji na I request the government also those who have done the wrong thing they will be investigated they should be caught and they should be punished there is no two different opinion on this and honorable members Sriman Praveen Chakravarti ji has given a notice rule 157 for disapproval of the mines and minerals development regulation amendment bill 2026 in this regard I wish to inform the honorable member that the notice does not fall within the scope of the upset rule further there is no provision either in the constitution of india or in the rules of the procedure and conduct of the business in the council of states rajya sabha for giving a notice for disapproval of a bill hence this notice is not admitted now I call upon Srimati Sagarika Ghosh yeah that I will be when I am going for it I will put the amendment for the vote when I am going for it now I am calling the speakers
6: Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this very important bill.
0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये किस शुद्धिकरण का जिक्र खड़गे साहब ने किया और इसे लेकर उन्हें अपमानित किया गया, ये इंसिडेंट्स आप बता सकेंगे?
1: देखिए, जिसका जिक्र जो मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, किसी शायद बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता के द्वारा जो है कुछ उनको लेकर जो है अब शब्दों का प्रयोग किया गया और फिर कोई शुद्धिकरण की चीज कही गई है उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के अंदर इस पूरे मामले को उठाया और उन्होंने ये कहा कि अनटचेबिलिटी करके जो है उनका अपमान किया गया है, शुद्धिकरण की बात कही गई है, जिसको लेकर जेपी नड्डा जो राज्यसभा में नेता सदन है उन्होंने कहा कि मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और मैं भी आहत हूं, जो भी कुछ होगा उस पर जो भी किया जा सकता है अगर हमारे किसी कार्यकर्ता ने किया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां मौजूद है जो का वो किया जाएगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत मुखर स्वर में इस इश्यू को उठाकर जो है सदन का ध्यान आकर्षण अपनी तरफ कर रहे थे। उसके बाद जो है जेपी नड्डा ने फिर से उन्हें कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो कुछ कहा गया है वो गलत है, अगर ऐसा हुआ है तो हम इसको लेकर जो भी एक्शन होगा वो किया जाएगा। जब ये आश्वासन मिला उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई जो है वो सभापति के द्वारा फिर से चलाई जा रही है।
0: चलिए ठीक है मानशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
10: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
9: छक्का
10: सब कैशलेस हो गया है।
9: हाँ ला भाई मेरा बैट,
10: वो अभी तो ठीक हुआ।
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: In association with
5: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
6: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
4: Vimal, bolo zuba kesri. Hint, bade aaram se.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
8: जब तक वो CBI जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
7: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
9: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
10: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
11: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
12: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है इस लड़के सबको।
7: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
1: कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 पर बड़ा हादसा हुआ। अचानक पहाड़ से भारी भरकम पत्थर गिरने लगे। इस हादसे की चपेट में एक कार आ गई। किरण बाजार और बराड़ के बीच ये घटना घटी। पत्थरों की चपेट में आकर कार के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी पत्थरों के नीचे दब गई। हादसे के वक्त कार में दो लोग सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कांगड़ा में भी आफत की तस्वीर दिखी। वहां लगातार बारिश के बीच रानीताल बाथू पुल के पास जबरदस्त भूस्खलन की घटना हुई। इस घटना में 4-लेन हाईवे का एक हिस्सा और कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे बाधित हो गया। कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। मौके पर दोनों तरफ गाड़ियां फंसी रही। बाद में ट्रैफिक चालू करने के लिए भारी मशीनों से मलबा हटाया गया, तब जाकर हालात संभले। हिमाचल के सोलन में भी तबाही की तस्वीर दिखी। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर सोलन में एक चलती कार पर बड़ी चट्टान गिर गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को IGMC शिमला रेफर किया गया है। कुल्लू और हिमाचल के कई हिस्सों में

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
4: जब तक वो CBI जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
3: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
5: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
6: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
7: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
8: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
3: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
9: कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 पर बड़ा हादसा हुआ। अचानक पहाड़ से भारी भरकम पत्थर गिरने लगे। इस हादसे की चपेट में एक कार आ गई। किरण बाजार और बराड़ के बीच ये घटना घटी। पत्थरों की चपेट में आकर कार के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी पत्थरों के नीचे दब गई। हादसे के वक्त कार में दो लोग सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कांगड़ा में भी आफत की तस्वीर दिखी। वहां लगातार बारिश के बीच रानीताल बाथू पुल के पास जबरदस्त भूस्खलन की घटना हुई। इस घटना में 4-लेन हाईवे का एक हिस्सा और कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे बाधित हो गया। कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। मौके पर दोनों तरफ गाड़ियां फंसी रहीं। बाद में ट्रैफिक चालू करने के लिए भारी मशीनों से मलबा हटाया गया, तब जाकर हालात संभले। हिमाचल के सोलन में भी तबाही की तस्वीर दिखी। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर सोलन में एक चलती कार पर बड़ी चट्टान गिर गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को IGMC शिमला रेफर किया गया है। कुल्लू और हिमाचल के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इसका असर वहां की ब्यास और पार्वती नदियों में दिख रहा है। नदी के जलस्तर में उफान है और किनारों पर खतरा बढ़ा हुआ है। और अब एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां अचानक आई बाढ़ में 7 जिंदगियां फंस गईं। ये तस्वीरें कठुआ के माहीचक इलाके की। वहां उन नदी में उफान बढ़ा तो नदी के बीच एक टापू पर लोग पानी से घिर गए। उन सभी को बचाने के लिए पुलिस और SDRF ने तेज बचाव अभियान चलाया। इस अभियान के बाद कठुआ में अचानक आई बाढ़ के दौरान 7 लोगों की जान बच पाई। सोलन से राजेश शर्मा, कांगड़ा से अशोक रैना और कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।
10: जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। 1.5 साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं। 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहां 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं वहां ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार? जहां बारिश को जिम्मेदार ठहराकर बचा जाता है। और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे MP नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है? अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए? और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चू तक नहीं करेंगे? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का।

0: अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई लोकसभा। वंदे मातरम गान के बाद स्पीकर ओम बिरला ने किया ऐलान। सदन में मौजूद थे पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह। संसद परिसर में प्रदर्शन।
1: उत्तराखंड में खड़गे के मंच के शुद्धिकरण पर उठे सियासी तूफान। राज्यसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष, मेरा अपमान किया गया। नड्डा ने कहा सरकार कड़ी निंदा करती है, कराएंगे जांच।
0: गर्मी और उमस भी नहीं तोड़ पाए रांची के आंदोलनकारी छात्रों के हौसले। पूर्व सीएम रघुवर दास बोले सरकार छात्रों की मांगे माने, नहीं तो दूंगा धरना। 20 दिन से जारी है प्रदर्शन।
1: फार्मेसी ऑफिसर बहाली परीक्षा में गड़बड़ी से इनकार करने वाली मान सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने लगाई भर्ती प्रक्रिया पर रोक। बीजेपी बोली क्यों चुप है जंतर मंतर से सवाल पूछने वाले।
0: जेएनसी आंदोलन ने बदला सियासत का मूड। यूपी चुनाव में नौजवानों को टिकट देने पर काम कर रही है बीएसपी। बीजेपी का युवाओं पर फोकस। महिलाओं के खाते में पैसे भेजने पर चल रहा है काम।

0: मानसून सत्र के आखिरी दिन आज भी संसद में हंगामा होता रहा। संसद के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने दिखे। पिछले कई दिन से संसद परिसर में दोनों पक्षों का आमना सामना इसी तरीके से हो रहा, आज भी नजारा अलग नहीं था।
1: दरअसल सदन के भीतर भी आज हंगामे का सिलसिला जारी रहा। लोकसभा में पीएम मोदी, अमित शाह मौजूद थे, लेकिन इससे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं वहां पर पड़ा। चंद मिनट के बाद ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। आखिरी दिन भी हंगामा ही नजर आया।
2: सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चाय पार्टी का आयोजन जब किया गया उसमें विपक्ष के सांसद गायब है। सिर्फ कनीमोई इस चाय पार्टी में नजर आई। लोकसभा स्पीकर की चाय पार्टी जो आमतौर पर सत्र समाप्ति पर आयोजित की जाती है, इसकी घोषणा के बाद सत्र समाप्ति की जब घोषणा हुई इसके बाद ये चाय पार्टी आयोजित की गई। अब तक डीएमके के एक ही सांसद पहुंची।
1: हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, विपक्ष तो कहीं भी नजर ही नहीं आया इस चाय पार्टी में।
3: देखिए, एक संसदीय परंपरा है और इस परंपरा में जो है जब भी सत्र का समापन होता है उसके बाद जो है स्पीकर की तरफ से एक चाय पार्टी होती है जिसमें पूरे सत्र को लेकर जो है वो चर्चा होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। यानी सत्ता पक्ष की तरफ से जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ये मौजूद होते हैं और अन्य सहयोगी दल वहां पे मौजूद होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष और अन्य विपक्षी दलों के जो संसदीय दल के नेता है वो मौजूद होते हैं। लेकिन इस बार नजारा कुछ बदला था और विपक्ष की तरफ से सिर्फ डीएमके जो है वो इस चाय पार्टी में पहुंची, बाकी अन्य विपक्षी दलों ने इस चाय पार्टी का बहिष्कार किया है। तो एक तरीके से ये जो परंपरा है वो गतिरोध जो सदन में चलता रहा वो उसका नजारा इस चाय पार्टी में भी दिखाई दिया है। और ये चाय पार्टी क्योंकि संसद के अंदर जो भी सत्र में बिल पास हुए हैं, जो चर्चा हुई है, जिस तरीके का माहौल रहा उसको एक हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, जहां स्पीकर भी मौजूद होते हैं और बड़ी अच्छी चर्चाएं होती हैं, छोटी क्योंकि चाय की चुस्की के साथ ये कह सकते हैं चर्चा होती है। लेकिन इस बार वो नजारा बदल गया। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या अन्य जो संसदीय दल के नेता हैं, चाहे वो टीएमसी के हों या समाजवादी पार्टी के हों, वो वहां नहीं पहुंचे हैं। और यही एक बड़ा विषय है, क्या तल्खी इतनी हो गई है कि आप सदन के अंदर जो है वो ठीक है हंगामा करें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन क्या तल्खी इतनी बढ़ गई इस तरीके की? जब
0: मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया था और उसके बाद सिर्फ एक प्रतीकात्मक तौर पर कार्रवाई शुरू की गई और उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
3: देखिये, बिल्कुल जो है वो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष के और विपक्ष की तरफ से जो है नारेबाजी की जा रही थी। जब गृह मंत्री सदन में पहुंचे तो उन्होंने सत्ता पक्ष के सांसदों को जो कहा इशारे से कि आप जो है कोई किसी भी तरीके का हंगामा नहीं कीजिए, विपक्ष अगर कोई भी नारेबाजी कर रहा है उसको करने दीजिए। उसके बाद जो है सत्ता पक्ष के सांसद बिल्कुल शांत हो गए, विपक्ष की तरफ से जो है वो नारेबाजी चलती रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन के अंदर पहुंचे उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई स्थगित करने से पहले जो है वंदे मातरम जो है वो गाया गया और उसके बाद सदन की कार्रवाई जो है अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित कर दी गई। लेकिन सवाल यह है कि सदन की कार्रवाई स्थगित होने से पहले लोकसभा स्पीकर सदन के पूरे सत्र में जिस तरीके से जो भी कार्रवाई हुई, जिन विषयों पे चर्चा हुई है, कितना उपयोगी संसद का सत्र रहा है, उसको लेकर एक पूरा जानकारी जो है सभा के साथ जो है साझा करते हैं।
1: देखिए, हंगामेदार तो बहुत रहा है संसद का सत्र। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। वहीं उत्तराखंड में खड़गे के मंच के शुद्धिकरण का मामला भी गर्मा गया। दरअसल राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर अपमान करने का आरोप लगाया है। देखिए
4: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये यू हैव यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर, इज इट द वे इन डेमोक्रेसी हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टू आई एम अ लीडर ऑफ अपोजिशन।
5: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है।
0: हिमांशु मिश्रा में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए यहां पर जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन ये बीजेपी के लोग थे कौन जिन्होंने अपमान किया खड़गे जी का?
3: देखिए ये चूंकि आरोप जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया जब वो एक कार्यक्रम में जो है देहरादून गए और वहां पर उनके कार्यक्रम के बाद जो मंच उन्होंने साझा किया उसका शुद्धिकरण किया गया कुछ लोगों के द्वारा। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और उसके बाद जो है नेता सदन ने जो है ये खड़े होकर कहा कि इस तरीके की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, लेकिन अगर आपका जो भी आक्षेप है इसकी हम जांच करेंगे और अगर सही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और जितना दुख आपको है उतना ही दुख मुझे भी है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद है और
0: आश्वासन के बाद जानकारी के लिए आपका।
1: तो वहीं संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था और आज भी सियासी विसाद पर संसद को हंगामे से निजात नहीं मिला, क्योंकि आज आखिरी दिन भी संसद में हंगामा होता रहा, बवाल भी रहा।
0: वहीं मॉनसून सत्र 25 दिन के लिए निर्धारित हुआ था जिसमें 19 बैठकें होनी थी, लेकिन 19 बैठकों में चंद घंटे भी सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। बिल पारित तो हुए लेकिन बिना चर्चा के और ध्वनिमत से।
6: 10 अगस्त,
7: माननीय सदस्यगण,
6: 12 अगस्त,
8: क्या निशी कान जी,
6: 13 अगस्त, ये सिर्फ इस हफ्ते की तस्वीरें हैं। सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सदन के बाहर जमावड़ा होता है, दोनों तरफ से नारेबाजी होती है। जैसे ही सदन में कामकाज शुरू होता है सदन में हंगामा होता है, नारेबाजी होती है और सदन स्थगित हो जाता है।
8: फिर सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 11 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
7: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
8: कल गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
7: सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।
6: जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है यही आलम रहा, सदन शुरू होना और पलक झपकते ही सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाना। न प्रश्नकाल हो पाया और न कोई और चर्चा हो पाई, पूरा का पूरा सत्र हंगामे और तनातनी में स्वाहा हो गया। वक्त कितनी बर्बादी हुई कि संसदीय कार्य मंत्री को संसद की अवधि बढ़ाने की अपील करनी पड़ी।
9: 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और इस 3 दशक का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूं कि ऐसा अपोजिशन पार्टी, ऐसा विपक्ष मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा और कल्पना भी नहीं कर सकता है कि डिस्कशन से भागने वाला अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट कैसे चलेगा। फिर पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करेगा, पार्लियामेंट मंत्री जवाब नहीं दे सकते, पार्लियामेंट में सरकार अपना बात नहीं रख सकता है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। मतलब तकिया पकड़ के नाराबाजी करना एक नॉर्मल कर दिया है। अब तो कांग्रेस पार्टी के एमपी सोचते हैं कि उसका काम ही सिर्फ नारा लगाना, तकिया पकड़ना, गाली देना, यही काम रह गया, इसको नॉर्मल बना दिया है।
6: दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन से लेकर रांची में छात्रों के अनशन तक छात्रों के सवाल पर सत्र का ज्यादातर हिस्सा सियासत की भेंट चढ़ता रहा। गृहमंत्री अमित शाह खुद आगे आए, चर्चा की पहल की, लेकिन उनकी अपील भी बेअसर रही।
10: सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूँ, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते।
6: गृहमंत्री की अपील को कांग्रेस ने अनसुना कर दिया। राहुल गांधी अमित शाह के इस्तीफे पर अड़े रहे।
11: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। हु गेव द ऑर्डर टू शूट दोज स्टूडेंट्स? हु ब्लाइंडेड वन ऑफ द स्टूडेंट्स? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he is culpable.
6: तो देश एक बार फिर निराशा भरी नजरों से संसद की तरफ देखता रहा कि कैसे जनता के टैक्स के पैसे की संसद में बर्बादी हो रही है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। मॉनसून सत्र में 19 बैठकें हुई, लोकसभा में सिर्फ 16 घंटे 7 मिनट की कार्यवाही चली, राज्यसभा में 30 घंटे 6 मिनट की कार्यवाही चली, लोकसभा में 11 बिल पास हुए जिनमें सिर्फ 2 पर बहस हुई। सवाल है, इस हालत के लिए कौन जिम्मेवार है? आप पूछेंगे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते नजर आएंगे, लेकिन इससे देश का क्या लेना देना, आम लोगों का क्या लेना देना जिनके हितों के मुद्दे लगातार नजरअंदाज हो रहे हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात यूपी की, जहां बीजेपी पूरी रफ्तार से 2027 की चुनावी तैयारी में जुट गई है। महिला हो या नौजवान, इन दो वोटर वर्ग पर बीजेपी की खास तौर पर नजर है। इन दोनों वर्गों के लिए बीजेपी खास रणनीति बना रही है।
1: खबर है कि महिलाओं को 50,000 तक की आर्थिक सहायता देने की तैयारी हो रही है। पहली किस्त में 20,000 रुपए दिए जाएंगे। क्या है बीजेपी का पूरा प्लान, देखिए।

0: पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है। इस प्रदर्शन का बड़ा असर होता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं। फिर रांची में आंदोलन के शोले भड़कते हैं। छात्रों और नौजवानों की ताकत के आगे हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ता है।
1: सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है किन-किन परीक्षाओं को जांच करने का आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म्स का रद्द करने को लेकर और जांच को लेकर, बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है।
0: और फिर राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचते हैं और छात्रों से संवाद करते हैं।
2: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में।
0: ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि देश की राजनीति इस वक्त जेंजी यानी नौजवानों के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, नौजवानों की ताकत के आगे सब नतमस्तक है। और ऐसे में जब यूपी की चुनावी परीक्षा नजदीक है तो नौजवानों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। खबर है कि जेंजी को लेकर बीजेपी खास रणनीति बनाने में जुटी है। दिल्ली में अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की अहम बैठक हुई है। आधे घंटे की बैठक में जेंजी पर विशेष फोकस रहा।
3: चुनावी साल नजदीक है, ऐसे में अब राजनीतिक दलों को यह समझ आ चुका है कि केवल परंपरागत नारों से ही काम नहीं चलने वाला है। उन्हें मालूम पड़ गया है जेंजी का जो उबाल पूरे देश में इस वक्त देखने को मिला है अपने मुद्दों को लेकर, वो मामूली तो नहीं। और इसलिए बीजेपी अब अपनी यूथ विंग के जरिए स्कूल कॉलेजों में युवाओं से युवाओं के संपर्क कराकर संपर्क साधने जा रही है।
0: नौजवानों के साथ साथ बीजेपी महिला वोटरों को साधने की भी कोशिश में है। यूपी सरकार बड़ी आर्थिक सहायता योजना लागू करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने पर विचार हो रहा है। 20,000 रुपए की पहली किस्त चुनाव से पहले दे दी जाएगी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने का प्रस्ताव है। सरकार की प्राथमिकता में एससी, एसटी, बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं हैं। ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी योजना में शामिल करने पर विचार हो रहा है, जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है।
4: उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को या महिलाओं के वोट बैंक को साधने की तैयारी कर रही है। इसी वजह से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है, विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को दिया जाएगा। तो साफ तौर से उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है और ऐसे में इस विचार को माना जा रहा है कि एक अहम कड़ी भाजपा के लिए यूपी में साबित होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
5: एक और 11 में वक्त हो गया ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अगले कुछ साल में आपकी पसंद और बजट दोनों बदल सकते हैं। दरअसल सरकार की नई पॉलिसी का ड्राफ्ट बताता है कि आने वाले समय में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां महंगी पड़ सकती हैं, जबकि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को खरीदने पर पेट्रोल डीजल के मुकाबले कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसकी वजह 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले नए कैफे नियम है, जिसके बाद ऑटो कंपनियों की रणनीति एकदम बदल सकती है। इनका मकसद माइलेज बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन घटाना है। इससे ईवी, हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा। वहीं ज्यादा प्रदूषण वाली गाड़ियों पर कंपनियों को अतिरिक्त लागत उठानी पड़ सकती है। नई व्यवस्था में सरकार कार कंपनियों को साफ सुथरी तकनीक वाली गाड़ियां बेचने के लिए प्रोत्साहन देगी, जिसका फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंच सकता है। और एक ईवी बेचने पर कंपनी को कागजों पर 3 गाड़ियों के बराबर क्रेडिट मिलेगा। वहीं एक हाइब्रिड कार को 1.6 गाड़ियों के बराबर माना जाएगा, जबकि E85 और E100 फ्लेक्स फ्यूल कारों को भी अतिरिक्त छूट मिलेगी। दूसरी तरफ ज्यादा ईंधन पीने वाली गाड़ियां कंपनियों के लिए चुनौती बन सकती हैं। अगर तय उत्सर्जन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो अतिरिक्त क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक अगर किसी कंपनी का औसत कार्बन उत्सर्जन तय सीमा से ऊपर जाता है तो उसे क्रेडिट खरीदने होंगे। इस अतिरिक्त खर्च का असर कुछ मॉडलों की कीमत पर भी दिख सकता है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट की कीमत 2500 से 4500 रुपए प्रति ग्राम CO2 तक हो सकती है। ऐसे में कंपनियां ज्यादा क्लीन टेक्नोलॉजी वाले मॉडल लॉन्च करने पर जोर देंगी। नई पॉलिसी में तकनीक और माइलेज पर भी खास फोकस रखा गया है। इसका असर भविष्य की कारों के फीचर्स और परफॉर्मेंस दोनों पर दिख सकता है। इसके तहत 6 स्पीड या उससे ज्यादा गियर बॉक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और LED जैसी तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। उधर माइलेज मापने के लिए वैश्विक WLTP सिस्टम की तरफ भारत बढ़ेगा। वहीं E20 कारों के उत्सर्जन को 8% कम मानने का प्रस्ताव भी इस पॉलिसी में है। सरकार का मानना है कि इससे तेल आयात पर निर्भरता घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अच्छी बात है कि इन नियमों का असर पुरानी गाड़ियों पर नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम 1 अप्रैल 2027 के बाद बनने या आयात होने वाली नई यात्री गाड़ियों पर लागू होगा। साफ है कि आने वाले समय में कार खरीदने वक्त इंजन की ताकत से ज्यादा माइलेज, फ्यूल कॉस्ट और उत्सर्जन का हिसाब मायने रखने वाला है। इससे भारतीय ऑटो बाजार धीरे धीरे पेट्रोल डीजल केंद्रित मॉडल से निकलकर हाइब्रिड, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
3: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
4: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले,
3: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस। हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
2: रांची में दो दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
5: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है अध्यक्ष महोदय। जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद, उसके सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
2: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
6: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी, वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरना स्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग की?
7: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी, अब सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
2: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है, इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
8: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक रांची।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई लोकसभा, स्पीकर ओम बिरला ने किया ऐलान। सदन में मौजूद थे पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, परंपरागत चाय मीटिंग से भी गायब रहा विपक्ष। उत्तराखंड में खड़गे के मंच के शुद्धिकरण पर उठा सियासी तूफान, राज्यसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष, मेरा अपमान किया गया। नड्डा ने कहा सरकार कड़ी निंदा करती है, कराएंगे जांच। गर्मी और उमस भी नहीं तोड़ पाई रांची के आंदोलनकारी छात्रों के हौसले, पूर्व सीएम रघुवर दास बोले सरकार छात्रों की मांगे माने नहीं तो दूंगा धरना, 20 दिन से जारी है प्रदर्शन। फार्मेसी ऑफिसर बहाली परीक्षा में गड़बड़ी से इनकार करने वाली मान सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने लगाई भर्ती प्रक्रिया पर रोक, बीजेपी बोली क्यों चुप हैं जंतर मंतर से सवाल पूछने वाले। और जेन जी आंदोलन ने बदला सियासत का मूड, यूपी चुनाव में नौजवानों को टिकट देने पर काम कर रही है बीएसपी, बीजेपी का युवाओं पर फोकस, महिलाओं के खाते में पैसे भेजने पर भी चल रहा है काम।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत संसद के मानसून सत्र से जुड़ी खबर की। संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। क्यों? क्योंकि हंगामा जोरदार हुआ। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में कार्यवाही समाप्ति होने से पहले वंदे मातरम का गायन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित कई सांसद अपनी सीटों पर खड़े हुए। इसके साथ ही लोकसभा का मानसून सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। पूरे सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जबरदस्त वाला। खबर है कि सत्र के समापन के बाद पीएम के पारंपरिक चाय में जो चाय पी जाती है, उस दौरान सब लोग होते हैं, उसमें विपक्ष का कोई नेता पहुंचा ही नहीं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मौसमी, पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे को ललकारते दिखे संसद में, और उसके बाद चाय पार्टी में भी कोई नहीं पहुंचा विपक्ष से।
1: जी लगभग मुझे लगता है कि 14 साल पहले हमने ये देखा था 2012 में, किस तरीके से पूरा मॉनसून सत्र धुल गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर लोकपाल बिल को लेके जो हंगामा बरपा था, तो पूरा सत्र धुल गया था। या फिर उससे पहले 2G स्कैम के दौरान 2010 में ऐसा देखा गया था। और इस तरीके से कई बार ऐसा हुआ है कि एक मुद्दे ने इतना तूल पकड़ लिया है कि अहम की लड़ाई छिड़ गई हो। आप कल्पना कीजिए कि 19 दिन का था, 19 बिल पास हो गए कुछ मिनटों में, चंद मिनटों में ये बिल पास हो गए। किसी भी बिल पर गहनता से चर्चा नहीं हो पाई, सिर्फ एंटी चीटिंग लॉ अमेंडमेंट बिल जो है उसी पे चर्चा हो पाई। उसमें भी राहुल गांधी का जबरदस्त के भाषण पर जबरदस्त हंगामा बरपा। और अब आप देख रहे हैं कि जो लोकसभा की औपचारिक, स्पीकर साहब की जो औपचारिक सेरेमोनियल चाय होती है, उसका बायकॉट कर दिया है विपक्ष ने। कोई नेता वहां पे नजर नहीं आ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री और तमाम नेता शिरकत करते हैं। पिछली सत्र में हमने देखा था प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री आपस में बातचीत कर रहे थे, तमाम विपक्ष के नेता मौजूद थे, लेकिन इस बार ही नजर नहीं आ रहे हैं। और जाहिर तौर पे यमुना में बहुत पानी बह गया, बहुत समय निकल गया और बहुत ज्यादा खटास बढ़ गई है मानसून।
0: और खटास वो जहां पर साफ दिख भी रही है, और ये अच्छी भी नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा की कार्यवाही तो आपने देखी, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी अपनी रैली के मंच के शुद्धिकरण का आरोप लगाया कि जहां पर पहुंचे वहां पर शुद्धिकरण किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में उनकी रैली के मंच का बीजेपी के लोगों ने शुद्धिकरण किया।
2: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।
3: बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे।
0: तो संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद का मकर द्वार हर दिन प्रदर्शन का गवाह बना। नीट पेपर लीक के अलावा अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा छाया रहा। अब आज विपक्ष ने फिर से चंदा चोरी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया मकर द्वार पर।
4: एक तरफ जहां पे चर्चा हो रही है नीट पर, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार जो धरना प्रदर्शन करती नजर आ रही है, वो पीछे आपको नजर आएंगे। यहाँ पे डिंपल यादव भी रोज आती हैं और दान पात्र में चंदा दिया जाता है। ये समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट है और ये दूसरा बड़ा मुद्दा है जिस पर विपक्ष बात करता है। जिस दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट चालू हुआ है, यही तस्वीरें नजर आती है, डिंपल यादव भी नजर आती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठकर ये देखा जाता है कि पैसा जो है वो कितना इकट्ठा हुआ है। ये दूसरा वो प्रदर्शन है जो रोज देखने को मिलता है। एक प्रदर्शन तो होता है नीट पर, जिसपे की सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं, लेकिन अलग से क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि अयोध्या में जिस तरीके से चंदा चोरी का पूरा मसला सामने आया उनके लिए वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, इसीलिए यहां पर रोज इस तरीके से दानपात्र में जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो जया बच्चन हो चाहे वो डिंपल यादव हो, वो सभी लोग दानपात्र में सबकी आंखों के सामने पैसा डालते हैं और इस पैसे की गिनती होती है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये जो पैसा है इसको इकट्ठा किया जाएगा और सही में राम मंदिर के अंदर दिया जाएगा और राम मंदिर का जो कार्य है उसके लिए इस पैसे को इकट्ठा किया गया है। समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
0: और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। क्यों? क्योंकि जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा हो चुकी है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, अब राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। यानी कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि मानसून का सत्र निलबटे सन्नाटा, आप ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों की जब बात होती है तो वहां पर नहीं हुई, ना लोकसभा में हुई ना राज्यसभा में हुई। क्यों? क्योंकि यहां पर पक्ष और विपक्ष का हंगामा होता रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी आवाज उठाते रहे तो उधर से जेपी नड्डा राज्यसभा में, क्योंकि नेता पक्ष है जेपी नड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे, तो सदन की कार्यवाही फिर से हंगामे की भेंट और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, लोकसभा के बाद राज्यसभा। और आइए अब बात झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड में छात्रों के आंदोलन की करते हैं। रांची में छात्रों के धरने का आज कौन सा दिन है? 20वां। और छात्र धरने पर डटे हुए हैं। छात्रों का यह कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगे मानी नहीं जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और अब तक सरकार की तरफ से वार्ता को लेकर कोई नया प्रस्ताव नहीं आया है, इसलिए अब आंदोलन के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म्स को लेकर के छात्रों का आंदोलन आज 20वें दिन भी जारी है। छात्रों की संख्या भले ही कभी कम होती है कभी बढ़ जाती है, लेकिन इरादे मजबूत हैं। वहीं सरकार दूसरी तरफ वार्ता की कोई पहल नहीं कर रही है। हालांकि अभी छात्र जो यहां बैठे हैं धरने पर, जिसमें कई छात्र 10वें दिन हंगर स्ट्राइक में पहुँच चुके हैं, उन छात्रों का ये कहना है कि सरकार अगर वार्ता के लिए आती है तो हम बातचीत करेंगे। अभी भी छात्रों की वही पुरानी मांग है कि एक सीजीएल की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए और साथ ही साथ सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं दूसरी तरफ सरकार को यह लग रहा है कि अगर समय लंबा खींचेगा तो छात्रों का आंदोलन कमजोर पड़ सकता है, लेकिन यहां इरादे मजबूत हैं और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र अभी भी अपने मांगों के समर्थन में जमे हुए हैं।
0: तो धरने का 20वां दिन है। अब छात्रों के आंदोलन को देखते हुए रांची में सीएम हेमंत सोरेन के घर के बाहर किले में तब्दील कर दिया गया है, इतनी सुरक्षा कर दी गई है। ये देखिए आप, मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, पूरे इलाके में जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है। सरकार को डर है कि छात्र फिर से मार्च कर सकते हैं, इसीलिए कई लेवल की बैरिकेडिंग मुख्यमंत्री आवास के बाहर कर दी गई है ताकि भीड़ यहां एकजुट न हो।
6: झारखंड में छात्रों के आंदोलन का 20वां दिन है, लेकिन 19वां दिन बीतते बीतते दरअसल कुछ इलाकों को पूरी तरह सुरक्षा के किले में तब्दील कर दिया गया है। ये मुख्यमंत्री आवास है हेमंत सोरेन का, और देखिए कड़ी सुरक्षा ही नहीं बल्कि बैरिकेडिंग के चलते पूरे इलाके को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास का यह प्रमुख प्रवेश द्वार है, लेकिन जैसे ही आप इसके जो बाउंड्री है, जो मुख्यमंत्री आवास का परिसर है उसकी जो बाउंड्री है, उस पर भी भारी बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग के चलते इस पूरे इलाके को भारी सुरक्षा में तब्दील कर दिया गया है। छात्रों के विधानसभा मार्च के बाद हमने तस्वीरें देखी थी और कुछ इस तरह की बैरिकेडिंग आगे 500 मीटर के पूरे रास्ते पर सड़क के दोनों तरफ कर दी गई है। इलाके में सुरक्षा को देखते हुए कहीं प्रशासन को यह अंदाजा तो नहीं कि छात्र एक बार फिर कहीं विधानसभा मार्च के बाद अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर, और ऐसी संभावनाओं को देखते हुए पूरे इलाके को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे, हालांकि अब वैसा समर्थन नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र हैं जो डटे हुए हैं कि जब तक जेएसएससी सीजीएल विड्रॉ नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, और उनके आंदोलन को देखते हुए अब मुख्यमंत्री आवास को एक किले में तब्दील कर दिया गया है।
0: 12:12 रिपोर्टर में अब रिपोर्ट पंजाब से है। पंजाब और हरियाणा सरकार ने फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक भी लगा दी है। अब विपक्ष से पेपर लीक का मुद्दा बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह महज नकल का मामला है।
7: पेपर लीक विवाद में घिरी पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फार्मेसी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट पर रोक लगा दी है और ये रोक जो है अगली तारीख 17 सितंबर तक लगाई गई है। जी हाँ, क्योंकि ये पूरा फार्मेसी ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था, ये विवादों में घिर गया था और क्योंकि पंजाब पुलिस ने ये क्लेम किया था इसमें मास चीटिंग हुई है, हाईटेक जो है गैजेट्स यूज किए गए हैं चीटिंग करने के लिए, लेकिन ऑपोजिशन लगातार कह रहा था कि ये पेपर लीक का मामला है। इस सभी के बीच में एक रिट पटिशन जो है हाईकोर्ट में डाला गया था और कहा गया था कि इस पेपर को कैंसिल किया जाए। जब ये हाईकोर्ट इस पूरे रिट पटिशन को सुन रहा था तो उन्होंने अब इस भर्ती प्रक्रिया पर, फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि पंजाब सरकार ने अभी रिप्लाई फाइल नहीं किया और तभी 17 सितंबर तक ये जो रोक है वो लगी रहेगी और 17 सितंबर को ये दोबारा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सो पंजाब सरकार जो कि लगातार घिरी हुई है, ऑपोजिशन जो है डिमांड कर रही है एक्शन क्योंकि और कह रही है कि ये पेपर लीक का मामला है, लेकिन सरकार जो है लगातार अपने बचाव में इसको चीटिंग का मामला कह रही है। लेकिन सबके बीच में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर, वो एक पंजाब सरकार के लिए बड़ा झटका जो है माना जा रहा है।
0: और अगली रिपोर्ट 12 बजे 12 रिपोर्टर में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है। यूपी के हमीरपुर में आज की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूली छात्रों के डीएम ऑफिस पर धरने के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया। आज तक ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, अब इसके बाद क्या हुआ? हमीरपुर के चंदूपुर गांव में प्रशासन के आला अफसर पहुंचे और जमीनी हकीकत को परख लिया।
8: आज तक की खबर का असर हुआ है। हमीरपुर के सरकारी स्कूल में पहली दुर्व्यवस्था को लेकर अधिकारी जागे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले बच्चे और अभिभावक हाथ में तिरंगा लेकर 5 किलोमीटर की यात्रा कर अपनी ही हर घर तिरंगा यात्रा निकाल एक तरीके से डीएम कार्यालय पहुंच गए थे। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। आज तक ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, प्रशासन से विभाग से सवाल किए। अब आज तक की खबर के बाद प्रशासन और विभाग हरकत में आया और पहुंचा उस स्कूल के पास जहां दावा है कि आजादी के बाद से आज तक सड़क ही नहीं बनी। नतीजा, बारिश के मौसम में कीचड़ होने के चलते छोटे छोटे बच्चों का स्कूल जाने में दिक्कत, एम्बुलेंस का आना मुश्किल, अस्पताल में मरीज का पहुंचना मुश्किल। इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे गांव वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। अधिकारियों ने पहुंचकर उनसे उनकी समस्याएं जानी हैं, आश्वासन दिया है सड़क निर्माण का।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश से। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने वक्फ बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को एक ज्ञापन दिया और दावा किया कि 70,000 से अधिक वक्फ संपत्तियां गायब हो गई। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन ने तो वक्फ घोटाले के सबूत भी अफसरों को सौंपने का दावा किया है।
9: उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां किस तरीके से गायब है, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने संगीन आरोप लगाया है और एसआईटी की जांच को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को मिलकर ज्ञापन भी दिया है। साफ तौर से अगर माने तो तकरीबन 2 लाख सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में संपत्तियां दर्ज थी, जिसमें तकरीबन मान के चले तो 73,000 संपत्तियां गायब है, इसका दावा किया गया है मोहसिन रजा की तरफ से। अब 1 लाख तकरीबन 23,000 के आसपास ही उसमें जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो दर्ज हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि ये संपत्तियां गई कहां। हालांकि दावे के मुताबिक कई बिल्डर कई ऐसे इलीगल तरीके से सपा काल में इनका ना ही ऑडिट कराया गया और ना ही किसी प्रकार का इनको आगे बढ़ाया गया, जिसके चलते ये माफिया और अन्य जो बिल्डर्स हैं उन्होंने अपने नाम ये संपत्तियां कर ली। अब इसको लेकर जांच की बात कही जाती है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर ज्ञापन भी दिया गया है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट, नवंबर 2025 में लाल किला हमले से जुड़े नए खुलासे की है और पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी अरविंद ओझा।
10: दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार बम धमाके में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दिल्ली के लाल किले के बाहर जो बम धमाका हुआ था वो अलकायदा की विंग AQIS यानी अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट ने करवाया था। आपको बता दें कि 10 नवंबर 2025 को लाल किले के बाहर एक कार में धमाका हुआ था। जांच के बाद पता चला था कि कार में MBBS डॉक्टर उमर नबी बैठा हुआ था, जो एक बड़े डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। इस बम धमाके में 20 लोग घायल हुए थे, 11 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस रिपोर्ट में अलकायदा को जिम्मेदार बताते हुए यह बताया गया है कि अब अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट छोटे छोटे स्लीपर सेल बनाकर इस तरह के बम धमाकों को अंजाम दिलवा रहा है।
0: देखिए, बात हो रही लाल किले बम धमाके की, और 15 अगस्त में 2 दिन बाकी हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, और आज 15 अगस्त के कार्यक्रम का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया जो आपके सामने है। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली और दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई।
9: 15 अगस्त की तैयारी को लेकर के दिल्ली में ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर अभी से ही करीब करीब बंद कर दिए गए हैं। कल यानी 12 अगस्त को रात 10 बजे से लेकर के 13 अगस्त सुबह 1:30 बजे तक दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली फरीदाबाद एक्सप्रेसवे भारी वाहनों के लिए बंद रखा गया है। और यही सेम प्रोसीजर जो है ये 14 अगस्त को रात 10 बजे से भी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा 10 बजे से लेकर के जब तक 15 अगस्त का फंक्शन खत्म नहीं हो जाता तब तक सारे भारी वाहनों का दिल्ली के अंदर आना पूरे तरीके से वर्जित कर दिया गया है। सिर्फ वही वाहन दिल्ली के अंदर या वही भारी या कमर्शियल वाहन दिल्ली के अंदर आ पाएंगे जिनमें इमरजेंसी गुड्स हो या मेडिकल इमरजेंसी व्हीकल्स हो, सिर्फ उन्हें ही दिल्ली के अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। जिस तरीके से 15 अगस्त को लेकर कई सारे अलर्ट आए हैं, दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया है कि दिल्ली में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरी तरीके से पुख्ता हो। अब ये देखना है जब 15 अगस्त 2 दिन बाद दिल्ली में मनाया जाएगा तो किस तरीके से दिल्ली की पुलिस प्रशासन ये सुनिश्चित करती है कि पहली जो है कि सुरक्षा पूरी तरीके से पुख्ता रहे, और इसके अलावा दिल्ली के लोगों को और आम कम्यूटर्स को कम से कम दिक्कत हो।
0: नहीं, देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर से हमारे सहयोगी अशरफ वानी की रिपोर्ट।
11: पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को काफी सख्त कर दिया गया है। शहरों से लेकर गांवों तक और मैदानों से लेकर नियंत्रण रेखा तक सुरक्षा काफी चौकस कर दी गई है। दरअसल 15 अगस्त से पहले आतंकी किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में है जो खुफिया जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में मिली है। इसी के चलते श्रीनगर शहर के साथ साथ बाकी शहरों और कस्बों में चलने वाले लोगों के साथ साथ वाहनों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे तो पहले ही कश्मीर के शहरों के साथ साथ गांवों और कस्बों में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर एक गतिविधि पर सीसीटीवी के साथ साथ सुरक्षा बलों की तरफ से निगरानी रखी जा रही है। अशरफानी, श्रीनगर आज तक।
0: तो 15 अगस्त से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, और इस अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी अपने घर पर तिरंगा लहरा दिया।
12: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है, और ये पिछले काफी सालों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने इस पूरे अभियान को एक कैंपेन बना दिया, और इसी के मद्देनजर आज बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो अपने घर पर तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि इनके साथ साथ कई ऐसे सांसद हैं जो अपने घर पर तिरंगा फहरा रहे हैं। सरकार का ये अभियान दरअसल इसलिए चल रहा है ताकि देश भर में तिरंगे को लेकर लोगों में जागरूक पैदा की जाए। भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है वो झंडा यहां पर फहराया जा रहा है। भारत माता की जय के नारे भी यहां पर लगाए जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा। सो ये वो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जहां पर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री इस वक्त अपने घर पर तिरंगा फहरा रहे हैं। और ना सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि कई केंद्रीय मंत्री, कई बीजेपी के सांसद और कई नेता आपको इसी तरह से अपने घर पर तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे। ये पूरा कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में चल रहा है।
0: वक्त चला, बहुत छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: मैनकाइंड फार्मा, दिल से स्वदेशी, जान हिंदुस्तान।
1: In association with
2: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 and

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: मैनकाइंड फार्मा, दिल से स्वदेशी, जान हिंदुस्तान।
1: In association with
2: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज

0: चलिए अब लिए चलते हैं यूपी एक्सप्रेस वे पर। यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अमित शाह से मुलाकात, यूपी चुनाव रणनीति पर मंथन, जेनजी को लेकर बीजेपी की तैयारियों और 2027 चुनाव के रोडमैप पर चर्चा। बीएसपी की जेनजी पर नजर, 2027 चुनाव के लिए युवा चेहरों पर दाव, मायावती का युवाओं को समर्थन, आकाश आनंद को जेनजी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी। मायावती का एफसीआरए बिल पर सरकार विपक्ष दोनों पर निशाना, बोली बिल का राजनीतिकरण हुआ, विपक्ष को चर्चा के दौरान संसद चलने देनी चाहिए थी। कानपुर में बीजेपी का वीर सम्मान अभियान, युद्ध वीरों के घर पहुंचे के कार्यकर्ता, स्वतंत्रता दिवस से पहले पूर्व सैनिकों का सम्मान, उनकी वीर गाथाएं सोशल मीडिया पर भी होंगी साझा। मुजफ्फरनगर दंगा केस में 25 बीजेपी नेताओं और हिंदू कार्यकर्ताओं पर मुकदमा वापस, कोर्ट ने दी अभियोजन की केस वापसी की अर्जी को मंजूरी। अयोध्या राम मंदिर सीईओ चयन के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी, 35 सवालों से प्रशासनिक क्षमता, भीड़ प्रबंधन, बड़े आयोजनों का अनुभव परखा गया। राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में फिर बदलाव, अब बिना सिले वस्त्र पहनेंगे पुजारी, धार्मिक समिति ने संतों के प्रस्ताव को मंजूरी दी। योगी सरकार का एंटी लैंड माफिया अभियान जारी है, अब तक 84,005 हेक्टेयर जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। सीधे लिए चलते हैं आपको किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और किस मुद्दे पर वो अब अपनी बात रखेंगे इस पर जरूर बात की जाएगी। हालांकि संसद में जो कुछ हुआ, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री हैं तो ऐसे में हो सकता है कि संसद में जो गतिरोध की स्थिति बनी रही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, उस पर किरण रिजिजू अपनी बात रख सकते हैं। विपक्ष अड़ा रहा अमित शाह के बयान पर, पैलेट गन किसने चलाई और पैलेट गन अगर अमित शाह ने चलवाई या फिर उन्होंने ऑर्डर दिया तो उस पर उनका इस्तीफा होना चाहिए, ऐसा विपक्ष की तरफ से मांग थी। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री और सत्ता पक्ष की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा था कि अमित शाह अपनी बात रखने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई और पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। सिर्फ हंगामा हुआ, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा हुआ, फिर स्थगित हो गई और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस संसदीय कार्य मंत्री की।
1: औपचारिक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय का प्रेस वार्ता में स्वागत है। मानसून सेशन का अंतिम आज हम लोग यहाँ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मिल रहे हैं। हमारे साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय के दोनों साथी अर्जुन राम मेघवाल जी, एल मुरुगन जी, सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स निकुंज ढल जी, एडिशनल सेक्रेटरी सत्य प्रकाश जी और हमारे जितना बाकी ऑफिशियल्स हैं और मीडिया बंधुओं, मानसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। हम दो तरीके से देखते हैं, बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा, कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा के दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%, राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीस ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया, तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मानसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस, एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्जाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं, उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। एक जो हमारा नोटिस में आया है, मैंने कल भी कहा था, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है, अभी लगभग 3 दशक होने वाले हैं, 30 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, मैं बहुत बूढ़ा आदमी भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहाँ ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं, ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ओपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और लेजिस्लेचर में सिर्फ आपस में डिबेट डिस्कशन होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर में सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया, और डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है कि ओपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपी अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लैकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं, तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर पर पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। तो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते कांग्रेस के जो विशेष करके नए एमपी है उनके लिए मेरा दिल से मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए मुझे खराब लग रहा है। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूं, कांग्रेस के एमपीओं का दर्द मैं समझ सकता हूं, कैसे सीखेंगे अगर डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तो। इसलिए जो सीनियर है उसको तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन नए एमपीज को अच्छा डिस्कशन डिबेट का मौका नहीं मिला, गलती कांग्रेस पार्टी की ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जब हम विंटर सेशन के लिए मिलेंगे, शीतकालीन सत्र के लिए फिर मिलेंगे, तो कुछ अच्छा सोच समझ के साथ बदलाव होगा, मैं उम्मीद रखता हूं। ये सत्र में आप लोगों ने बहुत कवरेज दिया, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग बहुत क्रिटिकल होता है डेमोक्रेसी में। एक ज़माने में मैंने देखा, हम लोग जब नए नए एमपी बने थे, सुबह से लेकर के देर रात तक गैलरी में बैठते थे न्यूज़ वाले, उस समय तो लाइव टीवी नहीं थे और वो सोशल मीडिया नहीं थे, तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग मीडिया का इतना तगड़ा था कि अगले दिन हमारा क्या रिपोर्टिंग होगा, अब तो हेडलाइन का तलाश में सब चले गए हैं। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग डिबेट डिस्कशन का जो कोर इश्यू है, उससे भी एमपीज भी बहुत दूर हो गए हैं। तो आप लोगों का सहयोग मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस बार काफ़ी जो गतिविधि में मीडिया ने कोई ऐसा चीज़ नहीं किया जिससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचे, तो इसलिए मैं सारे मीडिया फ्रेंड्स को भी तहे दिल से मैं शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए आज तक। हाँ, 11 बिना चर्चा के पारित हुए, एक चर्चा हुए, टोटल बिल 12, लोकसभा में एक बिल में चर्चा हो पाई और 11 में चर्चा नहीं हो पाए। राज्यसभा में पूरा बिल पे चर्चा हुई। सिर्फ ओपोजिशन के प्रमुख कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग भाग नहीं लिया और कुछ ओपोजिशन पार्टी हिस्सा लिया। बात में बताएगा
2: सर, डिलिमिटेशन को लेकर
1: नहीं, अभी भविष्य का बात अभी मत पूछिए, उसके लिए मैं अलग से आप लोगों से वार्ता करूंगा।
2: वर्तमान में जियो,
1: हम वर्तमान में जीने वाले लोग हैं।
2: हाँ,
1: नहीं नहीं, आप भविष्य का सवाल पूछ के आज के महत्व को खत्म कर रहे हैं। आप छपेगा ही नहीं आज का, फिर आप फिर वो छपेगा।
3: अच्छा,
1: हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, तो हंगामा करके बात करो ना। तो ऑपोजिशन तो बात करते थे ना, तो ये लोग ऑपोजिशन करके डिस्कशन से भागते हैं, ये फर्क है, समझ गए ना। मैं करूँगा फिर, ये तो विषय दही बाट होता
4: है। थैंक यू।
0: डिस्कशन से भागता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया था कि प्रोडक्टिविटी कितनी रही लोकसभा की और राज्यसभा की। राज्यसभा में हर मुद्दे पर, हर विषय पर चर्चा हुई, हालांकि वहां पर भी कुछ जगह पर हंगामा हुआ, लेकिन लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। 12 बिलों में से बताया गया कि 11 पारित हुए, 12 पारित हुए, लेकिन एक पर सिर्फ चर्चा हो पाई, बाकी नहीं हुई, क्योंकि विपक्ष बातचीत को तैयार नहीं था। और अब देखते हैं योगी का चुनावी यज्ञ। यूपी में

0: तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनावी प्लान जेन जी पर अब शिफ्ट कर दिया। यहां एक तरफ राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं को अपनी ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी क्या किया है, जेन जी को लेकर कई रणनीतियों पर चर्चा और मंथन शुरू कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जेन जी के जरिए यूपी की सत्ता में वापसी के लिए हथियार अब वो बना रही है। सियासी पार्टियों को मैसेज बहुत क्लियर है, जहां जेन जी वहां पलड़ा भारी।
1: किसान का बेटा हूं सर, ये महीना का 10 से 15 हजार रुपए खर्चा होता है सर।
2: जेन जी के सहारे देश के चुनाव सारे, चुनाव की दस्तक, सबको जेन जी की याद आई। जेन जी का साथ आएगा, सबको चुनाव जितवाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन जी ने जो दम दिखाया था, उसने देश की सभी पार्टियों के सभी चुनावी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। और सियासी पार्टियों को अब जेन जी की ताकत का एहसास हो गया है। इसीलिए चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या यूपी की सत्ता में विराजी बीजेपी हो, सभी ने अब जेन जी पर अपना पॉलिटिकल सिस्टम शिफ्ट कर दिया है। यूपी की चुनावी बिसात में अपना दाव चलने के लिए राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेन जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
3: मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
2: राहुल गांधी के प्रयागराज में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद बीजेपी ने भी अपना फोकस जेन जी पर शिफ्ट कर दिया है। युवाओं को लेकर तैयारियों का रोडमैप लेकर बैक टू बैक दिल्ली में मीटिंग की जा रही है। सीएम योगी के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और युवाओं से जुड़ी योजनाओं पर मंथन किया। वहीं से पहले ही यूपी में योगी सरकार और बीजेपी ने जेन जी संवाद के लिए कैंपेन शुरू किया है, जिसमें योगी सरकार के मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेन जी चौपाल कर रहे हैं।
4: संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के।
2: जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस जेन जी को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही, वहीं समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी। अखिलेश यादव ने यूपी के मुद्दों को जंतर मंतर से लेकर संसद तक सामने रखा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा।
5: मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
2: यूपी के चुनावी रण में खुद को पिछड़ता देख अब बहुजन समाज पार्टी भी जेन जी को लेकर माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेन जी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी गई है और आकाश आनंद ने सीधे सरकार के साथ साथ अखिलेश यादव को अंकल बना दिया।
5: मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े
6: अखिलेश भैया,
5: अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं।
2: तो साफ है कि यूपी में 2027 के चुनाव को देखते हुए सियासी पार्टियां जेन जी को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
0: जेन जी की बात हो रही है तो हम आपको बताते हैं देश भर में सब पर जेन जी की नजर आखिर क्यों है, तो उसके पीछे का एक कारण हम आपको बताते हैं और वो यहां पर हम आपको समझाएंगे। देखिए, देश भर में 22.78% है जेन जी की आबादी, यानी कितने, 1829 साल के। अब उसमें भी उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव है, 21.19% जेन जी जो वोट करेंगे। उत्तराखंड में 22.18%, हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कितने हैं 21.19%, गुजरात में 23.32% और पंजाब में 21.44%। तो चुनाव जहां है वहां पर आप सोचिए कि क्या तैयारी जेन जी को लेकर की जा रही है। तो अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के जेन जी प्लान की हम बात कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान विधानसभा चुनाव, राज्य की राजनीतिक स्थिति और जेन जी मतदाताओं को लेकर बीजेपी की रणनीति पर चर्चा हुई। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से युवाओं खासकर जेन जी मतदाताओं को साधने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। हाल के दिनों में जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष जिस तरह से आक्रामक नजर आ रहा है उसके जवाब में बीजेपी की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई और ये माना जा रहा है कि युवाओं के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने, उन्हें सीधे जोड़ने के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से हम आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारियां यहां पर चल रही हैं। 2027 के चुनाव की बात की जा रही है, बीजेपी का मेगा प्लान, अमित शाह से कौन मिला है, केशव प्रसाद मौर्य, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर यहां पर चर्चा की गई क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है। जेन जी को विपक्ष की रणनीति पर भी मंथन हुआ क्योंकि विपक्ष भी जेन जी को साधने में लगा हुआ है। राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक समीकरण पर यहां पर बात की गई है इन दो लोगों के बीच में। अमित शाह से केशव प्रसाद मौर्य मिले तो जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बातचीत की गई कि जनता तक पहुंचना है और कोशिश ये करनी है कि हर ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता तक अपनी बात पहुंचाई जा सके कि जनता के लिए क्या किया है। अब संसद के मानसून सत्र की बात कर रहे हैं जहां शराबा चोरी के मुद्दे पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। सपा सांसद आज भी पार्लियामेंट में दान पेटी लेकर पहुंचे, चंदा इकट्ठा किया, तस्वीरें आपके सामने है, धर्मेंद्र यादव आपको दिख रहे हैं।
7: एक तरफ जहां पे चर्चा हो रही है नीट पर, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार जो धरना प्रदर्शन करती नजर आ रही है वो पीछे आपको नजर आएंगे। यहाँ पे डिंपल यादव भी रोज आती हैं और दान पात्र में चंदा दिया जाता है। ये समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट है और ये दूसरा बड़ा मुद्दा है जिस पर विपक्ष बात करता है। जिस दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट चालू हुआ है यही तस्वीरें नजर आती है, डिंपल यादव भी नजर आती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ कर ये देखा जाता है कि पैसा जो है वो कितना इकट्ठा हुआ है। ये दूसरा वो प्रदर्शन है जो रोज देखने को मिलता है। एक प्रदर्शन तो होता है नीट पर जिसपे की सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं, लेकिन अलग से क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि अयोध्या में जिस तरीके से चंदा चोरी का पूरा मसला सामने आया उनके लिए वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, इसीलिए यहां पर रोज इस तरीके से दान पात्र में जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो जया बच्चन हो चाहे वो डिंपल यादव हो, वो सभी लोग दान पात्र में सबकी आंखों के सामने पैसा डालते हैं और इस पैसे की गिनती होती है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो पैसा है को इकट्ठा किया जाएगा और सही में राम मंदिर के अंदर दिया जाएगा और राम मंदिर का जो कार्य है उसके लिए इस पैसे को इकट्ठा किया गया है। समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों के लिए यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
0: यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहें आज तक के साथ।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में भरा पानी। भारी बारिश के बाद पार्किंग एरिया में जमा पानी। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में पानी भरने का वायरल वीडियो जैसे ही सामने आया, विपक्ष ने सरकार को घेरने में वक्त नहीं लिया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी, जहां बीजेपी सरकार वहां महाभ्रष्टाचार। अखिलेश यादव के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बना और पहली बारिश में ही मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की पोल खोलता नजर आया। जहां एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभालकर आधे घंटे में पार्किंग से पानी निकालकर स्थिति को सामान्य कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बयान जारी कर कहा कि ज्यादा बारिश होने की वजह से पार्किंग एरिया के रास्ते में पानी भर गया था, जिसे तुरंत कार्रवाई करते हुए 30 मिनट से कम वक्त में हटा दिया गया। इस दौरान ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से भेजा गया और किसी भी फ्लाइट में कोई रुकावट नहीं आई।
1: सवाल तो ये है कि इतने ज्यादा लागत से बना यह एयरपोर्ट, लगभग 11,000 करोड़ की लागत से बना यह एयरपोर्ट, अगर पहली बारिश, तेज बारिश में वहां पानी भर जाता है, तो ये कमी मॉनसून की है या झोल इंफ्रास्ट्रक्चर में है या उसके निर्माण में है, ये अपने आप में एक सवाल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
0: सोशल मीडिया पर पार्किंग में भरे पानी का वीडियो वायरल होने के बाद अब एयरपोर्ट परिसर में जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और बेहतर मौके की उम्मीद लगाए बैठे प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर आई है। लंबे समय से सुस्ती झेल रहे व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट में फिर से तेजी लौटती दिखाई दे रही है। खासकर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेक्टर्स में कंपनियां तेजी से नई हायरिंग कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में देश में व्हाइट कॉलर हायरिंग में सालाना आधार पर 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते महीने जॉब स्पीक इंडेक्स बढ़कर 3,227 पर पहुंच गया, जो पिछले साल जुलाई में 3,074 था। इस दौरान AI और मशीन लर्निंग से जुड़े रोल्स में 33% की सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं IT और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े पदों में 23% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में हायरिंग 6% बढ़ी है। दरअसल बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कंपनियों का फोकस ऐसे स्किल्स पर है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। यही वजह है कि AI, डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में हायरिंग 10%, रियल एस्टेट सेक्टर में 8%, IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में 6% बढ़ी, लेकिन टेलीकॉम, बैंकिंग, फार्मा और एजुकेशन सेक्टर्स में बढ़ती की रफ्तार धीमी रही। हालांकि टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों में आई इस तेजी ने जॉब मार्केट को नई ऊर्जा देने का काम किया है। दिलचस्प बात है कि इस रिकवरी का फायदा अनुभवी प्रोफेशनल्स के साथ फ्रेशर्स को भी मिल रहा है, जिनकी हायरिंग जुलाई में 6% बढ़ी है। वहीं कई शहरों में भी हायरिंग की रफ्तार तेज हुई है और बीते महीने कोलकाता में हायरिंग 17%, हैदराबाद में 16%, चेन्नई में 11% और बेंगलुरु में हायरिंग में 8% की ग्रोथ देखी गई। वहीं मुंबई और दिल्ली में हायरिंग का स्तर लगभग स्थिर रहा। उधर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यानी GCCS में भर्तियां 5% बढ़ी हैं। यानी कंपनियां अनुभवी टैलेंट के साथ फ्रेशर्स को भी अपने साथ जोड़ने पर जोर दे रही हैं। जुलाई के आंकड़े संकेत देते हैं कॉर्पोरेट भारत में भर्ती गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। हालांकि सभी सेक्टर्स में एक जैसी तेजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल स्किल्स से जुड़े क्षेत्रों ने जॉब मार्केट की रफ्तार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आदित्य के राणा आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

रिजू बोले काम के नजरिए से अच्छा रहा सेशन, लेकिन विपक्ष की वजह से नहीं हुई चर्चा। उत्तराखंड में खड़गे के मंच के शुद्धिकरण पर उठ रहा है सियासी तूफान। राजसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष, SC हूं इसलिए मेरा अपमान किया गया। नड्डा ने कहा निंदा करते हैं, जांच कराएंगे। रांची में विधानसभा तक प्रदर्शन के मामले में करीब 600 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 100 नामजद केस। सीएम सोरेन के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा, बीजेपी हमलावर। आंदोलन ने बदला सियासत का मूड, यूपी चुनाव में नौजवानों को टिकट देने पर काम कर रही है BSP। बीजेपी का युवाओं पर फोकस, महिलाओं के खाते में पैसे भेजने पर चल रहा है काम। पाकिस्तान में आज गदर की तैयारी, इमरान खान के जिंदा या मुर्दा होने की अटकलों के बीच तहरीक इंसाफ की धमकी, कहा इमरान से मिलने दो वरना रात तक पूरे मुल्क को बना देंगे डी चौक।

हंगामे की भेंट चढ़ा मॉनसून सत्र, इंडिया ब्लॉक का विरोध प्रदर्शन आमने सामने आए। इंडिया ब्लॉक और एनडीए के सांसद मकर द्वार पर हो रही है नारेबाजी। इंडिया ब्लॉक वर्सेस एनडीए, विपक्षी सांसदों के हाथ बंदर के पुतले, जमकर नारेबाजी। खड़गे बोले आखिरी दिन चर्चा के लिए हुए तैयार, 20 दिन से क्या कर रहे थे गृहमंत्री। हल्द्वानी में खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने बताया दलित विरोधी मानसिकता। राज्यसभा में खड़गे ने उठाया मुद्दा हल्द्वानी शुद्धिकरण पर, राज्यसभा में खड़गे नड्डा आमने सामने। खड़गे बोले मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करें। हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद पर नड्डा का बयान, बोले बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है, ये हमारे लिए दुखद है। संसद के मॉनसून सत्र का समापन, लोकसभा के बाद राज्यसभा भी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन हंगामा, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा पूरे सत्र में 12 बिल पास, सिर्फ एक पर हुई चर्चा। रिजिजू ने कहा चर्चा से भागे विपक्षी सांसद, नारेबाजी के लिए आए सदन। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले मॉनसून सत्र में लोकसभा के सिर्फ 19% काम हुआ। संसद में पीएम मोदी से मिले गृहमंत्री, अहम मुद्दों पर चर्चा। झारखंड विरोध प्रदर्शन का आज 20वां दिन, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और कथित परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड लाठीचार्ज के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, 1200 विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की सरकार को चेतावनी, सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे भूख हड़ताल। छावनी में सीएम सोरेन का आवास, पूरे इलाके की किलेबंदी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र अब भी डटे, विधानसभा मार्च मामले में 600 प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर दर्ज। कांग्रेस ने 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, बैठक में देश के छात्रों और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। सोनिया गांधी वोटर लिस्ट केस, एफआईआर की मांग पर कोर्ट का आदेश टला, 29 अगस्त का होगा फैसला। जंतर मंतर का सीजन 2 जल्द, सड़क पर फिर आंदोलन की तैयारी। सीजेपी के अभिजीत दिपके बोले नए आंदोलन का आगाज जल्द। 15 अगस्त से सीजेपी शुरू करेगा स्कूल ठीक करो कैंपेन, महाराष्ट्र के हिंगोली में अभिजीत दीपके के गांव से शुरुआत के आसार। स्कूल ठीक करो अभियान के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी, हिंगोली से शुरू होगा अभियान। यूपी में जैन अल्फा के विरोध प्रदर्शन को सीजेपी का समर्थन, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर युवाओं के आंदोलन के साथ खड़ा है सीजेपी। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, 17 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश। फार्मेसी भर्ती प्रक्रिया पर बीजेपी का आप पर हमला, बीजेपी बोली आपने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ है। फार्मेसी भर्ती विवाद में बीजेपी ने सीजेपी पर सवाल निशाना, बीजेपी का सवाल अब सीजेपी और दिपके गैंग कहां है। बंगाल में आज और कल मनाया जा रहा है विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस, 14 अगस्त की शाम सभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च। विभाजन की त्रासदी और विस्थापितों के साहस को किया जाएगा 1947 के बंटवारे से प्रभावित लाखों लोगों की स्मृतियों को समर्पित होगा आयोजन। अयोध्या राम मंदिर सीईओ चयन के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी, 35 सवालों के से प्रशासनिक क्षमता, भीड़ प्रबंधन और बड़े आयोजन का अनुभव परखा गया। राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में फिर बदलाव, बिना सिले वस्त्र पहनेंगे पुजारी, धार्मिक समिति के संतों के प्रस्ताव को दी मंजूरी। योगी सरकार का एंटी लैंड माफिया अभियान जारी, अब तक 84,005 हेक्टेयर जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। यूपी सहायक लेखाकार परीक्षा के नतीजे घोषित, 1828 पदों पर 1643 अभ्यर्थी का हुआ चयन। लखनऊ में जेन जी को राह दिखाएगी एलयू छात्रों की वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स माफिया युग को बदलाव के संदेश। दाल मंडी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी, 181 भवन और 6 मस्जिदों में अब तक ज्यादातर हिस्से हटाए गए। दाल मंडी में जल्द पूरा होगा चौड़ीकरण का काम, 650 मीटर लंबी और 1750 मीटर चौड़ी सड़क इसी साल तैयार करने का लक्ष्य। वक्फ संपत्तियों की जांच को लेकर मोहसिन रजा की सीएम योगी से मुलाकात, जनपद वार एसआईटी जांच और विशेष ऑर्डर कराने की मांग, पारदर्शिता पर जोर। आज तक की खबर का असर, हमीरपुर में जैन अल्फा के प्रदर्शन का असर, सड़क देखने गांव पहुंचा प्रशासन, बच्चों के प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने लिया जायजा। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट मांगी, एलडीए ने अवैध भवनों पर कार्रवाई तेज की, 51 भवन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चिन्हित। 2027 चुनाव से पहले यूपी में महिलाओं के लिए बड़ी योजना की तैयारी, 50,000 की आर्थिक मदद पर मंथन।

राहुल गांधी पर यूपी सरकार के मंत्री एके शर्मा का तंज, विश्वविद्यालय लिखने की चुनौती, बोले गन्ने और मक्के का फर्क बता दे तो जो कहेंगे मानने को तैयार है। राम मंदिर सराहवा चोरी मामले पर अजय राय के गंभीर सवाल, बोले पैसे गिनने वाला जेल गया, जिनके पैसे गिने गए उन पर कार्रवाई कब होगी। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी, आरपीएफ जीआरपी ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड से प्लेटफॉर्म और परिसर की जांच। संभल में 14 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त, राजस्व टीम ने पुलिस के साथ चलाया अभियान, अवैध कब्जे पर चला ट्रैक्टर। केशव प्रसाद मौर्य की शाह से मुलाकात, यूपी चुनावी रणनीति पर मंथन, जेनजी को लेकर बीजेपी की तैयारियों और 2027 चुनाव के रोड मैप पर चर्चा। बीएसपी जेनजी पर नजर, 2027 चुनाव के लिए युवा चेहरों पर दांव, मायावती का युवाओं को समर्थन, आकाश आनंद को जेनजी की तरफ से टोलने की जिम्मेदारी। मायावती का एससीआरए बिल पर सरकार विपक्ष दोनों पर निशाना, बिल का राजनीतिकरण न करें, विपक्ष को चर्चा के दौरान संसद चलने देनी चाहिए। कानपुर में बीजेपी का वीर सम्मान अभियान, युद्धवीरों के घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता, स्वतंत्रता दिवस से पहले पूर्व सैनिकों का सम्मान। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में 25 बीजेपी नेताओं और हिंदू कार्यकर्ताओं पर मुकदमा वापस, कोर्ट ने दी अभियोजन केस वापसी की अर्जी को मंजूरी। AK-47 फायरिंग पर तेजस्वी का बड़ा मार्च, 19 अगस्त को राजभवन कूच करेंगे आरजेडी के नेता, सरकार पर बढ़ेगा दबाव। प्रशांत किशोर के 10,000 युवाओं को बाहर नौकरी भेजने के बयान पर बिहार में सियासी बवाल, बांकीपुर विधायक का पलटवार, नौकरी नहीं तो क्या आपके घर फर्श साफ करेंगे युवा। किसानों की एक और पदयात्रा, 16 अगस्त से दिल्ली कूच, खनौरी बॉर्डर से जंतर मंतर तक मार्च करेगा गैर एसकेएम किसान संगठन। कर्नाटक विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज, सीएम विजय का चेन्नई, डेवलपमेंट पर फोकस, बकिंगम नहर में केरल की तर्ज पर वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी। महाराष्ट्र भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव, फडणवीस बोले स्तरीय समिति का होगा गठन, अध्यक्ष समेत 5 सदस्य होंगे शामिल। एनसीपी विधायक जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी, फरार गैंगस्टर जीशान अख्तर ने ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी दी। बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, वाराणसी को अपने कब्जे में लेने से बीएमसी के फैसले पर हाईकोर्ट लगाई रोक। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बीजेपी एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार बवाल, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की भिड़त के बाद इलाके में तनाव। महाराष्ट्र एफडी की कार्रवाई से डोमिनोज पर बड़ा असर, नियमों के उल्लंघन पर डोमिनोज के 5 आउटलेट बंद, मुंबई में 3 और सतारा कड़ाड में 1-1। नेपाल दंगों में आईएसआई कनेक्शन का दावा, गृह मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान तुर्की कतर से मदरसों को हो रही है फंडिंग। नेपाल दौरे पर पाकिस्तानी मूल के मौलाना मोहम्मद इलियास घुमान और काठमांडू मस्जिद के मुफ्ती अबू बकर कासमी की तस्वीर आई सामने, इन पर दंगा भड़काने का आरोप। पाकिस्तान का आतंक का चेहरा बेनकाब हाफिज सईद की तारीफ में उतरे पाक के पूर्व मंत्री, एलईटी आतंकियों के साथ मंच साझा कर भारत के खिलाफ उगला जहर। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने आतंकी हाफिज सईद के साथ साझा किया मंच, पाक के आतंक के खेल को किया बेनकाब। दिल्ली लाल किला हमले का मास्टरमाइंड अलकायदा, यूएन रिपोर्ट बड़ा खुलासा, हमले के पीछे अलकायदा के इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम सामने आया। 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर, राजधानी दिल्ली में सुरक्षा सख्त, पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। दिल्ली के लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा कारणों से वाहनों की हो रही है सघन जांच। जमीन के साथ साथ आसमान और पानी के रास्ते सुरक्षा चाक चौबंद, सुरक्षाकर्मी यमुना नदी में नाव के जरिए कर रहे हैं पेट्रोलिंग। 15 अगस्त से पहले पंजाब में हाई अलर्ट, स्वतंत्रता दिवस को लेकर पंजाब पुलिस 40,000 जवानों की करेगी तैनाती। जामनगर के समुद्री तट पर मरीन कमांडो की पेट्रोलिंग, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। देहरादून में पहाड़ कटाई के दौरान सड़क पर आया मलबा, मसूरी देहरादून मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं ग्रामीण। धौलपुर के चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा, वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है पानी, नवनेरा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 12 में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उफनती नदी पार करने को मजबूर है, पुल नहीं होने से बड़ी परेशानी। तेलंगाना के कोमाराम भीम जिले में भारी बारिश के बाद सड़क संपर्क टूटा, बाढ़ के पानी के बीच गर्भवती महिला को डोरी के सहारे पहुंचाया गया। देहरादून में सड़क हादसे में दिल्ली की रहने वाली बीटेक छात्रा वैष्णवी रावत की मौत, मां ने लगाई इंसाफ की गुहार, आरोपी ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। नागपुर में तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर, 2 युवकों की मौके पर मौत, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के बदायूं में गाय की मौत के बाद डॉक्टर से मारपीट, ग्रामीणों ने कार में की तोड़फोड़। कौशाम्बी में बैल को लेकर विवाद, दलित बुजुर्ग से गाली गलौज और मारपीट का वीडियो वायरल। बिहार के मुंगेर में 3 साल के मासूम का दिनदहाड़े अपहरण, 4 घंटे बाद भोजपुर से बरामद। असम के जोरहाट में हाईवे पर तेल टैंकर और एलपीजी वाहन में जोरदार टक्कर, टक्कर के बाद आग से टैंकर पूरी तरह जलकर खाक। वैशाली में मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार की 4 गोलियां मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। झांसी में बदमाशों ने मारी गोली, घायल शख्स खुद स्कूटी चलाकर पहुंचा अस्पताल, पुलिस जांच जारी।
बिजनौर में गंगा के बड़े जलस्तर के साथ गांव में पहुंचा मगरमच्छ का बच्चा, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। अलवर में जर्जर स्कूल का बरामदा गिरा, बाल बाल बचे छात्र, टेंट के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे धरने पर बैठे। ग्रेटर नोएडा में जेब में फटा मोबाइल, 26 साल का युवक गंभीर रूप से घायल। आगरा में आटे मिलावट के खेल का खुलासा, खाद्य विभाग की छापेमारी में 1800 किलो सेल खड़ी और 13.5 क्विंटल आटा बरामद। भरवंकी में कनेक्शन जोड़ने पहुंची पुलिस से ग्रामीणों की झड़प, दरोगा पर ग्रामीण को लाठी से पीटने का आरोप, देर शाम तक चला हंगामा। रामपुर में युवक की बेरहमी से पिटाए, वीडियो वायरल। बिजनौर में बाइक के पीछे दौड़ा गुलदार, वीडियो वायरल। करणपुर गांव में सड़क पर दिखा गुलदार, ग्रामीणों ने पिंजरा लगाने की मांग की। कोयम्बटोर में कॉलेज छात्र पिटाई के बाद मौत, मारपीट के मामले में 5 छात्रों को हिरासत में लिया गया। बघा के पूर्व प्रखंड प्रमुख छोटेलाल यादव की संदिग्ध हालत में मौत, नदी किनारे मिला शव, हत्या की आशंका की भी जांच कर रही है पुलिस। राजकोट में बुजुर्ग दंपति से प्रताड़ना का आरोप, बेटे की मौत के बाद प्रॉपर्टी के लिए बहू, पोतियों पर FIR। पंजाब के नवा शहर में जहरीला पदार्थ खाने वाले 3 दोस्तों में 2 की मौत, युवक ने भी इलाज के दौरान तोड़ा दम। गाय की मौत के बाद बदायूं में डॉक्टर से मारपीट, कार में तोड़फोड़, वीडियो वायरल, 4 रुपये हिरासत में। कल बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी दो बड़ी फिल्में, बंटवारा 1947 में सनी देओल का एक्शन दिखेगा, आवारापन 2 में रोमांस से टक्कर देंगे इमरान हाशमी। पीरियड ड्रामा फिल्म में बंटवारा 1947 फिल्म के निर्देशक है राजकुमार संतोषी। सनी देओल एक बार फिर अपना एक्शन अवतार दिखाएंगे, उनके साथ प्रीति जिंटा, करण देओल भी इस फिल्म में है मौजूद। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा इमरान हाशमी का जुनूनी अवतार, आवारापन 2 में एक बार फिर रोमांटिक रोल में दिखाई देंगे। 2007 में आई इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन का ये सीक्वल है, फिल्म कई पुराने गाने भी शामिल कर रही है। वहीं साउथ स्टार सूर्या अपना चांद फैलाने के लिए तैयार, फैमिली ड्रामा फिल्म विश्वनाथ एंड सन्स होगी रिलीज। थिएटर के बाद अब OTT पर रिलीज लेते आ रहे कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता, 14 अगस्त को Z5 पर होगी रिलीज। 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अब कल से OTT पर कमाल करेगी कॉकटेल 2, नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी OTT पर होगी स्ट्रीम, इस साल मई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी ये फिल्म। हॉरर थ्रिलर फिल्म अरूपी भी OTT पर लॉन्च, हिंदी मलयालम और तमिल भाषाओं में उपलब्ध होगी।

0: तो हंगामे से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र हंगामे के साथ ही खत्म हो गया। सत्र के समापन के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष खासकर कांग्रेस के रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। रिजिजू ने संसद के मॉनसून सत्र के कामकाज का ब्यौरा देते हुए बताया कि लोकसभा में कुल आवंटित समय का 19% काम हो पाया जबकि राज्यसभा में 39%। रिजिजू ने बताया कि लोकसभा से कुल 12 बिल पास हुए लेकिन चर्चा सिर्फ एक बिल पर हो पाई।
1: लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीस ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%। लोकसभा का प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो बना है ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया विशेष करके लोकसभा में। मेरे
0: तो रिजिजू ने विपक्ष के रुख पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा पहली बार देखा है जब विपक्षी चर्चा से भाग रहा है।
1: देखिए मैं जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है ये पहली बार है जहां ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं, ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: तो सत्ता पक्ष विपक्ष के रवैये पर सवाल उठा रहा है, वहीं विपक्ष मॉनसून के धुलने के लिए, मॉनसून सत्र के धुलने के लिए सरकार को ही दोषी ठहरा रहा है। विपक्ष सवाल ही उठा रहा है कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह संसद से क्यों दूर रहे।
2: आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं, पूरा सेशन चला है, न प्रधानमंत्री जी आए न गृहमंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट।
3: सरकार की जिस तरह से हठधर्मी देखने को मिली इस सेशन में, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार पूरे सेशन में वो हाउस में नहीं आए, उनकी शक्ल नहीं दिखाई पड़ी, तो ये क्या जाहिर करता है? या तो उसको उनके सामने सदन की कोई महत्व नहीं है और इसलिए वो उसको लगातार उसकी अवहेलना करते रहे।
4: इनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है, जब लोकसभा चलती है तो मंत्री डॉक पे खड़े रहते हैं, कोई सवाल का जवाब गलत है, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आप चाहते तो जीरो आवर में ये सारे मुद्दे उठा सकते थे, 377 में उठा सकते थे, आप खुद ही नहीं उठाना चाहते हो। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि सारे मंत्री जवाब तैयार करके ला रहे हैं और विपक्ष को कोई मतलब नहीं है किसी प्रश्न से।
0: वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में अपनी रैली के मंच के शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप यह लगाया कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में उनकी रैली के मंच का बीजेपी के लोगों ने शुद्धिकरण किया और इस बात की उन्होंने नाराजगी जाहिर की।
5: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।
6: बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे।
0: और इस बीच इस बात को लेकर नड्डा जी ने भी स्पष्टीकरण दिया कि उनकी जानकारी में यह बात नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मुद्दे पर पीएम से स्पष्टीकरण की मांग कर दी है।
2: ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।
0: रुकें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, टिकते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
8: चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
4: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
3: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से।
5: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ फिटनेस योगा मेंटल वेलनेस सब कुछ एक ही जगह फिट तक। सिंपल टिप्स एक्सपर्ट इंसाइट्स रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
6: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
7: जब तक वो CBI जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
6: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
8: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
9: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
10: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
11: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
6: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
12: जंतर मंत्र पर मिली कामयाबी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जोश हाई है। आंदोलन की पहली सफलता ने हौसले बुलंद किए तो अब सीजन 2 की भी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में बुधवार को CJP की बैठक के बाद अभिजीत दीपक ने कहा कि जल्द जंतर मंत्र सीजन 2 शुरू होने वाला है।
13: बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है।
12: तो आखिर प्लान क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी का ये सीजन 2 क्या है? इसका खुलासा अभिजीत दीपक के ने तो नहीं किया लेकिन CJP प्रवक्ता ने सीजन 2 को लेकर सवाल का जवाब दिया।
14: आपने कहा अभिजीत ने कहा सीजन 2 आएगा, कब आएगा, क्या कुछ बोलेंगे?
15: देखिए सीजन 2 तो यही है, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है ऐसे निकम्मी सरकारों के खिलाफ, निकम्मे ऑफिसर्स के खिलाफ, वही सीजन 2 है।
12: वैसे CJP देश भर के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की हालत सुधारने की मुहिम 15 अगस्त से शुरू करने जा रही है।
16: ये कैंपेन रहेगा जो हमारे गांव के जो स्कूल है पूरे देश भर में जिनको इग्नोर किया गया इतने साल से, उन स्कूलों को ठीक करने की मुहिम है।
12: ऐसी मुहिम से पहले कॉकरोच जनता पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। दीपक का आरोप है कि उन्हें मीटिंग के लिए जगह देने से रोका जा रहा है। ऐसे गंभीर आरोप और जंतर मंतर सीजन 2 वाले बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है।
17: ये कोई पिक्चर नहीं,

0: फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह फिट टक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट टक यूट्यूब।
1: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
2: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
1: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
3: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
4: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
5: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
6: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
1: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
7: जंतर मंत्र पर मिली कामयाबी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जोश हाई। आंदोलन की पहली सफलता ने हौसले बुलंद किए तो अब सीजन 2 की भी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में बुधवार को सीजेपी की बैठक के बाद अभिजीत दीपक ने कहा कि जल्द जंतर मंतर सीजन 2 शुरू होने वाला है।
8: बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है।
7: तो आखिर प्लान क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी का ये सीजन 2 क्या है, इसका खुलासा अभिजीत दीपक के ने तो नहीं किया लेकिन सीजेपी प्रवक्ता ने सीजन 2 को लेकर सवाल का जवाब दिया।
9: आपने कहा अभिजीत ने कहा सीजन 2 आएगा, कब आएगा, क्या कुछ बोलेंगे?
10: देखिए सीजन 2 तो यही है, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है ऐसे निकम्मी सरकारों के खिलाफ, निकम्मे ऑफिसर्स के खिलाफ, वही सीजन 2 है।
7: वैसे सीजेपी देश भर के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की हालत सुधारने की मुहिम 15 अगस्त से शुरू करने जा रही है।
11: ये कैंपेन रहेगा जो हमारे गांव की जो स्कूल है पूरे देश भर में जिनको इग्नोर किया गया इतने साल से, उन स्कूलों को ठीक करने की मुहिम।
7: ऐसी मुहिम से पहले कॉकरोच जनता पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। दीपक का आरोप है कि उन्हें मीटिंग के लिए जगह देने से रोका जा रहा है। ऐसे गंभीर आरोप और जंतर मंतर सीजन 2 वाले बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है।
12: ये कोई पिक्चर नहीं है कि सीजन 1 सीजन 2, बल्कि छात्र को भी सोचना चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या है। आप रोट लर्निंग चाहते हैं या फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एग्जामिनेशन प्रोसेस में, तो सरकार के साथ संवाद कीजिए। संवाद जब होता है तब सॉल्यूशंस आते हैं, सिर्फ बयानबाजी पे नहीं होता है।
7: कॉकरोच जनता पार्टी के अगले कदम को लेकर सरगर्मी तेज है। आज तक ब्यूरो। प्रशासन के बुलडोजर लगातार मुहिम में लगे हैं। वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण का काम अपने अंतिम पड़ाव पर है। इमारत के धड़ाम होने की ये तस्वीर बुधवार की है। वाराणसी प्रशासन की टीम अपने अभियान के क्रम में इलाके में पहुंची तो 4 इमारतों को ध्वस्त किया गया। कल जिन 4 इमारतों को गिराया गया उन्हें बीडीए पहले ही अवैध बता चुका है। 9 महीने से चौड़ीकरण का ये काम चल रहा है। माना जा रहा है कि अब इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि वाराणसी के मुस्लिम बहुल्य दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण का काम इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा। इस दौरान चौड़ीकरण की जद में आने वाले 181 भवन और 6 मस्जिदों में से अब सिर्फ 2 ही भवन शेष बचे हैं। बुधवार को सरकारी अमला पहुंचा। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात थे। वही पीडब्ल्यूडी की टीम के अलावा विकास प्राधिकरण की भी टीम मौजूद थी।
13: इन भवनों पर पहले से ही डिमोलिशन ऑर्डर फाइल किया गया था, उसके बाद आज डिमोलिशन की कार्रवाई संपन्न की गई। चारों भवनों पर डिमोलिशन किया जा चुका है। शांतिपूर्ण माहौल में डिमोलिशन किया गया, पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थी, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो या बैरिकेटिंग हो और पीए सिस्टम चला।
7: बीते रविवार को दाल मंडी के सड़क निर्माण का भूमि पूजन हो चुका है। अब इसी साल 650 मीटर लंबी और 17.4 मीटर चौड़ी सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: से अच्छा रहा सेशन, लेकिन विपक्ष की वजह से नहीं हुई चर्चा। उत्तराखंड में खड़गे के वंश के शुद्धिकरण पर उठा सियासी तूफान, राज्यसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष, एससी हूं इसलिए मेरा अपमान किया गया, नड्डा ने कहा निंदा करते। रांची विधानसभा तक प्रदर्शन के मामले, करीब 600 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 100 नामजद केस, सीएम सोरेन के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा, बीजेपी हमलावर। जेन जी आंदोलन से बदला सियासत का मूड, यूपी चुनाव में नौजवानों को टिकट देने पर काम कर रही है बीएसपी, बीजेपी का युवाओं पर फोकस, महिलाओं के खाते में पैसे भेजने पर चल रहा है काम। पाकिस्तान में आज गदर की तैयारी, इमरान खान के जिंदा या मुर्दा होने के अटकलों के बीच तहरीक इंसाफ की धमकी, कहा इमरान से मिलने दो वरना रात तक पूरे मुल्क को बना देंगे डीक चौक। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के सिलसिले में। बात करेंगे पाकिस्तान और नेपाल की। क्या पाकिस्तान के जिहादी जनरल ने इमरान खान को जेल में मरवा दिया? आखिर इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया गया? जेल में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की वजह क्या है? साथ ही बात करेंगे नेपाल दंगा के आईएसआई कनेक्शन की। क्या नेपाल में पाकिस्तान ने दंगे करवाए? क्या हिंदुओं को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिहादी मौलाना वाया मलेशिया काठमांडू पहुंचे? नेपाल खुफिया एजेंसी के खुलासे की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की, क्योंकि वहां पर आज रात भारी है। आज की रात पाकिस्तान में आरपार की रात हो सकती है, क्योंकि इमरान को लेकर पाकिस्तान में माहौल गर्मा गया है। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा किया कि इमरान खान की मौत हो गई है, उसके बाद इमरान खान की बहन उनसे मिलने पहुंची तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। और अब पीटीआई ने चेतावनी दी कि अगर आज रात 10 बजे तक इमरान खान को इलाज के लिए नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान में गदर मचा देंगे।
1: आप अगवा कर रहे थे, इमरान खान साहब सुपर फिट थे, इसके जिम्मेदार वो अगवाकार भी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा किया। पाकिस्तान का नौजवान गुस्से की हालत में है, नफरत की हालत में है।
2: हिंसा, अराजकता और मारकाट पाकिस्तान की बदनीयत बन चुकी है। पाकिस्तान के क्रूर फौजी शासन का एक ही उसूल है कि कोई उसूल नहीं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की खबरों से एक बार फिर से मुनीर की सत्ता हिल सकती है। क्या पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में मौत हो चुकी है? क्या आसिम मुनीर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को जेल में ही ठिकाने लगा दिया? पाकिस्तान में इस समय इमरान खान की मौत की खबर से सनसनी फैली है। अमेरिका में बैठे पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत खान ने फौजी अफसरों के हवाले से दावा किया कि रावलपिंडी की अडियाला जेल में इमरान खान की मौत हो गई है।
3: ये हमारी रिपोर्टिंग है, जीएचक्यू से ये रिपोर्टिंग हमने की है। सीनियर अफसरान जो जीएचक्यू में है, कम अज कम 3 अफसरान का ये पर्सपेक्टिव है, जाती पर्सपेक्टिव है। 3 अफसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है दैट इमरान खान इज नो लॉन्गर विद अस एंड दैट इज द रीजन व्हाई द पाकिस्तान आर्मी एंड द आर्मी चीफ आर कीपिंग हिम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री।
2: जेल में बंद इमरान खान की तबीयत कई दिनों से खराब है। ऐसे में उनकी बहने उनसे मिलने के लिए अडियाला जेल पहुंची तो उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। वजाहत खान ने दावा किया है कि इमरान की मौत की खबर पाकिस्तानी अफसर दबा कर रखना चाहते हैं, इसीलिए किसी से मिलने नहीं दे रहे।
4: उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई सियासी बात बाहर ना आके करें तो हम उनको कह रहे हैं कि बहनों की मुलाकात करवा दें। हमने पूरी तरीके से इत्तेफाक किया बहनों ने,
2: इमरान अभी किस हालत में है ये बात सिर्फ मुल्ला मुनीर जानता है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने इमरान की मौत की खबरों को निराधार बताया, लेकिन इसके बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इमरान खान की बहनों और परिवार को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। रावलपिंडी के अडियाला जेल में लागू इस कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और बढ़ती आशंकाओं के बीच इमरान खान की बहन उजमा ने बताया है कि जब आखिरी बार अपने भाई से मिली थी तो उन्होंने आशंका जताई थी कि आसिम मुनीर जेल में उनकी हत्या करवा देगा।
5: उनकी जिंदगी खतरे में है, जिंदगी से खतरे की। तो आखिरी बात में मुलाकात थी, पहली चीज उन्होंने कहा था कि ये नहीं कहा कि मैं मुझे शक है मार देंगे, मुझे पहले कहा कि आसिम मुनीर मुझे मार देगा। देखिए ये क्लियर थी, तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि नीयतें खराब है।
2: इमरान 3 साल से जेल में बंद हैं। उनकी पार्टी के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि जेल में उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। इस बीच खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने धमकी दी है कि जुमेरात को 10 बजे तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई तो पूरा पाकिस्तान ठप कर दिया जाएगा।
1: हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से फैसला जारी करें और उनकी फैमिली की और उनके जाती डॉक्टर्स की मुलाकात होने दें। अगर मंगल के दिन मुलाकात ना हुई तो जुमेरात के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियंस अडियाला जेल जाएंगे। अगर जुमेरात के दिन भी ये हठधर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे।
2: पाकिस्तान में डी चौक का मतलब वो धरना स्थल है जो इस्लामाबाद में पाकिस्तानी संसद से कुछ ही दूरी पर स्थित है। अब इमरान खान के समर्थकों ने धमकी दी है कि पाकिस्तान की सरकार या तो इमरान खान को स्वास्थ्य के आधार पर छोड़ दे या फिर उन्हें उनके परिजनों से मिलने दे, नहीं तो पूरा पाकिस्तान डी चौक बन जाएगा, यानी हर जगह से विद्रोह की आवाज उठेगी। पीटीआई ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान भी किया है।
1: 27 तारीख का लॉन्ग मार्च अपनी जगह पर मौजूद है। 27 सितंबर को इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के लोग निकलेंगे, फिर कोई नहीं संभाल पाएगा।
2: बड़ा सवाल यही कि क्या अडियाला जेल में कोई अनहोनी हुई है या ये सिर्फ एक अफवाह है। इमरान खान 26 सितंबर 2023 से जेल में बंद हैं। आज तक ब्यूरो।
0: तो दुनिया को ख्यात आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए आदर्श है। पाकिस्तान क्यों आतंकी देश है, आज एक और उसकी बानगी आपको दिखा देते हैं। आतंकवाद पाकिस्तान की नीति है। इमरान खान सरकार में गृहमंत्री रहे, शेख राशिद लश्कर के प्रोग्राम में शामिल हुआ और लश्कर आतंकियों के सामने ऐलान किया कि वो हाफिज का गुलाम है।
6: मैं तो सिर्फ एक ही बात हाफिज सईद साहब का मैं बुला हूं, इंशाअल्लाह ताला मेज तो नापूर कर देंगे वे नुकसान ने पाकिस्तान की तरफ देखा।
7: पाकिस्तान की ये बेशर्मी देखिए, वो शख्स मानवता के लिए खतरा है जिसे यूनाइटेड नेशन ने आतंकी घोषित किया। ये शख्स उस हाफिज सईद का गुलाम है।
6: मैं तो सिर्फ एक ही बात हाफिज सईद साहब का मैं बुला हूं।
7: ये पाकिस्तान का पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद है जो आतंकी हाफिज सईद को अपना आका बता रहा है।
6: मैं तो सिर्फ एक ही बात हाफिज सईद साहब का मैं बुला हूं। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमरीका में और उन्होंने मुझे अमरीका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है।
7: शेख राशिद आतंकी हाफिज सईद की शान में कसीदे पड़ रहा है, ऐसे बखान कर रहा है कि जैसे हाफिज सईद कोई महान व्यक्ति हो। पाकिस्तान का गृह मंत्री ग्लोबल आतंकी का गुणगान करने में जरा भी शर्म नहीं कर रहा, वो आतंकी हाफिज सईद को ये पाकिस्तान का उद्धारक बता रहा है।
6: आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आपने अपनी जिंदगियां वक्त दी हैं इस पाकिस्तान के लिए और हम भी इंशाअल्लाह ताला हाफिज सईद साहब के साथ हैं।
7: पाकिस्तान का पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कार्यक्रम में शामिल हुआ। लश्कर आतंकियों के साथ उसने मंच शेयर किया और ऐलान किया कि लश्कर के आतंकी उसके भाई हैं। आतंकवाद और पाकिस्तान एक दूसरे के पर्याय हैं। इसका एक और प्रमाण ये शेख राशिद ने दिया। पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार थी तो शेख राशिद गृह मंत्री था। अब सोचिए जरा, जब ये गृह मंत्री रहा होगा तब आतंकी हाफिज सईद के लिए क्या क्या करता होगा, लश्कर तैयबा को कितना मदद करता होगा। इतना ही नहीं, अपने आतंकी आका को खुश करने के लिए शेख राशिद ने हिंदुस्तान के खिलाफ भी जहर उगला।
6: कभी भी हिंदुस्तान मौका जाया नहीं करेगा और जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखता है तो उसके अंदर पाकिस्तान का जो कुछ उसका रोल है उससे वो वो रोड अदा करने की नाकाम कोशिश करता है। इंशाअल्लाह ताला मेज तो नापूद कर देंगे वे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ का न चीजें चहटेंगी हिंदुस्तान में, न बिरला जी के बंदर में घंटियां बजेगी और न ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम हो सकेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाए। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हाफिज सईद साहब के साथ हैं।
7: सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस शख्स को दुनिया आतंकवाद के नेटवर्क से जोड़कर देखती है, उसी के लिए पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री जैसे बड़े नेता सार्वजनिक तौर पर सम्मान और निष्ठा की बात क्यों करते हैं? शेख राशिद का ये बयान पाकिस्तान की इस सोच पर सवाल खड़ा करता है, जहां आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दावा तो किया जाता है, लेकिन उसी आतंकवाद से जुड़े चेहरों के प्रति राजनीतिक हमदर्दी भी दिखाई देती है।
8: जब पाकिस्तान के एक पूर्व गृह मंत्री आतंकी हाफिज सईद को अपना आका बताते हो, तो सवाल सिर्फ शेख राशिद के बयान पर नहीं है, बल्कि सवाल पाकिस्तान की उस राजनीतिक व्यवस्था पर है, जहां आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार कुछ अलग कहती है और जमीन पर वहां के राजनेता कुछ और कहते हुए दिखाई देते हैं। आतंकी हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, अमेरिका ने भी उसे घोषित आतंकियों की सूची में डाला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान उसे सालों से मेहमान बनाकर बैठा हुआ है।
7: पाकिस्तान में सरकार किसी की भी रहे, हाफिज सईद और उसके आतंकियों पर कोई रोक टोक नहीं लगती है। हालांकि पाकिस्तान बीच बीच में आतंकियों पर कार्रवाई का दिखावा जरूर करता है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान की राजनीति ही आतंकियों की गुलाम है। आज तक ब्यूरो।
0: इस बीच बड़ी खबर नेपाल से, जहां पर हुए सांप्रदायिक दंगों वाली साजिश की हम बात करेंगे। इसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में हुए दंगे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका संदिग्ध है। 26 जुलाई को नेपाल के सुनसरी जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें कई हिंदुओं की जान चली गई, करीब दर्जन भर कांवड़िए जख्मी हुए। खुलासा ये हुआ कि इन सबके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश है।
9: नेपाल में हिंदू मुस्लिम दंगों के पीछे किसका हाथ था? क्या पाकिस्तान की ISI ने नेपाल में हिंदुओं पर हमला करवाया? नेपाल में 26 जुलाई के दंगे पर नेपाली एजेंसी का चौंकाने वाला खुलासा। नेपाल में हिंसा, साजिश के तार बांग्लादेश वाया तुर्की और पाकिस्तान। भारत से सटे नेपाल के सीमावर्ती जिले सुनसरी जिले में 26 जुलाई की रात जो दंगा हुआ, जिसमें कई हिंदुओं की मौत हुई, करीब दर्जन भर कांवड़िए गोली लगने से घायल हुए और कई घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। 26 जुलाई की हिंसा को लेकर नेपाली खुफिया एजेंसी ने बड़ी आशंका जताई है। दावा है कि इस हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। नेपाल की राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग यानी NID ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। शुरुआती रिपोर्ट में ISI कनेक्शन का जिक्र होने की बात कही जा रही है। भारत से सटे नेपाली इलाकों में विदेशी मौलानाओं की गतिविधियां जांच के दायरे में हैं। NID की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में रहने वाला पाकिस्तानी मूल का मौलाना मोहम्मद इलियास घुमान 26 जुलाई को सुनसरी के देवानगंज की एक मस्जिद में पिछले 5 दिन से रुका हुआ था। उसके साथ काठमांडू की जामा मस्जिद का इमाम मुफ्ती अबू बकर कासमी भी मौजूद था। जिन मदरसों में ये ठहरे थे, उनकी फंडिंग पाकिस्तान, तुर्की और कतर के जरिए होती है।
10: नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज गांव पालिका के कप्तानगंज में मुहर्रम के दौरान शिव मंदिर की खाली जमीन पर इस्लामिक झंडे लगाए गए। मुहर्रम समाप्त हुआ तो वहां हिंदू समुदाय के लोगों ने इन झंडों को हटाने की मांग उठाई। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन, सांसदों और जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की गई, लेकिन झंडे नहीं हटाए गए। 26 जुलाई की रात जब कांवरियों का एक जत्था वहां से गुजर रहा था, तो उन पर हमला कर दिया गया।
9: NID की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद इलियास घुमान और मुफ्ती अबू बकर कासमी ने नेपाल के उन इलाकों का भी दौरा किया जो भारत की सीमा से सटे और संवेदनशील माने जाते हैं, जिसमें विराटनगर, रौतहट, नेपालगंज और कपिलवस्तु शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों की मस्जिदों और मदरसों में रुकने के साथ साथ कथित तौर पर कट्टरपंथी मुस्लिमों के साथ गोपनीय बैठकें भी हुई।
10: रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा वाले दिन नेपाल के उन इलाकों में बांग्लादेश के ये 9 मौलवी भी मौजूद थे जहां दंगे हुए। नेपाल के इमिग्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक बांग्लादेश के ये 9 मौलवी ढाका से कुआलालंपुर होते हुए काठमांडू पहुंचे थे। ये सभी 30 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंचे थे। नेपाल में ISI की कथित गतिविधियों की रिपोर्ट्स पहले भी सामने आती रही है।
9: नेपाल में दंगे होना, दंगे के वक्त इन मौलानाओं का नेपाल की मस्जिदों या मदरसों में मौजूद होना, ये सभी तथ्य गंभीर जांच की मांग करती है। नेपाली एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इशारा किया है कि इन सभी कड़ियों को जोड़कर जांच करने की जरूरत है। नेपाली एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में मौलाना घुमान को ISI का एजेंट माना है, साथ ही कहा है कि वो तबलीगी जमात का प्रमुख सदस्य है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में उसके संबंध हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से होने की बात भी कही गई है। सवाल सिर्फ ISI की गतिविधियों का नहीं है, बल्कि उन अवैध मदरसों और मस्जिदों का भी है जो नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में तेजी से खुल रहे हैं। इनकी विदेशी फंडिंग भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। भारत नेपाल के बीच खुली सीमा है, इसीलिए ये भारत की सुरक्षा के लिए भी चुनौती है। पंकज दास, काठमांडू आज तक।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किला धमाके मामले को लेकर UN की एक ताजा रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की इस ताजा रिपोर्ट में हमले के पीछे अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS का हाथ बताया गया है। दिल्ली के लाल किले के पास नवंबर 2025 में धमाके हुए थे। UN की 1267 मॉनिटरिंग टीम की 38वीं रिपोर्ट में नवंबर 2025 के लाल किला हमले का जिक्र है और रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के पीछे AQIS से बताया था, यानी दिल्ली के लाल किले के पास हुआ धमाका जिसने राजधानी को दहलाया था, अब उसके तार सीधे अलकायदा के भारतीय उपमहाद्वीप नेटवर्क से जुड़ते दिख रहे हैं।
8: दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार बम धमाके में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दिल्ली के लाल किले के बाहर जो बम धमाका हुआ था वो अलकायदा की विंग AQIS यानी अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट ने करवाया था। आपको बता दें कि 10 नवंबर 2025 को लाल किले के बाहर एक कार में धमाका हुआ था। जांच के बाद पता चला था कि कार में MBBS डॉक्टर उमर नबी बैठा हुआ था जो एक बड़े डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। इस बम धमाके में 20 लोग घायल हुए थे, 11 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की जांच NIA कर रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस रिपोर्ट में अलकायदा को जिम्मेदार बताते हुए बताया गया है कि अब अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट छोटे छोटे स्लीपर सेल बनाकर इस तरह के बम धमाकों को अंजाम दिलवा रहा है।
0: रुके एक ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: सॉरी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

फिर फंगा में ही खत्म हो गया संसद का मानसून सत्र। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा। रिजिजू बोले, काम के नजरिए से अच्छा रहा लेकिन विपक्ष की वजह से नहीं हुई चर्चा। उत्तराखंड में खड़गे के मंच के शुद्धिकरण पर उठा सियासी तूफान। राज्यसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष, एससी हूं इसलिए मेरा अपमान किया गया। नड्डा ने कहा, निंदा करते हैं जांच कराएंगे। रांची में विधानसभा तक प्रदर्शन के मामले में करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसएसपी ने कहा, कोई नामजद एफआईआर नहीं। सीएम सोरेन की आवाज पर बढ़ाई गई सुरक्षा, बीजेपी हमलावर। जेन जी आंदोलन ने बदला सियासत का मूड। यूपी चुनाव में नौजवानों को टिकट देने पर काम कर रही है बीएसपी। बीजेपी का युवाओं पर फोकस, महिलाओं के खाते में पैसे भेजने पर भी चल रहा है काम। और पाकिस्तान में आज गदर की तैयारी। इमरान खान के जिंदा या मुर्दा होने की अटकलों के बीच तहरीक इंसाफ की धमकी। कहा, इमरान से मिलने दो वरना रात तक पूरे मुल्क को बना देंगे डी चौक।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले हम बताते हैं कि कौन सी खबरों पर बात करेंगे, तो वो हम आपको बता देते हैं। आपने वो कहावत सुनी है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, बिल्कुल वही हुआ संसद में भी। जमकर हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा। और आज मानसून सत्र खत्म हो गया और पूरा हंगामे की भेंट चढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा, इसके लिए कौन किसको जिम्मेदार ठहरा रहा है और क्या तथ्य रख रहा है, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता दें। खड़गे के मंच के शुद्धिकरण पर बड़ा सियासी हंगामा इस वक्त हो रहा है, अब क्यों हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि एससी हूं इसीलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जिसको लेकर अब बीजेपी ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और जांच भी कराएंगे। अगली बड़ी खबर जो वो भी है वो भी हम आपको बता दें। जेन जी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, जेन जी महिला वोट और यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है तो हर किसी का जोर है। बीएसपी की क्या रणनीति है, समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, बीजेपी की, कांग्रेस की क्या रणनीति है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और ठीक आधे घंटे बाद हम आपको बताएंगे झारखंड के छात्र आंदोलन में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या सियासत इस वक्त आगे होने वाली है, ये हम डिटेल में आपको बताएंगे करेक्ट 2:30 बजे। लेकिन सबसे पहले जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो बड़ी खबर हम आपको बता दें, हंगामे की भेंट चढ़ गया और लगातार हंगामा होता रहा। लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, मानसून सत्र तो खत्म हो गया लेकिन हंगामा इतना बरपा कि कामकाज बहुत कम हुआ, जनता से जुड़े मुद्दों की बात बहुत कम हुई। यानी आप ये मान के चलिए कि 25 दिन में क्या हुआ, शुरुआत होती है सत्र की, हंगामा होता है, फिर स्थगित हो जाती है, बहस एकदम शून्य। स्पीकर की चाय पार्टी से विपक्ष ने दूरी बना ली, कोई पहुंचा नहीं, विपक्ष बनाम सरकार रहा, मकर द्वार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा क्योंकि जो भी हंगामा होता था वो मकर द्वार पर होता था। अब आखिरी दिन एक नया विवाद भी आ गया। अब नया विवाद क्या आ गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का आ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मैं गया हल्द्वानी में और वहां पर शुद्धिकरण कर दिया गया, ये बहुत गलत हुआ। अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, यह भी बड़ी खबर आपको बता दें। अगर इस पूरे मानसून सत्र में यानी 25 दिन सिर्फ हंगामा हुआ तो सत्ता पक्ष कह रहा है, आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संसदीय कार्य मंत्री ने, उन्होंने कहा कि क्यों हुआ हंगामा, विपक्ष के चलते हंगामा हुआ क्योंकि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता था, विपक्ष कहता था बात करें अमित शाह, जब अमित शाह बात करने को तैयार हुए तो फिर दूसरी मांग रख दी गई तो विपक्ष भागा। ये कह रहे हैं कि सरकार तो चर्चा को तैयार थी, हालांकि जवाब तुरंत दिया कांग्रेस की तरफ से, गौरव गोगोई आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारे सवालों का जवाब हमको दिया ही नहीं गया। तो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम किया गया, इसीलिए शुरुआत में हमने कहा था। अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सबसे पहले आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कैसे विपक्ष पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया वो आप सुन लीजिए।
1: लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%, राज्यसभा में ओपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ओपोजिशन पार्टी के एमपीस ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मानसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो बना है, ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। मेरे जिंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं, ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ओपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: और देखिए जो आप सुन रहे थे ना, बिल्कुल संसद में वही हुआ, पूरे सत्र भर में यही हुआ। सत्ता पक्षी तरफ से क्या कहा जाता है, सत्ता पक्षी तरफ से यही कहा जाता है कि हम तो बात करने को तैयार थे, विपक्ष यहां पर भाग रहा था। विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला, गौरव गोगोई आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौरव गोगोई कह रहे हैं कि हमने सवाल पूछा, सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा था। पूरे संसद सत्र में जो सरकार थी वो बैकफुट पर थी, सरकार चढ़ावा चोरी पर चर्चा नहीं करना चाहती थी।
2: अफसोस की बात कि वो उस दो दिन की चर्चा में हम बार बार कहते रहे कि गृह मंत्री आप चर्चा में आइए, चर्चा में भाग लीजिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया कार्रवाई पर आप अपना वक्तव्य रखिए। राहुल गांधी जी ने बात रखी, प्रियंका गांधी जी ने बात रखी, केसी वेणुगोपाल जी ने बात रखी, शशि थरूर जी ने बात रखी, अखिलेश यादव जी ने बात रखी, विभिन्न दलों के नेता ने बात रखी, भाजपा से भी बात उनके लोगों ने रखा, लेकिन गृह मंत्री कभी आए नहीं। और 15 दिन तक गृह मंत्री लापता गायब, और फिर सदन से के खत्म होने से दो दिन पहले वो जाग उठते हैं, कुंभकर्ण के नींद से जाग उठकर कहते हैं कि चलो अब चर्चा होनी चाहिए। जब चर्चा हो ही तब तो आप नहीं थे, अब 15 दिन बाद आप कहते हो कि चर्चा होनी चाहिए, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। चर्चा तो हो गई, सबने अपनी राय दे दी, बात थी बस आप अपना बयान दीजिए, लेकिन बयान से वो कतराए, बार बार कहते रहे कि मैं बयान नहीं दूंगा, मुझे चर्चा चाहिए, ये तो सिर्फ एक बहाना था।
0: तो देखिए आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर होते रहे, लेकिन सीधे आपके लिए चलते हैं रविशंकर प्रसाद की पीसी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
3: आपके माध्यम से देश के सामने बताना चाहते हैं। फिर आपको याद होगा कि जब चर्चा की बात आई तो सरकार ने, मोदी जी ने दो बड़े काम किए, नीट पर एक बहुत ही कड़ा कानून लाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई, और टाइम फ्रेम में ट्रायल होगा, और सजा को भी और सिंडिकेट जो चलता है पेपर लीक का उसको भी एड्रेस करने की कार्रवाई की गई। बस उसी पर एक बहस हुई, फिर उन्होंने नंदन निरकेनी की अगुवाई में एक बड़ा सा हाई पावर्ड कमेटी बनाई है एग्जाम रिफॉर्म, नीट रिफॉर्म को लेकर। ये सब चल रहा है, एकाएक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दूसरी मांग ऐड कर दी गई, सरकार चर्चा को तैयार है का नहीं, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ये चला, इसको बनाया गया, उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपना इस्तीफा दिया। तीसरी बात देखिए, वो बार बार कहते थे कि गृह मंत्री दिल्ली में पुलिस कार्रवाई पर जवाब दें, देख रहे थे आप, रोज उनकी मांग थी, उन्हें चलने नहीं दिया सदन। तब कल आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं मीडिया को आकर के कहा कि मैं 24 घंटे पूरी बहस सुनने को तैयार हूं और उनके सारे तर्कों का जवाब देने को तैयार हूं, पुलिस में जो घटना हुई एक एक बिंदु पर जवाब दूंगा, आपने देखा होगा। फिर हमारे किरण रिजिजू जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस विषय को उठाया, सदन में उठाया, बहस करने को तैयार हैं। माननीय स्पीकर साहब ने कहा आप बहस कराइए, तो उनके दो शब्द विचार फुलिश, मूर्खतापूर्ण कमेंट है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। अगर उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है तो त्यागपत्र दें, और नहीं दिया है तो अयोग्य नालायक मंत्री हैं तब त्यागपत्र दें। क्या राहुल गांधी, गवर्नेंस की आपको बेसिक समझदारी नहीं है क्या? कभी गृहमंत्री के आदेश से गोली चलती है क्या? क्या मतलब है इसका? इसका एक नॉर्म है, इसका एक प्रोटोकॉल है। जो वहां मैजिस्ट्रेट होते हैं, बाकी होते हैं, या पुलिस के डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनसे पूछ कर कार्रवाई की जाती है। तो फिर आपने विषय उठा दिया। तो अमित शाह जी तैयार है, 24 घंटा बैठने को तैयार है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमें उनका इस्तीफा चाहिए। उनकी बहस सुन के क्या फायदा। तो जो वो सदन को 10 दिन से नहीं चलने दे रहे हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी बहस के लिए तैयार हैं, तो कहते हैं उनकी बात को सुनना क्या। इसे क्या कहा जाए, राहुल गांधी आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी, द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी ऑफ द कंट्री एंड पार्लियामेंट विल नॉट रन बिकॉज अंडर द प्रेशर ऑफ योर एरोगेंस, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट एंड एक्सेप्शनलिज्म, कि आई विल डू एनीथिंग इन माई ओन वे, माई वे और हाई वे। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। इसीलिए आपकी पार्टी की यह हालत हो गई है, आगे और भी होगी। लेकिन राहुल गांधी कोई लेसन नहीं सीखते हैं। इसलिए आज हमने पूरी बातों को विस्तार से आपके सामने कहा। आज अंतिम दिन था, जब देखे कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी एम्बैरेसमेंट में है, तो सदन में हमने देखा कि वो समाजवादियों के साथ राम मंदिर के चढ़ावे का विषय उठाने लगे। मतलब क्या है, आप आर यू होल्डिंग एनी पोजिशन? पहले नीट, उसके पहले चर्चा पीएम के दफ्तर घर के सामने, गलत धरना लेकर के, बिना अनऑथराइज धरना लेकर के, उसके बाद फिर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर कहा कि मोदी जी जवाब दें, अमित शाह जवाब दें, जब अमित शाह तैयार हैं बहस के लिए तो वो इस्तीफा दें। ये हमने पूरा सीक्वेंस जो चला है पिछले 10 दिन का, 12 दिन का आपको बताया। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। हम आपसे एक काम इन्होंने और सुना, हमने कहा सदन चलाना हमारी जिम्मेवारी नहीं, ठीक है ना। तो एक तरह तो कहते हैं कि सदन जितना आपका है उतना हमारा भी है, हमारी बात सुनिए, आप जवाब दीजिए, यही तो परंपरा है। तो आप बहस होने देंगे नहीं, आप सदन चलने देंगे नहीं, और फिर कहेंगे मेरी बात नहीं सुनी जाती है, तो ऐसे कैसे चलेगा आप। तो बाकी मैं बैनर पोस्टर की बात तो करते ही नहीं, आप सभी जानते हैं वो क्या होता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज देश को यह समझना पड़ेगा, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, राहुल गांधी अनुशासनहीन हैं, राहुल गांधी उच्छृंखल हैं, राहुल गांधी अहंकारी हैं, जिनके अंदर राजनीतिक मर्यादा का कोई स्थान नहीं है। आई वुड लाइक टू रिपीट दैट मिस्टर राहुल गांधी इज इरेस्पॉन्सिबल, राहुल गांधी इज येट टू मैच्योर एज ए लीडर इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, राहुल गांधी इज डेलिंक्वेंट, और राहुल गांधी हैज ए ग्रेट सेंस ऑफ एरोगेंस एंड इंटाइटलमेंट एंड एक्सेप्शनलिज्म, कि जो मैं कहूंगा वही होगा। और एक बात हमने पहले भी कही थी, सरकार ने भी कहा है, कोई गोली नहीं चली है, कोई गोली नहीं चली है। अच्छा होता अमित शाह की बात सुनते तो जवाब पूरा दिया जाता, हम लोग भी बोलने के लिए आतुर थे। मैंने तो आग्रह किया था थोड़ा सा युवराज के भाषण का जवाब मैं भी देना चाहूंगा माननीय गृहमंत्री के पहले, लेकिन हाउस चलने नहीं दिया। तो ये जो
0: तो देखिए वही हो रहा है कि एक तरफ से सवाल उठाया गया तो दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। अब यहां पर सबसे पहले आते हैं किरण रिजिजू, उनका जवाब गौरव गोगोई, और फिर आते हैं रविशंकर प्रसाद, कह रहे हैं कोई गोली नहीं चली, गृहमंत्री अमित शाह को सुनना तो चाहिए था, लेकिन यहां तो हंगामा ही होता रहा। चलिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अपनी बात रखी गई, और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह कहा गया है कि मेरे को लेकर जब हल्द्वानी में पहुंचा उसके बाद फिर किस तरह से वहां पर हवन कराया गया, शुद्धिकरण का कराया गया, संसद के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कैसे निशाना साधा गया, वो आप सुनिए।
4: खुद ही प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे यहाँ हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मींस डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं। ये उनकी आदत है और ये इनका ईगो जनता तोड़े।
0: और देखिए इस पूरे सत्र में विपक्ष जमकर आक्रामक अंदाज में दिखाई दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी जमकर आक्रामक अंदाज में नजर आई, चाहे वो मकर द्वार पर प्रदर्शन हो या फिर सरकार का घेराव करना हो। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी घेराव किया उन्होंने।
5: सेशन जिस तरह से वॉश आउट हुआ मैम, पूरा इस पर क्या कहेंगी मैम? गृह मंत्री
6: जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं, पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट।
0: ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, संसद का सत्र मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब जो शुरू हुआ है कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, इससे बढ़कर कुछ होगा या फिर यही एक दूसरे पर दोषारोपण चलता रहेगा?
7: देखिए जिस तरह से उंगली उठाई जा रही है, ये जो माहौल है ये ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं आपको बता दूं ये तो बस शुरुआत है, हम जो आगे आने वाले सत्र भी देखेंगे उसमें भी विपक्ष जो है इसी तरीके से आक्रामक रहेगा। उनका ये कहना है कि आपके पास पूरे 3 हफ्ते थे, सिर्फ महज 24 घंटे पहले ही ये बयान गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों दिया। सरकार की तरफ से ये कहना है कि जब उनको ये पता चला, क्योंकि बीच बीच में उन्होंने कोशिश करी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू गए राहुल गांधी से बातचीत करने, उनसे फोन पर भी बात हुई, तो जब सरकार को ये स्पष्ट हो गया कि बातचीत से जो चीज है वो आगे नहीं बढ़ रही है, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कहा कि मैं 24 घंटे तक लोकसभा में बैठने को तैयार हूं। लेकिन ये जो आपको इस बार देखने को मिला, विपक्ष बहुत ज्यादा आक्रामक है, विपक्ष को लगता है कि नीट का बड़ा मुद्दा आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा हो सकता है, और ये आपको अगले आने वाले सत्र में भी ऐसा ही माहौल दिखेगा, इसी तरीके की तनातनी आपको नजर
0: यही होगा। शुक्रिया ऐश्वर्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज एक और मुद्दा बहुत जमकर उठता हुआ दिखाई दिया, और वो मुद्दा था राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि वो उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे थे, बहुत सारे लोग थे वहां पर, बहुत सारे लोगों के बीच उन्होंने अपनी बात रखी, संबोधित किया, लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ? वहां पर शुद्धिकरण कराया गया, वहां पर हवन कराया गया। अब ये मुद्दा जब उठाया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तो जमकर हंगामा हुआ। सुनवाते हैं आपको मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा।
8: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये यू हैव यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर, इज इट द वे इन डेमोक्रेसी हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टू आई एम अ लीडर ऑफ अपोजिशन
0: अब देखिए राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से सवाल उठाया गया, जवाब किसने दिया? नेता पक्ष यानी जेपी नड्डा ने।
9: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है।
0: और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मैनकाइंड फार्मा, दिल से स्वदेशी, जान हिंदुस्तान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: In association with
7: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

सिर्फ हंगामे में ही खत्म हो गया संसद का मानसून सत्र, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा। रिजिजू बोले, काम के नजरिए से अच्छा रहा सेशन, लेकिन विपक्ष की वजह से नहीं हुई चर्चा। उत्तराखंड में खड़गे के मंच के शुद्धिकरण पर उठा सियासी तूफान, राज्यसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष, एससी हूं इसलिए मेरा अपमान किया गया। नड्डा ने कहा, निंदा करते हैं जांच कराएंगे। रांची में विधानसभा तक प्रदर्शन के मामले में करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एसएसपी ने कहा कोई नामजद एफआईआर नहीं। सीएम सोरेन की आवाज पर बढ़ाई गई सुरक्षा, बीजेपी हमलावर। जेंजी आंदोलन ने बदला सियासत का मूड, यूपी चुनाव में नौजवानों को टिकट देने पर काम कर रही है बीएसपी, बीजेपी का युवाओं पर फोकस, महिलाओं के खाते में पैसे भेजने पर भी चल रहा है काम। पाकिस्तान में आज गदर की तैयारी, इमरान खान के जिद्दा या मुद्दा उड़ने की अटकलों के बीच तहरीक इंसाफ की धमकी, कहा इमरान से मिलने दो वरना रात तक पूरे मुल्क को बना देंगे डी चौक।

0: जब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली फुकेट विमान मामले की। अब इस पूरे मामले में जब पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो अब सावधानियां और सख्ती और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद नागर विमानन मंत्रालय अब एक्शन में नजर आ रहा है और सूत्र बता रहे हैं कि मंत्रालय ने DGCA को पायलट्स के डोप टेस्ट ढांचे की समीक्षा करने, वैश्विक प्रोटोकॉल का अध्ययन करने, नए नियम बनाने के निर्देश दे दिए हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि डोप टेस्ट को लेकर कड़े नियम, रैंडम टेस्टिंग बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट यानी CAR के तहत लाइसेंस सस्पेंड करने, आपराधिक मामले दर्ज करने जैसे प्रावधान पर भी विचार किया जा रहा है। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बेहद गंभीर मामला और इस मामले में आने वाले वक्त में और ज्यादा सख्ती बरतने के मूड में DGCA दिखाई दे रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या एक्शन है?
1: बिल्कुल हिमांशु, देखिए हमारी टॉप सोर्सेस से बात हुई है और एयर इंडिया AI-2379 फुकेट दिल्ली फ्लाइट में जो हादसा हुआ उसको लेके सरकार बेहद ज्यादा कंसर्न्ड है इस वक्त। कारण क्या है कि आप उस देश में हैं जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट का, अल्कोहल के टेस्ट का, लेकिन डोप टेस्ट हर पायलट के लिए कराना संभव नहीं था और ऐसे में इस घटना के बाद सरकार चिंतित थी और यही वजह है कि अब सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट ब्रेकिंग है कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट 2022 का जो है उसमें बदलाव करने की तैयारी में है सरकार। और अगर हम अपने रिलायबल सोर्सेस की बात माने तो इसके अंदर लाइसेंस सस्पेंशन से लेके क्रिमिनल केसेस फाइल करने तक की बात पर विचार किया जा रहा है। यानी कि हम जो CAR का नॉर्म है डोप टेस्ट के लिहाज से उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। यही नहीं, जो रैंडम टेस्टिंग का परसेंटेज इस वक्त 10% है, यानी कि अगर किसी हवाई जहाज कंपनी में 100 पायलट्स हैं तो 10 पायलट्स की रैंडम टेस्टिंग होगी, उस सैंपल को भी बढ़ाने की बात सोची जा रही है। और एयर इंडिया AI-2379 का जो पायलट है जो मैरिजुआना के लिए पॉजिटिव आया है उसके खिलाफ भी नए बदले हुए कानूनों के तहत कार्रवाई करने को लेकर भी सरकार फिलहाल सोच रही है जब ये कानून बदल जाएंगे। हिमांशु,
0: और बिल्कुल ये यहाँ पर तैयारी साफ तौर पर देखी हुई जा रही है सख्ती बरतने की। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए भी। चलिए रांची की अब बात करते हैं और रांची में अब छात्र आंदोलन के बीच अब इस पूरे मामले में, देखिए छात्रों का लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा है ये तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन अब इस बीच रात में पुलिस भी वहां पर पहुंचती है, कई तरह की कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक्शन शुरू हो गया है, 500 प्रदर्शनकारी छात्रों पर FIR दर्ज की गई है। करीब 500 ऐसे प्रदर्शनकारी छात्र हैं जिन पर FIR दर्ज की गई है और ये सभी अज्ञात है। ये सभी जो FIR हुई हैं ये अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है, यानी नामजद नहीं है, किसी का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है। 10 अगस्त को JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया था, प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा, आगे बढ़ने की कोशिश की तो तीखी झड़प हुई थी और उसके बाद 500 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर FIR। सत्यजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, 500 प्रदर्शनकारी छात्रों पर अज्ञात जो FIR

0: दर्ज की गई अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर। अब इस मामले ने कैसे तूल पकड़ लिया है, आगे क्या आपको दिखाई दे रहा है?
1: देखिए, अज्ञात जो प्रदर्शन का अज्ञात जो जिसने जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को वायलेट किया है, वैसे लोगों के खिलाफ जो है ये FIR दर्ज किया गया है। यानी अनआइडेंटिफाइड लोग हैं, लेकिन जिन्होंने किसी तरह का वायलेंस किया है या फिर जिन्होंने किसी तरह से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का वायलेशन किया है। विधानसभा सेंसिटिव जगह है, मानसून सत्र चल रहा था, एकदम गेट नंबर 1 तक जहां से मुख्यमंत्री प्रवेश करते हैं या जिस गेट का इस्तेमाल मुख्यमंत्री करते हैं, वहां बिल्कुल वहां जो है 10 मीटर के दायरे में वो लोग पहुंच चुके थे और वहां हटने से मना कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके वजह से जो है अनआइडेंटिफाइड FIR दर्ज किया गया है। FIR दर्ज हुआ है, देखिए चूंकि अनआइडेंटिफाइड है तो इस पर जो है कोई ये नामजद नहीं है, तो लेकिन फिर भी रिएक्शन ये आ रहा है कि छात्र यही कह रहे हैं कि सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन जो है शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है।
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए भी। और देखिए, ये आज आंदोलन का 20वां दिन है, 20 दिन हो चुके हैं। अब इस दौरान क्या हुआ है, इस दौरान जब मुख्यमंत्री आवास CM आवास वहां की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, बैरिकेडिंग कई तरह की कर दी गई है, भारी फोर्स वहां पर डिप्लॉय किया गया है, सावधानी बरती जा रही है, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और इसीलिए कई लेयर की बैरिकेडिंग भी यहां पर की हुई है। देखिए, आपको दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देगा, हर जगह सन्नाटा है, लेकिन वहां पर आपको फोर्सेस नजर आ रही हैं, आपको बैरिकेडिंग नजर आ रही है, कहीं पर लकड़ियों की बांस बल्लियों से बैरिकेडिंग की गई है, तो कहीं पर इस तरह से अडल्स लगाए गए हैं। तो छात्रों को लेकर किस तरह का हंगामा और अभी ये छात्र आंदोलन किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या इस पूरे मामले में अब सरकार का एक्शन रहने वाला है, डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के धरने के 19वें दिन की ये तस्वीर है। धरना स्थल खाली खाली नजर आ रहा है, छात्रों की संख्या पहले से काफी कम नजर आ रही है। सवाल उठने लगा है कि क्या आंदोलन में थकान आ गई है। सबसे अहम बात ये कि तीसरे दौर की वार्ता के बाद सरकार की तरफ से भी कोई पहल नहीं हुई है।
3: यहाँ पर भी दरअसल अब चिंता इस बात की है कि आंदोलन को आगे कैसे ले जाए, क्या कोई आगे मिशन बचा, क्या कोई उद्देश्य बचा है। अब ज्यादातर JPSC के छात्र चले गए, लेकिन CGL के निमित्ताओं के खिलाफ छात्र यहाँ पर डटे हैं जो इसके पीड़ित हैं। रास्ता आखिर निकले कैसे, वो कह तो रहे हैं कि आंदोलन चलेगा, जो है वो यहीं डटे हुए हैं, लेकिन ये आंदोलन आगे क्या जाएगा, इसकी भूमिका क्या होगी, उद्देश्य क्या होगा, सरकार की तरफ से वार्तालाप के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है। और अगर ऐसे में प्रस्ताव नहीं आता है तो छात्रों के लिए मुश्किल है कि आंदोलन को किस दिशा में कैसे चलाएंगे। इन तमाम चुनौतियों के बीच ये छात्र कुछ मोर्चा डालकर अड़े हैं, कुछ घर जा चुके हैं, कुछ इंतजार में है कि आखिर रास्ता कैसे निकलेगा।
2: छात्र नेता और आंदोलन को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल भी मानते हैं कि संख्या तो घटी है, लेकिन उनका कहना है कि आखिरी सांस तक आंदोलन जारी रहेगा।
4: संख्या कम होगी फिर बढ़ेगा, फिर कम होगी बढ़ेगा, एक नहीं कहते हैं युद्ध फिर विराम फिर युद्ध, जो चलता रहता है वही अभी परिभाषा है। अभी युद्ध करके आए हैं, कुछ थके हैं, इसलिए विराम की अवस्था में, फिर युद्ध की तैयारी में होंगे, लेकिन ये आंदोलन चलेगा। चूंकि अब बिना रिफॉर्म के अगर रुक गए तो फिर आने वाले समय में भी इसी प्रकार सीटों को बेचा जाएगा।
5: मत तो आखिरी सांस तक जवाब नहीं देगी यहाँ पर, जैसे जितने भी लोग हैं आखिरी सांस तक यहाँ पर रहेंगे, और जितना हो पाएगा लोग अभी बिहार से हरियाणा से जहाँ से भी हो पा रहा है लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हम लोगों को। अभी
3: आज जो संख्या है ना, मैं देख रहा हूँ जो कम्युनिकेशन ग्रुप है, व्हाट्सएप बनाया गया, लगातार अपील की जा रही है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आइए सपोर्ट कीजिए, क्या हो गया, वो सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा
5: है? अभी क्या है ना कि सब अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा बिजी है, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सब इंडिविजुअल करके आ रहे हैं, जैसे ही कोई रैली या मार्च जैसे ही कोई निकलता है सब फिर वापस से वैसे ही। आप
2: आंदोलन के भविष्य पर उठते सवालों के बीच छात्रों को समर्थन देने देर शाम धरना स्थल पर BJP नेता और पूर्व CM रघुवर दास पहुंचे। धरना स्थल पर कुछ देर बैठकर छात्रों से बात की, उन्होंने सरकार से CBI जांच की मांग की।
6: लोकतंत्र में ये जो हमारी जनता है यही मालिक है, इसलिए मैं सरकार से अविलंब मांग करता हूं, छात्रों को धमकाना बंद करो। छात्रों की जो जायज मांग है, जेपीसी चौधरी जेपीसी।
0: और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर नांदेड़ से पंजाब के, जहां सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमला हुआ है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुखबीर सिंह बादल पर। शिरोमणि अकाली दल के लीडर सुखबीर सिंह बादल, नांदेड़ में उन पर हमला होता है, उसके बाद अस्पताल में उनको भर्ती कराया जाता है। कमलजीत संधू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी। कमलजीत, क्या जानकारी है?
7: ये हमला थोड़ी देर पहले हुआ है। आपको बता दें, एक निहंग सिख है और आज सुबह सुबह गुरुद्वारा गए हुए थे, और आपको बता दें वहां से विजुअल्स भी आए थे, उस टाइम साझा भी किए गए थे। और जाहिर सी बात है, काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि 4 दिसंबर 2024 को भी इस तरह का हमला हुआ था, जहां पे एक आदमी ने उसे फायर करने की कोशिश की थी, असैसिनेशन अटेम्प्ट था, तो उस टाइम भी सवालिया निशान उठाए गए थे। और इस वक्त वो नांदेड़ साहिब में है और वहां पे इस तरह का हमला हुआ, और ऐसा बताया जाता है कि बाजू में सुधीर बाबू को चोट आई है और वहां पे उनको अस्पताल ले जाया गया है। और चोट हालांकि इसको माइनर इंजरी की तरह बोला जा रहा है। और आपको बता दें, तख्त श्री हजूर साहिब में वो सुबह गए थे और इलेक्शन का समय है, जाहिर सी बात है काफी एक्टिव है, और सुधीर बादल जगह जगह जा रहे हैं। नांदेड़ साहिब भी वो पहुंचे थे, जो कि महाराष्ट्र में है, और अब से थोड़ी देर पहले ऐसा बताया जा रहा है कि एक नहंग है जिन्होंने उस समय एक कृपाण से उनके ऊपर हमला किया, और हालांकि कट माइनर आया। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि निहंग को उसी टाइम लोगों ने घेर लिया और हिरासत में लिया है, लेकिन पूछताछ चल रही है। और आपको बता दें कि उसी वक्त अगर हम बात करें तो उनको हजूर साहब से ले जाया गया, और एक निजी अस्पताल है, यशोसाई हॉस्पिटल है, उनको वहां पे भर्ती कराया गया है।
0: अच्छा कमल जी, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती जानकारी मिल पा रही है, तो ऐसे में कुछ कहना अभी बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या एक बार आप फिर से बता सकते हैं कि जो हमले की जानकारी है, वो हमला किससे किया गया है? क्या फायरिंग का मामला है या फिर किसी और हथियार के साथ उन पर हमला किया गया है, और उनके साथ और भी कोई घायल हुआ है? क्योंकि सिक्योरिटी उनके साथ होती है।
7: देखिए, मैं आपको साफ कर देती हूँ, कृपाण से हमला किया गया है, और निहंग होते हैं कई बार वो कृपाण लेके चलते हैं, और अक्सर लेके चलते हैं। और जब वो सुबह सुबह गए थे गुरुद्वारा, और आपको बता दें कि सुबह सुबह वहां से हमारे पास शॉट्स भी आए थे, जहां पे तख्त श्री हजूर साहिब में सुखबीर बादल गए, और वहां पे तभी मौका पाते हुए गुरुद्वारे की विसिनिटी में ऐसा बताया जाता है कि कृपाण से हमला किया गया, जिसकी वजह से उनको बाजू में चोट आई है। हालांकि बहुत ज्यादा इंजरी नहीं हुई है, लेकिन उनकी टीम ने हमें कंफर्म किया है कि उनको इंजरी आई है, और उसी वक्त जो निहंग है उसे लोगों ने घेर लिया और पूछताछ कर रहे हैं। और अब क्या मंशा रही होगी वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, खासतौर पे पंजाब में जब 6-8 महीने रह चुके हैं चुनाव को लेकर इस तरह का हमला होना। और आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जहां पे सुखबीर बादल निशाने पे रहे हैं। आपको याद होगा कि 4 दिसंबर 2024 को वहां पे जब सुखबीर बादल गोल्डन टेंपल में थे, तो तब भी आपको बता दें तब भी उनको निशाना बनाया गया था, और उस टाइम नारायण सिंह चौड़ा हैं जो डेरा बाबा नानक से थे, उन्होंने एक फॉर्मर मिलिटेंट थे जिन्होंने उनको निशाना बनाया था, तो उसमें एक नैरो एस्केप रहा था। लेकिन इस बार वो स्टेट के बाहर थे, देखिए उनके पास फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनके पास जेड कैटेगरी सिक्योरिटी तो रहती ही है, लेकिन उसी बीच में जहां पे वो गुरुद्वारे गए हैं और उसी विसिनिटी के अंदर अंदर इस तरह का हमला हुआ है।
0: अब बिल्कुल, अब ये बेहद गंभीर वाला मामला है, क्योंकि जैसा कि आपने खुद बताया कि चुनाव बेहद नज़दीक है पंजाब में, तो राजनीतिक सरगर्मी भी यहाँ पर बढ़ गई होगी। लेकिन वही सवाल कि जब कोई वीआईपी जाता है, मूवमेंट होता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए जाते हैं, और ऐसे में सिक्योरिटी पर भी सवाल उठेंगे कमल जी या नहीं?
7: देखिए, वो जेड प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी से हैं, और खास तौर पे चुनाव का समय और थ्रेट परसेप्शन वो हर बार लिया जाता है, और आपको वहां एक क्लोज फिजिकल बॉडी प्रॉक्सिमिटी जो सिक्योरिटी है वो दी जाती है, लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट है ये स्टेट के बाहर हुआ है, गुरुद्वारे के पास हुआ, और हमने अभी हाल फिलहाल में भी देखा है अंबाला में भी इस तरह से, जहाँ पे वाई कैटेगरी सिक्योरिटी है प्रोवाइड की गई थी, उसके बावजूद जो प्रोटेक्टिव है उसके ऊपर हमला हुआ है। लेकिन आपको बता दें ये एक निहंग ने इस तरह का हमला किया है, उसे घेर लिया गया है, जाहिर सी बात है एक बार पुलिस वहां पे पहुंच के उससे पूछताछ करेगी, जो सिक्योरिटी है उनका काम है उनको सेफ पॉइंट पे ले जाना, तो उनको तुरंत ही एक निजी अस्पताल ले जाया गया है जहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है इस वक्त।
0: बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बता दें, देखिए बहुत जरूरी है बताना, सुखबीर सिंह बादल पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब उन पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक निहंग की तरफ से कृपाण से जानलेवा हमला किया जाता है। अब देखिए ये वीडियो भी सामने आ गया है, फुटेज सामने आ गया है, अब इस फुटेज में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है ये उस वक्त का है जब उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि जैसा कि अभी कमल जी बता रही थी कि जैसे सिक्योरिटी उनको मिली हुई है चुनावों के मद्देनजर, और हाथ में चोट है ये आप देख सकते हैं, उनके हाथ में कपड़ा बांधा हुआ है, और केसरिया आप देख सकते हैं कपड़ा उनके हाथ में बांधा हुआ है, क्योंकि ये बताया गया है जो निहंग की तरफ से कृपाण से जानलेवा हमला किया गया तो वो उनके हाथ में चोट आई है, और सुखबीर सिंह बादल के हाथ में चोट आई, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तुरंत उनको अस्पताल ले जाया गया महाराष्ट्र के नांदेड़ में, और ये देखिए इमरजेंसी में जैसे ही उनको ले जाया गया यहां पर उनके समर्थक और उनके साथ में सिक्योरिटी की पूरी टीम मौजूद है, और ये सीधे अस्पताल में पहुंचे हैं, अस्पताल के सीसीटीवी से वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री पंजाब के शिरोमणि अकाली सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक निहंग की तरफ से हमला किया जाता है कृपाण से, और 2000 नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर के पास ये बताया जा रहा है, जब वो गुरुद्वारे में पहुंचते हैं मत्था टेकने के लिए अपने परिवार के साथ उस वक्त उन पर ये हमला होता है, उनका परिवार उनके साथ में मौजूद था, एक निहंग से उनका वाद विवाद, और उसके बाद फिर गुरुद्वारा परिसर में किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई, निहंग सिख ने कृपाण निकाली और सुखबीर सिंह बादल पर हमला कर दिया, हाथ पर चोट आई है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जैसे उनके आगे सिक्योरिटी टीम है और उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी से उतरते आप देखिए उनके हाथ में एक कपड़ा पूरे उनके हाथ को बांधा हुआ है, क्योंकि खून बह रहा होगा आमतौर पर, जैसा बताया कि कृपाण से हमला हुआ है, तो ऐसे में उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, और जब अस्पताल में वो पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, तो ये तस्वीरें आपके सामने है, सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ, पंजाब में चुनाव है, पंजाब में चुनाव से पहले इस तरह की जो खबर आती है वो आमतौर पर बड़ी है। अब कमलजीत हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी हुई है, कमलजीत अब तस्वीरें भी सामने आ रही है और इसमें देखा जा सकता है कि उनके हाथ में चोट लगी है, कपड़े से उनके हाथ को बांधा हुआ है और सीधे अस्पताल में उनको ले जाया जा रहा है, सिक्योरिटी टीम उनके साथ में मौजूद है।
7: देखिए उनके पास सुरक्षा घेरा जरूर है, लेकिन जहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, और कई बार ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है खासतौर पर जब चुनाव हो, या फिर जिस तरह एक रिलीजियस प्लेस में कहीं गुरुद्वारे में जाना प्रोटेक्टिंग का, वहां पे अक्सर पहले तो रखी भी की जाती है, और जहां पे आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ स्टेशन होता है तो अक्सर प्रोटोकॉल कहता है कि साझा करनी होती है वो जानकारी, ताकि वहां का जो एरिया का जो डोमेन है या एसपी है या कोई हायर अथॉरिटी है उन्हें जरूर कन्वे किया जाए कि इस तरह का जेड कैटेगरी या जेड प्लस कैटेगरी का कोई प्रोटेक्टिव है वो वहां पर आया है। उसके बाद जो अगर हम बात करें एक एसओपी इन प्लेस होती है, तो क्या ये एसओपी फॉलो की गई थी, और खास तौर पे अगर आप देखें कि कई जगह होते हैं जहाँ पे हार्ड लाइनर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी आइडियोलॉजी या बात से आपत्ति जरूर होती है, और आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जो कॉन्ट्रोवर्सी चली है खासतौर पे
0: बिल्कुल, लेकिन मामला बहुत ज्यादा गंभीर है कमल जी, इसे कहा जा सकता है, हालांकि शुरुआती अब जानकारी ये भी आ रही है कि एक पुलिसकर्मी भी यहां पर घायल हुआ है और एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ उससे की जाएगी। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: पते के बाद उत्तर प्रदेश में एक और बहुत बड़ी चोरी की करेंगे और श्री राम मंदिर चोरी को लेकर जो दान पात्र में चोरी को लेकर मामला है वो बहुत सियासी तूल पकड़ता जा रहा है, ये सभी ने देखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे हैं मोहसिन रजा, उनकी तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उस ज्ञापन में इस बारे में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की 70,000 संपत्तियां गायब हो गई हैं। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में 2,00,000 रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों में अब बस 1,27,000 ही वक्फ संपत्तियां बची हुई हैं और मौलाना शाहबुद्दीन है वो इस मामले में पहले ही कई सबूत सौंपने का दावा कर चुके हैं।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: एक शहर जिसकी पहचान कांच की चूड़ियों से है, लेकिन फिरोजाबाद की कहानी अब सिर्फ चूड़ियों तक सीमित नहीं है। यहाँ कांच से बने उत्पाद दुनिया के 100 से ज्यादा देशों तक पहुँच रहे हैं, यूरोप से अमेरिका तक, जर्मनी से जापान तक। और इस बदलती तस्वीर के पीछे है फिरोजाबाद का सदियों पुराना हुनर और ODOP यानी एक जनपद एक उत्पाद का नया सहारा। फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ चूड़ियाँ नहीं बनती, कांच के सजावटी सामान से लेकर अलग अलग तरह के क्लास प्रोडक्ट तैयार होते हैं और इनमें से कई उत्पाद विदेशों तक पहुंचते हैं। ODOP के तहत जब फिरोजाबाद के कांच उद्योग को विशेष पहचान मिली तो सरकार की तरफ से कारोबारियों को लोन, सब्सिडी, प्रशिक्षण और तकनीकी मदद जैसी सुविधाएं मिलने लगी। यानी पुराना हुनर, नई तकनीक और बड़ा बाजार।
1: ODOP से जो हमें सबसे बड़ा फायदा मिला वो ये है कि जो हमें बैंक से सब्सिडी मिली, मतलब जिला उद्योग केंद्र से, और वो उतने पीरियड का इंटरेस्ट फ्री लोन मिला।
0: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ODOP प्रशिक्षण योजना के तहत 1,778 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 5,550 लाभार्थियों को फायदा मिला। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले 12 वर्षों में अलग अलग सरकारी योजनाओं के जरिए करीब 11,000 से ज्यादा लाभार्थियों तक सहायता पहुंचने का दावा किया गया है। इनमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के 624 लाभार्थी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के 1,996 लाभार्थी और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के 627 लाभार्थी शामिल हैं।
2: पहले से मतलब बेहतर है, यहाँ काम भी मिलता है, अच्छा भी लगता है और काम करने में मन भी लगता है, और इससे मतलब इधर उधर जाने की कोई मतलब तकलीफ नहीं हुई मुझे।
0: ODOP ने इस विरासत को सब्सिडी से सहारा, तकनीक से रफ्तार और ग्लोबल मार्केट से नई पहचान देने की कोशिश की है। कभी जिसकी पहचान सिर्फ चूड़ियों के शहर के तौर पर होती थी, आज वही फिरोजाबाद कांच के कारोबार की ग्लोबल पहचान बनने की तरफ बढ़ रहा है।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: जाएगा 10 से 15 हजार रुपये खर्चा होता है इस बार।
1: जेन जी के सहारे देश के चुनाव सारे, चुनाव की दस्तक सबको जेन जी की याद आई, जेन जी का साथ आएगा सबको चुनाव जितवाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन जी ने जो दम दिखाया था उसने देश की सभी पार्टियों के सभी चुनावी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और सियासी पार्टियों को अब जेन जी की ताकत का एहसास हो गया है। इसीलिए चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या यूपी की सत्ता में विराजी बीजेपी हो, सभी ने अब जेन जी पर अपना पॉलिटिकल सिस्टम शिफ्ट कर दिया है। यूपी की चुनावी बिसात में अपना दाव चलने के लिए राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेन जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। राहुल गांधी के प्रयागराज में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद बीजेपी ने भी अपना फोकस जेन जी पर शिफ्ट कर दिया है। युवाओं को लेकर तैयारियों का रोड मैप लेकर बैक टू बैक दिल्ली में मीटिंग की जा रही है। सीएम योगी के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और युवाओं से जुड़ी योजनाओं पर मंथन किया। वहीं से पहले ही यूपी में योगी सरकार और बीजेपी ने जेन जी संवाद के लिए कैंपेन शुरू किया है, जिसमें योगी सरकार के मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेन जी चौपाल कर रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस जेन जी को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही, वहीं समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी। अखिलेश यादव ने यूपी के मुद्दों को जंतर मंतर से लेकर संसद तक सामने रखा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा।
2: ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
1: यूपी के चुनावी रण में खुद को पिछड़ता देख अब बहुजन समाज पार्टी भी जेन जी को लेकर माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेन जी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी गई है और आकाश आनंद ने सीधे सरकार के साथ साथ अखिलेश यादव को अंकल बना दिया।
3: मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूँ। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े
4: अखिलेश भैया,
3: अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं।
1: तो साफ है कि यूपी में 2027 के चुनाव को देखते हुए सियासी पार्टियां जेन जी को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: सभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष एससी हूं इसलिए मेरा अपमान किया गया। नड्डा ने कहा निंदा करते हैं जांच कराएंगे। रांची विधानसभा तक प्रदर्शन मामले में करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसएसपी ने कहा कोई नामजद एफआईआर नहीं। सीएम सोरेन के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी हमलावर। जेन जी आंदोलन ने बदला सियासत का मूड। यूपी में नौजवानों को चुनाव में टिकट देने पर काम कर रही है बीएसपी। बीजेपी का युवाओं पर फोकस। महिलाओं के खाते में पैसे भेजने पर चल रहा है काम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नांदेड़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनके बाएं हाथ में चोट लगी है। गुरुद्वारा परिसर में यह हमला किया गया और हमले के बाद सुखबीर सिंह बादल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। यशोसाई अस्पताल में उनका इलाज इस वक्त हो रहा है। दिवेश सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दिवेश, इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि किस शख्स ने हमला किया है, क्योंकि अब वो हिरासत में, पूछताछ में क्या पता चला?
1: जी, आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल जो कि अकाली दल के नेता हैं, वो गुरुद्वारा पहुंचे थे नांदेड़ में और माता साहब कौर इलाका जो है वहां पर जब वो जा रहे थे, अंदर प्रस्थान कर रहे थे, तभी एक निहंग के कपड़ों में एक व्यक्ति आया और उसने एक कृपाण जैसे एक हथियार से सुखबीर सिंह बादल पर हमला कर दिया। उनके दाहिने हाथ में जख्म हुआ है और जिस वजह से उन्हें तुरंत यशोसाई अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस टीम मौके पर है, उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। अभी ये पता लगाने की कोशिश चल रही है कि ये हमला क्यों हुआ, क्यों उसने हमला किया, क्या उसका बैकग्राउंड है, उस बारे में पुलिस इंफॉर्मेशन जुटा रही है, उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस के जो वरिष्ठ अफसर है वो यशोसाई अस्पताल पहुंचे हुए हैं और वहां पर थोड़ी देर में वो सुखबीर सिंह बादल से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जो आरोपी है जिसने हमला किया है उसके बारे में
0: आपको नांदेड़ के डीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। प्राथमिक जानकारी आप क्या देंगे इस हमले के बारे में, कौन है वो शख्स जिसने हमला किया है?
2: नहीं, अभी मुझे 5 मिनट पहले ही पता चला है, तो उसमें जो सस्पेक्ट है उसको पुलिस की कस्टडी में लिया गया है, उसकी पूछताछ चल रही है उसके ऊपर। तो उनके ऊपर अटैक का जब अटेम्प्ट हुआ तो जो पीआई था उसने भी उनको बचा लिया, उसको भी माइनर इंजरी है और सुखबीर सिंह बादल सर को भी एक माइनर इंजरी है। अभी ही स्टेबल एंड अभी हॉस्पिटल में हुआ।
0: कहाँ पर चोट आई है उन्हें, इस बारे में कुछ पता चला?
2: राइट फोरआर्म पे 4-5 सेंटीमीटर का वुंड है उनके ऊपर। तो उनको जस्ट एक 10-12 स्टिचेस करने की प्रोसीजर चल रही है हॉस्पिटल पे। तो माइनर इंजरी है, ही स्टेबल एंड पुलिस भी पूछताछ कर रही है आगे की।
0: तो मतलब आउट ऑफ डेंजर माने उन्हें, आपको जो जानकारी मिली है? और जो शख्स पकड़ा गया है वो निहंग है और किस हथियार से हमला हुआ है, कुछ जानकारी?
2: वो डिटेल्स अभी मैं पुलिस से ले रहा हूँ, अभी तो इतनी डिटेल्स है मेरे पास।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नांदेड़ के डीएम जानकारी देते हुए कि राइट फोरआर्म में इंजरी हुई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है सुखबीर सिंह बादल को, और जिस शख्स ने ये हमला किया है उससे भी जानकारी अब जुटाने की कोशिश की जा रही है। कमल जी संधु मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमल जी, तो डीएम भी ज्यादा जानकारी नहीं दे पाए हैं आप?

0: क्या जानकारी मिली है, कौन है ये शख्स, इसका बैकग्राउंड क्या है?
1: पंजाब पुलिस के अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तरफ से भी सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई है। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा सुरक्षा। और इससे पहले भी आपको बता दें कि एक असासिनेशन बिड हो चुका है और 4 दिसंबर 2024 को हुआ था, जब उनको तनखिया डिक्लेयर किया गया था और एक पनिशमेंट के तौर पर उन्हें हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल के बाहर वो खड़े थे, तो तब उनको निशाना बनाया गया था। तब नारायण सिंह चौड़ा नाम का एक खालिस्तानी है, उनका नाम आया था, उस टाइम भी घेराबंदी करके उन्हें हिरासत में लिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें, यहां पे वो पंजाब में नहीं थे, वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में थे जहां पे इस तरह का हमला हुआ है। जाहिर सी बात है एकदम अचानक से मौका देखते हुए
0: तमाम जानकारी के लिए आपका कवलजीत। और अब रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का।

0: श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में हमला, अस्पताल में हुए भर्ती। नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल, पुलिस का बयान, फिलहाल खतरे से बाहर है नेता। नांदेड़ में गुरुद्वारे के अंदर सुखबीर बादल पर हमला, निहंग पर धारदार हथियार से वार का आरोप। सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ में लगी है चोट, निजी अस्पताल में भर्ती। इस हमले में एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
1: शुक्रिया
0: तमाम जानकारी के लिए आपका कमलजीत। और अब रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का।

श्रोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में हमला, अस्पताल में हुए भर्ती। नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल, पुलिस का बयान, फिलहाल खतरे से बाहर है नेता। नांदेड़ में गुरुद्वारे के अंदर सुखबीर बादल पर हमला, निहंग पर धारदार हथियार से वार का आरोप। सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ में लगी है चोट, निजी अस्पताल में भर्ती। इस हमले में एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हंगामे की भीड़ चढ़ गया मॉनसून सत्र, इंडिया ब्लॉक का विरोध प्रदर्शन, सामने आए इंडिया ब्लॉक और एनडीए के सांसद, मकर द्वार पर नारेबाजी। इंडिया ब्लॉक वर्सेज एनडीए, विपक्ष संसद में पीएम मोदी से मिले गृहमंत्री अमित शाह, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड में विरोध प्रदर्शन का 20वां दिन, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और कथित परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में लाठीचार्ज के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, संसद में पीएम मोदी से मिले गृहमंत्री अमित शाह, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड में विरोध प्रदर्शन का 20वां दिन, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और कथित परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में लाठीचार्ज के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, 1200 विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन जारी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की सरकार को चेतावनी, सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल करेंगे। छावनी में तब्दील हुआ सीएम सोरेन का आवास, पूरे इलाके की किलेबंदी। जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम में छात्र अब भी डटे हुए हैं। विधानसभा मार्च मामले में 600 प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर दर्ज। कांग्रेस 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, बैठक में देश के छात्रों और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। सोनिया गांधी वोटर लिस्ट मामला, एफआईआर की मांग पर कोर्ट का आदेश टला, 29 अगस्त को होगा फैसला। जंतर मंतर का सीजन 2 जल्द, सड़क पर फिर आंदोलन की तैयारी, अभिजीत दिपके बोले नए आंदोलन का आगाज जल्द होगा। 15 अगस्त को सीजेपी शुरू करेगा स्कूल ठीक करो कैंपेन, महाराष्ट्र के इंगोली में अभिजीत दिपके के गांव से शुरुआत के आसार। स्कूल ठीक करो अभियान के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी, इंगोली से शुरू अभियान, देश भर में आंदोलन बढ़ाने की तैयारी। यूपी में जैन अल्फा के विरोध प्रदर्शन को सीजेपी का समर्थन, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर युवाओं के आंदोलन के साथ खड़ा है सीजेपी। पंजाब में फार्मेसी अफसर भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, 17 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश। फार्मेसी भर्ती पर बीजेपी का आप पर हमला, बीजेपी बोली आपने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ है। फार्मेसी भर्ती विवाद में बीजेपी ने सीजेपी पर सवाल छाना, बीजेपी का सवाल अब सीजेपी और दिपके गैंग कहां है। बंगाल में आज और कल मनाया जा रहा है विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस, 14 अगस्त की शाम सभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च। विभाजन की त्रासदी और विस्थापितों के साहस को किया जाएगा याद, 1947 के बंटवारे से प्रभावित लाखों लोगों की स्मृतियों को समर्पित होगा आयोजन। अयोध्या राम मंदिर सीईओ चयन के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी, 35 सवालों की प्रशासनिक क्षमता, भीड़ प्रबंधन और बड़े आयोजन का अनुभव परखा जाएगा। राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में फिर बदलाव, बिना सिलेबस से पहनेंगे पुजारी, धार्मिक समिति ने संतों के प्रस्ताव को दी मंजूरी। योगी सरकार का एंटी लैंड माफिया अभियान जारी, अब तक 84,005 हेक्टेयर जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। यूपी सहायक लेखाकार परीक्षा के नतीजे घोषित, 1,800

0: 28 पदों पर 1643 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। लखनऊ में जेन जी को राह दिखाएगी एलयू छात्रों की वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स में माफिया युग से बदलाव का संदेश। तालबंदी प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी, 81 भवन और 6 मस्जिदों में अब तक ज्यादातर हिस्से हटाए गए, पुलिस फोर्स तैनात। तालमंडी में जल्द पूरा होगा चौड़ीकरण का काम, 650 मीटर लंबी और 17.5 मीटर चौड़ी सड़क इसी साल तैयार करने का लक्ष्य। वक्फ संपत्तियों की जांच को लेकर मोहसिन रजा की सीएम योगी से मुलाकात। आज तक की खबर का असर, हमीरपुर में जैन अल्फा के प्रदर्शन का असर, सड़क देखने गांव पहुंचा प्रशासन, बच्चों के प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने लिया जायजा, सड़क निर्माण की उम्मीद। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट मांगी, एलडीए ने अवैध भवनों पर कार्रवाई तेज की, 51 भवन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चिन्हित। 2027 चुनाव से पहले यूपी में महिलाओं के लिए बड़ी योजना की तैयारी, 50,000 की आर्थिक मदद पर मंथन। राहुल गांधी पर यूपी सरकार के मंत्री एके शर्मा का तंज, विश्वविद्यालय लिखने की चुनौती, बोले गन्ने और मक्के का फर्क बता दे तो जो कहेंगे मानने को तैयार हूं। राम मंदिर शराबा चोरी मामले पर अजय राय के गंभीर सवाल, बोले पैसे गिनने वाला जेल गया, जिनके पैसे गिने गए उन पर कार्रवाई कब। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी, आरपीएफ जीआरपी ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड से प्लेटफॉर्म और परिसर की जांच। संभल में 14 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त, राजस्व टीम ने पुलिस के साथ चलाया अभियान, अवैध कब्जे पर चला ट्रैक्टर। केशव प्रसाद मौर्य की शाह से मुलाकात, यूपी चुनावी रणनीति पर मंथन, जेएनजी को लेकर बीजेपी की तैयारियों और 2027 चुनाव के रोड मैप पर चर्चा। बीएसपी की जेएनजी पर नजर, 2027 चुनाव के लिए युवा चेहरों पर दांव, मायावती का युवाओं को समर्थन, आकाश आनंद को जेएनजी की नब्ज टोलने की जिम्मेदारी। मायावती का एससीआरए बिल पर सरकार विपक्ष दोनों पर निशाना, बोली बिल का राजनीतिकरण हुआ है, विपक्ष ने सदन नहीं चलने दी है। कानपुर में बीजेपी का वीर सम्मान अभियान, युद्धवीरों के घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता, स्वतंत्रता दिवस से पहले पूर्व सैनिकों का सम्मान। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में 25 बीजेपी नेताओं और हिंदू कार्यकर्ताओं पर मुकदमा वापस, कोर्ट ने दी अभियोजन की केस वापसी की अर्जी को मंजूरी। AK-47 फायरिंग पर तेजस्वी का बड़ा मार्च, 19 अगस्त को राजभवन कूच करेंगे आरजेडी नेता, सरकार पर बढ़ेगा दबाव। प्रशांत किशोर के 10,000 युवाओं को बाहर नौकरी भेजने के बयान पर बिहार में सियासी बवाल, बांकीपुर विधायक का पलटवार, नौकरी नहीं तो क्या आपके घर की फर्श साफ करेंगे युवा। किसानों की एक और पदयात्रा, 16 अगस्त से दिल्ली कूच, खनौरी बॉर्डर से जंतर मंतर तक मार्च करेगा गैर एसकेएम किसान संगठन। कर्नाटक विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज, सीएम विजय का चेन्नई डेवलपमेंट पर फोकस, बकिंगम नगर में केरल की तर्ज पर वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी। महाराष्ट्र भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव, फडणवीस बोले उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन, 5 सदस्य होंगे शामिल। एनसीपी विधायक जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी, फरार गैंगस्टर जिशान अख्तर ने ऑडियो मैसेज के जरिए दी धमकी। बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, एमवाईएमसी को अपने कब्जे में लेने के बीएमसी के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। महाराष्ट्र के अंबरनाथ बीजेपी एमएलएस कार्यकर्ताओं के जोरदार बवाल, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में भिड़त के बाद इलाके में तनाव। महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई से डोमिनोज पर बड़ा असर, नियमों के उल्लंघन पर डोमिनोज के 5 आउटलेट्स बंद। नेपाल दंगों में आईएसआई कनेक्शन का दावा, गृह मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान तुर्की कतर से मदरसों को फंडिंग। नेपाल दौरे पर पाकिस्तानी मूल के मौलाना मोहम्मद इलियास घुमान और काठमांडू मस्जिद के मुफ्ती अबू बकर कासमी की तस्वीर आई सामने, इन पर दंगा भड़काने का है आरोप। पाकिस्तान का आतंक का चेहरा बेनकाब, हाफिज सईद की तारीफ में उतरे पूर्व पाक मंत्री, अलीती आतंकियों के साथ मन साझा कर भारत के खिलाफ उगला जहर। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने आतंकी हाफिज सईद के साथ साझा किया मंच, पाक के आतंक के खेल को बेनकाब किया, मैं हाफिज सईद का गुलाम हूं ये कहा। दिल्ली लाल किला हमले का मास्टरमाइंड अलकायदा, यूएन रिपोर्ट बड़ा खुलासा, हमले के पीछे अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट का नाम सामने आया। 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, राजधानी दिल्ली में सुरक्षा सख्त, पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। दिल्ली के लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस का फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा कारणों से वाहनों की हो रही है सघन जांच। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, लाल किले के आसपास 7 सड़कें बंद, कई जगहों पर लागू किया गया है ट्रैफिक डायवर्जन। 15 अगस्त से पहले पंजाब में हाई अलर्ट, स्वतंत्रता दिवस को लेकर पंजाब पुलिस 40,000 जवानों की करेगी तैनाती। जामनगर के समुद्री तट पर मरीन कमांडो की पेट्रोलिंग, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। देहरादून में पहाड़ कड़क कटाई के दौरान सड़क पर आ गया मलबा, मसूरी देहरादून मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम, घंटों फंसे रहे वाहन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे ग्रामीण। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा, वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है पानी, नवनेरा बैराज से 4.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 12 में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे उफनती नदी पार करने को मजबूर। पुल नहीं होने से बढ़ी है परेशानी। तेलंगाना के कोमाराम भीम जिले में भारी बारिश के बाद सड़क संपर्क टूटा। बाढ़ के पानी के बीच गर्भवती महिला को डोली के सहारे पहुंचाया गया। देहरादून में सड़क हादसे में दिल्ली की रहने वाली बीटेक छात्रा वैष्णवी रावत की मौत। मां ने लगाई इंसाफ की गुहार। नागपुर में तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर, 2 की मौत। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के बदायूं में गाय की मौत के बाद डॉक्टर से मारपीट। ग्रामीणों ने कार में की तोड़फोड़, 4 हिरासत में। कौशाम्बी में बैल को लेकर विवाद, दलित बुजुर्ग से गाली गलौज और मारपीट का वीडियो वायरल, 2 गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में 3 साल के मासूम का दिनदहाड़े अपहरण, 4 घंटे बाद भोजपुर से बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार। असम के जोरहाट में हाईवे पर तेल टैंकर और एलपीजी वाहन में टक्कर, आग से टैंकर पूरी तरह जलकर खाक। बिहार के वैशाली में मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार की 4 गोलियां मारकर हत्या, सीसी में कैद हुई वारदात। झांसी में कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, घायल शख्स खुद स्कूटी चलाकर पहुंचा अस्पताल। बिजनौर गंगा के बड़े जलस्तर के साथ गांव में पहुंचा मगरमच्छ का बच्चा, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। अलवर में जर्जर स्कूल का बरामदा गिरा, बाल बाल बचे छात्र, टेंट के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं छात्र। ग्रेटर नोएडा में जेब में फटा मोबाइल, 26 साल का युवक गंभीर रूप से घायल, दोनों हाथ और शरीर के निचले हिस्से झुलसे। आगरा में आटे में मिलावट का खेल का खुलासा, खाद्य विभाग के छापेमारी, 1800 किलो सेल खड़ी और 13.5 क्विंटल आटा बरामद। बाराबंकी में कनेक्शन जोड़ने पहुंची पुलिस से ग्रामीणों की झड़प, दरोगा पर ग्रामीण को लाठी से पीटने का आरोप, देर तक हंगामा। रामपुर युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, शराब के नशे में अभद्रता का आरोप। बिजनौर ने बाइक के पीछे दौड़ा गुलदार, वीडियो वायरल, करणपुर गांव में सड़क पर दिखा ये गुलदार। कोयम्बटूर में कॉलेज छात्र की पिटाई के बाद मौत, मारपीट मामले में 5 छात्रों को हिरासत में लिया गया। बगा में पूर्व प्रखंड प्रमुख छोटेलाल यादव की संदिग्ध हालत में मौत, नदी किनारे मिला शव, हत्या की आशंका के बीच जांच में जुट गई पुलिस। राजकोट में बुजुर्ग दंपति से प्रताड़ना का आरोप, बेटे की मौत के बाद प्रॉपर्टी के लिए बहू पोतियों पर FIR। पंजाब के नवांशहर में जहरीला पदार्थ खाने वाले 3 दोस्तों में 2 की मौत। गुजरात के श्रीनगर में हाईवे पर चलते गैस टैंकर में लगी आग, समय रहते गाड़ी से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। साउथ सुपरस्टार सूर्या अपना फार्म चलाने के लिए तैयार, फैमिली ड्रामा फिल्म विश्वनाथ एंड सन्स होगी रिलीज। थिएटर के बाद अब OTT पर रिलीज से तैयार कंगना नॉर्थ फिल्म भारत भाग्य विधाता। 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अब कल से OTT पर कमाल करेगी कॉकटेल 2। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी OTT पर स्ट्रीम, इस साल मई से सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म। हॉरर थ्रिलर फिल्म अरूपी भी OTT को लॉन्च को तैयार, हिंदी मलयालम और तमिल भाषाओं में लॉन्च होगी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर मात्र।
0: इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून सत्र, छात्रों पर एक्शन पर विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया है। आखिर में विपक्ष के हाथ एक और मुद्दा लग गया, ये मुद्दा है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की रैली स्थल के शुद्धिकरण का। इसे लेकर आज राज्यसभा में हंगामा हुआ, खड़गे ने खुद ये मुद्दा उठाया, इसकी निंदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की। बीजेपी ने हालांकि इससे पल्ला झाड़ लिया, वही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पीएम से माफी की मांग कर रही हैं।
2: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये यू माइट हैव रेड द न्यूज़पेपर, इज इट द वे इन डेमोक्रेसी, हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टू आई एम अ लीडर ऑफ अपोजिशन।
0: I am serving. Now, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की है, इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है।
3: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है।
0: वक्त एक ब्रेक का उछला है, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
5: अभी तो डिस्चार्ज हुआ यार।
7: ओले बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
4: 19 years की थी तब मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो मैंने जिम में क्रश बनाया था।
5: उसी से रिलेशनशिप था क्या?
4: यही मोटिवेशन था मेरा जिम जाने का कि
5: जब जिम जाओ आशी तो वहाँ वर्कआउट करो, वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं करना है।
4: मैं 19 साल की थी ना, फिर जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने जिम भी छोड़ दिया था। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिर्फ जॉब ही करूँ, मेडिकल स्टूडेंट थी तो डॉक्टर नहीं तो टीचर ऐसा। तो शी वॉज लाइक कैमरा के आगे क्या कर रही हो, क्या है ये, टाइम पास ही रहना चाहिए, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है वो। फिर जब मॉम ने देखा कि अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसमें, तो
5: यू लॉस्ट योर मॉम आल्सो?
4: आई लॉस्ट माय डैड व्हेन आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड एंड देन आई लॉस्ट हर, तो मेरी शादी नहीं देख पाएंगे।
6: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
7: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
6: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
8: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
9: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
10: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को, और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
11: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
6: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
12: जिस परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को मुख्यमंत्री भगवंत मान सिरे से खारिज करते रहे, सिर्फ नकल की बात कहते रहे, उस परीक्षा को लेकर अब अदालत ने कह दिया है कि उसका पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक की पुष्टि करते हुए अदालत ने सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए जो आदेश दिए हैं उसकी वजह से भगवंत मान सरकार फिर से विरोधियों के निशाने पर आ गई है। 19 जुलाई को पंजाब फार्मेसी ऑफिसर की भर्ती की परीक्षा हुई थी। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने उस परीक्षा का आयोजन किया था। 454 पदों के लिए परीक्षा हुई, करीब 7000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसमें धांधली को लेकर हाईकोर्ट का कहना है कि ये पेपर लीक का मामला है, न कि नकल का कोई मामूली मामला। अदालत का ये बयान इस परीक्षा को रद्द करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। अब अकाली दल ने मान सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पोस्ट कर सुखबीर सिंह बादल पूछ रहे हैं कि क्या पंजाब आप किसी पर कार्रवाई करेगी। कांग्रेस भी पूछ रही है कि इस पेपर लीक का कौन जिम्मेदार है। बीजेपी ने भी आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
13: यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी, जबकि पेपर लीक हुआ था। पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने, छात्रों के सामने जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे उनके सामने सच्चाई आई है।
12: इस मामले में पंजाब पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को नकल के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब 17 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। असीम बस्सी, चंडीगढ़, आज तक।
14: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक।

अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ गुरुद्वारे में हमला, बाएं हाथ में लगी चोट, अस्पताल में करवाए गए भर्ती, हिरासत में हमलावर। हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र, दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, रिजिजू बोले विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं हो सकी सार्थक चर्चा। उत्तराखंड में मंच के शुद्धिकरण पर राज्यसभा में फूटा खड़गे का गुस्सा, बोले दलित हूं इसलिए मेरा हुआ अपमान, नड्डा ने की घटना की निंदा, कहा कराएंगे जांच। रांची में विधानसभा घेराव, हंगामे पर एक्शन, 500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज, सीएम हेमंत सोरेन की आवाज की सुरक्षा बढ़ी, बीजेपी का सरकार पर हमला। और जेन जी आंदोलन से बदला यूपी की सियासत का मिजाज, युवाओं को टिकट देने की तैयारी में बीएसपी, यूथ पर बीजेपी का भी फोकस, महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम पर काम तेज।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अब बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। 20 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र आज हंगामे और गतिरोध के बीच खत्म हो गया। पूरे सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार इस कदर हावी रहा कि कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा तक नहीं हो सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मानसून सत्र के हंगामे की भेंट चढ़ने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग गया, विपक्षी सांसद सिर्फ नारेबाजी के लिए संसद में आए हैं। वहीं विपक्ष ने इसके लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराया।
1: लोकसभा में 25वां दिन भी हंगामे से अछूता नहीं रहा। बैठक की शुरुआत हंगामे से हुई। स्पीकर ओम बिरला ने सदन का माहौल भापा और चंद मिनटों में ही अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगन की घोषणा कर दी।
2: सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।
1: लोकसभा में इस बार तनातनी का आलम ऐसा रहा कि सीमाएं टूटती चली गईं। सूत्रों के मुताबिक आखिरी दिन लोकसभा में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हंगामा होने लगा। हंगामे के चलते स्पीकर का पारंपरिक संबोधन भी नहीं हुआ। सदन शुरू होने से पहले ही नारेबाजी शुरू हो गई थी। स्पीकर को लगा कि संबोधन के लिए अब उचित माहौल नहीं है, तो अब विवेचना का सवाल ये है कि 25 दिन के सत्र में देश ने क्या खोया और क्या पाया, कितने मुद्दों पर चर्चा हुई और कितने मुद्दे अछूते रहे। इस पर बात करने से पहले जरा संसदीय कार्य मंत्री को सुनिए, जो खुद कह रहे हैं कि चर्चा के नाम पर इस बार निराशा ही हाथ लगी।
3: लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीस ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%।
1: किरण रिजिजू की माने तो संसद के दोनों सदनों में इस बार जिस अंदाज में गतिरोध हुआ वो दुखद था और इसके लिए उन्होंने ठीक राह विपक्ष पर फोड़ा।
3: ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए,
1: संसद

0: संसद का काम राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर बहस करना है, लेकिन इस सत्र में चर्चा के नाम पर शून्य बटे सन्नाटा रहा और हंगामे पर पूरा जोर रहा। 25 दिन और 19 बैठकों में 12 बिल पारित हुए, लेकिन बहस सिर्फ एक बिल पर यानी 11 बिल चर्चा के बिना पारित कर दिए गए।
1: एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो बना है, ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल पास हुए।
0: सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन न चलने के लिए एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं।
2: आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं, पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट।
0: वजह चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों पक्षों के सिर्फ फुटबॉल का खामियाजा संसद को भुगतना पड़ा, देश को भुगतना पड़ा। क्या शीतकालीन सत्र में रवैया बदलेगा, इसकी उम्मीद कम ही है।
3: सदन की कार्रवाई,
0: हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक
3: की जाती है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आरोप लगा रहे हैं कि पूरे सत्र के दौरान विपक्ष चर्चा से भागता रहा, जबकि विपक्ष का यह कहना है कि सरकार की मंशा चर्चा करने की कभी थी ही नहीं।
4: मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया, और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं।
5: सत्ताधारी सरकार को इतनी डरी हुई और सहमी हुई पूरे सत्र के दौरान नहीं देखा है, और शायद पहली बार हमने इस सत्र में देखा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी संपूर्ण रूप से सदन की कार्यवाही से परे थे और अनुपस्थित थे, और इसीलिए सदन से पीछे भागते हुए नजर आई इस बार भाजपा की नेतृत्व।
6: खुद ही प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे यहाँ हाउस में बैठ के सुनो, उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मींस डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं। ये उनकी आदत है और ये इनका ईगो जनता तोड़ेगी।
0: बात उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी पूरी रफ्तार से 2027 की चुनावी तैयारियों में जुट गई है। महिला और नौजवान, इन दो वोटर वर्ग पर बीजेपी की खास नजर है। इन दोनों वर्गों के लिए बीजेपी खास रणनीति बना रही है। अब देखिए, खबर यह है कि महिलाओं को 50,000 तक की आर्थिक सहायता देने की तैयारी हो रही है। पहली किश्त में 20,000 रुपए दिए जाएंगे। क्या है बीजेपी का यह पूरा प्लान 2027 के लिए, आपको दिखाते हैं।

0: पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है। इस प्रदर्शन का बड़ा असर होता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं। फिर रांची में आंदोलन के शोले भड़कते हैं। छात्रों और नौजवानों की ताकत के आगे हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ता है।
1: सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है किन किन परीक्षाओं को जांच करने का आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म्स का रद्द करने को लेकर और जांच को लेकर बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है।
0: और फिर राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचते हैं और छात्रों से संवाद करते हैं।
2: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में।
0: ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि देश की राजनीति इस वक्त जेंजी यानी नौजवानों के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, नौजवानों की ताकत के आगे सब नतमस्तक है। और ऐसे में जब यूपी की चुनावी परीक्षा नजदीक है तो नौजवानों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। खबर है कि जेंजी को लेकर बीजेपी खास रणनीति बनाने में जुटी है। दिल्ली में अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की अहम बैठक हुई है। आधे घंटे की बैठक में जेंजी पर विशेष फोकस रहा।
3: चुनावी साल नजदीक है, ऐसे में अब राजनीतिक दलों को यह समझ आ चुका है कि केवल परंपरागत नारों से ही काम नहीं चलने वाला है। उन्हें मालूम पड़ गया है जेंजी का जो उबाल पूरे देश में इस वक्त देखने को मिला है अपने मुद्दों को लेकर, वो मामूली तो नहीं। और इसलिए बीजेपी अब अपनी यूथ विंग के जरिए स्कूल कॉलेजों में युवाओं से युवाओं के संपर्क कराकर संपर्क साधने जा रही है।
0: नौजवानों के साथ साथ बीजेपी महिला वोटरों को साधने की भी कोशिश में है। यूपी सरकार बड़ी आर्थिक सहायता योजना लागू करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने पर विचार हो रहा है। 20,000 रुपए की पहली किस्त चुनाव से पहले दे दी जाएगी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने का प्रस्ताव है। सरकार की प्राथमिकता में एससी, एसटी, बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं हैं। ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी योजना में शामिल करने पर विचार हो रहा है, जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है।
4: उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को या महिलाओं के वोट बैंक को साधने की तैयारी कर रही है। इसी वजह से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है, विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को दिया जाएगा। तो साफ तौर से उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है और ऐसे में इस विचार को माना जा रहा है कि एक अहम कड़ी भाजपा के लिए यूपी में साबित होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
5: तो आइए अब नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल में हुए सांप्रदायिक दंगों वाली साजिश की बात करेंगे, इसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है। देखिए, जानकारी यह मिली है कि नेपाल में हुए दंगे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका संदिग्ध है। 26 जुलाई को नेपाल के सुनसरी जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें कई हिंदुओं की जान चली गई, करीब दर्जन भर कांवड़िए जख्मी भी हो गए। अब यह खुलासा हुआ है कि इन सब के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश है।
6: नेपाल में हिंदू मुस्लिम दंगों के पीछे किसका हाथ था? क्या पाकिस्तान की ISI ने नेपाल में हिंदुओं पर हमला करवाया? नेपाल में 26 जुलाई के दंगे पर नेपाली एजेंसी का चौंकाने वाला खुलासा। नेपाल में हिंसा, साजिश के तार, बांग्लादेश वाया तुर्की और पाकिस्तान। भारत से सटे नेपाल के सीमावर्ती जिले सुनसरी जिले में 26 जुलाई की रात जो दंगा हुआ, जिसमें कई हिंदुओं की मौत हुई, करीब दर्जन भर कांवड़िए गोली लगने से घायल हुए और कई घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। 26 जुलाई की हिंसा को लेकर नेपाली खुफिया एजेंसी ने बड़ी आशंका जताई है। दावा है कि इस हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। नेपाल की राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग यानी NID ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। शुरुआती रिपोर्ट में ISI कनेक्शन का जिक्र होने की बात कही जा रही है। भारत से सटे नेपाली इलाकों में विदेशी मौलानाओं की गतिविधियां जांच के दायरे में है। NID की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में रहने वाला पाकिस्तानी मूल का मौलाना मोहम्मद इलियास घुमान 26 जुलाई को सुनसरी के देवानगंज की एक मस्जिद में पिछले 5 दिन से रुका हुआ था। उसके साथ काठमांडू की जामा मस्जिद का इमाम मुफ्ती अबू बकर कासमी भी मौजूद था। जिन मदरसों में ये ठहरे थे, उनकी फंडिंग पाकिस्तान, तुर्की और कतर के जरिए होती है।
7: नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज गांव पालिका के कप्तानगंज में मुहर्रम के दौरान शिव मंदिर की खाली जमीन पर इस्लामिक झंडे लगाए गए। मुहर्रम समाप्त हुआ तो वहां हिंदू समुदाय के लोगों ने इन झंडों को हटाने की मांग उठाई। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन, सांसदों और जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की गई, लेकिन झंडे नहीं हटाए गए। 26 जुलाई की रात जब कांवरियों का एक जत्था वहां से गुजर रहा था तो उन पर हमला कर दिया गया।
6: NID की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद इलियास घुमान और मुफ्ती अबू बकर कासमी ने नेपाल के उन इलाकों का भी दौरा किया जो भारत की सीमा से सटे और संवेदनशील माने जाते हैं, जिसमें विराटनगर, रौतहट, नेपालगंज और कपिलवस्तु शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों की मस्जिदों और मदरसों में रुकने के साथ साथ कथित तौर पर कट्टरपंथी मुस्लिमों के साथ गोपनीय बैठकें भी हुई।
7: रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा वाले दिन नेपाल के उन इलाकों में बांग्लादेश के ये 9 मौलवी भी मौजूद थे जहां दंगे हुए। नेपाल के इमिग्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक बांग्लादेश के ये 9 मौलवी ढाका से कुआलालंपुर होते हुए काठमांडू पहुंचे थे। ये सभी 30 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंचे थे। नेपाल में ISI की कथित गतिविधियों की रिपोर्ट्स पहले भी सामने आती रही है।
5: और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। थोड़ी देर बाद देखिए गौरव सावंत के साथ रणभूमि।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है। इस प्रदर्शन का बड़ा असर होता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं। फिर रांची में आंदोलन के शोले भड़कते हैं। छात्रों और नौजवानों की ताकत के आगे हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ता है।
1: सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि इन परीक्षाओं को जांच करने का आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म्स का रद्द करने को लेकर और जांच को लेकर, बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है।
0: और फिर राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचते हैं और छात्रों से संवाद करते हैं।
2: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में।
0: ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि देश की राजनीति इस वक्त जेनजी यानी नौजवानों के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, नौजवानों की ताकत के आगे सब नतमस्तक है। और ऐसे में जब यूपी की चुनावी परीक्षा नजदीक है तो नौजवानों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। खबर है कि जेनजी को लेकर बीजेपी खास रणनीति बनाने में जुटी है। दिल्ली में अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की अहम बैठक हुई है। आधे घंटे की बैठक में जेनजी पर विशेष फोकस रहा। नौजवानों के साथ साथ बीजेपी महिला वोटरों को साधने की भी कोशिश में है। यूपी सरकार बड़ी आर्थिक सहायता योजना लागू करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रूपए की आर्थिक सहायता देने पर विचार हो रहा है। 20,000 रूपए की पहली किस्त चुनाव से पहले दे दी जाएगी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 10,000 रूपए की 3 किस्तें देने का प्रस्ताव है। सरकार की प्राथमिकता में एससी, एसटी, बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं हैं। ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी योजना में शामिल करने पर विचार हो रहा है, जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है।

0: क्या जनगण का मन समझेंगी सरकारें, जहां मुख्यमंत्री के सामने बेधड़क होकर बात जेन अल्फा रख देते।
1: मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी।
2: कौन सी स्कूल की है?
3: CMI
2: की। अच्छा, ठीक है, नोट कर ले नाम, है ना, एक बार देख ले।
0: क्या जनगण का मन समझकर अब फैसला लेंगी सरकारें, जहां डिप्टी सीएम के सामने बिना डरे हक की सड़क जेन अल्फा मांगते।
4: चलो बताओ, बताओ
5: क्या नाम है?
6: हमारी सड़क
5: बस पक्की बात है,
6: सड़क के साथ पुल भी होना चाहिए,
5: सड़क दोनों बने, बस दोनों।
0: क्या जनगण का मन समझकर अब सरकारों को अपनी रीत बदलनी होगी, जहां स्कूली बच्चे विधायक से ही सीधे अपनी मांग रखते हैं? क्या जनगण का मन समझकर अब सुधरेगी व्यवस्था, जहां बच्चा बच्चा अब डीएम के दफ्तर में घुसकर अपने अधिकार की बात करने लगा है? क्या जनगण का मन सुनकर बदलेगा सरकारी रंग और ढंग, जहां जेन अल्फा को पता है कि वीडियो बनाकर वायरल होकर कैसे अधिकार लेना है?
6: खड़ा,
0: क्या जनगण के मन को जो अनसुना करेगा बुरा फंसेगा,

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सत्र दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। किरण रिजिजू बोले, विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं हो सकी सार्थक चर्चा। उत्तराखंड में मंच के शुद्धिकरण पर राज्यसभा में फूटा मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा, बोले दलित हूं इसीलिए हुआ मेरा अपमान। जेपी नड्डा ने घटना की निंदा, कहा कराएंगे जांच। रांची में विधानसभा घेराव हंगामे पर एक्शन, 500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। सीएम हेमंत सोरेन के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई, बीजेपी का सरकार पर हमला। जेंजी आंदोलन से बदला उत्तर प्रदेश की सियासत का मिजाज, युवाओं को टिकट देने की तैयारी में बीएसपी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
2: आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान फिर बेनकाब। हाफिज सईद का गुलाम बना पूर्व मंत्री।
3: मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ।
2: लश्कर के आतंकियों के साथ शेख राशिद, अमेरिका ने खदेड़ा फिर भी अकड़ नहीं गई।
3: मेरे टेलीफोन में से आपका सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया।
2: भारत को कीदड़ भक्की देने वाले राशिद ऑपरेशन सिंदूर पुल।
3: न चिड़िया चहकेंगी हिंदुस्तान में, न बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेंगी।

0: ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी हेडक्वार्टर। ब्रह्मोस और बमों से उड़ गए सैन्य आतंकी ठिकाने। दुनिया देख ले आतंकिस्तान का असली चेहरा। भारत ने नापाक हरकत पर पीटा। ये नया भारत फिर से घुस कर मारेगा।
1: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। आज रणभूमि में हम बात करेंगे उन चार बड़ी और सनसनीखेज खबरों की जिन्होंने दक्षिण एशिया से लेकर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र तक हड़कंप मचाया हुआ है। सबसे पहली खबर ये, क्या पाकिस्तान का जो गृह मंत्री रह चुका है खूंखार आतंकवादियों की वो गुलामी करता है? जी हां, पाकिस्तान का पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद, वो जो फेडरल रेलवेज मिनिस्टर भी रह चुका है, उसका एक बयान सामने आया है। उसने कबूला है कि क्यों अमेरिका ने उसको देश से निकाल दिया था। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली के लाल किले में आपको याद है वो जो बम धमाका हुआ था, उसे लेकर बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सबसे ताजा और चौंका देने वाली रिपोर्ट है वो सामने आई है, और इस रिपोर्ट पे कहा गया है कि कार बम धमाके के पीछे आखिर अलकायदा, जी हां वही आतंकी संगठन जिसके कई आतंकी कभी पाकिस्तान तो कभी अफगानिस्तान में रहते हैं, तो अलकायदा के किस नए और खतरनाक मॉड्यूल का हाथ था, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। अलकायदा अब भारत में कौन सी नई और खौफनाक चाल चल रहा है जिसके बारे में आपको सचेत करना बेहद आवश्यक है, हम यह पूरा सच आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर, क्या हमारा जो पड़ोसी है नेपाल, भारत का भाई देश जिसे कहा जाता है, नेपाल में अचानक जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? यह हम आपको बताएंगे कि मास्टरमाइंड इस्लामाबाद में क्या बैठा था। खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट आई है और इस सीक्रेट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तुर्की और बांग्लादेश के विदेशी मौलानाओं के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश के मौलाना नेपाल में हिंदुओं को और भारत के उस सीमावर्ती इलाके में कैसे आतंक का एक नया प्रपंच ISI के कहने पर तैयार कर रहे हैं। क्या थी सीमा पार की ये साजिश, हम पूरा खाका आपके सामने रखेंगे। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों ने अदियाला जेल के बाहर ऐसा क्या कह दिया जिसने शाबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी है। कोर्ट के आदेश के बावजूद मुलाकात नहीं हो पाई, इस मुलाकात को रोकने के पीछे क्या है असली कहानी, यह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बहुत तनाव में है। इन चारों बड़ी खबरों को एक एक कर एक एक परत हम खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आतंकवादियों के गुलाम पाकिस्तान की। जी हां, इमरान खान की सरकार में पाकिस्तान के गृह मंत्री रहे शेख रशीद अहमद ने एक सनसनीखेज बयान दिया जिसका वीडियो सामने आया है। आपको याद है 2611 का मास्टरमाइंड आतंकी सरगना हाफिज सईद, पाकिस्तान का एक पूर्व मंत्री अपने आप को हाफिज सईद का गुलाम बता रहा है। लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद की शान में कसीदे पढ़ने वाले शेख रशीद के बिना किसी झिझक ने उनका एक बयान सामने आया है जिसमें कहा कि वो हाफिज साहब का गुलाम है। जब शेख रशीद ने यह बयान दिया तो वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मंच पर लश्कर के दो खूंखार आतंकवादियों के बीच बैठे थे, उनसे गलबैया कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बात मानी कि उन्हें अमेरिका से निकाल दिया गया। सोचिए, पाकिस्तान के गृह मंत्री को अमेरिका ने निकाल दिया, और क्यों निकाला? क्योंकि उनके फोन से UN डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट और मुंबई 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का मोबाइल नंबर एक मंत्री के फोन पर था। सुनिए हाफिज सईद का यह गुलाम, लश्कर ए तैयबा का यह गुलाम आखिर क्या कह रहा था पाकिस्तान।
2: मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से आपस सईद साहब का नंबर निकल आया अमरीका में और उन्होंने मुझे अमरीका से निकाल दिया कि आपस सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है और आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आपने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं इस पाकिस्तान के लिए और हम भी इंशाअल्लाह ताला आपस सईद साहब के साथ हैं।
1: ये पाकिस्तान और आतंकवाद का ये जो रिश्ता है ना, ये एक बार फिर सामने आ गया है। आतंकवादियों का ये गुलाम उसी के इशारे पर भारत को गीदड़ भपकी देता है और उसे बाज नहीं आता। जबान लड़खड़ा रही थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी मार पड़ी थी। ये मार पाकिस्तान भूला नहीं है, चाहे पब्लिक में ये कहे ना कहे, लेकिन दर्द तो होता है ना। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे उसमें। शेख रशीद ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भपकी दी। पहले गीदड़ भपकी का वाला बयान हम आपको सुनाएंगे। जिस स्टेज पर यह बयान दिया उस पर लश्कर के खूंखार आतंकवादी कौन बैठे थे ये हम आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि वो लोग जो भारत में बैठकर कहते हैं पाकिस्तान के साथ बातें करो, वहां पर डेमोक्रेसी को मजबूत करो, यही है वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। आपके सामने शेख रशीद, आतंकवादियों के तलवे चाटते ये लोग, सुनिए।
2: कभी भी हिंदुस्तान मौका जाया नहीं करेगा और जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखता है तो उसके अंदर पाकिस्तान पर जो कुछ उसका रोल है उससे वो रोल अदा करने की नाकाम कोशिश करता है। इंशाअल्लाह ताला नेस्त और नाबूद कर देंगे अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा। ना चिड़िया चहकेंगी हिंदुस्तान में, ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेंगी और ना ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम हो सकेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाए। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हाफिज सईद साहब के साथ हैं।
1: देखिए, एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में हाफिज सईद का भी नाम लेते हैं और पाकिस्तान का भी नाम लेते हैं। और ये तो हम दशकों से कह रहे हैं कि आतंक, पाकिस्तान और हाफिज सईद, ये एक तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं, सिनोनिम्स हैं। पाकिस्तान में जब वहां के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद भारत को ये गीदड़ भपकी दे रहे थे कि बिरला जी के मंदिर में, यानी दिल्ली में जो मंदिर है उसमें घंटियां नहीं बजेंगी, यहां चिड़िया नहीं चहकेंगी, यानी वो पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम दागने की धमकी दे रहा है, तब मंच पर लश्कर के दो खूंखार आतंकवादी भी बैठे थे। ये तस्वीर मैं आपको जरा गौर से दिखाता हूं। ये तस्वीर है पाकिस्तान की सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के नापाक गठजोड़ की, जीता जागता सबूत। तस्वीर को जरा गौर से देखिए, एक तरफ शेख रशीद पाकिस्तान का पूर्व मंत्री, दूसरी तरफ कारी मोहम्मद याकूब शेख। ये वही कारी मोहम्मद याकूब शेख खूंखार आतंकवादी है जिसे अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने 2012 में वैश्विक आतंकवादी, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था और भारत सरकार ने यूएपीए के तहत एक नामित आतंकी की सूची में याकूब को रखा था। यह लश्कर ए तैयबा की उलेमा विंग का चीफ है जिसका काम पाकिस्तान के युवा मुसलमानों को बरगलाना और आतंकी नेटवर्क के लिए फंड जुटाना है। अच्छा, ये तो हुआ एक तरफ। दूसरी तरफ देखिए, ये है खालिद मसूद सिंधु। ये लश्कर ए तैयबा का जो राजनीतिक फ्रंट है ना, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, उसका अध्यक्ष है। हाफिज सईद के आतंकी एजेंडे को राजनीति में कानूनी नकाब ये आदमी पहनाता है। तो एक तरफ अमेरिका का प्रतिबंधित आतंकवादी कट्टर आतंकी कमांडर और दूसरी तरफ आतंकवादियों को कानूनी कवर देने वाली सियासी चेहरे जमात का चेहरा, और इनके बीच बैठकर पाकिस्तान का पूर्व गृह मंत्री, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर और फेडरल रेलवेज मिनिस्टर, जो भारत पर पाव किलो के बम दागने की गीदड़ भपकी देता था परमाणु बम, यह हाफिज सईद की शान में कसीदे पड़ रहा है। यह तस्वीर सिर्फ एक सार्वजनिक कार्यक्रम की नहीं है, यह बात का सीधा साधा सबूत और उदाहरण है कि पाकिस्तान में कानून और संविधान भले ही पंगु हो जाए या अंधे हो जाए, आतंकवाद का समानांतर तंत्र जो है वो पूरे रुतबे के साथ पाकिस्तान में चल रहा है और अब आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद तो ये और पनप रहा है। हाफिज सईद के इस गुलाम की जो गीदड़ भपकी है उसका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि भारत ने अपने शौर्य से दिया और यह भी पाकिस्तान जानता है कि आगे भी दिया जाएगा, वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में दिया था। जरा इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, ये उस खौफनाक अतीत का सच है। रावलपिंडी के हुक्मरानों और आतंक के आका ये नहीं भूल पाए हैं, क्योंकि ये उनके दिल पर सबसे बड़ा घाव है। ये गवाही है भारत के ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना और भारतीय सेनाओं ने जिस तरह सटीक मिसाइलों से, और वो जो ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इससे न केवल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के पंजाब सूबे, ये पाकिस्तान का दिल है, इन्होंने कभी नहीं सोचा था ये जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं कि भारत मुरीदके में, लाहौर में इनको मार सकता है, बहावलपुर में इनको मार सकता है, और भारत ने ऐसा किया। क्या मुजफ्फराबाद, क्या मुरीदके, क्या रावलपिंडी, क्या आप बोलारी सिंध देखिए, 8 से ज्यादा मुख्य आतंकी कैंप और हेडक्वार्टर्स पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। जब उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान के एक दर्जन एयर बेसेस और मिलिट्री बेसेस को ध्वस्त कर दिया गया। लश्कर और जैश का पूरा नेटवर्क उस समय का एक झटके में तबाह हो गया। इतना ही नहीं, आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के 15 प्रमुख सैन्य और रसद ठिकाने और एयर बेसेस भारत की सेना ने उनके प्रमुख केंद्रों को मिट्टी में मिला दिया। शेख राशिद जैसे नेताओं को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। कभी भी आतंक जब भारत का लहू बहाएगा तो उससे ज्यादा लहू पाकिस्तान में आतंक और आतंक को पनाह देने वाले लोगों का बहेगा, यह भारत साफ कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी महातबाही एक बार फिर होगी पाकिस्तान में। इस बार पाकिस्तान का बचा कुचा वजूद भी न केवल रेडक्लिफ लाइन पर यानी एलओसी पर, बल्कि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ड्यूरेंड लाइन पर भी पाकिस्तान इस समय बहुत बड़ा खतरा झेल रहा है, और आंतरिक खतरा तो और ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा है। जी हां, यही पाकिस्तान की असलियत है। कितना भी उसको पीट लो, कितना भी उसको ठोक दो, आतंक नहीं छोड़ता। शेख राशिद का जो शर्मनाक कबूलनामा है, यह सिर्फ बयान नहीं है, यह सबूत है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। और इसका सबसे ताजा और खौफनाक रूप देखने को मिला है वो हमारे पड़ोसी और भाई देश नेपाल में मिला है। नेपाल की खुफिया एजेंसी, ये भारत नहीं कह रहा, नेपाल की खुफिया एजेंसी एनआईडी की एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, जिसने दिल्ली से लेकर काठमांडू तक हड़कंप मचा दिया है। 26 जुलाई को नेपाल के सुनसरी नाम के इलाके में एक शिव मंदिर के पास जब हिंदू कावड़ियों पर हमला हुआ, गोलियां चली। उस साजिश की डोर सीधे रावलपिंडी से जुड़ी थी। हाफिज सईद के इशारे पर काम करने वाले उसके गुलामों ने इस दंगे का ताना बाना बुना था। दंगे के बाद पाकिस्तानी मूल का एक खतरनाक मौलाना मोहम्मद इलियास गुमान, जो हरकतुल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों में रह चुका है, नेपाल की सीमा में, नेपाल के अंदर मौजूद था। उसी दौरान बांग्लादेश से आए 9 संदिग्ध मौलवी भी भारतीय सीमा से सटे इलाके में गुप्त बैठकें कर रहे थे, नेपाल में वहां के मुसलमानों को बरगला रहे थे। भारत पर कड़े पहरे के आगे लाचार आईएसआई अब नेपाल की खुली सीमा का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए कर रही है पाकिस्तान की आईएसआई। सीमा पर करीब 3000, जी हां, भारत नेपाल सीमा पर करीब 3000 अवैध मस्जिदें मदरसे हैं, और कतर तुर्की पाकिस्तान से अवैध फंडिंग यहां भेजी जा रही है। सोचिए, वो पाकिस्तान जिसके पास 2 वक्त रोटी अपने लोगों को खिलाने के लिए नहीं है, वो आतंकी फंडिंग भी कर रहा है। इस बीच 26 जुलाई को नेपाल के सुनसरी में जो हुआ उसको जान लेना जरूरी है। उस दिन सावन के पवित्र महीने में जल चढ़ाने निकले हिंदू कांवड़ियों पर अचानक गोलियां बरसाई गई, और इसके पीछे अवैध मदरसों का रोल अब जांच में आ रहा है। सुनसरी के देवानगंज में एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है, वहां की खाली जमीन पर मुहर्रम के नाम पर इस्लामिक झंडे लगा दिए गए थे। स्थानीय हिंदुओं ने यह कहा, चलो जब तुम्हारा कोई धार्मिक पर्व है तुम मना लो, लेकिन उसके बाद एक महीने तक गुहार लगाते रहे, लेकिन वो झंडे नहीं हटाए गए। 26 जुलाई की रात जब कांवड़ियों का एक जत्था मंदिर के पास जल चढ़ाने निकला तो पास ही एक मदरसे से अचानक पहले पत्थर चले, फिर हथियारों से हमला बोल दिया गया। हमले को अंजाम देने के लिए बकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी। बिजली विभाग में काम करने वाले नदीम अंसारी नाम के शख्स ने अचानक ट्रांसफार्मर से पूरे इलाके की लाइट काट दी। अंधेरा होते ही कावड़ियों पर अंधाधुंध हर तरफ से हमला हुआ। जब विरोध हुआ तो पुलिस की गोलियां भी चली। दुर्भाग्यवश पुलिस ने भी गोलियां हिंदुओं पर चलाई। इस हिंसा में अब तक 4 हिंदुओं की मौत हो चुकी है। दर्जनों कावड़िए गोलियों से छलनी होकर अस्पतालों में वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। एक युवक को तो अपना हाथ गंवाना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि शांत रहने वाले नेपाल में अचानक इतनी नफरत और सांप्रदायिक हिंसा आई कहां से? नेपाल की खुफिया एजेंसी NID की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से सटे 1751 किलोमीटर लंबे नेपाल सीमा पर इस समय 3000 से ज्यादा गैर कानूनी मस्जिदें और मदरसे कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं। इन बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसों में पाकिस्तान, तुर्की, कतर और कुवैत से करोड़ों रुपए की अवैध फंडिंग भेजी जा रही है। इन्हीं मदरसों में विदेशी मौलाना आकर बैठते हैं और स्थानीय युवाओं को ब्रेन वॉश करे उनको न केवल नेपाल के हिंदुओं के खिलाफ बल्कि भारत के खिलाफ भी लगातार भड़काते हैं। यानी नेपाल के इन अवैध मदरसों को ISI अपना नया अड्डा बनाता जा रहा है कि यह भारत की सीमा को असुरक्षित करने की जो खौफनाक साजिश है इससे बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाएं प्रभावित बुरी तरह होने का अंदेशा है और यही इस समय सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अब मैं आपको एक और बड़े खतरे के प्रति आगाह करना चाहता हूं। आतंकवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको याद है, कुछ समय पहले दिल्ली का दिल कहे जाने वाले ऐतिहासिक लाल किले पर, यह नवंबर 2025 की घटना है, कार बम धमाका हुआ था। उसको लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पूरी दुनिया इसको बहुत ध्यान से अब देख रही है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस सबसे ताजा रिपोर्ट में पहली बार आधिकारिक मुहर लग गई है कि देश की राजधानी दिल्ली को दहला देने वाली इस खौफनाक साजिश के पीछे अलकायदा AQIS अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हाथ था। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 38वीं मॉनिटरिंग रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारत में एक नया और बेहद खतरनाक जाल बुन रहा है। UN की इस रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा अब अपने बड़े दस्तों के बजाय छोटे छोटे बिखरे हुए और छिपे हुए स्लीपर सेल्स के जरिए हमला कर रहा है ताकि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके रेडार से ये पढ़े लिखे आतंकवादी बचे रहे। इतना ही नहीं, संगठन ने अपना एक अलग लॉजिस्टिक्स और सीक्रेट फंडिंग नेटवर्क भी खड़ा कर लिया है और अब यह संगठन भारत के बाद बांग्लादेश में अपने नए ठिकाने बनाने की फिराक में है ताकि पूरे के पूरे दक्षिण एशिया को आतंक की आग में झोंका जा सके। लेकिन इस रिपोर्ट का जो सबसे डरावना और चौंका देने वाला पहलू है वो अलग है। अब तक जो आतंकी बंदूकों और बारूद के दम पर तबाही मचाते थे, अब यही पढ़े लिखे आतंकवादी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों में खेल रहे हैं और UN की इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आतंकी संगठन अब बम बनाने, निशाना साधने, कोड्स क्रैक करने के लिए ChatGPT जैसे AI टूल्स का सहारा ले रहे हैं। ISIL जैसे खूंखार आतंकी संगठन अपने प्रचार सामग्री में बहुत ज्यादा साइनाइड जैसे कातिलाना केमिकल्स या बायोलॉजिकल हथियार तैयार करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, छाप रहे हैं, फैला रहे हैं। अलकायदा को जो नया मॉड्यूल है AI का खौफनाक इस्तेमाल कर भारत को दहलाने देने की साजिश कर रहा है और इस बड़ी खबर में यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी दी है कि आतंकवाद का ये जो नया चेहरा है, पढ़े लिखे आतंकी, इनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसे इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
2: In association with
3: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: जंतर मंत्र पर मिली कामयाबी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जोश हाई। आंदोलन की पहली सफलता ने हौसले बुलंद किए तो अब सीजन 2 की भी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में बुधवार को CJP की बैठक के बाद अभिजीत दीपक ने कहा कि जल्द जंतर मंतर सीजन 2 शुरू होने वाला है।
4: अरे हाँ, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है।
3: तो आखिर प्लान क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी का ये सीजन 2 क्या है, इसका खुलासा अभिजीत दीपक के ने तो नहीं किया, लेकिन CJP प्रवक्ता ने सीजन 2 को लेकर सवाल का जवाब दिया।
5: आपने कहा अभिजीत का सीजन 2 आएगा, कब आएगा, क्या कुछ बोलेंगे?
6: देखिए, सीजन 2 तो यही है, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है ऐसे निकम्मी सरकारों के खिलाफ, निकम्मे ऑफिसर्स के खिलाफ, वही सीजन 2 है।
3: वैसे CJP देश भर के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की हालत सुधारने की मुहिम 15 अगस्त से शुरू करने जा रही है।
7: ये कैंपेन रहेगा जो हमारे गांव के जो स्कूल है पूरे देश भर में, जिनको इग्नोर किया गया इतने साल से, उन स्कूलों को ठीक करने की मुहिम है।
3: ऐसी मुहिम से पहले कॉकरोच जनता पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। दीपक का आरोप है कि उन्हें मीटिंग के लिए जगह देने से रोका जा रहा है। ऐसे गंभीर आरोप और जंतर मंतर सीजन 2 वाले बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है।
8: ये कोई पिक्चर नहीं है कि सीजन 1 सीजन 2, बल्कि छात्र को भी सोचना चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या है। आप रोट लर्निंग चाहते हैं या फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एग्जामिनेशन प्रोसेस में, तो सरकार के साथ संवाद कीजिए। संवाद जब होता है तब सॉल्यूशंस आते हैं, सिर्फ बयानबाजी पे नहीं होता है।
3: कॉकरोच जनता पार्टी के अगले कदम को लेकर सरगर्मी तेज है। आज तक ब्यूरो। प्रशासन के बुलडोजर लगातार मुहिम में लगे हैं। वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण का काम अपने अंतिम पड़ाव पर है। इमारत के धड़ाम होने की ये तस्वीर बुधवार की है। वाराणसी प्रशासन की टीम अपने अभियान के क्रम में इलाके में पहुंची तो 4 इमारतों को ध्वस्त किया गया। कल जिन 4 इमारतों को गिराया गया उन्हें BDA पहले ही अवैध बता चुका है। 9 महीने से चौड़ीकरण का ये काम चल रहा है। माना जा रहा है कि अब इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि वाराणसी के मुस्लिम बहुल्य दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण का काम इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा। इस दौरान चौड़ीकरण की जद में आने वाले 181 भवन और 6 मस्जिदों में से अब सिर्फ 2 ही भवन शेष बचे हैं। बुधवार को सरकारी अमला पहुंचा। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात थे। वहीं PWD की टीम के अलावा विकास प्राधिकरण की भी टीम मौजूद थी।
9: इन भवनों पर पहले से ही डिमोलिशन ऑर्डर फाइल किया गया था, उसके बाद आज डिमोलिशन की कार्रवाई संपन्न की गई। चारों भवनों पर डिमोलिशन किया जा चुका है, शांतिपूर्ण माहौल में डिमोलिशन किया गया, पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थी, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो या बैरिकेटिंग हो और PA सिस्टम चला।
3: बीते रविवार को दाल मंडी के सड़क निर्माण का भूमि पूजन हो चुका है। अब इसी साल 650 मीटर लंबी और 17.4 मीटर चौड़ी सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक।

0: अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ गुरुद्वारे में हमला, बाएं हाथ में लगी चोट, अस्पताल में कराए गए भर्ती, हिरासत में हमलावर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के दिए आदेश। हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र, दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। किरण रिजिजू बोले, विपक्षी हंगामे के कारण नहीं हो सकी सार्थक चर्चा। उत्तराखंड में मंच के शुद्धिकरण पर राज्यसभा में फूटा मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा, बोले दलित हूं इसीलिए हुआ मेरा अपमान। जेपी नड्डा ने की घटना की निंदा, कहा कराएंगे जांच। रांची में विधानसभा घेराव हंगामे पर एक्शन, 500 अज्ञात लोगों पर दर्ज केस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई, बीजेपी का हेमंत सरकार पर हल्ला बोल। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में बिहार सीएम का ऐलान, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट पर लिया फैसला।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। इतिहास गवाह है कि युद्ध हथियारों से नहीं हौसले से जीता जाता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों के बावजूद अमेरिका ईरान के घुटने नहीं टिका पाया और अब अमेरिका के सामने एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसने दुनिया भर में अमेरिका की फजीहत कर दी है। जी हां, समंदर में तैनात अमेरिका के सैनिकों को ना खाना मिल पा रहा है ना जरूरत भर पीने का पानी। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? लेकिन यह हो रहा है। अमेरिका के सेलर्स जो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर है, दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत, विमान वाहक युद्धपोत, यहां पर सैनिकों के पास टूथपेस्ट नहीं है, डिओड्रेंट जैसी बुनियादी चीजें खत्म हो चुकी है। हालात ऐसे कि अमेरिका जो खुद को अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर मानता है, उसके पास अपने सैनिकों को खाना पानी दवाई यहां तक कि डिओड्रेंट और टूथपेस्ट देने का भी समय नहीं मिल पा रहा है या वो समय नहीं दे पा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी नौसेना के सबसे खतरनाक और बड़े परमाणु संचालित युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन से जुड़ी खबर आ रही है। इसे कभी अमेरिका का अभेद्य किला समुद्र में माना जाता था, आज वो अरब सागर के बीचों बीच उस पर सवार सैनिक भयंकर डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। 6 सैनिकों ने, जी हां, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 6 सेलर्स ने समंदर में कूदकर जान देने की कोशिश की। यही नहीं, ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज का दावा है कि 265 दिन से लगातार समंदर में तैनात इन सैनिकों के बीच खूनी झड़पें हो गई हैं। इन झड़पों में ईरान ने 7 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। दरअसल ईरान के खिलाफ मोर्चे पर डटे इस युद्धपोत में कुल मिलाकर लगभग 5,009 सैनिक हैं, जो पिछले 265 दिनों से लगातार समंदर में हैं, 38 हफ्तों से जमीन नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। नतीजा ये कि अब सैनिकों के, सेलर्स के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया है। खबर यह है कि जहाज पर हिंसक झड़पें हो रही हैं, कुछ चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हताश सैनिक समुद्र में कूद कर जान देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? गंदा पानी, सड़ा हुआ खाना और डिप्रेशन के बीच घुट रहे इन सैनिकों का दर्द अब वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। आखिर क्या है यूएसएस अब्राहम लिंकन के अंदर का, जहाज के अंदर का पूरा सच? कैसे महाशक्ति अमेरिका का यह सबसे बड़ा युद्धपोत आज अपने ही सैनिकों की मौत का कारण बन चुका है? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
1: अमेरिका का सबसे घातक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान से जंग लड़ते लड़ते अब अपने ही अंदर घुटकर दम तोड़ रहा है। जिसे अमेरिका का सबसे अभेद्य किला माना जाता था, वो आज एक तैरते हुए मानसिक कत्लगाह में बदल चुका है। ईरान के खिलाफ महायुद्ध की जिद में सुपर पावर अमेरिका ने अपने ही 5,009 सैनिकों को अरब सागर के बीचों बीच एक ऐसे नर्क में धकेल दिया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इसकी वजह तारीखों में छिपी है। 21 नवंबर 2025 को यह युद्धपोत कैलिफोर्निया के अपने होम पोर्ट सैन डिएगो से रवाना हुआ था। 7 जुलाई 2026 को कुछ घंटे के लिए यह ओमान तट पर रुका था, लेकिन वहां भी सैनिक छोटे से जमीन के हिस्से से आगे नहीं जा सके। और 13 अगस्त 2026 तक की बात करें तो पूरे 265 दिनों से यह जहाज और उस पर सवार सैनिक लगातार समंदर में। अमेरिका के इतिहास में यह रिकॉर्ड है और इस वजह से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात अमेरिकी नौसैनिकों के सब्र का बांध टूट चुका है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि सेंट्रल कमांड के सलाहकार के दौरे के बाद जहाज पर तैनात सैनिकों के बीच आपस में ही खूनी हिंसा भड़क उठी। 9 सैनिकों ने चाकू और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें 7 सैनिकों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए।

0: कॉम भले ही इस खबर को दबाने में लगा है, लेकिन सच ये है कि डिप्रेशन और तनाव में आए सैनिक अब जान लेने और जान देने पर उतारू है। अब तक कम से कम 6 सैनिक चलते युद्धपोत से उफनते समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश कर चुके हैं। कोई साथी सैनिक ऐन मौके पर हाथ पकड़कर किसी की जान बचा रहा है, तो कोई अगली सुबह न जागने की दुआएं मांग रहा है। आखिर क्यों अमेरिका के सबसे जांबाज सैनिक समंदर में कूदने को मजबूर हैं? आंकड़े अमेरिका के घमंड की बखिया उधेड़ने के लिए काफी है। युद्धपोत के सैनिक 260 से ज्यादा दिनों से लगातार समंदर में है। ट्रंप की जिद के कारण ये आधुनिक अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी और दर्दनाक तैनातियों में से एक है। सैनिकों ने 38 हफ्तों से जमीन का टुकड़ा नहीं देखा, तो लगभग 9 महीनों से लगातार पानी के बीच फंसे हुए हैं। जमीन और अपने परिवार से दूर सैनिकों के लिए ये तकलीफ जैसे कम नहीं थी कि युद्धपोत बुनियादी सुविधाओं की भयंकर कमी से जूझ रहा है। परिवारों और रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर शावर में फफूंदी लगी है, टॉयलेट जाम पड़े हैं और पीने तक के पानी की किल्लत है। सैनिकों के पास टूथपेस्ट और डिओड्रेंट जैसे बेसिक हाइजीन प्रोडक्ट तक खत्म हो चुके हैं। सैनिकों को सड़ा हुआ और बेहद खराब खाना परोसा जा रहा है। ईरान को झुकाने निकला सुपर पावर अमेरिका आज अपने ही सैनिकों को बुनियादी सहूलियतें देने में नाकाम साबित हो रहा है। सैनिकों के इस दर्दनाक हाल की खबरें जब लीक हुई तो वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल और प्रतिनिधि माइक लेविन समेत कई नेताओं ने पेंटागन और अमेरिकी सेना से कड़े सवाल पूछे हैं। मामले को दबाने के लिए नौसेना के वाइस एडमिरल जोसेफ काहिल ने परिवारों से माफी मांगते हुए जहाज पर पादरियों और काउंसलर्स को तैनात किया है। अब इस बदहाल पड़े युद्धपोत को रिप्लेस करने के लिए यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट स्ट्राइक ग्रुप को रवाना करने की तैयारी की जा रही है, ताकि अब्राहम लिंकन के थके हारे और डिप्रेस्ड सैनिकों को वापस लाया जा सके। लेकिन सुरक्षा कारणों से इसकी सटीक तारीख अभी भी छिपा कर रखी गई। आज तक ब्यूरो।
1: और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रूस के कब्जे वाली क्रीमिया में एक बड़े धमाके की खबर है। इस धमाके के बीच रूसी सैन्य अधिकारी की मौत की खबर सामने आ रही है। दरअसल ये जो विस्फोट है ये क्रीमिया के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर सेवास्तोपोल के स्टोलोवस्की एवेन्यू इलाके में हुआ है। ये सेवास्तोपोल ऐतिहासिक रूप से रूस का जो ब्लैक सी फ्लीट है उसका मुख्यालय है, उसका मुख्य गढ़ है, और यहां पर एक धमाके की खबर आ रही है। तो इस समय जैसा आप देख भी रहे हैं एक साथ दो युद्ध चल रहे हैं, अमेरिका और ईरान का युद्ध। ऊर्जा का, तेल का, गैस का संकट पूरी दुनिया की इसकी वजह से हो रहा है और पूरी दुनिया में, और दूसरी तरफ 4 साल से ज्यादा से रूस और यूक्रेन की जंग, इस कारण अब दुनिया के सामने अनाज का जो संकट है ना उसका एक रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसका अलार्म बज रहा है। मैं आपको दो तस्वीरें समय दिखा रहा हूं मेरी दोनों तरफ, गौर कीजिए और समझिए कि दुनिया इस वक्त कितने बड़े संकट से गुजर रही है। जो आने वाला समय है ना, आने वाला जो संकट है वो और भीषण होने वाला है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज को खोलने का समझौता अब तक नहीं हो पाया है। दुनिया का 20% तेल और गैस यहीं से गुजरता है। दूसरी तरफ 4 साल से ज्यादा यानी फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। दुनिया भर का 25% गेहूं, मक्का, ये जो अनाज है वो इसी क्षेत्र में पैदा होता है। मतलब इस क्षेत्र को, यूक्रेन के इस क्षेत्र को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है, लेकिन यूरोप के अलावा अफ्रीका में बहुत सा अनाज यहीं से जाता है। यहां से जो तेल निकलता है वो दुनिया के अलग अलग भागों में जाता है, जो यहां से फर्टिलाइजर्स निकलते हैं ये दुनिया के अलग अलग भागों में जाते हैं, और इन सबका संकट बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ महीनों में अनाज के जो जहाज हैं उन पर तक हमले कर दिए गए हैं, बंदरगाहों पर हमले किए गए हैं जहां लाखों टन अनाज दुनिया भर जहां से भेजा जाता है। इस बार अनाज की कटाई से पहले ही दोनों तरफ से हमले तेज कर दिए गए और इस सीजन का गेहूं शायद ही एक्सपोर्ट हो पाएगा, यह सबसे बड़ा खतरा है। नतीजा दुनिया में अब अंदेशा यह है कि भूखमरी सामने आ सकती है, यूरोप में संकट बढ़ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको यह विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं, इस संकट की गंभीरता को आप और विस्तार से समझेंगे। ये पूरा ये जो इलाका है ना, ब्लैक सी में बारूद, दुनिया में भूखमरी का ये महासंकट, क्यों? ये जो अजोव सागर है, और यहां से हम लोग रिपोर्टिंग कर चुके हैं इस अजोव सागर के इलाके से, जो ब्लैक सी फ्लीट है वो यहीं से गुजरती है और इसी काला सागर ब्लैक सी, इससे सटा जो अजोव सागर है सी ऑफ अजोव, दुनिया का कुल गेहूं उसका 25% यहीं से गुजरता है। और ये जो रास्ता है ये अब बमबारी की जद में आता जा रहा है। यहां जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, यहां बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है और समुद्री रास्ता बारूदी हमलों से धधकने लगा है। यूक्रेन की तरफ से अगर देखें तो यूक्रेन का जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर पोर्ट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये यूक्रेन, ये ओडेसा, ओडेसा चेर्नोमोरांस और यूजनी, ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं यहां पर यूक्रेन के। अब इन बंदरगाहों पर रूस ड्रोन और मिसाइल दोनों से हमला कर रहा है। 50 से ज्यादा गार्गो शिप्स यहां पर तितर बितर हो चुके हैं। 45,000 टन गेहूं जलकर खाक हो चुका है। आपको याद है इसमें 4 भारतीय नौसैनिकों की या नाविकों की, नौसैनिकों की नहीं नाविकों की जान चली गई थी। दूसरी तरफ रूस के ठिकानों पर अगर नजर डाले तो यूक्रेन ने जो जबरदस्त वहां पर वार किया है, तो जो सबसे बड़ा अनाज का जो निर्यातक बंदरगाह है वो रूस में, ये नोवोरोस्क, ये पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। यहां से जब वार पलटवार हो रहा है, तामम का जो बंदरगाह है वो तबाह कर दिया। और इन सब की वजह से, अच्छा एक और जगह जहां से हम रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, मारियोपोल। ये मारियोपोल एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मारियोपोल जैसे बंदरगाह से भी आवाजाही अब पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जून से अगस्त के बीच 80,000 टन से ज्यादा अनाज बारूद की भेंट चढ़ गया। ये बड़ी तस्वीर किसी ने देखी नहीं और ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इसकी वजह से यहां से जो अनाज है वो पूरे यूरोप में जाता है, अफ्रीका के कई इलाकों में जाता है, यहां तक कि अमेरिका की अगर हम बात करें तो जो शिकागो मार्केट है ना, शिकागो मार्केट में गेहूं का दाम इस समय उछाल मार रहा है। एशिया से लेकर अफ्रीका तक अब भुखमरी का अलार्म बजने लगा है। आखिर काला सागर में ये जो महाआग है ये कैसे भड़की और कैसे एक दूसरे का पेट काटने की इस जंग में पूरी दुनिया इस समय, और ये मैं आपको सचेत कर रहा हूं, ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी और खतरनाक खबर है। दुनिया इस समय भुखमरी के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई।
2: रूस यूक्रेन जंग में मचा मौत का तांडव। जंग के मैदान से लेकर समुद्र में मचती तबाही। 19 जुलाई 2026 समय शाम के ठीक 4:30 बजे ओडेसा के करीब चोर्नोमोक्स बंदरगाह से एमवी गोल्डन लियो नाम का एक विशाल कार्गो जहाज गेहूं और मक्का लादकर रवाना हुआ था। जहाज किनारे से महज 4 मील दूर ही पहुंचा था कि अचानक आसमान से आग उगलती एक रूसी मिसाइल सीधे जहाज के हल से जा टकराई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, लोहे की चादरें पिघलने लगी और बारूद के धुएं के बीच कई जिंदगियां पल भर में खत्म हो गई। इस दिल दहला देने वाले हमले में 4 भारतीय नाविकों की भी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि यूक्रेन के पायलट वोलोडिमीर मिखाइलोव ने एक भारतीय अफसर की गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके 3 दिन बाद 22 से 25 जुलाई के बीच चोर्नोमोक्स टर्मिनल पर फिर हमला हुआ और 45,000 टन गेहूं जलकर खाक हो गया। इस जंग में अब अनाज के गोदामों पर बारूद की बारिश हो रही है। हमले सिर्फ जहाजों तक नहीं रुके, जून से अगस्त 2026 के बीच काला सागर का पूरा इलाका शमशान और तबाही का मैदान बन चुका है। अब तक 70 से 80 हजार मीट्रिक टन अनाज आग की लपटों में राख हो चुका है। रूस और यूक्रेन अब केवल एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर बम नहीं बरसा रहे बल्कि दुनिया का पेट भरने वाले अनाज के जहाजों, पोर्ट्स और गोदामों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। केवल जून और जुलाई में ही रूस ने 50 से अधिक कार्गो जहाजों पर हमले किए जिनमें 30 से ज्यादा बेकसूर आम नागरिकों की जान चली गई। ओडेसा बंदरगाह से जहाजों का निकलना पूरी तरह से ठप हो चुका है। खतरा इसीलिए बड़ा है क्योंकि आगे हार्वेस्ट सीजन है और उससे पहले वार पलटवार तेज हो गए हैं। यह सबसे खौफनाक बात है। यह खूनी खेल ठीक उस वक्त शुरू हुआ है जब फसल की कटाई का समय है। यूक्रेन ने भी जवाब में रूस के सबसे बड़े अनाज निर्यातक बंदरगाह
0: नोवोरोसिस्क को भी नहीं बख्शा। बुधवार तड़के यूक्रेन ने जेट ड्रोन और मिसाइलों से नोवोरोसिस्क पर ऐसा भीषण हमला बोला कि पूरे शहर में इमरजेंसी लगानी पड़ी।
1: दो युद्ध, दो बड़े प्रहार और बड़ा खतरा, ना तेल और गैस मिलेंगे और ना अनाज अगर शांति जल्द नहीं बहाल हुई। इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भाजपा का छात्र आंदोलन का लगाम भाजपा के हाथ में, लेकिन उनका मन का लगाम कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वो शरीर से भले ही छात्र आंदोलन में शामिल हों, लेकिन उनका निशाना कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन में भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है।
1: उन्हें कहा कि भाई छात्र क्यों गुमराह होंगे, अगर आप उनकी मांगों को मानते, उनकी तकलीफ को सुनते, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को कोई शौक तो नहीं चढ़ा हुआ है कि हम सड़क पर हम उतरे।
2: हमें लगता है कि अंग्रेज शासन में भी इस तरह की आंदोलनकारी की पिटाई नहीं की गई। जिस तरह हमारे बच्चे बच्चियों को घेर के पुलिस चारों तरफ से उसकी पिटाई की गई, निश्चित रूप से इस घटना के मैं कड़ी निंदा करता हूं।
3: यहां पर जब कार्रवाई शुरू हो गई और भाजपा को भय हुआ कि अब उनके परत दर परत सीआईडी उतार देगी, तब उन्होंने जाकर के छात्रों को उकसाने का काम किया। छात्रों के लिए हम लोग कमिटेड हैं, रिफॉर्म्स के लिए कमिटेड हैं, और राहुल जी की जो सोच छात्रों के बारे में है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कमिटेड हैं इस महागठबंधन सरकार में। बल कहीं अगर हल्का प्रयोग हुआ तो वो उपद्रवियों के लिए था,

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: सो सॉरी।

0: आप अगवा कर रहे थे, इमरान खान साहब सुपर फिट थे। इसके जिम्मेदार वो अगवाकार भी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा किया। पाकिस्तान का नौजवान गुस्से की हालत में है, नफरत की हालत में है।
1: हिंसा, अराजकता और मारकाट पाकिस्तान की बदनीयत बन चुकी है। पाकिस्तान के क्रूर फौजी शासन का एक ही उसूल है कि कोई उसूल नहीं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की खबरों से एक बार फिर से मुनीर की सत्ता हिल सकती है। क्या पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में मौत हो चुकी है? क्या आसिफ मुनीर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को जेल में ही ठिकाने लगा दिया? पाकिस्तान में इस समय इमरान खान की मौत की खबर से सनसनी फैली है। अमेरिका में बैठे पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत खान ने फौजी अफसरों के हवाले से दावा किया कि रावलपिंडी की अडियाला जेल में इमरान खान की मौत हो गई है। जेल में बंद इमरान खान की तबीयत कई दिनों से खराब है। ऐसे में उनकी बहनें उनसे मिलने के लिए अडियाला जेल पहुंची तो उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। वजाहत खान ने दावा किया है कि इमरान की मौत की खबर पाकिस्तानी अफसर दबा कर रखना चाहते हैं, इसीलिए किसी से मिलने नहीं दे रहे। इमरान अभी किस हालत में है ये बात सिर्फ मुल्ला मुनीर जानता है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने इमरान की मौत की खबरों को निराधार बताया, लेकिन इसके बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इमरान खान की बहनों और परिवार को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। रावलपिंडी की अडियाला जेल में लागू इस कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और बढ़ती आशंकाओं के बीच इमरान खान की बहन उज्मा ने बताया है कि जब आखिरी बार अपने भाई से मिली थी तो उन्होंने आशंका जताई थी कि आसिफ मुनीर जेल में उनकी हत्या करवा देगा। इमरान 3 साल से जेल में बंद हैं। उनकी पार्टी के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि जेल में उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। इस बीच खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने धमकी दी है कि जुमेरात को 10 बजे तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई तो पूरा पाकिस्तान ठप कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में डी चौक का मतलब वो धरना स्थल है जो इस्लामाबाद में पाकिस्तानी संसद से कुछ ही दूरी पर स्थित है। अब इमरान खान के समर्थकों ने धमकी दी है कि पाकिस्तान की सरकार या तो इमरान खान को स्वास्थ्य के आधार पर छोड़ दे या फिर उन्हें उनके परिजनों से मिलने दे, नहीं तो पूरा पाकिस्तान डी चौक बन जाएगा, यानी हर जगह से विद्रोह की आवाज उठेगी। पीटीआई ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान भी किया है। बड़ा सवाल यही कि क्या अडियाला जेल में कोई अनहोनी हुई है या ये सिर्फ एक अफवाह है। इमरान खान 26 सितंबर 2023 से जेल में बंद हैं। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: छड़ा संसद का मानसून सत्र, दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित। रिजिजू बोले, विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं हो सकी सार्थक चर्चा। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में हमला, बाएं हाथ में लगी चोट, अस्पताल में करवाए गए भर्ती। हिरासत में हमलावर, सीएम फडणवीस ने जांच के दिए आदेश। रांची में विधानसभा घेराव, हमले पर एक्शन, 500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। सीएम हेमंत सोरेन के आवास की सुरक्षा बढ़ी, बीजेपी का सरकार पर हमला। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक बरकरार, कमिश्नर कोर्ट का फैसला, 38 इमारतों को तोड़ने पर लगी है रोक। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर केस में परिवार को मिलेगी आर्थिक मदद, अंतरिम न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकारी नौकरी का भी प्रस्ताव, सीएम सम्राट का ऐलान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूँ साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। मानसून सत्र पूरी तरीके से धुल गया है, लेकिन अब राहुल गांधी पार्टी की मीटिंग के भीतर बात कर रहे हैं। क्या भाषण दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं एक बार।
1: प्लीज अंडरस्टैंड, लार्ज कैपिटल, मिस्टर अंबानी, मिस्टर अदानी, दीज गाइस हैव कैप्चर्ड द आरएसएस। द आरएसएस सीज्ड टू एग्जिस्ट लॉन्ग अगो। व्हाट वाज द आरएसएस? द आरएसएस वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द स्मॉल इंडियन बिजनेसमैन, गोल्डस्मिथ, ज्वेलर, बनिया। दैट वाज द आरएसएस। दैट डाइड, इट्स गॉन। टुडे द आरएसएस इज an instrument of Mr. Adani. That's all it is. And they stand there with their lathis and all, making a fool of themselves. Hindi mein bolun? Mera kehna hai, RSS kya tha? RSS, jo chota businessman tha. Maine study kiye baat. Jo chote chote business wale the, mithai ki dukaan chalate the, सोनार थे, लोहार थे, इनकी इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया, वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी, और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की, कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी, फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी, इट्स ऑब्वियस। आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड, वी आर नॉट फाइटिंग, दे फिनिश, दे गॉन। नाउ आरएसएस इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल। They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. Now, what is our problem? Our problem, which has now to a great extent been resolved, that my friends in the media have been captured by them. It's a big problem, because they will come and tell me, sir, we don't like what is happening. But we have to, they tell me, I'm telling you, we have to feed our children. Hame bhi naukri karni hai. Mere matlab wo prime minister hai, uske samne police wala hai, mere kaan mein whisper kar rahe hain, bhaiya inko hataiye aap yahan se, inko hataiye. Wo mujhe hata raha hai aur mere kaan mein keh raha hai, bhaiya inko hatao. Maine kaha ye kya baat kar rahe ho? Nahi, hamari naukri hai, hame kaam karna hai. Understand? इनकी भी, इनका भी एक्सप्रेशन मैं समझता हूं कि आपको अपने बच्चों की स्कूलिंग करानी है, फ्यूचर बनाना है, बट देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज नेशनल स्पिरिट। व्हाट इज नेशनल स्पिरिट? नेशनल स्पिरिट इज वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ अ बंच ऑफ क्लाउन्स टू क्रिएट ऑर्डर ओवर अस। Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए, नहीं नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो रचनात्मक कांग्रेस का मतलब क्या है, आपको एक्सप्रेस करना है। आपने एलजीबीटी की बात की, आपने आदिवासियों की बात की, एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं, जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए।
0: तो राहुल गांधी रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और आज मानसून सत्र खत्म हो गया और एक तरीके से वो मानसून सत्र धुल गया। मानसून सत्र जिद में, ये हम नहीं कह रहे हैं तो देश की जनता कहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पेपर लीक केस में छात्र आंदोलन पर हंगामे से शुरू हुआ सत्र आखिर तक हंगामे की भेंट ही चढ़ गया। जिस मानसून सत्र में कुल 114 घंटे का काम होना था, वहां लोकसभा में सिर्फ 17.5 घंटे का, जबकि राज्यसभा में महज 37.4 घंटे का काम ही हो पाया। यानी सदन नहीं चलने से जनता की गाड़ी कमाई में से 129.82 करोड़ रुपए स्वाह हो गए, खर्च हो गए, लेकिन काम नहीं हो पाया। सत्र से पहले सरकार कह रही थी कि कई अहम बिल पर चर्चा होगी, लेकिन पेपर लीक केस में विपक्ष गृहमंत्री के जवाब पर अड़ा रहा और सत्ता पक्ष कहता रहा कि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है और इसी के वजह से जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्या जनहित के मुद्दों से बड़ी जिद हो सकती है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से पहले सदन के भीतर क्या हुआ वो जरा एक बार देख लेते हैं।
2: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और आज हंगामे और गतिरोध के बीच खत्म हो गया। पूरे सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार इस कदर हावी रही कि कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा तक नहीं हो सकी।
3: लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%, राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीस ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र के हंगामे खत्म होने के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष कहता है उल्टा चोर कोतवाल को डांट।
3: ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
4: जी, प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे यहाँ हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मींस डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम है।
2: कांग्रेस का आरोप है कि पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुनी। विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग करता रहा, FCRA बिल वापस लेने की मांग की गई, लेकिन जवाब देना तो दूर। विपक्ष कहता है कि गृह मंत्री अमित शाह सत्र के दौरान सदन तक में नहीं आए।
5: गृह मंत्री कभी आए नहीं और 15 दिन तक गृह मंत्री लापता गायब, और फिर सदन से के खत्म होने से 2 दिन पहले वो जाग उठते हैं, कुंभकर्ण के नींद से जाग उठकर कहते हैं कि चलो अब चर्चा होनी चाहिए। जब चर्चा हो ही तब तो आप नहीं थे, बार बार कहते रहे कि मैं बयान नहीं दूंगा, मुझे चर्चा चाहिए, ये तो सिर्फ एक बहाना था।
2: वहीं सत्र के आखिरी दौर में सरकार ने विपक्ष को चर्चा का प्रस्ताव दिया था। अमित शाह ने कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष को लेक्चर नहीं, सीधा जवाब चाहिए।
6: जी, आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट?
2: अब देखिए मानसून सत्र में संसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है। संसद का मानसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ एक मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब एक घंटे। वहीं राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हुआ। हैरान करने वाली बात, लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे काम नहीं हुआ। मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठक हुई, इस हिसाब से 19 बैठक में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन ये करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम काम हुआ है। वही मानसून सत्र में राज्यसभा में 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन लगभग 37 घंटे 24 मिनट ही काम हुआ, यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्यवाही हुई।
7: अरे कुश्ती लड़ना है तो जाओ न, की कहा है हनुमान गुरु का चेला बनो, राजनीति छोड़ो। ये 100 करोड़ से ऊपर गरीबों का पैसा इन्होंने सोहा कर दिया।
2: अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 2026 के मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। संसद का पूरा मानसून सत्र पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के इर्द गिर्द रहा है, लेकिन इस सियासी शोर में जनता के कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, जिससे जनता की कमाई के करोड़ों रुपए बह गए। इसीलिए हम कह रहे हैं, न बहस न चर्चा, करोड़ों का खर्चा। आज तक ब्यूरो।
0: तो संसद का मानसून सत्र पूरी तरीके से, जिसे इंग्लिश में वॉश आउट कहते हैं, धुल गया एक तरीके से। लोकसभा के भीतर 114 घंटे में से 96 घंटे काम नहीं हो पाया, जबकि राज्यसभा के भीतर 114 घंटे काम होना था, लेकिन उसमें से 76 घंटे 34 मिनट काम नहीं हो पाया। ये क्या दिखाता है? और जाहिर सी बात है कि सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर नजर डालें तो 19 बैठकें होनी थी, लोकसभा में केवल 17.4 घंटे काम हो पाया, राज्यसभा के भीतर थोड़ा ज्यादा 36.3 घंटे काम हो पाया, 12 बिल पास हुए और चर्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही बिल पर हो पाई है। ये बहुत बड़ी बात है और इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार संसद के भीतर क्या चर्चा होना जरूरी है, और अगर चर्चा नहीं हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन जिम्मेदार है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जगदम्बिका पाल, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पीठासीन अधिकारी भी वो कई बार होते हैं, और नासिर हुसैन, राज्यसभा की कांग्रेस के सांसद इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ये आंकड़े जगदम्बिका जी बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि चिंताजनक आंकड़े हैं, क्योंकि 8 बिलों की सूची मेरे पास है और उन बिलों पर नजर डाले तो महज एक बिल पर चर्चा होती है करीब 10 घंटे 53 मिनट, यानी करीब 11 घंटे चर्चा होती है। बाकी बिलों पर कभी 14 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, कभी कभी 0 मिनट चर्चा ही नहीं हो रही है और वो बिल पास हो जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए?
8: जिम्मेदार अगर सरकार कोई बिल लेकर के आई है और स्पीकर साहब ने उसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उसका समय निर्धारित किया, जिसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सभी दल के रहते हैं और सबकी राय से सहमति होती है, तो जो एजेंडे पे बिल आता है सदन में वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्धारण के बाद आता है। उसमें समय की मांग होती है कि साहब इस बिल पे 2 घंटे नहीं 4 घंटे की चर्चा हो, 6 घंटे की चर्चा हो, तो वो उस तरह से समय की भी का निर्धारण सबकी राय से, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष कोई दल हो, सबकी राय से स्पीकर साहब करते हैं। अब इसके बाद सदन में वो बिल आए, लगातार ये कोशिश सरकार की रही कि उस बिल पे चर्चा हो, खुद संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर कह रहे थे और खुद लगातार स्पीकर साहब आग्रह कर रहे थे। मैं एक शाही जी आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या संसदीय जीवन में जिस तरह से ये मानसून सत्र वॉश आउट हुआ, जिसको आपने कहा, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि धुल गया, क्योंकि चिंता ये केवल हमारे आपके लिए नहीं, देश की जनता के लिए चिंता का विषय है। जो आंकड़े आपने अभी प्रस्तुत किए हैं कि आखिर 19 बैठकों में 17 घंटे भी कार्रवाई न हो, तो स्वाभाविक है कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनके लिए कितनी गंभीर चिंता का विषय है कि आखिर पार्लियामेंट में किस तरह से, जहां हमने डिबेट के लिए भेजा, डिस्कशन के लिए, डिसीजन के लिए, वहां पे हो क्या रहा, होता क्या है। सदन वॉश आउट भी हो सकता है, सदन नहीं चलता है कब, जब विपक्ष कोई मांग उठाता है और उस विपक्ष की मांग सत्ता पक्ष नहीं मानती है, क्योंकि मैं पीठासीन अधिकारी हुए हूं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि फिर सदन नहीं चल पाता, गतिरोध हो जाता, सदन में व्यवधान होता। लेकिन क्या कभी आपने देखा, नासिर साहब हमारे साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्त में थे, कोई अगर बिल नहीं पसंद है, जैसे FCRA की बात आई, तो अगर FCRA का बिल विपक्ष को एकदम नहीं पसंद है तो विपक्ष से अभी तक क्या परंपरा रही, पहली बार इस तरह से, एक शायद ये इतिहास में ये मानसून सत्र याद किया जाएगा कि बिल पे मांग होती विपक्ष से कि साहब हम इसको पास नहीं करेंगे, हम चाहते ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए, JPC को भेज दिया जाए, सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, इसको रेफर कर दिया जाए, जिससे कि बिल पास ना हो, फिर स्पीकर साहब सर्वदलीय बैठक बना ले और उसमें सभी दलों के सदस्य हों, फिर थ्रेड एंड वेयर डिटेल डिलीब्रेशन हो सके, जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके विरोध के नाते, चाहे विपक्ष कह रहा कि हम इस बिल का विरोध करेंगे, स्वाभाविक है कि किसी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको भी हम बुलाते हैं। कितनी डिटेल हमने वक्फ पे किया, पूरे देश के हिस्सों में गए, हमने वक्फ बोर्ड को बुलाया, माइनॉरिटी कमीशन को बुलाया, हमने इदारों को बुलाया, हमने धर्म मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले, उसमें सब जगह थे, पूरे पूरे दिन मिलते थे, सबके हमने रिकॉर्ड्स किए, आप लोगों के साथ लगातार शायद हाईएस्ट बैठक वक्फ में हुई। तो कल सरकार उस FCRA को भी कह रही कि हम JPC को रिफर कर रहे हैं, उस पर भी सदन नहीं चलने दे रहा, ये तो पहली बार है कि विपक्ष जो मांग कर रहा है उसको सरकार खुद पहल कर रही है कि हम इसको सीधे पास नहीं करना चाहते, बहुमत होने के बावजूद भी हम चाहते इस पे और डिटेल डिस्कशन।
9: जगदंबिका जी, गतिरोध का कारण चलने पाया, वो राजनीतिक गतिरोध एक तरीके से कारण बना है इस पूरे मामले में, जिसके वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई थी। हालांकि नासिर हुसैन, आप पहले इसका जवाब दीजिएगा कि सदन के भीतर ये कार्यवाही क्यों नहीं चल पाई। राज्यसभा का रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 114 घंटे में से 76 घंटे 34 मिनट तक काम वहां पर भी नहीं हो पाया है। और जगदंबिका पाल यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो तय हुआ था उसके आधार पर ही बिल लेकर आए थे, लेकिन उसके बावजूद उस पर चर्चा नहीं हुई है। तो क्या इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, या आपको लगता है कि सरकार की कुछ खामियां रही है कि BSE में चर्चा होने के बाद भी सदन के भीतर इस पर चर्चा नहीं हो पाती है?
4: साहिल जी, मैं सिर्फ एज एन MP नहीं बल्कि पार्टी का स्पोक्स पर्सन और राज्यसभा में व्हिप होने के नाते दोनों सदन में जो अपोजिशन का रोल रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, उसके लिए मैं बात करना चाहूंगा। जगदंबिका पाल जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो बुजुर्ग हैं हमारे, JPC की उन्होंने जिक्र किया, हम लोगों ने साथ में काम किए, लेकिन मैं एकदम स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखना चाहूंगा। नंबर 1, जब ऑल पार्टी मीटिंग होती हुई किसी भी सेशन के शुरू होने के पहले, उसमें गवर्नमेंट अपना एजेंडा जब स्पेल आउट करती है तो अपोजिशन पार्टीज भी जो है अपना एजेंडा वहां पर रखते हैं कि इन एजेंडा को भी अकोमोडेट कर लिया जाए। हमारे 80 साल की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कई बार ऐसा हुआ कि अपोजिशन ने जो इश्यूज रेज किए उसको अकोमोडेट किया, ठीक है 100% नहीं, 80% सही, 50% सही, 30% सही, इशू अकोमोडेट करते हैं, लेकिन कोई एजेंडे में पिछले 12 साल से जो हमने इश्यूज रेज किया कोई उसमें अकोमोडेट नहीं हुआ। इसके बाद में जब BSE होती दोनों हाउसेस की, लोकसभा की अलग राज्यसभा की अलग, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसमें भी हम लोग ये इश्यूज रेज करते हैं। जब इश्यूज रेज करते हैं तो जरूरी है कि सरकार को के वो इन इश्यूज को कुछ ना कुछ, यानी बहुत इंपॉर्टेंट जो इश्यूज होते हैं उनको अकोमोडेट करें, तो ये होता नहीं है। पार्लियामेंट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हमारे देश की है, वहां पे हर इशू पे चर्चा होना चाहिए। सरकार में जो पार्टी है, सरकार अपना एजेंडा बिल्स के फॉर्म में लेके आती है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि बिल्स पे हम चर्चा करने के लिए रेडी हैं, कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, और 80-90% बिल्स जो है सर्वसम्मति के साथ में हम पास करने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन जब देश में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं दो सेशन के बीच में, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, इंसिडेंट्स आ जाते हैं जो हमारे देश के जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उनको जब हम रेस करने की कोशिश करते हैं वेल विद इन द रूल्स ऑफ द हाउस, लोकसभा में कुछ रूल्स हैं, राज्यसभा में कुछ रूल्स हैं, रूल्स के तहत जब रेस करने की कोशिश की जाती है और उसको जगह नहीं मिलती है, तो हमारे पास विरोध करने का, पार्लियामेंट्री
10: डेमोक्रेसी के जो फ्रेमवर्क है उसके तहत जो हम उन इश्यूज को विरोध करने का हमारे पास एक ही चारा रह जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज इस सेशन में हम लोगों ने दोनों सदन में रेज किए। होम मिनिस्टर आखिरी दिन चिट्ठी लिखकर अपोजिशन एमपीस और लीडर से इजाजत मांगने के बजाय 20 जुलाई का जो हादसा हुआ उसके तुरंत बाद 21 जुलाई को या 22 जुलाई को सदन में आ जाते, अपना स्टेटमेंट दे देते, उसके ऊपर चर्चा हो जाती और सवाल उठाए जाते उसके ऊपर जवाब दे देते, तो मुझे लगता नहीं कि कोई गतिरोध होता, बिल्कुल ही नहीं होता। हमारे पास तीन मुद्दे, एक मुद्दा छात्र के खिलाफ जो पैलेट फायरिंग हुआ, उनके साथ जो वायलेंस हुआ और पेपर लीक के से जुड़ा हुआ मुद्दा था। दूसरा था चंदा चोरी, जो चढ़ावा चोरी राम मंदिर में अयोध्या में जो कर्मचारी थी के, ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कमिटी ट्रस्ट है तो उनकी निगरानी में हुआ था तो हम चाह रहे थे उसके ऊपर स्टेटमेंट। तीसरा हम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री देश से माफी के जिस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार हुआ, और इसमें जो बहुत बड़ी बात नहीं थी। और होम मिनिस्टर आते तो कोई रोक देता कि आप बात नहीं करने, अगर वो आते स्टेटमेंट देते चर्चा होती उसके ऊपर जवाब देते डायरेक्टली इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्टेड हम लोग चाहते हैं बिल पे चर्चा करें, लेकिन चर्चा करने के लिए अपोजिशन के मॉडरेट करना जरूरी होता है। आखिर में मैं ये बोलूंगा, मैं ये नहीं करूं पार्लियामेंट डेमोक्रेसीज में, दुनिया के सबसे मोस्ट एडवांस्ड एंड डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में भी जिम्मेदारी सदन को चलाने की, पार्लियामेंट को चलाने की सरकार की होती है। और जगदम्बिका पाल जी जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के पुराने जितने नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एल के अडवाणी साहब थे, सुषमा जी, जेटली, सब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है कि डिसरप्शन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पोलिटिकल प्रोसेस इन अवर कंट्री करके। So, मैं डिस्ट्रप्शन की बात नहीं कर रहा,
9: कहीं ना कहीं जगदम्बिका पाल जी इस बात पर कई बार बहस हो चुकी है। नासिर हुसैन जिनको कोट कर रहे हैं वो पिछली 2014 के पहले राज्यसभा के भीतर नेता विपक्ष अरुण जेटली कह चुके हैं और उसके साथ साथ लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज भी इस बात का जिक्र कर चुकी है कि इस तरीके से डिस्ट्रप्शन भी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी और उस पर विपक्ष का वो अधिकार है और सदन की कार्यवाही चलाना ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जिस राजनीतिक गतिरोध की मैंने बात की, 20 तारीख को मानसून सेशन शुरू होता है और उसी दिन जंतर मंतर से प्रोटेस्ट निकलता है सदन संसद की तरफ और उस पर जो लाठीचार्ज या जो पुलिसी या कार्रवाई होती है उसको लेकर विपक्ष बार बार ये पूछ रहा था कि इस पर बयान होना चाहिए। क्या कारण है कि सरकार को इस बात को कहने में कि अमित शाह इस बारे में बयान देने के लिए तैयार है 10 अगस्त या 11 अगस्त के बाद ये बात कहनी पड़ी कि अमित शाह इस पर बात करने के लिए तैयार है या बयान देने के लिए तैयार है? आपको नहीं लगता जो नासिर हुसैन कह रहे हैं कि अगर 22 तारीख को इस पर बयान दिया गया होता तो शायद सदन की कार्यवाही चलती? जगदम्बिका पाल जी,
8: नासिर भाई, जो नासिर भाई कह रहे हैं मैं पूछ रहा हूं क्या इन्होंने या इनकी पार्टी ने गोल पोस्ट को चेंज नहीं किया? जिस समय छात्रों का आंदोलन हुआ या सोनम वांगचुक धरने पर बैठे या चाहे जो सीजेपी पार्टी है उनकी क्या डिमांड थी? उनकी डिमांड थी शिक्षा मंत्री की, धर्मेंद्र प्रधान की, उनकी जो डिमांड थी कि मतलब जिस तरह से नीट की परीक्षा में हुआ उस डिमांड्स के लिए दो दो मंत्री प्रधानमंत्री जी ने लगाए, चाहे जेपी नड्डा जी हों, जितेंद्र सिंह जी हों, उन लोगों से बातचीत किया, सोनम वांगचुक का अनसन टूटा, छात्रों की बातें मानी गई और जिस तरीके से एक कठोर कानून बनाया गया उस पर डिस्कशन किया। उस समय तो सदन चल रहा था, उसी बिल पे तो डिस्कशन हुआ और उसके बाद क्या किसी छात्र ने उस समय होम मिनिस्टर से वक्तव्य की मांग की या किसी लोग घर चले गए, पूरा जंतर मंतर से आंदोलन खत्म हो गया। अब जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष को लगा कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन सरकार ने कर दिया, 3 महीने में लॉजिकल कंक्लूजन तक भी पहुंच जाएंगे, डे टू डे सुनवाई करके 2 महीने में 4 सीट हो जाएगी, 10 साल 10 करोड़ की सजा का भी प्राविधान कर दिया, तो इन्होंने फिर एक नया गोल पोस्ट एकदम, आप याद करिए शुरू के तो जब लगातार सदन चल रहा था उस समय जब 20 तारीख को यह था उससे पहले हाउस शुरू हुआ तो उस समय की जो मांगे थी सारी सरकार ने मांगी, लेकिन उसके बाद इन्होंने नया मांगा। अब ये बताइए कि कोई स्टूडेंट यूनियन ने नहीं, छात्रों ने नहीं, कहीं भी किसी ने होम मिनिस्टर की बात नहीं की, अब इसके बाद अगर इन्होंने मांगा तो आखिरी दिन नहीं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में स्पीकर के सामने संसदीय कार्य मंत्री, इनका गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है। आज के तीन दिन पहले चार दिन पहले वो बैठक हुई और जब जवाब देने के लिए तैयार थे। अगर बिल्कुल विपक्ष को एकोमोडेट किया जाता, नासिर भाई की बात मैं इत्तफाक करता हूँ, डिस्टर्बन भी आप कर सकते हैं, ये भी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लेकिन जब आपकी बात मान ली गई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कह दिया कि इस पर चर्चा हो जाए, इस पर गृहमंत्री जी स्वयं जवाब देंगे, दूसरे दिन सदन में खड़े हुए, संसदीय कार्य मंत्री का मैं ही चेयर पे था, उन दो बार वो खड़े हुए, उन्होंने कहा साहब हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं एक एक बिंदु पे और उस पर गृहमंत्री जी जवाब देंगे, उसके बावजूद हंगामा करते रहे। फिर कल उन्होंने कहा कि हम आज भी चर्चा करने के लिए तैयार हो सकते हैं, आज के लिए भी कहा, समय बढ़ाने के लिए भी कहा, गृह मंत्री ने खुद स्पीकर साहब को चिट्ठी लिख दी, तब फिर डिसरप्शन कहाँ। अगर विपक्ष जो कह रहा हमको एकोमोडेट किया जाए, तो जब जो एक डिमांड थी गृह मंत्री जी के बयान की, अगर वो बयान आज के पाँच दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक आ गया सरकार की तरफ से सहमति कि गृह मंत्री जी बयान देंगे,
9: जवाब दीजिएगा,
8: और खुद गृह मंत्री जी ने कह दिया
9: गोल पोस्ट चेंज करना का
8: जवाब दूंगा
9: इसमें, जब तैयारी सरकार के तरफ से थी, आरोप यह लगाया जा रहा है कि तैयारी थी लेकिन उसके बावजूद सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी।
10: साहिल जी, जगदम्बिका पाल जी वरिष्ठ नेता है, सुलझे हुए नेता है और चेयरमैन के सीट पे बैठते हैं। मैं सिर्फ इतना आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 20 जुलाई के दिन जब संसद ये पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ, सेशन स्टार्ट हुआ, जब से लेके 13 अगस्त तक हर दिन या तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या नहीं तो लोकसभा में राहुल गांधी जी खड़े होते हैं और डिमांड करते हैं कि ये डिमांड हमारे तीन हैं। वो तीनों डिमांड जो हम 20 जुलाई को भी सेम थे, 13 अगस्त को भी सेम है, इसमें कोई गोल पोस्ट चेंज नहीं किए। मैं सिर्फ इतना इनसे जानना चाह रहा हूं कि देश के गृह मंत्री जो नंबर 2 इन द गवर्नमेंट है, मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर हैं, चाणक्या माने जाते हैं, हम लोग सब मानते हैं ये बहुत गंभीर आदमी हैं, पावरफुल मिनिस्टर हैं, लेकिन वो आते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग में, पार्लियामेंट कैंपस में, पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट्स में, लेकिन लेकिन लोकसभा या राज्यसभा में नहीं आते। पाल साहब से ये मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो लोकसभा में आ जाते या राज्यसभा में आ जाते, अपोजिशन के एमपीस क्या कर लेते, वो आके बोलते कि मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ने के लिए रेडी हूं और उसके बाद चर्चा के लिए रेडी हूं, आप लोग लिस्ट कर देते तो क्या हम मना करते? हम मांग ही क्या रहे थे, हमारा डिमांड क्या था, बहुत ही सिंपल डिमांड था, वी वॉन्टेड ये डिस्कशन ऑन दी
9: वॉयलेंस। वही तो वो कह रहे हैं,
10: तो
9: 10 तारीख को जो बीएससी की मीटिंग हुई उसमें सरकार के तरफ से कहा गया कि अमित शाह तैयार है उसके लिए,
10: तो फिर आना चाहिए,
9: क्या ये बात हुई थी और उसके बावजूद भी आपको ऐसा क्यों लगता है?
10: साहिल जी आना चाहिए ना, सरकार जब तैयार हो गई थी, बीएससी मीटिंग में बात हो गई थी, अमित शाह जी 12 अगस्त को जो बयान दे रहे हैं कि मैं तैयार हूं, 13 तारीख को आज भी हम इंतजार करें, हो सकता है आखिरी दिन आ जाए, आए क्यों नहीं, आना क्यों नहीं चाह रहे थे, और मुद्दे क्या थे, आपको नहीं लगता
9: कि
10: गंभीर मुद्दे थे? मेरा सिंपल सवाल है, आ क्यों नहीं? देखिए पूरे
8: एक तो
10: ना तो गृहमंत्री
8: तो मैं साहिल जी बता दूं, साहिल भाई
10: नहीं, एक मिनट पाल जी, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के बाहर से जो है गवर्नमेंट फंक्शन से पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस करते हैं, हिंदुस्तान के बाहर जाके पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं आते प्रधानमंत्री। सेम चीज इस बार जो है पूरा सेशन निकल गया, गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर से एड्रेस नहीं किए, पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, बाहर से एड्रेस करने की कोशिश की।
9: जगदम्बिका पाल जी,
8: साहिल जी ये शायद पहली बार हुआ। एक तो नासिर साहब को करेक्ट कर दूं कि गृह मंत्री जी पार्लियामेंट भी आते थे और आज सदन में भी आए थे, लेकिन आज जैसा अप्रत्याशित अमर्यादित आचरण कभी हुआ ही नहीं कि आज 13 तारीख को सदन अभी शुरू नहीं हुआ, गृह मंत्री जी आके सदन में बैठ गए, प्रधानमंत्री जी स्वयं आके बैठ गए, रक्षा मंत्री जी बैठ गए और सदन नहीं शुरू हुआ, ये कभी पार्लियामेंट्री डेमो।
9: तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त ही आ रही है कि राहुल गांधी थोड़ी देर पहले रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में बात कर रहे थे और उन्होंने एक नया आरोप लगाया हुआ है, उनका ये कहना है कि सरकार सुनना नहीं चाहती और इसीलिए चर्चा नहीं हो पा रही है। आरएसएस सरकार पर राहुल गांधी का नया हमला, सरकार लोगों की बात सुनना नहीं चाहती है, लोगों को सुनना नहीं चाहती है। और इस बात को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा वो जरा एक बार पहले सुन लेते हैं, उसके बाद दो नए मेहमान हमारे साथ जुड़े।
1: वी कैन ड्राइव देम क्रेजी, इनको हम मतलब पागल कर देंगे। अमित शाह सो कॉल्ड क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य और क्या कहते थे, सरदार पटेल, बड़ी पार्ट, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड, वो भाग गया, वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time, they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, you know, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? You're literally fighting a bunch of jokers, clowns.
9: तो राहुल गांधी का बड़ा हमला। तो और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपराजिता सारंगी भारतीय जनता पार्टी की सांसद और श्याम कुमार बर्वे कांग्रेस के सांसद भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अपराजिता जी, थोड़ी देर पहले राहुल गांधी बात कर रहे थे और उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया, ये पूरा सेशन तो पूरा वॉशआउट हो गया, इस पर हम पहले ही चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सरकार जनता की बात नहीं सुनना चाहती और गृहमंत्री सदन के भीतर नहीं आए क्योंकि जनता का एक्सप्रेशन अब उन्हें फील हो रहा है और इसी के वजह से वो सदन के भीतर नहीं आए।
11: आप सबको मेरा नमस्कार। देश के नागरिक होने के नाते और लोकसभा की सदस्य होने के नाते मैं तो अचंभित हूं और मुझे इस विषय का कारण समझ नहीं आ रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार अपनी बात लोकसभा में रखना चाहती है, विस्तार पूर्वक भाषण देना चाहती है और विषय के हर पक्ष को सबके समक्ष उपस्थापित करना चाहती है और जो ऑपोजिशन है, जो विरोधी दल है, जो कांग्रेस है, ये भाग रहे हैं। देखिए, इन्हें धैर्य नहीं है, इनमें संयम नहीं है और इसलिए सुनने की जो एक स्थिति होती है, जो विनम्रता चाहिए सुनने के लिए, वो इनमें नहीं है और इसलिए बार बार बार बार, जैसा कि हम अंग्रेजी में कहते हैं, अपना गोल पोस्ट ये परिवर्तित कर रहे हैं और ये पूरा मानसून सत्र हम सब के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं कहूंगी बहुत दूर से देश के कोने कोने से पार्लियामेंटेरियंस सांसदगण आते हैं और अपनी बात यहां रखना चाहते हैं। हम करीबन 20-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व, अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों का प्रतिनिधित्व यहां करते हैं और इस बार जो हुआ आप सबको विदित है। मैं कह दूं मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त

0: कर्मीगण हैं, इनके इनके अहंकार, इनकी अनुशासनहीनता, इनकी उदंडता और इनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार
1: सरकार का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि नेता विपक्ष की वजह से ये सदन नहीं चल पाया, इस बार का मानसून सत्र धुल गया और उसके लिए नेता विपक्ष जिम्मेदार है।
2: नमस्कार। जिस तरीके से सरकार और विपक्ष दोनों की जवाबदारी होती है संसद चलाने की, किसी भी एक पक्ष की जवाबदारी नहीं है संसद चलाना। किंतु आपने देखा होगा 2000 जिस दिन 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद से हम लोग संसद में मांग कर रहे हैं, पूरा विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी जी नहीं अकेले नहीं कर रहे, पूरा इंडिया अलायंस मांग कर रहा है कि गृह मंत्री आकर उसमें जवाब दे कि ये लाठीचार्ज, पैलेट गन, टीयर गैस ये चलाने का आदेश किसने दिया। सिंपल सी दो लाइन का आंसर उनसे मांगा गया था कि इसमें कौन जवाबदार है। और पूरे 18 दिनों से विपक्ष लगातार संसद में प्रोटेस्ट कर रहा था, आंदोलन कर रहा था कि गृह मंत्री सदन में आए। शायद अपराजिता सारंगी जी संसद का पूरा सेशन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने पूरे बिल अपने जो जो काम थे वो पूरे पास करा लिए। अगर विपक्ष इनको काम करने दिया नहीं होता तो बिल कैसे पास हो गए? आपको जो आपके जरूरी काम थे वो कैसे कर लिया आपने? फिर आपके गृह मंत्री संसद भवन में
1: जो
2: आते
1: बिल पास होने की बात आप कर रहे हैं,
2: भवन में आते
1: मैं जरा आपको समय गिनवा दूं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल, सिर्फ इसी बिल पर 11 घंटे की चर्चा होती है लोकसभा के भीतर। आप दोनों लोकसभा के सांसद हैं, इसके लिए मैं आपको गिनवा रहा हूं। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल, चर्चा होती है सिर्फ 14 मिनट की। वंदे मातरम बिल को लेकर जो बात हो रही थी 14 मिनट की चर्चा होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स बिल 4 मिनट की चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल, चर्चा होती है 4 मिनट की। उसके बाद एमएसएमई को लेकर जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया अमेंडमेंट का, चर्चा होती है 3 मिनट की। और उसके दो और बिल है, द टैक्सेशन एंड अदर लॉज 3 मिनट की चर्चा, बैंकर्स बिल है उसकी चर्चा 5 मिनट की, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल है चर्चा होती है 12 मिनट की। ये तो काम हुआ है सदन के भीतर, और इसीलिए तो सवाल उठता है कि सदन के भीतर आखिरकार काम नहीं हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन अपराजिता जी, यहां पर सवाल ये खड़ा होता है जो राहुल गांधी उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जनता की सुनना नहीं चाहती। विपक्ष ये बार बार कह रहा था कि 20 तारीख को दिल्ली के भीतर इतनी इतनी बड़ी एजिटेशन होती है, उस पर सरकार की तरफ से कार्यवाही होती है, पुलिस लाठीचार्ज करता है, पैलेट गन वहां पर निकाली जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि गृहमंत्री को आकर सदन के भीतर बयान देना चाहिए था, या वहां पर सरकार का यह कहना था कि हम बयान क्यों दें, और इसी की वजह से ये जो गतिरोध है यह बढ़ता गया और आखिरकार वहां पर चर्चा नहीं हो पाई? क्या ये बात सही है?
0: सबसे पहले मैं लोकसभा के मेरे काबिल सहकर्मी जो अभी पैनलिस्ट हैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया, मान लिया कि संसद, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की। इन्होंने खुद कहा। एक दूसरा मैं कह दूं, जहां तक आदरणीय अमित शाह जी के उपस्थिति का सवाल है और उनकी चर्चा में भाग लेने का सवाल है, उनके भाषण का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं 4 जिलों में जिला मैजिस्ट्रेट रही हूं। मैं उड़ीसा काडर में थी, और मैं आपको बता दूं कि जब किसी तरह का निर्णय लिया जाता है, पैलेट गन चले, क्या हुआ, किस तरह का वहां परफॉर्मेंस होगा पुलिस का, ये मैं आपको बता दूं, ये देश के गृह मंत्री ऐसा निर्णय नहीं लेते हैं, इसे मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह दूं। वहां की परिस्थिति को देखकर वहां जो जिला मैजिस्ट्रेट है या जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है वहां की स्थिति का अनुसंधान करके निर्णय लेते हैं। इस बात को मैं बहुत बार बार स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगी। मुझे लगता है इतना ज्ञान और इतनी अभिज्ञता हम सबको होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कह दूं, जहां तक हमारे होम मिनिस्टर साहब का सवाल है, लगातार आदरणीय किरण रिजिजू जी ने कहा कि भाई बिजनेस एडवाइजरी

0: कमेटी में चर्चा हुई है और आदरणीय गृह मंत्री जी सविस्तार लोकसभा के अंदर अपनी बात रखना चाहते हैं। 20 जुलाई क्या हुआ उसके सारे पक्ष को सबके समक्ष रखना चाहते हैं। मैं आप
1: दोनों को ऐसा नहीं लगता कि दोनों तरफ से जिद थी कहीं ना कहीं,
0: इच्छा
1: सरकार की जिद थी कि हम इस तरीके से बयान नहीं देंगे।
0: देखिए मैं
1: भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही गई कि गृहमंत्री अपना बयान देने के लिए तैयार है। 11 तारीख को ये बात कही गई। सरकार विपक्ष की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा था, क्योंकि आरोप ये भी लग रहा है कि आप नहीं विपक्ष की तरफ से भी नहीं एक मिनट विपक्ष की तरफ से भी जिद पकड़कर विपक्ष बैठे हुए थे कि पहले इधर बयान होना चाहिए उसके बाद ही चर्चा हो पाएगी। और यह भी कहा गया कि विपक्ष जो है वो गोलपोस्ट चेंज कर रहा है श्याम कुमार जी, और इसी के वजह से जिद के वजह से जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से वॉश आउट यहां पर नजर आ रहा है, जो अपराजिता सारंगी यहां पर कहने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से जिद, सरकार की जिद कि हम जब चाहे तब बयान देंगे, विपक्ष की जिद बयान नहीं होगा तो हम कार्रवाई नहीं चलने देंगे।
2: साहिल जी ये जो सरकार है, सरकार अपने जवाबदारी से भाग रही है, यही विपक्ष हमेशा से बोलते आ रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में बच्चों पे बर्बरता हुई है उसकी जवाबदारी तो आपको लेना पड़ेगा ना। अपराजिता ने हमें समझाया कि जिला कलेक्टर जिला कमिश्नर या जो भी सक्षम अधिकारी उस समय वहां पर होता है वो निर्णय लेता है, बिल्कुल मुझे भी पता है वही निर्णय लेता है, लेकिन वो स्टेट हेड को अपने वाले जब तक के बताएगा नहीं, जब तक इन्फॉर्म नहीं करेगा तब तक के कोई भी निर्णय लेता नहीं है। हमें भी कैसी सरकारें चलती है ये पता है, किंतु जब विपक्ष पूरा मांग कर रहा है कि इस पे जवाबदारी फिक्स होना चाहिए, इस पे गृह मंत्री ने जवाब देना चाहिए संसद के अंदर, सिर्फ डिमांड क्या कर रहे थे कि जवाब दो। ये प्रक्रिया जिस किसी ने भी चार्ज किया है, जिस किसी ने भी आदेश दिया है उसकी जवाबदारी फिक्स होना चाहिए।
1: अगर पहली बार देखा गया है
2: तो संसद में आके बोल देते
1: कि हमारे कमिश्नर ने किया, सदन के बाहर प्लेकार्ड लेकर खड़े थे। सरकारी पक्ष के तरफ से आंदोलन पहली बार देखा गया है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी सरकारी पार्टी के लोग वहां पर आकर आंदोलन कर रहे
0: हैं। देखिए मैं आपको बता दूं,
2: विपक्ष की भूमिका वो सरकार कर रही है।
0: चाहूंगी यहाँ कि जहां तक घटनाक्रम का सवाल है मुझे बोलने दे, मेरे बंधु से मैं आग्रह करती हूं मुझे बोलने दे। घटनाक्रम ऐसा हुआ कि इन्होंने नीट पर चर्चा मांगी और उसके बाद जैसे ही हम चर्चा के लिए प्रस्तुत हुए उस समय इन्होंने कहा कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। उसके बाद जब इस्तीफा हो गया तो इन्होंने कहा कि नहीं आदरणीय अमित शाह जी आकर माफी मांगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। एक पर एक करके इन्होंने गोलपोस्ट को शिफ्ट किया एक बात। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, आश्चर्य की बात है, सरकार चाहती है विस्तार पूर्वक सारी बात बोले, इसमें ये पैलेट की बात लें स्टेटमेंट की बात लें। देखिए जो स्टेटमेंट की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं इतनी अपरिपक्वता का परिचय दे रहे, मैं तो हतप्रभ हूं। ऐसा है कि जो स्टेटमेंट,
1: माफ करिए मेरा समय खत्म हो रहा है,
0: भाषण का एक
1: माफ करिए मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात यहां पर साफ नजर आती है कि इस बार भी मॉनसून सेशन में कार्यवाही नहीं चल पाई। 2025 का मॉनसून सेशन था, सिर्फ 37 घंटे वहां पर काम चल पाया था, लेकिन 21 सेशन वहां पर लिए गए थे, 21 बैठकें वहां पर हुई थी, 19 बैठकें होनी थी लेकिन सिर्फ 17 घंटे का काम लोकसभा के भीतर हुआ। और इसी बात को लेकर चिंता का विषय भी बना हुआ है कि आखिरकार सदन के भीतर ये गतिरोध की वजह से कभी कामकाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa!
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: वो अभी तो चार्ज हुआ यार।
6: ओले बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
1: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
4: Jahan jurm, wahin kahani. Jahan kahani, wahin saazish. Jahan saazish, wahan crime. Jurm chahe kitna hi uljha ho. उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
5: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
6: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
5: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
7: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
8: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
9: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
10: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
5: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
11: सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
12: बीजेपी क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे।
13: आपको बता दें कि यूपी में खुद सीएम योगी ने पूरा फोकस युवाओं पर किया है। जी हाँ, सीएम योगी ने नई युवा नीति तैयार करने के लिए निर्देश दिया है कि यूपी के 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की अपेक्षाओं आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समझा जाए। लेकिन आकाश आनंद ने योगी सरकार पर भी करारा प्रहार किया। आकाश आनंद ने कहा कि पिछले 10 सालों में जनता के टैक्स के पैसे यानी 7,000 करोड़ रुपए से बीजेपी सरकार ने सिर्फ अपनी नाकामी छुपाई है। इतना ही नहीं, मायावती के भतीजे ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और योगी सरकार को एनकाउंटर की सरकार बताते हुए यूपी पुलिस को भी घेरा। आकाश आनंद ने महंगाई के मुद्दे पर भी योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक प्रहार किया। जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में युवाओं के बीच जो जो मुद्दे उछले उन्हें विपक्ष न सिर्फ पकड़ रहा है बल्कि सियासत का आधार उन्हीं को बना रहा है। और आज का सूरत हाल ये है कि विपक्ष हो या बीजेपी या फिर आरएसएस, हर किसी का फोकस जेन जी पर आ गया है। आज तक के

0: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और आज हंगामे और गतिरोध के बीच खत्म हो गया। पूरे सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार इस कदर हावी रही कि कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा तक नहीं हो सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र के हंगामे में खत्म होने के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष कहता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
1: ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
2: जी, प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो, अरे या हाउस में बैठ के सुनो, उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मींस डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं।
0: कांग्रेस का आरोप है कि पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुनी। विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग करता रहा, FCRA बिल वापस लेने की मांग की गई, लेकिन जवाब देना तो दूर। विपक्ष कहता है कि गृह मंत्री अमित शाह सत्र के दौरान सदन तक में नहीं आए। वहीं सत्र के आखिरी दौर में सरकार ने विपक्ष को चर्चा का प्रस्ताव दिया था। अमित शाह ने कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष को लेक्चर नहीं, सीधा जवाब चाहिए। अब देखिए मानसून सत्र में संसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ एक मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब एक घंटे। वहीं राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हुआ। हैरान करने वाली बात, लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे काम नहीं हुआ। मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठक हुई, इस हिसाब से 19 बैठक में करीब 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, लेकिन ये करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम काम हुआ है। वही मानसून सत्र में राज्यसभा में 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, लेकिन लगभग 37 घंटे 24 मिनट ही काम हुआ, यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्रवाई हुई। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 2026 के मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। संसद का पूरा मानसून सत्र पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के इर्द गिर्द रहा है, लेकिन इस सियासी शोर में जनता के कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, जिससे जनता की कमाई के करोड़ों रुपए बह गए। इसीलिए हम कह रहे हैं, न बहस न चर्चा, करोड़ों का खर्चा। आज तक ब्यूरो।
1: लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में ओपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज NDA के और कुछ ओपोजिशन पार्टी के MPs ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो बना है, ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ। बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं, इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ओपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
1: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र, दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। किरेन रिजिजू बोले, विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं हो सकी सार्थक चर्चा। रचनात्मक कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने सरकार से लेकर संघ पर हमला किया, कहा छात्रों की बात नहीं सुन रहा केंद्र, सदन में नहीं आया अमित शाह। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में हमला, बाएं हाथ में लगी चोट, हिरासत में हमलावर, सीएम फडणवीस ने जांच के आदेश दिए। रांची में विधानसभा घेराव, हंगामे पर एक्शन, 500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज, सीएम हेमंत सोरेन के आवास की सुरक्षा बढ़ी, बीजेपी का सरकार पर हमला। और रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक बरकरार, कमिश्नर कोर्ट का फैसला, 38 इमारतों को तोड़ने पर लगी है रोक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है। यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है।
1: बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं चुनाव से पहले लोगों के खाते में, उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं।

0: नमस्कार, हेलो बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हाउस द जोश? हाई सर, जवाब आता था लेकिन अब ये जरा बदल गया है और राजनीति में इसका नया वर्जन आया है, हाउस द जेन जी। जेन जी इस समय देश का सबसे चर्चित शब्द बनता जा रहा है और हर दल बस यही कोशिश में है कि जेन जी को अपने पाले में लाने के लिए वो रणनीतियां बनाती हुई दिख रही है। जंतर मंतर और झारखंड के जेन जी आंदोलन ने युवाओं की ताकत दिखा दी। इस ताकत का पहला चुनावी जो अप्रेजल है वो 2027 के यूपी चुनाव में होने वाला है। बीजेपी ने यूपी के मंत्रियों को जेन जी के साथ चौपाल लगाने को कहा है। बीजेपी की युवा टीम स्कूल कॉलेजेस जाकर छात्रों के साथ मिलने वाली है और जेन जी चौपाल करने वाली है। उधर बीएसपी ने आकाश आनंद के नेतृत्व में जेन जी को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर सक्रिय रहे अखिलेश यादव का इरादा भी साफ नजर आ रहा है। सवाल है कि क्या यूपी चुनाव में जेन जी बनेगा किंग मेकर? यही है आज का हल्ला बोल। पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा की शुरुआत करें। जेन जी वोटरों को साधने की नई सियासत का पहला चुनावी टेस्ट यूपी में होगा।
1: देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन।
0: बीजेपी को देश के जेन जी वोटरों से संवाद की राह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है। पीएम मोदी से मिले संकेतों के बाद अब 2027 के यूपी चुनाव से पहले यूपी सरकार के मंत्री जेन जी चौपाले लगाने की शुरुआत कर रहे हैं।
2: संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है।
0: यूपी में जेन जी को साधने के लिए बीजेपी की युवा टोली स्कूल कॉलेजों तक पहुंचकर उनसे सीधा संवाद करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस अभियान के तहत हर विधानसभा में 10-10 युवाओं की टीमें तैयार होंगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं, उनकी अपेक्षाएं और उनकी राय जानेंगे। इस अभियान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की अहम भूमिका होगी। जेन जी को लेकर इस रणनीति की यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब यूपी बीजेपी के बड़े नेता लगातार केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं। बुधवार को यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में यूपी चुनाव के मद्देनजर चर्चा हुई है। वैसे जेन जी पर दाम विपक्ष का भी रहने वाला है। दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट को समर्थन देने वालों में अखिलेश यादव बेहद सक्रिय थे। इस बीच जेन जी को लेकर बीएसपी की रणनीति भी सामने आई है। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेन जी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जालौन की माधोगढ़ सीट से बीएसपी ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। मायावती के सोशल मीडिया पोस्ट्स में लगातार छात्रों और युवाओं की बात की गई है। उनके निशाने पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी है। हाल में आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को अंकल कहा था जिस पर अखिलेश प्रतिक्रिया देने से बचे थे।
3: आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा है?
4: बोला मैं 30 का हूँ,
3: आपको अंकल कहा है?
5: देखिए ऐसा है, उस बहस में हम और आप नोल है और जो सीएस बात है, एक सिक्के के दो पहलू और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम चलता ही रहे।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मायावती की रणनीति को समझकर बीएसपी पर पलटवार कर रहे हैं।
6: बहुजन समाज पार्टी युवाओं को ठग करके, जेंजीज को ठग करके, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के जेंजीज को ठग करके जेन जी को टिकट देने की बात कर रहे हैं। भाई टिकट दीजिए, लेकिन जेन जी संविधान का संरक्षण चाहते हैं, संविधान का विरोध नहीं। जेन जी जो है अपने आरक्षण का समर्थन चाहते हैं, आरक्षण का विरोध नहीं।
7: देखिए आज का छात्र नौजवान और युवा पीढ़ी जिस मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है, जिसको देखते हुए अन्य विपक्षी दलों में हताशा और निराशा है। आज जब छात्रों के ऊपर लाठियां चार्ज हो रही थी, जब छात्र नौजवान जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा था, उत्तर प्रदेश में भी अपनी मांगों को लेकर के जब प्रोटेस्ट कर रहा था तो उनके साथ कोई खड़ा दिखा था तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर के सदन तक लगातार नौजवानों की आवाज उठाते रहे।
0: जैन जी के साथ साथ महिला वोटरों पर भी राजनीतिक दलों की नजरें हैं। यूपी में महिलाओं को सालाना 50,000 रुपए, जिसमें चुनाव से पहले ही 20,000 रुपए ट्रांसफर करने की संभावना वाली स्कीम पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है, वो भी भाजपा की पाप की कमाई है, जिसे यूपी की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेंगी, जिसे उप्र की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेंगी। यूपी की जागरूक महिलाएं पूछ रही हैं, जिन दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा करके चुनाव जीता था, वहां एक तरफ तो देने से आनाकानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे वापस मांग रहे हैं, और जो लौटा नहीं पा रही हैं, उन महिलाओं पर भाजपा थाने कचहरी पुलिस मुकदमे की निंदनीय कार्रवाई कर रही है। पोस्ट के अंत में अखिलेश ने लिखा है, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल।
8: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं।
0: युवा और महिला किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं, मौजूदा माहौल में चुनावों में इनकी भूमिका और अहम हो सकती है, इसलिए यूपी में इन पर दांव लग रहा है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मुझे बताया जा रहा है कुछ देर में रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ी नहीं है, प्रवक्ता कांग्रेस की, और निशा चौधरी प्रवक्ता आरएलडी की हमारे साथ जुड़ गई है। सिद्धार्थ जी, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं, आखिरकार ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को भी समझ में आ गया है कि जो महिलाओं को अलग अलग जगहों पर भाई अगर साधने की वोटर को कोशिश हो रही थी, हमने देखा बिहार में भी रोजगार योजना के तहत पैसे उनको दिए गए, लगता है यूपी में अब जेन जी को संभालने की कोशिश में आपकी पार्टी आपकी सरकार निकल पड़ी है।
9: नमस्कार अंजना जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारी सरकार जिस दिन से इस देश की कमान को संभाले हुए है उसी दिन से अंजना जी युवाओं को लेकर के एक नहीं अनेक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। मौके की कुछ बात ऐसी है कि आजकल क्योंकि एक नैरेटिव की भी बहुत बड़ी बात हो रही है और नैरेटिव पर विशेष ध्यान आपका जा रहा है, नहीं तो उस नैरेटिव के जाने से पहले भी इस देश के अंदर माय भारत प्रोग्राम अगर किसी ने शुरू किया तो हमारी सरकार ने शुरू किया। अगर युवा भारत कनेक्ट प्रोग्राम किसी ने शुरू किया, 3,000 से ऊपर लीडर्स को कोई सिलेक्ट कर रहा है देश भर के अंदर, तो हमारी सरकार की पहल थी। युवाओं को मुख्य धारा में ला करके उनको देश की नीति निर्धारण का एक हिस्सा बनाया जाए, उनके सुझावों को लेकर के उनकी योजनाओं को लेकर के देश कैसे आगे बढ़ सके, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार ने स्टार्टअप्स पर, एआई पर, इनोवेशन पर, टेक्नोलॉजी पर बात करी इस देश में तो हमारी सरकार ने करी, और ये सभी वो विषय हैं जो युवाओं से जुड़े हुए हैं। अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी किसी ने, अगर स्किल की बात करी किसी ने, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी। इसलिए देश का कोई भी प्रदेश हो वहां पर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके, वहां पर युवाओं की भागीदारी देश में बढ़ सके, उनको जो अवसर मिल रहे हो उस अवसर पर वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ चढ़ करके काम कर सके, ये हमारी सरकार की नीति रही है। इसलिए मैं इसको किसी एक प्रदेश या किसी दूसरे प्रदेश के चश्मे से नहीं देखना चाहूंगा, पूरे भारत के अंदर भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, 65% आबादी हमारे युवाओं की है, ये बात हमारे देश का नेतृत्व बहुत अच्छे से जानता और पहचानता है।
0: युवाओं को हाथ
9: पकड़ करके उनको सहारा देकर के
0: क्यों जवाब दे रहे हैं? मैं तो बस पूछ रही थी हाउ इज द जेन जी, इतना नाराज होने की क्या बात थी इसमें?
9: नहीं जी बिल्कुल कोई किसी टाइप की कोई नाराजगी नहीं, और आप युवाओं की बात कर रही हैं तो मैं क्यों नाराज हूंगा, मैं तो खुद युवा हूं, तो मैं तो आपके प्रश्न से बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लगा कि आपका फोकस युवाओं पर गया, इसलिए नाराजगी की कोई बात नहीं।
0: युवा है या जेन जी है?
9: मैं जेन जी हूं अंजना जी। अब आजकल जेन जी के दुर्भाग्य यह है कि ठेकेदारी कुछ लोगों ने ले ली है, पर अब आपने पूछ ही लिया ये प्रश्न, तो आजकल जो ठेकेदार बने हुए हैं जेन जी के, सीजेपी नाम से जिन लोगों ने अपनी नेशनल काउंसिल की टीम की घोषणा करी है, उनमें से 7 लोगों की जो उम्र है उससे कम उम्र मेरी है, इसलिए अब आप मुझे जो कहें सो कहें, पर इस देश के अंदर देश का युवा बहुत प्रतिभाशाली है। जेंजी तो वो भी है जो स्काईरूट में काम कर रहा है और देश में पहला सफल प्रशिक्षण करके हमारे देश के रॉकेट्स को ऊपर पहुंचा रहा है। देश का जेंजी वो है जो जमीन पर काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहा है। मैं उसी को प्रतिनिधित्व कर रहा हूं आपके शो पर।
0: एसआईआर के आंकड़ों के मुताबिक जो वोटर्स भी हैं वो लगभग 1.5% के आसपास है। एक बार नंबर्स दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जब ये नंबर सामने आते हैं तो लगता है कि 17,63,360 वोटर, लेकिन ऐसा जरूर है कि वो सिर्फ एक वर्ग को नहीं प्रभावित कर रहे हैं, अपने अंदाज से अपनी सोच से वो बहुत बड़े वर्ग को समाज में प्रभावित कर सकते हैं। और इसीलिए सुनील जी ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी भी जुट गई है उनको अपनी तरफ करने के लिए, लेकिन बीजेपी तो चौपाल भी कर रही है और वो कह रहे हैं कि हम भी जेन जी हैं तो उनके बीच में। और यहां देखिए आकाश जी अंकल कहने लगे अखिलेश जी को।
5: देखिए अंजना जी
0: एक बार क्लियर कर दे, एक बार क्लियर कर दे, फर्स्ट टाइम वोटर्स इतने हैं जो जो नंबर्स हम दिखा रहे हैं, जेंजी का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा वो पैरामीटर है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। बताइए बताइए सुनील।
5: अंजना जी देखिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने एक बात तो अच्छी बोली है और सच बोली है कि प्रधानमंत्री जी ने इन 12 सालों में बातें तो बहुत की हैं। इस बात को तो हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, पूरा देश स्वीकार कर रहा, जनजी भी स्वीकार कर रहा कि प्रधानमंत्री जी ने बातें की हैं, काम नहीं किया है। ये एक सवाल है और ये खुद को जनजी कह रहे हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी जनजी कह सकते हैं, ये कुछ भी परिभाषा बदल सकते हैं। हमारा केवल एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि सारे बीजेपी के सरकार के मंत्री जनजी के बीच जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में। हम लोगों ने भी जानकारी की आपके कार्यक्रम को देखने के बाद, और जिस तरीके से इन लोगों का मूवमेंट चल रहा है, स्कूल बंद करा करा के मंत्रियों के कार्यक्रम हो रहे हैं। और अंजना जी बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं, नौजवानों में खास तौर से जनजी में जो बीजेपी को लेकर के गुस्सा है, अगर बीजेपी का कोई नेता बिना सुरक्षा के उनके बीच चला जाएगा तो मुझे लगता है जनजी दौड़ा लेंगे, उनकी बात ही नहीं सुनेंगे। डरा धमका करके आप उनसे संवाद कर रहे हैं, जबरन आप संवाद कर रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, या वो क्या बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनजी के लिए क्या कर दिया कि 29,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, हर स्कूल के पास लगभग ठेका खोल दिया, ठेकों की संख्या बढ़ गई। तो इनके प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है, परीक्षा नहीं है, नशा है, ठेका है, ठेकेदारी है, तो इसके खिलाफ है जैन जी। आप बताइए ना, आप कह रहे हैं कि हम उनके भविष्य के बारे में, तो पिछले लगभग 10 साल तो अंजना जी यहां होने जा रहे हैं बीजेपी को, 12 साल दिल्ली में, आपने जनजी के लिए कौन सा काम किया है जिससे उनकी तरक्की हो सके, खुशहाली हो सके, उनकी अच्छी शिक्षा और परीक्षा हो सके? आप महिलाओं को फिर पैसा देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब 12 साल दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और 10 साल लगभग उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरे। तो अब चुनाव में आप वोट खरीदेंगे, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यही बात तो कही है कि बीजेपी के पास पाप का पैसा
0: दिखा रहे
5: है।
0: सुनील जी, सुनील जी चुनाव लड़ सुनील जी अखिलेश जी का हम लोग पोस्ट दिखा रहे हैं, कुछ जगहों पर ये जैसे हम लोगों के जगह भी कई जगहों पर ऐसे वैसे सत्ता के गलियारों से ऐसी खबर आई, लेकिन अभी तक कैबिनेट से कुछ अप्रूवल या ऐसा कुछ खबर आई है क्या आपके पास, जो आप कह रहे हैं कि 50,000 देने वाले हैं योगी जी महिलाओं को?
5: नहीं, हमने तो ये कहा कि जो जिस तरीके की खबरें आप लोगों तक हैं, आप लोगों के माध्यम से जनमानस में खबरें हैं, ये तो
0: अभिषेक को लीजिएगा,
5: बीजेपी के लोग बहुत होशियार हैं ना, डायरेक्ट कोई बाल ही नहीं डालते हैं, ये बाल ही मीडिया के थ्रू और प्रोपोगंडा के थ्रू डालते हैं, सेट हो गई तो उस पर काम करने लगते हैं, नहीं सेट हुई तो हाथ खड़ा कर देते हैं कि तो हमारा मुद्दा ही नहीं था। लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में एक बात को कह सकता हूं, जिस तरीके से महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है, जिस तरीके से पिछड़े और दलितों का आरक्षण योगी आदित्यनाथ जी ने छीना है, मुझे नहीं लगता है कि ये 20,000 नहीं 25,000 रुपए दे दें तब भी इनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। आपने बिहार में इसी नाम पे तो वोट ले लिया, 10,000 रुपए दिए, अब सभी महिलाओं को परेशान कर रहे हैं सरकार।
10: तो क्या बिहार की बात उत्तर प्रदेश में महिलाएं नहीं समझेंगी कि किस तरीके से आप धोखा देते हैं? तो ये धोखा देने में नंबर वन पार्टी है।
11: लेकिन सुनील जी, 40,000 की बात तो अखिलेश जी ने भी की थी ना,
10: उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी
11: 40,000 की बात तो अखिलेश जी ने भी की थी ना।
10: माननीय अखिलेश यादव जी, अंजना जी, जो भी बात कहते हैं या जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आएगा अक्षरशः वो लागू होगा। समाजवादी पार्टी जो कहती है उससे वादा खिलाफी नहीं करती है। ये बीजेपी के लोग हैं, कहते कुछ पूरे 12 सालों से इस देश को केवल नारे मिले हैं, वादे मिले हैं और इन दोनों के बाद फिर जुमले मिले हैं। तो जुमलों के लिए अब उत्तर प्रदेश और देश तैयार नहीं है।
11: चलिए
10: बीजेपी की हार,
11: जवाब इसका दें सिद्धार्थ जी, उससे पहले
10: ठीक है, कब चुनाव हो और कब बीजेपी साफ हो,
11: ठीक है वो जवाब दीजिएगा इसका सिद्धार्थ जी। लेकिन उससे पहले एक बार रागिनी जी के पास भी जा रहे हैं। रागिनी जी, हालांकि अभी ये मामला देखिए क्लियर होना है, इसीलिए हमने अपने रिपोर्टर को भी कहा है, अखिलेश यादव भी लेकिन जो पोस्ट लिखते हैं उसमें लास्ट में लिखते हैं हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। और मुझे याद आ रहा है कि मुझे एक इंटरव्यू दिया था अखिलेश जी ने, उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे लगता है एजेंडा आज तक था या पंचायत था, जिसमें उन्होंने 40,000 की बात की थी। अब सवाल है कि अब यही एक प्रथा चल पड़ी है हर जगह। लेकिन उससे पहले मैं जेंजी पर इस वक्त आना चाहती हूँ, क्योंकि राहुल जी का एक कुछ ही देर पहले उन्होंने हमला किया है प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री सब पर, तो ये चुनावी रूप से किस तरह से कांग्रेस आगे ले जाने की सोच रही है?
12: अंजना जी, देश के युवाओं का, छात्रों का, जेंजी का जो भविष्य है वो चुनावी नफे नुकसान से परे है, और मुझे लगता है कि छोटी ओछी राजनीति से परे भी होना चाहिए, पर वो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए मुमकिन नहीं है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानती है। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही हूँ, और मतलब जिंदगी बीत गई, एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी हो, हमेशा हमने ये माना और कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने अंगद की तरह पैर जमाया, नौजवानों, छात्रों, जेंजी के साथ खड़े हुए, और एक बात जो उन्होंने पूरे देश के सामने साबित की वो ये कि ये देश भाजपा की पुलिस की लाठी की गूंज से नहीं चलेगा, ये देश नौजवान छात्रों की गूंज से चलेगा। तो आप अगर जेंजी की बात कर रही हैं और आप ये पूछ रही हैं कि क्या उनको साधा जा रहा है चुनावी फायदे के लिए, तो सबसे पहले तो मैं कह दूं कि ये जो आंदोलन है जो पूरे देश में एक पहले तो दिल्ली में चिंगारी बना और अब पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया है, वो किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है, इस देश के नौजवानों का आंदोलन है जो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता कर रहे हैं। इसीलिए उसको केवल भारतीय जनता पार्टी के नजरिए या चश्मे से देखना, मैं समझती हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो जेंजी है ना, वो बहुत सजग है, सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं, उनके साथ कैसा व्यवहार, कैसा बर्ताव किया जाता है, और जेंजी के साथ अब आप जेन अल्फा भी जोड़ लीजिएगा तो आप देख रही हैं कि हरदोई में अगर खाना ठीक से नहीं मिल रहा है मिड डे मील में, तो भी छात्र वहां के स्कूल के आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान के जालौर में अगर वहां पर शिक्षक नहीं है तो लड़कियां खड़े होकर आंदोलन कर रही हैं, घेराव कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में डीएम की कार को रोककर छात्र डीएम के घर तक पहुंच रहे हैं। तो ये हर तरीके से सजग लोग हैं,
11: और
12: ये बार बार, मैं आ रही हूँ उसी पे आ रही हूँ, बस 30 सेकेंड दीजिए। तो जब प्रियंका गांधी संसद में ये बोलती है कि अमित शाह और मोदी जी की पुलिस लाठी मारे, आंसू गैस छोड़े, दिल्ली में पैलेट गन चलाए, सिवान में AK-47 चलाए, लड़कियों के साथ पुलिस की लाठी के साथ अभद्रता करे, गंदी माँ बहन की गालियां दी जाए, 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, अब तो BNS की धारा बदल गई है, अटेम्प्ट टू मर्डर तक के केस लगाए जाए, ऐसे लाठियों पर कील लगा लगा के बच्चों को मारा जाए, तो ये किसको मार रहे हैं आप? ये बच्चे देश के बच्चे हैं। अब मैं रांची पर आती और आपको फर्क भी बताती। रांची में जो आंदोलन हुआ, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि छात्र और सत्ता के बीच में चुनना पड़ा तो हम छात्र को चुनेंगे। केवल मैं समझती हूँ एक CBI की इंक्वायरी की मांग के अलावा और बाकी सारी मांग वहां पर मानी जा चुकी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं, नितिन नवीन बांकीपुर के चुनावी बायपोल में जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि ये जो जेंजी है ना, ये वायरस है, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वायरस को, इन कॉकरोचों को कुचल देंगे। ये फर्क है, ये संवेदनशीलता और संवेदन शून्यता का फर्क है।
11: नहीं, कोई फर्क नहीं है। रागिनी जी माफ कीजिएगा, रागिनी जी एक सेकेंड, हम उन बच्चों की आवाज सुना रहे हैं जिन पर लाठियां चली हैं, हम उन बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन पर लाठियां चल रही हैं, लेकिन उस पर किसी का आक्रामक अंदाज नहीं दिखता है, कोई पार्टी उनकी बात नहीं उठा रही है। मैं तो यहां तक कहूंगी कि बीजेपी भी उन बच्चों की आवाज नहीं उठा रही है जो रांची में पिट रहे हैं इस बारिश के मौसम में। एक दिन वहां पर खुले में रहकर देख लीजिए क्या हालत हो जाती है, और कल्पना कीजिए कि हमारे बच्चे वहां पर अगर बैठे हो तो हमारे पर क्या बीतेगी। कोई पार्टी नहीं, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना समाजवादी पार्टी, किसी को सुध नहीं है रांची के बच्चों का, सीधी बात है। कुमार अभिषेक, मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। आपको इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि ये 50,000 वाला पूरा मामला जो है ये फंसा हुआ है। अब ये कहां से आया है, कैसे ये खबर आई है? वो कह रहे हैं कि जानबूझकर ये खबर प्लांट की गई है, ऐसा सुनील जी का कहना है। तो इस खबर का आधार क्या है? और इसी के साथ इस पर खुद अखिलेश जी ने रिएक्ट किया है, वो कह रहे हैं कि हम 40,000 से शुरू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक, पूरी खबर बताएं, महिलाओं को 50,000।
13: देखिए अंजना, सरकार के भीतर ये चर्चा चल रही है कि बिल्कुल सरकार के भीतर और पार्टी के भीतर शीर्ष स्तर पर यह चर्चा है कि जब 2027 का चुनाव होगा तो चाहे लाडली बहना आप कह लें या फिर बिहार में जीविका दीदी, जिस तरीके से वहां पर इन लोगों को पैसे दिए गए, बीजेपी को भी कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और ये इस वक्त चर्चा का आधार यही है, और माना जा रहा है कि ये तकरीबन 50,000 के आसपास हो सकता है। देखिए, ये कह देना कि सरकार ने फैसला ले लिया है ये ठीक नहीं होगा, लेकिन जो बीजेपी का जो नेतृत्व है, चाहे आप उत्तर प्रदेश का कह लें या जो फिर जो सरकार के मुखिया हैं, कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 40,000 का ऐलान कर दिया है तो बीजेपी को भी उससे ऊपर जाना पड़ेगा। और यही नहीं, उनका ये हिट फॉर्मूला है जो कि चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर आप देख लें बिहार हो, जीविका दीदी, ये दोनों जगह इनका फॉर्मूला हिट हुआ है। तो यूं तो अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर महिलाएं बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी की रही हैं, लेकिन इस बार पैसे भी डायरेक्ट देने की बजाय इस बार कई तरीके ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है और कोई ऐसी उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो अलग से कुछ पैसे देगी। तो आप याद करिए कि जिस तरीके से जीविका दीदियों को उनके प्रोग्राम के जरिए पैसा दिया गया, तो बीजेपी भी कुछ ऐसा सोच रही है, उनके भीतर इस बात की चर्चा चल रही है कि अलग अलग प्रोग्राम के जरिए इतना पैसा दे दिया जाए ताकि एक तो उनकी मदद हो, दूसरे चुनाव में भी फायदा हो। तो अभी ये बहुत पुख्ता तौर पर सामने नहीं है कि सरकार दे रही है 50,000 रुपये, लेकिन सरकार सोच रही है और ये 50,000 के आसपास की जो बात है ये निकल कर, चाहे पार्टी हो चाहे सरकार हो, इसके भीतर ये चल रहा है।
11: अभिषेक, अगर ऐसा होता है, अखिलेश यादव ने 40,000 की बात की थी, ये 50,000 ये पूरे देश में, एक बार दिखा दीजिए हर राज्य में जितना जितना पैसा दिया जा रहा है, मतलब जो 10,000 बिहार में दिया गया उसका भी लगभग 4 गुना 5 गुना हाईएस्ट इन द कंट्री हो जाएगा फिर ये।
13: नहीं बिल्कुल, यूपी का चुनाव बहुत हाई स्टेक का चुनाव है, तो इसमें हाईएस्ट इन द कंट्री भी हो जाए तो चौंकने वाली बात नहीं होना चाहिए। यूपी सरकार दावा भी करती है कि हमारा सरप्लस बजट है, यानी कि हमारे पास पैसे हैं। उनका दावा ये भी है कि हमारा जो बजट साइज है वो लगभग 10.25 लाख करोड़ का है। तो अगर बिहार से अगर आप तुलना करें तो 2-2.5 लाख का, और यहाँ कहाँ 10 लाख करोड़ के आसपास का है। तो अगर ये कह रहे हैं तो इनके पीछे इनकी एक सोच, इनकी एक वजह हो सकती है, लेकिन ये बात तय मान लीजिए कि सरकार एक बार फिर जो फ्रीबीज है उसका खेल करेगी। और सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी इसको भांपते हुए, अखिलेश यादव ने 40,000 का कह दिया है कि देंगे आते ही और बढ़ाते रहेंगे हर साल, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बल्ले बल्ले होने वाली है, ये आप मान लीजिए। बस चुनाव का इंतजार करिए, चुनाव के पहले सभी पार्टियां ऐलान करेंगी, और बीजेपी अगर या सरकार ऐलान करती है तो उनको हाथ में भी देना होगा, तो कुछ पैसे देगी सरकार, ये भी मान लीजिए।
11: ठीक है, अभी लेकिन ऐलान होना है, कैबिनेट से पास होना है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, पहल हैं जो बचे हुए रहेंगे। एक बार चूंकि रुक जाइए मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार आरएलडी से निशा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। निशा जी, कुल मिलाकर देखिए इस बार चैलेंज सबसे बड़ा नीट एग्जाम से जंतर मंतर में जो युवा पहुंचे और जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, अब देखिए ये युवा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, उसके साथ ही उसका पूरा परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिलीज है और अनेकों बच्चे हैं। और एक बात जो शायद यूपी की सरकार और कोई भी सरकार देश की नहीं देख रही है, आप देखिए कि जेन अल्फा अगर खुद सड़कों पर निकल रहा है, महाराष्ट्र में वो बच्चे खुद से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में है, सीतापुर से लेकर अलग अलग जगहों पर मिड डे मील नहीं ढंग का मिल रहा है, दाल के नाम पे पानी है, आपको नहीं लगता है कि इन सब का ध्यान रखना सरकार का काम है? और कम से कम अब तो सब जागे हैं।
14: अंजना जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जेंजिस और अल्फाज को ये जरूर बधाई देना चाहूंगी कि जो उनके अंदर था अब वो उस चीज को सरकार के सामने रखने लगे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले 10-15 साल से आप पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखेंगे तो सभी लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह पेश आना एक एज के बाद बहुत जरूरी है। आज वो जमाना नहीं रहा कि आपने आदेश दे दिया और वो हो गया, क्योंकि आज वो भी उसी तरीके की भागीदारी दिखा रहे हैं, वो भी जिम्मेदारियों को उसी तरीके से उठा रहे हैं, तो हमें भी वो काम करना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस काम को किया भी, जैसे ही उनको लगा कि कोई डिमांड इन बच्चों की तरफ से आई है तो उन्होंने झुककर उस चीज को सराहा भी और उसके ऊपर वीडियोस भी बनाई, उनकी सभी मांगे मानी भी गई। इस तरीके से जेंजिस और अल्फा अपनी बातों को जो रख रहे हैं सरकार के साथ, चाहे वो कहीं की भी कोई भी सरकार, उनको रखने का पूरा अधिकार है, आंदोलन करने का पूरा अधिकार है।
15: और सरकारों को ये बात सुनी, मेरा सवाल नहीं सुना आपने निशा जी, मैंने ये पूछा कि सरकारें क्यों नहीं जाग रही, ये तो उनका काम था, इस वजह से बच्चे मजबूर हो रहे हैं ना, बच्चों का अधिकार है, बच्चों को बोलना है, ये सब बोलने का टाइम गया।
14: उसी पे आ रही हूं,
15: अभी भी एक एक सांसद विधायक जाकर अपने अपने जो भी उनका चुनावी क्षेत्र है, स्कूल और अस्पताल का सुध तो लें।
14: अंजना जी उसी बात पे मैं आ रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि सुध लें, तो मुझे लगता है देखिए हमारी एनडीए के गठबंधन में अब छोटी छोटी सभाएं भी करनी शुरू कर दी हैं, हर क्षेत्र में अपने विधायक भी सांसद भी जाने की तैयारी में हैं और कुछ सभाएं शुरू कर भी दी हैं और उनके साथ वार्तालाप भी कर रहे हैं, और आरएसएस के मुखिया ने भी किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, और आगे भी हम राष्ट्रीय लोकदल ने अगर मैं बात करूं तो हमेशा ही ये कोशिश की है, युवा महिला किसान, चाहे वो महिला किसान हो चाहे वो कोई भी किसान हो, उन सबकी बात को एक पटल पर रखा जाए, सुना जाए और उसमें हर जगह पर उनको संरक्षण के साथ साथ समाधान दिए जाए, और यही कोशिश राष्ट्रीय लोकदल की और एनडीए गठबंधन की।
15: सिद्धार्थ जी, ये सवाल मैं आपके पास लेकर जा रही हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत गंभीर है, कहने और बात करने का जो वक्त है ना वो बीत चुका है, अब लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए और वो परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। अगर अनेकों स्कूल से मिड डे मील की ऐसी तस्वीरें आ रही है जो जो मतलब ऐसी, मतलब आप अगर तस्वीरें और वीडियोस देखिए, आपको खाना मतलब अगर खाया हुआ है आपने तो आपके लिए मुश्किल हो जाए, ऐसा खाना तो उन बच्चों के सामने परोसा जा रहा है। ये अचानक का गुस्सा नहीं है, ये कई दिनों से कई दशकों से आ रहा गुस्सा है, और अब तो आप लोग 12 साल से शासन में हैं केंद्र में, और यहां पर योगी जी की भी सरकार इतने सालों से है, क्या बदला आपने, क्यों ना गुस्सा हो जेन जी जेन अल्फा में?
9: अंजना जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, उससे पहले मेरे से पहले दो वक्ता और बोले, मैं उनकी भी बात का बस एक एक लाइन में जवाब दे दूं। सुनील साजन जी मेरी उम्र पर टिप्पणी करके परिभाषा बदलने की बात कर रहे थे, इनको मैं आग्रह करूंगा आकर के आधार कार्ड देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कौन जेंजी है कौन नहीं है। पर जो लोग 50-55 में भी अपने आप को युवा बताते हो, कौन परिभाषाओं को तोड़ मरोड़ रहा है साहब, कौन परिभाषाओं का देश में मजाक बना रहा है, कौन ऐसा है जो 55-60 होकर के भी युवा बना हुआ है, इसलिए उस पर मत जाइए, आप फंस जाएंगे, आपके सबके नेता फंस जाएंगे, जो साइकिल पे बैठ करके पंचर साइकिल पे घूमेंगे वो सब फंस जाएंगे। अभी रागिनी जी ने भी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा मैं एनएसयूआई की लीडर रही, पर नारा एबीवीपी का बता गई, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति तो एबीवीपी का ऑफिशियल स्लोगन है, पर उनको भी मेरे को लगता है कि प्रभावित वो इधर से ही होंगे। पर उनने एक बात महत्वपूर्ण कही अंजना जी, उनने कहा कि अंगद के पैर की तरह टिक गया है राहुल गांधी का पैर, पर वो पैर रांची में नहीं टिक पा रहा, वो पैर पंजाब में भी नहीं टिक पाया, वो पैर कर्नाटक में भी नहीं टिकता। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के हिसाब से झारखंड के छात्र छात्र नहीं, पंजाब के छात्र छात्र नहीं, झारखंड के कर्नाटक के छात्र छात्र नहीं, उनको ऐसा लगता होगा। मैं एक बात आपको दावे से कहता हूं अंजना जी, इस देश की युवा पीढ़ी, इस देश का जेन जी जेन अल्फा, वो कुछ भी पसंद कर सकता है, वो हिपोक्रेसी पसंद नहीं कर सकता। और आज ये नौबत आ चुकी है इनकी कि हिपोक्रेसी का नाम बदल करके राहुल क्रेसी रख दीजिए आप, इतनी हिपोक्रेसी है इनके मन में। जहां हमारी सरकारें चलेंगी वहां शांतिपूर्ण बैठे हुए प्रदर्शन में, जहां युवा एक बात ना बोले, एक गाली ना दे, एक पत्थर ना चलाए, किसी को कोई उद्दंडता ना दिखाए, किसी को उकसाए नहीं, वहां पर लाठी भी चलेगी, झारखंड में डंडे भी चलाए जाएंगे, टीयर गैस भी मारी जाएंगी, उनको वाटर कैनन भी मारा जाएगा, पर वहां के छात्रों को चोट नहीं लगती अंजना जी, वहां की लाठी से थोड़ी चोट लगती है, वहां के टीयर गैस से आंसू भी नहीं आता, वहां पर वाटर कैनन जो लगता है उससे थोड़ी परेशानी है। ये जो दोहरा मापदंड है विपक्षी दलों का, जिन्होंने सोचा कि हम इस पूरे विषय में पॉलिटिकल कैपिटलाइजेशन कैसे कर सके, और उस ख्वाब को बना करके अपने मन में इनको लग रहा है कि हम युवा पीढ़ी को अपने साथ ले लेंगे। आपने उत्तर प्रदेश का उल्लेख किया, मैं आपसे पूछता हूं क्या देश का जेन जी, देश का जेन अल्फा, देश की युवा पीढ़ी उन पार्टियों के पास जाएगी क्या जहां का तख्त अपने परिवारों में बंटता है? कौन से जेन जी को मौका मिल सकता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में? कौन देगा मौका? यहां तो जो आएगा पहले परिवार में बटेगा, जब परिवार पूरा भरपेट खा लेगा उसके बाद अपने आसपास वालों में बटेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जहां गरीब मां का बेटा चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, गोरखपुर के मठ से आए हुए योगी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, इनके यहां नहीं हो सकता। रही बात आपने जो प्रश्न पूछा, मैं उसका भी उत्तर दे देता हूं। ये एक कंटिन्यूड फोकस होना चाहिए अंजना जी, यह आज और कल की बात नहीं है, यह देश की ढांचेगत व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ करने की बात है। अगर हमने सरकार में आने के बाद देश के अंदर 400 स्टार्टअप्स थे, मैं ऑफिशियल डेटा आपको बता रहा हूं, और आज अगर 2.07 लाख स्टार्टअप्स हैं, इन सब स्टार्टअप्स में काम करने वाले जेंजी ही हैं, इन सब स्टार्टअप्स के फाउंडर्स जेंजी हैं, इन स्टार्टअप में 90% लोग जो काम कर रहे हैं वो जेंजी हैं। अगर 4 यूनिकॉर्न थे और आज यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़कर $1 बिलियन कंपनी बढ़कर के 110 यूनिकॉर्न हो चुकी है, हाँ। वो देश की जेंजी द्वारा बनाई गई है, हाँ। तो ये देश की सरकार, देश के युवाओं को भरोसा है अपने नेतृत्व पर।
11: और मुझे पूरा भरोसा था कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, और वही हो रहा है। आप मिड डे मील पर अब जाकर आ रहे हैं, जब टाइम खत्म होने लगता है, सब कुछ अपना जो सोचा हुआ है वो बोलना है उसके। नहीं, अब मैं ये नियम बनाने वाली हूँ कि जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आप लोग पहले दें, वरना ये होता है कि उन्होंने जो बोला है उसका बोलूंगा, उसका बोलूंगा, फिर उसका बोलूंगा। मुझे स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स के, इस जानते हैं, इस देश की सबसे बड़ी समस्या प्राइमरी स्कूल्स है। आप लोगों को एहसास ही नहीं है, प्राइमरी स्कूल्स इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। प्राइमरी हेल्थ इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। उस पर सवाल का जवाब आप 2 मिनट बाद आते हैं देने के लिए, तो कितना टाइम आपको दूं? मतलब सिद्धार्थ जी,
9: देश की कौन कर, अब आप नाराज हो रही हैं अंजना जी, अब सुन लीजिए ना, मैं बिना नाराज हुए जवाब दे रहा हूं, आप नाराज हो गई हैं, सुन लीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए इनको, फालतू दे दीजिएगा, कोई बात नहीं है। आपने मिड डे मील पर पूछा प्रश्न, मैं मिड डे मील का ही उत्तर दे रहा हूं। देश में शिक्षा व्यवस्था कॉन्करेंट लिस्ट में है, वहां केंद्र के पास भी शिक्षा की जिम्मेदारी है और स्टेट के पास भी।
11: मतलब योगी जी पे दोष डाल रहे हैं,
9: केवल शिक्षा स्टेट्स की जिम्मेदारी थी, और मैं किसी पर दोष नहीं डाल रहा, मैं तो कह रहा हूं कि सुदृढ़ करनी है व्यवस्था, जहां जहां केंद्र में हम हैं, पीएम श्री स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, टॉप नॉच एजुकेशन है, जहां जहां स्टेट में है शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा किसी ने बढ़ाया, हमने बढ़ाया 1,00,000 करोड़ इस देश के अंदर शिक्षा का बजट, किस सरकार ने पार किया
11: सिद्धार्थ जी,
9: मुझे बता दीजिए।
11: सिद्धार्थ जी,
9: 8,000 करोड़ था
11: सिद्धार्थ जी, आप पूरा पॉइंट ही मिस कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप एक बहुत काबिल वकील हैं सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, जिस भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन कि ये एनफोर्स कौन करेगा? हम इतना पैसा दे दे रहे हैं, ये स्कूल के लेवल पर कौन एनफोर्स करेगा? आपका जो लास्ट माइल डिलीवरी, जिसके लिए आपने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे पैसा जो सीधा जाता है लोगों को, किसी भी लाभार्थी को, सीधा उसके पैसे में जाए, उससे एक बहुत बड़ा लीकेज रुका। लेकिन ये जो शिक्षा का पैसा है वो नहीं पहुंच रहा है, सही जगह नहीं इस्तेमाल हो रहा है। ये खाना देखिए, विजुअल्स दिखाइए इनको, खा सकते हैं हम लोग ये खाना? कैसी बात कर रहे हैं आप, हमने इतना पैसा दे दिया और टॉप नॉच हम ये कर रहे हैं, ये टॉप नॉच है सर? आप देखिए, मतलब छोटे छोटे भी जो देश है ना विश्व के, उनको आप देखेंगे किस तरह का प्रोटीन डाइट वो बच्चों को मिड डे मील में देते हैं, ये दे रहे हैं हम बच्चों को।
9: अंजना जी, हम अपेक्षा से दूर नहीं जा रहे, हमसे ही अपेक्षा है और हम ही इसको दुरुस्त करेंगे। कहीं भी ऐसी कोई घटना होगी हमें दुरुस्त करेंगे। अपेक्षा अगर हमसे है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आपका जो कंसर्न है मैं उसका

0: उसमें निश्चित बहुत मेहनत जाने वाली है, पर वो मेहनत करने के लिए सरकार तैयार है और हम ही उसको ठीक करेंगे। आपकी अपेक्षाओं को मैं सम्मान करते हुए कहता हूं, आपकी अपेक्षाओं पर
1: रागिनी जी, रागिनी जी, ये तेरा राज्य ये मेरा राज्य, ये तेरा लाठीचार्ज ये मेरा लाठीचार्ज, ये तेरा आंदोलन ये मेरा आंदोलन। वरना आप कहेंगे कि एनएससीआई के लोग वहां पर है, ये कहेंगे एबीवीपी के भी तो लोग हैं। लेकिन जिस तरह से शीर्षस्थ नेता सारे शामिल हुए जेंजी की आवाज के साथ दिल्ली में, वैसे तो वहां नहीं हो रहा है।
2: अंजना जी, मैं जल्दी जल्दी जवाब देती हूँ क्योंकि सिद्धार्थ को कुछ जरूरत से ज्यादा समय मिल गया। ये मैंने वीडियो दिखाया है, इसमें साफ नजर आ रहा है कि विद्यार्थी परिषद है या भारतीय जनता पार्टी है, जिसके भी लोग हैं वो खड़े तो हैं लेकिन पथराव कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे चले, आपके चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चले और अन्य तमाम जगहों पर चले। तो कौन घुसा था, कौन अराजक तत्व था, रविंद्र पासवान छात्र नेता किस पे आरोप लगा रहे थे, इस पे मुझे लगता है बहस कर चुके होंगे। इन्होंने एक व्यक्तिगत टिप्पणी की, उसका जल्दी से जवाब दे दूं। विद्यार्थी परिषद का नारा, क्योंकि आप कभी विद्यार्थी जीवन में रहे हो पर आप छात्र नेता नहीं रहे सिद्धार्थ यादव, विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का नारा है, ठीक करेंगे तीन काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। प्रवेश, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोली, बीच में नहीं बोली।
0: आप प्रवेश मेरे बारे में पढ़ के आइएगा रागिनी जी, इसलिए सर्टिफिकेट मत बांटिए।
2: अंजना जी, अंजना जी, क्या
1: मैं किसी बीच में बोली? हाँ, बीच में।
2: क्या मैं किसी के
1: इशारा, हाथ उठाइए प्लीज। हाँ,
2: प्रवेश परीक्षा और परिणाम। प्रवेश तो सीयूईटी किस तरीके से सवालों के कटघरे में है सब जानते हैं। जहां तक परीक्षा की बात है, पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हो गए और परिणाम तो तब आएगा जब परीक्षा हो पाएंगी। तो अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। अब मैं दो तीन बातें जरूर करना चाहती हूँ यहाँ पर बड़े खुले तौर पर। पहले इन्होंने अपने गाल बजाए, देश में नौजवानों के लिए क्या हुआ है? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के कार्यकाल में रही, इतनी ज्यादा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पदाधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि आंकड़े सामने नहीं आ रहे थे। नाली पर गैस से पकौड़े तलने और 2 करोड़ नौकरियां मिलने के बीच का सफर कितनी जल्दी तय हुआ, इस देश के लोगों ने देखा। आज योगी जी और उनके मंत्री उत्तर प्रदेश में जेंजी के लिए चौपाल लगाने की बात कर रहे हैं, पर चौपाल लगाकर बताएंगे क्या जेंजी को? ये बताएंगे कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में जो 20 बड़े राज्य हैं उनमें सबसे निचले पायदान पर आज शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश है? क्या ये बताएंगे कि 50% स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज भी इंटरनेट और कंप्यूटर नहीं है? क्या ये बताएंगे कि 86% स्कूलों में केवल प्राइमरी या ज्यादा से ज्यादा अपर प्राइमरी तक की पढ़ाई है, यानी कि केवल 3% स्कूल ऐसे हैं जो 1 से लेकर 12वीं तक हैं? क्या आप ये बताएंगे कि 29,000 स्कूल पिछले 9 सालों में बंद हो चुके हैं? क्या आप ये बताएंगे कि 81,000 सरकारी टीचर जो है उनकी पोजीशन आज भी वेकेंट है? तो गाल बजाने से पहले ना ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए। पूरे देश की भी अगर आप बात करें तो 1 लाख से ज्यादा स्कूल आज बंद हो चुके हैं। 1,843 स्कूल पूरे देश में ऐसे हैं जहां केवल एक टीचर है। 1,19,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। 57% स्कूल ऐसे हैं जहां पर साइंस लैब नहीं है। 98,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। आप जेंजी की बात करेंगे? और जेंजी की बात करने का मौका 21 दिन में संसद में मिल रहा था, कहां गए नरेंद्र मोदी, कहां गए अमित शाह? ये कहना बड़ा आसान है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में दम है ये कहने का कि अगर हमें सरकार छोड़नी पड़ी हम सरकार छोड़ देंगे। ये दम है कहने का कि हम इसकी निंदा करते हैं। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि देश के गृह मंत्री
1: आई। लेकिन एक और सबक है जो तमाम पार्टियों के लिए, चूंकि आप पार्लियामेंट की बात करी, आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही को बता रही हूँ और दर्शकों को खास तौर पर दिखा रही हूँ कि आपको पता है हम लोगों का कितना पैसा स्वाहा हुआ है इस मानसून सत्र में, सिर्फ देख लीजिए, लगभग 204.5 लगभग 204.5 करोड़ रुपए इसमें बर्बाद हुआ है। टैक्स पेयर का पैसा, हम सबका पैसा जो टैक्स में हम देते हैं, जानते हैं इसमें क्या क्या हो सकता था? 409 अस्पताल बन सकते थे, इसमें 204 स्कूल बन सकते थे। एक सेशन की, मतलब एक सत्र की बात कर रही हूं मैं, कितना, और एक एक करोड़ के लागत का स्कूल ऐसा बन सकता है। तो आप सोच लीजिए कि 1 करोड़ का अगर लागत हो तो ऐसे 204 स्कूल, अगर कम लागत में स्कूल बन जाए तो उससे भी आप सोचिए कितने स्कूल होंगे। पीएम आवास जो है वो 15,730 बन सकते थे, 20 पुल बन सकते थे कुल मिलाकर, और वो भी हम आपको बता रहे हैं कि कितने कितने करोड़ की लागत के। इतना पैसा तो हम टैक्स पेयर्स का आप लोगों ने एक सत्र में स्वाहा कर दिया। क्या ही आप लोगों से पूछा जाए, ना एक सांसद किसी क्वेश्चनार में, कोई अपने अपने अपने जगहों का कुछ, कोई सवाल जवाब नहीं। अगर कहीं का कोई सांसद चुनकर आया है, वहां पर पुल की प्रॉब्लम है, कोई चीज की प्रॉब्लम है, उठा ही नहीं पाता है संसद में। यहां पर अपने अपने ईगो वॉर में से ही भिड़ते रहना है, ये भिड़ते रहना है, इतना पैसा आप लोग बर्बाद करते हैं। सुनील जी, एक बार आपके लिए सुनाती हूँ स्पेशल, सुनिए ना, सुनिए ना सुनील जी।

0: 40,000 की बात अखिलेश जी ने जो कही थी वो सुनाते हैं आपको।
1: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा। उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपए महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपए हम देने जा रहे थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं, उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500, अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं। तो 12 महीने देना है 3,000, तो कितना हुआ? 36,000 रुपये। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं।
0: मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी। सुनील जी मुस्कुरा रहे हैं आप भी सुन के, तो खुद के एकदम ट्रांजैक्शनल बात हो रही है, ट्रांजैक्शनल बात हो रही है कि 10,000 में अगर उनकी सरकार बनी है तो हम तो 40,000 देने वाले हैं।
2: नहीं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात और भी तो बताई कि समाजवादी सरकार में हम 500 रुपए दे रहे थे, नेक्स्ट सरकार बनती तो हम 1,000 रुपए देते, क्योंकि प्लान के साथ हैं, अनप्लान के साथ नहीं, और वोट खरीदने के लिए नहीं। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मेरी किसी बात से उनको बुरा लग गया। आप अगर काम करें तो हम आपको जेन जी नहीं जेन अल्फा मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर उससे आप जमीन पर ले आए, हम तो कह रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी से, आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए कि कुछ ही सीख लें। आप एक्सप्रेसवे वैसे नहीं बना पा रहे हैं, बिल्डिंग वैसी नहीं बना पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज वैसे नहीं बना पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी वैसे नहीं बना पा रहे हैं, आप पार्क नहीं बना पा रहे हैं, आप इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बना पा रहे हैं, रिवर फ्रंट नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जो माननीय अखिलेश यादव जी ने 19,00,000 लैपटॉप बांटे थे आप उन्हीं की नकल कर लीजिए। आप मिड डे मील की बात कर रही हैं अंजना जी, समाजवादी सरकार में फल दूध और खाने की क्वालिटी, हम तो कहेंगे आप अपने सूत्रों से अपने पत्रकार साथियों से पूछिएगा सपा की सरकार में कैसे दूध मिलता था, कैसे फल मिलते थे इन्हीं बच्चों को, और आज क्या खिलाया जा रहा है। जो वीडियो जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें देख करके भी भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आ रही।
0: छोटा सा रिस्पॉन्स, जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है, एकदम दो लाइन का रिस्पॉन्स, सिर्फ दो लाइन।
3: नहीं देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि युवाओं से वास्तव में कौन सरोकार रखता है वो देश का युवा समझता है। वो कह रहे हैं आप सरोकार रखिए, हम आपको जेन अल्फा मान लेंगे। क्यों मान लेंगे भाई, आप अपने आप को युवा मानते रहिए, मैं जो हूं सो हूं, पर देश के युवाओं की चिंता करिए। आपका नेता जब कितना
0: वक्त इतने की इजाजत देता है, मुझे बीच में ही टोकना पड़ा क्योंकि आपके नेता हमारे नेता उसके नेता में ही बात रह जाती है। बहरहाल इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: पापा
6: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का
7: सब कैशलेस हो गया
6: है।
8: टाटा
9: AIG है तो भरोसा है।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी घू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घू का कॉफ सिरप।
2: बहुत टायर्ड हो गई।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: बिजली का बिल पेड
6: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
7: कैसे?
6: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
7: पे।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: In association with
2: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू,
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: I wake up wearing someone else again.

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Tak, digital first channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one-stop solution for your brand, regional or hyper-local reach. Har shahar, har kasbe tak, advertise karne ke liye email karein.
2: 25 saalon se, jahan tiki hai desh ki nazar. मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: जैन जी वोटरों को साधने की नई सियासत का पहला चुनावी टेस्ट यूपी में होगा।
1: देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन।
0: बीजेपी को देश के जैन जी वोटरों से संवाद की राह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है। पीएम मोदी से मिले संकेतों के बाद अब 2027 के यूपी चुनाव से पहले यूपी सरकार के मंत्री जैन जी चौपाले लगाने की शुरुआत कर रहे हैं। यूपी में जैन जी को साधने के लिए बीजेपी की युवा टोली स्कूल कॉलेजों तक पहुंचकर उनसे सीधा संवाद करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस अभियान के तहत हर विधानसभा में 10-10 युवाओं की टीमें तैयार होंगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं, उनकी अपेक्षाएं और उनकी राय जानेंगे। इस अभियान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की अहम भूमिका होगी। जैन जी को लेकर इस रणनीति की यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब यूपी बीजेपी के बड़े नेता लगातार केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं। बुधवार को यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में यूपी चुनाव के मद्देनजर चर्चा हुई है। वैसे जैन जी पर दाम विपक्ष का भी रहने वाला है। दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट को समर्थन देने वालों में अखिलेश यादव बेहद सक्रिय थे। इस बीच जैन जी को लेकर बीएसपी की रणनीति भी सामने आई है। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जैन जी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जालौन की माधोगढ़ सीट से बीएसपी ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान, तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। मायावती के सोशल मीडिया पोस्ट्स में लगातार छात्रों और युवाओं की बात की गई है। उनके निशाने पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी है। हाल में आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को अंकल कहा था, जिस पर अखिलेश प्रतिक्रिया देने से बचे थे।
2: आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा है?
3: बोला मैं 30 का हूँ,
2: आपको अंकल कहा है?
4: देखिए ऐसा है, उस बहस में हम और आप न उलझे। और जो सीएस बात है, एक सिक्के के दो पहलू, और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम चलता ही रहे।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मायावती की रणनीति को समझकर बीएसपी पर पलटवार कर रहे हैं। जैन जी के साथ साथ महिला वोटरों पर भी राजनीतिक दलों की नजरें हैं। यूपी में महिलाओं को सालाना 50,000 रूपए, जिसमें चुनाव से पहले ही 20,000 रूपए ट्रांसफर करने की संभावना वाली स्कीम पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है, वो भी भाजपा की पाप की कमाई है, जिसे यूपी की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेंगी, जिसे उप्र की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेंगी। यूपी की जागरूक महिलाएं पूछ रही हैं, जिन दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा करके चुनाव जीता था, वहां एक तरफ तो देने से आनाकानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे वापस मांग रहे हैं, और जो लौटा नहीं पा रही हैं, उन महिलाओं पर भाजपा थाने कचहरी पुलिस मुकदमे की निंदनीय कार्रवाई कर रही है। पोस्ट के अंत में अखिलेश ने लिखा है, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। युवा और महिला किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं, मौजूदा माहौल में चुनावों में इनकी भूमिका और अहम हो सकती है, इसलिए यूपी में इन पर दांव लग रहा है। आज तक ब्यूरो।
5: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।
6: बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हल्ला बोल में आप देख रहे थे बहस कैसे जेन जी को लुभाने की कोशिश में हर कोई जुटा हुआ है और अब नया जो बात कही जा रही है वो ये है कि हाउस द जेन जी। खैर आलम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए साथ तक मारिया के साथ।
1: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म हुआ मॉनसून सत्र। सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। स्पीकर की टीम मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। सरकार के साथ संघ पर भी राहुल गांधी का हमला। कहा, छात्रों की बात नहीं सुन रहा केंद्र। आरएसएस पर भी लगाए संगीन आरोप। नांदेड़ में सुखबीर बादल पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने ली सेहत की जानकारी। सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश। झारखंड छात्र आंदोलन पर दिल्ली में सियासत। एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। रांची में 20 दिनों से जारी है स्टूडेंट्स का धरना। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर पर रोक बरकरार। रामपुर कमिश्नर कोर्ट का फैसला। शुरुआत संसद में मचे संग्राम के साथ। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया, जो पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। आखिर जनता के पैसों से चलने वाली संसद मुद्दों पर चर्चा के बजाय हंगामे में क्यों तब्दील हो जाती है? आखिर जनता के पैसों का हिसाब कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी?
1: जिस हंगामे के साथ मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, उसी हंगामे के साथ मॉनसून सत्र खत्म हो गया। जो बहस संसद के अंदर होनी थी, वो गतिरोध संसद परिसर में प्रदर्शन तक सिमट कर रह गया।
2: तो लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहले बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं।
3: प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे। और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे यहाँ हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे है कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी।
1: विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग करता रहा। एफसीआरए बिल वापस लेने की मांग की गई, तो वहीं सरकार राहुल गांधी पर चर्चा से भागने का आरोप लगाती रही।
4: मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया।
5: ना प्रधानमंत्री जी आए, ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र?
1: हैरान करने वाली बात है कि लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे काम नहीं हुआ। मॉनसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। इस हिसाब से 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन ये करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम कार्यवाही हुई। वहीं राज्यसभा में 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन लगभग 37 घंटे 24 मिनट ही काम हुआ, यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्यवाही हुई।
2: प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है, राज्यसभा में 39%।
1: अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 2026 के मॉनसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने जैसे मुद्दों से जुड़े हुए हैं। माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जनता के पैसों से चलने वाली संसद ठप करने का जिम्मेदार कौन है? कब तक सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाकर नेता अपना पल्ला झाड़ते जाएंगे? आज तक ब्यूरो।
0: मॉनसून सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन आज फिर राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक कार्यक्रम में एक बार फिर पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला किया।
6: जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें, और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के, हम हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है, ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको।
0: राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में जहां उन्होंने रैली की थी उस मैदान पर बीजेपी के लोगों ने शुद्धिकरण अभियान चलाया और मंच की शुद्धता के लिए हवन किया।
7: हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जहां यज्ञ हो रहा है, इसी जगह पर 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय शंखनाद रैली की। खड़गे की रैली के बाद यहां गंगा जल का छिड़काव किया गया, यज्ञ किया गया, हिंदूवादी संगठनों ने रामलीला मैदान का शुद्धिकरण अभियान चलाया। मैदान का शुद्धिकरण हुआ तो खड़गे तड़प उठे, उन्होंने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया।
3: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।
7: खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके दलित होने का अपमान किया, दलितों को अपमानित किया।
3: इस इज द वे इन डेमोक्रेसी हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू आई एम अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन।
7: लेकिन खड़गे के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने साफ कहा कि ऐसे किसी शुद्धिकरण करने वालों का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं।
8: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
7: नड्डा ने यहां तक कहा कि जिन लोगों ने मैदान का शुद्धिकरण किया है उनकी पहचान की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी,
8: जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है।
7: कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस मसले पर आपत्ति जताई, साथ ही पीएम से माफी की मांग की।
5: ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है, इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।
7: समाजवादी पार्टी ने भी शुद्धिकरण के मसले पर बीजेपी को घेरा,
9: तो इस तरह के कृत्य करके वो समाज के अंदर विघटन डाल के किसी तरह से चाहते हैं राजनीतिक लाभ लेना, लेकिन हम इस मौके पे बीजेपी के लोगों से और उनके संगी साथी और नियत के लोगों से कहेंगे कि हम दलितों को, हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को जितना आप अपमानित करोगे, जितना आप जलील करोगे, हमारा संघर्ष का संकल्प उतना ही और मजबूत होता जाएगा।
7: अब पूरी सियासत दलित बनाम बीजेपी पर अटक रही है, मगर सवाल ये है कि रामलीला मैदान का शुद्धिकरण क्यों किया गया और जिन लोगों ने ऐसा किया क्या उन पर कार्रवाई होगी। हल्द्वानी से लीला सिंह बिष्ट के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात रांची में जारी छात्रों के आंदोलन की, जहां पिछले 20 दिनों से छात्र सोरेन सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है।
10: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के धरने के 19वें दिन की यह तस्वीर है। धरना स्थल खाली खाली नजर आ रहा है, छात्रों की संख्या पहले से काफी कम नजर आ रही है। सवाल उठने लगा है कि क्या आंदोलन में थकान आ गई है।
11: संख्या कम होगी फिर बढ़ेगा, फिर कम होगी बढ़ेगा, एक नहीं कहते हैं युद्ध फिर विराम फिर युद्ध, जो चलता रहता है वही अभी परिभाषा है। अभी युद्ध करके आए हैं, कुछ थके हैं, इसलिए विराम की अवस्था में, फिर युद्ध की तैयारी में होंगे, लेकिन ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि अब बिना रिफॉर्म के अगर रुक गए तो फिर आने वाले समय में भी इसी प्रकार सीटों को बेचा जाएगा।
10: आंदोलन के भविष्य पर उठते सवालों के बीच छात्रों को समर्थन देने धरना स्थल पर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे। रघुवर दास ने सरकार को चेताया है कि 7 दिन के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो खुद अनशन शुरू कर देंगे।
12: पूरे मामले का सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया तो मैं भगवान बिरसा मुंडा मैं भी अनशन पर बैठूंगा।

0: 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा तक निकाले गए मार्च के सिलसिले में 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उधर 15 अगस्त को सीएम आवास के घेराव की अटकलों के बीच सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज तक ब्यूरो।
1: महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल पर हमला हुआ। गुरुद्वारा माता साहिब कौर में मत्था टेकने के बाद जब वो बाहर आ रहे थे तब एक निहंग ने उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में सुखबीर बादल के हाथ में चोट आई। पीएम मोदी ने भी फोन करके उनका हालचाल पूछा है।
2: महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा माता साहिब कौर में मत्था टेकने के बाद जैसे ही शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर बादल बाहर निकले इस निहंग ने कृपाण से हमला कर दिया। देखिए, सफेद दाढ़ी और नीली पगड़ी पहने ये निहंग धीरे धीरे सुखबीर बादल की ओर बढ़ता है। अचानक अपनी कमर से कृपाण निकालता है और सुखबीर बादल पर हमला कर देता है। तुरंत ही सुखबीर बादल के सुरक्षा गार्ड इसे पकड़ते हैं। इस हमले में सुखबीर बादल के हाथ में चोट आई, उनका सुरक्षा कर्मी भी घायल हुआ। तुरंत ही सुखबीर बादल को यशोसाई अस्पताल में भर्ती किया गया। अब वो खतरे से बाहर है। अब ये तस्वीर देखिए, जिस शख्स की पग बांधी जा रही है इसका नाम जसपाल सिंह है। इसी ने सुखबीर बादल पर हमला किया है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब शिरोमणि अकाली दल कह रहा है कि इस हमले के पीछे गहरी साजिश है।
3: लगातार पंथक आगुआ निशाना बनाया जा रहा है। कोजिया साजिशा षड्यंत्र कुछ पंथ विरोधी ताकत ने जड़िया रच रिया ने। सरदार सुखबीर सिंह बादल तो इस तो पहला भी जो दरबार साहब दे विच अकाल तख्त साहब दे आदेश ते सेवा निभा रहे सी उदों भी एक हमला उन्हां दे उत्ते होया।
2: सवाल ये है कि सुखबीर बादल पर हमला क्यों किया गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि सुखबीर बादल पर 2024 में गोल्डन टेम्पल में भी हमला हुआ था, तब उन पर फायरिंग की गई थी। सवाल वही है कि सुखबीर बादल पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ अभिजीत करांडे, नांदेड़, आज तक।
1: अब बात पंजाब के पटियाला से आई चौंकाने वाली तस्वीर की, जहां एक पिटबुल ने पति पत्नी पर हमला कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
0: पति पत्नी पर पिटबुल के इस हमले की तस्वीरों ने एक बार फिर पालतू कुत्तों को लेकर जारी बहस को गर्म कर दिया है। पटियाला में एक घर देखने पहुंचे दंपति के साथ आए डीलर ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला पिटबुल ने हमला कर दिया। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहे लेकिन पिटबुल नहीं हटा। घर के अंदर से एक महिला भी आई, आस पड़ोस के लोग भी बचाने आए लेकिन पिटबुल का हमला जारी रहा। बड़ी मुश्किल के बाद किसी तरह से पिटबुल को वहां से हटाया गया।
4: वो हमला इतना खतरनाक थी कि मेरी वाइफ की जान भी जा सकती थी। ठीक है जी, अपनी वाइफ को बचाते बचाते मैं मोरे आया क्योंकि वो उसी देख रहे हो कि पूरी उसने बाजू तक खाई लेती थी ते वाइफ वो गर्दन फड़न की कोशिश है जी।
0: अंकित सबरवाल एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं, जबकि उनकी पत्नी शेफाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। एक डीलर के कहने पर वो ये कोठी देखने गए थे जहां कुत्ते को लेकर कोई वार्निंग नहीं लिखी थी। हमला इतना भयानक था कि शेफाली को प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी है। वहीं पति को भी पिटबुल ने गंभीर तरीके से काटा है।
4: तो मेरी वाइफ वाले भी मतलब इतना बुरी तरह जख्मी है जी, ऑपरेट हो चुके हैं दोनों बाजू तो प्रॉपर ऑपरेट हो चुके हैं, दूसरी बाजू भी बुरी तरह जख्मी है जी।
0: पुलिस ने मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं पिटबुल के लाइसेंस को लेकर जांच की जा रही है।
5: ये उन्होंने अननोन बंदे का नाम लिखाया, उन्होंने पता नहीं है कुत्ता किहदा, पर वह कहना ने यह लिखाया भी जिस घर के विचों निकलिया सीगा जिहड़े घूमन नगर दे विच आ, उन्होंने उही हाउस नंबर लिखाया।
6: जिहड़ा ड्यू एक्शन है ओनर ते भी लिता जाऊगा। बाकी जिहड़ी इहदी रजिस्ट्रेशन का काम है साडा हेल्थ विंग जिहड़ा हैगा वह रेगुलरली कर भी रहा है ते इस तो बाद भी आफ्टर दिस इंसीडेंट वी आर गोइंग टू बी इवन मोर विजिलेंट।
0: बहरहाल हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो खौफनाक हैं और कई सवाल खड़े करती हैं। मुनीश कौशल, पटियाला, आज तक।
1: अब बात दिल्ली में बदहाल व्यवस्था की, जिसके चलते दो बच्चों की जान चली गई। दरअसल दिल्ली के बवाना इलाके में डीडीए ने फ्लैट बनाने के लिए कई गड्ढे खुदवाए मगर समय पर इन गड्ढों को पाटा नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि इनमें पानी भर गया और इसी पानी में डूबकर दो बच्चों की जान चली गई।

0: देश की राजधानी दिल्ली में दो मासूमों को सिस्टम ने मार डाला। जी हाँ, इसे हादसा कह देना आसान है, मगर ये हादसा नहीं, अनदेखी, लापरवाही और सिस्टम की बदहाली की बदौलत मौत का आमंत्रण है। निर्जीव होकर जमीन पर पड़े ये दो मासूम बच्चे दिल्ली के बवाना इलाके में खेल रहे थे। यहाँ पानी भरा हुआ था, ये पानी में खेलने गए और डूब गए।
1: मैंने गाड़ी से रस्सी लेके आई निकालने के, फिर मेरे समझ में नहीं आया तो मैंने एक छोटे भाई को मैंने बुलाया पार्किंग से, तो वो बंदे आए, फिर दो तीन बंदे आए, तो इसमें रस्सी पर बांधे और उसके बाद कूदे, तब निकाले गया सर।
0: जानते हैं बच्चों की मौत क्यों हुई? क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इस इलाके में फ्लैट बना रही है। फ्लैट बनाने के लिए यहाँ कई जगहों पर करीब 15-15 फीट के गड्ढे किए गए थे, मगर समय पर गड्ढों को पाटा नहीं गया था। नतीजा ये हुआ कि बारिश हुई और ये गड्ढे कुएं में तब्दील हो गए। बाहर से देखने में लगता है कि ये पानी समतल जमीन पर है, यही बच्चों ने भी सोचा और खेलने गए और इस गड्ढे में धंसते चले गए।
2: बारिश का पानी है, गड्ढा हो गया हुआ सर, एक गड्ढा ऐसे आगे भी है, मेरे को अभी पता लगा, पहले पता नहीं था, अभी पता लगा एक गड्ढा इससे भी बड़ा है जो आगे है, वो भी ऐसे छूटा हुआ, उसमें भी पानी भरा।
0: कुछ रोज पहले समयपुर बादली में भी ऐसे ही गड्ढे में डूबकर एक बच्चे की जान चली गई थी। मतलब सिस्टम में बैठे लोग क्या इतने बदहवास हैं कि उन्हें इन बच्चों के शव नहीं दिखते? क्या वो इतने लापरवाह हैं कि इन बच्चों के परिवारों की चीखें उन तक नहीं पहुंचती? माफ कीजिएगा, मगर यह हादसा नहीं, हत्या है। राजेश खत्री, दिल्ली आज तक।
3: अब बात बाजार की, आपको बताते हैं कि क्या रहा आज बाजार का हाल और सोने चांदी की कीमतों पर क्या रहा असर।
0: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 78,080 जबकि निफ्टी 40 अंक की गिरावट के साथ 24,396 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितता के चलते निवेशकों में सतर्कता बनी रही। हालांकि कारोबार के आखिरी दौर में खरीदारी से सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार के मिले जुले रुख के बीच रुपए में कमजोरी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे कमजोर होकर 95.45 के स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते रुपए पर दबाव रहा। विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भी रुपए की धारणा को कमजोर किया। वहीं सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा और सोना 972 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 152,447 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 3,414 रुपए टूटकर 233,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। लगातार ऊंचे स्तर पर कारोबार के बाद सोने और चांदी में मुनाफा वसूली और वैश्विक बुलियन कीमतों में नरमी का असर देखने को मिला। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात दिल्ली में पिछले साल हुए ब्लास्ट की, जिसे लेकर यूएन ने बड़ा खुलासा किया है। यूएन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में ब्लास्ट के पीछे अलकायदा का हाथ था।
0: दिल्ली में लाल किले के पास हुए इन धमाकों के पीछे अलकायदा का हाथ था। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की सबसे ताजा रिपोर्ट ने पहली बार आधिकारिक मुहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 38वीं मॉनिटरिंग रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारत में एक नया और बेहद खौफनाक जाल बुन रहा है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा अब अपने बड़े दस्तों के बजाय छोटे, बिखरे हुए और छिपे हुए स्लीपर सेल्स के जरिए हमला कर रहा है, ताकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बचा जा सके। इतना ही नहीं, संगठन ने अपना एक अलग लॉजिस्टिक्स और सीक्रेट फंडिंग नेटवर्क भी खड़ा कर लिया है। अब यह संगठन भारत के बाद बांग्लादेश में अपने नए ठिकाने बनाने की फिराक में है, ताकि पूरे दक्षिण एशिया को आग में झोंका जा सके।
4: काबुल से उसने 10 परिचय पत्र भी निर्गत किए हैं, जिसमें अंसार गजवातुल हिंद के परिचय पत्र के माध्यम से उनको क्रियाशील किया है। आपको याद होगा डॉक्टर उमर अल नबी, जो मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर थे अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में, वो इसके रिंग लीडर थे।
0: इस रिपोर्ट का सबसे डरावना और चौंकाने वाला पहलू कुछ और ही है। अब तक जो आतंकी बंदूकों और बारूद के दम पर तबाही मचाते थे, वो अब एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आतंकी संगठन अब बम बनाने, निशाना साधने और कोड्स क्रैक करने के लिए चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का सहारा ले रहे हैं। SIL जैसे खूंखार संगठन अपनी प्रचार सामग्री में बोटुलिनम टॉक्सिन और साइनाइड जैसे कातिलाना केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार तैयार करने के तरीके छाप रहे हैं।
5: इस बम धमाके में 20 लोग घायल हुए थे, 11 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस रिपोर्ट में अलकायदा को जिम्मेदार बताते हुए बताया गया है कि
3: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: बिजली का बिल
6: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
7: कैसे?
6: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
7: पे।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
9: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से
3: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का
4: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे
3: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है वाटर कैनन खत्म हो गए फायर टेंडर खत्म हो गए
5: प्रोटेस्टर हैं देखिए उनको कैसे चोट लगी है
6: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है
7: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
8: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है
3: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। I wake up wearing someone else again.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: बिजली का बिल पेड,
6: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
7: कैसे?
6: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
7: इतना माही वे।

0: उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। कभी कब्र बेचने का आरोप तो कभी वक्फ की संपत्तियों के सौदे का आरोप। यूपी के कई मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड की धांधलियों के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने सीएम योगी से मुलाकात की और वक्फ में हो रही धांधलियों की जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश में दो शिया और सुन्नी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ की गई संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं, लेकिन अब ये वक्फ बोर्ड ही सवालों के घेरे में है। ये वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी हैं, दावा कर रहे हैं कि यूपी का वक्फ बोर्ड घोटाला 1,000 करोड़ से भी अधिक का है। वसीम रिजवी दावा करते हैं कि उनके पास घोटालों के सबूत हैं। रिजवी कहते हैं कि लखनऊ से प्रयागराज, मेरठ तक हर जगह वक्फ की संपत्तियों को या तो बेचा गया या फिर उन्हें वक्फ के रिकॉर्ड से हटाकर मौलानाओं ने अपने नाम कर लिया। हाल ही में लखनऊ के इमाम बाड़े में कब्र बेचने का भी मामला आया था।
1: वक्फ सज्जादिया है आलमनगर में, लखनऊ की अभी हम बात कर रहे हैं। लीज जो सीलिंग प्रॉपर्टी होती है, सीलिंग की सरकारी संपत्ति को वक्फ दर्ज करके 1500 क्वार्टर बना दिए गए। हर क्वार्टर से 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया एक बड़े मौलाना साहब वसूल कर रहे हैं, उसका भी सारा रिकॉर्ड है।
2: कौन है मौलाना साहब ये जो वसूल कर रहे हैं?
1: मतलब लखनऊ के एक बड़े मौलाना है, मौलाना कल्बे जव्वार साहब, जो हमेशा वक्फ बोर्ड पर काबिज रहना चाहते हैं।
0: वसीम रिजवी की तरह ही बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भी सबूतों के साथ वक्फ बोर्ड में घोटाले का दावा करते हैं। रजवी ने दावा किया अकेले बरेली में 320 करोड़ का वक्फ घोटाला हुआ है। यूपी के दोनों वक्फ बोर्डों पर आरोप गंभीर है। मुसलमान अपनी संपत्ति इसलिए वक्फ करता है ताकि उसका इस्तेमाल जरूरतमंद मुसलमानों के लिए किया जा सके, लेकिन यूपी में तो अलग ही खेल चल रहा है। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी से मांग की कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच हो, हर जिले में एसआईटी गठित करके ऑडिट कराया जाए। उन्होंने दावा किया कि 70,000 से अधिक संपत्तियां गायब हैं। पिछली सरकारों में ठीक से ऑडिट नहीं हुआ, जिन लोगों ने वक्फ संपत्तियों में धांधली में उनसे वसूली की जाए। साथ ही मांग ये भी की गई है कि घोटाला करने वाले मौलानाओं का नाम सार्वजनिक हो। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अब वक्फ बोर्ड का मामला भी गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मामले पर बीजेपी को घेर रही थी, लेकिन वक्फ बोर्ड पर धांधली के आरोपों ने बीजेपी को पलटवार का मौका दे दिया। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एलएसी को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार से संगीन सवाल, कहा चीन के कदम गंभीर, पीएम से बयान की मांग। सरकार के साथ संघ पर भी राहुल का हमला, कहा छात्रों की बात नहीं सुन रहा केंद्र, आरएसएस पर भी लगाए संगीन आरोप। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म हुआ मॉनसून सत्र, सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे पर लगाए आरोप, स्पीकर की टीम मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। नांदेड़ में सुखबीर बादल पर हमला, प्रधानमंत्री मोदी ने ली सेहत की जानकारी, सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश। बोस पर बयान को लेकर बीजेपी का एक्शन, अपने सांसद से छीना बंग विभूषण सम्मान, ममता सरकार ने दिया था अवार्ड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूँ मारिया शकील। आज विशेष में बात करेंगे जेन जी वोटर्स की, जिन पर अचानक से फोकस बढ़ गया है। अचानक से ऐसा लग रहा है कि जेन जी इस देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ गया है, और ये सब हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के जेन जी प्रोटेस्ट से। इस देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर की याद आ गई है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं का वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है, और क्या जेन जी वोटर्स सरकारों को गिराने और बनाने का दमखम भी रखते हैं। इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है।
3: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी है। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेन जी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
4: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस समझ में आ गया है कि आखिर जेन जी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेन जी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना

0: प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल ये जानते हैं कि जेंजी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेंजी चौपाल, जेंजी तिरंगा यात्रा और जेंजी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
1: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेंजी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेंजी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेंजी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेंजी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेंजी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेंजी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेंजी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही हैं। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेंजी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेंजी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेंजी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
2: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
0: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेंजी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेंजीज को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है, ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेंजी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेंजी को उनका हक मिलता है।
1: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेंजी हैं। पूरे देश में कुल 4,131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेंजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेंजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेंजी विधायक तमिलनाडु में है, 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेंजी विधायक हैं, 3 बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2 जेंजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा, लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से

0: जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टी अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगे। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: यूपी चुनाव में जेंजी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी बड़ा टेस्ट है और इनकी ये परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है, इसलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में जेंजी किसका साथ देता है।
2: के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
0: तो यूपी चुनावों के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, निर्देश सीधे ऊपर से। ये कल की ही तस्वीरें, यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपालें लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा वार 10-10 युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
3: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद?
4: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
0: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनावों में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं।
5: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
0: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग IAS और PCS की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। IIT की तैयारी करने वालों को IITian अफसर पढ़ाएंगे। बैंक PO की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
2: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का DM भी 1 घंटा देगा, SP 1 घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने UPSC क्लियर किया।
0: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, यहाँ भी जिताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
6: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो 3रा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा पे जिताऊ कैंडिडेट हो।
1: विशेष में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: यूपी के सियासी रण को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जहां एक तरफ संसद परिसर में सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान से मुलाकात की है। रामपुर की जेल में जाकर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आजम खान पर बहुत जुल्म हो रहा है।
2: इतने बड़े लीडर जमीन पर लिटाया जा रहा, जमीन पर लिटाया जा रहा, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं, इतने सीनियर लोगों को तो वो नहीं मिल रही। आज हम यहाँ पर इतना जुल्म हुआ है, इतना शोषण हुआ है यूनिवर्सिटी से लेकर के, तभी वो हिम्मत नहीं आ रही। इतना जुल्म होने के साथ साथ वो हिम्मत नहीं आ रही।
1: यही नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी का जिक्र कर शिवपाल सिंह ने साफ कर दिया कि सरकार बनने के बाद जिस अधिकारी ने गलत किया है उन्हें जेल भेजा जाएगा।
2: सरकार बदलने पर सरकार और चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी होगा अगर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी अगर यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी गलत काम करेगा तो उसे बड़ी से बड़ी सजा देने के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित उनको सजा दी जाएगी।
1: शिवपाल यादव से जब आजम खान के समाजवादी पार्टी के साथ रहने पर सवाल पूछा गया तब शिवपाल ने साफ कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी में थे और रहेंगे।
2: अब उन्होंने कहा है, हमसे यही कहा, हम समाजवादी पार्टी के थे और रहेंगे, कितना भी जुल्म हो कितना भी अत्याचार हो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ रहेंगे।
1: वहीं रामपुर की जनता को संबोधित करते हुए शिवपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी को जिताने और आजम खान को गृह मंत्री बनाने की वकालत की।
3: अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तब इनको सबको,
4: आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है साहब।
3: बिल्कुल, मैंने रक्षा मंत्री नहीं पहले गृह मंत्री।
1: तो साफ है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहती है। रामपुर से आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
5: आपको बता दें कि यूपी में खुद सीएम योगी ने पूरा फोकस युवाओं पर किया है। जी हाँ, सीएम योगी ने नई युवा नीति तैयार करने के लिए निर्देश दिया है कि यूपी के 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समझा जाए। लेकिन आकाश आनंद ने योगी सरकार पर भी करारा प्रहार किया। आकाश आनंद ने कहा कि पिछले 10 सालों में जनता के टैक्स के पैसे यानी 7,000 करोड़ रुपए से बीजेपी सरकार ने सिर्फ अपनी नाकामी छुपाई है। इतना ही नहीं, मायावती के भतीजे ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और योगी सरकार को एनकाउंटर की सरकार बताते हुए यूपी पुलिस को भी घेरा। आकाश आनंद ने महंगाई के मुद्दे पर भी योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक प्रहार किया। जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में युवाओं के बीच जो जो मुद्दे उछले उन्हें विपक्ष न सिर्फ पकड़ रहा है बल्कि सियासत का आधार उन्हीं को बना रहा है। और आज का सूरत हाल ये है कि विपक्ष हो या बीजेपी या फिर आरएसएस, हर किसी का फोकस जेन जी पर आ गया है। आज तक ब्यूरो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और आज हंगामे और गतिरोध के बीच खत्म हो गया। पूरे सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार इस कदर हावी रही कि कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा तक नहीं हो सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र के हंगामे में खत्म होने के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष कहता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
2: अपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
3: खुद ही प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो, अरे या हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मींस डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं।
1: कांग्रेस का आरोप है कि पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुनी। विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग करता रहा। FCRA बिल वापस लेने की मांग की गई, लेकिन जवाब देना तो दूर। विपक्ष कहता है कि गृह मंत्री अमित शाह सत्र के दौरान सदन तक में नहीं आए। वहीं सत्र के आखिरी दौर में सरकार ने विपक्ष को चर्चा का प्रस्ताव दिया था। अमित शाह ने कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष को लेक्चर नहीं, सीधा जवाब चाहिए। अब देखिए मानसून सत्र में संसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ एक मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब एक घंटे। वहीं राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हुआ। हैरान करने वाली बात, लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे काम नहीं हुआ। मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठक हुई, इस हिसाब से 19 बैठक में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन ये करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम काम हुआ है। वही मानसून सत्र में राज्यसभा में 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन लगभग 37 घंटे 24 मिनट ही काम हुआ, यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्यवाही हुई। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 2026 के मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। संसद का पूरा मानसून सत्र पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के इर्द गिर्द रहा है, लेकिन इस सियासी शोर में जनता के कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, जिससे जनता की कमाई के करोड़ों रुपए बह गए। इसीलिए हम कह रहे हैं, न बहस न चर्चा, करोड़ों का खर्चा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: विशेष में मेरे साथ आज इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
1: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स, प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दार संसद के बाद चीन को लेकर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, पेट्रोलिंग रोकने के लगाए आरोप, प्रधानमंत्री मोदी से बयान की मांग। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म हुआ मॉनसून सत्र, सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। कांग्रेस के कार्यक्रम में संघ सरकार पर राहुल का वार, छात्र आंदोलन से लेकर संसद सत्र तक पर उठाए सवाल, कहा कभी जरूरत हुई तो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आरएसएस की भी करूंगी रक्षा। झारखंड छात्र आंदोलन पर दिल्ली में सियासत, एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, रांची में 20 दिनों से जारी है स्टूडेंट्स का धरना। बोस पर बयान को लेकर बीजेपी का एक्शन, अपने सांसद छीनाबंग विभूषण सम्मान, ममता सरकार ने दिया था अवार्ड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। अब से 36 घंटे के बाद देश लाल किले पर तिरंगा फहरने के साथ भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ देश की स्वतंत्रता का जश्न मनेगा। लेकिन उस जश्न से पहले आई खबर सबको खबरदार करती है। आज देश में संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया और संसद की कार्यवाही पर बारीक नजर रखने वाली पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के डेटा के अनुसार आज खत्म हुए मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी यानी कामकाज की क्षमता पिछले 2 दशकों में सबसे कम रही। मतलब 2 दशक में यह पहला मॉनसून सत्र है जिसमें लोकसभा में केवल 15% कामकाज हो पाया। पीआरएस के डेटा के अनुसार 2004 के बाद से केवल 2 संसदीय सत्र में ही इससे कम कामकाज हुआ। इस बार लोकसभा 15% प्रोडक्टिविटी के साथ 2016 के शीतकालीन सत्र के बराबर है। ये केवल 2010 और 13 के शीतकालीन सत्रों से बेहतर है जब सदन ने अपने तय समय का केवल 5% और 8% ही कामकाज किया। संसद के इस कामकाज की पूरी समीक्षा से आपको आगे भी खबरदार हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासत के दो रंग दो ढंग से आपको हम खबरदार करते हैं। एक तरफ नई जेनरेशन की नई डिमांड है, दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए पुरानी सियासी रीत चली आ रही है। एक तरफ जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश के अलग अलग हिस्से में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन करके साफ पानी, साफ क्लासरूम, साफ टॉयलेट, स्कूल जाने के लिए सड़क, स्कूल में टीचर, ईमानदारी से भर्तियां मांग रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्ष से महिलाओं को पैसा बांटो और सत्ता हासिल करो वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाती सियासत है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में अगला चुनाव होना है, 6 महीने करीब बाकी हैं, तो क्या रेवड़ी फ्रीबीज के सहारे ही सत्ता आधी जाएगी? क्या पैसा बांटकर चुनाव जीतना ही सबसे सरल सबको लगता है? खबरदार करते इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश है, जहां आज दावा किया गया कि यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए वाली स्कीम ला सकती है। इसका जिक्र आते ही अखिलेश यादव पहले से जुमला बताते हैं लेकिन फिर खुद भी महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा करते हैं। आज इसीलिए खबरदार होना है, समझना है कि क्या जो जनता चाहती है वो दल देंगे या फिर पैसा बांट कर जीतने के फॉर्मूले पर ही चलेंगे।
1: इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर वाले दौर से कहीं आगे, जब बच्चों को गड्ढे वाली सड़क पर बच्चों दिखाओ चलकर वाली नौबत ला दी जाती है, तो आज तक ने दिखाया आपको कि बच्चे अब टूटी सड़क को अपनी नियति मानकर नहीं चलने वाले। तभी तो बुधवार को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में पेगलवाड़ी गोयरेवाड़ी रोड पर टूटी सड़क को बनवाने की मांग को लेकर आदित्य और स्मिता ने हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर एक इंटरव्यू किया।
2: अब ये इच्छा है कि आमचे रस्ते थोड़ा चांगले व्हाय पाहिजे, सगळे चांगले व्हाय पाहिजे, एवढी आमची इच्छा।
1: जो हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर प्रशासन को जगा सकते हैं उन तक आज तक भी पहुंचता है। हाथ में आज तक का माइक थमाया और पूछा, क्या हुआ जो आपको आवाज उठानी पड़ी?
2: स्कूल में जाते समय फाटे पे जाते जाते तो हमारा ड्रेस खराब हो जाता है, कभी कभी हम चिखल में गिर जाते हैं।
3: जो शूज या चप्पल पहनते उसका क्या हालत होता है?
2: वो तो जब चिखल में अटक जाए गई तो वो निकलते समय वो डायरेक्ट टूट जाती है।
3: और ये जो आपके साथी है
2: और हम गिर जाए तो स्कूल में स्कूल को डांडी मारनी पड़ती,
3: स्कूल जाते नहीं हो,
2: उधर से ही रिटर्न आना पड़ता है।
1: आदित्य और स्मिता ने एक वीडियो बनाकर बता दिया कि बच्चे अब देश में सत्ताधारियों से चाहते क्या है, जिसके बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर में उनके गांव की सड़क बनने लगती है।
4: मैं खड़ा हूँ अभी पेगलवाड़ी में जहाँ के 2 बच्चों ने पूरी सिस्टम यहाँ की हिला दी है। यहाँ कल रात में जो रास्ता बच्चों ने वीडियो में दिखाया था वो रास्ते पे कल रात को 1:30 बजे तक वहाँ मिट्टी और कंकड़ डाले गए और आज जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे यहाँ तब जाके रोड रोलर आया था। बच्चों ने कल से सिस्टम मिला तो कल से क्या यहाँ हैपनिंग हो रही है?
5: अभी बच्चों का जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से वो रास्ते का काम उस पे खड़ी वगैरह डाला है, उस पे रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी ये उन्होंने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता।
1: इस वक्त देश के बच्चे और युवा चाहते क्या है, क्या सरकारें सुन नहीं पा रही, क्या राजनीतिक दलों को अभी समझ में नहीं आ रहा कि नई जनरेशन नई डिमांड करती है। वो सड़क, स्कूल, टीचर, साफ पानी, साफ टॉयलेट चाहती है, लेकिन नई जनरेशन की नई डिमांड के बीच में सियासत सत्ता हासिल करने और सत्ता को बनाए रखने के पुराने ढर्रे, पुराने फॉर्मूले पर चलना चाहती है। जहां अखिलेश यादव पहले से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जीते तो महिलाओं को 40,000 रुपए साल भर में देंगे, तो अब उत्तर प्रदेश में खबर कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
6: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है, विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी विचार कर रही है।
1: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब महिलाओं के वोट को लेकर निश्चिंत योगी सरकार पहले से रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसा चुनाव से पहले बांटने वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल करने की रणनीति पर विचार होने लगा? क्या इसकी पहली वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थी? क्या दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 17 में से 12 सीटें यानी वो 70% सीटें जीती, जहां 2024 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी? क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह ये भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती है? 2007 में बीएसपी को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
7: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है, हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है? चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे पीडीए जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को।
8: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है, हो सकता है कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो एनसीआरबी के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे, उसको आपने बंद कर दिया। अभी आप कौन सी योजना लेकर के आए हो? सकता है चुनावी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है।
1: बीजेपी अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं।
9: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपये और मिलेगा, उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ₹500 महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें ₹1,000 हम देने जा रहे थे, उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे, पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500, अगर हिसाब लगाएं तो लगभग ₹3,000 बनते हैं, तो 12 महीने देना है 3,000 तो कितना हुआ ₹36,000, और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में ₹40,000 हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं।
0: दिसंबर में पिछले साल यानी 8 महीने पहले अखिलेश यादव ने आज तक के ही मंच पर इस बात पर जोर दिया कि बिहार का परिणाम महिलाओं को चुनाव से पहले ₹10,000 दिए जाने से बदला गया। क्या वाकई ऐसा संभव हुआ? हमने बिहार के चुनाव नतीजों का दोबारा अध्ययन किया जिसमें पता चलता है कि एनडीए सरकार ने बिहार की 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले ₹10,000 ट्रांसफर किए थे। इसके बाद जो नतीजा दिखा, बिहार में पहली बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जानकार इसकी वजह वही ₹10,000 वाली किश्त को मानते हैं। पुरुषों के मुकाबले बिहार में महिलाओं ने 10% ज्यादा वोट दिया। बिहार की करीब 130 सीट पर महिला वोट पुरुषों से ज्यादा रही। इसमें 114 सीट एनडीए ने जीते यानी 88%। एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर के बीच का अंतर उन जिलों में ज्यादा दिखा जहां महिला वोटरों की हिस्सेदारी ज्यादा मतलब 51% से 55% के बीच थी, और उन जगहों पर कम था जहां पुरुषों और महिलाओं की वोटिंग संख्या लगभग बराबर थी या पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा थी। जैसे कि जिन सीटों पर महिला वोटरों की हिस्सेदारी 51% से 55% थी वहां एनडीए और महागठबंधन के बीच का अंतर 11% से 15% के बीच का था, जबकि दूसरी सीटों पर यह अंतर 10% से कम था। मतलब जहां महिला वोटर ज्यादा वहां एनडीए ने वोट में भी लीड ली। महिलाओं को यूपी में ₹50,000 चार किश्त में देने पर बीजेपी में अगर विचार चलने का दावा है तो दावा यह भी है कि सीधे ₹50,000 न देकर उसे पहले से महिलाओं के लिए चलती योजना में जोड़ा जा सकता है। जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना जिसमें गरीब बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन तक अलग अलग चरणों में 15,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना ग्रेजुएट होने वाली मेधावी छात्राओं को सरकार की ओर से स्कूटी देने की योजना है। निराश्रित महिला सहायता योजना जिसमें पति की मृत्यु के बाद बेसहारा महिलाओं को जीवन यापन के लिए हर 3 महीने में 3,000 पेंशन दी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष जिसमें गंभीर हिंसा और एसिड अटैक की पीड़िताओं को इलाज और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जहां गरीब निराश्रित बेटियों और विधवा महिलाओं की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप और लखपति दीदी योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को लघु उद्योगों और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जंतर मंतर के आंदोलन से लेकर दूसरी जगह चलते प्रदर्शनों में जहां छात्राओं की भागीदारी ज्यादा दिखी है तो क्या इसीलिए भी दल सोचते हैं कि महिलाओं को कैश देकर चुनाव जीता जाए? नवंबर 2023 से अब तक 18 राज्यों में चुनाव हुए हैं। इनमें से 14 राज्यों में महिलाओं को पैसे देने वाली कैश स्कीम लागू की गई या वादा किया गया। इन 14 में से 10 राज्यों में योजना कारगर रही, स्ट्राइक रेट 71% रहा। 5 उदाहरण से समझते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले 6 किश्तों में 11,000 दिए, बीजेपी सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ₹7,500 खाते में पहुंचे, महायुति को 80% सीटें मिली। झारखंड में चुनाव से पहले राज्य की 48,00,000 महिलाओं के खाते में 4 किश्तों में ₹4,000 डाले गए, चौथी किश्त वोटिंग से एक रात पहले भेजी गई, सोरेन की सत्ता में वापसी हुई। बिहार चुनाव से एन पहले 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में ₹10,000 ट्रांसफर कर दिए गए, ऐतिहासिक जीत एनडीए को मिली। असम में महिला को सहायता राशि बढ़ाकर 3,000 करने का वादा किया और चुनाव से ठीक पहले सरकार ने अरुणोदय योजना के तहत लगभग 40,00,000 महिलाओं के खातों में डीबीटी के जरिए ₹9,000 की किश्त ट्रांसफर की। लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। यानी राजनीति में अगर पांच राज्यों के चुनाव में भी इलेक्शन से पहले महिलाओं को पैसा बांटने वाले फॉर्मूले पर हर दल चलते हैं तो ये माना जा सकता है कि जनता क्या चाहती है उसे देने की जगह राजनीतिक दलों को केवल जनता का पैसा जनता को बांटकर चुनाव जीतने का रास्ता सरल लगता है। उत्तराखंड में पीपल कोटी THDC प्रोजेक्ट में HCC की टनल धंसने की खबर आई है। ये खबर है कि कई लोग भीतर फंसे हो सकते हैं। अब तक 10 लोगों को निकाला जा चुका है, बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताजा जानकारी के अनुसार टनल में 20 से 25 लोग काम कर रहे थे, इनमें अब तक 10 को बाहर निकाल लिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल नैन इस समय जुड़ रहे हैं। कमल, किस समय की यह खबर है, कैसे हुआ हादसा, क्या अब तक हो पाया है?
10: जी, 5 से 6 बजे और 6:30 बजे के आसपास की यह घटना बताई जा रही है। लगभग जो सूचना बाहर आई वो लगभग 7 बजे के आसपास आई और उसके बाद से लगातार यहाँ पे राहत बचाव किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे पानी के साथ 6 से 7 मजदूर बाहर टनल से जो बाहर बह के आते हैं उस टाइप से आए और वो लोग सीधा बाहर को भागे और उसके बाद पूरी सूचना लोगों तक पहुंची है। अंदर लूज गिरा है, लूज के साथ बहुत ज्यादा पानी वहां पे आया है।
0: क्या मौसम की वजह से कमल?
10: नहीं, मौसम की वजह से जो टनल बनती है इसके अंदर लूज बहुत गिरता है, पहाड़ों में पानी बहुत होता है तो वही लूज गिरा है यहाँ पे और उसके साथ मलबे के साथ फिर पानी वहाँ पे आया है। वो पानी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे आया है तो उसके साथ 6 से 7 मजदूर बाहर की तरफ आए हैं, बाकी अंदर वहाँ पे जो लोग रह गए हैं, जो फंसे हैं उन्हें निकाला जा रहा है, वहाँ पे लगातार काम किया जा रहा है अभी।
0: तो ये जो 20 से 25 मजदूर बताए जा रहे हैं उनमें से 10 बाहर निकले हैं या 10 निकले हैं और 20 से 25 फंसे हो सकते हैं?
10: तो कल जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है 20 से 25 की जो सीट थी ये वहाँ पे टनल के अंदर थी, इसमें से 10 लोग अभी तक निकाले जा चुके हैं। इन्हें वहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद गोपेश्वर जिला अस्पताल भेजा जा रहा है, उनका इलाज वहाँ पे चल रहा है, बाकियों को निकालने का काम किया जा रहा है और उन्हें भी अस्पताल भेजा जा रहा है।
0: ये जो एरिया है इसकी अगर दूरी के हिसाब से सबसे करीब के जगहों को हम समझें तो कहां पर होगा चमोली में एग्जैक्टली कहां पर ये हादसा जो हुआ है और इस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की स्थिति है उसमें कौन सी एजेंसियां लगी हुई हैं कमल?
10: यहाँ पे SDRF और SDRF को भेज दिया गया है। पहले तो वहाँ पे जो लोकल पुलिस है और SDRF इनके द्वारा जो कंपनी के जो खुद ही मजदूर हैं वहाँ पे जो लोग हैं जो बाहर काम करते हैं टनल के बाहर उन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पे स्थानीय लोग जो हाट गांव के लोग हैं वो लोग यहाँ पे लगे थे और सभी यहाँ पे रेस्क्यू राहत बचाव कार्य और प्रशासन भी पहुंच चुका है। SDRF पुलिस तमाम चीजें वहाँ पे पहुंच चुकी है। CRPF यहाँ पे पहले से मौजूद रहती है तो वो लोग भी यहाँ पे राहत और बचाव में लगे हुए हैं।
0: कमल नैन सिरोही, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, लेकिन हम अपडेट इस पूरी खबर की लेते रहेंगे। बहुत कठिन, बहुत जटिल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बहुत संवेदनशील ये इलाका। अब देश की संसद की खबर आपको देते हैं जहां आज मॉनसून सत्र खत्म हो गया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट चली जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। लोकसभा में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी, लेकिन चिंता की बात यह है कि संसद के दोनों सदन औसत 29% ही चल सके जबकि हम सब जानते हैं कि परीक्षाओं में औसत पास होने का नंबर भी 33% होता है। यानी संसद चली जरूर लेकिन इतनी भी नहीं कि पास कही जा सके।
11: सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।
12: सदन की कार्रवाई 100 से ज्यादा स्थगित वाली आवाज दोनों सदन में मानसून सत्र के दौरान 19 बैठकों में सुनाई दी, जहां सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी मौजूद रहे। वंदे मातरम का गान हुआ और अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित।
11: सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।
12: जिन सदनों को 114 घंटे चलना चाहिए वहां लोकसभा 17 घंटे 30 मिनट ही चली, 96 घंटे 30 मिनट का वक्त बर्बाद हुआ। राज्यसभा 37 घंटे 24 मिनट चलती है 76 घंटे 36 मिनट कम कार्रवाई होती है।
13: खुद ही प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे यहाँ हाउस में बैठ के सुनो। वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम है, ये उनकी आदत है और ये इनका ईगो जनता तोड़ेगी।
14: लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%, राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीस ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा, कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं।
7: इस सेशन से मेरा आकलन है कि कहीं ना कहीं देश में मैसेज गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह इतनी अहंकारी सरकार है, ना उन्होंने कोई आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा माना जो देश की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ना उन्होंने युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे को कोई तवज्जो देने का कार्य किया।
15: मानसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया, और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ।
12: संसद में पहले दिन से आखिरी दिन तक प्रदर्शन की सियासत जारी रही, भीतर चर्चा हुई नहीं, बाहर हंगामा और प्रदर्शन पॉलिटिक्स चलती रही।
16: एक तरफ पीछे यहाँ पे सत्ता पक्ष के लोग सीढ़ियों पर बैठे हैं मकर द्वार पर, तो दूसरी तरफ जो नारेबाजी कर रहे हैं वो विपक्ष के लोग वहां पर पीछे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी भी बीच में खड़े हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो सत्ता पक्ष के एमपीज हैं और जो विपक्ष के एमपीज यहाँ पर पीछे जिस तरीके से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन दोनों ग्रुप्स के बीच में कहीं पर किसी तरीके की नोकझोंक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ है, गृह मंत्री अमित शाह कहाँ है, ये सारे नारे लगाते हुए यहाँ पर आपको विपक्षी सारे सांसद नजर आएंगे। दानपात्र यहाँ पर रखा हुआ है और बड़े बड़े नेता यहाँ पर खड़े हैं। महुआ मोइत्रा आपको नजर आ रही है, गौरव गोगोई नजर आ रहे हैं, इमरान मसूद नजर आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन
17: सेशन जिस तरह से वॉश आउट हुआ मैम पूरा, इस पर क्या कहेंगी मैम? मैम गृह मंत्री जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं, पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट?
18: राहुल गांधी इतने दिन से तंग कर रहे थे, हमारी बात सुने, हमें बोलने दें। जब माननीय अमित शाह जी ने ओपनली कहा कि मैं 24 घंटे बहस सुनने को तैयार हूँ और जवाब दूंगा, तो भाग क्यों गए? राहुल गांधी भगोड़े हैं, राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं।
19: हमने इस सत्र में देखा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी संपूर्ण रूप से सदन के कार्यवाही से परे थे और अनुपस्थित थे, और इसीलिए सदन से पीछे भागते हुए नजर आई इस बार भाजपा की नेतृत्व।
20: प्रश्न ही है कि लोकसभा चर्चा का विषय होता है, चर्चा का एक मंच होता है, अगर बिना चर्चा के बिना उनके उनको जवाब सुनने का कोई अर्थ नहीं है, और वो तो जवाब भी नहीं सुनना चाहते, वो तो कहीं और आगे पहुंच गए हैं, तो उनकी मर्जी से थोड़ी लोकसभा चलेगी। लोकसभा एक देश भर के प्रतिनिधियों का एक मंच है, किसी एक आदमी का मंच नहीं है।
0: कल भी हमने आपको बताया था कि संसद में प्रति सदन कार्यवाही की प्रति घंटे 75 लाख रुपए औसत खर्च होते हैं। इस हिसाब से अब अगर आज मानसून सत्र पूरा होने के बाद का हिसाब लगाएं तो लोकसभा में 72 करोड़ 37 लाख रुपए और राज्यसभा में हंगामे की वजह से इस पूरे सत्र में आंकड़े के अनुसार 57 करोड़ 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यानी 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आंकड़े के अनुसार संसद में हंगामे से सदन जो नहीं चल पाया है इससे 129 करोड़ 82 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अगर संसद रोज वक्त से चली होती, रोज सियासी हंगामे की जगह काम हुआ होता, तो ये 129 करोड़ 82 लाख रुपया जो जनता का है वो बर्बाद न जाता। और इस पैसे की कीमत समझनी है तो आज फिर हमारी रिसर्च टीम ने एक तुलनात्मक रिसर्च की है जिसे समझिएगा। चर्चा में आज यूपी भी है, तो यूपी की योजना से जोड़कर तुलना किया गया है। जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, इसके तहत बेटी के लिए परिवारों को 25,000 तक की आर्थिक मदद की जाती है। ये पैसा जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 चरणों में दिया जाता है। जितना पैसा संसद की कार्यवाही में हंगामे की वजह से बर्बाद हुआ है, इससे यूपी में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 51,928 लड़कियों को फायदा दिया जा सकता था। इसी तरह एक तुलना और है जो बताती है कि संसद में हंगामे की सियासत न होती तो 129,82,00,000 रुपया न बर्बाद होता, जिस पैसे से यूपी में बाल श्रमिक सुविधा योजना के तहत 1,08,000 लड़कों और 90,153 लड़कियों को साल भर हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 1,200 रुपए तक की आर्थिक मदद की जा सकती थी। संसद आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुई, उससे पहले एक नया विवाद उठा जिसका सिरा उत्तराखंड में है, जहां के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की। उसके बाद श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने उस जगह जहां पर खड़गे रैली करके आए उसे गंगा जल से धोया, यज्ञ किया और कहा वो शुद्धिकरण कर रहे हैं। आज राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे दलित का अपमान बताया। सदन में मंत्री जेपी नड्डा ने तुरंत इस घटना की निंदा की, शुद्धिकरण करने वालों के बीजेपी का होने से इनकार किया, पहचान के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया।
12: हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जहां यज्ञ हो रहा है, इसी जगह पर 8 अगस्त को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय शंखनाद रैली की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद यहां गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, यज्ञ किया जाने लगता है। ये करने वाले हिंदूवादी संगठन है जिन्होंने रामलीला मैदान का शुद्धिकरण अभियान चलाया। मैदान का हिंदूवादी संगठन के लोगों ने शुद्धिकरण किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया।
13: लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
12: खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके दलित होने का अपमान किया है, दलितों को अपमानित किया है।
13: This is the way in democracy. How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition.
12: लेकिन खड़गे के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने साफ कहा, ऐसा शुद्धिकरण करने वालों का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है।
3: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज।
12: नड्डा ने ये तक कहा है कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनकी पहचान की जाएगी और कार्रवाई होगी।
3: जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है।
12: कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस मसले पर आपत्ति जताई, माफी की मांग की।
21: ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है, इसका खंडन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।
12: समाजवादी पार्टी ने भी शुद्धिकरण के मसले पर बीजेपी पर सवाल उठाया।
22: तो इस तरह के कृत्य करके वो समाज के अंदर विघटन डाल के किसी तरह से चाहते राजनीतिक लाभ लेना, लेकिन हम इस मौके पे बीजेपी के लोगों से और उनके संगी साथी और नियत के लोगों से कहेंगे कि हम दलितों को, हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को जितना आप अपमानित करोगे, जितना आप जलील करोगे, हमारा संघर्ष का संकल्प उतना ही और मजबूत होता जाएगा।
12: दलित बनाम शुद्धिकरण के दावों वाली राजनीति में कांग्रेस अनुसूचित मोर्चे ने बुधवार को हल्द्वानी के इस पार्क में धरना देकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। शुद्धिकरण के नाम पर यज्ञ कराने वाली श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास से जुड़े हुए लोग हैं जो अलग अलग दावे शुद्धिकरण को लेकर करते हैं। पहले इनकी तरफ से कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पुराने सनातन विरोधी बयान के खिलाफ ये शुद्धिकरण कराया गया है।
2: हम लोगों का विरोध इसलिए था कि एक धार्मिक स्थल का जो है इस्तेमाल उन्होंने अपने राजनीतिक कारणों से किया, जैसे मैंने पहले भी अपनी बाइट में बताया है। उस मंच पे जो कि हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, उस मंच पे किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो भारत के अन्य कोनों में जाकर के हिंदू समाज की तुलना सांप से करता हो और यहाँ आकर के राजनीतिक मायनेट के लिए इस मंच का इस्तेमाल करता हो, ये हमारा विरोध का कारण है।
12: बाद में यही संगठन दावा करने लगा कि शुद्धिकरण का उद्देश्य किसी जातीय समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि रामलीला मैदान में जो सियासी रैली हुई इसमें धार्मिक भावना भड़काते नारे लगे थे और बाद में गंदगी फैलाई गई थी, इसलिए शुद्धिकरण किया गया।
2: इनके कार्यक्रम के बाद उस स्थान की शुचिता का भी ध्यान नहीं रखा गया है। शराब की बोतलें वहां पे मिली हैं, बॉटल्स में टॉयलेट वहां पे किया जो हमने अपने आप हटाया है, खुद वहां साफ कराया है। इन सारी विषयों को लेकर के शुद्धिकरण जो है वो यज्ञ किया गया।
12: बीजेपी इस पूरे विवाद में खुद को अलग करती है। सवाल है क्या जो संगठन ऐसा काम करते हैं उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई होगी या फिर केवल राजनीति चलती रहेगी।
0: संसद सत्र के दौरान याद करिए कई दिन बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ विपक्ष मिलकर अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर प्रदर्शन करता रहा। जहां कभी पप्पू यादव पुजारी के भेष में बैठे थे तो विवाद बढ़ गया था। विपक्ष के सांसद चढ़ावे की दान पेटी लेकर उसमें पैसा डलवाते थे और फिर नाटक के जरिए प्रदर्शन करते थे कि ये चढ़ावा को चुराया जा रहा है। इसमें मानसून सत्र के दौरान 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा हो गए। इसे आज समाजवादी पार्टी के सांसदों ने ले जाकर दिल्ली के कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में दान कर दिया।
4: 2,15,490 रुपए दान इकट्ठा हुआ था, जिसमें विपक्ष के सांसद और कुछ पत्रकार लोगों ने भी इसमें दान दिया था। उसको हम लोग प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पण करने आए और यहाँ पर उसकी रसीद कट पाएंगे। देखिए, वहाँ पर चंदा चोरी हुआ, हम लोग चाहते हैं जो प्रभु राम का पैसा था वो सेफ रहे और बजरंगबली से ज्यादा सुरक्षा कोई नहीं कर सकता उसकी।
5: प्रभु श्री राम के चरणों में प्रभु श्री हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी के चरणों में हम लोगों ने समर्पित कर दिया। अब हनुमान जी की गदा चलेगी प्रभु श्री राम के चंदा चोरों पर, क्योंकि मैं समझता हूँ प्रभु श्री राम की अवहेलना जिस किसी ने की है हनुमान जी ने उस पर गदा चलाए बिना नहीं छोड़ा है। और इन जो चंदा चोर हैं, जो चंदा के डकैत हैं, उन पर भी हनुमान जी की गदा चल के ही रहेगी।
23: तो आप लोग अयोध्या भी जाएंगे जो चंदा?
5: बिल्कुल जाएंगे, केदारेश्वर मंदिर के उद्घाटन के बाद हम सब लोग अयोध्या जरूर जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे और पूरा समाजवादी कार्यक्रम।
23: कितना चंदा इकट्ठा किया?
5: 2,15,490 रुपए, 2 चांदी की गिन्नी।
24: चंदा 2,15,400,
25: 2 चांदी के सिक्के
24: और 2 चांदी के सिक्के प्रभु हनुमान जी के चरणों में दे दिया, माथा टेका, वहाँ से आशीर्वाद मिला, प्रसाद मिला और प्रार्थना किया कि आप शक्तिशाली हैं, सारी दुनिया जानती है, ऐसा गदा चलाइए कि चोरों का और इस तरह लूट करने वालों का सफाया हो, हिंदुस्तान खुशहाल हो।
23: तो ये चंदा आपने दिल्ली में क्यों चढ़ाया, अयोध्या में आप ले जाते हैं?
24: हनुमान जी तो एक है और हनुमान जी और प्रभु श्री राम के बहुत प्यारे थे। बड़ा बड़ा काम प्रभु श्री राम का बड़ा बड़ा काम किया, लंका दहन किया, अन्याय अत्याचार का सफाया किया, लंका जलाया, तो इनसे बड़ा शक्तिशाली और प्रभु के बहुत प्यारे थे।
26: कितने का नहीं, एक प्रतीक के रूप में संसद भवन में एक दान पात्र रखा गया था। उस दान पात्र में रोजाना माननीय सांसदगणों ने और हमारे उसमें कुछ मीडिया के बंधुओं ने भी चंदा दान किया, तो चूंकि वो दान भगवान के नाम पे आया है इसलिए उसको ये हुआ कि दिल्ली पे कनॉट प्लेस में हनुमान जी का मंदिर है, यहीं पे उसको जमा कर दिया जाए, इसलिए केवल हम लोग आए हैं यहाँ।
0: आज तक लगातार युवाओं के हर मुद्दे पर खबरदार करता है। आज बात मध्य प्रदेश के उन नर्सिंग छात्रों की जिनका भविष्य सरकारी व्यवस्था की लापरवाही और विवादों के बीच फंस गया है। जिस उम्र में नर्सिंग की डिग्री लेकर नौकरी करनी चाहिए थी वो छात्र वर्षों से लटकी परीक्षा और रिजल्ट के बीच फंसे हैं। आज तक की मांग है कि इन छात्रों का रुका एग्जाम और लटका परिणाम दोनों तुरंत जारी होना चाहिए।
12: आज तक अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन ये दिखाना जरूरी है। जहां सिस्टम से हारे हुए छात्र रजिस्ट्रार का पुतला बनाकर टोने वाला प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं, ताकि कोई तो इनकी सुने, इनकी ओर देखे। पुतले के सामने आग जलाकर नींबू मिर्ची डालकर ये प्रदर्शन का एक तरीका है, कोई जादू टोने का नहीं। और ये करने वाले मध्य

0: वाले मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्र हैं, जो इन दिनों भोपाल के नर्सिंग काउंसिल के गेट पर धरना दे रहे हैं, क्योंकि जिस पेशे में किसी की जिंदगी बचाने के लिए हर सेकंड की कीमत होती है, उसी पेशे की पढ़ाई करने वाले हजारों छात्रों का वक्त सिस्टम की फाइलों में थम गया है। किसी का करियर रुका है, किसी की नौकरी, किसी की डिग्री फंसी है और किसी का सपना सालों से एक रिजल्ट के इंतजार में अटका हुआ है। भोपाल में नर्सिंग काउंसिल के बाहर छात्रों का आंदोलन 8 अगस्त से जारी। छात्रों की मांग है लटका कर रखे गए रिजल्ट जारी किए जाएं, परीक्षाएं कराई जाएं, डिग्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो, मान्यता से जुड़े विवाद का समाधान निकाला जाए। इसी के चलते छात्रों ने इस तरह का प्रदर्शन करना शुरू किया।
1: भोपाल में आज अनोखे तरीके का एक जादू टोना हो रहा है। ये जादू टोना दरअसल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सद्बुद्धि के लिए किया जा रहा है। मिर्ची, नींबू और आग के साथ पुतले बना करके नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार और जो लीगल एडवाइजर हैं, उनके पुतले बना करके, आप देखिए, नींबू और मिर्ची के साथ ये टोटका आज किया जा रहा है, ताकि सद्बुद्धि आए और जो लंबे समय से नर्सिंग छात्रों की मांग है नतीजे घोषित करने को लेकर, वो पूरी की जाए।
2: जो 3 साल का कोर्स है उसको आज 5 साल हो गए, फर्स्ट ईयर में सर, तो बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बहुत परेशान हो चुका है। तो सरकार से बच्चे यही चाह रहे हैं कि उनके एग्जाम कराए जाएं और रिजल्ट जारी किया जाए।
0: छात्रों का दावा है कि 2022 बैच के हजारों छात्र फर्स्ट ईयर तक की परीक्षा देने के बाद से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, यानी 3 साल का कोर्स पूरा करके अस्पताल में नर्सिंग की नौकरी करने की उम्र में पहुंच चुके छात्र अब भी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में अटके हुए हैं। भारी बारिश के बीच नर्सिंग छात्र बोरिया बिस्तर लेकर नर्सिंग काउंसिल के बाहर डट गए हैं। मुरैना के रहने वाले दिलकुश रावत ग्वालियर में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं। धरना स्थल पर पिछले कई दिन से रहकर मोबाइल से अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। पूछने पर बताते हैं कि पिता किसान है और कर्जा लेकर साल 2022 में इनका दाखिला नर्सिंग कॉलेज में करवाया, लेकिन साल 2023 में फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद से 2026 आ चुका है, लेकिन पिछले 4 साल से रिजल्ट ही नहीं आया।
3: रूम का रेंट जा रहा है, हम कंटिन्यूस 3 साल से डले हुए हैं, ना तो हमारे रिजल्ट की सुनवाई हो रही है, ना हमारी आगामी परीक्षा करवाई जा रही है, ना हमें स्कॉलरशिप से वंचित कर दिया जा रहा है। हमारे घर वाले बहुत परेशान हैं, मेरे पिताजी एक किसान हैं, ये तो हम ही बता सकते हैं कि हमें किस तरह से उन्होंने पढ़ाया, कर्जा ले लेके हमें पढ़ाया है।
0: बैतूल की रहने वाली राधिका भी उन हजारों छात्रों में से एक, जिनके परिवार ने बड़ी उम्मीदों से अपनी बेटी का दाखिला नर्सिंग कॉलेज में करवाया ताकि बेटी पढ़े, लोगों की जान बचाए, अस्पताल में नौकरी पाए, परिवार को संभाले। लेकिन एक मजदूर परिवार से आने वाली राधिका 4 साल से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही।
4: बहुत समस्या आ रही है, बहुत प्रॉब्लम। अब तक तो हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा 3 साल का कोर्स होता है। अभी तक देखो 2026 आ चुका है और अभी तक हमारे पेपर फर्स्ट ईयर का अभी रिजल्ट ही नहीं आया है सर, तो हम क्या माने, अभी तो हम फर्स्ट ईयर ही पढ़ रहे हैं सर।
0: इस पूरे विवाद की जड़ नर्सिंग कॉलेज की मान्यता और संबंधता से जुड़े कथित फर्जीवाड़े में है। ये समझने के लिए पहले हम आपको ग्वालियर ले चलते हैं। ये ग्वालियर का धाकरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसका संचालन महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और महाराणा प्रताप स्कूल ऑफ नर्सिंग की तरफ से किया जाता है। इसी अस्पताल को नर्सिंग कॉलेज से जुड़ा अस्पताल बताया गया, लेकिन जब आज तक संवाददाता यहां पहुंचे, अस्पताल के गेट पर ताला लटका मिला। ताला इस बात की गवाही देता है कि मानो बहुत लंबे वक्त से दरवाजे ही अस्पताल के ना खुले, ना यहां कोई पढ़ता दिखता है, ना कोई पढ़ाता, ना सीखता और ना ही सिखाता। तो फिर क्या फर्जी नर्सिंग कॉलेज खड़ा है? कैमरे से अंदर झांक कर देखा तो अस्पताल के अंदर सन्नाटा है, वार्ड खाली, मरीज नजर नहीं आए। दीवारों पर ओपीडी सूचना और दूसरे बोर्ड जरूर दिखे, लेकिन इस अस्पताल में नियमित गतिविधियां नहीं दिखाई देती।
5: हमारे द्वारा स्वयं का 100-बेडेड हॉस्पिटल बनाया गया, जो कि एक ही कैंपस में है और संचालित भी किया गया। कोविड में वहाँ पे कोविड सेंटर भी डेवलप रहा, उसका भी पूर्ण उपयोग जनता को भी प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अभी रिसेंटली इस वर्ष के लिए प्रारंभ हुई है प्रोसीजर, और इससे हम लोग भी अपने उसी तैयारियों में लगे हुए हैं कि आगे भविष्य में सुचारू रूप से ये संचालित हो सके। अगर ये सरकार द्वारा शीघ्र इसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है तो उसका बेनिफिट लोग बच्चों को भी मिलेगा।
0: 5-5 साल से कॉलेज बंद है, लेकिन खबर केवल

0: इतनी नहीं। साल 2020-21 के दौरान कई नर्सिंग कॉलेज को बिना पर्याप्त भौतिक सत्यापन के मान्यता और संबद्धता मध्य प्रदेश में दे दी गई थी। जांच में कई कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की कमी मिली। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और इसके बाद सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच में पूरी तरह सही पाए गए 156 कॉलेज और कमियां सुधारने वाले 89 कॉलेज समेत 245 कॉलेज को उपयुक्त माना गया। इन कॉलेज के छात्रों को परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति मिली। वहीं अनुपयुक्त पाए गए कॉलेज पर कार्रवाई और परीक्षा रिजल्ट को लेकर न्यायिक प्रतिबंधों के चलते विवाद अब भी छात्रों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। साल 2024 में हाईकोर्ट ने उपयुक्त कॉलेजों को रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद वो कॉलेज भी रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। भोपाल में जब वर्षों से इंतजार करने के बाद छात्रों को कोई जवाब न सरकार से मिला न स्वास्थ्य विभाग से, तो आंदोलन बढ़ गया। 3 छात्र 6 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग पर चढ़ गए। नीचे पुलिस और प्रशासन, ऊपर जिंदगी जोखिम में डालकर अपने भविष्य की गुहार लगाते छात्र, जिन्हें काफी समझाने के बाद नीचे उतारा गया। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से आज तक ने सवाल किया। मंत्री कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, जल्द ही कोर्ट रिजल्ट को लेकर फैसला करेगा।
1: उच्च न्यायालय में वो सुनवाई है और जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा।
2: और छात्रवृत्ति की भी मांग कर रहे हैं वो, कि लगातार जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं।
1: नहीं, उनका सब समाधान हो जा रहा है, हो रहा है।
2: कल बिल्डिंग पे भी चढ़ गए सर, वो लोग मांग की
1: वो रिजल्ट घोषित करने के लिए उनकी मांग है। और सरकार पूरा प्रयास कर रही है, अपना पक्ष प्रस्तुत कर रही है कि हाई कोर्ट से जो रोक लगी है वो हट जाए।
0: कोर्ट के नाम पर क्या जिम्मेदारी सरकार टाल सकती है, क्योंकि हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। करियर पर ब्रेक लगा हुआ है और नौकरी का रास्ता बंद है। उम्र और समय बीतता जा रहा है और हाथ में अब तक डिग्री नहीं, इसलिए इन छात्रों के साथ सरकार को तुरंत मिलकर बात करके फैसला लेने की जरूरत है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
3: नौकरी देने का काम कितना लटकाया जाता है, इसे अब राजस्थान के अलवर में देखिए, जहां 7 साल से सफाई कर्मचारी नियुक्ति पत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल सरकार के वन मंत्री को ही धरना देना पड़ा तो प्रशासन ने 5 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। अब कर्मचारी अल्टीमेटम दे रहे हैं।
4: मैं इस समय अलवर नगर निगम में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं सफाई कर्मी लगातार 7 सालों से नियुक्ति पत्र पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले। धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार उनकी जब मांग ऊपर उठी और प्रदर्शन हुआ तो यहां मंत्री पहुंचे और 5 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए, लेकिन और कर्मचारी आज भी नियुक्ति पत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं।
5: न्यायालय के आदेश की पालना में जब राज्य सरकार ने नियुक्तियों के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए तो बिना किसी कारण के सिर्फ आयुक्त महोदय सिर्फ अपने कार्य के उस चूर होकर उन्होंने इस वाल्मीकि समाज को अधिकार देने के लिए पिछले 7-7.5 महीने से कोई कार्य नहीं किया। फिर ये वाल्मीकि समाज तो दलितों में दलित और पिछड़े दलित लोग हैं, इन पर तो ध्यान दिया ही नहीं उन्होंने। इसके साथ साथ उन्होंने राज्य सरकार के आदेशों की भी हवा निकाल दी। माननीय मंत्री महोदय को भी कई बार बोलना पड़ा, उसके बाद उनके आदेशों की भी उन्होंने अवमानना कर दी।
6: सबसे बड़ी बात तो एक है कि आज 14 साल से इन्होंने घुमा रखा था और 14 साल से घुमाने के बाद में कल जब विधायक महोदय यहाँ पर आए, 5 आदमियों के नियुक्ति पत्र देके गए। 16 तारीख को गृह मंत्री जी आ रहे हैं अलवर के अंदर, बाकी 324 पत्र बचते हैं, इनकी जल्द से जल्द कार्रवाई करके 16 तारीख को दिलवाने की।
7: जिन्होंने कलेक्टर की नहीं मानी, जिन्होंने डीएल पे डायरेक्टर की नहीं मानी, जिन्होंने रवि जैन साहब की नहीं मानी, ऐसे अधिकारी को बैठने से क्या
8: था? उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए,
7: उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमको नियुक्ति मिलनी चाहिए। और आने वाले समय में जब माननीय मंत्री महोदय कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री जी अमित शाह जी, तो वहाँ हम सबको नियुक्ति मिलनी चाहिए। अगर वो नियुक्ति
6: 16 तारीख को
7: नियुक्ति नहीं मिलती तो अलवर शहर में हम जाम लगाएंगे, अलवर से घेराव करेंगे, विरोध करेंगे।
9: बड़े विडंबना की बात है कि इस शहर को हम साफ रखते हैं, मगर आज हमें समझने वाला इस शहर में कोई नहीं है। एक मंत्री जी ने कल हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया, बहुत बड़ा साथ दिया मंत्री जी ने, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये भ्रष्ट जो कमिश्नर है इसके प्रति हमें बहुत तगड़ा आक्रोश है, या तो हमारा 16 तारीख को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दे सबको, अन्यथा हम पूरे शहर की सफाई व्यवस्था बंद कर देंगे।
10: कल इन्होंने जिस तरह का व्यवहार सफाई कर्मियों के साथ, एक तरह से पल्ला सा ही झाड़ लिया और ये यहाँ से निकल गए। भर्ती को लेकर के 3 दिन पहले मैंने हमारे जो ACS है अखिल अरोड़ा जी, उनसे बात करी और DLB का जो अंतिम पत्र जो इन सफाई कर्मियों के पक्ष में आया है वो लेटर भी मैंने उनके व्हाट्सएप पे डाला और उन्होंने मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कहा कि जो भी निर्णय होगा सारगर्भित होगा, सफाई कर्मियों के हित में होगा। राज्य सरकार की मंशा है इनको नियुक्ति देने की, सरकार 2024 से लगातार चाह रही है कि नियुक्ति हो। अब कलेक्टर और आयुक्त क्यों नहीं दे रही है, इनसे पूछा जाना चाहिए।
4: अपनी ही सरकार के खिलाफ या धरने पर बैठने के बाद अब ये चर्चा तेज हो चुकी है कि राजस्थान में आखिर किसकी चल रही है। आज तक के लिए ग्राउंड जीरो से मैं हिमांशु शर्मा।
3: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
4: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
5: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
4: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
5: सुपर स्ट्रॉन्ग
4: और मॉइस्चर प्रूफ।
5: वारंटी
4: 15 साल की।
5: कदम
4: सर प्लीज
5: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
6: क्रॉसबॉन्ड HDMR मैक्स, फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
7: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: EU
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: Oh no, बहुत बोर लग रहा है।
11: Take a date, not bites.
12: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
13: बिजली का बिल
14: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
15: कैसे?
14: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
15: इतना माही वे।
16: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
17: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
18: पापा।
19: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
20: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
19: छक्का?
20: सब कैशलेस हो गया है।
19: हाँ
20: ओले, ला भाई मेरा बैट।
19: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
20: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
19: ओले, बैट किसका है?
21: टाटा AIG है तो भरोसा है।
22: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
23: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
24: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
25: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
26: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
27: आगे आगे।
28: अरे उधर
27: उधर गया।
28: करेक्ट करेक्ट।
29: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: आगे आगे
1: उधर
0: उधर गया।
1: करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आखिर कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में ऐसा क्या हुआ जिस पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई है। राहुल गांधी के मंच से मेलानिया पर की टिप्पणी पर बवाल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर निशाना साध रहे थे राहुल गांधी, कह रहे थे विदेशी नेताओं को गले लगाना ही इनकी विदेश नीति है। इस दौरान मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर जो कहा उस पर अब बवाल मचा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है तब पाकिस्तानी आतंकी देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस बार ISI, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और खालिस्तानी नेटवर्क एक साथ मिलकर भारत पर बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं और 15 अगस्त अब सिर पर है। कितना बड़ा ये चैलेंज है आज आपको बताएंगे कि कैसे ये आतंकी पूरी तरह बेनकाब हो रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि जिस रशिया से भारत अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा कच्चा तेल मंगा रहा है वही रशिया अब भारत से पेट्रोल, रिफाइंड पेट्रोल क्यों खरीद रहा है। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है और ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों की वजह से रशिया की रिफाइनरीज में ईंधन का भारी संकट पैदा हो गया है जिसके बाद रशिया को भारत से पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। और आखिर में आपको पंजाब के पटियाला से दिल दहला देने वाली तस्वीर दिखाएंगे जहां एक पिटबुल डॉग ने पति पत्नी पर अचानक ये हमला किया और इस खौफनाक घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बचाने के लिए आसपास के लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर क्यों भड़की हुई है। बीजेपी नेता बासी स्वराज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, वो नेता प्रतिपक्ष की गरिमा के खिलाफ है। ये सोशल मीडिया रील्स के लिए की गई सस्ती बयानबाजी करार दे रही है बासी स्वराज, सांसद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से। पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी सांसद बासी स्वराज आखिर क्या कह रही है।
1: जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है उससे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इनवेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56 ईयर ओल्ड मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब बयानबाजी केवल सोशल मीडिया के मीम्स और रील वैल्यू के लिए करते हैं।
0: दरअसल ये पूरा विवाद कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़ा है। तो आखिर सुषमा स्वराज हो या भारतीय जनता पार्टी, वो राहुल गांधी पर इतने उखड़े हुए क्यों हैं? यहां राहुल गांधी रचनात्मक कांग्रेस के सम्मेलन में बोल रहे थे, ये सम्मेलन का नाम है, और वो प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर निशाना साध रहे थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये बवाल खड़ा हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। क्योंकि इस दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने, माफ कीजिएगा शायद मैंने गलती से पहले सुषमा स्वराज जी बोल दिया था, दिल्ली बीजेपी की सांसद बासी स्वराज आखिर क्यों भड़की हुई है उनकी बात हमने आपको सुनाई। और अब आइए आपको दिखाते हैं, दरअसल राहुल गांधी ने विदेश नीति पर टिप्पणी करते हुए अपनी बात कही जिसके बाद संदीप दीक्षित, उन्होंने प्रधानमंत्री इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर जो कहा उस पर बीजेपी हमलावर है, बवाल मच गया है। देखिए क्या हुआ।
2: इनके इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
3: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
2: आई हैव नॉट रीच देयर येट, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: आगे बढ़ते हैं, आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तानी आतंकी इस जश्न को मातम में बदलने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन देश में किसी तरह की अनहोनी ना हो इसके लिए हमारी खुफिया एजेंसियां पिछले कई महीनों से इन आतंकी हमलों से जुड़ी जो भी खुफिया जानकारी है उसको डिकोड करने में लग गई हैं, क्योंकि ऐसी आशंका है कि एक बहुत बड़ी साजिश 15 अगस्त के लिए रची जा रही है। इस दौरान उन्हें पता चला है कि इस बार आतंकी संगठनों ने भारत के कई शहरों में हमले की प्लानिंग बनाई है। इस इनपुट के बाद से देशभर की सुरक्षा एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन सबसे संवेदनशील हो सकते हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार पाकिस्तान के आतंकी संगठन एक साथ मिलकर भारत पर कई हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने अभी तक जिन जानकारियों को डिकोड किया है उसके मुताबिक 15 अगस्त को दहलाने के लिए ISI, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ISIL और खालिस्तानी टेरर नेटवर्क मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसमें कुछ खास आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें पहला नाम है फरहतुल्ला गौरी, जो साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। दूसरा नाम है तलहा सईद, जो लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेटा है। माना जा रहा है कि इन आतंकी संगठनों को भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले का जिम्मा दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन आतंकी संगठनों ने हमले की प्लानिंग जल्दबाजी में नहीं बनाई है, बल्कि ये प्लानिंग पिछले कई महीनों से चल रही थी। पाकिस्तान में मौजूद ये जो फरहतुल्ला गौरी है वो तो बहुत पहले से ही भारत में हमले की योजना बना रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो पिछले कई महीनों से भारतीय मुस्लिम युवाओं को बरगलाने और भड़काने का काम कर रहा था। सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर इस आतंकी ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ हिंद। वो चाहता था इस मिशन में भारत के मुस्लिम लड़के शामिल हो जाएं और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आत्मघाती हमले के लिए तैयार कर लिया जाए। खुफिया एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया है कि जून 2026 में आतंकी गौरी ने सिग्नल मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया था। इस मैसेजिंग ऐप में उसने एक ग्रुप बनाया और उसी का नाम स्टूडेंट ऑफ हिंद रखा। इस मैसेजिंग ग्रुप में कई लड़कों को शामिल करवा लिया गया था। इस ग्रुप में शामिल किए गए जो बहुत सारे शामिल थे उन मुस्लिम युवाओं को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा था। आर्मी ऑफ मेहदी दरअसल इराक का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है। आतंकी फरहतुल्ला गौरी की प्लानिंग यह थी कि वो भारतीय लड़कों को ही इस मिलिशिया में शामिल करवा दे। इसे आतंकियों की घुसपैठ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इससे पहले ही खुफिया एजेंसियों की नजर इस मैसेजिंग ग्रुप पर पड़ गई। फरहतुल्ला गौरी इतना शातिर है और इतना खतरनाक आतंकी है कि वो पाकिस्तान के 2 बड़े बड़े आतंकी संगठनों के लिए एक साथ काम करता है। भारतीय गृह मंत्रालय के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों का मुख्य सदस्य है और दोनों के लिए ही हमले की योजनाएं बनाता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी का मुख्य काम आतंकी संगठनों के लिए लोगों की भर्ती करना है। वो ISIS और इससे जुड़े मॉड्यूल्स के लिए ऑनलाइन भर्तियां करवाता रहा है। आपको याद होगा ISIS में दुनिया के करीब 81 देशों के 40,000 युवाओं की भर्तियां की गई थी, जिसमें हजारों युवाओं की ऑनलाइन भर्ती की गई थी और माना जाता है कि इस काम में फरहतुल्ला गौरी शामिल था, बल्कि माहिर है। खुफिया एजेंसियों का यह मानना है कि पाकिस्तान और ISI ने गौरी नेटवर्क में शामिल जो भारतीय युवा हैं उनसे दिल्ली और उसके आसपास के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की रेकी भी करवाई थी। फरहतुल्ला गौरी के अलावा हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी भारत पर हमले की योजना बना रहा है और उसने अपने खास आतंकियों को इस काम में लगाया है। NIA ने इसी साल मई में एक व्हाट्सएप मैसेज डिकोड किया था जिसमें पता चला कि ISI और लश्कर ए तैयबा मिलकर भारत में 6 बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। ISI ने हमले की जिम्मेदारी हाफिज सईद के बेटे, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तलहा सईद को दी थी। तलहा सईद ने इस हमले के लिए 8 आतंकियों को खास तौर से ट्रेनिंग दिलवाई और फिर उनकी घुसपैठ करवा दी। यानी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी इस वक्त भारत में छिपे हुए हैं। इसी महीने ये भी पता चला है कि ISI ने भारत में आतंकी घुसपैठ और हथियारों की तरक्की के लिए गैंगस्टर नेटवर्क का इस्तेमाल किया है, तस्करी के लिए गैंगस्टर नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। उसने इस गैंगस्टर नेटवर्क के जरिए दिल्ली की अहम इमारतों को निशाना बनाने की प्लानिंग बनाई है। खुफिया एजेंसियों को 2 दिन पहले यानी समझ लीजिए 11 अगस्त को पता चला कि आईएसआई ने खालिस्तानी आतंकियों को भी दिल्ली को दहलाने के काम पर लगाया। इससे पहले भी आपको पता होगा जब जब भारत के अंदर कई जगहों पर इस तरह की उपद्रव वाली हरकतें और उकसाने में वाली हरकतों के पीछे खालिस्तानी जो संगठन है या फिर लोग हैं उनका हाथ रहा है। अब इसके लिए वो पाकिस्तान के गैंगस्टर नेटवर्क की मदद से दिल्ली तक आईईडी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी गैंगस्टर्स को अपने नेटवर्क के जरिए भारत में छिपे हुए खालिस्तानी टेरर मॉड्यूल्स तक आईईडी पहुंचाना है और फिर ये खालिस्तानी टेरर मॉड्यूल्स अपने साथियों की मदद से दिल्ली एनसीआर में हमले कर सकता है। आतंकी हमलों के इन्हीं खतरों के बीच दिल्ली पुलिस ने दो दिन पहले 19 आतंकियों के पोस्टर लगवाए थे जिसमें इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा, खालिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें थी। अब जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में विस्फोटों की डिलीवरी की जानी है और खुफिया एजेंसियां इन आतंकियों की गतिविधियों पर नजर बना के रखी हुई है। यह भी जानकारी मिली है कि पिछले कुछ महीनों में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सोशल मीडिया अकाउंट इस्लाहे उम्मत भी काफी एक्टिव है। वो भारत के युवाओं को बरगलाने, आतंकवाद की तरफ धकेलने की कोशिश में लगा है। इस अकाउंट के जरिए पता चला है कि जैश वीआईपी लोगों और अहम ठिकानों पर छोटे छोटे कई हमलों की योजना पर काम कर रहा है। यानी सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस बार पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। खुफिया एजेंसियां संभावित अटैक को नाकाम करने में लगी हैं और उनसे अगर कुछ कमी रह गई तो सुरक्षा बल आतंकियों से निपटने को तैयार है। दिल्ली की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंतजाम किए गए हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर सबसे बड़ा खतरा दिल्ली को ही है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी की हिट टीमें और स्नाइपर्स को भी इस बार लगाया गया है। खतरा इतना बड़ा है। इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम्स तैनात रहेंगी। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास, ये सब लगाए गए हैं। इसके अलावा लाल किले पर 15 अगस्त के लिए 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती तो रहेगी ही। देखिए,

0: ये कंट्रोल रूम दिखा देती हूँ, जहाँ से जो है 1000 से भी ज़्यादा जो है कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस पे, और उसी की जो यहाँ से मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चौकसी हर एक शख्स पे, हर एक व्यक्ति पे, जो है हर एक रास्ते पे जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है।
1: सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो ये एक ऐप है जो दिल्ली पुलिस ने डेवलप करवाया है। इस ऐप का नाम है अभिज्ञान ऐप। फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और फिंगरप्रिंट लेने के बाद इस तरीके से रिजल्ट आते हैं। अगर ग्रीन रिजल्ट आया है तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति का किसी भी तरीके का कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है।
2: कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं या सही नहीं बता रहे, तो उसके बायोमेट्रिक तुरंत इसी अभिज्ञान के थ्रू करते हैं। अगर उसकी पॉजिटिविटी है तो उसको फिर।
1: कब से आप लोगों ने इसका डेमोंस्ट्रेशन स्टार्ट किया है और अभी तक कितने लोगों को आप आइडेंटिफाई करना है?
2: ये पिछले 15-20 दिनों से स्टार्ट है, जब से हमने सेफ्टी सिक्योरिटी को स्टार्ट किया है, और इसमें हमने 459 लोगों को वेरीफाई किया है, जिनमें से 21 पीपल ऐसे थे जिनका कोई क्रिमिनल एक्टिविटी रही है।
3: इस खुफिया इनपुट से सुरक्षा एजेंसियां यूं ही परेशान नहीं है। वो जानती है कि इस वक्त भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान कितना उतावला है। ऑपरेशन सिंदूर की मार ने पाकिस्तान के आतंकियों और उसकी सेना को इतने गहरे जख्म दिए हैं कि वो बदले की आग में जल रहा है। आपको याद होगा पिछले साल नवंबर में लाल किले के पास एक बॉम्ब धमाका हुआ था, और इसीलिए चूंकि लाल किले के प्राचीर से ही 15 अगस्त को ये पूरा कार्यक्रम होता है, इसीलिए सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है। अब इस जानते हैं इस पूरी घटना में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इस खुलासे ने भारतीय खुफिया एजेंसियों को पहले से ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। यूएनएससी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लाल किले के पास जो बॉम्ब धमाका हुआ था उसमें अलकायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लिवांट जैसे देश भी कहा जाता है उनका हाथ था। यूएनएससी की निगरानी टीम ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें यह बताया गया है कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास जो हमला हुआ था उसमें अलकायदा के भारतीय उपमहाद्वीप विंग का हाथ था। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। ये पहली बार है जब यूएन के किसी दस्तावेज में भारत पर हुए हमले को सीधे तौर पर अलकायदा के आतंकियों से जोड़ा गया है। ये रिपोर्ट भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक कमजोर और बिखरा हुआ आतंकी संगठन था, लेकिन अब यह भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसने संगठन को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। वो छोटे छोटे आतंकी संगठनों में बंटकर एक बड़े संगठन की तरह काम कर रहा है। इससे वो सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बच रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अलकायदा ने लॉजिस्टिक्स और फंडिंग का एक नेटवर्क तैयार कर लिया है। आपको याद होगा लाल किले के पास ये जो धमाका हुआ था वो एक कार ब्लास्ट था। जानकारी क्या आई थी वो यही कि विस्फोटकों से भरी इस कार को कहीं और ले जाना था, लेकिन लाल किले के पास एक चौराहे पर ही इसमें धमाका हो गया था, और इससे एक बात साफ थी कि अलकायदा ने इस धमाके के लिए कार, विस्फोटक और हमलावर सब जुटा लिए थे। इसके लिए जो खर्च होना था उसकी फंडिंग भी कर ली थी। लाल किला ब्लास्ट में 12 से ज्यादा लोग मारे गए थे। विस्फोटक से भरी जिस कार में धमाका हुआ वो कार डॉक्टर उमर मोहम्मद चला रहा था। डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद के अलफलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। यह बॉम्ब धमाका 10 नवंबर 2025 की रात को हुआ था, और उस दिन दोपहर में सुरक्षा एजेंसीज को फरीदाबाद के एक घर से 2900 किलो विस्फोटक मिला था। बाद में पता चला कि विस्फोटकों के पकड़े जाने के बाद ही आतंकियों ने विस्फोटकों को दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू कर दिया था, और इसी दौरान लाल किले के पास उमर मोहम्मद वाली कार में धमाका हो गया। इस बॉम्ब धमाके में अंसार गजवत उल हिंद नाम के एक आतंकी संगठन का नाम सामने आया था। यह आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा हुआ है, और यही बात रिपोर्ट में भी कही गई है कि अलकायदा छोटे छोटे आतंकी संगठनों में बंटकर काम कर रहा है। लाल किला ब्लास्ट के मामले में 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। 5 डॉक्टर थे, इनमें 3 तो अलफलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हुए थे। यूएन की इस रिपोर्ट में एक और चिंताजनक बात सामने आई है। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेकर दावा है कि वो बांग्लादेश में भी पैर पसार रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश बॉर्डर भारत के लिए युद्ध का एक नया मोर्चा न बन जाए। पिछले काफी समय से बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरवाद में घिरता जा रहा है, भारत विरोधी मानसिकता पनप रही है। हालांकि अगर आप देखिए तो कूटनीतिक रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच में बातचीत चल रही है और एक कोशिश है कि दोनों देशों के रिश्ते में खटास ना आए, लेकिन ऐसे तमाम उपद्रवी जो चाहते हैं कि ये रिश्ते खराब हो, अलकायदा जैसे संगठन, वो अगर वहां पर अपना मुख्य बेस बना लेंगे तो एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि बांग्लादेश में अलकायदा पहले से एक्टिव है लेकिन दूसरे नाम से। बांग्लादेश का आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम को अलकायदा का एक विंग माना जाता है। अंसार अल इस्लाम के जरिए अलकायदा ने 2015 के बाद वहां के कई धर्मनिरपेक्ष विचारकों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं तक करवाई हैं। अब यूएन की रिपोर्ट में कुछ ऐसी जानकारियां भी दी गई हैं जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण। रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकियों ने हमले के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आतंकी AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकियों ने अपनी विचारधारा को कई भाषाओं में फैलाने के लिए, बॉम्ब बनाने, टारगेट तय करने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, आतंकी संगठन डैश ने AI की मदद से अपनी इंग्लिश मैगजीन में जहर और खतरनाक केमिकल्स बनाने के तरीके तक छापे हैं। भारत में अलकायदा का एक्टिव होना पाकिस्तान की सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकती है। अलकायदा और ISI का एक पुराना याराना तो रहा ही है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को आतंकी हमले पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकी दी थी और ऐसे में मुमकिन है कि ISI अपने आतंकी संगठनों के बजाय अलकायदा का इस्तेमाल कर रहा है, यानी ISI भारत पर हमले के लिए अलग अलग आतंकी संगठनों का मुखौटा पहनकर हमले कर रहा है और इस खेल में उसने नेपाल में भी अपने पैर फैला लिए। अभी कुछ दिन पहले नेपाल के सुनसरी में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसको लेकर अब नेपाल की खुफिया एजेंसी NID ने बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक इन दंगों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। जिस सुनसरी जिले में सांप्रदायिक हिंसा हुई वो भारतीय सीमा से लगता है, इसीलिए वहां होने वाली हिंसा ने भारतीय एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया था। अब इस हिंसा में ISI का हाथ सामने आने के बाद भारत पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। NID को पता यह चला है कि ISI ने पाकिस्तान, तुर्की और कतर के जरिए नेपाल के मदरसों को अवैध फंडिंग दिलवाई और सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के वक्त तुर्की में रहने वाला पाकिस्तानी मौलाना मोहम्मद इलियास सुनसरी की एक मस्जिद में मौजूद था। वो पिछले कई दिनों से वहां ठहरा हुआ था। ये सारी जानकारियां उन्हीं की है। नेपाल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद इलियास ISI के लिए काम करता है। उसके संबंध आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन से भी है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ये तीनों आतंकी संगठन न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और UK में भी प्रतिबंधित हैं। नेपाल की खुफिया एजेंसी ने चिंता जाहिर की है कि भारत से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना नेपाल और भारत दोनों के लिए खतरनाक है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि मौलाना इलियास अपने साथ कुछ और मौलानाओं को लेकर पिछले कुछ समय से नेपाल के उन जिलों में घूम रहा था जो भारतीय सीमा के बिल्कुल पास लगे हुए हैं, जैसे विराटनगर है, नेपाल का विराटनगर, रौथट नेपालगंज, कपिलवस्तु जैसे जो संवेदनशील जिले हैं वहां पर गया। ये सारे मौलाना इन इलाकों की मस्जिदों, मदरसों में रुके थे और माना जा रहा है कि वहां पर कट्टरपंथियों के साथ कई बैठकें हुई और इन मुलाकातों को सुनसरी से हुई सांप्रदायिक हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। नेपाल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक जिस वक्त ISI के इशारे पर पाकिस्तानी मौलाना अपने साथियों के साथ मौजूद था, उसी दौरान इन्हीं जिलों में बांग्लादेश के 9 मौलवी आए थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISI नेपाल और भारत की खुली सीमाओं का फायदा उठाता रहा है। साल 2025 में ISI ने प्रभात कुमार नाम के एक नेपाली नागरिक को जासूस बनाकर भारत में भेजा था। वो ISI के लिए भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध करवाता था। उसने अलग अलग पहचान पत्रों के जरिए 16 सिम कार्ड हासिल किए थे। ये सिम कार्ड पाकिस्तान में एक्टिव पाए गए थे। तो ये साल 2025 में ही नेपाली नागरिक अंसारुल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से भारतीय सुरक्षा बलों के गोपनीय दस्तावेज तक मिले थे। साल 2025 में ही शेख सलीम नाम के एक नेपाली नागरिक को पकड़ा गया था जो ISI और दाऊद के नेटवर्क से जुड़ा था और नेपाल के रास्ते भारत में हथियारों की तस्करी कर रहा था। ये पूरा नेटवर्क अब समझिए। अब माना यह जा रहा है कि ISI नए प्लान के तहत भारत और नेपाल की जो सीमा है वहां पर चाहता है कि सांप्रदायिक तनाव बढ़े और इसके लिए वो सांप्रदायिक हिंसा का सहारा ले रहा है। भारतीय सीमा से लगे नेपाली जिलों में आईएसआई के मौलानाओं का होना खतरे का संकेत है। मुमकिन है कि वो नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की आग भारतीय इलाकों में फैलाने की भी धीरे धीरे साजिश में लग जाएं। भारत और नेपाल की करीब 1751 किलोमीटर की खुली सीमाएं और इन खुली सीमाओं के पास नेपाल के क्षेत्र में करीब 911 वैध, करीब 3000 अवैध मदरसे और मस्जिदें हैं। इनमें होने वाली अवैध गतिविधियां भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। यह संदेह इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि नेपाल के जिन इलाकों में आईएसआई का ये मौलाना इलियास कट्टरपंथियों के साथ बैठ के कर रहा है, वहां से लगते भारतीय जिलों में अच्छी खासी जो आबादी है वहां पर मुस्लिम रहते हैं और कोशिश उनकी यही है कि वहां से कोई साजिश रची जाए और बरगलाने की एक पूरी कोशिश की जाए। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये खतरा है और नेपाल के विराटनगर से बिहार का मधुबनी और अररिया जिले भी लगता है। मधुबनी में अगर आप देखिए तो करीब 18% और अररिया में करीब 43% जो है वो मुस्लिम आबादी है और ये माना जा रहा है कि क्या वहां से घुसपैठ कराकर कुछ लोगों को घुसा देने की कोशिश हो सकती है, बरगलाने की कोशिश हो सकती है, या फिर नेपाल के जिस सुनसरी जिले में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी वो आप देखिए अररिया से जुड़ा हुआ है, तो क्या उसी के बहाने ये आग फैलाने की कोशिश है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि नेपाल के रोहतट से बिहार का सीतामढ़ी जो है और पूर्वी चंपारण है वो जुड़ा है, वहां पर भी आप देखिए तो कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी गंभीर हो रही हैं और ये सब इशारा कर रहे हैं कि इन तमाम जगहों पर घुसपैठ के जरिए लोगों को बरगलाने की कोशिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नेपाल के नेपालगंज से यूपी का बहराइच, कपिल वस्तु से यूपी का सिद्धार्थनगर जुड़ा है। बहराइच में अगर आप देखिए तो इन तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अच्छी खासी 30-35% मुस्लिम आबादी है, तो क्या वहां से लोगों को घुसपैठ कराने की कोशिश होगी या फिर बरगलाने की। नेपाल और भारत की खुली सीमाएं हमारे खुशहाल रिश्तों की पहचान है, आईएसआई इनमें जहर घोलने की कोशिश में लगा है। भारतीय एजेंसियों की चुनौती यह है कि वो आईएसआई के कट्टरपंथ का जहर भारत के इन इलाकों में फैलाने की फिराक में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नापाक साजिशों की बात हो ही रही है, तो इसके साथ हम आपको पाकिस्तानी सेना की कायरता की एक कहानी भी बता देते हैं। खबर यह है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमले किए थे तब पाकिस्तान ने डर के मारे अपने F-16 छिपा दिए थे। उन्हें डर था कि अगर F-16 मैदान में उतरे तो भारत का राफेल उसे पलक झपकते मार सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी खालिद चिश्ती ने माना कि पाकिस्तान ने F-16 की पूरी फ्लीट को युद्ध के मैदान में इसलिए नहीं उतारा क्योंकि उन्हें राफेल और उनकी मेट्योर मिसाइल का डर था। पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 4 दिन चले युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर बड़े हमले किए थे और इसके जवाब में पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी बयानबाजियां ही की थी। अब इस ऑपरेशन को लेकर कई चीजें साफ हो रही हैं। खालिद चिश्ती ने तो यहां तक कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा F-16 को छिपाना सावधानी नहीं बल्कि भारतीय एयरफोर्स का खौफ था।
4: F-16 इस्तेमाल क्यों नहीं किए? F-16 उस रात को हवा में थे लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन के साथ थे। लिमिटेशन ये थी कि राफेल हवा में है जिसके पास 150 से ज्यादा किलोमीटर दूर का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है।
5: बिल्कुल ठीक।
4: जब राफेल आपको याद होगा नहीं आया था, अभिनंदन का वाक्य था, तो मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, वो राफेल का मतलब कोई ये नहीं था कि डेकोरेशन चाहिए था, उसको पता था कि 150 किलोमीटर का मिसाइल उस पर लगाना था जो हमारे जहाजों को मार सकता। F-16 जो पाक फिजाइया के पास है वो तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब हमारा मिसाइल है जो मैक्सिमम जाए, तो अगर आप 150 किलोमीटर से दुश्मन आपको मार सकता है तो आपको 70 तक तो नहीं जाने देना, उससे पहले वो आपको मार देगा। तो F-16 हवा में थे, बड़ा पोर्टेंट रोल कॉम्बैट किया, लेजेंडरी जहाज भी है, सीजन पायलट्स भी हमारे 44 साल हो गए हमारे पास तकरीबन F-16 को आए माशाल्लाह, तो बैटल टेस्टेड जहाज है, बहुत काम किया इसने, कोई शक नहीं। लेकिन उस दिन क्योंकि हमने राफेल को टारगेट करना था और MiG-29 Mirage 2000 SU-30 टारगेट करना था, इसकी रेंज उतनी नहीं थी।
3: खालिद के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स को मालूम था कि उनकी F-16 में जो मिसाइलें लगी हैं उसकी तुलना में राफेल की मिसाइल्स ज्यादा ताकतवर हैं। F-16 में मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जिसका एमराम कहते हैं जिसको, इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है, जबकि राफेल में जो मेट्योर मिसाइल होती है उसकी रेंज 120 से 200 किलोमीटर। पाकिस्तानी पायलट्स का मानना था कि राफेल और F-16 की अगर लड़ाई हुई तो राफेल बहुत ज्यादा दूरी से उन्हें मार गिराएगा, जबकि F-16 को राफेल गिराने के लिए उसके बहुत पास जाना पड़ेगा जो युद्ध क्षेत्र में बहुत खतरनाक होता है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भी काफी पहले से ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान ने डर की वजह से F-16 नहीं भेजे। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि पाकिस्तान के पायलट्स और एयरफोर्स के अधिकारियों ने मीडिया के सामने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन सच्चाई वो भी जानते थे। वो जानते थे कि राफेल से लड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनके बस की बात नहीं। मेट्रोर मिसाइल से पाकिस्तान इसलिए भी डर रहा था क्योंकि ये मिसाइल नो एस्केप जोन में ज्यादा खतरनाक साबित होती है। नो एस्केप जोन क्या होता है? वो इलाका है जिसमें विमान के लिए मिसाइल से बचना नामुमकिन हो जाता है, फिर चाहे वो कितना भी मुड़कर कितना भी बचकर भागने की कोशिश करे। मिट्रोर मिसाइल का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर है, यानी टारगेट लॉक होने के बाद अगर वो उसके 60 किलोमीटर रेंज में आ गई तो तबाही तय है। ये रेंज F-16 के अमराम मिसाइल की रेंज से करीब 3 गुना ज्यादा है। युद्ध क्षेत्र में राफेल का पायलट मिट्रोर मिसाइल को फायर करके अमराम की रेंज में आए बगैर वापस लौट सकता है। अगली खबर का अब रुख करते हैं। यह हमेशा कहा जाता है कि डॉग्स जो हैं, कुत्ते जो हैं, वो इंसान के सबसे वफादार साथी हैं। और यकीनन ऐसे इस देश में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो बहुत प्यार से अपने घर में अपने डॉग को रखते हैं और उनका रिश्ता ऐसा होता है, ऐसा संबंध होता है। कहते हैं कि जो लॉयल्टी आपको एक डॉग से मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती है। ऐसे लोग अपने डॉग से बहुत अटैच्ड होते हैं और ये बात बड़ी अच्छी भी है, लेकिन अक्सर एक बहस छिड़ती है कि जो लोग पेट डॉग्स रखते हैं क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। आज ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आइए अब आपको एक घटना बताते हैं। पिटबुल ये जो ब्रीड है पेट डॉग्स की, उसको लेकर गंभीर हमलों की खबरें बीच बीच में आती रही हैं और ऐसे में जिनके पास पिटबुल डॉग है उनको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। कल पंजाब के पटियाला में एक पति पत्नी पर पिटबुल डॉग ने अचानक हमला किया। आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे दोनों पीड़ित एक घर के बाहर खड़े थे, घर का गेट खुलता है और ये पिटबुल डॉग बाहर आते ही सीधा अटैक करता। अब सवाल यही है कि जिन शख्स ने इस पिटबुल डॉग को रखा है उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जरा सावधानी के साथ रखें। अब पहले इसका शिकार ये महिला होती है और देखिए फिर जब ऐसी नौबत आ गई उसके बाद जो अंदर से सामने व्यक्ति आया भी था वो चला गया और ये क्या हालत इनकी हो रही है। फिर एक महिला लाठी लेकर आती है, लेकिन तब तक बात कैसे बिगड़ चुकी थी। महिला का पति उसे बचाने की कोशिश करता है और वो भी पिटबुल डॉग का शिकार हो जाते हैं। पिटबुल डॉग का शिकार बन रहे पति पत्नी को बचाने के लिए घर के भीतर से एक महिला आई, वो डंडा लेके पड़ोस के लोग भी प्रयास करते हुए दिखे, लेकिन मतलब आप सोचिए कि क्या हालत है। आसान नहीं था उनको छुड़ाना। करीब 75 सेकेंड्स का ये हम वीडियो है पूरा। पति पत्नी दोनों काफी जख्मी हैं और गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। पीड़ित अंकित सभरवाल और शिफाली सभरवाल पटियाला के घूमर नगर में किराए का घर देखने के लिए वहां गए थे और अंकित एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं और शिफाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। लेकिन उनके साथ ये जो हुआ है जहां उनकी प्लास्टिक सर्जरी की एक करने की नौबत आ गई है। पटियाला पुलिस ने BNS की धारा 291 के तहत FIR दर्ज की है। धारा 291 जानवर को पालने वाले उस व्यक्ति के खिलाफ लगता है जो अपने जानवर को किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करने से रोकने में नाकाम होता है। सवाल यही है और ये सारी की सारी जिम्मेदारी उस शख्स की है जिन्होंने इस जानवर को पाला है। अक्सर लोगों का गुस्सा डॉग पर निकलता है या कुत्ते पर निकलता है, लेकिन ये गलत है। 5,000 रुपए तक की जुर्माना और 6 महीने जेल की भी इसमें प्रावधान है इस धारा में। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है क्योंकि सारा का सारा दोष, सारी बहस इन डॉग्स के खिलाफ छेड़ दी जाती है, जबकि उनकी गलती नहीं है, गलती उस शख्स की है जिसने इन्हें पाला है। क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि किसी अजनबी व्यक्ति को देखकर अपने घर अपने मालिक को बचाने के लिए वो हमला भी कर सकता है। ऐसे में सारी जवाबदेही डॉग ओनर की है। देखिए
5: कि मेरी वाइफ की जान भी जा सकती थी, ठीक है जी। अपनी वाइफ को बचाते बचाते मैं मुरे आया क्योंकि वो तुसी देख सकते हो कि पूरी उसने बाजू तक खाई लीती सी। ते वाइफ वो गर्दन फड़न की कोशिश है जी कि गर्दन, मैं उसको बचाते बचाते मुरे आया। तुसी देख रहे हो पूरी वीडियो वायरल हुई है जिस तुसी देख रहे हो ना जी। मेरी वाइफ हले भी मतलब इन्ना बुरी तरह जख्मी है जी ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਜੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਜੀ ਬਾਜੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕੀ ਹੈ।
6: FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਇਆ ਪਲੱਸ ਉਹ ਗਲੀ ਗੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਆਫ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ।
3: और ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि अक्सर ऐसी बहस में डॉग्स को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि गलती डॉग्स की नहीं, डॉग ओनर्स की होती है, उनको संभालने की जरूरत है, और अगर वो संभाल कर इस डॉग को रखते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। हम लोग को लेकर कई बार सोशल मीडिया की बहसें शुरू हो जाती हैं, अदालतों तक ऐसे मामले पहुंचते हैं। 2022 से 2024 के बीच डॉग बाइट केसेस के आंकड़े हम आपको दिखाना चाहते हैं। 2022 में लगभग 21 समझ लीजिए 21.9 यानी 21,90,000 के आसपास ऐसे डॉग बाइट्स के केस दर्ज हुए। 21 मामलों में रेबीज से मौत भी हुई। 2023 में भी अनेकों ऐसे मामले हुए, 30 लाख के आसपास। 2024 में 37 लाख के करीब केसेस हुए, और आप देख ही रहे हैं मरने वालों का भी आंकड़ा। आज सवाल यही है कि जितने भी लोग डॉग्स को रखिए, डॉग्स सबसे लॉयल साथी होते हैं इंसान के, कोई इसमें बहस है भी नहीं, और जो प्यार कई लोगों को अपने डॉग से होता है उसकी कद्र हमेशा होनी चाहिए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो डॉग रख रहे हैं उसकी वजह से किसी दूसरे की जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए। और अब आपको वक्त का एक बड़ा बदलाव दिखाते हैं। जो रशिया तेल का बड़ा उत्पादक है, जहां से भारत अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है, अब उसी रशिया को भारत पेट्रोल बेच रहा है। ये दावा ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में किया है। ब्लूमबर्ग के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन के हमलों की वजह से रशिया की रिफाइनरीज जो हैं उनमें पेट्रोल की भारी कमी हो गई है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट इस समय दो बड़े युद्ध के घातक असर के सीधे तौर पर जूझ रहा है। एक तरफ यूक्रेन लगातार रशिया की रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। इन युद्धों ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बहुत परेशान कर दिया है। स्थिति यह हो गई है कि जो रशिया पारंपरिक रूप से दुनिया भर में ईंधन का सप्लायर रहा है, उसे अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल दोनों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पड़े हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के हमलों की लहर के बाद जुलाई महीने में रशिया की रिफाइनिंग जो क्षमता है, जिससे वो रिफाइंड ऑयल बनाता था, पेट्रोल बनाता था, वही रिफाइनिंग क्षमता पहले के मुकाबले घटकर 36 लाख बैरल प्रतिदिन पर आ गई, जो सामान्य स्तर, जो एवरेज स्तर था, नॉर्मल स्तर, उससे एक तिहाई कम है। अब यूक्रेन ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। पिछले हफ्ते 5 रिफाइनरीज और इस हफ्ते कम से कम 2 और एनर्जी साइट्स को निशाना बनाया गया। इस युद्ध में रशिया की 33 में 26 रिफाइनरीज को कभी ना कभी निशाना बनाया गया है। अगस्त महीने में रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की झड़ी लग गई। 29 जुलाई और 2 अगस्त को सैराटोव और रियाजान रिफाइनरीज को ड्रोन हमलों के चलते क्रूड प्रोसेसिंग रोक देनी पड़ी। अब सोचिए 31 जुलाई जब वोल्गोग्राद रिफाइनरी ड्रोन हमले के बाद ठप। 6 अगस्त को मॉस्को से 250 किलोमीटर की दूरी पर है 1.5 करोड़ टन क्षमता वाली यारोस्वलाव जो रिफाइनरी है, उस पर बड़ा ड्रोन हमला हो गया। 8 अगस्त को इल्स्की ऑयल रिफाइनरी में ड्रोन हमला हुआ, भीषण आग वहां पर लग गई। 10 अगस्त को रशिया के ट्यूमन क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल प्लांट और ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन अटैक हुआ। 11 अगस्त को ओरनबर्ग रीजन की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। अब एक के बाद एक ये हमले। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ये पहली बार है जब रशिया ने भारत से फ्यूल मंगाया है। ये खरीद दिखाती है कि रशिया में ईंधन का संकट कितना विकराल रूप ले चुका है। इसकी शुरुआत 5 अगस्त को हुई जब रशिया को भारत से अपनी पहली खेप प्राप्त हुई, और ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसी और भी खेपें रास्ते में है। इस पूरे व्यापार के केंद्र में भारत की रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड का नाम सामने आया है, जिसमें रशिया की बड़ी तेल उत्पादक कंपनी रोजनेफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी है। अब भारत से रवाना होने वाले इस पेट्रोल को इजिप्ट के तटों पर रशिया लिंक टैंकर्स की एक लंबी चेन के जरिए ट्रांसफर किया जाता है और वहां से रशिया पहुंचाया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले साल जुलाई में यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से नायरा एनर्जी पूरी तरह से डार्क फ्लीट टैंकर्स और ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशंस पर निर्भर हो चुकी है। भारत में गुजरात के तटीय इलाके में वाडेनार में स्थिति नायरा की रिफाइनरी की क्षमता जो है वो 4 लाख बैरल प्रतिदिन है। अब इसके प्रमुख खरीदार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जिसने हाल ही में खुद का ईंधन उत्पादन शुरू कर दिया, जिसके बाद इसे नए खरीदार की जरूरत पड़ी। अब इस रिपोर्ट में ही शिप ट्रैकिंग डेटा के जरिए रशिया को जाने वाले सप्लाई चेन से जुड़े कई दावे किए गए। फ्यूल की पहली खेप के लिए 18 जून को वाडेनार से 42,000 टन पेट्रोल का कार्गो लोड किया गया। ये लोडिंग रशिया के झंडे वाले प्रोडक्ट टैंकर साइक्लोन में की गई, जिसे पहले अग्नि के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इस ईंधन को 6 जुलाई को इजिप्ट के मेडिटेरेनियन सी के तट के पास डैमेरा पोर्ट पर ओमान के

पर ओमान के झंडे वाले टैंकर गार्नेट में ट्रांसफर किया गया और ये जहाज अगस्त की शुरुआत में रशिया जा पहुंचा। कहानी यही खत्म नहीं होती है, इसके बाद और भी पेट्रोल रशिया पहुंच सकता है। 6 जुलाई को प्रोडक्ट्स टैंकर्स ने वाडिनार में लगभग 40,000 टन ईंधन लोड किया और जुलाई के अंत में जामेरा पोर्ट पर एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया। हालांकि इस रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया है कि यह खेप किस जहाज में ट्रांसफर की गई। हालांकि अंदाजा लगाया गया है कि यह बीस्ट हो सकता है क्योंकि यह 30 और 31 जुलाई के आसपास जामेरा पोर्ट पर था और इसका लोड बढ़ा था। 20 टैंकर ने अपना डेस्टिनेशन मोरक्को की तरफ जाने का संकेत दिया था, लेकिन डेटा से पता चला है कि वो उस पोर्ट से भी आगे निकल गया और अब अटलांटिक महासागर में उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा कैमरून के झंडे वाला जो प्रोडक्ट्स टैंकर है फोटोन, वो भी 13 जुलाई को वाडिनार से रवाना हुआ था और 28-29 जुलाई को जामेरा पोर्ट पर अपना पेट्रोल रशिया झंडे वाले टैलिस्मान को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीस्ट और टैलिस्मान दोनों का डेस्टिनेशन अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस पैटर्न से पता चल रहा है कि जामेरा पोर्ट भारत के पेट्रोल को रशिया भेजने का काम आसान कर रहा है। यह पूरा घटनाक्रम इस बात की गवाही देता है कि किस तरह यूक्रेन के हमलों ने रशिया के ऊर्जा सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और कैसे वैश्विक प्रतिबंधों के बीच भारत और रशिया के बीच ये नया और गोपनीय व्यापारिक गलियारा बनकर तैयार हुआ है। यह दावा एक बार फिर से आपको बता दें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से किया गया है। और अब आपको वैश्विक ऊर्जा समीकरण भी देखने चाहिए जिसने दुनिया के नक्शे पर नए पार कॉरिडोर्स खड़े कर दिए हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स पूरी तरह बदल गया है। भारत ने इस उथल पुथल के बीच अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे कई लोग हैरान हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में भारत का रशिया से कच्चा तेल आयात लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जुलाई में भारतीय खरीदारों ने 60,500 करोड़ रुपए का रशिया से आने वाला कच्चा तेल खरीदा जो जून के मुकाबले लगभग 2.1% ज्यादा है। अब भारत का जो ये रशियन क्रूड इंपोर्ट है वो जुलाई में रिकॉर्ड 28 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया। ये भारत के कुल क्रूड इंपोर्ट का 55.5% हिस्सा है, यानी भारत की जरूरत का आधा से ज्यादा तेल अब अकेले रशिया से आ रहा है। जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए कि तेल का खेल कितनी तेजी से पलटा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत रशिया से मामूली तेल खरीदता था। युद्ध से पहले यानी साल 2021 में भारत रशिया से औसतन 1 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कच्चा तेल खरीद रहा था, जो कुछ खरीद का सिर्फ लगभग 2.5% था। फरवरी 22 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रशिया से कच्चे तेल की खरीद में जबरदस्त उछाल आया और उस साल भारत ने रशिया से औसतन 7.5 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा। फिर साल 2023 रशिया से कच्चे तेल की खरीद 18 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई और रशिया भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया और भारत की कच्चे तेल खरीद में रशिया की हिस्सेदारी 39% हो गई। 2024 में भारत की रशिया से कच्चे तेल की खरीद 18 लाख बैरल प्रतिदिन पर लगभग स्थिर रही। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और यूरोपीय खरीदारों के हटने के बाद रशिया ने एशियाई देशों को भारी डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया और भारत ने इस मौके को जबरदस्त तरीके से उस वक्त भुनाया था। यानी एक तरफ रशिया पर निर्भरता बढ़ी है तो दूसरी तरफ भारत सरकार ने अपनी एनर्जी बास्केट को बहुत मजबूत सुरक्षित कर लिया है। संसद में दिए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, आइए आपको बताते हैं, भारत अब सिर्फ 6 के बजाय 15 देशों से एलएनजी आयात कर रहा है। क्रूड ऑयल के मामले में भारत ने अपने पैर फैलाए हैं, 27 देशों के पहले करता था, अब 41 देशों से तेल मंगाना शुरू कर दिया है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। दुनिया के माहौल को देखते और समझते हुए भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता बढ़ा रहा है। अभी भारत साल में लगभग 26.71 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा तेल रिफाइन कर सकता है, जबकि पिछले साल भारत की क्षमता 25.80 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा तेल रिफाइन करने की थी। 2014 में यह क्षमता 21.5 करोड़ मीट्रिक टन सालाना थी, अब इसे 2030 तक 31 करोड़ मीट्रिक टन तक ले जाने का लक्ष्य है। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग देश है। इस क्षमता के दम पर ही भारत ने साल 2024-25 में 50 से अधिक देशों को 4,29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। और अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी। ये खबर उस पिता की है जिसके अंतिम संस्कार में उसकी 3 बेटियों में से कोई नहीं पहुंचा और जब अस्थि विसर्जन की बारी आई तब बेटियों ने कहा कि वो मजबूर हैं। ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन अब इसमें आगे क्या हुआ है और जानते हैं, वो ना आ पाने के लिए अपने आप को शर्मिंदा जरूर बता रही है। बिल्कुल

0: अंजना। हरियाणा के सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग कपड़ा व्यापारी शिवचरण गुप्ता के निधन के बाद से काफी विवाद हो रहा है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद अब उनकी अस्थियों के विसर्जन में भी तीनों बेटियां शामिल नहीं हुई। बुधवार को हरिद्वार में शिवचरण गुप्ता के बड़े भाई महेंद्र गुप्ता ने वृद्धाश्रम से जुड़े लोगों के साथ गंगा में अस्थि विसर्जन किया। वृद्धाश्रम प्रबंधन ने शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी से बात की तो उसने कहा कि आप अस्थियों का अच्छे से विसर्जन कर देना, आप खुद को पिता का छोटे भाई समझकर पूरी रस्में निभा देना। बड़ी बेटी ने इसके साथ ही कहा कि वो शर्मिंदा है लेकिन उनकी कुछ मजबूरी रही होगी। बड़ी बेटी ने यह भी कहा कि वो और उनकी बहनें अपने पिता से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनके पिता उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। बेटी ने अपनी मजबूरी का भी जिक्र किया और कहा कि अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो वो खुद हरिद्वार पहुंचती। पिता की अंतिम यात्रा में शामिल ना हो पाने के बावजूद बेटियां अपने स्तर पर अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में निभाने की तैयारी कर रही है और 13वीं की रस्म अपने घर पर करने की बात कही। इससे पहले शिवचरण गुप्ता की मौत के बाद उनकी तीनों बेटियों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने को लेकर विवाद हुआ था। जब वीडियो कॉल पर बेटियां उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई थीं,
1: अब बहन जी मैं बताऊ उनको मैं यूं क्यों क्यों भाई तुम जाओ कहूंगा तो मतलब नहीं मानना कि भाई कुछ खोट कर रहा है।
2: सारे वायरल हो गए हैं, सारे आज तक में सारे मेरे रिश्तेदार सब सब बोल रहे हैं, सारे हमारे आप समझ नहीं रहे हो। बस
1: नहीं मैं बिल्कुल समझ रहा बहन जी, मतलब मैं खुद नहीं चाहता था इतना हो गया।
2: रखना चाहते थे सारो फोन से पापा को, वो निशा बीच वाली तो दो बार लेके गए उनके आदमी बेचारे और पापा नहीं रह पाते थे कहीं एक्चुअली बेटी के घर पे। पापा का थोड़ा स्वभाव ऐसा था, नहीं रह पाते तो
1: मैंने बेटा सुनो आप मेरी स्टेटमेंट सुनोगे ना, मैंने यही कहा था कि तीनों बेटियां रखने को तैयार हैं।
2: एक तरफा दिखा रहे हैं खाली मीडिया वाले, एक तरफा दिखा देते हैं।
3: कि कोई मजबूरी होगी या क्या है, तो रियल फैक्ट मालूम पड़े तो मालूम पड़े ना। अभी तो इतनी दूर से कोई नहीं आया, या उनकी आर्थिक तंगी है, उनके हस्बैंड ने मना कर दिया, अब वो तो बेटियां हैं क्या कर सकता है।
2: क्यों सबका फोन सुनते हैं आप? अपने मैं हूँ ना, मैं पापा के साथ रह के आई हूँ ना 6 महीने। आप मेरे आप मैं हूँ, मैं बड़ी लड़की हूँ उनकी। तो मैं आप बस मैं आप एक ही बात कहूंगी, हरिद्वार में जाके गंगा जी में विसर्जित कर दीजिएगा।
1: ठीक है,
2: और अगर कभी भी मेरा उस तरफ कभी भी आना होगा तो हम आपसे जरूर मिलके जाएंगे। कभी भी आना होगा
1: बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारी छोटी बहन जी हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब चाहो जब भाओ।
2: अभी भी जिंदगी इतनी बड़ी है, मुझे भी काम पड़ सकता है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी करूँ।
1: ये तो है बहन जी।
2: हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने उनका छोटा भाई समझ के
1: बिल्कुल
2: वो पिताजी उनकी अस्थि जरूर बहा दीजिएगा गंगा जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल फोन किया मेरा, बिल्कुल बहन जी। नहीं मैं आज भी हमने उठाई थी तो आज उठा के फिर मेरे ध्यान आमा बहन जी को बता दूं, जो बहन जी कहेंगी वही उसी हिसाब से करेंगे।
2: हरिद्वार में गंगा जी में विसर्जित कर दीजिएगा, उनको आत्मा को शांति मिल जाएगी।
1: ठीक है बहन जी, ठीक है बहन जी,
2: वो कर दीजिएगा। और तिथि और अगर 13वीं वाले दिन हो सके तो आप लोग भी पंडित जी हम लोग तो करेंगे इधर।
1: हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे बहन जी, बिल्कुल करेंगे।
2: हाँ पापा को जो सामान पसंद था वो सारी चीजें करके मैं मतलब अपने हिसाब से करूंगी, जैसे मैंने मम्मी का किया था वैसे ही करूंगी।
0: इस घटना में पिता के अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन में शामिल न होने पर बेटियों पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक ऐसी खबर आई है जहां एक बेटे की वजह से मानवता शर्मसार हो गई। एक बेटा जो जीते जी पिता का सहारा नहीं बन पाया, उसने मरने के बाद सादे कागजों पर पिता का अंगूठा लगवाया ताकि उनकी जायदाद हथिया सके।
4: ये तस्वीर लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र के खड़ोहा गांव की है। महेंद्र नाम के इस बेटे ने इंसानियत को ताक पर रख दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये शख्स अपने मृत पिता का हाथ पकड़ कर सादे कागजों पर जबरन अंगूठे लगवा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि इस घटना में बेटियां ही पिता का सहारा बनी। साल 2023 में जब बुजुर्ग छत्रपाल को घर से निकाला गया तो बेटियों ने उन्हें अपने घर पनाह दी। पिता ने खुश होकर अपनी जमीन बेटियों के नाम कर दी और अखबार में इश्तेहार देकर बेटा बहू को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। बेटियों का आरोप है कि इलाज के बहाने भाई पिता को अपने साथ ले गया और चंद दिनों के भीतर ही पिता की मौत हो गई। जब बहनें अंतिम संस्कार के लिए पहुंची तो भाई ने उनके साथ भी बदसलूकी की। सोचिए आज समाज किस दौर में पहुंच गया है, जहां जायदाद के लिए पिता का शव भी व्यापार की वस्तु बन गया।
0: ब्लैक एंड व्हाइट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अंजना की विचारधारा।

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर किधर
1: करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
3: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।

0: where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
1: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
2: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
1: क्रॉसबॉन्ड, सुपर स्ट्रॉन्ग।
2: सुपर स्ट्रॉन्ग?
1: और मॉइस्चर प्रूफ।
3: वारंटी?
1: 15 साल की।
2: कदम।
1: सर प्लीज।
2: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
4: क्रॉसबॉन्ड HDMR Max। फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
5: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
6: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: विमल, बोलो जुबां केसरी। हिंट, बड़े आराम से।
8: आपको बता दें कि यूपी में खुद सीएम योगी ने पूरा फोकस युवाओं पर किया है। जी हाँ, सीएम योगी ने नई युवा नीति तैयार करने के लिए निर्देश दिया है कि यूपी के 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समझा जाए। लेकिन आकाश आनंद ने योगी सरकार पर भी करारा प्रहार किया। आकाश आनंद ने कहा कि पिछले 10 सालों में जनता के टैक्स के पैसे यानी 7,000 करोड़ रुपए से बीजेपी सरकार ने सिर्फ अपनी नाकामी छुपाई है। इतना ही नहीं, मायावती के भतीजे ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और योगी सरकार को एनकाउंटर की सरकार बताते हुए यूपी पुलिस को भी घेरा। आकाश आनंद ने महंगाई के मुद्दे पर भी योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक प्रहार किया। जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में युवाओं के बीच जो जो मुद्दे उछले उन्हें विपक्ष न सिर्फ पकड़ रहा है बल्कि सियासत का आधार उन्हीं को बना रहा है। और आज का सूरत हाल ये है कि विपक्ष हो या बीजेपी या फिर RSS, हर किसी का फोकस जेन जी पर आ गया है। आज तक के

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और आज हंगामे और गतिरोध के बीच खत्म हो गया। पूरे सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार इस कदर हावी रही कि कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा तक नहीं हो सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र के हंगामे में खत्म होने के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष कहता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
4: ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
5: जी प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो, अरे या हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मींस डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं।
3: कांग्रेस का आरोप है कि पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुनी। विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग करता रहा। एफसीआरए बिल वापस लेने की मांग की गई, लेकिन जवाब देना तो दूर। विपक्ष कहता है कि गृह मंत्री अमित शाह सत्र के दौरान सदन तक में नहीं आए। वहीं सत्र के आखिरी दौर में सरकार ने विपक्ष को चर्चा का प्रस्ताव दिया था। अमित शाह ने कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष को लेक्चर नहीं, सीधा जवाब चाहिए। अब देखिए मानसून सत्र में संसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ एक मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब एक घंटे। वहीं राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हुआ। हैरान करने वाली बात, लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे काम नहीं हुआ। मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठक हुई, इस हिसाब से 19 बैठक में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन ये करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम काम हुआ है। वही मानसून सत्र में राज्यसभा में 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन लगभग 37 घंटे 24 मिनट ही काम हुआ, यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्यवाही हुई। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 2026 के मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। संसद का पूरा मानसून सत्र पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के इर्द गिर्द रहा है, लेकिन इस सियासी शोर में जनता के कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, जिससे जनता की कमाई के करोड़ों रुपए बह गए। इसीलिए हम कह रहे हैं, न बहस न चर्चा, करोड़ों का खर्चा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और गजब दुनिया है, यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कार्यक्रम में पीएम मोदी अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म मानसून सत्र, सरकार विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही राजनीति, राहुल ने कहा संविधान का अपमान, पहले लड्डा ने जताया खेद। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 की तलाश में कई जिलों में छापे, रांची में छात्रों का आंदोलन जारी। और उत्तराखंड के पीपलकोटी में बड़ा हादसा, हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में पानी, मलबा आने से फंसे कई लोग, अब तक निकाले गए 16 मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री धामी की नजर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक कि कैसे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर न सिर्फ रणनीति तैयार की जा रही है बल्कि वोटर्स को फिक्स करने के लिए योजनाओं की किश्त भी आनी शुरू हो गई। जब विपक्ष जेन जी वोटर्स पर फोकस कर रहा है तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जांचे परखे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही है। मतलब जी हां, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में महिला वोटर्स को साधने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 50,000 रुपए मिल सकते हैं और चुनाव से पहले महिलाओं को 20,000 रुपए की किश्त भी दी जा सकती है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि क्यों उत्तर प्रदेश चुनाव की लड़ाई आधी आबादी पर आई।
1: यूपी में जेन जी वोटर का तोड़, महिला वोटर से निकलेगा। विपक्ष जेन जी के सहारे बीजेपी चली आधी आबादी को साधने। योगी सरकार ला रही है नई स्कीम, महिलाओं को मिलेंगे 50,000 रुपए। महिलाओं के लिए 20,000 की पहली किस्त, बीजेपी का वोट फिक्स। योगी सरकार का महिला वोटर वाला प्लान, अखिलेश बोले जुमला है। यूपी में विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की तैयारियां और प्लानिंग तेज होती जा रही हैं। जब पूरा विपक्ष जेन जी वोटर्स पर डोरे डालने में जुटा है तब बीजेपी ने जेन जी के साथ साथ महिला वोटरों को भी साधने का प्लान बनाया है। जी हाँ, यूपी में बीजेपी महिलाओं के लिए जिस प्लान पर मंथन कर रही है उसके मुताबिक बीजेपी यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 तक की आर्थिक सहायता वाली नई योजना तैयार कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त और बीजेपी सरकार बनने पर 10,000 की तीन किस्तें दी जा सकती हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना है। पात्रता में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता मिल सकती है।
2: उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर भाजपा एक तरफ तो जेन जी तो दूसरी तरफ मोस्ट टेस्टेड फार्मूला यानी महिलाओं को लेकर चलने की कवायद शुरू कर रही है। इस क्रम में महिलाओं को जो फैसिलेट करना है 50,000 तक उनको सहायता देनी है उसको लेकर मंथन चल रहा है, जिसमें जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं फिर चाहे वो सखी योजना के तहत हो, निराश्रित महिला योजना हो या इसके अलावा पेंशन योजना हो, क्या उनके जरिए भी इन महिलाओं को बेनिफिट दिया जा सकता है, इस पर मंथन चल रहा है।
1: जैसे ही यूपी में योगी सरकार की इस योजना की चर्चा शुरू हुई तो अखिलेश यादव ने पहले तो इसे बीजेपी का जुमला बताया और फिर ये भी कहा कि वो 40,000 से शुरुआत करेंगे। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है, वो भी बीजेपी की पाप की कमाई है जिसे यूपी की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेगी। यूपी की जागरूक महिलाएं पूछ रही हैं, जिन दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा करके चुनाव जीता था वहां एक तरफ तो देने से आनाकानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे वापस मांग रहे हैं और जो लौटा नहीं पा रही हैं उन महिलाओं पर बीजेपी थाने कचहरी पुलिस मुकदमे की निंदनीय कार्रवाई कर रही है। देखा जाए तो आज जिस 50,000 रुपए सालाना देने की बात बीजेपी सरकार कर रही है वो पैसे पिछले 10 साल में भी दे सकती थी पर दिया नहीं। मुख्यमंत्री जी ने यूपी की महिलाओं के हक अधिकार के हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करके सबको ठेंगा दिखा दिया। पोस्ट के अंत में अखिलेश लिखते हैं, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल।
3: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है, हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो एनसीआरबी के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे उसको आपने बंद कर दिया।
0: दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर आंदोलन से लेकर दूसरी जगह चलते प्रदर्शनों में जहां छात्राओं की भागीदारी अधिक दिखी तो क्या इसीलिए इस बार महिला वोटरों को कैश से लुभाने वाला दांव सफल हो पाएगा? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की महिलाओं वाली योजना पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूपी में जेन जी वोटर्स का गणित बैठा रही थी। जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जेन जी को अपने पाले में खींचने की पुरजोर कोशिशों में लगी है, क्योंकि यूपी में कुल वोटर्स करीब 13 करोड़ हैं। इनमें जेन जी यानी 18 से 27 साल के वोटर्स 2.07 करोड़ हैं, यानी लगभग 15%। यूपी में जिन सीटों पर जेन जी वोटर्स का असर है वो यूपी विधानसभा की 403 में से लगभग 80 से 120 सीटें हैं। लेकिन यूपी में बीजेपी ने जांचा परखा फॉर्मूला चल दिया महिला वोटर यानी आधी आबादी के वोट को फिक्स करने का। आपको बता दें कि एनडीए सरकार ने बिहार की 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले ₹10,000 ट्रांसफर किए थे। इसके बाद जो नतीजा दिखा, बिहार में पहली बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ। पुरुषों के मुकाबले बिहार में महिलाओं ने 10% ज्यादा वोट दिया था। बिहार की करीब 130 सीटों पर महिला वोट पुरुषों से ज्यादा रहा, जिसमें 114 सीट एनडीए ने जीती यानी 88%। एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर के बीच का अंतर उन जिलों में ज्यादा दिखा जहां महिला वोटरों की हिस्सेदारी ज्यादा मतलब 51 से 55% के बीच थी, और उन जगहों पर कम था जहां पुरुषों और महिलाओं की वोटिंग संख्या लगभग बराबर थी या पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा थी। जैसे कि जिन सीटों पर महिला वोटरों की हिस्सेदारी 51% से 55% थी, वहां एनडीए और महागठबंधन के बीच का अंतर 11% से 15% वोट के बीच था, जबकि दूसरी सीटों पर ये अंतर 10% से कम था। मतलब जहां महिला वोटर ज्यादा वहां एनडीए ने वोट में भी लीड ली थी। आपको ये भी बता दें कि नवंबर 2023 से अब तक 18 राज्यों में चुनाव हुए हैं। इनमें से 14 राज्यों में महिलाओं को पैसे देने वाली कैश स्कीम लागू की गई या वादा किया गया। इन 14 में से 10 राज्यों में योजना कारगर रही, यानी स्ट्राइक रेट 71% रहा। 5 उदाहरण से समझते हैं। मध्य प्रदेश, चुनाव से पहले 6 किस्तों में 11,000 दिए, बीजेपी सरकार बनी। महाराष्ट्र, चुनाव से पहले 7,500 रुपए खाते में पहुंचे, महायुति को 80% सीटें मिली। झारखंड, चुनाव से पहले राज्य की 48,00,000 महिलाओं के खाते में 4 किस्तों में 4,000 रुपए डाले गए। चौथी किस्त वोटिंग से 1 रात पहले भेजी गई, सोरेन की सत्ता में वापसी। बिहार, वोटिंग से पहले 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, ऐतिहासिक जीत एनडीए को मिली। असम, महिलाओं को सहायता राशि बढ़ाकर 3,000 करने का वादा किया, और चुनाव से ठीक पहले सरकार ने अरुणोदय योजना के तहत लगभग 40,00,000 महिलाओं के खातों में डीबीटी के जरिए 9,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की थी। लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी यूपी में भी हैट्रिक लगाने के लिए फिर से महिला वोटरों को फिक्स करने वाला प्लान तैयार कर रही है, और समाजवादी पार्टी इसमें वोट गिना रही है।
4: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है।
5: आप वेलकम करते हैं इसका?
4: हम वेलकम नहीं करते, पर हम इस बात के लिए तैयार है। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया। सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए। आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है। आज हमारे पीडीए जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी।
6: सारी की सारी यहाँ प्रपंच नहीं चलने वाली। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने बिहार की जीविका दीदियों की स्थिति देख ली। महिलाओं के बच्चों को बेरोजगार बनाने वालों को और महिलाओं को लोन देकर के उनके कर्ज के जाल में ट्रैप कराने वालों के चक्कर में अब उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं फंसेंगी।
1: आपको ये भी बता दें कि यूपी में महिलाओं के लिए पहले से कई योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत गरीब बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए स्नातक तक विभिन्न चरणों में 15,000 की आर्थिक सहायता। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्रों को सरकार स्कूटी देने जा रही है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पति की मृत्यु के बाद बेसहारा महिलाओं को जीवन यापन के लिए हर 3 महीने पर 3,000 रुपए पेंशन। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से गंभीर हिंसा और एसिड अटैक पीड़िताओं को इलाज और पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब निराश्रित बेटियों और विधवा महिलाओं की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता। स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदी योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को लघु उद्योगों से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। और यूपी रोडवेज की बसों में 60 साल से अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा। अब सवाल ये है कि यूपी में विपक्ष का जेन जी प्लान क्या बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोक सकता है, और क्या बीजेपी के महिला वोटर प्लान के सामने जो अखिलेश ने कहा कि महिलाओं के लिए हम 40,000 से करेंगे शुरुआत जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल, क्या उससे बीजेपी का तोड़ निकाल पाएंगे। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर सुरक्षा एजेंसी के ऑपरेशन 15 अगस्त की। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की एक गंभीर साजिश रची। आतंकवादी हमले की साजिश बहुत गहरी है क्योंकि लश्कर के 8 सुसाइड बॉम्बर घुसपैठ कर हमारे देश में दाखिल हो चुके हैं। लश्कर के फजाइन दस्ते को दिल्ली के 6 ठिकानों पर हमले का जिम्मा सौंप दिया गया है। आतंकवादी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं, और इसी खतरे पर विस्फोटक खुलासा करती हमारी संवाददाता अरविंद ओझा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
1: पंद्रह अगस्त को दिल्ली दहलाने का जिहादी प्लान। छह ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में आतंकी। लश्कर की फिदाइन टीम आज कर सकती है अटैक। ISI का प्लान और तलहा सईद का सुसाइड दस्ता। दिल्ली में हाई अलर्ट ऑपरेशन 15 अगस्त। बीते साल नवंबर में लाल किले के पास आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल ने फिदाइन हमले को अंजाम दिया था। डॉक्टर उमर ने विस्फोटक से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था, लेकिन लाल किले पर हमला करने में नाकाम रहा। अब इसी पैटर्न पर लश्कर का फिदाइन दस्ता दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा फिदाइन हमले की प्लानिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं।
5: मेरे हाथ में मौजूद इस कागज में दिल्ली को दहलाने की खुफिया एजेंसी का खौफनाक सच मौजूद है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से 11 अगस्त को जारी किए गए इस इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी में फिदाइन हमले से सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि लश्कर के फिदाइन हमलावर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तलहा सईद के इशारे पर दिल्ली में घुसपैठ कर चुके हैं। शायद इसी वजह से दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है।
1: बहुत गौर से अलर्ट की कॉपी को देखिए। कॉपी की एक एक लाइन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की गवाही देने को काफी है। सबसे पहले अलर्ट की कॉपी को डिकोड करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, खालिस्तानी आतंकी और लश्कर की तिकड़ी का प्लान, दिल्ली को IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से दहलाने की साजिश रची गई है। दिल्ली में लोकल नेटवर्क और प्रो खालिस्तान सिंडिकेट के जरिए IED की डिलीवरी होनी है। दिल्ली NCR में आतंक के नेटवर्क को पाक में बैठे आतंकियों ने एक्टिव किया है।
5: दिल्ली को दहलाने की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर में रची गई है। फिदाइन हमले के लिए आतंकियों की खेफ तलहा सईद ने मुहैया करवाई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में खुलासा हुआ है कि एक दो नहीं बल्कि 8 फिदाइन हमलावर देश में घुसपैठ कर चुके हैं। इन 8 आतंकियों को लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई है और इनके निशाने पर कुल 6 लोकेशन हैं।
1: खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी देश की संसद, कनॉट प्लेस, दिल्ली के सरकारी भवन और रेलवे स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग रच रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू और राजस्थान में फिदाइन हमले की नापाक साजिश पाकिस्तान में रची गई है। 30 जून को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले के मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी की तरफ से भेजे गए संदेश को इंटरसेप्ट किया गया। आतंकी फरहतुल्ला ने सिग्नल ऐप के जरिए स्टूडेंट ग्रुप ऑफ हिंद पर एक संदेश भेजा था। संदेश में भारतीय मुसलमानों को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया। कहा मुसलमानों को दिल्ली पर इस्लाम का झंडा फहराना होगा। ये तभी होगा जब दिल्ली में फिदाइन हमले होंगे। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी करवाई गई है। मई महीने में इंटरसेप्ट हुए एक मैसेज से पता चला कि आईएसआई का प्लान भारत में 6 बड़े धमाके करवाने का है और फिदायीन हमले के लिए तलहा सईद से जुड़े 8 आतंकी देश में दाखिल हो चुके हैं। फरहतुल्ला गौरी उर्फ अबू सुफियान उर्फ सरदार साहब उर्फ कारी, ये पाकिस्तान में बैठा वही आतंकी है जो आईएसआई का प्यारा और हाफिज सईद का दुलारा है। गौरी लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है।
5: भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में फरहतुल्ला गौरी का नाम शामिल है। ये फिलहाल पाकिस्तान में अंडरग्राउंड है और लगातार आईएसआई और लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रचता रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी 4 महीने पहले तलहा सईद से मिला था। आतंकी मीटिंग में 15 अगस्त को दिल्ली को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन आतंकियों की इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
0: आतंकवादी खतरे को देखते हुए हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ विभिन्न सुरक्षा एजेंसीज को 15 अगस्त के मद्देनजर तैनात किया गया है। आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल भी की है।
1: दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल, दिल्ली सचिवालय से लेकर कनॉट प्लेस तक, एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के बाजारों तक आतंकी हमले से निपटने की पूरी तैयारी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल किया। तैयारी हर हालात से निपटने की है। सबसे पहले दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें, यहां सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले से निपटने की मॉक ड्रिल की। आप देख सकते हैं सचिवालय के बाहर धुआं उठ रहा है, ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। यानी हमला हुआ तो 15 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियां कैसे निपटेंगी।
7: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सचिवालय के बाहर, जहां से दोपहर 1:30 बजे एक कंट्रोल रूम को कॉल गई कि गेट नंबर 5 से कुछ संदिग्ध बैग लेकर अंदर घुसे और साथ ही धमाके की आवाज आई। इसके तुरंत बाद तमाम एजेंसियां, आप देखिए सामने बम डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ मौजूद है, क्योंकि अंदर कुछ लोग घुसे हुए हैं, ये कॉल थी। और उसके बाद पूरी टीम पहुंची है कि अगर उन्होंने कहीं पर अंदर कोई विस्फोटक छिपाया है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। इसके लिए बम डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम सामान के साथ पहुंची है, देखिए जो अंदर की तरफ जा रही है। वहीं हम अगर आपको दिखाएं तो इस पूरे गेट नंबर 5 को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कि आप ये देखिए स्वात की गाड़ी यहां पर मौजूद है। दरअसल 15 अगस्त के पहले मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तमाम एजेंसियों का रिस्पॉन्स टाइम देखा जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा।
1: मॉक ड्रिल में तमाम एजेंसियों को शामिल किया गया। इसमें बम निरोधक दस्ते से लेकर घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना शामिल है। दिल्ली सचिवालय की तरह ही कनॉट प्लेस पर मॉक ड्रिल की गई। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी कनॉट प्लेस पर बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं।
8: 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी सिक्योरिटी अलर्ट है। एक बार फिर से एनएसजी और दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा मॉक ड्रिल जो है कनॉट प्लेस में हो रहा है। इस मॉक ड्रिल का थीम बेसिकली ये रखा गया है कि अगर कनॉट प्लेस में किसी भी तरह का आतंकी हमला हो जाता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और पुलिस की टीम है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये जो पूरा इलाका है इनर सर्कल का कनॉट प्लेस में, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए इस वक्त, और हर जगह अलग अलग जगह बैरिकेड लगा करके और ये डू नॉट क्रॉस दिल्ली पुलिस की जो टेप्स हैं ये लगा करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक के बाद एक एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं और जो कथित तौर पे घायल होंगे जो लोग ऐसे हमले में, उन्हें किस तरीके से वहां से निकाला जाएगा और कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें सही समय पर उपचार मिल सके, इन चीजों की डिटेल में तैयारी की जा रही है।
1: ये तस्वीरें दिल्ली के शहादरा इलाके की हैं। यहाँ पर भी आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। यहाँ बम ब्लास्ट का सीन क्रिएट किया गया जिसमें धमाके के बाद कुछ लोग घायल हो गए। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों का रिस्पांस टाइम देखा गया।
9: इंडिपेंडेंस डे के अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग व्हीकल इंस्टॉलेशन पे मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसी के तहत ये गांधीनगर मार्केट में आज एक हमने मॉक ड्रिल किया है जिसमें ये कॉल दी गई थी कि एक एक्सप्लोजन होने के कारण दो लोग इंजर्ड हैं। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए सारे कंसर्न एजेंसियों को सूचना दी गई और सबने अपने अपने तरीके से क्विक वे में रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें लोकल पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, PCR ने किया है, हमारी BDT की टीम ने किया है, कैट्स एम्बुलेंस ने किया है और इस कार्रवाई के तहत उन्होंने पहले पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और जो इंजर्ड लोग थे उनको सुरक्षित उन्होंने फिर हॉस्पिटल पहुंचाया है। पूरी कार्रवाई में करीब 10 से 12 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रहा है। इससे जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है हमारी इंप्रूव हुई है ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो उस पर हम बहुत क्विक तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाए।
1: दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 17 घंटे तक मॉक ड्रिल की गई। इस पूरी एक्सरसाइज को गृह मंत्रालय के निर्देश पर NSG और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कोऑर्डिनेट किया। इसका मकसद ये देखना था कि अगर दिल्ली में एक साथ कई जगह आतंकी हमला होता है तो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां कितनी जल्दी मौके पर पहुंचती हैं और आपस में कितना बेहतर तालमेल बनाकर हालात को काबू में करती हैं। साफ है कि 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खासतौर पर दिल्ली में अभेद सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है ताकि आतंकियों की नापाक साजिश पर पानी फेरा जा सके। आज तक ब्यूरो।
10: दर्शक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे पाकिस्तान फिर से टूट के कगार पर, मुनीर की सेना ने बरसाए बॉम्ब। देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिजली का बिल, पेंट,
1: तो मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
2: इतना माही वे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
7: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
8: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
9: लायन डेट नट बाइट्स।

0: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: पापा
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया
2: है। हाँ ला भाई मेरा बैट,
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार,
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
5: In association with
6: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
7: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: जंतर मंत्र पर मिली कामयाबी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जोश हाई है। आंदोलन की पहली सफलता ने हौसले बुलंद किए तो अब सीजन दो की भी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में बुधवार को सीजेपी की बैठक के बाद अभिजीत दीपक ने कहा कि जल्द जंतर मंतर सीजन दो शुरू होने वाला है।
1: बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन टू कब आने वाला है जंतर मंतर। इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन टू बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है।
0: तो आखिर प्लान क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी का ये सीजन दो क्या है, इसका खुलासा अभिजीत दीपक के ने तो नहीं किया, लेकिन सीजेपी प्रवक्ता ने सीजन दो को लेकर सवाल का जवाब दिया।
2: आपने कहा अभिजीत ने कहा सीजन टू आएगा, कब आएगा, क्या कुछ बोलेंगे?
3: देखिए सीजन टू तो यही है, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है ऐसे निकम्मी सरकारों के खिलाफ, निकम्मे ऑफिसर्स के खिलाफ, वही सीजन टू है।
0: वैसे सीजेपी देश भर के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की हालत सुधारने की मुहिम 15 अगस्त से शुरू करने जा रही है।
4: ये कैंपेन रहेगा जो हमारे गांव की जो स्कूल है पूरे देश भर में जिनको इग्नोर किया गया इतने साल से, उन स्कूलों को ठीक करने की मुहिम है।
0: ऐसी मुहिम से पहले कॉकरोच जनता पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। दीपक का आरोप है कि उन्हें मीटिंग के लिए जगह देने से रोका जा रहा है। ऐसे गंभीर आरोप और जंतर मंतर सीजन दो वाले बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है।
5: ये कोई पिक्चर नहीं है कि सीजन वन सीजन टू, बल्कि छात्र को भी सोचना चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या है। आप रोट लर्निंग चाहते हैं या फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एग्जामिनेशन प्रोसेस में, तो सरकार के साथ संवाद कीजिए। संवाद जब होता है तब सॉल्यूशंस आते हैं, सिर्फ बयानबाजी पे नहीं होता है।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के अगले कदम को लेकर सरगर्मी तेज है। आज तक ब्यूरो।
6: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने बैठे बच्चे, इसी बीच सीएनआई गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली सायरा खड़ी होती है, कहती है
7: आधा से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी टाइकोंडो का नेशनल खेलने, सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था, वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे, इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी।
6: इतना सुनते ही वहाँ सब सन्न रह जाते हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। तब मुख्यमंत्री बोलते हैं,
8: अच्छा चलो चलो बेटा अभी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। कौन सी स्कूल की है? सीएमआई की। अच्छा ठीक है, नोट कर ले नाम, है ना, एक बार देख।
6: ये वीडियो सामने आने के बाद कुछ देर बाद एक दूसरा वीडियो आता है जिसमें छात्रा सायरा बताती हैं कि वो 1.5 लाख रुपए की कमी की वजह से इंटरनेशनल स्तर पर खेलने रोमानिया नहीं जा सकी। ये बात बताते हुए वो मुख्यमंत्री के सामने भावुक हो गई थी। पूरी बात बताने का दावा नए वीडियो में किया गया।
9: मैं 10 तारीख को सीएम सर के प्रोग्राम में गई थी जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में क्वानकीडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपए दे रही थी, बाकी का खर्चा मुझे करना था और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी।
6: अब दो बयानों को लेकर तीन तरह की चर्चा चलती है। पहली चर्चा, क्या बाद में छात्रा से बयान में गोलमटोल बात कराई गई, क्या इसके पीछे प्रशासन का दबाव? दूसरी चर्चा, क्या सरकारी स्तर पर खेल विभाग, महिला बाल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग ये खुद नहीं देखते कि ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे स्पॉन्सर किया जा सके? और तीसरी चर्चा इस बात की है कि कम से कम छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री तक के सामने अपनी बात कहकर सच्चाई सामने लाने लगे हैं। अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर पाकिस्तान की। कैसे बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान किया और जश्न मनाया, तो आसिम मुनीर की सेना ने बलूचिस्तान के लोगों पर F-16 फाइटर प्लेन से बमबारी कर दी। इसमें 30 लोगों की मौत हो गई और बड़ी तबाही मच गई। एक तरफ पाकिस्तान बेगुनाहों का खून बहा रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का आतंकवाद प्रेम भी पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद अहमद खुद को आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद का गुलाम बता रहे हैं। तो आइए देखिए पाकिस्तान कैसे अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है।
12: बलूचिस्तान ने ली आजादी, मुनीर की सेना ने बरसाए बम।

0: सईद का फोन नंबर मिला था। सुनिए हाफिज सईद का ये गुलाम कल क्या कह रहा था।
1: मैं तो सिर्फ एक ही बात हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमरीका में और उन्होंने मुझे अमरीका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। और आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आपने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं इस पाकिस्तान के लिए और हम भी इंशाअल्लाह ताला हाफिज सईद साहब के साथ हैं।
0: आतंकियों का ये गुलाम उनके ही इशारे पर भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आया। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी क्योंकि ऑपरेशन से दूर में पड़ी बार अब तक पाकिस्तान भूला नहीं है। इसके बावजूद शेख राशिद ने भारत को गीदड़ भभकी दी। पहले उसका ये बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे जिस स्टेज से ये बयान दिया गया उस पर लश्कर के कितने खूंखार आतंकी बैठे थे।
1: कभी भी हिंदुस्तान मौका जाया नहीं करेगा और जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखता है तो उसके अंदर पाकिस्तान पर जो कुछ उसका रोल है उससे वो रोल अदा करने की नाकाम कोशिश करता है। इंशाअल्लाह ताला नेस्त तो नाबूद कर देंगे अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा। ना चिड़िया चहकेंगी हिंदुस्तान में, ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेंगी और ना ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम हो सकेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाए। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हाफिज सईद साहब के साथ हैं।
0: ऑपरेशन से दूर के बाद भारत ने दुनिया भर में अपने प्रतिनिधि भेजकर पाकिस्तान के जिस आतंक परस्त चेहरे से पर्दा हटाया था आज उसकी गवाही पाकिस्तान से खुद ही दी जा रही है। आज तक ब्यूरो
2: खबर ईरान के बारूदी बवंडर के आगे अमेरिका के सरेंडर की। ईरान युद्ध अब ट्रंप के गले की हड्डी बन गया जो न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। हर दिन ट्रंप के लिए युद्ध के फ्रंट से बुरी खबरें आ रही हैं। नई खबर ईरान युद्ध के मोर्चे पर तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन से जुड़ी है। एक मीडिया रिपोर्ट में छपी खबर के अनुसार युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर तैनात अमेरिका के सैनिक इतने डिप्रेशन में हैं कि आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। अब सैनिकों के लिए लंबे समय तक युद्धपोत पर तैनात रहना मुश्किल है।

2028 तक अमेरिका से जंग लड़ेगा ईरान। ईरान का युद्ध वाला लॉन्ग टर्म प्लान तैयार। जब तक ट्रंप राष्ट्रपति तब तक चलेगा युद्ध। युद्ध लंबा खींचने से तनाव में अमेरिकी सेना। छह सैनिक कर चुके हैं सुइसाइड की कोशिश। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर फंस गए सैनिक। ईरान का बारूदी बवंडर, अमेरिका का सरेंडर। एक तरफ ईरान ने 2028 तक अमेरिका के साथ युद्ध जारी रखने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ अमेरिकी युद्ध पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात अमेरिकी सैनिक बढ़ते मानसिक दबाव के चलते खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। नेवी टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात 6 अमेरिकी जान देने के लिए समंदर में कूद चुके हैं, जिन्हें बचा लिया गया। दरअसल लंबे वक्त से युद्ध पोत पर तैनात होने की वजह से अमेरिकी सैनिक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इस युद्ध पोत पर करीब 5,000 अमेरिकी नौसैनिक और मरीन तैनात हैं। अमेरिकी सांसद माइक लेविन ने आरोप लगाया है कि युद्ध पोत पर तैनात सैनिकों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन के शावर में फफूंद लग गई है। युद्ध पोत के कई टॉयलेट अब इस्तेमाल लायक नहीं है। सैनिकों को मिलने वाली लॉन्ड्री की सुविधा बंद है। सैनिकों को

0: अब लंबे वक्त से गर्म पानी नहीं मिल रहा है। सैनिकों को कई हफ्तों से खाने की कमी से जूझना पड़ रहा है। यहाँ तक कि रोजमर्रा का सामान भी अब मुश्किल से मिल रहा है। चंद महीनों के युद्ध में ही ईरान ने अमेरिकी सैनिकों की मुश्किल बढ़ा दी है। सोचिए युद्ध 2028 तक खींचा तो क्या होगा। क्योंकि IRGC ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि जब तक व्हाइट हाउस में ट्रंप रहेंगे तब तक अमेरिका के साथ युद्ध विराम की संभावना कम है। IRGC के कमांडर इन चीफ के सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी ने दावा किया है, एक तरीका है कि जंग को तब तक लंबा खींचा जाएगा जब तक कि अगले राष्ट्रपति का कार्यकाल ना शुरू हो जाए और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जाए। इससे ईरान पर हमला करने से पहले दुश्मन सोचेगा और उसे पता रहेगा कि इसका क्या अंजाम होगा। ये IRGC का अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधा जवाब है, क्योंकि ट्रंप बार बार यही दावा कर रहे हैं कि हुर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल है और ईरान युद्ध हार चुका है।
1: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person that trusts Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But we right now, we're in a very good position.
0: Trump ki mane to Ameriki sena Iran ko ghutno ke bal le aayi hai. न तो अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ने की ताकत ईरान के पास बची है और न ही IRGC अब युद्ध लड़ने के लायक बची है। हर कोई हमारी नौसैनिक घेराबंदी को स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई यही है कि ईरान ने अमेरिकी कार्रवाइयों का जवाब देने की अपनी क्षमता खो दी है। उनके पास न तो नौसेना है न ही वायुसेना। उनके बचे हुए सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा है। IRGC बर्बाद हो चुकी है और भाग रही है। उनकी लीडरशिप की स्थिति भी बहुत अनिश्चित है। ट्रंप के इस बयान पर ईरानी सेना ने सीधा पलटवार किया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा है कि हुर्मुज पहले की तरह ही पूरी तरह से ईरान के प्रबंधन और नियंत्रण में है। ईरान के सशस्त्र बलों की अनुमति और निगरानी के बिना कोई भी वाणिज्यिक जहाज या तेल टैंकर हुर्मुज से सुरक्षित रूप से गुजर नहीं पाया है और न ही गुजर पाएगा। ईरान के सशस्त्र बल क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और किसी भी प्रकार और स्तर के खतरे पर पहले से कहीं अधिक बलपूर्वक जवाब देंगे। हुर्मुज को लेकर ईरान की नीति एकदम साफ है। ईरानी सांसद अली रेजा सलीमी ने ऐलान किया है हुर्मुज ईरान के लिए परमाणु बम से कहीं अधिक मूल्यवान है और इसका उपयोग प्रतिबंधों और मुआवजे के दावों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। हुर्मुज एक वरदान है जो ईश्वर ने ईरान के हाथों में दिया है। अमेरिकी कार्रवाइयों ने ईरान के लिए इस जलमार्ग का इस्तेमाल करने का रास्ता खोल दिया है। हुर्मुज के साथ हम प्रतिबंधों और मुआवजे के मुद्दे को हल कर सकते हैं और जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब यही है कि ट्रंप की सबसे कमजोर नस हुर्मुज है और ईरान ने इसी कमजोर नस को दबा रखा है। भले ही ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे ईरान के साथ युद्ध विराम पर चर्चा जारी है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ युद्ध विराम को लेकर कोई वार्ता नहीं चल रही है। अब ईरान अमेरिका के साथ उसी भाषा में बात करेगा जो भाषा ट्रंप को समझ में आती है, यानी अमेरिका के साथ युद्ध विराम नहीं बल्कि ईरान महायुद्ध की तैयारी कर चुका है जो 2028 तक खींच सकता है। आज तक ब्यूरो।
2: ईरान युद्ध क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बन गया है, हमारे संवाददाता सुमित चौधरी बता रहे हैं।
3: सईद, आज के दौर के अंदर खासतौर पे जब बात करते हैं वॉरफेयर की, तो एक बड़ा आस्पेक्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, वो होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी आप सामने वाले दुश्मन को किस तरीके से साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करते हैं। इस समय डोनाल्ड ट्रंप मल्टीपल आप कह सकते हैं एंगल्स के ऊपर इस समय प्रेशराइज है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उनके लगातार हथियारों पर, उनके अपने सैनिकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हथियार या फिर उनके फाइटर एयरक्राफ्ट गिर रहे थे, ड्रोन गिर रहे थे, लगातार उन पर जो एयर डिफेंस मिसाइल्स की कमी की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जो झड़पें हैं जिसको को लेकर खासतौर पर ईरान में बहुत ज्यादा इस खबर को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये जरूर है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर इस तरीके की घटना होना लगातार अमेरिका के सोल्जर्स की मनोविज्ञान या फिर आप कह सकते हैं उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करती है। और ये भी आप देखिए कि ये इसलिए भी है क्योंकि इस समय यूएसएस अब्राहम लिंकन एक लंबे डिप्लॉयमेंट पर है, एक जंग की ऐसी डिप्लॉयमेंट है जहां पर करीबन 250 दिन से ज्यादा के डिप्लॉयमेंट पर उसको रखा गया है। लगातार 8 महीने से उसके सैनिक उस इलाके में मने हुए हैं और अभी तक पोर्ट कॉल नहीं हुआ। पोर्ट कॉल यानी अभी तक उसके किसी पोर्ट पर जाने की लगातार या फिर जमीन पर जाने की या फिर उसके आसपास के इलाके में हार्बर पर जाने की कोई कॉल नहीं है। यानी ये डिप्लॉयमेंट कितनी लंबी होगी ये भी तय नहीं है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका पर ही पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय जानते हैं कि अगर ये जो जंग है वो लंबी खींची तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा पूरे अमेरिका को झेलना पड़ सकता है। और अभी मौजूदा हालात में अगर आप देखें, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में रहेंगे यानी राष्ट्रपति के तौर पर रहेंगे तब तक वो लड़ने के लिए तैयार, तो ऐसे में अमेरिका के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। आप जब लंबी जंग की बात करते हैं, एक और बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूं, अफगानिस्तान से जब यूएस फोर्सेस को निकाला जा रहा था तो इसका सबसे बड़ा कारण यह बताया गया था कि जो लगातार कैजुअलिटीज हो रही है उनके सोल्जर्स की, उनका सीधे तौर पर इफेक्ट उनकी जीडीपी पे पड़ रहा है, डिफेंस बजट बढ़ता जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि जो कैजुअलिटीज हो रही है वो एक तरीके का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल रही है उनके सोल्जर्स पे, और शायद उसी ये दो बड़े कारण बने थे यूएस फोर्सेस को खासतौर पर अफगानिस्तान से निकालने की। और शायद उसी लंबे दौर की जंग अगर ईरान के मोर्चे पर भी होती है तो उसी तरीके का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट वो अमेरिकी सोल्जर्स पे यहां पे भी डालेगा।
2: दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे. उस वक्त मैंने किसी समाज का किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया. लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए.
3: बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं. बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर. लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे.

0: जैन जी वोटरों को साधने की नई सियासत का पहला चुनावी टेस्ट यूपी में होगा।
1: देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन।
0: बीजेपी को देश के जैन जी वोटरों से संवाद की राह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है। पीएम मोदी से मिले संकेतों के बाद अब 2027 के यूपी चुनाव से पहले यूपी सरकार के मंत्री जैन जी चौपाले लगाने की शुरुआत कर रहे हैं। यूपी में जैन जी को साधने के लिए बीजेपी की युवा टोली स्कूल कॉलेजों तक पहुंचकर उनसे सीधा संवाद करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस अभियान के तहत हर विधानसभा में 10-10 युवाओं की टीमें तैयार होंगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं, उनकी अपेक्षाएं और उनकी राय जानेंगे। इस अभियान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की अहम भूमिका होगी। जैन जी को लेकर इस रणनीति की यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब यूपी बीजेपी के बड़े नेता लगातार केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं। बुधवार को यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में यूपी चुनाव के मद्देनजर चर्चा हुई है। वैसे जैन जी पर दाम विपक्ष का भी रहने वाला है। दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट को समर्थन देने वालों में अखिलेश यादव बेहद सक्रिय थे। इस बीच जैन जी को लेकर बीएसपी की रणनीति भी सामने आई है। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जैन जी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जालौन की माधोगढ़ सीट से बीएसपी ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान, तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। मायावती के सोशल मीडिया पोस्ट्स में लगातार छात्रों और युवाओं की बात की गई है। उनके निशाने पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी है। हाल में आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को अंकल कहा था, जिस पर अखिलेश प्रतिक्रिया देने से बचे थे।
2: आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा है?
3: बोला मैं 30 का हूँ,
2: आपको अंकल कहा है?
3: क्या वो जैन जी? देखिए ऐसा है, उस बहस में हम और आप न उलझे। और जो सीएस बात है, एक सिक्के के दो पहलू, और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम चलता ही रहे।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मायावती की रणनीति को समझकर बीएसपी पर पलटवार कर रहे हैं। जैन जी के साथ साथ महिला वोटरों पर भी राजनीतिक दलों की नजरें हैं। यूपी में महिलाओं को सालाना 50,000 रूपए, जिसमें चुनाव से पहले ही 20,000 रूपए ट्रांसफर करने की संभावना वाली स्कीम पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है, वो भी भाजपा की पाप की कमाई है, जिसे यूपी की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेंगी, जिसे उप्र की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेंगी। यूपी की जागरूक महिलाएं पूछ रही हैं, जिन दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा करके चुनाव जीता था, वहां एक तरफ तो देने से आनाकानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे वापस मांग रहे हैं, और जो लौटा नहीं पा रही हैं, उन महिलाओं पर भाजपा थाने कचहरी पुलिस मुकदमे की निंदनीय कार्रवाई कर रही है। पोस्ट के अंत में अखिलेश ने लिखा है, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। युवा और महिला किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं, मौजूदा माहौल में चुनावों में इनकी भूमिका और अहम हो सकती है, इसलिए यूपी में इन पर दांव लग रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म मॉनसून सत्र, सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही है राजनीति, राहुल गांधी ने बताया संविधान का अपमान, पहले नड्डा ने जताया खेद। जेपी ऐसी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी के ताबड़तोड़ एक्शन, 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी, रांची में छात्रों का आंदोलन भी जारी। और उत्तराखंड के पीपलकोटी में बड़ा हादसा, हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में पानी और मलबा आने से फंसे कई लोग, अब तक निकाले गए 16 मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी की नजर।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यूपी के बागपत से दो दोस्त गायब हो जाते हैं। घर वाले दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में भी लिखाते हैं। 20 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिलता। तभी ठीक 20वें दिन एक मुखबिर पुलिस को फोन करता है। वो पुलिस से कहता है कि इलाके के एक मंदिर के हवन कुंड के ठीक नीचे खुदाई कीजिए, दोनों दोस्त वहीं मिलेंगे। इसके बाद पुलिस मजदूरों को साथ लेकर उसी मंदिर में पहुंच जाती है।
1: ये बागपत के चांदीनगर थाना इलाके में मौजूद गणेश मंदिर है। इसी मंदिर के अंदर जिस जगह पर हवन कुंड था, ठीक उसी जगह पर इस वक्त यहाँ खुदाई चल रही है। मंदिर के बाहर पुलिस वाले मौजूद हैं। मंदिर के इर्द गिर्द भी लोग जमा हैं। हर कोई हैरान है कि एक मंदिर के अंदर हवन कुंड वाली जगह के नीचे पुलिस खुदाई क्यों करवा रही है। करीब घंटे भर की खुदाई के बाद आखिरकार लोगों के सारे सवालों के जवाब बाहर आ गए। मंदिर के अंदर इस गड्ढे से एक नहीं, एक साथ दो दो कंकाल बाहर आते हैं। लेकिन जब तक ये कंकाल बाहर आते या उससे पहले ये खुदाई शुरू होती, उससे पहले ही इस मंदिर के महंत यानी पुजारी यहाँ से भाग चुके थे। पुलिस दोनों कंकाल को कब्जे में लेती है और अस्पताल भेज देती है। हालांकि कंकाल से मरने वाले की शिनाख्त मुश्किल थी, लेकिन पुलिस को पहले से ही पता था कि ये दोनों कंकाल किसके हैं। मंदिर के अंदर इस खुदाई और इस कंकाल की सच्चाई जाने उससे पहले इन तीन तस्वीरों की कहानी आपको बताता हूँ। ये पहली तस्वीर मंदिर के इसी महंत की है। कपड़ों पर मत जाइएगा। महंत जी के साथ एक लड़की है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। ये दूसरी तस्वीर अंकित की है। महंत जी तस्वीर में जिस लड़की का हाथ पकड़े हैं, वो लड़की अंकित की बहन है। ये तीसरी तस्वीर इसरार की है। इसरार न सिर्फ अंकित का दोस्त है, बल्कि दोनों के घर बिल्कुल एक दूसरे के आसपास हैं। अब हुआ यूं कि 25 जुलाई को अचानक अंकित और इसरार गायब हो गए। दोनों घर से एक साथ निकले थे, ये कहकर कि मंदिर जा रहे हैं, इसी गणेश मंदिर में मंदिर के महंत से मिलने। लेकिन उसके बाद इन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। पहले तो घर वालों ने खुद से ही दोनों को ढूंढने की काफी कोशिश की। फिर जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और दोनों की तलाश शुरू कर दी, पर दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। इधर कांवड़ शुरू हो चुका था, शायद पुलिस उसके बंदोबस्त में ज्यादा बिजी थी। तभी 12 अगस्त को बागपत पुलिस को एक मुखबिर से एक खबर मिलती है। खबर ये कि अंकित और इसरार कहीं गायब नहीं हैं, बल्कि वो दोनों इसी मंदिर में हवन कुंड के नीचे दफन हैं। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मंदिर पहुंचती है और शुरू में जो आपने देखा वही खुदाई शुरू होती है। मुखबिर की खबर सही थी, गड्ढे से दो कंकाल मिले।
2: दिनांक 29 जुलाई 2026 को थाना चांदीनगर में सूचना प्राप्त हुई, ग्राम लहचौड़ा के रहने वाले दो युवक लगभग 3 दिन से गुमशुदा हैं, जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना चांदीनगर से आवश्यक पता रसी सुराग रसी हेतु टीमें लगा दी गई। कल दिनांक 12 अगस्त 2026 को थाना चांदीनगर ने इस घटना का सफल अनावरण कर लिया है और तथ्य कुछ इस प्रकार है। इन दोनों युवकों की जान पहचान पास के ही मंदिर के पास रहने वाले एक महंत से हुई थी और ऐसा बताया गया कि इस व्यक्ति का मृतक अंकुर के परिवार में किसी के साथ अवैध संबंध था और इसी के चलते दोनों में आपस में विवाद था। दिनांक 25 जुलाई को ही उक्त अभियुक्त ने अपने दो शिष्यों और बेटे के साथ मिलकर इन दोनों व्यक्तियों की हत्या करके इनको अपने आवासीय परिसर में ही दफन कर दिया था। आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों शव का उत्खनन किया गया है और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। घटना में शामिल दो अभियुक्त उज्जवल और कृष्णा यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष दोनों अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
1: दरअसल जैसे ही मंदिर के महंत नरेश नाथ को पता चला कि मंदिर में पुलिस आने वाली है, वो वहां से भाग चुका था। पुलिस का कहना था कि 12 अगस्त को मुखबिर की खबर से पहले उन्होंने अंकित और इसरार की कॉल डिटेल और लोकेशन की भी जाँच की थी। आखिरी लोकेशन दोनों का इसी मंदिर के करीब मिला था।
3: पिछले 20 रोज बाद रात में ही खबर आई, पुलिस वाले आए, उन्होंने बताया कि हमने खोजबीन कर ली है, वहाँ निचोड़ा मंदिर पे ही मतलब वो महाराज ने मार के दबा रखे हैं जैसे भी। तो पता ये चला कि वहाँ धूना था और धूने के नीचे 3-4 फीट गड्ढा खोद के वो दबा रखे, मन से निकलवाए, हो जब उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले गए।
4: लापता कब हुआ था?
3: लापता 25 तारीख या 24 तारीख में हुआ था।
4: गुमशुदगी कब
3: लिखी? गुमशुदगी 3 दिन बाद लिखवाई गई।
4: क्या कुछ बताया पुलिस ने उस जब आप वो तलाश कर रहे थे? आप
3: जब तो वो यही बोलते थे कि भाई खोजबीन कर रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा आपको इतला कर देंगे।
4: अब क्या मांग है आपकी, किस तरीके से आप चाहते हैं कि क्या कुछ पता चले?
3: अब तो यही मांग है कि उस मुलजिम को पकड़ा जाए और उसका एनकाउंटर किया जाए।
4: क्या लगता है बड़ी घटना है जिसके मंदिर जैसे उस पर तो विश्वास भी
3: उठा? तो ये तो आस्था का विषय था, सब आस्था में लेके लोगों को उन्हें महाराज ने जो आस्था में लेके लोगों का पागल बनाया है और बड़ी घटना को अंजाम दे दिया।
1: दरअसल महंत नरेश नाथ उत्तराखंड का रहने वाला है, लेकिन पिछले काफी वक्त से वो बागपत के लहचौड़ा गांव में रहता था। इसी गांव में अंकित और इसरार रहते थे। पुलिस के मुताबिक यहां रहने के दौरान ही नरेश नाथ अंकित की बहन के करीब आ गया। ये बात जब घर वालों को पता चली तो उन्होंने नरेश नाथ को समझाया। करीब 5-6 महीने पहले नरेश नाथ गाँव छोड़कर मंदिर में आ गया, लेकिन उसने अंकित की बहन का पीछा नहीं छोड़ा।
5: मैं फिलहाल मौजूद हूं अंकित के मकान पर, उस अंकित के जिसका शव मंदिर परिसर से मिला है। ठीक इसके पीछे जो है इसरार का मकान है, जो उसका दोस्त था, उसकी भी जो डेड बॉडी है वो मंदिर परिसर से मिली है। फिलहाल यहां गमगीन माहौल है, आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं, गलियां जो है फिलहाल सन्नाटा पसरा है। जो अंकित के परिवार से मिलने के लिए लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर हैं, अब वो परिवार को संतावना देने, क्योंकि परिवार ने इकलौता चिराग खोया है।
3: यहाँ रह के गए और यहीं लोगों का आना जाना था, यहीं उनसे जान पहचान हुई और पूजा पाठ करने जाते थे बस ऐसे ही। फिर वो यहीं से 6 महीने बाद लगभग 5-6 महीने यहाँ रहे और उसके बाद वहाँ चले गए यहाँ नज़दीकी गांव निचोड़ा में, वहाँ मंदिर पर जाकर रहने लगे। अब कुछ लोग थे जो एक दो वहाँ भी जाते थे बाद में, और ये अंकित और ये इसरार एक दिन गए थे बाइक पे बाबू जी के महाराज के वहीं, और वहां जाके उनकी क्या बात हुई क्या ना हुई बस वहीं से ही वो गायब हो गए।
1: पुलिस के मुताबिक 25 जुलाई को अंकित इसरार के साथ बाइक पर महंत नरेश नाथ को समझाने और अपनी बहन से दूर रहने के लिए चेतावनी देने मंदिर गया था। इसी बात पर नरेश नाथ भड़क गया और उसने अपने 3 शिष्यों के साथ मिलकर दोनों को मार डाला। कत्ल के बाद चारों ने मिलकर मंदिर के ही हवन कुंड के नीचे गड्ढा खोदा और लाशें दफना दी। किसी को शक न हो इसीलिए लाश को दफनाने के बाद ऊपर इंटरलॉकिंग टाइल्स तक लगवा दी। पुलिस अब 2 आरोपी कातिलों को तो पकड़ चुकी है, लेकिन महंत और उसका एक साथी अब भी फरार हैं। मनुदेव उपाध्याय, बागपत, आज तक।
0: एक पत्नी को एक परफेक्ट मर्डर करना था, इसके लिए उसने लंबी प्लानिंग की, कैसे कब और कहां, पुलिस को उलझाना है, कैसे सबूतों तक पहुंचने से पहले पुलिस को रोकना है, उसने ये सारी तैयारी की, बस वो एक गलती कर गई, और वो ये कि इसी तैयारी के चक्कर में कदम कदम पर वो राजदार बनाती चली गई।
1: कर्नाटक के बेलगावी के इस सुनसान इलाके में इस वक्त पुलिस एक खास मिशन पर है। इस मिशन को पूरा करने के लिए पुलिस के साथ कुदाल और फावड़ा लिए मजदूरों और सफाई कर्मियों की एक पूरी टीम है। टीम में शामिल लोग जंगलों के बीच एक तय जगह पर पहुंचकर रुक जाते हैं। पहले जगह की पहचान की जाती है और फिर शुरू होती है जमीन की खुदाई। असल में ये खुदाई एक ऐसी लाश के लिए है जिसकी मौत करीब 3 महीने पहले हो चुकी है और मौत की वजह हार्ट अटैक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस शख्स की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई हो उस मौत के पीछे कोई साजिश तो हो ही नहीं सकती। तो फिर आखिर पुलिस ऐसे किसी आदमी की लाश को खोदकर बाहर निकालने की कोशिश में क्यों लगी है? आखिर ऐसा करने के पीछे क्या राज है? तो इस सच को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक वीडियो की कुछ लाइनें सुननी चाहिए। ये वीडियो चूंकि कन्नड़ में है तो हम इस आदमी की कही गई बातों को समझने के लिए साथ में इसका हिंदी तर्जुमा भी पेश कर रहे हैं।
6: ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇರಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತದೆ. ಅವರ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿರು ಹಿಂಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ತಗನಿ ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳ ಭಾಳ ಆಗ್ಯಾವು, ಇವ್ ಸಂದೀಪ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬಿಡ್ದು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಹುಳುಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಔಷಧ ನಾನು ಕೊಡಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಮರನೇ ದಿವಸ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಾವಾಗೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಮಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾವೈತಿ. ಅದನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಶರೀರ ರೀಚೆಕಪ್ ಆಗಬೇಕದ, ಮರು ತಪಾಸಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅನುಮಾನ ಅವ್ರು ಅವಾಗೇನು ಇರು, ಈಗ ನನಗದು ಫುಲ್ ಡೌಟ್ ಬರಾಯ್ತು.
1: ತು ಸುನಾ ಅಪ್ನಿ ಯೇ ಜಿಸ್ ಸಂದೀಪ್ ನಾಮ್ ಕೆ ಶಖ್ಸ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ, ಪುಲಿಸ್ ಇಸ್ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಉಸಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಿ ಲಾಶ್ ಖೋದ್ ಕರ್ ಬಾಹರ್ ನಿಕಾಲ್ನೆ ಮೇ ಜುಟಿ ಹೈ, ತಾಕಿ ಉಸೆ ಕಬ್ಜೆ ಮೇ ಲೇಕರ್ ದೋಬಾರಾ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಿಜ್ವಾಯಾ ಜಾ ಸಕೆ. ಸಂದೀಪ್ ಕಿ ಲಾಶ್ ಕಾ ಪಹಲೆ ಹಿ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮೇ ಉಸ್ಕಿ ಮೌತ್ ಕಿ ವಜಹ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬತಾಯಿ ಜಾ ಚುಕಿ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ ಮೌತ್ ಕೆ 3 ಮಹೀನೆ ಬಾದ್ ಅಬ್ ಇಸ್ ನೌಜವಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ನೆ ಸಂದೀಪ್ ಕಿ ಮೌತ್ ಕಿ ಪೂರಿ ಕಹಾನಿ ಪಲಟ್ ದಿ ಹೈ. ಅಬ್ ಇಸ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಕಿ ಹಮ್ ಔರ್ ಆಗೆ ಬಢೆ, ಪಹಲೆ ಇಸ್ ನೌಜವಾನ್ ಕಿ ಅಸ್ಲಿಯತ್ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾ ದೇತೆ ಹೈ. ಯೇ ನೌಜವಾನ್ ಕೋಯ್ ಔರ್ ನಹೀ ಬಲ್ಕಿ ಉಸಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಿ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಕಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೈ, ಜಿಸ್ ಸುಮಾ ಪರ್ ಅಬ್ ವೋ ಅಪ್ನೆ ಪತಿ ಕೆ ಕತ್ಲ್ ಕಾ ಇಲ್ಜಾಮ್ ಲಗಾ ರಹಾ ಹೈ. लेकिन मौत की इस पलटी कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले मरने वाले शख्स के बारे में जानने के साथ साथ उसकी मौत के पूरे सीक्वेंस को भी समझना होगा. तो आइए अब आपको ये सच जानने के लिए 3 महीने पीछे लिए चलते हैं. बेलगावी के रहने वाले संदीप मंजरी एक पूर्व सैनिक यानी एक सर्विसमैन थे. 13 मार्च को वो अपने दोपहिया वाहन से एक मेले से घर लौट रहे थे और इसी दौरान एक हादसे का शिकार हो गए. असल में उनकी बाइक सड़क पर ही फिसल गई थी जिसके चलते उन्हें चोटें आई. इसके बाद उन्हें पास के ही एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया और फिर उनकी पत्नी सुमा मंजरगी ने उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करा दिया.
7: सो ऑन 13th of March 2026 इनिशियली ए रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस. द पर्सन कॉल्ड संदीप कालगोड़ा मंजरगी हु इज नेटिव ऑफ Godagiri village and he lives with his wife. He is a ex-army person. He retired from army in the month of December 2023. After retirement, he settled in his native village.
1: Magar Sandeep ke parivar ko tab gehra sadma laga jab is road accident ke 2 din baad unki heart attack se maut ho gayi. एक मामूली सी एक्सीडेंट के बाद किसी की हार्ट अटैक से मौत की बात अपने आप में थोड़ी हैरान तो जरूर करती थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर तमाम डॉक्टरों की राय कुछ ऐसी ही थी तो फिर सभी को इस पर यकीन करना पड़ा. लेकिन अभी इस मौत को कुछ ही रोज गुजरे थे कि संदीप की पत्नी सुमा के बॉयफ्रेंड पुंडलिक डोम्बर की ओर से सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो ने पूरी कहानी में ट्विस्ट ला दिया, क्योंकि पुंडलिक संदीप मंजरगी की मौत को कत्ल बता रहा था और उसकी पत्नी सुमा को संदीप का कातिल. लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, पुंडलिक डोम्बर संदीप और सुमा के बीच कैसे आया. तो जवाब है, पुंडलिक कभी संदीप डोम्बर का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था और संदीप के साथ बिजनेस करते करते वो कब संदीप की पत्नी सुमा के करीब आ गया संदीप को इसकी खबर ही नहीं लगी.
7: पुंडलिक डोम्बर was running a small shop, eatery. In that eatery, he had a regular interaction. Over the period of time, both of them discussed to develop a eatery. And they started a new eatery in Hidkal Dam. So during this, Mr. Sandeep, who is an ex-army person, his wife, Suma Manjargi, and Pundalik developed an extramarital affair.
1: पुंडलिक की माने तो सुमा ने न सिर्फ उसे भविष्य में भी साथ रहने का झांसा दिया बल्कि अपने साथ साथ खुद उसके बच्चों को भी साथ में रखने की बात कही. इसके बाद वो सुमा को लेकर इमोशनल हो गया था. लेकिन जुर्म की असली कहानी तब शुरू हुई जब पूर्व फौजी संदीप मंजरगी की पत्नी सुमा ने अपने पति को ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी. इतना ही नहीं, संदीप की हत्या से पहले उसके नाम पर सुमा ने करीब 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस भी करवाया ताकि उसकी मौत के बाद वो 2 करोड़ रुपए उसे आसानी से मिल जाए और वो उन्हीं रुपयों से बाकी की जिंदगी पुंडलिक डोंबर के साथ मजे से गुजार सके।
7: इन द मीन टाइम सुमा सुमन टू मर्डर हिम इन एडवांस दे हैड ओन इंश्योरेंस स्कीम they took insurance scheme for Mr. Sandeep Kalegowda. They took three insurance scheme from SBI and HDFC. In total, in this insurance scheme, if the person Sandeep died of accident, the family will get 2 crore.
1: इसके बाद जिन हालात में संदीप की मौत हुई उसके घर वालों को उसकी मौत को लेकर शक होने लगा। इस बीच उन्हें संदीप के 2 करोड़ के इंश्योरेंस की बात भी पता चली और अब तो सुमा के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी पोल खोलने वाला वीडियो भी शेयर कर दिया था। ऐसे में पुलिस ने नए सिरे से इस मामले की जांच शुरू की और जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। संदीप के कत्ल की साजिश में सिर्फ उसकी पत्नी सुमा ही नहीं बल्कि उसका वो बॉयफ्रेंड पुंडलिक डोंबर भी शामिल था जो खुद को बेकसूर और सुमा को कसूरवार बताने पर तुला था। पुलिस की माने तो दोनों ने कत्ल की साजिश तो पहले ही रच ली थी लेकिन उन्हें सही मौका नहीं मिल रहा था। मगर जब 13 मार्च को संदीप का रोड एक्सीडेंट हुआ तो फिर दोनों ने संदीप को मारने की प्लानिंग को अमल में लाने का फैसला कर लिया और उन्हें जहर देकर मारना तय किया।
7: बोथ सुमा एंड पुंडलिक बोथ ऑफ देम प्लान टू मर्डर एंड इंश्योरेंस वॉज टेकन ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक आफ्टर दैट So in the meantime, there was a minor accident took place. So now they plan to murder this fellow by using poison.
1: Accident के बाद जब दोनों को इस मौके का फायदा उठाने का आइडिया आया तो उन्होंने सबसे पहले संदीप को सरकारी अस्पताल से एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया, वो भी तब जब उनकी चोटें गंभीर नहीं थी। इसके बावजूद उन्हें एक स्पेशल रूम में रखा गया और उनके कत्ल की पूरी तैयारी कर ली गई।
7: So they were not initially they were not having much of idea. If initially after that non-fatal small accident, he was shifted to local hospital. Then he was shifted to private hospital in Ghataprabha, JJ Cooperative Private Hospital. He was admitted in special room. Even though he was not suffering from major illness, he was admitted into special room.
1: इसके बाद असली साजिश शुरू। उस अस्पताल में राहुल नाम का एक शख्स काम करता था जो पुंडलिक डोंबर का जानने वाला था। उसी ने सुमा और उसके आशिक पुंडलिक को यह आइडिया दिया कि वो संदीप को सीधे नसों में जहर देकर उसकी हत्या कर सकते हैं और इस तरह जान देने से किसी को इस कत्ल का पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद दोनों ने संदीप के साथ कुछ ऐसा ही किया मगर कत्ल की पहली कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन इसके अगले ही दिन दोनों ने एक और भी भयानक साजिश रची। अगले दिन वो राहुल की मदद से खुद ही सलाइन की बोतल खरीद कर लाए, उसमें जहर मिलाया और जहरीला सलाइन देने से पहले संदीप को 4 नींद की गोलियां खिला दी। संदीप बेहोशी की हालत में था और इसी दौरान उसे वो जहरीला सलाइन चढ़ा दिया गया। इस तरह जहरीला सलाइन चढ़ाए जाने के कुछ ही देर बाद हार्ट अटैक से संदीप की मौत हो गई। इसके बाद जब घर वालों ने अस्पताल के डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों का कहना था कि एक्सीडेंट के बाद किसी को हार्ट अटैक आ तो सकता है लेकिन हार्ट अटैक 1 या 2 दिनों के बाद यानी रुक कर आए ये थोड़ा संदिग्ध लगता है। इसके बाद संदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेलगावी के अस्पताल में भिजवाया गया और वहां से किसी जहर का पता लगाने के लिए शव के अंदरूनी अंगों यानी विसरा को जांच के लिए लेबोरेटरी में भिजवा दिया गया। लेकिन यहां से भी जो रिपोर्ट सामने आई उसमें संदीप के शरीर में किसी भी जहर के मिलने की बात नहीं थी।
7: After the poison was injected, within half an hour, he felt too much of unrest and he passed away of heart attack. The heart attack caused because of the medicine. So, doctors, the local doctor and hospital doctor expressed that there is a possibility during the accident there is a possibility of heart attack but after one day it is looking little suspicious so better to do the postmortem in the familiar hospital and where the facility more facilities are available the body was not postmortem was not done in the locality nearby hospital the body was shifted to the district level hospital in the district hospital postmortem was done the vital organs and viscera were sent to the regional forensic laboratory belagavi So after 2 months, 3 months we received the forensic report also, but forensic reports said that there was nothing was found, no poison was found, so everything was clear. So on paper it was looking like a road accident based the heart attack.
1: ये मौत शक के घेरे में तो पहले ही दिन से था, लेकिन सही मायने में इस केस का सुराग पुलिस को तब मिला जब सुमा के बॉयफ्रेंड रहे पुंडलिक ने सुमा पर कत्ल का इल्जाम लगाते हुए वीडियो जारी कर दी। पुलिस के माने तो ये इल्जाम शक पैदा करने वाले थे, इसलिए पुलिस ने पहले पुंडलिक को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की और फिर सुमा को भी पकड़ा। दोनों ने ही कत्ल में शामिल होने की बात कबूल कर ली। असल में कत्ल के बाद सुमा ने पुंडलिक को जो रकम देने का वादा किया था उसे लेकर उसकी और पुंडलिक के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद पुंडलिक ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पूर्व फौजी संदीप की मौत की असली कहानी सामने आ गई। पुलिस की जांच में ये साफ हुआ कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने के इरादे से सुमा और पुंडलिक ने जो साजिश रची, उस साजिश में 7 और लोग शामिल थे, जिनमें डॉक्टर से लेकर पुलिस वाले और यहां तक कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तक शामिल हैं। पुलिस ने अब तक इस सिलसिले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने संदीप के खून के नमूनों की दोबारा जांच करवाई और तब ये साफ हुआ कि संदीप को मौत से पहले जहर दिया गया था।
7: नागराज पीएम, हु इज सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, हु गेव द फाइनल रिपोर्ट। So these three forensic laboratory staff and officers, one P.O. Nappa Sahib, another person called lab assistant Chennaiya Adavi Swami Mutt, P.M. Nagaraj, who is a final, the report was given by Mr. Nagaraj. All of them in connivance with the accused gave the false report stating that there was nothing was found in the viscera and bloodstains. So then the viscera and bloodstains were send it to Bangalore, and in Bangalore we received a report that in bloodstains the poison was present. So in the meantime, Pundalik, another friend called Sachin, Pundalik revealed the same information to Mr. Sachin also. Sachin also, even though he knows about the crime, he has not revealed, and he tried to extract money from Suma. So Sachin was also arrested. In total 9 fellows were arrested. In this is the first time in Karnataka regional forensic laboratory has been compromised. When we came to know that, it was a big shock for us also, and we want to send a strong message, whomsoever it may be, let it be the police or any other person, the system has to be on the right place. If anybody commits any mistake or crime, nobody will be spared.
1: फिलहाल पुलिस ने कत्ल की साजिश रचने वाली बीवी और उसके आशिक के साथ साथ उन सारे लोगों को धर दबोचा है जो इस भयानक साजिश में शामिल थे। पुलिस का कहना है कि वो गुनहगारों को सजा तो दिलाएगी ही, जो सरकारी लोग इस साजिश में शामिल हैं, उन्हें नौकरी से भी निकाल बाहर किया जाएगा। सगय राज, बेंगलुरु, आज तक।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का,
9: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
8: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए,
10: प्रोटेस्टर है, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
11: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है,
12: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को, और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
13: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
8: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म मानसून सत्र, सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही है राजनीति, राहुल गांधी ने बताया संविधान का अपमान, पहले नड्डा ने जताया खेद। उत्तराखंड के पीपलकोटी में बड़ा हादसा, हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में पानी और मलबा आने की वजह से फंसे कई लोग, अब तक निकाले गए 18 मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी की नजर। और अंबाला के पंजू खरा साई विवाद मामले में बढ़ा बवाल, गुरसिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़ा सिख संगत, दोनों ही पक्ष से कई घायल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: नांदेड़ में गुरुद्वारे के बाहर सुखबीर बादल पर कृपाण से हमला, हमलावर गिरफ्तार, हाथ में लगी चोट। सुखबीर बादल पर हमले से हड़कंप मचा, सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को दबोचा, एटीएस आईबी और पुलिस करेगी जांच, फडणवीस ने दिए जांच के आदेश, शिंदे ने की बात। नांदेड़ गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के पूर्व सचिव रविंद्र सिंह बुंगई ने कहा गुरुद्वारे में हमला करना बहुत गलत है, हालात के बारे में प्रधानमंत्री फोन करके पूछताछ कर चुके हैं। मराठी नहीं सीखी तो लाइसेंस पर संकट है, महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी जरूरी है, 100 दिन की अतिरिक्त मोहलत की मांग की गई। महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर सियासत तेज हुई, ट्रांसपोर्ट सेल ने मांगी मोहलत तो सरकार बोली अतिरिक्त समय पर विचार संभव। कोल्हापुर में ई चालान के खिलाफ रास्ता रोको, पुलिस और आंदोलनकारियों में धक्का मुक्की हुई, 15 अगस्त को आमरण अनशन की चेतावनी। नागपुर में तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत हुई, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वाशिम में आवारा कुत्ते पर बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, काफी देर तक बुजुर्ग बचने की कोशिश करते रहे। गुजरात टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बोलबाला, लगातार 21 महीनों से नंबर वन के स्थान पर काबिज। टेस्ट ऑलराउंडर्स में भारत के रविंद्र जडेजा टॉप पर, पिछले 1556 दिनों से नंबर वन पोजीशन पर बरकरार हैं जडेजा। वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के तो शुभमन गिल भी नंबर वन पर हैं, 801 रेटिंग के साथ टॉप पोजीशन पर बने हैं शुभमन। वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के विराट कोहली 767 रेटिंग्स के साथ हैं तीसरे नंबर पर, वहीं रोहित शर्मा 758 रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर। मिर्जापुर के आशीष यादव ने जेवलिन थ्रो में अमेरिका में आयोजित U20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, गांव में लकड़ी के भाले से की थी शुरुआत। सरकार ने कैब कंपनियों को राइड कंफर्म होने से पहले टिप मांगने वाले फीचर्स को तुरंत हटाने के निर्देश दिए, बाइक या कैब से सफर पूरा होने के बाद ही ऐप पर मिलेगा टिप देने का ऑप्शन। फेस्टिव सीजन से पहले कार कंपनियों ने ग्राहकों के लिए खोला ऑफर्स का पिटारा, होंडा टाटा मारुति समेत कई ब्रांड्स की एसयूवीज और एमयूवीज पर मिल रही है 2.5 लाख रुपए तक की छूट। फेस्टिव सीजन में अस्थायी नौकरियों में बड़ा उछाल आने का टिंगलीज की रिपोर्ट में दावा, डिलीवरी वेयरहाउसेज और स्टोर सेक्टर में 15 से 20% तक बढ़ेंगी नियुक्तियां, वेतन में भी इजाफा। रेलवे में सुरक्षा फंड के इस्तेमाल में बड़ी खामियां मिलने पर सीएजी ने उठाया गंभीर सवाल, तय बजट का महज 21% खर्च होने से 20,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट अधूरे, बिना मंजूरी हुआ करोड़ों का खर्च। स्वास्थ्य बीमा में बड़े बदलाव की सरकार की योजना से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च कम होने के आसार, इलाज की दरें तय करने और क्लेम सेटलमेंट के लिए बनेगा नेशनल एक्सचेंज। बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी दो बड़ी फिल्में बंटवारा, 1947 में सनी देओल के एक्शन को आवारापन 2 में अपने रोमांस से टक्कर देंगे इमरान हाशमी। साउथ स्टार सूर्या भी अपने चार्म फैलाने के लिए तैयार हैं, फैमिली ड्रामा फिल्म विश्वनाथ एंड सन्स होगी रिलीज, फिल्म में ममिता बैजू, रवीना टंडन, राधिका नजर आएंगे। 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद आज से ओटीटी पर कमाल करेगी कॉकटेल 2, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी ओटीटी पर स्ट्रीम की जाएगी, इस साल मई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी ये फिल्म। हॉरर थ्रिलर फिल्म आरोपी भी ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है, हिंदी मलयालम और तमिल भाषाओं में उपलब्ध होगी ये फिल्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर एक निहंग ने अचानक से हमला बोल दिया। सुखबीर बादल गुरुद्वारा माता साहिब कौर में मत्था टेकने के बाद परिवार के साथ आए थे बाहर, और इसी हमले में सुखबीर बादल के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। जब बादल अस्पताल में थे उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके उनका हालचाल जाना। वहीं सीएम फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के इस पूरे मामले में आदेश दे दिए हैं।

0: महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा माता साहिब कौर में मत्था टेकने के बाद जैसे ही शिरोमणि अकाली दल के मुखिया और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह बादल बाहर निकले, इस निहंग ने कृपाण से उन पर हमला कर दिया।
1: दर्शनों को आए वाले पंजाब के माजी डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह जी बादल और उनकी धर्मपत्नी हरसिमरत कौर जी बादल और उनके बच्चे, उनके दामाद, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे, उन्होंने अखंड पाठ साहब 12 तारीख को आरंभ किया गया था और कल रात में भी वो 2 बजे गोदावरी से घाघर लेके आते, वहां पे भी जाके हरसिमरत कौर जी वो साथ में गोदावरी से घाघर लेके आए गुरु महाराज को जो स्नान कराते। आज माल टेकड़ी साहब, उसके बाद हीराघाट साहब, उसके बाद माता साहब जब दर्शन करके नीचे आते तो कोई नहंग सिंह उनपे अचानक हमला करता,

0: हमला कर देता उन पे और उनको बहुत हद पर उनके चोट आई है और बहुत शर्म की बात है जो गुरु महाराज के दर्शनों को आने के बाद में इस तरीके के काम होता है।
1: देखिए सफेद दाढ़ी और नीली पगड़ी पहने ये निहंग धीरे धीरे सुखबीर बादल की ओर पड़ता है, जिसके बाद वो अचानक अपनी कमर से कृपाण निकालता है और सुखबीर बादल पर हमला कर देता है। अफरा तफरी के बीच बादल के सुरक्षा गार्ड हमलावर को तुरंत पकड़ लेते हैं। अब इस मामले की जांच एटीएस, आईबी और नांदेड़ पुलिस तीनों मिलकर करेंगे।
2: लगभग 2 बजे के आसपास साहब जो है माता साहब गुरुद्वारा विजिट पे गए थे, तो गुरुद्वारा विजिट करने के बाद वहाँ से वापस आते वक्त सीढ़िया के पास एक वहाँ का सेवादार है, उसने अचानक से आके अपने कृपाण से अटैक करने की कोशिश की, जिसमें हमारा एक साहब को राइट हैंड में इंजरी हुई है और एक हमारा ऑफिसर है इंस्पेक्टर एसपीयू का, उसने वहाँ पे सिक्योरिटी में था उसने हाथ से वो रोक लिया, उसको हाथ में थोड़ी सी इंजरी हुई है। ये होते ही हमने इमिडिएटली उस जो अटैकर था उसको अपने कस्टडी में ले लिया और उससे इंट्रोगेशन चल रही है। वो लगभग 62 साल का उम्र का है और लगभग 2 साल से यहाँ पे सेवादार काम कर रहा था गुरुद्वारे में।
3: सर ये आईबी का स्पेसिफिक इनपुट था फिर भी नांदेड़ पुलिस कैसे चूक गई?
2: चूकी नहीं है, इसमें पूरी जेड प्लस सिक्योरिटी थी साहब के उसमें, और इसीलिए हमारा वहाँ पे इंस्पेक्टर था, हमारे सारे ऑफिसर्स थे वहाँ पे, इसीलिए हमने इमीडिएटली उसको रोक लिया और इमीडिएट कस्टडी में ले लिया।
1: इस हमले में सुखबीर सिंह बादल का हाथ जख्मी हो गया और उनका सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गया, जिसके बाद तुरंत ही सुखबीर सिंह बादल को नजदीकी यशोसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि अब वो खतरे से बाहर है।
4: वरिष्ठ अफसरों ने ये बताया कि सुखबीर सिंह बादल स्टेबल हैं, उनकी तबीयत ठीक है, उन्हें दाहिने हाथ पर जख्म हुआ है और एक किरपान से ये जख्म हुआ है, किरपान से उन पर हमला किया था आरोपी जसपाल सिंह ने, जो कि जसपाल सिंह पिछले 2 साल से माता साहेब गुरुद्वारा नांदेड़ में रह रहे थे। जसपाल सिंह पुणे के रहने वाले हैं, पुणे के सोलापुर बाजार में उनका घर स्थित है, वो तेजा सिंह नामक व्यक्ति के बेटे हैं और वो एक बीकॉम ग्रेजुएट हैं, पहले वकील भी रह चुके हैं, पिछले 2 साल से वो माता साहेब गुरुद्वारा में ही रह रहे थे।
1: अब ये तस्वीर देखिए, जिस शख्स की पग बांधी जा रही है इसका नाम जसपाल सिंह है, इसी ने बादल पर हमला किया है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब शिरोमणि अकाली दल कह रहा है कि इस हमले के पीछे गहरी साजिश है,
5: पर लगातार पंथक आगुआ नु निशाना बनाया जा रहा है, ये कोझियां साजिशां ये षड्यंत्र कुछ पंथ विरोधी ताकतां ने जिहड़ियां ओह रच रहियां ने। सरदार सुखबीर सिंह बादल ते इस तों पहलां भी जदों दरबार साहब दे विच अकाल तख्त साहब दे आदेश ते सेवा निभा रहे सी उदों भी एक हमला उहनां दे उत्ते होया।
1: पीएम मोदी ने भी फोन करके सुखबीर सिंह बादल का हालचाल जाना, वही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पहले सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर से फोन पर बात कर हालचाल पूछा।
6: जो अटैक किया उन्होंने वो वहाँ काम करने वाले हैं क्या? अच्छा
1: उसके बाद शिंदे ने पुलिस के आला अधिकारियों को हत्या की कोशिश जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज करने के निर्देश भी दिए।
6: अटेम्प्ट टू मर्डर आणि त्याच्या बरोबर आणखी का केलंय, प्लॅनिंग काय आहे त्यांचं, ते जरा बघून त्या मॅडम बोला बोलत होत्या की इसमें जो भी लोग है कि उसमें कोई भी नहीं छुटना चाहिए।
1: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी बादल पर हमले को सुरक्षा में चूक करार दिया।
7: मैं समझता हूं इसमें सिक्योरिटी की भी कमजोरी है, क्योंकि लोगों को याद रखना चाहिए और हुकूमतों को याद रखना चाहिए कि ये बहुत वल्नरेबल शख्सियतें हैं और पहले भी हमला हुआ और ये नहीं कह सकते कि आगे नहीं होगा, मगर बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि वो पिछली दफा भी कामयाब नहीं हुए, इस दफा भी कामयाब नहीं।
1: खास बात है कि सुखबीर सिंह बादल पर साल 2024 में अमृतसर में गोल्डन टेंपल में भी हमला हो चुका है, तब उन पर फायरिंग की गई थी, सवाल है कि आखिर बादल पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं।

0: पुलिस, एटीएस की टीम और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम अब इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि अभी तक क्या मोटिव था जसपाल सिंह का सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने के पीछे, इस बारे में जांच की जा रही है, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। अभी तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं आई है और जसपाल सिंह से ज्वाइंट टीम एटीएस की टीम में और नांदेड़ पुलिस की टीम में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल नांदेड़ दौरे पर थे और उसके बाद मुगट गांव के माता साहेब गुरुद्वारा में वो गए थे जहां पर ये हमला हुआ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में एक जांच ऑर्डर की है और इस बारे में एक पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी करने के भी आदेश दिए हैं नांदेड़ पुलिस को। कैमरा पर्सन मंदार चौहान और नांदेड़ से कुंवरचंद मंडले के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
1: सुखबीर सिंह बादल पर जो हमला हुआ है, विपक्ष कह रहा है कि वो सुरक्षा में बड़ी गलती है, चूक है। आज तक ने महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम से इस मामले में खास बातचीत की।
2: ये पूरी जो घटना हुई है उसकी जांच करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने दिए है और फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो इंजरी है वो माइनर है, कोई मेजर मिशैप नहीं है, मेजर इंजरी नहीं है, ही इज कम्प्लीटली सेफ। कुछ ही देर में उनके ऊपर ऑपरेशन जो भी माइनर ऑपरेशन हुआ किया जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी सेफ है, उनकी हेल्थ को किसी भी तरीके का धोखा नहीं है।
3: सर, क्या आपकी उनसे बात हुई है, वहाँ के जो एसपी हैं, पुलिस वो हैं, उनसे किसी से बात हुई, कलेक्टर से, क्या उनकी तरफ से जवाब?
2: जो कलेक्टर है और वहाँ के जो आईजी है, मेरी उनसे बात हुई है। अभी हमने इंक्वायरी चालू की है, जिसने हमला किया है वो क्यों किया, किस इंटेंशन से किया, ये सब इंक्वायरी के बाद पता चलेगा।
3: सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है,
2: अभी सिक्योरिटी लैप्स है नहीं है तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। पर उनकी जो सिक्योरिटी की जो कैटेगरी है, जेड कैटेगरी है, वो सिक्योरिटी उनको दी गई थी। और अभी देखिए हमला कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, किसने किया, ये सब इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। सिक्योरिटी लैप्स है या नहीं है, मेरे ख्याल से अभी ये अटकलें लगाना बहुत गलत होगा, इंक्वायरी के बाद चीजें सामने आएंगी।
3: सर, क्या सिक्योरिटी कैटेगरी को बढ़ाया जाएगा, जो पहले जेड थी, क्या उसे जेड प्लस या उससे आगे की जाएगी?
2: देखिए अभी उसका तो आकलन, जब भी सिक्योरिटी, अभी उनको जो सिक्योरिटी है वो जो उनके उनका जो स्टेट है वहां से कैटेगरी वो फिक्स होती है। यहाँ पर उनके ऊपर जब भी हमला हुआ है तो उसके मद्देनजर रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी उनको प्रोवाइड की जाएगी जब तक वो यहाँ पर है, इस हमारे स्टेट में है।
1: महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना अब जरूरी हो चुका है। सरकार ने 15 अगस्त तक मराठी सीखने का समय दिया था, लेकिन उसके बाद मराठी न बोल पाने वाले चालकों का लाइसेंस और परमिट रद्द हो सकता है। हालांकि अभी भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर मराठी सीखने के लिए और समय मांग रहे हैं।

0: महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए मराठी सीखने वाली डेडलाइन खत्म हो गई है। ऑटो टैक्सी यूनियन ने गैर मराठी ऑटो टैक्सी वालों के लिए मराठी सीखने की डेडलाइन 6 महीने बढ़ाने की मांग की थी, जो समय सीमा 15 अगस्त को पूरी हो रही है। लेकिन अब परिवहन विभाग ने मराठी भाषा नहीं बोलने वाले चालकों का लाइसेंस और परमिट रद्द करने का ऐलान किया है। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में हर टैक्सी और ऑटो चलाने वाले लोगों को सामान्य बातचीत के स्तर की मराठी आना जरूरी होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा, फिर भी भाषा न सीखने पर लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित होगा और दोबारा उल्लंघन पर लाइसेंस और परमिट स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
1: राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग ने 1949 का जो एक्ट था कि जो भी प्रवासी वाहन चलाता है वो ड्राइवर को मराठी आनी चाहिए, उतनी ही मराठी आनी चाहिए जितना कि वो प्रवासियों के साथ संवाद कर सके, टेम्पररी मराठी उसको कहते हैं। तो वो अगर नहीं आएगा तो आपका जो लाइसेंस है वो 3 महीने तक हम सस्पेंड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको मराठी नहीं आएगी, उतनी ही मराठी जितने की प्रवासियों के साथ संवाद रखना है, फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा।
2: तो मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले जो पर प्रांतीय हैं वो सबसे पहले तो मुंबई कर ही अपने आप को मानते हैं, तो सीखने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ उन्हें थोड़ा समय देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आए जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते।
0: परिवहन विभाग के प्रशिक्षण अभियान के तहत करीब 1600 टीचर की मदद से 135,000 चालकों को मराठी बोलने की ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल के अध्यक्ष हाजी अरफात शेख ने 100 दिन की अतिरिक्त मोहलत मांगी है। उनका कहना है कि भारी बारिश की वजह से कई शहरों में ट्रेनिंग क्लास प्रभावित हुई थी।
3: आज खासतौर पर मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मिलने आया, एक निवेदन दिया कि पिछले कुछ महीनों पहले प्रताप सरनाईक ट्रांसपोर्ट मंत्री ने एक ऐसा फरमान निकाला कि जो मराठी नहीं सीखेगा, मराठी नहीं बोलेगा तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें दी, हम सब यूनियन के लोग मंत्रालय में उनके पास गए, बातचीत किए और वहाँ पर एक ऐसा उन्होंने एक फरमान निकाला कि ठीक है मैं सख्ती नहीं करता हूँ और 100 दिन की मोहलत देता हूँ।
0: इस मांग पर गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि सरकार अतिरिक्त समय देने के विकल्प पर विचार कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मकसद जबरदस्ती नियम थोपना नहीं है, बल्कि ऑटो टैक्सी चलाने वालों को सकारात्मक रूप से मराठी सीखने का मौका देना है।
4: देखिए, हमारे मिनिस्टर प्रताप सरनाईक जी ने ये लिया हुआ इनिशिएटिव है, जो कि इनिशिएटिव इन द सेंस ये कायदा तो पहले से ही था, कायदा कुछ नया नहीं बनाया है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो पुराना कायदा था वो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करते वक्त ठीक है, ये अच्छी बात है कि टाइम मांग रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर उनको टाइम की जरूरत है वो तो वो कंसर्न मिनिस्टर से जाके मिले, उनको टाइम भी शायद वो दे देंगे, लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच रहना बहुत जरूरी है कि हाँ हम सीखने के लिए तैयार है, हमें टाइम चाहिए, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम लीजिए।
0: आज तक ने मराठी भाषा के इस फरमान पर ऑटो टैक्सी वालों की राय भी समझने की कोशिश की।
5: महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने जो कानून फिर एक बार उसमें बदलाव लाया है कि मराठी भाषा की सख्ती सभी रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए होगी। 15 अगस्त तक की डेडलाइन देके रखी थी, जिसके बाद अगर वो मराठी बोलने में असफल रहते हैं तो उनके लाइसेंसेस रद्द किए जाएंगे, उनके परमिट रद्द किए जाएंगे। कुछ टैक्सी चालक हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार उनका इस पर क्या कहना है। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद बहुत सख्ती से ये नियम लागू होगा और आपके लाइसेंसेस और परमिट भी रद्द हो सकते हैं। कुछ संगठनाएं सामने आ रही है, कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त बढ़ाकर भी देना चाहिए, लेकिन क्या लगता है मराठी बोलता ये थे?
6: हमको तो आता है।
5: हाँ। क्या आता है, काम चलाने के लिए आप बोल पाते?
6: समझ लेता हूँ भाई, बोल जैसा मराठी लोग बोल, जैसे कोई आके पैसेंजर बोला कुठे जाए, हमको मला जायचं आहे, टॅक्सी खाली आहे का, तर मी म्हणणार हो खाली आहे।
5: लेकिन इस सख्ती के बारे में क्या कहते
6: हैं? सख्ती तो सरासर बोल रहे ना, जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। अरे कितने तो हैं, बता रहे, बताए आपने ना कितने हैं, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो मराठी क्या बोलेंगे।
5: टीम मध्ये बोलू का तुमच्याशी, कसं काय, बरं आहे काय?
7: बरं बरं, हमको आता ही नहीं, हम तो पढ़ा नहीं हूँ।
5: अच्छा,
7: मैं तो औठा छाप हूँ। हाँ। भगाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, और ये लोग बहुत गलत कर रहा है, लोग बहुत गलत कर रहे हैं। हम तो गाली से ही बात करता हूँ, अभी बोलो 60 साल का हो गया, मेरे को नाम लिखना बोल रहा है, पढ़ने का तो मैं क्या पढ़ेंगे, हम तो औठा छाप है देखो।
5: लेकिन दिक्कत आती है कभी मराठी नहीं बोल पाते आप पैसेंजर के साथ?
7: थोड़ा बहुत अभी तो वही मैं भी समझ लेता हूँ, थोड़ा बोल लेता पिकड़े कहाँ किधर जाने का है, वो सब एक क्या अपना भाषा आ जाता है।
0: कुछ लोगों ने इसे सही बताया, जबकि कुछ उत्तर और दक्षिण भारतीय ऑटो टैक्सी चालक बोले उन्हें अभी मराठी सीखने में और वक्त लगेगा।
5: मराठी की सख्ती होने वाली है, अगर नहीं बोल पाओगे तो लाइसेंस और परमिट रद्द होगी, क्या कहना है इस पर?
8: अभी के रूल्स रह के हम क्या कर सकते, अभी गरीब आदमी क्या कर सकते हैं।
5: आप बोल पाते हो मराठी?
8: नहीं, थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं।
5: सीखे हो?
8: हाँ, बस सीखे मुंबई। अभी क्या थोड़ा थोड़ा, अभी कितना गरीब लोग है क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक एक स्कीम लेके आगे रहते हैं लोग, मरने तक कोई स्कीम रहेगा क्या?
5: डर लगता है कि अभी इस उम्र में लाइसेंस रद्द हो गया तो क्या करेंगे?
8: क्या करना पड़ेगा, भीख मांगने जाना पड़ेगा, रोड पे बाथरूम का काम करना पड़ेगा, रोड पे पट्टी का मापना आदमी देखो के साथ क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।
5: तो देखिए, सिर्फ उत्तर भारतीय ही नहीं बल्कि कुछ साउथ इंडियन भी है जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इस दिक्कत के वजह से अब रोजी रोटी पर आन पड़ी है, ऐसा उन्हें लग रहा है। आपको भी लग रहा है कि लाइसेंस रद्द हो सकता है तो क्या करेंगे आगे अगर मराठी नहीं आई? आती है कि नहीं मराठी?
9: आती है, मतलब 50% तो आता है।
5: पर ये सख्ती का नियम, इसके बारे में क्या कहना है
9: भाई? गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। गरीबों के लिए कानून होता, अमीरों के लिए थोड़ी कानून होता है। जो भी कानून बनता है गरीबों के लिए, अमीरों के लिए तो ऐसे ही है, सिग्नल तोड़ो, टैक्सी वाले रुकाएंगे और प्राइवेट वाला रहेगा जाओ।
0: एक तरफ जहां सरकार यात्रियों की सुविधा और मराठी भाषा के सम्मान के लिए नियमों को कड़ा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 100 दिनों की मोहलत की मांग ने नया मोड़ ले लिया है। सवाल है कि प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई शुरू करता है या ड्राइवरों को राहत देता है।
5: देखिए, लगभग सभी लोग चिंतित यहां नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि मराठी भाषा जो है वो बात करने में कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर इस तरह की सख्ती लागू की जाएगी और मराठी बोलने में अगर वो असफल रहे तो आगे जाकर क्या करेंगे? अब सरकार है, सरकार के खिलाफ तो जा नहीं सकते, और इसी कारण अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 15 अगस्त के बाद महाराष्ट्र सरकार परिवहन विभाग इस सख्ती को लागू करते हुए ऐसे कितने टैक्सी चालक, रिक्शा चालक जो है उनके ऊपर कार्रवाई करेगा और लाइसेंसेस और परमिट जो है वो रद्द हो सकते हैं। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।
10: महाराष्ट्र एफडीए ने नियमों के उल्लंघन के बाद डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट और पिज्जा हट के 1 आउटलेट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वहीं पिछले कुछ महीनों में एफडीए ने कई आउटलेट्स को बंद करवा दिया है। शालीमार और नूर मोहम्मदी जैसे मुगलई रेस्टोरेंट भी फिर से शुरू हुए हैं।
11: महाराष्ट्र फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लेटेस्ट कार्रवाई की है वो फूड चेन पर की है, और उसमें जो एक फूड चेन जिसके 3 आउटलेट पूरे महाराष्ट्र में और आप कह सकते हैं कि मुंबई में बंद हुए हैं, वो डोमिनोज पिज्जा का है। इस वक्त हम मुंबई के विले पार्ले इलाके में हैं, मुंबई के RCT मॉल जो कि घाटकोपर में पड़ता है, बोरीवली वेस्ट और विले पार्ले, ये 3 जो डोमिनोज के आउटलेट हैं वो बंद किए गए हैं। जो विले पार्ले इशू है, जो आप कह सकते हैं दुकान है, उसमें जो पीने का पानी है, टेम्परेचर जो फ्रोजन फूड को जिसमें रखना पड़ता है, और उसके साथ साथ किसी भी तरह के कीड़े ना घुसे उसके लिए जो रोक लगाई जाती है, वो सारी चीजें मिसिंग थी। अब आप
10: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
12: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और जिंदाबाद रहेगा।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीस ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है, ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी। भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही राजनीति। राहुल गांधी ने बताया संविधान का अपमान। पहले नड्डा ने जताया खेद। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म मानसून सत्र। सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी। रांची में छात्रों का आंदोलन भी जारी। और अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद मामले में बढ़ा बवाल। गुरु सिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़ा सिख संगत। दोनों पक्षों से कई घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड में पीपलकोटी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक सुरंग में भारी पानी और मलबा आने की वजह से कई मजदूरों के फंसे होने की जानकारी है। खबर यह है कि कई मजदूरों को निकाल लिया गया है सुरक्षित। 22 मजदूरों में से 18 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 4 ऐसे मजदूर हैं जिन्हें बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मशीनों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी की नजर है। टनल के दरवाजों के द्वार से करीब 1.5 किलोमीटर पर मलबा और पानी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो पीपलकोटी में यह हादसा हुआ है। सुरंग में मलबा और पानी आ जाने की वजह से 22 मजदूर थे जो फंस गए थे भीतर। अच्छी बात यह रही है कि 18 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है घंटों की मशक्कत के बाद, लेकिन अभी भी 4 मजदूरों की जिंदगी इसी में फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जानकारी है कि मशीनों के जरिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सीएम धामी की इस पूरे ऑपरेशन पर नजर है। टनल के दरवाजों के द्वार से करीब 1.5 किलोमीटर पर मलबा और पानी आया और ये मजदूर यहां बुरी तरह से फंस गए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा का पूरा दलबल यहां मौजूद है। सीएम धामी की इस पर नजर है। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द जो 4 और मजदूर बचे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके, क्योंकि मलबा और पानी भरा हुआ है इसीलिए मुश्किलें आ रही हैं। मशीनों के जरिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के पीपलकोटी की यह घटना है जहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक सुरंग में पानी भरा है। आपको ये भी बता दें कि पीपलकोटी में हादसे की जगह पर मौजूद हैं आज तक संवाददाता कमल नयन। उन्होंने मौके से रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। देखते हैं उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
1: लगभग 6:30 बजे आज जो पीपलकोटी के यहाँ पे जो TSDC का ये प्रोजेक्ट है, SCC का यहाँ पे काम चल रहा है, TRT ये टनल है और यहाँ से 1600 मीटर अंदर इस टनल का लूज गिरा है। जिस समय शिफ्ट जहाज यहाँ से जा रही थी, लगभग 28 लोगों की जो जानकारी है, जो जिला प्रशासन के अनुसार 28 लोग यहाँ से अंदर जा रहे थे, उसी समय ये लूज गिरा। कुछ लोग उस तरफ फंस चुके हैं, वहीं 7 लोग पानी के बहाव के साथ इस तरफ को आए थे और उसके बाद से यहाँ पे लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। अभी भी 18 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। जो अन्य लोग फंसे हैं, लगभग 10 के आसपास वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की अभी कवायद की जा रही है। सभी घायलों को यहां से जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजा जा रहा है। तो वहीं SDRF, NDRF, भारतीय सेना और तमाम जो ITBP है और यहां पे SDRF है, जिला प्रशासन की जो टीमें हैं, तमाम लोग इस समय यहां पे पहुंचे हैं। हर कोई जो जिलाधिकारी चमोली हैं वो यहां पे पहुंचे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, NDRF की टीम को यहां पे गाइड कर रहे हैं। वहीं पुलिस के जो आला अधिकारी है, तमाम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वहीं इस तरफ भी लगातार राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। भारतीय सेना और तमाम लोगों के द्वारा जो जिला प्रशासन है वो लगा हुआ है। यहाँ से लगभग 1600 मीटर जो अंदर है वहाँ पे ये घटना हुई है। वहीं पे इस टनल का लूज गिरा है और वहीं पे से टनल का जो उस तरफ का हिस्सा है वो बंद हो चुका है। अब ये JCB मशीन यहाँ से अंदर जा रही है और ये वहाँ पे उस लूज को हटाने का काम करेगा, ताकि जो लोग उस लूज के उस तरफ फंसे हुए हैं उन्हें आसानी से इस तरफ निकाला जा सके। देखना होगा उस तरफ क्या स्थिति है। हालांकि ये अभी देखने वाली बात है, लेकिन इस समय जो हालात है यहाँ पे तमाम फोर्स मौजूद हैं, रेस्क्यू राहत बचाओ सेना से लेकर पुलिस से लेकर एनडीआरएफ से लेकर तमाम सब यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरह से यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। मौके की तस्वीरें इस तरह से जो है वो बनी हुई है। कमल एनसिलोरी, चमोली, आज तक।
0: तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस पूरे मामले में एनडीआरएफ की तरफ से क्या कहा गया सुनिए।
2: जैसे ही हमको पता लगा तो हम लगभग 15-20 मिनट में जो है अपनी लोकेशन से चल दिए थे और यहाँ पर हम जो है इंसिडेंट साइट पे लगभग 40-45 मिनट में पहुँच गए थे। और जैसे ही हम पहुँचे तो यहाँ पर जो हमको डेटा दिया गया उसमें ये बताया गया कि 28 लोग अंदर हैं, तो 28 में से 6 रेस्क्यूअर थे जो यहाँ कंपनी के रेस्क्यूअर थे। उसके बाद उसी के साथ जो है हमारी एक टीम अंदर गई थी, एक टीम हमारी बाहर थी। और इसके अलावा हमारी जो है अभी 3-4 टीमें और मार्च कर चुकी हैं यहाँ पर, एक देहरादून से और एक जो है हमारे बटालियन हेडक्वार्टर रुद्रपुर से भी 2-3 टीमें मार्च कर चुकी हैं। तो अभी जो अंदर सिचुएशन है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण जो है सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो रही है, तो एनडीआरएफ प्लस एसडीआरएफ भी उसमें लगी हुई है। तो एनडीआरएफ के ज़्यादातर जो जवान है वो अपना जो भी इक्विपमेंट है उसका यूज़ करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके अनुसार अभी तक जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, तो 28 में से जो 6 रेस्क्यूअर तो बचे 22, 22 में से 18 लोग हम बाहर निकाल चुके हैं अभी, ठीक है, 18 लोग बाहर निकाल चुके हैं। जो 4 लोग हैं उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें बोट की भी ज़रूरत पड़े, तो हम बोट भी हम अंदर अभी जो है डिप्लॉय करेंगे।
0: तो सीएम धामी की इस पर सीधी नजर है, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया है, सुनिए क्या कहा है पुष्कर सिंह धामी ने।
3: ये चमोली जिले के पीपलकोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे उनके ऊपर कुछ वहाँ मर्ड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है, उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे और अभी 18 लोगों को निकाल लिया है जिसमें से कुछ लोग घायल हैं और पीपलकोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, सभी इलाज वहाँ पर दिए जा रहे हैं और हायर सेंटर भी बात कर ली है यहाँ पर, ऋषिकेश में भी सारी तैयारियाँ हैं, अगर किन्हीं को हेलीलिफ्ट करवाना हो एमरजेंसी में या बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में सभी इंतजाम कर दिए हैं, सभी को अभी सुरक्षित निकाला है। 3-4 लोग थोड़ा ज़्यादा घायल हैं, उन सभी का इलाज किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए, उसके लिए एनडीआरएफ, एसटीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं और जहाँ सभी अधिकारी, सभी एजेंसियाँ वहाँ पर हैं, उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है।
0: आपने आगे बढ़ेंगे इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में।

उत्तराखंड के चमोली में पीपलकोटी टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना का निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा, टनल में पानी भरने की वजह से लोग फंसे। टनल से 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, अभी भी कई मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 28 लोग कर रहे थे टनल में काम। चमोली टनल हादसे के हालात का जायजा लेने सीएम धामी पहुंचे, आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम जाकर जानकारी ली। असिस्टेंट कमांडेंट आलोक जयारा एनडीआरएफ का बयान, महज 30 मिनट में जानकारी मिलते ही लिया गया था एक्शन। टनल के भीतर लगातार भर रहा है पानी, खाली ड्रमों के माध्यमों से नाव बनाकर अंदर भेजी गई है, एक एक करके बचाने की कोशिश लगातार जारी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा, मजाक उड़ाते हुए लगाए कई गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर मजाक करने की राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति के मर्यादा पर कलंक बताया। समित पात्रा का राहुल गांधी पर हमला, ये अवशोभनीय भाषा और नकारात्मक राजनीतिक लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन है। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, भारतीय सेना को लेकर एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे पर ही सिमटा मानसून का सत्र, सरकार विपक्ष ने एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा, स्पीकर की बैठक से कांग्रेस दूर रही। रैली के बाद रामलीला मैदान में शुद्धिकरण पर भड़के खड़गे, राज्यसभा में बोले मेरा अपमान हुआ। हल्द्वानी में मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही है राजनीति, राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना, खड़गे जी की सभा के बाद मंच का शुद्धिकरण संविधान और समानता का अपमान है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी, रांची में छात्रों का आंदोलन भी जारी। रांची में 15 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा को निकालेंगे छात्र, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से ऐलान किया गया। नांदेड़ में गुरुद्वारे के बाहर सुखबीर बादल पर कृपाण से हमला, हमलावर गिरफ्तार, हाथ में चोट लगी। सुखबीर बादल पर हमले के बाद हड़कम, सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को दबोचा, एटीएस आईबी और पुलिस करेगी जांच, फडणवीस ने जांच के आदेश दिए। नांदेड़ गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के पूर्व सचिव रविन्द्र सिंह बुंगई ने कहा, गुरुद्वारे में हमला करना बहुत गलत है, हालात के बारे में प्रधानमंत्री फोन करके पूछताछ कर चुके हैं, मराठी नहीं सीखे तो लाइसेंस रद्द होगा। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी जरूरी है, 100 दिन की अतिरिक्त मोहलत की मांग। महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर सियासत तेज हुई, ट्रांसपोर्ट सेल ने मांगी मोहलत तो सरकार बोली अतिरिक्त समय पर विचार संभव। मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूटा, रिजल्ट और परीक्षा की मांग को लेकर भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, प्रदर्शन करे कुछ छात्र पास की एक ऊंची इमारत पर चढ़े, प्रशासन की समझाइश के बाद नीचे उतारा गया। हैदराबाद में आयुष डॉक्टर्स का हंगर स्ट्राइक, स्टाइपेंड बढ़ाने और गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करने के आदेश। संभल में सरकारी जमीनों को लेकर निजी जमीनें हो रही हैं कब्जा मुक्त, 22 साल के बाद बीएसपी नेता को योगी सरकार से मिली 5 करोड़ रुपए की कीमत की बेशकीमती जमीन। गुरुग्राम में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, टूटी सड़कों और जलभराव से आजादी की मांग की गई। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर एक बार फिर से नजर आई देश की आन बान शान, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत हुई फुल ड्रेस रिहर्सल, रिहर्सल के दौरान और बाद में हेलीकॉप्टर बरसाए फूल, शनिवार को आजादी के पर्व को मनाने के लिए देश भर से जुटेंगे लोग। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी, आज लाल किले के आसपास 7 सड़कें बंद की गई, कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की फाइनल रिहर्सल, स्वतंत्रता दिवस से पहले जवानों का दमदार प्रदर्शन। भोपाल में बारिश के बीच निकली बीजेपी की तिरंगा यात्रा, सीएम बुलेट से पहुंचे बच्चों ने बढ़ाया उत्साह, देशभक्ति के साथ नशा मुक्ति का भी संदेश। भोपाल में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में बोले सीएम मोहन यादव, एमपी में जल्द लागू होगा यूसीसी, समानता की भावना होगी मजबूत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में मानस बल झील में तिरंगा रैली, स्वतंत्रता दिवस से पहले शिकारा रैली में दिखाई दी देशभक्ति। पलवल में 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े विशाल तिरंगे के साथ निकाली गई ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा। सहारनपुर में तिरंगा यात्रा पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा, हाथों में तिरंगा और जुमा पर देशभक्ति के गीत, कोर्ट रोड पर दिखा अनोखा नजारा। देवगढ़ स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में बना आस्था और भक्ति का सैलाब, 14 दिन में 28,33,000 भक्तों ने जलार्पण किया। गुजरात में बनासकांठा जिले के डीसा में बनेगा एशिया का पहला डेजर्ट थीम वाला ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क भी। लगभग 103 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर विकसित किया जा रहा है यह प्रोजेक्ट, 542 करोड़ से भी ज्यादा है अनुमानित लागत। रायपुर में आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली महिलाओं ने भव्य स्वदेशी फैशन शो में हिस्सा लिया।
पेशेवर मॉडल्स के साथ रैंप वॉक करती हुई नजर आई आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली महिलाएं। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मनोबल बढ़ाया। आईआरसीटीसी लॉन्च कर रहा है बेहतरीन हवाई टूर पैकेज। सितंबर के महीने में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर सहित इन पर्यटक स्थलों का भ्रमण कर पाएंगे। असम में बाढ़ से भारी तबाही, बीती शाम तक मौतों का आंकड़ा 103 के पार पहुंचा। चार जिलों में करीब 78,000 लोग अभी भी प्रभावित। जोरहाट में बाढ़ ग्रसित इलाकों में सिंह पपोन ने किया दौरा, कहा इस बार के हालात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शिमला में धस रही है पहाड़ी के कई घर प्रभावित हुए हैं। जमीन धसने से दहशत में ग्रामीण घरों पर मंडरा रहा है खतरा। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव, आवाजाही हुई है मुश्किल।

0: और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, चमोली टनल हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, यह पुष्टि कर दी गई है। इससे पहले लगातार कोशिश की जा रही थी जल्द से जल्द राहत इन लोगों तक पहुंची, इन लोगों का रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन आपको बता दें कि 6 लोगों की जान इसमें नहीं बचाई जा सकी। 24 से ज्यादा मजदूर थे जो बताए जा रहे थे इस टनल में फंसे हुए। अचानक से पानी आने की वजह से और मलबा आने की वजह से इस टनल में ये मजदूर फंस गए थे। तुरंत ही रेस्क्यू शुरू किया गया था और अब जानकारी यह है कि इस हादसे में 14 लोगों को निकाल लिया गया था जो घायल बताए जा रहे हैं। 6 लोगों की इसमें जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये, और आपको बता दें कि पानी और अचानक से मलबा आने की वजह से ये तमाम मजदूर जो इस टनल के भीतर काम कर रहे थे इसी में फंस गए थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़ गए। अंकित, क्या जानकारी है? अंकित, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
1: जी सर, जी
0: क्या क्या कंफर्म कर दिया गया है और साथ ही साथ क्या जानकारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है?
1: सचिन, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि जिस तरह से जानकारी आई थी और 22 मजदूरों के फंसे होने की शुरू में जानकारी थी उसमें 20 लोगों को निकाला गया था, 14 जो घायल थे उनमें से कुछ को रेफर किया गया, और बहुत ही दुखद खबर यह है कि 6 लोगों की इसमें मौत की पुष्टि भी हुई है। तो लगातार जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था क्योंकि अंदर 3 किलोमीटर की ये लंबी टेल टनल है जिसमें 1.5 किलोमीटर के आसपास के हिस्से में हादसा हुआ था और एक एक्वीफर के कह सकते हैं पंचर होने से जो पानी और मलबा आया उसमें कई मजदूर फंस गए थे। मजदूरों को निकालने की कवायद शुरू हो रही थी और इसके बीच में वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ एजेंसीज हो या सीआईएसएफ हो, आर्मी की भी इसमें सपोर्ट मिला था, और इसके बाद जब अंदर एक एक करके मजदूरों को निकाला तो कई मजदूर ऐसे थे जिनके चेहरे पर काफी था और बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है जिसमें कि मजदूरों की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है। 6 मौतें अभी कंफर्म हुई हैं, अभी रेस्क्यू पूरा नहीं हुआ है क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जो मतलब 2 लोगों की जानकारी मिल चुकी है उनको निकालने की भी कवायद चल रही है, लेकिन इसके अलावा जो लास्ट मोमेंट के जो रेस्क्यू कंप्लीशन का जो अपडेट होता है वो सारी एजेंसी पुख्ता तौर पर इंश्योर करना चाहती है कि एक भी व्यक्ति अंदर फंसा ना रहे, उसको निकाला जाए। तो इस वजह से ये रेस्क्यू लगभग खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी फोर्सेस जो हैं अंदर तैनात हैं और लोगों को ढूंढ रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि कोई और व्यक्ति तो नहीं है। शशि,
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अंकित, 6 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है, 14 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 2 और लोगों के मजदूरों के फंसे होने की जानकारी है, और आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। इस खबर पर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।

0: आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आखिर कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में ऐसा क्या हुआ जिस पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई है। राहुल गांधी के मंच से मेलोनी पर की टिप्पणी पर बवाल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर निशाना साध रहे थे राहुल गांधी, कह रहे थे विदेशी नेताओं को गले लगाना ही इनकी विदेश नीति है। इस दौरान मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर जो कहा उस पर अब बवाल मचा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है तब पाकिस्तानी आतंकी देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस बार ISI, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और खालिस्तानी नेटवर्क एक साथ मिलकर भारत पर बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं और 15 अगस्त अब सिर पर है। कितना बड़ा ये चैलेंज है आज आपको बताएंगे कि कैसे ये आतंकी पूरी तरह बेनकाब हो रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि जिस रशिया से भारत अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा कच्चा तेल मंगा रहा है वही रशिया अब भारत से पेट्रोल, रिफाइंड पेट्रोल क्यों खरीद रहा है। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है और ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों की वजह से रशिया की रिफाइनरीज में ईंधन का भारी संकट पैदा हो गया है जिसके बाद रशिया को भारत से पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। और आखिर में आपको पंजाब के पटियाला से दिल दहला देने वाली तस्वीर दिखाएंगे जहां एक पिटबुल डॉग ने पति पत्नी पर अचानक ये हमला किया और इस खौफनाक घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बचाने के लिए आसपास के लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर क्यों भड़की हुई है। बीजेपी नेता बासी स्वराज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, वो नेता प्रतिपक्ष की गरिमा के खिलाफ है, ये सोशल मीडिया रील्स के लिए की गई सस्ती बयानबाजी करार दे रही है। बासुरी स्वराज सांसद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से। पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज आखिर क्या कह रही है।
1: जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इनवेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56 ईयर ओल्ड मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब बयानबाजी केवल सोशल मीडिया के मीम्स और रील वैल्यू के लिए करते हैं।
0: दरअसल ये पूरा विवाद कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़ा है। यहां राहुल गांधी रचनात्मक कांग्रेस के सम्मेलन में बोल रहे थे, ये सम्मेलन का नाम है, और वो प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर निशाना साध रहे थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये बवाल खड़ा हुआ है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर जो कहा उस पर बीजेपी हमलावर है, बवाल मच गया है। देखिए क्या हुआ।
2: इनके इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
3: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
2: आई हैव नॉट रीच देयर येट, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: आगे बढ़ते हैं, आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तानी आतंकी इस जश्न को मातम में बदलने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन देश में किसी तरह की अनहोनी ना हो इसके लिए हमारी खुफिया एजेंसियां पिछले कई महीनों से इन आतंकी हमलों से जुड़ी जो भी खुफिया जानकारी है उसको डिकोड करने में लग गई है। क्योंकि ऐसी आशंका है कि एक बहुत बड़ी साजिश 15 अगस्त के लिए रची जा रही है। इस दौरान उन्हें पता चला है कि इस बार आतंकी संगठनों ने भारत के कई शहरों में हमले की प्लानिंग बनाई है। इस इनपुट के बाद से देशभर की सुरक्षा एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन सबसे संवेदनशील हो सकते हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार पाकिस्तान के आतंकी संगठन एक साथ मिलकर भारत पर कई हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने अभी तक जिन जानकारियों को डिकोड किया है उसके मुताबिक 15 अगस्त को दहलाने के लिए ISI, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ISIL और खालिस्तानी टेरर नेटवर्क मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसमें कुछ खास आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें पहला नाम है फरहतुल्ला गौरी, जो साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। दूसरा नाम है तलहा सईद, जो लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेटा है। माना जा रहा है कि इन आतंकी संगठनों को भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले का जिम्मा दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन आतंकी संगठनों ने हमले की प्लानिंग जल्दबाजी में नहीं बनाई है, बल्कि ये प्लानिंग पिछले कई महीनों से चल रही थी। पाकिस्तान में मौजूद ये जो फरहतुल्ला गौरी है वो तो बहुत पहले से ही भारत में हमले की योजना बना रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो पिछले कई महीनों से भारतीय मुस्लिम युवाओं को बरगलाने और भड़काने का काम कर रहा था। सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर इस आतंकी ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ हिंद। वो चाहता था इस मिशन में भारत के मुस्लिम लड़के शामिल हो जाएं और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आत्मघाती हमले के लिए तैयार कर लिया जाए। खुफिया एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया है कि जून 2026 में आतंकी गौरी ने सिग्नल मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया था। इस मैसेजिंग ऐप में उसने एक ग्रुप बनाया और उसी का नाम स्टूडेंट ऑफ हिंद रखा। इस मैसेजिंग ग्रुप में कई लड़कों को शामिल करवा लिया गया था। इस ग्रुप में शामिल किए गए जो बहुत सारे शामिल थे उन मुस्लिम युवाओं को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा था। आर्मी ऑफ मेहदी दरअसल इराक का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है। आतंकी फरहतुल्ला गौरी की प्लानिंग यह थी कि वो भारतीय लड़कों को ही इस मिलिशिया में शामिल करवा दे। इसे आतंकियों की घुसपैठ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इससे पहले ही खुफिया एजेंसियों की नजर इस मैसेजिंग ग्रुप पर पड़ गई। फरहतुल्ला गौरी इतना शातिर है और इतना खतरनाक आतंकी है कि वो पाकिस्तान के 2 बड़े-बड़े आतंकी संगठनों के लिए एक साथ काम करता है। भारतीय गृह मंत्रालय के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों का मुख्य सदस्य है और दोनों के लिए ही हमले की योजनाएं बनाता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी का मुख्य काम आतंकी संगठनों के लिए लोगों की भर्ती करना है। वो ISIS और इससे जुड़े मॉड्यूल्स के लिए ऑनलाइन भर्तियां करवाता रहा है। आपको याद होगा ISIS में दुनिया के करीब 81 देशों के 40,000 युवाओं की भर्तियां की गई थी, जिसमें हजारों युवाओं की ऑनलाइन भर्ती की गई थी और माना जाता है कि इस काम में फरहतुल्ला गौरी शामिल था, बल्कि माहिर है। खुफिया एजेंसियों का यह मानना है कि पाकिस्तान और ISI ने गौरी नेटवर्क में शामिल जो भारतीय युवा हैं उनसे दिल्ली और उसके आसपास के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की रेकी भी करवाई थी। फरहतुल्ला गौरी के अलावा हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी भारत पर हमले की योजना बना रहा है और उसने अपने खास आतंकियों को इस काम में लगाया है। NIA ने इसी साल मई में एक व्हाट्सएप मैसेज डिकोड किया था जिसमें पता चला कि ISI और लश्कर ए तैयबा मिलकर भारत में 6 बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। ISI ने हमले की जिम्मेदारी हाफिज सईद के बेटे, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तलहा सईद को दी थी। तलहा सईद ने इस हमले के लिए 8 आतंकियों को खास तौर से ट्रेनिंग दिलवाई और फिर उनकी घुसपैठ करवा दी। यानी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी इस वक्त भारत में छिपे हुए हैं। इसी महीने ये भी पता चला है कि ISI ने भारत में आतंकी घुसपैठ और हथियारों की तरक्की के लिए गैंगस्टर नेटवर्क का इस्तेमाल किया है, तस्करी के लिए गैंगस्टर नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। उसने इस गैंगस्टर नेटवर्क के जरिए दिल्ली की अहम इमारतों को निशाना बनाने की प्लानिंग बनाई है। खुफिया एजेंसियों को 2 दिन पहले यानी समझ लीजिए 11 अगस्त को पता चला कि ISI ने खालिस्तानी आतंकियों को भी दिल्ली को दहलाने के काम पर लगाया। इससे पहले भी आपको पता होगा जब जब भारत के अंदर कई जगहों पर इस तरह की उपद्रव वाली हरकतें और उकसाने वाली हरकतों के पीछे खालिस्तानी जो संगठन है या फिर लोग हैं उनका हाथ रहा है। अब इसके लिए वो पाकिस्तान के गैंगस्टर नेटवर्क की मदद से दिल्ली तक IED पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी गैंगस्टर्स को अपने नेटवर्क के जरिए भारत में छिपे हुए खालिस्तानी टेरर मॉड्यूल्स तक आईईडी पहुंचाना है और फिर ये खालिस्तानी टेरर मॉड्यूल्स अपने साथियों की मदद से दिल्ली एनसीआर में हमले कर सकता है। आतंकी हमलों के इन्हीं खतरों के बीच दिल्ली पुलिस ने दो दिन पहले 19 आतंकियों के पोस्टर लगवाए थे जिसमें इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा, खालिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें थी। अब जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में विस्फोटों की डिलीवरी की जानी है और खुफिया एजेंसियां इन आतंकियों की गतिविधियों पर नजर बना के रखी हुई है। यह भी जानकारी मिली है कि पिछले कुछ महीनों में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सोशल मीडिया अकाउंट इस्लाहे उम्मत भी काफी एक्टिव है। वो भारत के युवाओं को बरगलाने, आतंकवाद की तरफ धकेलने की कोशिश में लगा है। इस अकाउंट के जरिए पता चला है कि जैश वीआईपी लोगों और अहम ठिकानों पर छोटे छोटे कई हमलों की योजना पर काम कर रहा है। यानी सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस बार पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। खुफिया एजेंसियां संभावित अटैक को नाकाम करने में लगी हैं और उनसे अगर कुछ कमी रह गई तो सुरक्षा बल आतंकियों से निपटने को तैयार है। दिल्ली की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंतजाम किए गए हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर सबसे बड़ा खतरा दिल्ली को ही है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी की हिट टीमें और स्नाइपर्स को भी इस बार लगाया गया है। खतरा इतना बड़ा है। इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम्स तैनात रहेंगी। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास, ये सब लगाए गए हैं। इसके अलावा लाल किले पर 15 अगस्त के लिए 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती तो रहेगी ही। देखिए,

0: आपके कंट्रोल रूम दिखा देती हूँ, जहाँ से जो है हजार से भी ज्यादा जो है कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस पे, और उसी की जो यहाँ से मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चौकसी हर एक शख्स पे, हर एक व्यक्ति पे जो है, हर एक रास्ते पे जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है।
1: सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो ये एक ऐप है जो दिल्ली पुलिस ने डेवलप करवाया है। इस ऐप का नाम है अभिज्ञान ऐप। फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और फिंगरप्रिंट लेने के बाद इस तरीके से रिजल्ट आते हैं। अगर ग्रीन रिजल्ट आया है तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति का किसी भी तरीके का कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है।
2: कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं या सही नहीं बता रहे, तो उसके बायोमेट्रिक तुरंत इसी अभिज्ञान के थ्रू करते हैं। अगर उसकी पॉजिटिविटी है तो उसको फिर।
1: कब से आप लोगों ने इसका डेमोंस्ट्रेशन स्टार्ट किया है और अभी तक कितने लोगों को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं?
2: ये पिछले 15-20 दिनों से स्टार्ट है, जब से हमने सेफ्टी सिक्योरिटी को स्टार्ट किया है, और इसमें हमने 459 लोगों को वेरीफाई किया है, जिनमें से 21 पीपल ऐसे थे जिनका कोई क्रिमिनल एक्टिविटी रही है।
3: इस खुफिया इनपुट से सुरक्षा एजेंसियां यूं ही परेशान नहीं है। वो जानती है कि इस वक्त भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान कितना उतावला है। ऑपरेशन सिंदूर की मार ने पाकिस्तान के आतंकियों और उसकी सेना को इतने गहरे जख्म दिए हैं कि वो बदले की आग में जल रहा है। आपको याद होगा पिछले साल नवंबर में लाल किले के पास एक बॉम्ब धमाका हुआ था, और इसीलिए चूंकि लाल किले के प्राचीर से ही 15 अगस्त को ये पूरा कार्यक्रम होता है, इसीलिए सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है। अब इस जानते हैं इस पूरी घटना में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इस खुलासे ने भारतीय खुफिया एजेंसियों को पहले से ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। यूएनएससी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लाल किले के पास जो बॉम्ब धमाका हुआ था उसमें अलकायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लिवांट जैसे देश भी कहा जाता है उनका हाथ था। यूएनएससी की निगरानी टीम ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें यह बताया गया है कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास जो हमला हुआ था उसमें अलकायदा के भारतीय उपमहाद्वीप विंग का हाथ था। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। ये पहली बार है जब यूएन के किसी दस्तावेज में भारत पर हुए हमले को सीधे तौर पर अलकायदा के आतंकियों से जोड़ा गया है। ये रिपोर्ट भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक कमजोर और बिखरा हुआ आतंकी संगठन था, लेकिन अब यह भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसने संगठन को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। वो छोटे छोटे आतंकी संगठनों में बंटकर एक बड़े संगठन की तरह काम कर रहा है। इससे वो सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बच रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अलकायदा ने लॉजिस्टिक्स और फंडिंग का एक नेटवर्क तैयार कर लिया है। आपको याद होगा लाल किले के पास ये जो धमाका हुआ था वो एक कार ब्लास्ट था। जानकारी क्या आई थी वो यही कि विस्फोटकों से भरी इस कार को कहीं और ले जाना था, लेकिन लाल किले के पास एक चौराहे पर ही इसमें धमाका हो गया था, और इससे एक बात साफ थी कि अलकायदा ने इस धमाके के लिए कार, विस्फोटक और हमलावर सब जुटा लिए थे। इसके लिए जो खर्च होना था उसकी फंडिंग भी कर ली थी। लाल किला ब्लास्ट में 12 से ज्यादा लोग मारे गए थे। विस्फोटक से भरी जिस कार में धमाका हुआ वो कार डॉक्टर उमर मोहम्मद चला रहा था। डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद के अलफलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। ये बॉम्ब धमाका 10 नवंबर 2025 की रात को हुआ था, और उस दिन दोपहर में सुरक्षा एजेंसीज को फरीदाबाद के एक घर से 2900 किलो विस्फोटक मिला था। बाद में पता चला कि विस्फोटकों के पकड़े जाने के बाद ही आतंकियों ने विस्फोटकों को दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू कर दिया था, और इसी दौरान लाल किले के पास उमर मोहम्मद वाली कार में धमाका हो गया।

यही बात रिपोर्ट में भी कही गई है कि अलकायदा छोटे छोटे आतंकी संगठनों में बंटकर काम कर रहा है। लाल किला ब्लास्ट के मामले में 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, 5 डॉक्टर थे, इनमें 3 तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हुए थे। यूएन की इस रिपोर्ट में एक और चिंताजनक बात सामने आई है। अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट को लेकर दावा है कि वो बांग्लादेश में भी पैर पसार रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश बॉर्डर भारत के लिए युद्ध का एक नया मोर्चा न बन जाए। पिछले काफी समय से बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरवाद में घिरता जा रहा है, भारत विरोधी मानसिकता पनप रही है। हालांकि अगर आप देखिए तो कूटनीतिक रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच में बातचीत चल रही है और एक कोशिश है कि दोनों देशों के रिश्ते में खटास ना आए, लेकिन ऐसे तमाम उपद्रवी जो चाहते हैं कि ये रिश्ते खराब हो, अलकायदा जैसे संगठन, वो अगर वहां पर अपना मुख्य बेस बना लेंगे तो एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि बांग्लादेश में अलकायदा पहले से एक्टिव है, लेकिन दूसरे नाम से। बांग्लादेश का आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम को अलकायदा का एक विंग माना जाता है। अंसार अल इस्लाम के जरिए अलकायदा ने 2015 के बाद वहां के कई धर्मनिरपेक्ष विचारकों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं तक करवाई हैं। अब यूएन की रिपोर्ट में कुछ ऐसी जानकारियां भी दी गई हैं जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण। रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकियों ने हमले के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आतंकी एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकियों ने अपनी विचारधारा को कई भाषाओं में फैलाने के लिए, बॉम्ब बनाने, टारगेट तय करने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, आतंकी संगठन डैश ने एआई की मदद से अपनी इंग्लिश मैगजीन में जहर और खतरनाक केमिकल्स बनाने के तरीके तक छापे हैं। भारत में अलकायदा का एक्टिव होना पाकिस्तान की सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकती है। अलकायदा और आईएसआई का एक पुराना याराना तो रहा ही है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को आतंकी हमले पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकी दी थी, और ऐसे में मुमकिन है कि आईएसआई अपने आतंकी संगठनों के बजाय अलकायदा का इस्तेमाल कर रहा है। यानी आईएसआई भारत पर हमले के लिए अलग अलग आतंकी संगठनों का मुखौटा पहनकर हमले कर रहा है, और इस खेल में उसने नेपाल में भी अपने पैर फैला लिए। अभी कुछ दिन पहले नेपाल के सुनसरी में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसको लेकर अब नेपाल की खुफिया एजेंसी एनआईडी ने बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक इन दंगों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। जिस सुनसरी जिले में सांप्रदायिक हिंसा हुई वो भारतीय सीमा से लगता है, इसीलिए वहां होने वाली हिंसा ने भारतीय एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया था। अब इस हिंसा में आईएसआई का हाथ सामने आने के बाद भारत पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। एनआईडी को पता ही चला है कि आईएसआई ने पाकिस्तान, तुर्की और कतर के जरिए नेपाल के मदरसों को अवैध फंडिंग दिलवाई, और सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के वक्त तुर्की में रहने वाला पाकिस्तानी मौलाना मोहम्मद इलियास सुनसरी की एक मस्जिद में मौजूद था। वो पिछले कई दिनों से वहां ठहरा हुआ था। ये सारी जानकारियां उन्हीं की है। नेपाल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद इलियास आईएसआई के लिए काम करता है। उसके संबंध आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन से भी है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ये तीनों आतंकी संगठन न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और यूके में भी प्रतिबंधित हैं। नेपाल की खुफिया एजेंसी ने चिंता जाहिर की है कि भारत से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना नेपाल और भारत दोनों के लिए खतरनाक है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि मौलाना इलियास अपने साथ कुछ और मौलानाओं को लेकर पिछले कुछ समय से नेपाल के उन जिलों में घूम रहा था जो भारतीय सीमा के बिल्कुल पास लगे हुए हैं, जैसे विराटनगर है, नेपाल का विराटनगर, रौथट नेपालगंज, कपिलवस्तु जैसे जो संवेदनशील जिले हैं वहां पर गया। ये सारे मौलाना इन इलाकों की मस्जिदों मदरसों में रुके थे, और माना जा रहा है कि वहां पर कट्टरपंथियों के साथ कई बैठकें हुई और इन मुलाकातों को सुनसरी से हुई सांप्रदायिक हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। नेपाल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक जिस वक्त आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तानी मौलाना अपने साथियों के साथ मौजूद था, उसी दौरान इन्हीं जिलों में बांग्लादेश के 9 मौलवी आए थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई नेपाल और भारत की खुली सीमाओं का फायदा उठाता रहा है। साल 2025 में आईएसआई ने प्रभात कुमार नाम के एक नेपाली नागरिक को जासूस बनाकर भारत में भेजा था। वो आईएसआई के लिए भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध करवाता था। उसने अलग अलग पहचान पत्रों के जरिए 16 सिम कार्ड हासिल किए थे। ये सिम कार्ड पाकिस्तान में एक्टिव पाए गए थे। तो ये
साल 2025 में ही

0: पाली नागरिक अंसारुल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से भारतीय सुरक्षा बलों के गोपनीय दस्तावेज तक मिले थे। साल 2025 में ही शेख सलीम नाम के एक नेपाली नागरिक को पकड़ा गया था, जो ISI और दाऊद के नेटवर्क से जुड़ा था और नेपाल के रास्ते भारत में हथियारों की तस्करी कर रहा था। ये पूरा नेटवर्क अब समझिए। अब माना यह जा रहा है कि ISI नए प्लान के तहत भारत और नेपाल की जो सीमा है वहां पर चाहता है कि सांप्रदायिक तनाव बढ़े और इसके लिए वो सांप्रदायिक हिंसा का सहारा ले रहा है। भारतीय सीमा से लगे नेपाली जिलों में ISI के मौलानाओं का होना खतरे का संकेत है। मुमकिन है कि वो नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की आग भारतीय इलाकों में फैलाने की भी धीरे धीरे साजिश में लग जाएं। भारत और नेपाल की करीब 1751 किलोमीटर की खुली सीमाएं और इन खुली सीमाओं के पास नेपाल के क्षेत्र में करीब 911 वैध, करीब 3000 अवैध मदरसे और मस्जिदें हैं। इनमें होने वाली अवैध गतिविधियां भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। यह संदेह इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि नेपाल के जिन इलाकों में ISI का ये मौलाना इलियास कट्टरपंथियों के साथ बैठ के कर रहा है, वहां से लगते भारतीय जिलों में अच्छी खासी जो आबादी है वहां पर मुस्लिम रहते हैं और कोशिश उनकी यही है कि वहां से कोई साजिश रची जाए और बरगलाने की एक पूरी कोशिश की जाए। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये खतरा है और नेपाल के विराटनगर से बिहार का मधुबनी और अररिया जिला भी लगता है। मधुबनी में अगर आप देखिए तो करीब 18% और अररिया में करीब 43% जो है वो मुस्लिम आबादी है और ये माना जा रहा है कि क्या वहां से घुसपैठ कराकर कुछ लोगों को घुसा देने की कोशिश हो सकती है, बरगलाने की कोशिश हो सकती है, या फिर नेपाल के जिस सुनसरी जिले में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी वो आप देखिए अररिया से जुड़ा हुआ है, तो क्या उसी के बहाने ये आग फैलाने की कोशिश है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि नेपाल के रोहतक से बिहार का सीतामढ़ी जो है और पूर्वी चंपारण है वो जुड़ा है, वहां पर भी आप देखिए तो कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी गंभीर हो रही हैं और ये सब इशारा कर रहे हैं कि इन तमाम जगहों पर घुसपैठ के जरिए लोगों को बरगलाने की कोशिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नेपाल के नेपालगंज से यूपी का बहराइच, कपिल वस्तु से यूपी का सिद्धार्थनगर जुड़ा है। बहराइच में अगर आप देखिए तो इन तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अच्छी खासी 30-35% मुस्लिम आबादी है, तो क्या वहां से लोगों को घुसपैठ कराने की कोशिश होगी या फिर बरगलाने की। नेपाल और भारत की खुली सीमाएं हमारे खुशहाल रिश्तों की पहचान है। ISI इनमें जहर घोलने की कोशिश में लगा है। भारतीय एजेंसियों की चुनौती यह है कि वो ISI के कट्टरपंथ का जहर भारत के इन इलाकों में फैलाने की फिराक में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की नापाक साजिशों की बात हो ही रही है, तो इसके साथ हम आपको पाकिस्तानी सेना की कायरता की एक कहानी भी बता देते हैं। खबर यह है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमले किए थे तब पाकिस्तान ने डर के मारे अपने F-16 छिपा दिए थे। उन्हें डर था कि अगर F-16 मैदान में उतरे तो भारत का राफाल उसे पलक झपकते मार सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी खालिद चिश्ती ने माना कि पाकिस्तान ने F-16 की पूरी फ्लीट को युद्ध के मैदान में इसलिए नहीं उतारा क्योंकि उन्हें राफाल और उनकी मेट्योर मिसाइल का डर था। पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 4 दिन चले युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर बड़े हमले किए थे और इसके जवाब में पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी बयानबाजियां ही की थी। अब इस ऑपरेशन को लेकर कई चीजें साफ हो रही हैं। खालिद चिश्ती ने तो यहां तक कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा F-16 को छिपाना सावधानी नहीं बल्कि भारतीय एयरफोर्स का खौफ था।
1: F-16 इस्तेमाल क्यों नहीं किए? F-16 उस रात को हवा में थे लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन के साथ थे। लिमिटेशन ये थी कि राफेल हवा में है जिसके पास 150 से ज्यादा किलोमीटर दूर का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है।
2: बिल्कुल ठीक।
1: जब राफेल आपको याद होगा नहीं आया था, अभिनंदन का वाक्य था, तो मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, वो राफेल का मतलब कोई ये नहीं था कि डेकोरेशन चाहिए था, उसको पता था कि 150 किलोमीटर का मिसाइल उस पर लगाना था जो हमारे जहाजों को मार सकता। F-16 जो पाक फिजाइया के पास है वो तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब हमारा मिसाइल है जो मैक्सिमम जाए, तो अगर आप 150 किलोमीटर से दुश्मन आपको मार सकता है तो आपको 70 तक तो नहीं जाने देना, उससे पहले वो आपको मार
2: देगा।
1: तो F-16 हवा में थे, बड़ा पोर्टेंट रोल कॉम्बैट किया, लेजेंडरी जहाज भी है, सीजन पायलट्स भी हमारे 44 साल हो गए हमारे पास तकरीबन F-16 को आए माशाल्लाह, तो बैटल टेस्टेड जहाज है, बहुत काम किया इसने, कोई शक नहीं। लेकिन उस दिन क्योंकि हमने राफेल को टारगेट करना था और MiG-29 Mirage 2000 SU-30 टारगेट करना था, इसकी रेंज उतनी नहीं थी।
0: खालिद के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स को मालूम था कि उनकी F-16 में जो मिसाइलें लगी हैं उसकी तुलना में राफाल की मिसाइल्स ज्यादा ताकतवर हैं। F-16 में मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका एमराम कहते हैं जिसको, इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है, जबकि राफेल में जो मेट्योर मिसाइल होती है उसकी रेंज 120 से 200 किलोमीटर। पाकिस्तानी पायलट्स का मानना था कि राफेल और F-16 की अगर लड़ाई हुई तो राफेल बहुत ज्यादा दूरी से उन्हें मार गिराएगा, जबकि F-16 को राफेल गिराने के लिए उसके बहुत पास जाना पड़ेगा, जो युद्ध क्षेत्र में बहुत खतरनाक होता है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भी काफी पहले से ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान ने डर की वजह से F-16 नहीं भेजे। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि पाकिस्तान के पायलट्स और एयरफोर्स के अधिकारियों ने मीडिया के सामने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन सच्चाई वो भी जानते थे। वो जानते थे कि राफेल से लड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनके बस की बात नहीं। मेट्रोर मिसाइल से पाकिस्तान इसलिए भी डर रहा था क्योंकि ये मिसाइल नो एस्केप जोन में ज्यादा खतरनाक साबित होती है। नो एस्केप जोन क्या होता है? वो इलाका है जिसमें विमान के लिए मिसाइल से बचना नामुमकिन हो जाता है, फिर चाहे वो कितना भी मुड़कर कितना भी बचकर भागने की कोशिश करे। मेट्रोर मिसाइल का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर है, यानी टारगेट लॉक होने के बाद अगर वो उसके 60 किलोमीटर रेंज में आ गई तो तबाही तय है। ये रेंज F-16 के एमराम मिसाइल की रेंज से करीब 3 गुना ज्यादा है। युद्ध क्षेत्र में राफेल का पायलट मेट्योर मिसाइल को फायर करके एमराम की रेंज में आए बगैर वापस लौट सकता है। अगली खबर का अब रुख करते हैं। यह हमेशा कहा जाता है कि डॉग्स जो हैं, कुत्ते जो हैं, वो इंसान के सबसे वफादार साथी हैं, और यकीनन ऐसे इस देश में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो बहुत प्यार से अपने घर में अपने डॉग को रखते हैं और उनका रिश्ता ऐसा होता है, ऐसा संबंध होता है। कहते हैं कि जो लॉयल्टी आपको एक डॉग से मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती है। ऐसे लोग अपने डॉग से बहुत अटैच्ड होते हैं और ये बात बड़ी अच्छी भी है, लेकिन अक्सर एक बहस छिड़ती है कि जो लोग पेट डॉग्स रखते हैं क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। आज ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आइए अब आपको एक घटना बताते हैं। पिटबुल ये जो ब्रीड है पेट डॉग्स की, उसको लेकर गंभीर हमलों की खबरें बीच बीच में आती रही हैं, और ऐसे में जिनके पास पिटबुल डॉग है उनको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। कल पंजाब के पटियाला में एक पति पत्नी पर पिटबुल डॉग ने अचानक हमला किया। आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे दोनों पीड़ित एक घर के बाहर खड़े थे, घर का गेट खुलता है और ये पिटबुल डॉग बाहर आते ही सीधा अटैक करता। अब सवाल यही है कि जिन शख्स ने इस पिटबुल डॉग को रखा है उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जरा सावधानी के साथ रखें। अब पहले इसका शिकार ये महिला होती है और देखिए फिर जब ऐसी नौबत आ गई उसके बाद जो अंदर से सामने व्यक्ति आया भी था वो चला गया, और ये क्या हालत इनकी हो रही है। फिर एक महिला लाठी लेकर आती है, लेकिन तब तक बात कैसे बिगड़ चुकी थी। महिला का पति उसे बचाने की कोशिश करता है और वो भी पिटबुल डॉग का शिकार हो जाते हैं। पिटबुल डॉग का शिकार बन रहे पति पत्नी को बचाने के लिए घर के भीतर से एक महिला आई, वो डंडा लेके पड़ोस के लोग भी प्रयास करते हुए दिखे, लेकिन मतलब आप सोचिए कि क्या हालत है। आसान नहीं था उनको छुड़ाना। करीब 75 सेकेंड्स का ये हम वीडियो है पूरा। पति पत्नी दोनों काफी जख्मी हैं और गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। पीड़ित अंकित सभरवाल और शिफाली सभरवाल पटियाला के घूमर नगर में किराए का घर देखने के लिए वहां गए थे, और अंकित एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं और शिफाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। लेकिन उनके साथ ये जो हुआ है, जहां उनकी प्लास्टिक सर्जरी की एक करने की नौबत आ गई है, पटियाला पुलिस ने BNS की धारा 291 के तहत FIR दर्ज की है। धारा 291 जानवर को पालने वाले उस व्यक्ति के खिलाफ लगता है जो अपने जानवर को किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करने से रोकने में नाकाम होता है। सवाल यही है, और ये सारी की सारी जिम्मेदारी उस शख्स की है जिन्होंने इस जानवर को पाला है। अक्सर लोगों का गुस्सा डॉग पर निकलता है या कुत्ते पर निकलता है, लेकिन ये गलत है। 5,000 रुपए तक की जुर्माना और 6 महीने जेल की भी इसमें प्रावधान है इस धारा में। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है, क्योंकि सारा का सारा दोष, सारी बहस इन डॉग्स के खिलाफ छेड़ दी जाती है, जबकि उनकी गलती नहीं है, गलती उस शख्स की है जिसने इन्हें पाला है। क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि किसी अजनबी व्यक्ति को देखकर अपने घर अपने मालिक को बचाने के लिए वो हमला भी कर सकता है। ऐसे में सारी जवाबदेही डॉग ओनर की है। देखिए
2: कि मेरी वाइफ की जान भी जा सकती थी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਸਨੇ ਬਾਜੂ ਤਾਂ ਖਾਈ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਉਹ ਗਰਦਨ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਗਰਦਨ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮੁਰੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੋਨੋਂ ਬਾਜੂ, ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਜੀ ਬਾਜੂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ।
3: FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਇਆ ਪਲੱਸ ਉਹ ਗਲੀ ਗੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਆਫ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ।
0: और ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि अक्सर ऐसी बहस में डॉग्स को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि गलती डॉग्स की नहीं, डॉग ओनर्स की होती है, उनको संभालने की जरूरत है, और अगर वो संभाल कर इस डॉग को रखते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। हम लोग को लेकर कई बार सोशल मीडिया की बहसें शुरू हो जाती हैं, अदालतों तक ऐसे मामले पहुंचते हैं। 2022 से 2024 के बीच डॉग बाइट केसेस के आंकड़े हम आपको दिखाना चाहते हैं। 2022 में लगभग 21, समझ लीजिए 21.9 यानी 21,90,000 के आसपास ऐसे डॉग बाइट्स के केस दर्ज हुए। 21 मामलों में रेबीज से मौत भी हुई। 2023 में भी अनेकों ऐसे मामले हुए, 30 लाख 30.5 लाख के आसपास। 2024 में 37 लाख के करीब केसेस हुए, और आप देख ही रहे हैं मरने वालों का भी आंकड़ा। आज सवाल यही है कि जितने भी लोग डॉग्स को रखिए, डॉग्स सबसे लॉयल साथी होते हैं इंसान के, कोई इसमें बहस है भी नहीं, और जो प्यार कई लोगों को अपने डॉग से होता है उसकी कद्र हमेशा होनी चाहिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो डॉग रख रहे हैं उसकी वजह से किसी दूसरे की जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए। और अब आपको वक्त का एक बड़ा बदलाव दिखाते हैं। जो रशिया तेल का बड़ा उत्पादक है, जहां से भारत अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है, अब उसी रशिया को भारत पेट्रोल बेच रहा है। यह दावा ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में किया है। ब्लूमबर्ग के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन के हमलों की वजह से रशिया की रिफाइनरीज जो हैं उनमें पेट्रोल की भारी कमी हो गई है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट इस समय दो बड़े युद्ध के घातक असर के सीधे तौर पर जूझ रहा है। एक तरफ यूक्रेन लगातार रशिया की रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। इन युद्धों ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बहुत परेशान कर दिया है। स्थिति यह हो गई है कि जो रशिया पारंपरिक रूप से दुनिया भर में ईंधन का सप्लायर रहा है, उसे अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल दोनों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पड़े हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के हमलों की लहर के बाद जुलाई महीने में रशिया की रिफाइनिंग जो क्षमता है, जिससे वो रिफाइंड ऑयल बनाता था, पेट्रोल बनाता था, वही रिफाइनिंग क्षमता पहले के मुकाबले घटकर 36 लाख बैरल प्रतिदिन पर आ गई है, जो सामान्य स्तर, जो एवरेज स्तर था, नॉर्मल स्तर, उससे एक तिहाई कम है। अब यूक्रेन ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। पिछले हफ्ते 5 रिफाइनरीज और इस हफ्ते कम से कम 2 और एनर्जी साइट्स को निशाना बनाया गया। इस युद्ध में रशिया की 33 में 26 रिफाइनरीज को कभी ना कभी निशाना बनाया गया है। अगस्त महीने में रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की झड़ी लग गई। 29 जुलाई और 2 अगस्त को सैराटोव और रियाजान रिफाइनरीज को ड्रोन हमलों के चलते क्रूड प्रोसेसिंग रोक देनी पड़ी। अब सोचिए 31 जुलाई जब वोल्गोग्राद रिफाइनरी ड्रोन हमले के बाद ठप, 6 अगस्त को मॉस्को से 250 किलोमीटर की दूरी पर है 1.5 करोड़ टन क्षमता वाली यारोस्वलाव जो रिफाइनरी है उस पर बड़ा ड्रोन हमला हो गया। 8 अगस्त को इल्स्की ऑयल रिफाइनरी में ड्रोन हमला हुआ, भीषण आग वहां पर लग गई। 10 अगस्त को रशिया के ट्यूमन क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल प्लांट और ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन अटैक हुआ। 11 अगस्त को ओरनबर्ग रीजन की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। अब एक के बाद एक ये हमले। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ये पहली बार है जब रशिया ने भारत से फ्यूल मंगाया है। ये खरीद दिखाती है कि रशिया में ईंधन का संकट कितना विकराल रूप ले चुका है। इसकी शुरुआत 5 अगस्त को हुई जब रशिया को भारत से अपनी पहली खेप प्राप्त हुई, और ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसी और भी खेपें रास्ते में है। इस पूरे व्यापार के केंद्र में भारत की रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड का नाम सामने आया है, जिसमें रशिया की बड़ी तेल उत्पादक कंपनी रोजनेफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी है। अब भारत से रवाना होने वाले इस पेट्रोल को इजिप्ट के तटों पर रशिया लिंक टैंकर्स की एक लंबी चेन के जरिए ट्रांसफर किया जाता है और वहां से रशिया पहुंचाया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले साल जुलाई में यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से नायरा एनर्जी पूरी तरह से डार्क फ्लीट टैंकर्स और ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशंस पर निर्भर हो चुकी है। भारत में गुजरात के तटीय इलाके में वाडेनार में स्थित नायरा की रिफाइनरी की क्षमता जो है वो 400,000 बैरल प्रतिदिन है। अब इसके प्रमुख खरीदार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जिसने हाल ही में खुद का ईंधन उत्पादन शुरू कर दिया, जिसके बाद इसे नए खरीदार की जरूरत पड़ी। अब इस रिपोर्ट में ही शिप ट्रैकिंग डेटा के जरिए रशिया को जाने वाले सप्लाई चेन से जुड़े कई दावे किए गए। फ्यूल की पहली खेप के लिए 18 जून को वाडेनार से 42,000 टन पेट्रोल का कार्गो लोड किया गया। ये लोडिंग रशिया के झंडे वाले प्रोडक्ट टैंकर साइक्लोन में की गई, जिसे पहले अग्नि के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इस ईंधन को 6 जुलाई को इजिप्ट के मेडिटेरेनियन सी के तट के पास डैमेरा पोर्ट पर ओमान के झंडे वाले टैंकर गार्नेट में ट्रांसफर किया गया और यह जहाज अगस्त की शुरुआत में रशिया जा पहुंचा। कहानी यही खत्म नहीं होती है, इसके बाद और भी पेट्रोल रशिया पहुंच सकता है। 6 जुलाई को प्रोडक्ट्स टैंकर्स ने वाडेनार में लगभग 40,000 टन ईंधन लोड किया और जुलाई के अंत में डैमेरा पोर्ट पर एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया। हालांकि इस रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया है कि यह खेप किस जहाज में ट्रांसफर की गई। हालांकि अंदाजा लगाया गया है कि यह बीस्ट हो सकता है, क्योंकि यह 30 और 31 जुलाई के आसपास डैमेरा पोर्ट पर था और इसका लोड बढ़ा था। बीस टैंकर ने अपना डेस्टिनेशन मोरक्को की तरफ जाने का संकेत दिया था, लेकिन डेटा से पता चला है कि वो उस पोर्ट से भी आगे निकल गया और अब अटलांटिक महासागर में उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा कैमरून के झंडे वाला जो प्रोडक्ट्स टैंकर है फोटोन, वो भी 13 जुलाई को वाडेनार से रवाना हुआ था और 28-29 जुलाई को डैमेरा पोर्ट पर अपना पेट्रोल रशिया झंडे वाले टैलिस्मान को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीस्ट और टैलिस्मान दोनों का डेस्टिनेशन अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस पैटर्न से पता चल रहा है कि डैमेरा पोर्ट भारत के पेट्रोल को रशिया भेजने का काम आसान कर रहा है। ये पूरा घटनाक्रम इस बात की गवाही देता है कि किस तरह यूक्रेन के हमलों ने रशिया के ऊर्जा सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और कैसे वैश्विक प्रतिबंधों के बीच भारत और रशिया के बीच ये नया और गोपनीय व्यापारिक गलियारा बनकर तैयार हुआ है। ये दावा एक बार फिर से आपको बता दें, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से किया गया है। और अब आपको वैश्विक ऊर्जा समीकरण भी देखने चाहिए, जिसने दुनिया के नक्शे पर नए पार कॉरिडोर्स खड़े कर दिए हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स पूरी तरह बदल गया है। भारत ने इस उथल पुथल के बीच अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे कई लोग हैरान हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में भारत का रशिया से कच्चा तेल आयात लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जुलाई में भारतीय खरीदारों ने 60,500 करोड़ रुपए का रशिया से आने वाला कच्चा तेल खरीदा, जो जून के मुकाबले लगभग 2.1% ज्यादा है। अब भारत का जो ये रशियन क्रूड इंपोर्ट है वो जुलाई में रिकॉर्ड 28,00,000 बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया। ये भारत के कुल क्रूड इंपोर्ट का 55.5% हिस्सा है, यानी भारत की जरूरत का आधा से ज्यादा तेल अब अकेले रशिया से आ रहा है। जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए कि तेल का खेल कितनी तेजी से पलटा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत रशिया से मामूली तेल खरीदता था। युद्ध से पहले यानी साल 2021 में भारत रशिया से औसतन 1,00,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कच्चा तेल खरीद रहा था, जो कुछ खरीद का सिर्फ लगभग 2.5% था। फरवरी 22 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रशिया से कच्चे तेल की खरीद में जबरदस्त उछाल आया और उस साल भारत ने रशिया से औसतन 7.5 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा। फिर साल 2023 रशिया से कच्चे तेल की खरीद 18 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई और रशिया भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया और भारत की कच्चे तेल खरीद में रशिया की हिस्सेदारी 39% हो गई। 2024 में भारत की रशिया से कच्चे तेल की खरीद 18 लाख बैरल प्रतिदिन पर लगभग स्थिर रही। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और यूरोपीय खरीदारों के हटने के बाद रशिया ने एशियाई देशों को भारी डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया और भारत ने इस मौके को जबरदस्त तरीके से उस वक्त भुनाया था। यानी एक तरफ रशिया पर निर्भरता बढ़ी है तो दूसरी तरफ भारत सरकार ने अपनी एनर्जी बास्केट को बहुत मजबूत सुरक्षित कर लिया है। संसद में दिए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आइए आपको बताते हैं, भारत अब सिर्फ 6 के बजाय 15 देशों से एलएनजी आयात कर रहा है। क्रूड ऑयल के मामले में भारत ने अपने पैर फैलाए हैं, 27 देशों के पहले करता था, अब 41 देशों से तेल मंगाना शुरू कर दिया है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। दुनिया के माहौल को देखते और समझते हुए भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता बढ़ा रहा है। अभी भारत साल में लगभग 26,71,00,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल रिफाइन कर सकता है, जबकि पिछले साल भारत की क्षमता 25,80,00,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल रिफाइन करने की थी। 2014 में यह क्षमता 21.5 करोड़ मीट्रिक टन सालाना थी, अब इसे 2030 तक 31 करोड़ मीट्रिक टन तक ले जाने का लक्ष्य है। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग देश है। इस क्षमता के दम पर ही भारत ने साल 2024-25 में 50 से अधिक देशों को 4,29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। और अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी। ये खबर उस पिता की है जिसके अंतिम संस्कार में उसकी 3 बेटियों में से कोई नहीं पहुंचा, और जब अस्थि विसर्जन की बारी आई तब बेटियों ने कहा कि वो मजबूर हैं। ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन अब इसमें आगे क्या हुआ है और जानते हैं, वो ना आ पाने के लिए अपने आप को शर्मिंदा जरूर बता रही है। बिल्कुल अंजना, हरियाणा के सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग कपड़ा व्यापारी शिवचरण गुप्ता के निधन के बाद से काफी विवाद हो रहा है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद अब उनकी अस्थियों के विसर्जन में भी 3 बेटियां शामिल नहीं हुई। बुधवार को हरिद्वार में शिवचरण गुप्ता के बड़े भाई महेंद्र गुप्ता ने वृद्धाश्रम से जुड़े लोगों के साथ गंगा में अस्थि विसर्जन किया। वृद्धाश्रम प्रबंधन ने शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी से बात की तो उसने कहा कि आप अस्थियों का अच्छे से विसर्जन कर देना, आप खुद को पिता का छोटे भाई समझकर पूरी रस्में निभा देना। बड़ी बेटी ने इसके साथ ही कहा कि वो शर्मिंदा है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरी रही होगी। बड़ी बेटी ने यह भी कहा कि वो और उनकी बहनें अपने पिता से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनके पिता उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। बेटी ने अपनी मजबूरी का भी जिक्र किया और कहा कि अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो वो खुद हरिद्वार पहुंचती। पिता की अंतिम यात्रा में शामिल ना हो पाने के बावजूद बेटियां अपने स्तर पर अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में निभाने की तैयारी कर रही है और 13वीं की रस्म अपने घर पर करने की बात कही। इससे पहले शिवचरण गुप्ता की मौत के बाद उनकी 3 बेटियों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने को लेकर विवाद हुआ था। जब वीडियो कॉल पर बेटियां उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई थीं,
4: अब बहन जी मैं बताऊ उनको मैं क्यों भाई तुम जाओ कहूंगा तो मतलब नहीं मानना की भाई कुछ खोद कर आया है।
5: सारे वायरल हो गए हैं, सारे आज तक में सारे मेरे रिश्तेदार सब सब बोल रहे हैं, सारे हमारे आप समझ नहीं रहे हो। बस
4: नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा बहन जी, मतलब मैं खुद नहीं चाहता था इतना हो गया।
5: रखना चाहते थे सालों पाल से पापा को, वो दिशा बीच वाली तो 2 बार लेके गए उनके आदमी बेचारे और पापा नहीं रह पाते थे कहीं एक्चुअली बेटी के घर पे। पापा का थोड़ा स्वभाव ऐसा था, नहीं रह पाते तो नहीं रहना चाहते।
4: बेटा सुनो, आप मेरी स्टेटमेंट सुनोगे ना, मैंने यही कहा था कि 3 बेटियां रखने को तैयार है।
5: एक तरफा दिखा रहे खाली मीडिया वाले, एक तरफा दिखा देते हैं।
6: कि कोई मजबूरी होगी या क्या है तो रियल फैक्ट मालूम पड़े तो मालूम पड़े ना। अभी तो इतनी दूर से कोई नहीं आया, या उनकी आर्थिक तंगी है, उनके हस्बैंड ने मना कर दिया, अब वो तो बेटियां हैं क्या कर सकते हैं।
5: आप बस मैं आते एक ही बात कहूंगी, हरिद्वार में जाके गंगा जी में विसर्जित कर दीजिएगा।
6: ठीक है,
5: और अगर कभी भी मेरा उस तरफ कभी भी आना होगा तो हम आपसे जरूर मिलके जाएंगे। कभी भी आना होगा।
6: बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल आप हमारी छोटी बहन जी है, कोई दिक्कत नहीं, जब चाहो जब आओ।
5: अभी भी जिंदगी इतनी बड़ी है, मुझे भी काम पड़ सकता है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी करूँ।
6: ये तो है बहन जी।
5: हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने उनका छोटा भाई समझ के
6: बिल्कुल
5: वो पिताजी उनकी अस्थियां जरूर बाहर दीजिएगा गंगा जी।
6: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, नहीं मैं आज भी हमने उठाई थी तो आज उठा के फिर मेरा ध्यानामा बहन जी को बता दो, जो बहन जी कहेंगी वही उसी हिसाब से करेंगे।
5: हरिद्वार में गंगा जी में विसर्जित कर दीजिएगा, उनको आत्मा को शांति मिल जाएगी।
6: ठीक है बहन जी, ठीक है बहन जी,
5: ठीक है।
7: वो कर दीजिएगा और देखिए और अगर तेरहवीं वाले दिन हो सके तो आप लोग भी पंडित जी हम लोग तो करेंगे इधर।
8: हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे।
7: हाँ पापा को जो सामान पसंद था वो सारी चीजें करके मैं मतलब अपने हिसाब से करूंगी, जैसे मैंने मम्मी का किया था वैसे ही करूंगी।
0: इस घटना में पिता के अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन में शामिल न होने पर बेटियों पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक ऐसी खबर आई है जहां एक बेटे की वजह से मानवता शर्मसार हो गई। एक बेटा जो जीते जी पिता का सहारा नहीं बन पाया, उसने मरने के बाद सादे कागजों पर पिता का अंगूठा लगवाया ताकि उनकी जायदाद हथिया सके।
9: ये तस्वीर लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र के खड़ोहा गांव की है। महेंद्र नाम के इस बेटे ने इंसानियत को ताक पर रख दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये शख्स अपने मृत पिता का हाथ पकड़ कर सादे कागजों पर जबरन अंगूठे लगवा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि इस घटना में बेटियां ही पिता का सहारा बनी। साल 2023 में जब बुजुर्ग छत्रपाल को घर से निकाला गया तो बेटियों ने उन्हें अपने घर पनाह दी। पिता ने खुश होकर अपनी जमीन बेटियों के नाम कर दी और अखबार में इश्तेहार देकर बेटा बहू को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। बेटियों का आरोप है कि इलाज के बहाने भाई पिता को अपने साथ ले गया और चंद दिनों के भीतर ही पिता की मौत हो गई। जब बहनें अंतिम संस्कार के लिए पहुंची तो भाई ने उनके साथ भी बदसलूकी की। सोचिए आज समाज किस दौर में पहुंच गया है जहां जायदाद के लिए पिता का शव भी व्यापार की वस्तु बन गया।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और गजब दुनिया है, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। नमस्कार।

0: सियासत के दो रंग, एक तरफ नई जनरेशन की नई डिमांड है, दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए पुरानी सियासी रीत चली आ रही है। एक तरफ जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन करके साफ पानी, साफ क्लासरूम, साफ टॉयलेट, स्कूल जाने के लिए सड़क, स्कूल में टीचर, ईमानदारी से भर्तियां मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्ष से महिलाओं को पैसा बांटो और सत्ता हासिल करो वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाती सियासत है। यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए वाली स्कीम ला सकती है, जिसका जिक्र आते ही अखिलेश यादव पहले इसे जुमला बताते हैं, लेकिन फिर खुद भी महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा करते हैं।
1: इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर वाले दौर से कहीं आगे, जब बच्चों को गड्ढे वाली सड़क पर बच्चों दिखाओ चलकर वाली नौबत ला दी जाती है, तो आज तक ने दिखाया आपको कि बच्चे अब टूटी सड़क को अपनी नियति मानकर नहीं चलने वाले। तभी तो बुधवार को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में पेगलवाड़ी गोयरेवाड़ी रोड पर टूटी सड़क को बनवाने की मांग को लेकर आदित्य और स्मिता ने हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर एक इंटरव्यू किया।
2: अब ये इच्छा है कि हम थोड़ा चांगला है पाजे, सगला चांगला है पाजे, एवढी आमची इच्छा।
1: जो हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर प्रशासन को जगा सकते हैं, उन तक आज तक भी पहुंचता है। हाथ में आज तक का माइक थमाया और पूछा, क्या हुआ जो आपको आवाज उठानी पड़ी?
2: स्कूल में जाते समय फाटे पे जाते जाते तो हमारा ड्रेस खराब हो जाता है, कभी कभी हम चिखल में गिर जाते हैं।
3: जो शूज या चप्पल पहनते उसका क्या हालत होता है?
2: जब चुखल में अटक गई तो वो निकलते समय वो डायरेक्ट टूट जाती
3: है। और ये जो आपके साथी है,
2: और हम गिर जाए तो स्कूल में स्कूल को डांडी मारनी पड़ती है।
3: स्कूल जाते नहीं हो,
2: उधर से ही रिटर्न आना पड़ता है।
1: आदित्य और स्मिता ने एक वीडियो बनाकर बता दिया कि बच्चे अब देश में सत्ताधारियों से चाहते क्या है, जिसके बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर में उनके गाँव की सड़क बनने लगती है।
3: मैं खड़ा हूँ अभी पेगलवाड़ी में, जहाँ के दो बच्चों ने पूरी सिस्टम यहाँ की हिला दी है। यहाँ कल रात में जो रास्ता बच्चों ने वीडियो में दिखाया था, वो रास्ते पे कल रात को 1:30 बजे तक वहाँ मिट्टी और कंकड़ डाले गए, और आज जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे यहाँ, तब जाके रोड रोलर आया था। बच्चों ने कल से सिस्टम मिला, तो कल से क्या क्या यहाँ हैपनिंग हो रही है?
4: अभी बच्चों का जब से वीडियो वायरल हुआ है, तब से वो रास्ते का काम उस पे खड़ी वगैरह डाला है, उस पे रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी ये उन्होंने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता।
1: इस वक्त देश के बच्चे और युवा चाहते क्या हैं? क्या सरकारें सुन नहीं पा रही? क्या राजनीतिक दलों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि नई जनरेशन नई डिमांड करती है? वो सड़क, स्कूल, टीचर, साफ पानी, साफ टॉयलेट चाहती है, लेकिन नई जनरेशन की नई डिमांड के बीच में सियासत सत्ता हासिल करने और सत्ता को बनाए रखने के पुराने ढर्रे, पुराने फॉर्मूले पर चलना चाहती है। जहां अखिलेश यादव पहले से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जीते तो महिलाओं को 40,000 रुपए साल भर में देंगे, तो अब उत्तर प्रदेश में खबर है कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
5: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है, विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो SC ST OBC महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी विचार कर रही है।
1: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब महिलाओं के वोट को लेकर निश्चिंत योगी सरकार पहले से रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसा चुनाव से पहले बांटने वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल करने की रणनीति पर विचार होने लगा? क्या इसकी पहली वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थी? क्या दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 17 में से 12 सीटें यानी वो 70% सीटें जीती, जहां 2024 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी। क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह ये भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती है? 2007 में बीएसपी को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
6: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है, हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है? चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे पीडीए जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को।
7: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है, हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो एनसीआरबी के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे उसको आपने बंद कर दिया। अभी आप कौन सी योजना लेकर के आए हो सकता है चुनावी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है।
1: बीजेपी अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही है तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं।
8: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा, उनको धोखा दे दिया 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपये हम देने जा रहे थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500 अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं, तो 12 महीने देना है 3,000 तो कितना हुआ 36,000 रुपये। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं।
0: यूपी चुनावों में जेनजी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी बड़ा टेस्ट है और इनकी ये परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है, इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथगंडे अपना रही हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि यूपी में जेनजी किसका साथ देता है।
9: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं,
10: तो यूपी चुनावों के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, निर्देश सीधे ऊपर से। ये कल की ही तस्वीरें, यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपालें लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा वार 10-10 युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
11: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेके युवा संवाद
12: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
10: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनावों में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय है, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं।
13: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
10: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईआईटी की तैयारी करने वालों को आईआईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
9: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी और पढ़ाने वाले कौन होंगे, पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
10: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, यहाँ भी जिताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
14: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
10: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
14: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
15: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी। और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
10: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर लग रहा है।
14: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
10: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है। आतंकी हमले की साजिश बहुत गहरी है क्योंकि लश्कर के 8 सुइसाइड बॉम्बर घुसपैठ करके देश में दाखिल हो चुके हैं। लश्कर के फिदायीन दस्ते को दिल्ली के 6 ठिकानों पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
16: पंद्रह अगस्त को दिल्ली दहलाने का जिहादी प्लान, छह ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में आतंकी, लश्कर की फिदाइन टीम 8 कर सकती है अटैक। ISI का प्लान और तलहा सईद का सुसाइड दस्ता, दिल्ली में हाई अलर्ट ऑपरेशन 15 अगस्त। बीते साल नवंबर में लाल किले के पास आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल ने फिदाइन हमले को अंजाम दिया था। डॉक्टर उमर ने विस्फोटक से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था, लेकिन लाल किले पर हमला करने में नाकाम रहा। अब इसी पैटर्न पर लश्कर का फिदाइन दस्ता दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा फिदाइन हमले की प्लानिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं।
17: मेरे हाथ में मौजूद इस कागज में दिल्ली को दहलाने की खुफिया एजेंसी का खौफनाक सच मौजूद है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से 11 अगस्त को जारी किए गए इस इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी में फिदाइन हमले से सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि लश्कर के फिदाइन हमलावर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तलहा सईद के इशारे पर दिल्ली में घुसपैठ कर चुके हैं। शायद इसी वजह से दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है।
16: बहुत गौर से अलर्ट की कॉपी को देखिए। कॉपी की एक एक लाइन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की गवाही देने को काफी है। सबसे पहले अलर्ट की कॉपी को डिकोड करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, खालिस्तानी आतंकी और लश्कर की तिकड़ी का प्लान, दिल्ली को IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से दहलाने की साजिश रची गई है।
18: दिल्ली में लोकल नेटवर्क और प्रो खालिस्तान सिंडिकेट के जरिए आईईडी की डिलीवरी होनी है। दिल्ली एनसीआर में आतंक के नेटवर्क को पाक में बैठे आतंकियों ने एक्टिव किया है।
17: दिल्ली को दहलाने की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हेडक्वार्टर में रची गई है। फिदायिन हमले के लिए आतंकियों की खेप तलहा सईद ने मुहैया करवाई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में खुलासा हुआ है कि एक दो नहीं बल्कि 8 फिदायिन हमलावर देश में घुसपैठ कर चुके हैं। इन 8 आतंकियों को लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई है और इनके निशाने पर कुल 6 लोकेशन हैं।
18: खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी देश की संसद, कनॉट प्लेस, दिल्ली के सरकारी भवन और रेलवे स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग रच रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू और राजस्थान में फिदायिन हमले की नापाक साजिश पाकिस्तान में रची गई है। 30 जून को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले के मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी की तरफ से भेजे गए संदेश को इंटरसेप्ट किया गया। आतंकी फरहतुल्ला ने सिग्नल ऐप के जरिए स्टूडेंट ग्रुप ऑफ हिंद पर एक संदेश भेजा था। संदेश में भारतीय मुसलमानों को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया, कहा मुसलमानों को दिल्ली पर इस्लाम का झंडा फहराना होगा। ये तभी होगा जब दिल्ली में फिदायिन हमले होंगे। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी करवाई गई है। मई महीने में इंटरसेप्ट हुए एक मैसेज से पता चला कि आईएसआई का प्लान भारत में 6 बड़े धमाके करवाने का है और फिदायिन हमले के लिए तलहा सईद से जुड़े 8 आतंकी देश में दाखिल हो चुके हैं। फरहतुल्ला गौरी उर्फ अबू सुफियान उर्फ सरदार साहब उर्फ कारी, ये पाकिस्तान में बैठा वही आतंकी है जो आईएसआई का प्यारा और हाफिज सईद का दुलारा है। गौरी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है।
17: भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में फरहतुल्ला गौरी का नाम शामिल है। ये फिलहाल पाकिस्तान में अंडरग्राउंड है और लगातार आईएसआई और लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रचता रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी 4 महीने पहले तलहा सईद से मिला था। आतंकी मीटिंग में 15 अगस्त को दिल्ली को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन आतंकियों की इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही राजनीति, राहुल गांधी ने बताया संविधान का अपमान, पहले नड्डा ने जताया खेद। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म मानसून सत्र, सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, सात आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी, रांची में छात्रों का आंदोलन भी जारी। और अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद मामले में बढ़ा बवाल, गुरु सिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़ा सिख संगत, दोनों पक्षों से कई घायल। सियासत के दो रंग, एक तरफ नई जनरेशन की नई डिमांड है, दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए पुरानी सियासी रीत चली आ रही है। एक तरफ जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन करके साफ पानी, साफ क्लासरूम, साफ टॉयलेट, स्कूल जाने के लिए सड़क, स्कूल में टीचर, ईमानदारी से भर्तियां मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्ष से महिलाओं को पैसा बांटो और सत्ता हासिल करो वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाती सियासत है। यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए वाली स्कीम ला सकती है, जिसका जिक्र आते ही अखिलेश यादव पहले इसे जुमला बताते हैं, लेकिन फिर खुद भी महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा करते हैं।
1: इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर वाले दौर से कहीं आगे, जब बच्चों को गड्ढे वाली सड़क पर बच्चों दिखाओ चलकर वाली नौबत ला दी जाती है, तो आज तक ने दिखाया आपको कि बच्चे अब टूटी सड़क को अपनी नियति मानकर नहीं चलने वाले। तभी तो बुधवार को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में पेगलवाड़ी गोयरेवाड़ी रोड पर टूटी सड़क को बनवाने की मांग को लेकर आदित्य और स्मिता ने हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर एक इंटरव्यू किया।
2: अब तो ये चीज अच्छा है कि हम उस पर थोड़ा चांगला है पाजे, सगला चांगला है पाजे, ये बड़ी तम चीज है।
1: जो हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर प्रशासन को जगा सकते हैं, उन तक आज तक भी पहुंचता है। हाथ में आज तक का माइक थमाया और पूछा, क्या हुआ जो आपको आवाज उठानी पड़ी?
2: स्कूल में जाते समय फाटे पे जाते तो हमारा ड्रेस खराब हो जाता है, कभी कभी हम चिखल में गिर जाते हैं।
3: जो शूज या चप्पल पहनते तो उसका क्या हालत होता है?
2: वो तो जब चिखल में अटक गई तो वो निकलते समय वो डायरेक्ट टूट जाती।
3: और ये जो आपके साथी है
2: और हम गिर जाए तो स्कूल में स्कूल को डांडी मारनी पड़ती,
3: स्कूल जाते नहीं हो,
2: उधर से ही रिटर्न आना पड़ता है।
1: आदित्य और स्मिता ने एक वीडियो बनाकर बता दिया कि बच्चे अब देश में सत्ताधारियों से चाहते क्या है, जिसके बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर में उनके गांव की सड़क बनने लगती है।
4: मैं खड़ा हूँ अभी पेगलवाड़ी में, जहाँ के दो बच्चों ने पूरी सिस्टम यहाँ की हिला दी है। यहाँ कल रात में जो रास्ता बच्चों ने वीडियो में दिखाया था, वो रास्ते पे कल रात को 1:30 बजे तक वहाँ मिट्टी और कंकड़ डाले गए, और आज जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे यहाँ, तब जाके रोड रोलर आया था। बच्चों ने कल से सिस्टम मिला, तो कल से क्या क्या यहाँ हैपनिंग हो रही है?
5: अभी बच्चों का जब से वीडियो वायरल हुआ है, तब से वो रास्ते का काम उस पे खड़ी वगैरह डाला है, उस पे रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी ये उन्होंने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता।
1: इस वक्त देश के बच्चे और युवा चाहते क्या हैं? क्या सरकारें सुन नहीं पा रही? क्या राजनीतिक दलों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि नई जनरेशन नई डिमांड करती है? वो सड़क, स्कूल, टीचर, साफ पानी, साफ टॉयलेट चाहती है, लेकिन नई जनरेशन की नई डिमांड के बीच में सियासत सत्ता हासिल करने और सत्ता को बनाए रखने के पुराने ढर्रे, पुराने फॉर्मूले पर चलना चाहती है। जहां अखिलेश यादव पहले से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जीते तो महिलाओं को 40,000 रुपए साल भर में देंगे, तो अब उत्तर प्रदेश में खबर कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
6: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी विचार कर रही है।

0: क्या इसकी पहली वजह ये है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थी। क्या दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 17 में से 12 सीटें यानी वो 70% सीटें जीती, जहां 2024 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी। क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह ये भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती है? 2007 में बीएसपी को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
1: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है, हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं? पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे पीडीए जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को।
2: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है, हो सकता है कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो एनसीआरबी के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे, उसको आपने बंद कर दिया। अब ये आप कौन सी योजना लेकर के आए हो? सकता है चुनावी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है।
0: बीजेपी अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं।
3: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा, उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपये हम देने जा रहे थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500, अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं, तो 12 महीने देना है 3,000 तो कितना हुआ, 36,000 रुपये। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे के गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं।
4: यूपी चुनावों में जेंजी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी बड़ा टेस्ट है, और इनकी ये परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है। इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथगंडे अपना रही हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि यूपी में जेंजी किसका साथ देता है।
5: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं,

0: तो यूपी चुनावों के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है। निर्देश सीधे ऊपर से। ये कल की ही तस्वीरें। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपालें लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
1: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद?
2: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारे भविष्य हैं, ये हमारे कल हैं और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
0: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनावों में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय है, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं।
3: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
0: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईआईटी की तैयारी करने वालों को आईआईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
3: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
0: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, यहाँ भी जिताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
4: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते दो एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
0: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
4: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेंजी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
5: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी। और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे ना, मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी ही हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
0: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर लग रहा है।
4: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
0: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है। आतंकी हमले की साजिश बहुत गहरी है क्योंकि लश्कर के 8 सुइसाइड बॉम्बर घुसपैठ करके देश में दाखिल हो चुके हैं। लश्कर के फिदायीन दस्ते को दिल्ली के 6 ठिकानों पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
7: पंद्रह अगस्त को दिल्ली दहलाने का जिहादी प्लान, छह ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में आतंकी, लश्कर की फिदाइन टीम आज कर सकती है अटैक। ISI का प्लान और तलहा सईद का सुसाइड दस्ता, दिल्ली में हाई अलर्ट ऑपरेशन 15 अगस्त। बीते साल नवंबर में लाल किले के पास आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल ने फिदाइन हमले को अंजाम दिया था। डॉक्टर उमर ने विस्फोटक से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था, लेकिन लाल किले पर हमला करने में नाकाम रहा। अब इसी पैटर्न पर लश्कर का फिदाइन दस्ता दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा फिदाइन हमले की प्लानिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं।
8: मेरे हाथ में मौजूद इस कागज में दिल्ली को दहलाने की खुफिया एजेंसी का खौफनाक सच मौजूद है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से 11 अगस्त को जारी किए गए इस इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी में फिदाइन हमले से सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि लश्कर के फिदाइन हमलावर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तलहा सईद के इशारे पर दिल्ली में घुसपैठ कर चुके हैं, शायद इसी वजह से दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है।
7: बहुत गौर से अलर्ट की कॉपी को देखिए, कॉपी की एक एक लाइन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की गवाही देने को काफी है। सबसे पहले अलर्ट की कॉपी को डिकोड करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, खालिस्तानी आतंकी और लश्कर की तिकड़ी का प्लान, दिल्ली को IED यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस से दहलाने की साजिश रची गई है। दिल्ली में लोकल नेटवर्क और प्रो खालिस्तान सिंडिकेट के जरिए IED की डिलीवरी होनी है। दिल्ली NCR में आतंक के नेटवर्क को पाक में बैठे आतंकियों ने एक्टिव किया है।
8: दिल्ली को दहलाने की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर में रची गई है। फिदाइन हमले के लिए आतंकियों की खेप तलहा सईद ने मुहैया करवाई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में खुलासा हुआ है कि एक दो नहीं बल्कि 8 फिदाइन हमलावर देश में घुसपैठ कर चुके हैं। इन 8 आतंकियों को लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई है और इनके निशाने पर कुल 6 लोकेशन हैं।
7: खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी देश की संसद, कनॉट प्लेस, दिल्ली के सरकारी भवन और रेलवे स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग रच रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू और राजस्थान में फिदाइन हमले की नापाक साजिश पाकिस्तान में रची गई है। 30 जून को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले के मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी की तरफ से भेजे गए संदेश को इंटरसेप्ट किया गया। आतंकी फरहतुल्ला ने सिग्नल ऐप के जरिए स्टूडेंट ग्रुप ऑफ हिंद पर एक संदेश भेजा था। संदेश में भारतीय मुसलमानों को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया, कहा मुसलमानों को दिल्ली पर इस्लाम का झंडा फहराना होगा। ये तभी होगा जब दिल्ली में फिदाइन हमले होंगे। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी करवाई गई है। मई महीने में इंटरसेप्ट हुए एक मैसेज से पता चला कि ISI का प्लान भारत में 6 बड़े धमाके करवाने का है और फिदाइन हमले के लिए तलहा सईद से जुड़े 8 आतंकी देश में दाखिल हो चुके हैं। फरहतुल्ला गौरी उर्फ अबू सुफियान उर्फ सरदार साहब उर्फ कारी, ये पाकिस्तान में बैठा वही आतंकी है जो ISI का प्यारा और हाफिज सईद का दुलारा है। गौरी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है।
8: भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में फरहतुल्ला गौरी का नाम शामिल है। ये फिलहाल पाकिस्तान में अंडरग्राउंड है और लगातार ISI और लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रचता रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी 4 महीने पहले तलहा सईद से मिला था। आतंकी मीटिंग में 15 अगस्त को दिल्ली को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन आतंकियों की इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
6: आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों को 15 अगस्त के मद्देनजर तैनात किया गया है। आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल किया।
7: दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल। दिल्ली सचिवालय से लेकर कनॉट प्लेस तक, एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के बाजारों तक आतंकी हमले से निपटने की पूरी तैयारी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल किया। तैयारी हर हालात से निपटने की है। सबसे पहले दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले से निपटने की मॉक ड्रिल की। आप देख सकते हैं सचिवालय के बाहर धुआं उठ रहा है, ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। यानी हमला हुआ तो 15 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियां कैसे निपटेंगी।
9: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सचिवालय के बाहर, जहां से दोपहर 1:30 बजे एक कंट्रोल रूम को कॉल गई कि गेट नंबर 5 से कुछ संदिग्ध बैग लेकर अंदर घुसे और साथ ही धमाके की आवाज आई। इसके तुरंत बाद तमाम एजेंसियां, आप देखिए सामने बम डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ मौजूद है, क्योंकि अंदर कुछ लोग घुसे हुए हैं ये कॉल थी। और उसके बाद पूरी टीम पहुंची है कि अगर उन्होंने कहीं पर अंदर कोई विस्फोटक छिपाया है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, इसके लिए बॉम्ब डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम सामान के साथ पहुंची है। देखिए जो अंदर की तरफ जा रही है, वहीं हम अगर आपको दिखाएं तो इस पूरे गेट नंबर 5 को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की आप ये देखिए स्वात की गाड़ी यहां पर मौजूद है। दरअसल 15 अगस्त के पहले मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तमाम एजेंसियों का रिस्पांस टाइम देखा जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा।
7: मॉक ड्रिल में तमाम एजेंसियों को शामिल किया गया। इसमें बम निरोधक दस्ते से लेकर घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना शामिल है। दिल्ली सचिवालय की तरह ही कनॉट प्लेस पर मॉक ड्रिल की गई। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी कनॉट प्लेस पर बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं।
10: 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी सिक्योरिटी अलर्ट है। एक बार फिर से एनएसजी और दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा मॉक ड्रिल जो है कनॉट प्लेस में हो रहा है। इस मॉक ड्रिल का थीम बेसिकली ये रखा गया है कि अगर कनॉट प्लेस में किसी भी तरह का आतंकी हमला हो जाता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और पुलिस की टीम है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये जो पूरा इलाका है इनर सर्कल का कनॉट प्लेस में, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए इस वक्त, और हर जगह अलग अलग जगह बैरिकेड लगा करके और ये डू नॉट क्रॉस दिल्ली पुलिस की जो टेप्स हैं ये लगा करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक के बाद एक एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं और जो कथित तौर पे घायल होंगे जो लोग ऐसे हमले में, उन्हें किस तरीके से वहां से निकाला जाएगा और कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें सही समय पर उपचार मिल सके, इन चीजों की डिटेल में तैयारी की जा रही है।
7: ये तस्वीरें दिल्ली के शहादरा इलाके की हैं। यहाँ पर भी आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। यहाँ बम ब्लास्ट का सीन क्रिएट किया गया जिसमें धमाके के बाद कुछ लोग घायल हो गए। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों का रिस्पांस टाइम देखा गया।
11: इंडिपेंडेंस डे के अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग व्हीकल इंस्टॉलेशन पे मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसी के तहत ये गांधीनगर मार्केट में आज एक हमने मॉक ड्रिल किया है जिसमें ये कॉल दी गई थी कि एक एक्सप्लोजन होने के कारण 2 लोग इंजर्ड हैं। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए सारे कंसर्न एजेंसियों को सूचना दी गई और सबने अपने अपने तरीके से क्विक वे में रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें लोकल पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, PCR ने किया है, हमारी BDT की टीम ने किया है, कैट्स एम्बुलेंस ने किया है, और इस कार्रवाई के तहत उन्होंने पहले पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है। जो इंजर्ड लोग थे उनको सुरक्षित उन्होंने फिर हॉस्पिटल पहुँचाया है। पूरी कार्रवाई में करीब 10 से 12 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रहा है। इससे जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है हमारी इंप्रूव हुई है ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो उसमें हम बहुत क्विक तरीके से रेस्पॉन्ड कर पाए।
7: दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 17 घंटे तक मॉक ड्रिल की गई। इस पूरी एक्सरसाइज को गृह मंत्रालय के निर्देश पर NSG और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कोऑर्डिनेट किया। इसका मकसद ये देखना था कि अगर दिल्ली में एक साथ कई जगह आतंकी हमला होता है तो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां कितनी जल्दी मौके पर पहुंचती हैं और आपस में कितना बेहतर तालमेल बनाकर हालात को काबू में करती हैं। साफ है कि 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खासतौर पर दिल्ली में अभेद सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है ताकि आतंकियों की नापाक साजिश पर पानी फेरा जा सके। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही राजनीति, राहुल गांधी ने बताया संविधान का अपमान, पहले नड्डा ने जताया खेद। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म मानसून सत्र, सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी, रांची में छात्रों का आंदोलन भी जारी। और अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद मामले में बढ़ा बवाल, गुरु सिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़ा सिख संगत, दोनों पक्षों से कई घायल। सियासत के दो रंग, एक तरफ नई जनरेशन की नई डिमांड है, दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए पुरानी सियासी रीत चली आ रही है। एक तरफ जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन करके साफ पानी, साफ क्लासरूम, साफ टॉयलेट, स्कूल जाने के लिए सड़क, स्कूल में टीचर, ईमानदारी से भर्तियां मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्ष से महिलाओं को पैसा बांटो और सत्ता हासिल करो वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाती सियासत है। यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए वाली स्कीम ला सकती है, जिसका जिक्र आते ही अखिलेश यादव पहले इसे जुमला बताते हैं, लेकिन फिर खुद भी महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा करते हैं।
1: इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर वाले दौर से कहीं आगे, जब बच्चों को गड्ढे वाली सड़क पर बच्चों दिखाओ चलकर वाली नौबत ला दी जाती है, तो आज तक ने दिखाया आपको कि बच्चे अब टूटी सड़क को अपनी नियति मानकर नहीं चलने वाले। तभी तो बुधवार को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में पेगलवाड़ी गोयरेवाड़ी रोड पर टूटी सड़क को बनवाने की मांग को लेकर आदित्य और स्मिता ने हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर एक इंटरव्यू किया।
2: अब चाहिए
1: जो हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर प्रशासन को जगा सकते हैं, उन तक आज तक भी पहुंचता है। हाथ में आज तक का माइक थमाया और पूछा, क्या हुआ जो आपको आवाज उठानी पड़ी?
2: स्कूल में जाते समय फाटे पे जाते तक हमारा ड्रेस खराब हो जाता है, कभी कभी हम चिखल में गिर जाते हैं।
3: जो शूज या चप्पल पहनते हैं उसका क्या हालत होता है?
2: वो तो जब चिखल में अटक जाए गए तो वो निकलते समय वो डायरेक्ट टूट जाती।
3: और ये जो आपका साथी है
2: और हम गिर जाए तो स्कूल में स्कूल को डांडी मारनी पड़ती,
3: स्कूल जाते नहीं हो,
2: उधर से ही रिटर्न आना पड़ता है।
1: आदित्य और स्मिता ने एक वीडियो बनाकर बता दिया कि बच्चे अब देश में सत्ताधारियों से चाहते क्या है, जिसके बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर में उनके गांव की सड़क बनने लगती है।
4: मैं खड़ा हूँ अभी पेगलवाड़ी में, जहाँ के दो बच्चों ने पूरी सिस्टम यहाँ की हिला दी है। यहाँ कल रात में जो रास्ता बच्चों ने वीडियो में दिखाया था, वो रास्ते पे कल रात को 1:30 बजे तक वहाँ मिट्टी और कंकड़ डाले गए, और आज जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे यहाँ, तब जाके रोड रोलर आया था। बच्चों ने कल से सिस्टम लगाया, कल क्या क्या, कल से क्या क्या यहाँ हैपनिंग हो रही है?
5: अभी बच्चों का जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से वो रास्ते का काम उस पे खड़ी वगैरह डाला है, उस पे रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी ये उन्होंने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता।
1: इस वक्त देश के बच्चे और युवा चाहते क्या हैं? क्या सरकारें सुन नहीं पा रही? क्या राजनीतिक दलों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि नई जनरेशन नई डिमांड करती है? वो सड़क, स्कूल, टीचर, साफ पानी, साफ टॉयलेट चाहती है, लेकिन नई जनरेशन की नई डिमांड के बीच में सियासत सत्ता हासिल करने और सत्ता को बनाए रखने के पुराने ढर्रे, पुराने फॉर्मूले पर चलना चाहती है। जहां अखिलेश यादव पहले से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जीते तो महिलाओं को 40,000 रुपए साल भर में देंगे, तो अब उत्तर प्रदेश में खबर कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
6: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है, विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी विचार कर रही है।
7: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब महिलाओं के वोट को लेकर निश्चिंत योगी सरकार पहले से रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसा चुनाव से पहले बांटने वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल करने की रणनीति पर विचार होने लगा? क्या इसकी पहली वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थी? क्या दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 17 में से 12 सीटें यानी वो 70% सीटें जीती, जहां 2024 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी? क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह ये भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती है? 2007 में बीएसपी को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
8: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है, हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है? चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे पीडीए जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को।
9: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है, हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो एनसीआरबी के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे, उसको आपने बंद कर दिया। अभी आप कौन सी योजना लेकर के आए हो? सकता है चुनावी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है।
7: बीजेपी अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं।
10: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा, उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपये हम देने जा रहे थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500, अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं, तो 12 महीने देना है 3,000 तो कितना हुआ, 36,000 रुपये। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे के गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं।
0: यूपी चुनावों में जेनजी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी बड़ा टेस्ट है और इनकी ये परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है। इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथगंडे अपना रही हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि यूपी में जेनजी किसका साथ देता है।
11: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
12: तो यूपी चुनावों के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है। निर्देश सीधे ऊपर से। ये कल की ही तस्वीरें हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेनजी चौपालें लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
13: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद
14: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
12: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनावों में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय है, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं।
15: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
12: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईआईटी की तैयारी करने वालों को आईआईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
11: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी और पढ़ाने वाले कौन होंगे, पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
12: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, यहाँ भी जिताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
16: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते दो एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
12: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
16: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेंजी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
0: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेताजी ने की थी। और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
12: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर लग रहा है।
16: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
12: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है। आतंकी हमले की साजिश बहुत गहरी है क्योंकि लश्कर के 8 सुइसाइड बॉम्बर घुसपैठ करके देश में दाखिल हो चुके हैं। लश्कर के फिदायीन दस्ते को दिल्ली के 6 ठिकानों पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
17: पंद्रह अगस्त को दिल्ली दहलाने का जिहादी प्लान, छह ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में आतंकी, लश्कर की फिदाइन टीम आज कर सकती है अटैक। ISI का प्लान और तलहा सईद का सुसाइड दस्ता, दिल्ली में हाई अलर्ट ऑपरेशन 15 अगस्त। बीते साल नवंबर में लाल किले के पास आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल ने फिदाइन हमले को अंजाम दिया था। डॉक्टर उमर ने विस्फोटक से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था, लेकिन लाल किले पर हमला करने में नाकाम रहा। अब इसी पैटर्न पर लश्कर का फिदाइन दस्ता दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा फिदाइन हमले की प्लानिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं।
18: मेरे हाथ में मौजूद इस कागज में दिल्ली को दहलाने की खुफिया एजेंसी का खौफनाक सच मौजूद है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से 11 अगस्त को जारी किए गए इस इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी में फिदाइन हमले से सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि लश्कर के फिदाइन हमलावर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तलहा सईद के इशारे पर दिल्ली में घुसपैठ कर चुके हैं। शायद इसी वजह से दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है।
17: बहुत गौर से अलर्ट की कॉपी को देखिए। कॉपी की एक एक लाइन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की गवाही देने को काफी है। सबसे पहले अलर्ट की कॉपी को डिकोड करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खालिस्तानी आतंकी और लश्कर की तिकड़ी का प्लान, दिल्ली को IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से दहलाने की साजिश रची गई है। दिल्ली में लोकल नेटवर्क और प्रो खालिस्तान सिंडिकेट के जरिए IED की डिलीवरी होनी है। दिल्ली NCR में आतंक के नेटवर्क को पाक में बैठे आतंकियों ने एक्टिव किया है।
18: दिल्ली को दहलाने की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर में रची गई है। फिदाइन हमले के लिए आतंकियों की खेप तलहा सईद ने मुहैया करवाई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में खुलासा हुआ है कि एक दो नहीं बल्कि 8 फिदाइन हमलावर देश में घुसपैठ कर चुके हैं। इन 8 आतंकियों को लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई है और इनके निशाने पर कुल 6 लोकेशन हैं।
17: खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी देश की संसद, कनॉट प्लेस, दिल्ली के सरकारी भवन और रेलवे स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग रच रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू और राजस्थान में फिदाइन हमले की नापाक साजिश पाकिस्तान में रची गई है। 30 जून को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले के मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी की तरफ से भेजे गए संदेश को इंटरसेप्ट किया गया। आतंकी फरहतुल्ला ने सिग्नल ऐप के जरिए स्टूडेंट ग्रुप ऑफ हिंद पर एक संदेश भेजा था। संदेश में भारतीय मुसलमानों को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया। कहा मुसलमानों को दिल्ली पर इस्लाम का झंडा फहराना होगा। ये तभी होगा जब दिल्ली में फिदाइन हमले होंगे। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी करवाई गई है। मई महीने में इंटरसेप्ट हुए एक मैसेज से पता चला कि ISI का प्लान भारत में 6 बड़े धमाके करवाने का है और फिदाइन हमले के लिए तलहा सईद से जुड़े 8 आतंकी देश में दाखिल हो चुके हैं। फरहतुल्ला गौरी उर्फ अबू सुफियान उर्फ सरदार साहब उर्फ कारी, ये पाकिस्तान में बैठा वही आतंकी है जो ISI का प्यारा और हाफिज सईद का दुलारा है। गौरी लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है।
18: भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में फरहतुल्ला गौरी का नाम शामिल है। ये फिलहाल पाकिस्तान में अंडरग्राउंड है और लगातार ISI और लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रचता रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी 4 महीने पहले तलहा सईद से मिला था। आतंकी मीटिंग में 15 अगस्त को दिल्ली को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन आतंकियों की इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
0: आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों को 15 अगस्त के मद्देनजर तैनात किया गया है। आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल किया।
17: दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल। दिल्ली सचिवालय से लेकर कनॉट प्लेस तक, एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के बाजारों तक आतंकी हमले से निपटने की पूरी तैयारी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल किया। तैयारी हर हालात से निपटने की है। सबसे पहले दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले से निपटने की मॉक ड्रिल की। आप देख सकते हैं सचिवालय के बाहर धुआं उठ रहा है। ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है, यानी हमला हुआ तो 15 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियां कैसे निपटेंगी।
19: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सचिवालय के बाहर, जहां से दोपहर 1:30 बजे एक कंट्रोल रूम को कॉल गई कि गेट नंबर 5 से कुछ संदिग्ध बैग लेकर अंदर घुसे और साथ ही धमाके की आवाज आई। इसके तुरंत बाद तमाम एजेंसियां, आप देखिए सामने बम डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ मौजूद है, क्योंकि अंदर कुछ लोग घुसे हुए हैं, ये कॉल थी। और उसके बाद पूरी टीम पहुंची है कि अगर उन्होंने कहीं पर अंदर कोई विस्फोटक छिपाया है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। इसके लिए बॉम्ब डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम सामान के साथ पहुंची है। देखिए जो अंदर की तरफ जा रही है, वहीं हम अगर आपको दिखाएं तो इस पूरे गेट नंबर 5 को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कि आप ये देखिए स्वात की गाड़ी यहां पर मौजूद है। दरअसल 15 अगस्त के पहले मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तमाम एजेंसियों का रिस्पांस टाइम देखा जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा।
12: अस्पताल पहुंचाना शामिल है। दिल्ली सचिवालय की तरह ही कनॉट प्लेस पर मॉक ड्रिल की गई। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी कनॉट प्लेस पर बड़े आतंकी हमले की फिराक में है।
20: 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी सिक्योरिटी अलर्ट है। एक बार फिर से एनएसजी और दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा मॉक ड्रिल जो है कनॉट प्लेस में हो रहा है। इस मॉक ड्रिल का थीम बेसिकली ये रखा गया है कि अगर कनॉट प्लेस में किसी भी तरह का आतंकी हमला हो जाता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और पुलिस की टीम है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये जो पूरा इलाका है इनर सर्कल का कनॉट प्लेस में, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए इस वक्त, और हर जगह अलग अलग जगह बैरिकेड लगा करके और ये डू नॉट क्रॉस दिल्ली पुलिस के जो टेप्स हैं ये लगा करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक के बाद एक एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं और जो कथित तौर पे घायल होंगे जो लोग ऐसे हमले में, उन्हें किस तरीके से वहां से निकाला जाएगा और कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें सही समय पर उपचार मिल सके, इन चीजों की डिटेल में तैयारी की जा रही है।
12: ये तस्वीरें दिल्ली के शहादरा इलाके की हैं। यहाँ पर भी आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। यहाँ बम ब्लास्ट का सीन क्रिएट किया गया जिसमें धमाके के बाद कुछ लोग घायल हो गए। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों का रिस्पांस टाइम देखा गया।
21: इंडिपेंडेंस डे के अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग व्हीकल इंस्टॉलेशन पे मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसी के तहत ये गांधीनगर मार्केट में आज एक हमने मॉक ड्रिल किया है जिसमें ये कॉल दी गई थी कि एक एक्सप्लोजन होने के कारण 2 लोग इंजर्ड हैं। इसी चीज को ध्यान रखते हुए सारे कंसर्न एजेंसियों को सूचना दी गई और सबने अपने अपने तरीके से क्विक वे में रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें लोकल पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, PCR ने किया है, हमारी BDT की टीम ने किया है, कैट्स एम्बुलेंस ने किया है। और इस कार्रवाई के तहत उन्होंने पहले पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है, जो इंजर्ड लोग थे उनको सुरक्षित उन्होंने फिर हॉस्पिटल पहुँचाया है। पूरी कार्रवाई में करीब 10 से 12 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रहा है। इससे जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है हमारी इंप्रूव हुई है ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो उसपे हम बहुत क्विक तरीके से रेस्पॉन्ड कर।
12: दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 17 घंटे तक मॉक ड्रिल की गई। इस पूरी एक्सरसाइज को गृह मंत्रालय के निर्देश पर NSG और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कोऑर्डिनेट किया। इसका मकसद ये देखना था कि अगर दिल्ली में एक साथ कई जगह आतंकी हमला होता है तो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां कितनी जल्दी मौके पर पहुंचती हैं और आपस में कितना बेहतर तालमेल बनाकर हालात को काबू में करती हैं। साफ है कि 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खासतौर पर दिल्ली में अभेद सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है ताकि आतंकियों की नापाक साजिश पर पानी फेरा जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही राजनीति, राहुल गांधी ने बताया संविधान का अपमान, पहले नड्डा ने जताया खेद। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म मानसून सत्र, सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी, रांची में छात्रों का आंदोलन भी जारी। और अंबाला के पंजोखरा साई विवाद मामले में बढ़ा बवाल, गुरु सिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़ा सिख संगत, दोनों पक्षों से कई घायल। सियासत के दो रंग, एक तरफ नई जनरेशन की नई डिमांड है, दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए पुरानी सियासी रीत चली आ रही है। एक तरफ जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन करके साफ पानी, साफ क्लासरूम, साफ टॉयलेट, स्कूल जाने के लिए सड़क, स्कूल में टीचर, ईमानदारी से भर्तियां मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्ष से महिलाओं को पैसा बांटो और सत्ता हासिल करो वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाती सियासत है। यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए वाली स्कीम ला सकती है, जिसका जिक्र आते ही अखिलेश यादव पहले इसे जुमला बताते हैं लेकिन फिर खुद भी महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा करते हैं।
1: इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर वाले दौर से कहीं आगे, जब बच्चों को गड्ढे वाली सड़क पर बच्चों दिखाओ चलकर वाली नौबत ला दी जाती है, तो आज तक ने दिखाया आपको कि बच्चे अब टूटी सड़क को अपनी नियति मानकर नहीं चलने वाले। तभी तो बुधवार को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में पेगलवाड़ी गोयरेवाड़ी रोड पर टूटी सड़क को बनवाने की मांग को लेकर आदित्य और स्मिता ने हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर एक इंटरव्यू किया।
2: अब ये इच्छा है कि आमचे रस्ते थोड़ा चांगले व्हाय पाहिजे, सगळे चांगले व्हाय पाहिजे, एवढी आमची इच्छा।
1: जो हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर प्रशासन को जगा सकते हैं उन तक आज तक भी पहुंचता है। हाथ में आज तक का माइक थमाया और पूछा, क्या हुआ जो आपको आवाज उठानी पड़ी?
2: स्कूल में जाते समय फाटे पे जाते तो हमारा ड्रेस खराब हो जाता है, कभी कभी हम चिखल में गिर जाते हैं।
3: जो शूज या चप्पल पहनते हैं उसका क्या हालत होता है?
2: वो तो जब चिखल में अटक जाए गई तो वो निकलते समय वो डायरेक्ट टूट जाती।
3: और ये जो आपका साथी है
2: और हम गिर जाए तो स्कूल में स्कूल को डांडी मारनी पड़ती,
3: स्कूल जाते नहीं हो,
2: उधर से ही रिटर्न आना पड़ता है।
1: आदित्य और स्मिता ने एक वीडियो बनाकर बता दिया कि बच्चे अब देश में सत्ताधारियों से चाहते क्या है, जिसके बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर में उनके गांव की सड़क बनने लगती है।
3: मैं खड़ा हूँ अभी पेगलवाड़ी में, जहाँ के दो बच्चों ने पूरी सिस्टम यहाँ की हिला दी है। यहाँ कल रात में जो रास्ता बच्चों ने वीडियो में दिखाया था, वो रास्ते पे कल रात को 1:30 बजे तक वहाँ मिट्टी और कंकड़ डाले गए, और आज जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे यहाँ, तब जाके रोड रोलर आया था। बच्चों ने कल से सिस्टम लगा, कल से क्या क्या यहाँ हैपनिंग हो रही है?
4: अभी बच्चों का जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से वो रास्ते का काम उस पे खड़ी वगैरह डाला है, उस पे रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी ये उन्होंने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता।
1: इस वक्त देश के बच्चे और युवा चाहते क्या हैं? क्या सरकारें सुन नहीं पा रही? क्या राजनीतिक दलों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि नई जनरेशन नई डिमांड करती है? वो सड़क, स्कूल, टीचर, साफ पानी, साफ टॉयलेट चाहती है, लेकिन नई जनरेशन की नई डिमांड के बीच में सियासत सत्ता हासिल करने और सत्ता को बनाए रखने के पुराने ढर्रे, पुराने फॉर्मूले पर चलना चाहती है। जहां अखिलेश यादव पहले से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जीते तो महिलाओं को 40,000 रुपए साल भर में देंगे, तो अब उत्तर प्रदेश में खबर कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
5: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो SC ST OBC महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी विचार कर रही है।
6: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब महिलाओं के वोट को लेकर निश्चिंत योगी सरकार पहले से रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसा चुनाव से पहले बांटने वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल करने की रणनीति पर विचार होने लगा? क्या इसकी पहली वजह ये है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थी? क्या दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 17 में से 12 सीटें यानी वो 70% सीटें जीती, जहां 2024 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी? क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह ये भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती? 2007 में BSP को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ

0: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है, हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे पीडीए जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को।
1: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है, हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो एनसीआरबी के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जन नायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे, उसको आपने बंद कर दिया। अभी आप कौन सी योजना लेकर के आए हो, सकता है चुनावी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है।
2: बीजेपी अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही है तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं।
3: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया, सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपए और मिलेगा, उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपए महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपए हम देने जा रहे थे, उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे, पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500 अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपए बनते हैं, तो 12 महीने देना है 3,000 तो कितना हुआ 36,000 रुपए, और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं।
4: यूपी चुनावों में जेंजी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी बड़ा टेस्ट है और इनकी ये परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है, इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथगंडे अपना रही हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि यूपी में जेंजी किसका साथ देता है।
5: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं,
6: तो यूपी चुनावों के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, निर्देश सीधे ऊपर से। ये कल की ही तस्वीरें, यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपालें लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा वार 10-10 युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
7: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद
8: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य।

0: भविष्य हैं, ये हमारे कल हैं, और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
1: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनावों में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं।
2: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है, और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईआईटी की तैयारी करने वालों को आईआईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
3: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
1: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, यहाँ भी जिताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
4: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी, और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं, तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा पे जिताऊ कैंडिडेट हो, जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
1: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
4: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
5: देखिए जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। अगर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
6: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर लग रहा है।
7: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
6: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
8: महाराष्ट्र के नांदेड़ में अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर एक निहंग ने अचानक से हमला बोल दिया। सुखबीर बादल गुरुद्वारा माता साहिब कौर में मत्था टेकने परिवार के साथ आए थे। इस हमले में सुखबीर बादल के हाथ में चोटें भी आई हैं। जब बादल हॉस्पिटल में थे उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके उनका हाल जाना। वहीं सीएम फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं।

0: महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा माता साहिब कौर में मत्था टेकने के बाद जैसे ही शिरोमणि अकाली दल के मुखिया और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह बादल बाहर निकले, इस निहंग ने कृपाण से उन पर हमला कर दिया।
1: दर्शनों को आए वाले पंजाब के माजी डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह जी बादल और उनकी धर्मपत्नी हरसिमरत कौर जी बादल और उनके बच्चे, उनके दामाद, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे, उन्होंने अखंड पाठ साहब 12 तारीख को आरंभ किया गया था और कल रात में भी वो 2 बजे गोदावरी से घाघर लेके आते, वहां पे भी जाके हरसिमरत कौर जी वो साथ में गोदावरी से घाघर लेके आए, गुरु महाराज को जो स्नान कराते। आज माल टेकड़ी साहब, उसके बाद हीराघाट साहब, उसके बाद माता साहब जब दर्शन करके नीचे आते तो कोई नहंग सिंह उनपे अचानक हमला करता, कोई कुछ समझ पाते उसके अचानक वो हमला कर देता उनपे और उनको बहुत हाथ पर उनके चोट आई है। और बहुत शर्म की बात है जो गुरु महाराज के दर्शनों को आने के बाद में इस तरीके के काम होता है।
0: देखिए, सफेद दाढ़ी और नीली पगड़ी पहने ये निहंग धीरे धीरे सुखबीर बादल की ओर बढ़ता है, जिसके बाद वो अचानक अपनी कमर से कृपाण निकालता है और सुखबीर बादल पर हमला कर देता है। अफरा तफरी के बीच बादल के सुरक्षा गार्ड हमलावर को तुरंत पकड़ लेते हैं। अब इस मामले की जांच एटीएस, आईबी और नांदेड़ पुलिस तीनों मिलकर करेंगे।
2: लगभग 2 बजे के आसपास साहब जो है माता साहब गुरुद्वारा विजिट पे गए थे, तो गुरुद्वारा विजिट करने के बाद वहाँ से वापस आते वक्त सीढ़िया के पास एक वहाँ का सेवादार है, उसने अचानक से आके अपने कृपाण से अटैक करने की कोशिश की, जिसमें हमारा एक साहब को राइट हैंड में इंजरी हुई है और एक हमारा ऑफिसर है इंस्पेक्टर एसपीयू का, उसने वहाँ पे सिक्योरिटी में था, उसने हाथ से वो रोक लिया, उसको हाथ में थोड़ी सी इंजरी हुई है। ये होते ही हमने इमिडिएटली उस जो अटैकर था उसको अपने कस्टडी में ले लिया और उससे इंट्रोगेशन चल रही है। वो लगभग 62 साल का उम्र का है और लगभग 2 साल से यहाँ पे सेवादार काम कर रहा था गुरुद्वारे में।
3: सर, ये आईबी का स्पेसिफिक इनपुट था, फिर भी नांदेड़ पुलिस कैसे चूक गई?
2: चूक ही नहीं है, इसमें पूरी जेड प्लस सिक्योरिटी थी साहब के उसमें, और इसीलिए हमारा वहाँ पे इंस्पेक्टर था, हमारे सारे ऑफिसर्स थे वहाँ पे, इसीलिए हमने इमीडिएटली उसको रोक लिया और इमीडिएट कस्टडी में ले लिया।
0: इस हमले में सुखबीर सिंह बादल का हाथ जख्मी हो गया और उनका सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गया, जिसके बाद तुरंत ही सुखबीर सिंह बादल को नजदीकी यशोसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि अब वो खतरे से बाहर है।
4: वरिष्ठ अफसरों ने ये बताया कि सुखबीर सिंह बादल स्टेबल हैं, उनकी तबीयत ठीक है, उन्हें दाहिने हाथ पर जख्म हुआ है और एक किरपान से ये जख्म हुआ है, किरपान से उन पर हमला किया था आरोपी जसपाल सिंह ने, जो कि जसपाल सिंह पिछले 2 साल से माता साहिब गुरुद्वारा नांदेड़ में रह रहे थे। जसपाल सिंह पुणे के रहने वाले हैं, पुणे के सोलापुर बाजार में उनका घर स्थित है, वो तेजा सिंह नामक व्यक्ति के बेटे हैं और वो एक बीकॉम ग्रेजुएट हैं, पहले वकील भी रह चुके हैं, पिछले 2 साल से वो माता साहिब गुरुद्वारा में ही रह रहे थे।
0: अब ये तस्वीर देखिए, जिस शख्स की पग बांधी जा रही है, इसका नाम जसपाल सिंह है, इसी ने बादल पर हमला किया है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब शिरोमणि अकाली दल कह रहा है कि इस हमले के पीछे गहरी साजिश है,
5: पर लगातार पंथक आगुआ नु निशाना बनाया जा रहा है, ये कोझियां साजिशां, ये षड्यंत्र कुछ पंथ विरोधी ताकतां ने जिहड़ियां ओह रच रहियां ने। सरदार सुखबीर सिंह बादल ते इस तो पहला भी जदों दरबार साहब दे विच अकाल तख्त साहब दे आदेश ते सेवा निभा रहे सी, उदों भी एक हमला उहनां दे उत्ते होया।
0: पीएम मोदी ने भी फोन करके सुखबीर सिंह बादल का हालचाल जाना, वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पहले सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर से फोन पर बात कर हालचाल पूछा।
6: जो अटैक किया उन्होंने, वो वहाँ काम करने वाले है क्या? अच्छा,
0: उसके बाद शिंदे ने पुलिस के आला अधिकारियों को हत्या की कोशिश जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज करने के निर्देश भी दिए।
6: अटेम्प्ट टू मर्डर आणि त्याच्याबरोबर आणखी का केलंय, प्लॅनिंग काय आहे त्यांचं ते जरा बघून त्या मॅडम मला बोलत होत्या की इसमें जो जो जो भी लोग है कि उसमें कोई भी नहीं छुटना चाहिए।
0: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी बादल पर हमले को सुरक्षा में चूक करार दिया।
7: मैं समझता हूँ इसमें सिक्योरिटी की भी कमजोरी है, क्योंकि लोगों को याद रखना चाहिए और हुकूमतों को याद रखना चाहिए कि ये बहुत वल्नरेबल शख्सियतें हैं और पहले भी हमला हुआ और ये नहीं कह सकते कि आगे नहीं होगा, मगर बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि वो पिछली दफा भी कामयाब नहीं हुए, इस दफा भी कामयाब नहीं।
0: खास बात है कि सुखबीर सिंह बादल पर साल 2024 में अमृतसर में गोल्डन टेंपल में भी हमला हो चुका है, तब उन पर फायरिंग की गई थी। सवाल है कि आखिर बादल पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं?
4: पुलिस, एटीएस की टीम और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम अब इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि अभी तक क्या मोटिव था जसपाल सिंह का सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने के पीछे, इस बारे में जांच की जा रही है, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। अभी तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं आई है और जसपाल सिंह से ज्वाइंट टीम एटीएस की टीमें और नांदेड़ पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल नांदेड़ दौरे पर थे और उसके बाद मुगट गांव के माता साहेब गुरुद्वारा में वो गए थे जहां पर ये हमला हुआ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में एक जांच ऑर्डर की है और इस बारे में एक पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी करने के भी आदेश दिए हैं नांदेड़ पुलिस को। कैमरा पर्सन मंदार चौहान और नांदेड़ से कुंवरचंद मंडले के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
8: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है। आतंकी हमले की साजिश बहुत गहरी है क्योंकि लश्कर के 8 सुइसाइड बॉम्बर घुसपैठ करके देश में दाखिल हो चुके हैं। लश्कर के फिदायीन दस्ते को दिल्ली के 6 ठिकानों पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
9: पंद्रह अगस्त को दिल्ली दहलाने का जिहादी प्लान, छह ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में आतंकी, लश्कर की फिदाइन टीम आज कर सकती है अटैक। आईएसआई का प्लान और तलहा सईद का सुसाइड दस्ता, दिल्ली में हाई अलर्ट ऑपरेशन 15 अगस्त। बीते साल नवंबर में लाल किले के पास आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल ने फिदाइन हमले को अंजाम दिया था। डॉक्टर उमर ने विस्फोटक से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था, लेकिन लाल किले पर हमला करने में नाकाम रहा। अब इसी पैटर्न पर लश्कर का फिदाइन दस्ता दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा फिदाइन हमले की प्लानिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं।
10: मेरे हाथ में मौजूद इस कागज में दिल्ली को दहलाने की खुफिया एजेंसी का खौफनाक सच मौजूद है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से 11 अगस्त को जारी किए गए इस इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी में फिदाइन हमले से सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि लश्कर के फिदाइन हमलावर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और तलहा सईद के इशारे पर दिल्ली में घुसपैठ कर चुके हैं। शायद इसी वजह से दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है।
9: बहुत गौर से अलर्ट की कॉपी को देखिए। कॉपी की एक एक लाइन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की गवाही देने को काफी है। सबसे पहले अलर्ट की कॉपी को डिकोड करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, खालिस्तानी आतंकी और लश्कर की तिकड़ी का प्लान, दिल्ली को आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से दहलाने की साजिश रची गई है। दिल्ली में लोकल नेटवर्क और प्रो खालिस्तान सिंडिकेट के जरिए आईईडी की डिलीवरी होनी है। दिल्ली एनसीआर में आतंक के नेटवर्क को पाक में बैठे आतंकियों ने एक्टिव किया है।
10: दिल्ली को दहलाने की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हेडक्वार्टर में रची गई है। फिदाइन हमले के लिए आतंकियों की खेप तलहा सईद ने मुहैया करवाई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में खुलासा हुआ है कि एक दो नहीं बल्कि 8 फिदायीन हमलावर देश में घुसपैठ कर चुके हैं। इन 8 आतंकियों को लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई है और इनके निशाने पर कुल 6 लोकेशन हैं।
9: खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी देश की संसद, कनॉट प्लेस, दिल्ली के सरकारी भवन और रेलवे स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग रच रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू और राजस्थान में फिदायीन हमले की नापाक साजिश पाकिस्तान में रची गई है। 30 जून को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले के मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी की तरफ से भेजे गए संदेश को इंटरसेप्ट किया गया। आतंकी फरहतुल्ला ने सिग्नल ऐप के जरिए स्टूडेंट ग्रुप ऑफ हिंद पर एक संदेश भेजा था। संदेश में भारतीय मुसलमानों को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया, कहा मुसलमानों को दिल्ली पर इस्लाम का झंडा फहराना होगा, ये तभी होगा जब दिल्ली में फिदायीन हमले होंगे। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी करवाई गई है। मई महीने में इंटरसेप्ट हुए एक मैसेज से पता चला कि ISI का प्लान भारत में 6 बड़े धमाके करवाने का है और फिदायीन हमले के लिए तलहा सईद से जुड़े 8 आतंकी देश में दाखिल हो चुके हैं। फरहतुल्ला गौरी उर्फ अबू सुफियान उर्फ सरदार साहब उर्फ कारी, ये पाकिस्तान में बैठा वही आतंकी है जो ISI का प्यारा और हाफिज सईद का दुलारा है। गौरी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है।
10: भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में फरहतुल्ला गौरी का नाम शामिल है। ये फिलहाल पाकिस्तान में अंडरग्राउंड है और लगातार ISI और लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रचता रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी 4 महीने पहले तलहा सईद से मिला था। आतंकी मीटिंग में 15 अगस्त को दिल्ली को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन आतंकियों की इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
8: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही राजनीति, राहुल गांधी ने बताया संविधान का अपमान, पहले नड्डा ने जताया खेद। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म मानसून सत्र, सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी, रांची में छात्रों का आंदोलन भी जारी। और अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद मामले में बढ़ा बवाल, गुरु सिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़ा सिख संगत, दोनों पक्षों से कई घायल।

0: सियासत के दो रंग, एक तरफ नई जनरेशन की नई डिमांड है, दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए पुरानी सियासी रीत चली आ रही है। एक तरफ जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन करके साफ पानी, साफ क्लासरूम, साफ टॉयलेट, स्कूल जाने के लिए सड़क, स्कूल में टीचर, ईमानदारी से भर्तियां मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्ष से महिलाओं को पैसा बांटो और सत्ता हासिल करो वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाती सियासत है। यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए वाली स्कीम ला सकती है, जिसका जिक्र आते ही अखिलेश यादव पहले इसे जुमला बताते हैं, लेकिन फिर खुद भी महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा करते हैं।
1: इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर वाले दौर से कहीं आगे, जब बच्चों को गड्ढे वाली सड़क पर बच्चों दिखाओ चलकर वाली नौबत ला दी जाती है, तो आज तक ने दिखाया आपको कि बच्चे अब टूटी सड़क को अपनी नियति मानकर नहीं चलने वाले। तभी तो बुधवार को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में पेगलवाड़ गोयरेवाड़ी रोड पर टूटी सड़क को बनवाने की मांग को लेकर आदित्य और स्मिता ने हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर एक इंटरव्यू किया।
2: अब तो ये चीज अच्छा है कि हम उस पर थोड़ा चांगला है पाजे, सगला चांगला है पाजे, ये बड़ी कम चीज है।
1: जो हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर प्रशासन को जगा सकते हैं, उन तक आज तक भी पहुंचता है। हाथ में आज तक का माइक थमाया और पूछा, क्या हुआ जो आपको आवाज उठानी पड़ी?
2: स्कूल में जाते समय, फाटे पे जाते जाते तो हमारा ड्रेस खराब हो जाता है, कभी कभी हम चिखल में गिर जाते हैं।
3: जो शूज या चप्पल पहनते तो उसका क्या हालत होता है?
2: जब चिखल में अटक गई तो वो निकलते समय वो डायरेक्ट टूट जाती।
3: और ये जो आपके साथी है,
2: और हम गिर जाए तो स्कूल को डांडी मारनी पड़ती।
3: स्कूल जाते नहीं हो,
2: उधर से ही रिटर्न आना पड़ता है।
1: आदित्य और स्मिता ने एक वीडियो बनाकर बता दिया कि बच्चे अब देश में सत्ताधारियों से चाहते क्या है, जिसके बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर में उनके गाँव की सड़क बनने लगती है।
3: मैं खड़ा हूँ अभी पेगलवाड़ी में, जहाँ के दो बच्चों ने पूरी सिस्टम यहाँ की हिला दी है। यहाँ कल रात में जो रास्ता बच्चों ने वीडियो में दिखाया था, वो रास्ते पे कल रात को 1:30 बजे तक वहाँ मिट्टी और कंकड़ डाले गए, और आज जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे यहाँ, तब जाके रोड रोलर आया था। बच्चों ने कल से सिस्टम मिला, तो कल से क्या यहाँ हैपनिंग हो रही है?
4: अभी बच्चों का जब से वीडियो वायरल हुआ है, तब से वो रास्ते का काम उस पे खड़ी वगैरह डाला है, उस पे रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी ये उन्होंने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता।
1: इस वक्त देश के बच्चे और युवा चाहते क्या हैं? क्या सरकारें सुन नहीं पा रही? क्या राजनीतिक दलों को अभी समझ में नहीं आ रहा कि नई जनरेशन नई डिमांड करती है? वो सड़क, स्कूल, टीचर, साफ पानी, साफ टॉयलेट चाहती है, लेकिन नई जनरेशन की नई डिमांड के बीच में सियासत सत्ता हासिल करने और सत्ता को बनाए रखने के पुराने ढर्रे, पुराने फॉर्मूले पर चलना चाहती है। जहां अखिलेश यादव पहले से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जीते तो महिलाओं को 40,000 रुपए साल भर में देंगे, तो अब उत्तर प्रदेश में खबर कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
5: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है, विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो SC ST OBC महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी विचार कर रही है।
1: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब महिलाओं के वोट को लेकर निश्चिंत योगी सरकार पहले से रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसा चुनाव से पहले बांटने वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल करने की रणनीति पर विचार होने लगा? क्या इसकी पहली वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थी? क्या दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 17 में से 12 सीटें यानी वो 70% सीटें जीती, जहां 2024 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी। क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह यह भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती है? 2007 में बीएसपी को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
6: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है, हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे पीडीए जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को।
7: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है, हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो एनसीआरबी के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे उसको आपने बंद कर दिया। अभी आप कौन सी योजना लेकर के आए हो? सकता है चुनावी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है।
1: बीजेपी अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही है तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं।
8: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा, उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपये हम देने जा रहे थे, उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500, अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं, तो 12 महीने देना है 3,000 तो कितना हुआ, 36,000 रुपये। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं।
0: यूपी चुनावों में जेनजी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी बड़ा टेस्ट है और इनकी ये परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है, इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथगंडे अपना रही हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि यूपी में जेनजी किसका साथ देता है।
9: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं,
10: तो यूपी चुनावों के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, निर्देश सीधे ऊपर से। ये कल की ही तस्वीरें, यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपालें लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा वार 10-10 युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
11: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद?
12: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
10: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनावों में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय है, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं।
13: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वह अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
10: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईआईटी की तैयारी करने वालों को आईआईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
9: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
10: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, यहाँ भी जिताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
14: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है, लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
10: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
14: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
15: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी। और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
10: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर लग रहा है।
14: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
10: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है। आतंकी हमले की साजिश बहुत गहरी है क्योंकि लश्कर के 8 सुइसाइड बॉम्बर घुसपैठ करके देश में दाखिल हो चुके हैं। लश्कर के फिदायीन दस्ते को दिल्ली के 6 ठिकानों पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
16: पंद्रह अगस्त को दिल्ली दहलाने का जिहादी प्लान, छह ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में आतंकी, लश्कर की फिदाइन टीम 8 कर सकती है अटैक। ISI का प्लान और तलहा सईद का सुसाइड दस्ता, दिल्ली में हाई अलर्ट ऑपरेशन 15 अगस्त। बीते साल नवंबर में लाल किले के पास आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल ने फिदाइन हमले को अंजाम दिया था। डॉक्टर उमर ने विस्फोटक से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था, लेकिन लाल किले पर हमला करने में नाकाम रहा। अब इसी पैटर्न पर लश्कर का फिदाइन दस्ता दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा फिदाइन हमले की प्लानिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं।
17: मेरे हाथ में मौजूद इस कागज में दिल्ली को दहलाने की खुफिया एजेंसी का खौफनाक सच मौजूद है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से 11 अगस्त को जारी किए गए इस इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी में फिदाइन हमले से सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि लश्कर के फिदाइन हमलावर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तलहा सईद के इशारे पर दिल्ली में घुसपैठ कर चुके हैं। शायद इसी वजह से दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है।
16: बहुत गौर से अलर्ट की कॉपी को देखिए। कॉपी की एक एक लाइन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की गवाही देने को काफी है। सबसे पहले अलर्ट की कॉपी को डिकोड करते हैं।
18: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खालिस्तानी आतंकी और लश्कर की तिकड़ी का प्लान, दिल्ली को IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से दहलाने की साजिश रची गई है। दिल्ली में लोकल नेटवर्क और प्रो खालिस्तान सिंडिकेट के जरिए IED की डिलीवरी होनी है। दिल्ली NCR में आतंक के नेटवर्क को पाक में बैठे आतंकियों ने एक्टिव किया है।
17: दिल्ली को दहलाने की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर में रची गई है। फिदाइन हमले के लिए आतंकियों की खेप तलहा सईद ने मुहैया करवाई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में खुलासा हुआ है कि एक दो नहीं बल्कि 8 फिदाइन हमलावर देश में घुसपैठ कर चुके हैं। इन 8 आतंकियों को लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई है और इनके निशाने पर कुल 6 लोकेशन हैं।
18: खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी देश की संसद, कनॉट प्लेस, दिल्ली के सरकारी भवन और रेलवे स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग रच रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू और राजस्थान में फिदाइन हमले की नापाक साजिश पाकिस्तान में रची गई है। 30 जून को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले के मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी की तरफ से भेजे गए संदेश को इंटरसेप्ट किया गया। आतंकी फरहतुल्ला ने सिग्नल ऐप के जरिए स्टूडेंट ग्रुप ऑफ हिंद पर एक संदेश भेजा था। संदेश में भारतीय मुसलमानों को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया, कहा मुसलमानों को दिल्ली पर इस्लाम का झंडा फहराना होगा। ये तभी होगा जब दिल्ली में फिदाइन हमले होंगे। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी करवाई गई है। मई महीने में इंटरसेप्ट हुए एक मैसेज से पता चला कि ISI का प्लान भारत में 6 बड़े धमाके करवाने का है और फिदाइन हमले के लिए तलहा सईद से जुड़े 8 आतंकी देश में दाखिल हो चुके हैं। फरहतुल्ला गौरी उर्फ अबू सुफियान उर्फ सरदार साहब उर्फ कारी, ये पाकिस्तान में बैठा वही आतंकी है जो ISI का प्यारा और हाफिज सईद का दुलारा है। गौरी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है।
17: भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में फरहतुल्ला गौरी का नाम शामिल है। ये फिलहाल पाकिस्तान में अंडरग्राउंड है और लगातार ISI और लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रचता रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी 4 महीने पहले तलहा सईद से मिला था। आतंकी मीटिंग में 15 अगस्त को दिल्ली को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन आतंकियों की इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
0: आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों को 15 अगस्त के मद्देनजर तैनात किया गया है। आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल किया।
18: दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल। दिल्ली सचिवालय से लेकर कनॉट प्लेस तक, एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के बाजारों तक आतंकी हमले से निपटने की पूरी तैयारी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल किया। तैयारी हर हालात से निपटने की है। सबसे पहले दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें, यहां सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले से निपटने की मॉक ड्रिल की। आप देख सकते हैं सचिवालय के बाहर धुआं उठ रहा है, ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। यानी हमला हुआ तो 15 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियां कैसे निपटेंगी।
19: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सचिवालय के बाहर, जहां से दोपहर 1:30 बजे एक कंट्रोल रूम को कॉल गई कि गेट नंबर 5 से कुछ संदिग्ध बैग लेकर अंदर घुसे और साथ ही धमाके की आवाज आई। इसके तुरंत बाद तमाम एजेंसियां, आप देखिए सामने बम डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ मौजूद है, क्योंकि अंदर कुछ लोग घुसे हुए हैं ये कॉल थी। और उसके बाद पूरी टीम पहुंची है कि अगर उन्होंने कहीं पर अंदर कोई विस्फोटक छिपाया है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। इसके लिए बॉम्ब डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम सामान के साथ पहुंची है। देखिए जो अंदर की तरफ जा रही है, वहीं हम अगर आपको दिखाएं तो इस पूरे गेट नंबर 5 को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की आप ये देख, गेट नंबर 5 को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की आप ये देखिए, स्वात की गाड़ी यहां पर मौजूद है। दरअसल 15 अगस्त के पहले मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तमाम एजेंसियों का रिस्पांस टाइम देखा जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन बनती है।
18: घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना शामिल है। दिल्ली सचिवालय की तरह ही कनॉट प्लेस पर मॉक ड्रिल की गई। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी कनॉट प्लेस पर बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं।
20: 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी सिक्योरिटी अलर्ट है। एक बार फिर से एनएसजी और दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा मॉक ड्रिल जो है कनॉट प्लेस में हो रहा है। इस मॉक ड्रिल का थीम बेसिकली ये रखा गया है कि अगर कनॉट प्लेस में किसी भी तरह का आतंकी हमला हो जाता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और पुलिस की टीम है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये जो पूरा इलाका है इनर सर्कल का कनॉट प्लेस में, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए इस वक्त, और हर जगह अलग अलग जगह बैरिकेड लगा करके और ये डू नॉट क्रॉस दिल्ली पुलिस की जो टेप्स हैं ये लगा करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक के बाद एक एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं और जो कथित तौर पे घायल होंगे जो लोग ऐसे हमले में, उन्हें किस तरीके से वहां से निकाला जाएगा और कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें सही समय पर उपचार मिल सके, इन चीजों की डिटेल में तैयारी की जा रही है।
18: ये तस्वीरें दिल्ली के शहादरा इलाके की हैं। यहाँ पर भी आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। यहाँ बम ब्लास्ट का सीन क्रिएट किया गया जिसमें धमाके के बाद कुछ लोग घायल हो गए। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों का रिस्पांस टाइम देखा गया।
21: इंडिपेंडेंस डे के अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वाइटल इंस्टॉलेशंस पे मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसी के तहत ये गांधीनगर मार्केट में आज एक हमने मॉक ड्रिल किया है जिसमें ये कॉल दी गई थी कि एक एक्सप्लोजन होने के कारण दो लोग इंजर्ड हैं। इसी चीज को ध्यान रखते हुए सारे कंसर्न एजेंसियों को सूचना दी गई और सबने अपने अपने तरीके से क्विक वे में रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें लोकल पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, पीसीआर ने किया है, हमारी बीडीटी की टीम ने किया है, कैट्स एम्बुलेंस ने किया है, और इस कार्रवाई के तहत उन्होंने पहले पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और जो इंजर्ड लोग थे उनको सुरक्षित उन्होंने फिर हॉस्पिटल पहुँचाया है। पूरी कार्रवाई में करीब 10 से 12 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रहा है। इससे जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है हमारी इंप्रूव हुई है ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो उसमें हम बहुत क्विक तरीके से रेस्पॉन्ड कर।
18: दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 17 घंटे तक मॉक ड्रिल की गई। इस पूरी एक्सरसाइज को गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनएसजी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कोऑर्डिनेट किया। इसका मकसद ये देखना था कि अगर दिल्ली में एक साथ कई जगह आतंकी हमला होता है तो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां कितनी जल्दी मौके पर पहुंचती हैं और आपस में कितना बेहतर तालमेल बनाकर हालात को काबू में करती हैं। साफ है कि 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खासतौर पर दिल्ली में अभेद सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है ताकि आतंकियों की नापाक साजिश पर पानी फेरा जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही राजनीति, राहुल गांधी ने बताया संविधान का अपमान, पहले नड्डा ने जताया खेद। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म मानसून सत्र, सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी, रांची में छात्रों का आंदोलन भी जारी। और अंबाला के पंजोखरा साई विवाद मामले में बढ़ा बवाल, गुरु सिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़ा सिख संगत, दोनों पक्षों से कई घायल। सियासत के दो रंग, एक तरफ नई जनरेशन की नई डिमांड है, दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए पुरानी सियासी रीत चली आ रही है। एक तरफ जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन करके साफ पानी, साफ क्लासरूम, साफ टॉयलेट, स्कूल जाने के लिए सड़क, स्कूल में टीचर, ईमानदारी से भर्तियां मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्ष से महिलाओं को पैसा बांटो और सत्ता हासिल करो वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाती सियासत है। यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए वाली स्कीम ला सकती है, जिसका जिक्र आते ही अखिलेश यादव पहले इसे जुमला बताते हैं, लेकिन फिर खुद भी महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा करते हैं।
1: इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर वाले दौर से कहीं आगे, जब बच्चों को गड्ढे वाली सड़क पर बच्चों दिखाओ चलकर वाली नौबत ला दी जाती है, तो आज तक ने दिखाया आपको कि बच्चे अब टूटी सड़क को अपनी नियति मानकर नहीं चलने वाले। तभी तो बुधवार को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में पेगलवाड़ी गोयरेवाड़ी रोड पर टूटी सड़क को बनवाने की मांग को लेकर आदित्य और स्मिता ने हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर एक इंटरव्यू किया।
2: अब ये चीज इच्छा है कि आमचे रस्ता थोड़ा चांगला होना पाहिजे, सगळा चांगला होना पाहिजे, एवढीच आमची इच्छा।
1: जो हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर प्रशासन को जगा सकते हैं, उन तक आज तक भी पहुंचता है हाथ में आज तक का माइक थमाया और पूछा क्या हुआ जो आपको आवाज उठानी पड़ी।
2: स्कूल में जाते समय फाटे पे जाते जाते तो हमारा ड्रेस खराब हो जाता है, कभी कभी हम चिखल में गिर जाते हैं।
3: जो शूज या चप्पल पहनते उसका क्या हालत होता है?
2: वो तो जब चिखल में अटक गई तो वो निकलते समय वो डायरेक्ट टूट जाती
3: है। और ये जो आपके साथी है
2: और हम गिर जाए तो स्कूल में स्कूल को डांडी मारनी पड़ती है।
3: स्कूल जाते नहीं हो,
2: उधर से ही रिटर्न आना पड़ता है।
1: आदित्य और स्मिता ने एक वीडियो बनाकर बता दिया कि बच्चे अब देश में सत्ताधारियों से चाहते क्या है, जिसके बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर में उनके गांव की सड़क बनने लगती है।
3: मैं खड़ा हूँ अभी पेगलवाड़ी में, जहाँ के दो बच्चों ने पूरी सिस्टम यहाँ की हिला दी है। यहाँ कल रात में जो रास्ता बच्चों ने वीडियो में दिखाया था, वो रास्ते पे कल रात को 1:30 बजे तक वहाँ मिट्टी और कंकड़ डाले गए, और आज जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे यहाँ, तब जाके रोड रोलर आया था। बच्चों ने कल से सिस्टम मिला, तो कल क्या क्या कल से क्या क्या यहाँ हैपनिंग हो रही है?
4: अभी बच्चों का जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से वो रास्ते का काम उस पे खड़ी वगैरह डाला है, उस पे रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी ये उन्होंने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता।
1: इस वक्त देश के बच्चे और युवा चाहते क्या हैं? क्या सरकारें सुन नहीं पा रही? क्या राजनीतिक दलों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि नई जनरेशन नई डिमांड करती है? वो सड़क, स्कूल, टीचर, साफ पानी, साफ टॉयलेट चाहती है, लेकिन नई जनरेशन की नई डिमांड के बीच में सियासत सत्ता हासिल करने और सत्ता को बनाए रखने के पुराने ढर्रे, पुराने फॉर्मूले पर चलना चाहती है। जहां अखिलेश यादव पहले से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जीते तो महिलाओं को 40,000 रुपए साल भर में देंगे, तो अब उत्तर प्रदेश में खबर कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
5: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है, विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी विचार कर रही है।
1: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब महिलाओं के वोट को लेकर निश्चिंत योगी सरकार पहले से रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसा चुनाव से पहले बांटने वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल करने की रणनीति पर विचार होने लगा? क्या इसकी पहली वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थीं,

0: पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी। क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह ये भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती है? 2007 में बीएसपी को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
1: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है? चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे पीडीए जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को।
2: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है। हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो एनसीआरबी के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे, उसको आपने बंद कर दिया। अभी आप कौन सी योजना लेकर के आए हो? सकता है चुनावी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है।
0: बीजेपी अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं।
3: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपए और मिलेगा। उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपए महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपए हम देने जा रहे थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500, अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपए बनते हैं। तो 12 महीने देना है 3,000, तो कितना हुआ? 36,000 रुपए। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं।
4: यूपी चुनावों में जेंजी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी बड़ा टेस्ट है, और इनकी ये परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है। इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथगंडे अपना रही हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि यूपी में जेंजी किसका साथ देता है।
5: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं,
6: तो यूपी चुनावों के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है। निर्देश सीधे ऊपर से, ये कल की ही तस्वीरें। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए

0: मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेन जी चौपाले लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा वार 10-10 युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
1: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेके युवा संवाद?
2: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
0: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनावों में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय है, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं।
3: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
0: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईआईटी की तैयारी करने वालों को आईआईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
3: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
0: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, यहाँ भी जिताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
4: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा पे जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
0: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
4: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेंजी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
5: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। अगर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
0: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर लग रहा है।
4: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
0: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है। आतंकी हमले की साजिश बहुत गहरी है क्योंकि लश्कर के 8 सुइसाइड बॉम्बर घुसपैठ करके देश में दाखिल हो चुके हैं। लश्कर के फिदायीन दस्ते को दिल्ली के 6 ठिकानों पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
7: पंद्रह अगस्त को दिल्ली दहलाने का जिहादी प्लान, छह ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में आतंकी, लश्कर की फिदायीन टीम आज कर सकती है अटैक। ISI का प्लान और तलहा सईद का सुसाइड दस्ता, दिल्ली में हाई अलर्ट ऑपरेशन 15 अगस्त। बीते साल नवंबर में लाल किले के पास आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल ने फिदायीन हमले को अंजाम दिया था। डॉक्टर उमर ने विस्फोटक से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था, लेकिन लाल किले पर हमला करने में नाकाम रहा। अब इसी पैटर्न पर लश्कर का फिदायीन दस्ता दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा फिदायीन हमले की प्लानिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं।
8: मेरे हाथ में मौजूद इस कागज में दिल्ली को दहलाने की खुफिया एजेंसी का खौफनाक सच मौजूद है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से 11 अगस्त को जारी किए गए इस इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी में फिदायीन हमले से सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि लश्कर के फिदायीन हमलावर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तलहा सईद के इशारे पर दिल्ली में घुसपैठ कर चुके हैं। शायद इसी वजह से दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है।
7: बहुत गौर से अलर्ट की कॉपी को देखिए। कॉपी की एक एक लाइन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की गवाही देने को काफी है। सबसे पहले अलर्ट की कॉपी को डिकोड करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, खालिस्तानी आतंकी और लश्कर की तिकड़ी का प्लान, दिल्ली को IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से दहलाने की साजिश रची गई है।
9: दिल्ली में लोकल नेटवर्क और प्रो खालिस्तान सिंडिकेट के जरिए आईईडी की डिलीवरी होनी है। दिल्ली एनसीआर में आतंक के नेटवर्क को पाक में बैठे आतंकियों ने एक्टिव किया है।
8: दिल्ली को दहलाने की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हेडक्वार्टर में रची गई है। फिदायिन हमले के लिए आतंकियों की खेप तलहा सईद ने मुहैया करवाई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में खुलासा हुआ है कि एक दो नहीं बल्कि 8 फिदायिन हमलावर देश में घुसपैठ कर चुके हैं। इन 8 आतंकियों को लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई है और इनके निशाने पर कुल 6 लोकेशन हैं।
9: खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी देश की संसद, कनॉट प्लेस, दिल्ली के सरकारी भवन और रेलवे स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग रच रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू और राजस्थान में फिदायिन हमले की नापाक साजिश पाकिस्तान में रची गई है। 30 जून को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले के मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी की तरफ से भेजे गए संदेश को इंटरसेप्ट किया गया। आतंकी फरहतुल्ला ने सिग्नल ऐप के जरिए स्टूडेंट ग्रुप ऑफ हिंद पर एक संदेश भेजा था। संदेश में भारतीय मुसलमानों को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया। कहा मुसलमानों को दिल्ली पर इस्लाम का झंडा फहराना होगा। ये तभी होगा जब दिल्ली में फिदायिन हमले होंगे। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी करवाई गई है। मई महीने में इंटरसेप्ट हुए एक मैसेज से पता चला कि आईएसआई का प्लान भारत में 6 बड़े धमाके करवाने का है और फिदायिन हमले के लिए तलहा सईद से जुड़े 8 आतंकी देश में दाखिल हो चुके हैं। फरहतुल्ला गौरी उर्फ अबू सुफियान उर्फ सरदार साहब उर्फ कारी, ये पाकिस्तान में बैठा वही आतंकी है जो आईएसआई का प्यारा और हाफिज सईद का दुलारा है। गौरी लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है।
8: भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में फरहतुल्ला गौरी का नाम शामिल है। ये फिलहाल पाकिस्तान में अंडरग्राउंड है और लगातार आईएसआई और लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रचता रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी 4 महीने पहले तलहा सईद से मिला था। आतंकी मीटिंग में 15 अगस्त को दिल्ली को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन आतंकियों की इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
6: आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों को 15 अगस्त के मद्देनजर तैनात किया गया है। आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल किया।
9: दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल। दिल्ली सचिवालय से लेकर कनॉट प्लेस तक, एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के बाजारों तक आतंकी हमले से निपटने की पूरी तैयारी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल किया। तैयारी हर हालात से निपटने की है। सबसे पहले दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले से निपटने की मॉक ड्रिल की। आप देख सकते हैं सचिवालय के बाहर धुआं उठ रहा है। ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है, यानी हमला हुआ तो 15 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियां कैसे निपटेंगी।
10: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सचिवालय के बाहर, जहां से दोपहर 1:30 बजे एक कंट्रोल रूम को कॉल गई कि गेट नंबर 5 से कुछ संदिग्ध बैग लेकर अंदर घुसे और साथ ही धमाके की आवाज आई। इसके तुरंत बाद तमाम एजेंसियां, आप देखिए सामने बम डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ मौजूद है, क्योंकि अंदर कुछ लोग घुसे हुए हैं ये कॉल थी। और उसके बाद पूरी टीम पहुंची है कि अगर उन्होंने कहीं पर अंदर कोई विस्फोटक छिपाया है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। इसके लिए बम डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम सामान के साथ पहुंची है। देखिए जो अंदर की तरफ जा रही है, वहीं हम अगर आपको दिखाएं तो इस पूरे गेट नंबर 5 को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की, आप ये देखिए, स्वात की गाड़ी यहां पर मौजूद है। दरअसल 15 अगस्त के पहले मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तमाम एजेंसियों का रिस्पॉन्स टाइम देखा जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा।
9: मॉक ड्रिल में तमाम एजेंसियों को शामिल किया गया। इसमें बम निरोधक दस्ते से लेकर घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना शामिल है।
11: दिल्ली सचिवालय की तरह ही कनॉट प्लेस पर मॉक ड्रिल की गई। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी कनॉट प्लेस पर बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं।
12: 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी सिक्योरिटी अलर्ट है। एक बार फिर से एनएसजी और दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा मॉक ड्रिल जो है कनॉट प्लेस में हो रहा है। इस मॉक ड्रिल का थीम बेसिकली ये रखा गया है कि अगर कनॉट प्लेस में किसी भी तरह का आतंकी हमला हो जाता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और पुलिस की टीम है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये जो पूरा इलाका है इनर सर्कल का कनॉट प्लेस में, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए इस वक्त, और हर जगह अलग अलग जगह बैरिकेड लगा करके और ये डू नॉट क्रॉस दिल्ली पुलिस के जो टेप्स हैं ये लगा करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक के बाद एक एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं और जो कथित तौर पे घायल होंगे जो लोग ऐसे हमले में, उन्हें किस तरीके से वहां से निकाला जाएगा और कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें सही समय पर उपचार मिल सके, इन चीजों की डिटेल में तैयारी की जा रही है।
11: ये तस्वीरें दिल्ली के शहादरा इलाके की हैं। यहाँ पर भी आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। यहाँ बम ब्लास्ट का सीन क्रिएट किया गया जिसमें धमाके के बाद कुछ लोग घायल हो गए। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों का रिस्पांस टाइम देखा गया।
13: इंडिपेंडेंस डे के अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग व्हीकल इंस्टॉलेशन पे मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसी के तहत ये गांधीनगर मार्केट में आज एक हमने मॉक ड्रिल किया है जिसमें ये कॉल दी गई थी कि एक एक्सप्लोजन होने के कारण दो लोग इंजर्ड हैं। इसी चीज को ध्यान रखते हुए सारे कंसर्न एजेंसियों को सूचना दी गई और सबने अपने अपने तरीके से क्विक वे में रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें लोकल पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, PCR ने किया है, हमारी BDT की टीम ने किया है, कैट्स एम्बुलेंस ने किया है, और इस कार्रवाई के तहत उन्होंने पहले पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है, जो इंजर्ड लोग थे उनको सुरक्षित उन्होंने फिर हॉस्पिटल पहुँचाया है। पूरी कार्रवाई में करीब 10 से 12 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रहा है। इससे जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है हमारी इंप्रूव हुई है ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो उसपे हम बहुत क्विक तरीके से रेस्पॉन्ड कर।
11: दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 17 घंटे तक मॉक ड्रिल की गई। इस पूरी एक्सरसाइज को गृह मंत्रालय के निर्देश पर NSG और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कोऑर्डिनेट किया। इसका मकसद ये देखना था कि अगर दिल्ली में एक साथ कई जगह आतंकी हमला होता है तो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां कितनी जल्दी मौके पर पहुंचती हैं और आपस में कितना बेहतर तालमेल बनाकर हालात को काबू में करती हैं। साफ है कि 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खासतौर पर दिल्ली में अभेद सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है ताकि आतंकियों की नापाक साजिश पर पानी फेरा जा सके। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी। भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही राजनीति। राहुल गांधी ने बताया संविधान का अपमान। पहले नड्डा ने जताया खेद। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म मानसून सत्र। सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी। रांची में छात्रों का आंदोलन भी जारी। और अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद मामले में बढ़ा बवाल। गुरु सिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़ा सिख संगत। दोनों पक्षों से कई घायल। सियासत के दो रंग, एक तरफ नई जनरेशन की नई डिमांड है, दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए पुरानी सियासी रीत चली आ रही है। एक तरफ जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन करके साफ पानी, साफ क्लासरूम, साफ टॉयलेट, स्कूल जाने के लिए सड़क, स्कूल में टीचर, ईमानदारी से भर्तियां मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्ष से महिलाओं को पैसा बांटो और सत्ता हासिल करो वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाती सियासत है। यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए वाली स्कीम ला सकती है, जिसका जिक्र आते ही अखिलेश यादव पहले इसे जुमला बताते हैं, लेकिन फिर खुद भी महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा करते हैं।
1: इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर वाले दौर से कहीं आगे। जब बच्चों को गड्ढे वाली सड़क पर बच्चों दिखाओ चलकर वाली नौबत ला दी जाती है, तो आज तक ने दिखाया आपको कि बच्चे अब टूटी सड़क को अपनी नियति मानकर नहीं चलने वाले। तभी तो बुधवार को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में पेगलवाड़ी गोयरेवाड़ी रोड पर टूटी सड़क को बनवाने की मांग को लेकर आदित्य और स्मिता ने हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर एक इंटरव्यू किया।
2: अब तो ये चीज अच्छा है कि हम के रस पर थोड़ा चांगला है पाजे सगला चांगला है पाजे एवरी टाइम चीज अच्छा।
1: जो हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर प्रशासन को जगा सकते हैं, उन तक आज तक भी पहुंचता है। हाथ में आज तक का माइक थमाया और पूछा, क्या हुआ जो आपको आवाज उठानी पड़ी?
2: स्कूल में जाते समय फाटे पे जाते जाते तो हमारा ड्रेस खराब हो जाता है। कभी कभी हम चिखल में गिर जाते हैं।
3: जो शूज या चप्पल पहनते हैं उसका क्या हालत होता है?
2: वो तो जब चिखल में अटक जाए गई तो वो निकलते समय वो ड्रेस टूट जाती है।
3: और ये जो आपका साथी है
2: और हम गिर जाए तो स्कूल में स्कूल को डांडी मारनी पड़ती है।
3: स्कूल जाते नहीं हो,
2: उधर से ही रिटर्न आना पड़ता है।
1: आदित्य और स्मिता ने एक वीडियो बनाकर बता दिया कि बच्चे अब देश में सत्ताधारियों से चाहते क्या है, जिसके बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर में उनके गांव की सड़क बनने लगती है।
3: मैं खड़ा हूँ अभी पेगलवाड़ी में, जहाँ के दो बच्चों ने पूरी सिस्टम यहाँ की हिला दी है। यहाँ कल रात में जो रास्ता बच्चों ने वीडियो में दिखाया था, वो रास्ते पे कल रात को 1:30 बजे तक वहाँ मिट्टी और कंकड़ डाले गए, और आज जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे यहाँ, तब जाके रोड रोलर आया था। बच्चों ने कल से सिस्टम मिला, तो कल से क्या यहाँ हैपनिंग हो रही है?
4: अभी बच्चों का जब से वीडियो वायरल हुआ है, तब से वो रास्ते का काम उस पे खड़ी वगैरह डाला है, उस पे रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी ये उन्होंने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता।
1: इस वक्त देश के बच्चे और युवा चाहते क्या हैं? क्या सरकारें सुन नहीं पा रही? क्या राजनीतिक दलों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि नई जनरेशन नई डिमांड करती है? वो सड़क, स्कूल, टीचर, साफ पानी, साफ टॉयलेट चाहती है, लेकिन नई जनरेशन की नई डिमांड के बीच में सियासत सत्ता हासिल करने और सत्ता को बनाए रखने के पुराने ढर्रे, पुराने फॉर्मूले पर चलना चाहती है। जहां अखिलेश यादव पहले से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जीते तो महिलाओं को 40,000 रुपए साल भर में देंगे, तो अब उत्तर प्रदेश में खबर कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
5: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है, विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो SC/ST/OBC महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी विचार कर रही है।
6: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब महिलाओं के वोट को लेकर निश्चिंत योगी सरकार पहले से रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसा चुनाव से पहले बांटने वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल करने की रणनीति पर विचार होने लगा? क्या इसकी पहली वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थी? क्या दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 17 में से 12 सीटें यानी वो 70% सीटें जीती, जहां 2024 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी? क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह ये भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती है? 2007 में BSP को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
7: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है, हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है? चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे PDA जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को।
8: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है, हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो NCERB के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी PDA के जन नायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे, उसको आपने बंद कर दिया। अभी आप कौन सी योजना लेकर के आए हो सकता है चुनावी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है।
6: BJP अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं।
9: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहने इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा, उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपये हम देने जा रहे थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने BJP से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500, अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं, तो 12 महीने देना है 3,000 तो कितना हुआ 36,000 रुपये, और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे के गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं।
0: यूपी चुनावों में जेनजी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी बड़ा टेस्ट है और इनकी ये परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है। इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथगंडे अपना रही हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि यूपी में जेनजी किसका साथ देता है।
10: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
11: तो यूपी चुनावों के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है। निर्देश सीधे ऊपर से। ये कल की ही तस्वीरें। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेनजी चौपालें लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा वार 10-10 युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
12: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेके युवा संवाद
13: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
11: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनावों में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय है, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं।
10: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
11: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईआईटी की तैयारी करने वालों को आईआईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
10: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी और पढ़ाने वाले कौन होंगे, पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
11: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, यहाँ भी जिताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
14: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते दो एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
11: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
14: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेंजी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
15: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज़्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज़्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी ही हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
11: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर लग रहा है।
14: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
11: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: महाराष्ट्र के नांदेड़ में अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर एक निहंग ने अचानक से हमला बोल दिया। सुखबीर बादल गुरुद्वारा माता साहिब कौर में मत्था टेकने परिवार के साथ आए थे। इस हमले में सुखबीर बादल के हाथ में चोटें भी आई हैं। जब बादल हॉस्पिटल में थे उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके उनका हाल जाना। वहीं सीएम फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं।

0: महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा माता साहिब कौर में मत्था टेकने के बाद जैसे ही शिरोमणि अकाली दल के मुखिया और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह बादल बाहर निकले, इस निहंग ने कृपाण से उन पर हमला कर दिया।
1: दर्शनों को आए वाले पंजाब के माजी डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह जी बादल और उनकी धर्मपत्नी हरसिमरत कौर जी बादल और उनके बच्चे, उनके दामाद, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे, उन्होंने अखंड पाठ साहब 12 तारीख को आरंभ किया गया था और कल रात में भी वो 2 बजे गोदावरी से घाघर लेके आते, वहां पे भी जाके हरसिमरत कौर जी वो साथ में गोदावरी से घाघर लेके आए गुरु महाराज को जो स्नान कराते। आज माल टेकड़ी साहब, उसके बाद हीराघाट साहब, उसके बाद माता साहब जब दर्शन करके नीचे आते तो कोई नहंग सिंह उनपे अचानक हमला करता, कोई कुछ समझ पाते उसके अचानक वो हमला कर देता उनपे और उनको बहुत हाथ पर उनके चोट आई है और बहुत शर्म की बात है जो गुरु महाराज के दर्शनों को आने के बाद में इस तरीके के काम होता है।
0: देखिए, सफेद दाढ़ी और नीली पगड़ी पहने ये निहंग धीरे धीरे सुखबीर बादल की ओर बढ़ता है, जिसके बाद वो अचानक अपनी कमर से कृपाण निकालता है और सुखबीर बादल पर हमला कर देता है। अफरा तफरी के बीच बादल के सुरक्षा गार्ड हमलावर को तुरंत पकड़ लेते हैं। अब इस मामले की जांच एटीएस, आईबी और नांदेड़ पुलिस तीनों मिलकर करेंगे।
2: लगभग 2 बजे के आसपास साहब जो है माता साहब गुरुद्वारा विजिट पे गए थे, तो गुरुद्वारा विजिट करने के बाद वहाँ से वापस आते वक्त सीढ़ियाँ के पास एक वहाँ का सेवादार है, उसने अचानक से आके अपने कृपाण से अटैक करने की कोशिश की, जिसमें हमारा एक साहब को राइट हैंड में इंजरी हुई है और एक हमारा ऑफिसर है इंस्पेक्टर एसपीयू का, उसने वहाँ पे सिक्योरिटी में था, उसने हाथ से वो रोक लिया, उसको हाथ में थोड़ी सी इंजरी हुई है। ये होते ही हमने इमीडिएटली उस जो अटैकर था उसको अपने कस्टडी में ले लिया और उससे इंट्रोगेशन चल रही है। वो लगभग 62 साल का उम्र का है और लगभग 2 साल से यहाँ पे सेवादार काम कर रहा था गुरुद्वारे में।
3: सर, ये आईबी का स्पेसिफिक इनपुट था, फिर भी नांदेड़ पुलिस कैसे चूक गई?
2: चूक ही नहीं है, इसमें पूरी जेड प्लस सिक्योरिटी थी साहब के उसमें, और इसीलिए हमारा वहाँ पे इंस्पेक्टर था, हमारे सारे ऑफिसर्स थे वहाँ पे, इसीलिए हमने इमीडिएटली उसको रोक लिया और इमीडिएट कस्टडी में ले लिया।
0: इस हमले में सुखबीर सिंह बादल का हाथ जख्मी हो गया और उनका सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गया, जिसके बाद तुरंत ही सुखबीर सिंह बादल को नजदीकी यशोद साई अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि अब वो खतरे से बाहर है।
4: वरिष्ठ अफसरों ने ये बताया कि सुखबीर सिंह बादल स्टेबल हैं, उनकी तबीयत ठीक है, उन्हें दाहिने हाथ पर जख्म हुआ है और एक किरपान से ये जख्म हुआ है, किरपान से उन पर हमला किया था आरोपी जसपाल सिंह ने, जो कि जसपाल सिंह पिछले 2 साल से माता साहिब गुरुद्वारा नांदेड़ में रह रहे थे। जसपाल सिंह पुणे के रहने वाले हैं, पुणे के सोलापुर बाजार में उनका घर स्थित है, वो तेजा सिंह नामक व्यक्ति के बेटे हैं और वो एक बीकॉम ग्रेजुएट हैं, पहले वकील भी रह चुके हैं, पिछले 2 साल से वो माता साहिब गुरुद्वारा में ही रह रहे थे।
5: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है। आतंकी हमले की साजिश बहुत गहरी है क्योंकि लश्कर के 8 सुइसाइड बॉम्बर घुसपैठ करके देश में दाखिल हो चुके हैं। लश्कर के फिदायीन दस्ते को दिल्ली के 6 ठिकानों पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
6: पंद्रह अगस्त को दिल्ली दहलाने का जिहादी प्लान, छह ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में आतंकी, लश्कर की फिदाइन टीम 8 कर सकती है अटैक। आईएसआई का प्लान और तलहा सईद का सुसाइड दस्ता, दिल्ली में हाई अलर्ट ऑपरेशन 15 अगस्त। बीते साल नवंबर में लाल किले के पास आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल ने फिदाइन हमले को अंजाम दिया था। डॉक्टर उमर ने विस्फोटक से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था, लेकिन लाल किले पर हमला करने में नाकाम रहा। अब इसी पैटर्न पर लश्कर का फिदायीन दस्ता दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा फिदायीन हमले की प्लानिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं।
7: मेरे हाथ में मौजूद इस कागज में दिल्ली को दहलाने की खुफिया एजेंसी का खौफनाक सच मौजूद है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से 11 अगस्त को जारी किए गए इस इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी में फिदायीन हमले से सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि लश्कर के फिदायीन हमलावर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तलहा सईद के इशारे पर दिल्ली में घुसपैठ कर चुके हैं। शायद इसी वजह से दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है।
6: बहुत गौर से अलर्ट की कॉपी को देखिए। कॉपी की एक एक लाइन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की गवाही देने को काफी है। सबसे पहले अलर्ट की कॉपी को डिकोड करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, खालिस्तानी आतंकी और लश्कर की तिकड़ी का प्लान, दिल्ली को IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से दहलाने की साजिश रची गई है। दिल्ली में लोकल नेटवर्क और प्रो खालिस्तान सिंडिकेट के जरिए IED की डिलीवरी होनी है। दिल्ली NCR में आतंक के नेटवर्क को पाक में बैठे आतंकियों ने एक्टिव किया है।
7: दिल्ली को दहलाने की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर में रची गई है। फिदायीन हमले के लिए आतंकियों की खेप तलहा सईद ने मुहैया करवाई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में खुलासा हुआ है कि एक दो नहीं बल्कि 8 फिदायीन हमलावर देश में घुसपैठ कर चुके हैं। इन 8 आतंकियों को लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई है और इनके निशाने पर कुल 6 लोकेशन हैं।
6: खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी देश की संसद, कनॉट प्लेस, दिल्ली के सरकारी भवन और रेलवे स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग रच रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू और राजस्थान में फिदायीन हमले की नापाक साजिश पाकिस्तान में रची गई है। 30 जून को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले के मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी की तरफ से भेजे गए संदेश को इंटरसेप्ट किया गया। आतंकी फरहतुल्ला ने सिग्नल ऐप के जरिए स्टूडेंट ग्रुप ऑफ हिंद पर एक संदेश भेजा था। संदेश में भारतीय मुसलमानों को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया। कहा मुसलमानों को दिल्ली पर इस्लाम का झंडा फहराना होगा। ये तभी होगा जब दिल्ली में फिदायीन हमले होंगे। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी करवाई गई है। मई महीने में इंटरसेप्ट हुए एक मैसेज से पता चला कि ISI का प्लान भारत में 6 बड़े धमाके करवाने का है और फिदायीन हमले के लिए तलहा सईद से जुड़े 8 आतंकी देश में दाखिल हो चुके हैं। फरहतुल्ला गौरी उर्फ अबू सुफियान उर्फ सरदार साहब उर्फ कारी, ये पाकिस्तान में बैठा वही आतंकी है जो ISI का प्यारा और हाफिज सईद का दुलारा है। गौरी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है।
7: भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में फरहतुल्ला गौरी का नाम शामिल है। ये फिलहाल पाकिस्तान में अंडरग्राउंड है और लगातार ISI और लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रचता रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी 4 महीने पहले तलहा सईद से मिला था। आतंकी मीटिंग में 15 अगस्त को दिल्ली को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन आतंकियों की इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
5: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही राजनीति, राहुल गांधी ने बताया संविधान का अपमान, पहले नड्डा ने जताया खेद। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म मानसून सत्र, सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी, रांची में छात्रों का आंदोलन भी जारी। और अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद मामले में बढ़ा बवाल, गुरु सिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़ा सिख संगत, दोनों पक्षों से कई घायल। सियासत के दो रंग, एक तरफ नई जनरेशन की नई डिमांड है, दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए पुरानी सियासी रीत चली आ रही है। एक तरफ जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन करके साफ पानी, साफ क्लासरूम, साफ टॉयलेट, स्कूल जाने के लिए सड़क, स्कूल में टीचर, ईमानदारी से भर्तियां मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्ष से महिलाओं को पैसा बांटो और सत्ता हासिल करो वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाती सियासत है। यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए वाली स्कीम ला सकती है, जिसका जिक्र आते ही अखिलेश यादव पहले इसे जुमला बताते हैं, लेकिन फिर खुद भी महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा करते हैं।
1: इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर वाले दौर से कहीं आगे, जब बच्चों को गड्ढे वाली सड़क पर बच्चों दिखाओ चलकर वाली नौबत ला दी जाती है, तो आज तक ने दिखाया आपको कि बच्चे अब टूटी सड़क को अपनी नियति मानकर नहीं चलने वाले। तभी तो बुधवार को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में पेगलवाड़ी गोयरेवाड़ी रोड पर टूटी सड़क को बनवाने की मांग को लेकर आदित्य और स्मिता ने हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर एक इंटरव्यू किया।
2: अब ये चीज अच्छा है कि आमचे रस्ते थोड़ा चांगला है पाहिजे, सगळा चांगला है पाहिजे, एवढी आमची इच्छा।
1: जो हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर प्रशासन को जगा सकते हैं, उन तक आज तक भी पहुंचता है। हाथ में आज तक का माइक थमाया और पूछा, क्या हुआ जो आपको आवाज उठानी पड़ी?
2: जाते समय फाटे पे जाते जाते तो हमारा ड्रेस खराब हो जाता है, कभी कभी हम चिखल में गिर जाते हैं।
3: जो शूज या चप्पल पहनते उसका क्या हालत होता
2: है? वो तो जब चिखल में अटक जाए गई तो वो निकलते समय वो ड्रेस टूट जाती
3: है। और ये जो आपके साथी है
2: और हम गिर जाए तो स्कूल को डांडी मारनी पड़ती
3: है। स्कूल जाते नहीं हो,
2: उधर से ही रिटर्न आना पड़ता है।
1: आदित्य और स्मिता ने एक वीडियो बनाकर बता दिया कि बच्चे अब देश में सत्ताधारियों से चाहते क्या है, जिसके बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर में उनके गांव की सड़क बनने लगती है।
3: मैं खड़ा हूँ अभी पेगलवाड़ी में, जहाँ के दो बच्चों ने पूरी सिस्टम यहाँ की हिला दी है। यहाँ कल रात में जो रास्ता बच्चों ने वीडियो में दिखाया था, वो रास्ते पे कल रात को 1:30 बजे तक वहाँ मिट्टी और कंकड़ डाले गए, और आज जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे यहाँ, तब जाके रोड रोलर आया था। बच्चों ने कल से सिस्टम मिला, तो कल से क्या यहाँ हैपनिंग हो रही है?
4: अभी बच्चों का जब से वीडियो वायरल हुआ है, तब से वो रास्ते का काम उस पे खड़ी वगैरह डाला है, उस पे रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी ये उन्होंने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता।
1: इस वक्त देश के बच्चे और युवा चाहते क्या हैं? क्या सरकारें सुन नहीं पा रही? क्या राजनीतिक दलों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि नई जनरेशन नई डिमांड करती है? वो सड़क, स्कूल, टीचर, साफ पानी, साफ टॉयलेट चाहती है, लेकिन नई जनरेशन की नई डिमांड के बीच में सियासत सत्ता हासिल करने और सत्ता को बनाए रखने के पुराने ढर्रे, पुराने फॉर्मूले पर चलना चाहती है। जहां अखिलेश यादव पहले से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जीते तो महिलाओं को 40,000 रुपए साल भर में देंगे, तो अब उत्तर प्रदेश में खबर कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 10-10,000 रुपए की 3 किस्तें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
5: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है, विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी विचार कर रही है।
1: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब महिलाओं के वोट को लेकर निश्चिंत योगी सरकार पहले से रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसा चुनाव से पहले बांटने वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल करने की रणनीति पर विचार होने लगा? क्या इसकी पहली वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थी? क्या दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 17 में से 12 सीटें यानी वो 70% सीटें जीती, जहां 2024 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी? क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह ये भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती है? 2007 में बीएसपी को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
6: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है, हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे पीडीए जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को।
7: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है, हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो एनसीआरबी के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो

0: भी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है।
1: बीजेपी अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं।
2: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा। उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपए महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपए हम देने जा रहे थे। उसके बाद जब
3: यूपी चुनावों में जेंजी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी बड़ा टेस्ट है और इनकी ये परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है, इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथगंडे अपना रही हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि यूपी में जेंजी किसका साथ देता है।
4: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
5: तो यूपी चुनावों के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, निर्देश सीधे ऊपर से। ये कल की ही तस्वीरें, यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपालें लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा वार 10-10 युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
6: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेके युवा संवाद?
7: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
5: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनावों में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय है, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं।
8: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
5: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईआईटी की तैयारी करने वालों को आईआईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
4: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम बढ़

0: वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
1: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है। यहाँ भी जिताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
2: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
1: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
2: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
3: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी। और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजाकर, मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
1: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर लग रहा है।
2: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
1: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है। आतंकी हमले की साजिश बहुत गहरी है क्योंकि लश्कर के 8 सुइसाइड बॉम्बर घुसपैठ करके देश में दाखिल हो चुके हैं। लश्कर के फिदायीन दस्ते को दिल्ली के 6 ठिकानों पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
5: पंद्रह अगस्त को दिल्ली दहलाने का जिहादी प्लान, छह ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में आतंकी। लश्कर की फिदाइन टीम आज कर सकती है अटैक। आईएसआई का प्लान और तलहा सईद का सुसाइड दस्ता। दिल्ली में हाई अलर्ट, ऑपरेशन 15 अगस्त। बीते साल नवंबर में लाल किले के पास आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल ने फिदाइन हमले को अंजाम दिया था। डॉक्टर उमर ने विस्फोटक से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था, लेकिन लाल किले पर हमला करने में नाकाम रहा। अब इसी पैटर्न पर लश्कर का फिदाइन दस्ता दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा फिदाइन हमले की प्लानिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं।
6: मेरे हाथ में मौजूद इस कागज में दिल्ली को दहलाने की खुफिया एजेंसी का खौफनाक सच मौजूद है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से 11 अगस्त को जारी किए गए इस इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी में फिदाइन हमले से सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि लश्कर के फिदाइन हमलावर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और तलहा सईद के इशारे पर दिल्ली में घुसपैठ कर चुके हैं। शायद इसी वजह से दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है।
5: बहुत गौर से अलर्ट की कॉपी को देखिए। कॉपी की एक एक लाइन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की गवाही देने को काफी है। सबसे पहले अलर्ट की कॉपी को डिकोड करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, खालिस्तानी आतंकी और लश्कर की तिकड़ी का प्लान, दिल्ली को आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से दहलाने की साजिश रची गई है। दिल्ली में लोकल नेटवर्क और प्रो खालिस्तान सिंडिकेट के जरिए आईईडी की डिलीवरी होनी है। दिल्ली एनसीआर में आतंक के नेटवर्क को पाक में बैठे आतंकियों ने एक्टिव किया है।
6: दिल्ली को दहलाने की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हेडक्वार्टर में रची गई है। फिदाइन हमले के लिए आतंकियों की खेप तलहा सईद ने मुहैया करवाई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में खुलासा हुआ है कि एक दो नहीं बल्कि 8 फिदाइन हमलावर देश में घुसपैठ कर चुके हैं। इन 8 आतंकियों को लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई है और इनके निशाने पर कुल 6 लोकेशन हैं।
5: खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी देश की संसद, कनॉट प्लेस, दिल्ली के सरकारी भवन और रेलवे स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग रच रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू और राजस्थान में फिदाइन हमले की नापाक साजिश पाकिस्तान में रची गई है। 30 जून को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले के मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी की तरफ से भेजे गए संदेश को इंटरसेप्ट किया गया। आतंकी फरहतुल्ला ने सिग्नल ऐप के जरिए स्टूडेंट ग्रुप ऑफ हिंद पर एक संदेश भेजा था। संदेश में भारतीय मुसलमानों को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया। कहा मुसलमानों को दिल्ली पर इस्लाम का झंडा फहराना होगा। ये तभी होगा जब दिल्ली में फिदाइन हमले होंगे। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी करवाई गई है। मई महीने में इंटरसेप्ट हुए एक मैसेज से पता चला कि आईएसआई का प्लान भारत में 6 बड़े धमाके करवाने का है और फिदाइन हमले के लिए तलहा सईद से जुड़े 8 आतंकी देश में दाखिल हो चुके हैं। फरहतुल्ला गौरी उर्फ अबू सुफियान उर्फ सरदार साहब उर्फ कारी, ये पाकिस्तान में बैठा वही आतंकी है जो आईएसआई का प्यारा और हाफिज सईद का दुलारा है। गौरी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है।
6: भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में फरहतुल्ला गौरी का नाम शामिल है। ये फिलहाल पाकिस्तान में अंडरग्राउंड है और लगातार आईएसआई और लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रचता रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी 4 महीने पहले तलहा सईद से मिला था। आतंकी मीटिंग में 15 अगस्त को दिल्ली को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन आतंकियों की इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
4: आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों को 15 अगस्त के मद्देनजर तैनात किया गया है। आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल किया।
5: दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल। दिल्ली सचिवालय से लेकर कनॉट प्लेस तक, एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के बाजारों तक, आतंकी हमले से निपटने की पूरी तैयारी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल किया। तैयारी हर हालात से निपटने की है। सबसे पहले दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें, यहां सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले से निपटने की मॉक ड्रिल की। आप देख सकते हैं सचिवालय के बाहर धुआं उठ रहा है, ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। यानी हमला हुआ तो 15 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियां कैसे निपटेंगी।
7: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सचिवालय के बाहर, जहां से दोपहर 1:30 बजे एक कंट्रोल रूम को कॉल गई कि गेट नंबर 5 से कुछ संदिग्ध बैग लेकर अंदर घुसे और साथ ही धमाके की आवाज आई। इसके तुरंत बाद तमाम एजेंसियां, आप देखिए सामने बम डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ मौजूद है, क्योंकि अंदर कुछ लोग घुसे हुए हैं, ये कॉल थी। और उसके बाद पूरी टीम पहुंची है कि अगर उन्होंने कहीं पर अंदर कोई विस्फोटक छिपाया है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। इसके लिए बम डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम सामान के साथ पहुंची है, देखिए जो अंदर की तरफ जा रही है। वहीं हम अगर आपको दिखाएं तो इस पूरे गेट नंबर 5 को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की आप ये देखिए स्वात की गाड़ी यहां पर मौजूद है। दरअसल 15 अगस्त के पहले मॉक ड्रिल किया जा रहा है, तमाम एजेंसियों का रिस्पॉन्स टाइम देखा जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा।
5: मॉक ड्रिल में तमाम एजेंसियों को शामिल किया गया, इसमें बम निरोधक दस्ते से लेकर घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना शामिल है। दिल्ली सचिवालय की तरह ही कनॉट प्लेस पर मॉक ड्रिल की गई। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी कनॉट प्लेस पर बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं।
8: 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी सिक्योरिटी अलर्ट है। एक बार फिर से एनएसजी और दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा मॉक ड्रिल जो है कनॉट प्लेस में हो रहा है। इस मॉक ड्रिल का थीम बेसिकली ये रखा गया है कि अगर कनॉट प्लेस में किसी भी तरह का आतंकी हमला हो जाता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और पुलिस की टीम है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये जो पूरा इलाका है इनर सर्कल का कनॉट प्लेस में, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए इस वक्त, और हर जगह अलग अलग जगह बैरिकेड लगा करके और ये डू नॉट क्रॉस दिल्ली पुलिस की जो टेप्स हैं ये लगा करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक के बाद एक एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं और जो कथित तौर पे घायल होंगे जो लोग ऐसे हमले में, उन्हें किस तरीके से वहां से निकाला जाएगा और कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें सही समय पर उपचार मिल सके, इन चीजों की डिटेल में तैयारी की जा रही है।
5: ये तस्वीरें दिल्ली के शहादरा इलाके की हैं। यहाँ पर भी आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। यहाँ बम ब्लास्ट का सीन क्रिएट किया गया जिसमें धमाके के बाद कुछ लोग घायल हो गए। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों का रिस्पांस टाइम देखा गया।
9: इंडिपेंडेंस डे के अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग व्हीकल इंस्टॉलेशंस पे मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसी के तहत ये गांधीनगर मार्केट में आज एक हमने मॉक ड्रिल किया है जिसमें ये कॉल दी गई थी कि एक एक्सप्लोजन होने के कारण 2 लोग इंजर्ड हैं। इसी चीज को ध्यान रखते हुए सारे कंसर्न एजेंसियों को सूचना दी गई और सबने अपने अपने तरीके से क्विक वे में रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें लोकल पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, PCR ने किया है, हमारी BDT की टीम ने किया है, कैट्स एम्बुलेंस ने किया है, और इस कार्रवाई के तहत उन्होंने पहले पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और जो इंजर्ड लोग थे उनको सुरक्षित उन्होंने फिर हॉस्पिटल पहुँचाया है। पूरी कार्रवाई में करीब 10 से 12 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रहा है। इससे जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है हमारी इंप्रूव हुई है ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो उसमें हम बहुत क्विक तरीके से रेस्पॉन्ड कर।
5: दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 17 घंटे तक मॉक ड्रिल की गई। इस पूरी एक्सरसाइज को गृह मंत्रालय के निर्देश पर NSG और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कोऑर्डिनेट किया। इसका मकसद ये देखना था कि अगर दिल्ली में एक साथ कई जगह आतंकी हमला होता है तो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां कितनी जल्दी मौके पर पहुंचती हैं और आपस में कितना बेहतर तालमेल बनाकर हालात को काबू में करती हैं। साफ है कि 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खासतौर पर दिल्ली में अभेद सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है ताकि आतंकियों की नापाक साजिश पर पानी फेरा जा सके। आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही राजनीति, राहुल गांधी ने बताया संविधान का अपमान, पहले नड्डा ने जताया खेद। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म मानसून सत्र, सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी, रांची में छात्रों का आंदोलन भी जारी। और अंबाला के पंजोखरा साई विवाद मामले में बढ़ा बवाल, गुरु सिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़ा सिख संगत, दोनों पक्षों से कई घायल। सियासत के दो रंग, एक तरफ नई जनरेशन की नई डिमांड है, दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए पुरानी सियासी रीत चली आ रही है। एक तरफ जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन करके साफ पानी, साफ क्लासरूम, साफ टॉयलेट, स्कूल जाने के लिए सड़क, स्कूल में टीचर, ईमानदारी से भर्तियां मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्ष से महिलाओं को पैसा बांटो और सत्ता हासिल करो वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाती सियासत है। यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए वाली स्कीम ला सकती है, जिसका जिक्र आते ही अखिलेश यादव पहले इसे जुमला बताते हैं, लेकिन फिर खुद भी महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा करते हैं।
1: इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर वाले दौर से कहीं आगे, जब बच्चों को गड्ढे वाली सड़क पर बच्चों दिखाओ चलकर वाली नौबत ला दी जाती है, तो आज तक ने दिखाया आपको कि बच्चे अब टूटी सड़क को अपनी नियति मानकर नहीं चलने वाले। तभी तो बुधवार को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में पेगलवाड़ी गोयरेवाड़ी रोड पर टूटी सड़क को बनवाने की मांग को लेकर आदित्य और स्मिता ने हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर एक इंटरव्यू किया।
2: अब तो ये चीज अच्छा है कि हम सड़क पर थोड़ा चांगला है पाजे, सगला चांगला है पाजे, एवरी सम चीज अच्छा।
1: जो हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर प्रशासन को जगा सकते हैं, उन तक आज तक भी पहुंचता है हाथ में आज तक का माइक थमाया और पूछा क्या हुआ जो आपको आवाज उठानी पड़ी।
2: स्कूल में जाते समय फाटे पे जाते जाते तो हमारा ड्रेस खराब हो जाता है, कभी कभी हम चिखल में गिर जाते हैं।
3: जो शूज या चप्पल पहनते उसका क्या हालत होता है?
2: वो तो जब चिखल में अटक गई तो वो निकलते समय वो डायरेक्ट टूट जाती
3: है। और ये जो आपके साथी है
2: और हम गिर जाए तो स्कूल में स्कूल को डांडी मारनी पड़ती,
3: स्कूल जाते नहीं हो,
2: उधर से ही रिटर्न आना पड़ता है।
1: आदित्य और स्मिता ने एक वीडियो बनाकर बता दिया कि बच्चे अब देश में सत्ताधारियों से चाहते क्या है, जिसके बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर में उनके गांव की सड़क बनने लगती है।
3: मैं खड़ा हूँ अभी पेगलवाड़ी में, जहाँ के दो बच्चों ने पूरी सिस्टम यहाँ की हिला दी है। यहाँ कल रात में जो रास्ता बच्चों ने वीडियो में दिखाया था, वो रास्ते पे कल रात को 1:30 बजे तक वहाँ मिट्टी और कंकर डाले गए, और आज जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे यहाँ, तब जाके रोड रोलर आया था। बच्चों ने कल से सिस्टम मिला, तो कल क्या क्या कल से क्या क्या यहाँ हैपनिंग हो रही है?
4: अभी बच्चों का जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से वो रास्ते का काम उस पे खड़ी वगैरह डाला है, उस पे रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी ये उन्होंने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता।
1: इस वक्त देश के बच्चे और युवा चाहते क्या हैं? क्या सरकारें सुन नहीं पा रही? क्या राजनीतिक दलों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि नई जनरेशन नई डिमांड करती है? वो सड़क, स्कूल, टीचर, साफ पानी, साफ टॉयलेट चाहती है, लेकिन नई जनरेशन की नई डिमांड के बीच में सियासत सत्ता हासिल करने और सत्ता को बनाए रखने के पुराने ढर्रे, पुराने फॉर्मूले पर चलना चाहती है। जहां अखिलेश यादव पहले से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जीते तो महिलाओं को 40,000 रुपए साल भर में देंगे, तो अब उत्तर प्रदेश में खबर कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
5: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है, विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी विचार कर रही है।
1: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब महिलाओं के वोट को लेकर निश्चिंत योगी सरकार पहले से रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसा चुनाव से पहले बांटने वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल करने की रणनीति पर विचार होने लगा? क्या इसकी पहली वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थी? क्या दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 17 में से 12 सीटें यानी वो 70% सीटें जीती, जहां 2024 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी? क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह ये भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती है? 2007 में बीएसपी को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
6: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है, हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे पीडीए जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को।
7: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती, हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो एनसीआरबी के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे, उसको आपने बंद कर दिया। अभी आप कौन सी योजना लेकर के आए हो सकता है चुनावी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है।
1: बीजेपी अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं।
8: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा, उनको धोखा दे दिया 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपये हम देने जा रहे थे, उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे, पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500 अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं, तो 12 महीने देना है 3,000 तो कितना हुआ 36,000 रुपये, और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे के गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं।
0: यूपी चुनावों में जेनजी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी बड़ा टेस्ट है और इनकी ये परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है। इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथगंडे अपना रही हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि यूपी में जेनजी किसका साथ देता है।
9: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
10: तो यूपी चुनावों के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है। निर्देश सीधे ऊपर से। ये कल की ही तस्वीरें। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेनजी चौपालें लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा वार 10-10 युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
11: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेके युवा संवाद।
12: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
10: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनावों में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय है, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं।
13: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
10: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईआईटी की तैयारी करने वालों को आईआईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
9: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
10: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, यहाँ भी जिताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
14: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते दो एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
10: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
14: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
0: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी। और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी ही हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
10: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर लग रहा है।
14: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
10: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है। आतंकी हमले की साजिश बहुत गहरी है क्योंकि लश्कर के 8 सुइसाइड बॉम्बर घुसपैठ करके देश में दाखिल हो चुके हैं। लश्कर के फिदाइन दस्ते को दिल्ली के 6 ठिकानों पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
15: पंद्रह अगस्त को दिल्ली दहलाने का जिहादी प्लान, छह ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में आतंकी, लश्कर की फिदाइन टीम 8 कर सकती है अटैक। ISI का प्लान और तलहा सईद का सुसाइड दस्ता, दिल्ली में हाई अलर्ट ऑपरेशन 15 अगस्त। बीते साल नवंबर में लाल किले के पास आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल ने फिदाइन हमले को अंजाम दिया था। डॉक्टर उमर ने विस्फोटक से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था, लेकिन लाल किले पर हमला करने में नाकाम रहा। अब इसी पैटर्न पर लश्कर का फिदाइन दस्ता दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा फिदाइन हमले की प्लानिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं।
16: मेरे हाथ में मौजूद इस कागज में दिल्ली को दहलाने की खुफिया एजेंसी का खौफनाक सच मौजूद है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से 11 अगस्त को जारी किए गए इस इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी में फिदायिन हमले से सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि लश्कर के फिदायिन हमलावर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तलहा सईद के इशारे पर दिल्ली में घुसपैठ कर चुके हैं। शायद इसी वजह से दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है।
15: बहुत गौर से अलर्ट की कॉपी को देखिए। कॉपी की एक एक लाइन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की गवाही देने को काफी है। सबसे पहले अलर्ट की कॉपी को डिकोड करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, खालिस्तानी आतंकी और लश्कर की तिकड़ी का प्लान, दिल्ली को IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से दहलाने की साजिश रची गई है। दिल्ली में लोकल नेटवर्क और प्रो खालिस्तान सिंडिकेट के जरिए IED की डिलीवरी होनी है। दिल्ली NCR में आतंक के नेटवर्क को पाक में बैठे आतंकियों ने एक्टिव किया है।
16: दिल्ली को दहलाने की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर में रची गई है। फिदायिन हमले के लिए आतंकियों की खेप तलहा सईद ने मुहैया करवाई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में खुलासा हुआ है कि एक दो नहीं बल्कि 8 फिदायिन हमलावर देश में घुसपैठ कर चुके हैं। इन 8 आतंकियों को लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई है और इनके निशाने पर कुल 6 लोकेशन हैं।
15: खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी देश की संसद, कनॉट प्लेस, दिल्ली के सरकारी भवन और रेलवे स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग रच रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू और राजस्थान में फिदायिन हमले की नापाक साजिश पाकिस्तान में रची गई है। 30 जून को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले के मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी की तरफ से भेजे गए संदेश को इंटरसेप्ट किया गया। आतंकी फरहतुल्ला ने सिग्नल ऐप के जरिए स्टूडेंट ग्रुप ऑफ हिंद पर एक संदेश भेजा था। संदेश में भारतीय मुसलमानों को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया। कहा मुसलमानों को दिल्ली पर इस्लाम का झंडा फहराना होगा। ये तभी होगा जब दिल्ली में फिदायिन हमले होंगे। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी करवाई गई है। मई महीने में इंटरसेप्ट हुए एक मैसेज से पता चला कि ISI का प्लान भारत में 6 बड़े धमाके करवाने का है और फिदायिन हमले के लिए तलहा सईद से जुड़े 8 आतंकी देश में दाखिल हो चुके हैं। फरहतुल्ला गौरी उर्फ अबू सुफियान उर्फ सरदार साहब उर्फ कारी, ये पाकिस्तान में बैठा वही आतंकी है जो ISI का प्यारा और हाफिज सईद का दुलारा है। गौरी लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है।
16: भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में फरहतुल्ला गौरी का नाम शामिल है। ये फिलहाल पाकिस्तान में अंडरग्राउंड है और लगातार ISI और लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रचता रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी 4 महीने पहले तलहा सईद से मिला था। आतंकी मीटिंग में 15 अगस्त को दिल्ली को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन आतंकियों की इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
0: आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों को 15 अगस्त के मद्देनजर तैनात किया गया है। आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल किया।
15: दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल। दिल्ली सचिवालय से लेकर कनॉट प्लेस तक, एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के बाजारों तक आतंकी हमले से निपटने की पूरी तैयारी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल किया। तैयारी हर हालात से निपटने की है। सबसे पहले दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें, यहां सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले से निपटने की मॉक ड्रिल की। आप देख सकते हैं सचिवालय के बाहर धुआं उठ रहा है, ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। यानी हमला हुआ तो 15 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियां कैसे निपटेंगी।
17: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सचिवालय के बाहर, जहां से दोपहर 1:30 बजे एक कंट्रोल रूम को कॉल गई कि गेट नंबर 5 से कुछ संदिग्ध बैग लेकर अंदर घुसे और साथ ही धमाके की आवाज आई। इसके तुरंत बाद तमाम एजेंसियां, आप देखिए सामने बम डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ मौजूद है, क्योंकि अंदर कुछ लोग घुसे हुए हैं ये कॉल थी। और उसके बाद पूरी टीम पहुंची है कि अगर उन्होंने कहीं पर अंदर कोई विस्फोटक छिपाया है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। इसके लिए बम डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम सामान के साथ पहुंची है, देखिए जो अंदर की तरफ जा रही है। वहीं हम अगर आपको दिखाएं तो इस पूरे गेट नंबर 5 को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की आप ये देखिए स्वात की गाड़ी यहां पर मौजूद है। दरअसल 15 अगस्त के पहले मॉक ड्रिल किया जा रहा है, तमाम एजेंसियों का रिस्पॉन्स टाइम देखा जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा।
10: मॉक ड्रिल में तमाम एजेंसियों को शामिल किया गया, इसमें बम निरोधक दस्ते से लेकर घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना शामिल है। दिल्ली सचिवालय की तरह ही कनॉट प्लेस पर मॉक ड्रिल की गई। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी कनॉट प्लेस पर बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं।
18: 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी सिक्योरिटी अलर्ट है। एक बार फिर से एनएसजी और दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा मॉक ड्रिल जो है कनॉट प्लेस में हो रहा है। इस मॉक ड्रिल का थीम बेसिकली ये रखा गया है कि अगर कनॉट प्लेस में किसी भी तरह का आतंकी हमला हो जाता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और पुलिस की टीम है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये जो पूरा इलाका है इनर सर्कल का कनॉट प्लेस में, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए इस वक्त, और हर जगह अलग अलग जगह बैरिकेड लगा करके और ये डू नॉट क्रॉस दिल्ली पुलिस की जो टेप्स हैं ये लगा करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक के बाद एक एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं और जो कथित तौर पे घायल होंगे जो लोग ऐसे हमले में, उन्हें किस तरीके से वहां से निकाला जाएगा और कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें सही समय पर उपचार मिल सके, इन चीजों की डिटेल में तैयारी की जा रही है।
10: ये तस्वीरें दिल्ली के शहादरा इलाके की हैं। यहाँ पर भी आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। यहाँ बम ब्लास्ट का सीन क्रिएट किया गया जिसमें धमाके के बाद कुछ लोग घायल हो गए। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों का रिस्पांस टाइम देखा गया।
19: इंडिपेंडेंस डे के अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग व्हीकल इंस्टॉलेशन पे मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसी के तहत ये गांधीनगर मार्केट में आज एक हमने मॉक ड्रिल किया है जिसमें ये कॉल दी गई थी कि एक एक्सप्लोजन होने के कारण 2 लोग इंजर्ड हैं। इसी चीज को ध्यान रखते हुए सारे कंसर्न एजेंसियों को सूचना दी गई और सबने अपने अपने तरीके से क्विक वे में रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें लोकल पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, PCR ने किया है, हमारी BDT की टीम ने किया है, कैट्स एम्बुलेंस ने किया है। और इस कार्रवाई के तहत उन्होंने पहले पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और जो इंजर्ड लोग थे उनको सुरक्षित उन्होंने फिर हॉस्पिटल पहुँचाया है। पूरी कार्रवाई में करीब 10 से 12 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रहा है। इससे जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है हमारी इंप्रूव हुई है ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो उस पे हम बहुत क्विक तरीके से रेस्पॉन्ड कर पाए।
10: दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 17 घंटे तक मॉक ड्रिल की गई। इस पूरी एक्सरसाइज को गृह मंत्रालय के निर्देश पर NSG और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कोऑर्डिनेट किया। इसका मकसद ये देखना था कि अगर दिल्ली में एक साथ कई जगह आतंकी हमला होता है तो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां कितनी जल्दी मौके पर पहुंचती हैं और आपस में कितना बेहतर तालमेल बनाकर हालात को काबू में करती हैं। साफ है कि 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खासतौर पर दिल्ली में अभेद सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है ताकि आतंकियों की नापाक साजिश पर पानी फेरा जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है? डायबिटीज होने के ग्रह योग कौन से होते हैं और डायबिटीज हो जाने पर कौन से उपाय करने चाहिए? क्या है डायबिटीज का ग्रहों के साथ संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी। भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर नहीं थम रही राजनीति। राहुल गांधी ने बताया संविधान का अपमान। पहले नड्डा ने जताया खेद। हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म मानसून सत्र। सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। स्पीकर की मीटिंग में भी नहीं शामिल हुई कांग्रेस। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी। रांची में छात्रों का आंदोलन भी जारी। और अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद मामले में बढ़ा बवाल। गुरु सिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़ा सिख संगत। दोनों पक्षों से कई घायल। सियासत के दो रंग, एक तरफ नई जनरेशन की नई डिमांड है, दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए पुरानी सियासी रीत चली आ रही है। एक तरफ जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन करके साफ पानी, साफ क्लासरूम, साफ टॉयलेट, स्कूल जाने के लिए सड़क, स्कूल में टीचर, ईमानदारी से भर्तियां मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्ष से महिलाओं को पैसा बांटो और सत्ता हासिल करो वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाती सियासत है। यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए वाली स्कीम ला सकती है, जिसका जिक्र आते ही अखिलेश यादव पहले इसे जुमला बताते हैं, लेकिन फिर खुद भी महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा करते हैं।
1: इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर वाले दौर से कहीं आगे, जब बच्चों को गड्ढे वाली सड़क पर बच्चों दिखाओ चलकर वाली नौबत ला दी जाती है, तो आज तक ने दिखाया आपको कि बच्चे अब टूटी सड़क को अपनी नियति मानकर नहीं चलने वाले। तभी तो बुधवार को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में पेगलवाड़ी गोयरेवाड़ी रोड पर टूटी सड़क को बनवाने की मांग को लेकर आदित्य और स्मिता ने हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर एक इंटरव्यू किया। जो हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर प्रशासन को जगा सकते हैं, उन तक आज तक भी पहुंचता है। हाथ में आज तक का माइक थमाया और पूछा, क्या हुआ जो आपको आवाज उठानी पड़ी?
2: स्कूल में जाते समय फाटे पे जाते जाते तो हमारा ड्रेस खराब हो जाता है। कभी कभी हम चिखल में गिर जाते हैं।
3: जो शूज या चप्पल पहनते उसका क्या हालत होता
2: है? वो तो जब चिखल में अटक जाए गई तो वो निकलते समय वो ड्रेस टूट जाती।
3: और ये जो आपके साथी है
2: और हम गिर जाए तो स्कूल में स्कूल को डांडी मारनी पड़ती।
3: स्कूल जाते नहीं हो,
2: उधर से ही रिटर्न आना पड़ता है।
1: आदित्य और स्मिता ने एक वीडियो बनाकर बता दिया कि बच्चे अब देश में सत्ताधारियों से चाहते क्या है, जिसके बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर में उनके गांव की सड़क बनने लगती है।
4: मैं खड़ा हूँ अभी पेगलवाड़ी में, जहाँ के दो बच्चों ने पूरी सिस्टम यहाँ की हिला दी है। यहाँ कल रात में जो रास्ता बच्चों ने वीडियो में दिखाया था, वो रास्ते पे कल रात को 1:30 बजे तक वहाँ मिट्टी और कंकड़ डाले गए, और आज जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे यहाँ, तब जाके रोड रोलर आया था। बच्चों ने कल से सिस्टम मिला, तो कल से क्या यहाँ हैपनिंग हो रही है?
5: अभी बच्चों का जब से वीडियो वायरल हुआ है, तब से वो रास्ते का काम उस पे खड़ी वगैरह डाला है, उस पे रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी ये उन्होंने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता।
1: इस वक्त देश के बच्चे और युवा चाहते क्या हैं? क्या सरकारें सुन नहीं पा रही? क्या राजनीतिक दलों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि नई जनरेशन नई डिमांड करती है? वो सड़क, स्कूल, टीचर, साफ पानी, साफ टॉयलेट चाहती है, लेकिन नई